0: जब ये सब कुछ हो रहा था तब लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर रायबरेली में राहुल गांधी बहुजन स्वाभिमान सभा आयोजित कर रहे थे। इस मौके पर रायबरेली के लोधवारी गांव में दलित समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा का राहुल ने अनावरण भी किया। कांग्रेस की कोशिश दलितों को साथ लेने की, इसीलिए सवाल उठे कि क्या कांग्रेस मायावती से गठबंधन करना चाहती है? क्या बीएसपी और कांग्रेस फिर साथ आ सकते हैं या ऐसी कोई संभावना है ही नहीं?
1: उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहां बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो दो मिनट उनसे हालचाल हो जाए। सी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन उन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता हैं, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे।
0: मायावती से मुलाकात की कोशिश की बात जैसे ही बाहर आई उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपने तेवर कड़े किए उससे यूपी में इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल है कि मायावती से मिलने उनके घर गए नेताओं को नोटिस थमाने से ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए क्या खत्म हो जाए? आखिर अखिलेश ने इस घटनाक्रम के बाद 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी की बात क्यों कही?
2: में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को, बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
3: 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
0: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के एक साथ आने से कमाल किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा की 80 में से 43 सीटें जीत ली। लेकिन अब अखिलेश अगर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का इशारा कर रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेताओं से पूछने लगी कि वो किससे पूछकर मायावती से मिलने पहुंचे।
2: देखिए, समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं के संगठन को, बूथ को मजबूत करना है जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके।
0: अब सवाल है कि क्या 2027 के चुनावी महाभारत अखिलेश अकेले लड़ने का मन बना रहे या फिर मायावती पर डोरे डालने में लगे कांग्रेस के नेताओं को अखिलेश आईना दिखाना चाहते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के हथियारों का शौक जग जाहिर है लेकिन अब इन हथियारों पर कूट की टेढ़ी नजर है जिसका पूरा हिसाब किताब होगा।
5: यूपी के बाहुबलियों पर निगाहें, हथियारों पर निशाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सवाल, क्यों बांटे इतने लाइसेंसी हथियार? जिन बाहुबलियों को लाइसेंसी हथियार, सबकी कुंडली बताए सरकार। 19 बाहुबलियों की क्राइम कुंडली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों मांग ली? लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए या फिर डर और दबदबे के लिए? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा सवाल उठा दिया है कि यूपी के बाहुबलियों की दबंगई पर ही बन आएगी जिन लाइसेंसी हथियारों की खुली नुमाइश हो सकती है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबलियों के हथियारों का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया तो बाहुबलियों के हथियारों का प्रदर्शन ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के आर्म्स लाइसेंसों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में डर पैदा करता है जो कानून के शासन के बिल्कुल खिलाफ है। अदालत ने यूपी सरकार और यूपी के सभी जिलों के आला अधिकारियों से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब करते हुए 19 बड़े बाहुबलियों के हथियारों की कुंडली मांग ली है और इन बाहुबलियों में शामिल हैं रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया, जिनकी छवि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर बाहुबली नेता की रही है बल्कि उन पर हत्या के प्रयास, किडनैपिंग, डकैती और चुनावी हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगे और मामले दर्ज हुए हैं। धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा सांसद हैं, जिन्हें पूर्वांचल के रसूखदार बाहुबली नेताओं में गिना जाता है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने दबदबे और विवादों के लिए जाने जाते हैं। धनंजय सिंह पर हत्या, सरकारी टेंडरों में वसूली और गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें से कई मामलों में वो बरी हो चुके हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के 6 बार के लोकसभा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों और विशेषकर अवध क्षेत्र में उन्हें एक शक्तिशाली और बाहुबली छवि वाले नेता के रूप में जाना जाता है। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में उन पर हत्या के प्रयास और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले दर्ज हुए थे, जिनमें जेजे हॉस्पिटल मुंबई शूट आउट मामला भी शामिल था, लेकिन बाद के वर्षों में वो कई मामलों में बरी या दोषमुक्त साबित हुए। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं। वो पूर्व बाहुबली नेता और गैंगस्टर से राजनीतिज्ञ बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक इंटरनेशनल शूटर रह चुके हैं। विनीत सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह एक जाना माना नाम है। पूर्वांचल क्षेत्र में उन्हें एक बाहुबली नेता के रूप में देखा जाता है और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज रहे हैं। ब्रिजेश सिंह का नाम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व माफिया डॉन के तौर पर जाना जाता है। जन्म वाराणसी के धरहरा गांव में हुआ था। ये कभी कॉलेज के होनहार छात्र थे, लेकिन 1984-85 में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इनका मुख्तार अंसारी के गैंग के साथ दशकों लंबा और खूनी गैंग वॉर चला।
6: जयशंकर सिंह उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस विनोद दिवाकर की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उन 19 बाहुबलियों के बारे में ब्यौरा मांगा है कि आखिर इनको लाइसेंस कैसे दिए गए, जब इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन 19 लोगों में नाम राजा भैया, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह समेत तमाम लोगों के नाम शामिल हैं।
5: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने ये आदेश दिया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी लाइसेंसधारियों के सही पते, आपराधिक मामले, लाइसेंस की स्थिति और सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी साझा की जाए। हाईकोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणियां जयशंकर उर्फ बैरिस्टर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य मामले में सूबे के भीतर निजी हथियारों के दुरुपयोग पर सुनवाई करते हुए की। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, सच्ची आत्मरक्षा का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना होता है, न कि सार्वजनिक स्थलों को डर और दबदबे के माहौल में बदलना। इसलिए जो संस्कृति बंदूकों और डराने धमकाने को बढ़ावा देती है, उसे कभी भी शांतिपूर्ण और कानून सम्मत समाज के अनुकूल नहीं माना जा सकता। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आगे जोड़ा कि जिस समाज में सशस्त्र व्यक्ति अपनी ताकत और धमकियों के दम पर दबदबा बनाते हैं, वो समाज कभी भी अधिक स्वतंत्र या शांतिपूर्ण नहीं बन सकता। अदालत ने साफ किया कि बिना सोचे समझे हथियारों तक पहुँच समाज के लिए एक गंभीर खतरा है।
6: तो प्रदेश में हथियारों का लाइसेंस दिए जाने के मामले में दायर की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से हलफनामा भी मांगा गया, लेकिन इस हलफनामे से जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक असलहों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और वहीं 23,000 से अधिक लाइसेंस की अर्जियां तमाम दफ्तरों में मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं। इतना ही नहीं, 20,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको विभिन्न जिलों से 1 से अधिक लाइसेंस दिए गए हैं।
5: इस मामले में कोर्ट ने इसी साल मार्च महीने में ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि वो अपने अपने जिलों के सभी थानों के अनुसार निजी व्यक्तियों के पास मौजूद हथियारों का पूरा ब्यौरा सौंपें। इसके साथ ही जिला अधिकारियों के पास लाइसेंस जारी करने, रिन्यू करने या ट्रांसफर करने के लिए लंबित पड़े आवेदनों की जानकारी भी मांगी गई थी। कोर्ट के सामने जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। कुल लाइसेंस उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। लंबित आवेदन वर्तमान में अलग अलग श्रेणियों के 23,407 आवेदन पेंडिंग हैं। पारिवारिक लाइसेंस प्रदेश के 20,960 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक हथियार हैं। आपराधिक रिकॉर्ड, सबसे गंभीर बात यह है कि 6,062 मामलों में ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिनके खिलाफ दो या उससे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाई कोर्ट ने सिर्फ हथियारों तक ही अपनी जांच सीमित नहीं रखी है। कोर्ट ने सरकार को विशेष रूप से ये बताने का निर्देश दिया है कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय इन लोगों को क्या कोई सरकारी सुरक्षा भी दी गई है? अगर हाँ तो उन्हें किस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है? उनकी सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं? सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मियों की रैंक क्या है? कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही को जानबूझकर कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा और इस अदालत द्वारा इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता कृपा शंकर शुक्ला और विकास शुक्ला रखेंगे। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में शासन और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई रिपोर्ट पेश करता है। आज तक ब्यूरो।
4: एक्टर ट्रिशा शर्मा केस में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास की अग्रिम जमानत संबंधी सुनवाई सोमवार को होगी। अदालत ने ट्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश दिए। ट्रिशा के पति समर्थ को हिरासत में ले लिया गया।
5: ट्रिशा मौत केस में टर्निंग पॉइंट, हिरासत में पति समर्थ। ट्रिशा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, एम्स की स्पेशल टीम भोपाल जाएगी। ट्रिशा की मौत पर परिवार के सवाल, डबल हैंगिंग मार्क का मतलब क्या है? ट्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश, -80 डिग्री में रखा जाएगा। पति समर्थ ने अग्रिम याचिका वापस ली, 4 याचिकाओं पर सुनवाई। मॉडल और एक्ट्रेस ट्रिशा शर्मा डेथ केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के विरुद्ध सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। कोर्ट ने ट्रिशा के शव को -80 डिग्री पर सुरक्षित रखने को कहा है। इस मामले में आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम याचिका वापस ले ली गई है और समर्थ सरेंडर करने पहुंचा तो उसे हिरासत में ले लिया गया। हाईकोर्ट 4 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इसमें आरोपी सास, पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की जमानत याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गिरिबाला सिंह, ट्रिशा शर्मा की सास जो शुरू से सवालों के घेरे में हैं, अब चुप हैं। गिरिबाला सिंह भले ही अब कुछ न बोले, लेकिन उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। उन पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने बेटे को बचाने के इल्जाम हैं। इस एक घटना ने इन आरोपों को और गहरा करने का काम किया है।
7: कानून ने क्या आपको सब बताए?
8: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं। अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं,
9: पीड़ित परिवार कहता है।
8: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं
9: और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है।
7: स्वागत है सीबीआई जांच का।
5: 10 दिन पहले भोपाल में हुई ट्रिशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गई, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है। ट्रिशा का पति और इस केस का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया।
8: ले जा रहे हैं सर, इतने जॉर्ज साहब इतने जवाब दे दीजिए बस कि क्या आप लोग बयान दर्ज कराने जा रहे हैं?
7: सत्यानाश कर दिया, अभी साली हड्डी टूट गई होगी पैर की।
8: सर,
7: अरे माफी मांगो,
10: मेरा पैर आप लोगों के चक्कर में कुचला गया गाड़ी के नीचे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या?
5: मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे समर सिंह पर 30,000 रुपए का इनाम पुलिस ने रखा हुआ था। सुबह बड़े नाटकीय घटनाक्रम में समर के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका वापस ले ली और शाम को वो वकील के साथ जबलपुर में सरेंडर करने पहुँच गया। एक तरफ त्विशा का पति समर्थ फरार था तो इस दौरान समर्थ की मां और त्विशा की सास गिरिबाला अपनी ही बहू पर आरोप लगाती रही। मसलन वो घंटों फोन पर बात करती थी और घर से गायब रहती थी, पूछने पर कुछ भी बताने से इनकार करती थी। सवाल ये है कि त्विशा के जीते जी यही शिकायत उन्होंने त्विशा के घर वालों से क्यों नहीं की?
11: मैम किससे बात करती थी वो आप बताएं, देर तक फोन हेडफोन लगा?
12: अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं, किससे बात हो रही थी।
5: जब त्विशा का भाई अपनी बहन का रिश्ता बचाने भोपाल पहुंचा था तो ऑडियो में कथित तौर पर गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आज तक इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता लेकिन त्विशा का परिवार इसे मानसिक प्रताड़ना का बड़ा सबूत बता रहा है। समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 10 दिन बाद भी पता नहीं लगा सकी उससे सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिली भगत के कारण ऐसा हुआ।
13: जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहाँ से, उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे दे के अलग किया, आप लोगों ने कोशिश करी आपको धक्का दे के अलग किया, भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया कक्ष है, उसका कोई अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है वहाँ वो अंदर है, मैं पीछे पीछे गया तो वहाँ समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का दे करके उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया।
5: समर्थ इस वक्त भले ही कानून के शिकंजे में हो लेकिन त्विशा के पिता ने आरोप लगाया कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है और वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब उसके सरेंडर के बाद जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
4: त्विशा शर्मा मौत मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। परिवार वकील आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तेज करने की तैयारी में है। इस कदम से मामले के निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ गई और न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हो गई।
14: अपनी शादी पर खुशी से चहकती त्विशा शर्मा का ये वीडियो देखकर हर कोई सोच रहा है हमेशा खुश दिखने वाली त्विशा ने आत्महत्या की या फिर उसका मर्डर हुआ।

0: My first reaction was, Samarth, इतनी सुंदर लड़की कैसे मिली?
1: त्रिशा के पति समर्थ को लेकर भी सब जानना चाहते हैं। आखिर वो बेकसूर था तो फरार क्यों हुआ? क्यों उसने अपनी पत्नी त्रिशा की मौत का सच छिपाए रखा? त्रिशा शर्मा की मौत का सच जानने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे उसके परिवार की उम्मीदों को ताकत मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने जहां त्रिशा शर्मा मौत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की पहले सिफारिश कर दी, वहीं हाईकोर्ट ने त्रिशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दे दिया। दिल्ली एम्स के डॉक्टर की टीम त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। कोर्ट ने तब तक पुलिस से त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
2: हमें यह अपडेट मिला है कि पीएम 2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है, एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड।
1: 12 मई की रात त्रिशा शर्मा का शव घर में फांसी पर लटकता मिला, जिसके बाद अगले दिन एम्स भोपाल में त्रिशा के शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन परिवार अपनी बेटी का एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग करता रहा ताकि त्रिशा की मौत का सच सामने आ सके।
3: ने कहा ऑडियो कि जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर भोपाल इनके निवास पर गए थे, तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है, उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है, तो बोल रही नहीं ये तो हमारा अधिकार है।
1: त्रिशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का हाईकोर्ट का आदेश इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कुछ ही दिन पहले भोपाल की निचली अदालत ने पीड़ित परिवार की इस मांग को खारिज कर दिया था। त्रिशा का परिवार शुरुआत से आरोप लगा रहा है कि ये कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है जिसकी निष्पक्ष फॉरेंसिक जांच होना बहुत जरूरी है। परिवार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक विशेष टीम करेगी जो जल्द से जल्द भोपाल में ही इस काम को पूरा करेगी।
4: ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरिवाला जी को, और ये सारी चीजें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरिवाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे।
1: त्रिशा का परिवार सुसाइड थ्योरी से लगातार नाराज है। त्रिशा के पिता का सीधा आरोप है, त्रिशा की सास गिरिवाला जो पूर्व में जज रह चुकी हैं, उनके रसूख के कारण भोपाल पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही। उनका दावा है कि गिरिवाला ने त्रिशा की मौत के फौरन बाद और अगले दिन 46 फोन कॉल्स किए, सभी केस को प्रभावित करने के लिए किए गए। उनका दावा है कि कई फोन जजेस और बड़े अधिकारियों को किए गए थे।
3: हमने कॉल किया था, वो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स जब जांच होगी तो सामने आ जाएंगे, पर उसके साथ साथ पैरेलली उस रिकॉर्ड्स में वो नंबर्स भी हैं जिन पर उनकी बातचीत हुई है, वो नंबर्स बताया जा रहा है कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं, जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा था, लोकायुक्त के भी नंबर हैं, SCGM के भी नंबर हैं, मेडिकल वेटनरी में काम करने वाले। तो मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं, पर आप 30 सेकंड पुलिस चौकी में फोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, ये किस ओर इशारा कर रहा है?
1: त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने उनके परिवार को ऐसा दर्द दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। त्रिशा शर्मा की माँ अब उस दिन को कोसती है जब वो पहली बार अपनी बेटी त्रिशा शर्मा के होने वाले पति समर्थ सिंह और उसके परिवार से मिली थी। वो तारीख थी 12 मई 2025। यही वो दिन था जब त्रिशा और समर्थ के पवित्र बंधन में बंधने के लिए एक छोटी सी रस्म हुई। इसी दिन शादी की तारीख पक्की हुई थी, पर किसे पता था कि संयोग ऐसा बनेगा कि ठीक एक साल बाद 12 मई 2026 को उनकी बेटी की मौत की खबर आएगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद त्रिशा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। इस मामले में त्रिशा के परिजनों ने उनके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने दहेज की मांग और जबरदस्ती गर्भपात तक करवाने का आरोप लगाया, जिससे त्रिशा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी। लेकिन अब सीबीआई इस मामले का असल सच पता करेगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
5: भोजशाला में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद शुक्रवार को पहला जुमा था। ऐसे में वाग देवी पूजा के दौरान भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मुस्लिम समाज ने कोर्ट के निर्णय के विरोध में काले कपड़ों में नमाज पढ़ी।
6: ऐसा पहली बार हुआ जब शुक्रवार के दिन भोजशाला में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। आज सुबह से भोजशाला में उत्सव का माहौल रहा। हिंदू भक्त आते रहे और वाग देवी की पूजा आराधना करते रहे। 721 साल बाद ऐसा मौका आया जिसकी खुशी यहां के भक्तों में साफ नजर आ रही है।
7: पहला शुक्रवार है, 750 सालों में पहला शुक्रवार है जिस शुक्रवार को हिंदू समाज यहां पूजा कर पा रहा है निरंतर।
8: 720 सालों बाद ऐसा मौका मिला है कि शुक्रवार के दिन हम यहां बड़ी संख्या में माता की आराधना कर पा रहे हैं।
9: सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा जो भोजशाला 40 वर्षों से दूसरों के कब्जों में थी, हिंदुओं को गर्व है, वो मुक्त हो गई।
6: भोजशाला में सुबह से भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले सुबह की आरती हुई, यात्रा निकली और फिर महाआरती हुई।
7: आज पहला शुक्रवार है जब हिंदुओं को अंदर आने की अनुमति मिली है, पूजा करने की अनुमति मिली है। और जब 721 साल बाद यह मौका आया तो हिंदुओं ने इसे हाथों हाथ लिया। और आप देखिए गर्भगृह में भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। हम सुबह 7 बजे से यहाँ मौजूद है और लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है।
6: हाईकोर्ट ने पिछले शुक्रवार को भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर को देवी बाग देवी यानी सरस्वती का मंदिर मानते हुए उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में आज पहला जुमा था। ऐसे में सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। उधर मुस्लिम समाज के लोगों ने काले कपड़े पहनकर और हाथों में काली पट्टी बांधकर अपने अपने घरों और दुकानों में नमाज पढ़ी और कोर्ट के फैसले का विरोध किया। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
5: और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अब से चार दिन के भारत दौरे पर आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सुबह कोलकाता और दोपहर में पहुंचेंगे दिल्ली, क्वाड सहित अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। विशाल शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपित और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, आज कोर्ट में पेशी। बार काउंसिल ने रद्द किया वकालत का लाइसेंस, सीबीआई करेगी पूरे केस की जांच। नीट परीक्षा कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पुणे से फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपित मनीषा हवलदार गिरफ्तार, एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर किया था नियुक्त। पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर सुलगी सियासत, सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने खोला मोर्चा, कहा यह है कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार। बॉर्डर सुरक्षा पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर लागू होगा स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम, कहा देश से निकाले जाएंगे घुसपैठिए।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ मान शो। दक्षिण शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में आज सुबह भीषण आग लगने की खबर आई और इससे हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में कई दुकानों को अपने आगोश में ले लिया और देखते ही देखते लाखों रुपए का फर्नीचर सामान जलकर राख हो गया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मार्केट में पहले ही कई बार आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन स्थायी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जांच जारी है। शास्त्री नगर का ये मामला है जहां आग की लपटें धधकती हुई दिखी और लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया।

0: अरे 6 नंबर से आग लगी थी।
1: अच्छा
0: हाँ, कुछ खोल रहे थे, बटन उटन ये गए, सभी तो आग लग गई, सारा माल जल गया, सब ये सब कुछ।
1: कितनी दुकानें हैं यहाँ पर जो जल गई?
2: दुकानें बहुत दुकानें, हजारों की तादाद में दुकानें हैं जी।
1: कितने का नुकसान लगभग इनका रहा होगा?
2: ये अरबों का नुकसान है जी, करोड़ों का नहीं, अरबों का नुकसान है, बहुत नुकसान।
3: अच्छा देखिए भाई, सारी जल गई है, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं आई है अभी तक, आप ये देखिए, एक गाड़ी आई है और उनने सिर्फ वहां चलाया और अब गाड़ी और ज्यादा फैल गई है, समझ लो। आप ये देख लो, अंदर नहीं जा रहे हैं वो, बाहर बाहर से पानी डाल रहे हैं।
4: गुरुग्राम से बिजली संकट पर बड़ी खबर आ रही है। सेक्टर 72 के 220 केवीए बिजली घर का मेन ट्रांसफार्मर जलने से 7 बिजली घर ठप हो गए। अब इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि रैपिड मेट्रो की सेवा काफी समय से बाधित है, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो आप देखिए कि कैसे रैपिड मेट्रो में सवार लोग मेट्रो लाइन के साइड में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इनके रेस्क्यू के इंतजाम भी किए गए हैं। मतलब ये लोग मेट्रो में बैठे थे, रैपिड मेट्रो में अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन बीच में पट्टी ठप, सेक्टर 72 के बिजली घर का मेन ट्रांसफार्मर ठप, और उससे क्या हुआ? उससे बताया जा रहा है कि 7 बिजली घर ठप हो गए। तो रैपिड मेट्रो विद्युत से चलती है, बिजली से चलती है, बिजली नहीं मिली, अटक गई, रुक गई, और फिर वहां से ये पैदल पैदल कोने में सहारा लेते हुए रेलिंग का ये सभी यात्री सफर करते दिखाई दिए और अपनी मंजिल तक ऐसे ही पहुंचे अपने पैरों से चलते हुए। गुरुग्राम में बत्ती को लोने से रैपिड मेट्रो ठप हो गई और अब देखिए इनके रेस्क्यू के इंतजाम किए गए, क्योंकि लंबे वक्त तक कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि जल्द से जल्द ये सही हो जाए और उसके बाद लोगों को राहत मिले, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके बाद फिर यही हुआ, पैदल पैदल चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, और ये बड़ी खबर आ रही है पुणे से, जहां नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का एक्शन जारी है। पुणे में फिजिक्स पेपर लीक के मुख्य आरोपित मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया। अब इसे एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था, और देखिए एक और हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र से नीट केस की 3 महिला आरोपित गिरफ्तार हुई है और तीनों के नाम मनीषा ही है। 3 गिरफ्तारी महाराष्ट्र से महिला आरोपियों की और तीनों के नाम मनीषा। हालांकि कई मनीषा नाम की लड़कियों को इससे एतराज जरूर हो सकता है, लेकिन उन्होंने लाइटर नोट यह कहा जा सकता है कि ये तीनों ही नाम मनीषा हैं और पुणे से सीबीआई ने गिरफ्तार किया। अब इस मनीषा हवलदार का क्या किरदार था तो ये भी आप समझ लीजिए। ये एनटीए ने इन्हें एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था, फिजिक्स की एक्सपर्ट के तौर पर, लेकिन एक्सपर्ट कब पेपर लीक करने वाली बन गई ये एनटीए को शुरुआत में पता ही नहीं चल पाया। अब वो तो जब पूरा खुलासा हुआ तब पता चला कि मनीषा बागमारे और अब ये मनीषा हवलदार पेपर लीक कराने में जुटी हुई थी। महाराष्ट्र से आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। यूपी की राजनीति में 2027 से पहले आपस में तू डाल मैं पात की उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव अकेले ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या कांग्रेस मायावती से करीबी बढ़ाने में जुटी हुई है? और इन सवालों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में विपक्ष का सियासी भविष्य घूम रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की तो अखिलेश ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि 403 सीटों पर लड़ने को तैयार हो जाओ।

0: तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस तरह से डीएमके को दूध में से मक्खी की तरह निकाला, उसने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जिसे अखिलेश यादव की इस पोस्ट ने और मजबूत कर दिया। कांग्रेस के डीएमके को छोड़ने और टीवीके को साथ लेने पर अखिलेश ने तंज कसा था। ममता स्टालिन से मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने तब लिखा था कि हम वो नहीं है जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। कांग्रेस को अखिलेश यादव ने एक बार फिर संदेश दिया, जिसका रिश्ता सीधा 2027 के चुनाव से। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी तैयारी यूपी की सभी 403 सीटों के लिए है। पार्टी सभी 403 सीटों पर कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा, उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है।
1: बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, कुछ ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बयान अखिलेश यादव का तब आया है जब दो दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता सांसद पहुंच गए मायावती बसपा सुप्रीमो के आवास उनसे मिलने के लिए। जरूर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे उनकी निजी मुलाकात की कोशिश बताया है, लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी के चुनाव से पहले दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर माइंड गेम्स शुरू हो गए हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो एक दल दूसरे दल को ये बताना चाहता है कि आप ही नहीं है जनाब, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं।
0: अखिलेश यादव के इस बयान को कांग्रेस के लिए संदेश के तौर पर देखा जाने लगा, जिनके दो नेताओं ने बीएसपी के प्रमुख मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की। दोनों नेता मायावती के घर भी गए, लेकिन मायावती से मुलाकात नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल होने के बाद सियासत अलग मोड़ ले लेती है। जो अखिलेश यादव इस मुलाकात से पहले गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे थे, उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया।
2: समाजवादियों ने और गठबंधन ने मिलकर के किसी को सरेंडर वाली कहा जाता था, उन्हें हराया है। और अभी अभी जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें हारी है बीजेपी। अभी ये लोग हार से उबर नहीं पाए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ भी बोलने लगती है।
0: बड़ी बात यह है कि अखिलेश ने बुधवार को यह बयान दिया और एक दिन पहले कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और विभाग के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और सांसद तनुज पुनिया मायावती के घर पहुंचे। जब ये सब कुछ हो रहा था, तब लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर रायबरेली में राहुल गांधी बहुजन स्वाभिमान सभा आयोजित कर रहे थे। इस मौके पर रायबरेली के लोधवारी गांव में दलित समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा का राहुल ने अनावरण भी किया। कांग्रेस की कोशिश दलितों को साथ लेने की, इसीलिए सवाल उठे कि क्या कांग्रेस मायावती से गठबंधन करना चाहती है? क्या बीएसपी और कांग्रेस फिर साथ आ सकते हैं या ऐसी कोई संभावना है ही नहीं?
3: उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा।
0: कोई संभावना है ही नहीं?
3: उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा, अगर व्यस्त नहीं है तो दो मिनट उनसे हालचाल हो जाए। सी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन उन क्योंकि हमारे समाज की दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे।
0: मायावती से मुलाकात की कोशिश की बात जैसे ही बाहर आई, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपने तेवर कड़े किए, उससे यूपी में इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल है कि मायावती से मिलने उनके घर गए नेताओं को नोटिस थमाने से ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए क्या खत्म हो जाए? आखिर अखिलेश ने इस घटनाक्रम के बाद 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी की बात क्यों कही?
4: में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
5: 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
0: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के एक साथ आने से कमाल है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा की 80 में से 43 सीटें जीत ली। लेकिन अब अखिलेश अगर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का इशारा कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेताओं से पूछने लगी कि वो किससे पूछकर मायावती से मिलने पहुंचे।
4: देखिए, समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं के संगठन को बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके।
0: अब सवाल है कि क्या 2027 के चुनावी महाभारत अखिलेश अकेले लड़ने का मन बना रहे, या फिर मायावती पर डोरे डालने में लगे कांग्रेस के नेताओं को अखिलेश आईना दिखाना चाहते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: यूपी में बाहुबलियों के हथियारों का शौक जग जाहिर है, लेकिन अब इन हथियारों पर कोर्ट की टेढ़ी नजर है, जिसका पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा।
7: यूपी के बाहुबलियों पर निगाहें, हथियारों पर निशाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सवाल, क्यों बांटे इतने लाइसेंसी हथियार? जिन बाहुबलियों को लाइसेंसी हथियार, सबकी कुंडली बताए सरकार। 19 बाहुबलियों की क्राइम कुंडली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों मांग ली? लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए या फिर डर और दबदबे के लिए? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा सवाल उठा दिया है कि यूपी के बाहुबलियों की दबंगई पर ही बन आएगी जिन लाइसेंसी हथियारों की खुली नुमाइश हो सकती है, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबलियों के हथियारों का लाइसेंस

0: समाज में डर पैदा करता है जो कानून के शासन के बिल्कुल खिलाफ है। अदालत ने यूपी सरकार और यूपी के सभी जिलों के आला अधिकारियों से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब करते हुए 19 बड़े बाहुबलियों के हथियारों की कुंडली मांग ली है और इन बाहुबलियों में शामिल हैं रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया, जिनकी छवि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर बाहुबली नेता की रही है बल्कि उन पर हत्या के प्रयास, किडनैपिंग, डकैती और चुनावी हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगे और मामले दर्ज हुए हैं। धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा सांसद हैं, जिन्हें पूर्वांचल के रसूखदार बाहुबली नेताओं में गिना जाता है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने दबदबे और विवादों के लिए जाने जाते हैं। धनंजय सिंह पर हत्या, सरकारी टेंडरों में वसूली और गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें से कई मामलों में वो बरी हो चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के 6 बार के लोकसभा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों और विशेषकर अवध क्षेत्र में उन्हें एक शक्तिशाली और बाहुबली छवि वाले नेता के रूप में जाना जाता है। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में उन पर हत्या के प्रयास और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले दर्ज हुए थे, जिनमें जेजे हॉस्पिटल मुंबई शूटआउट मामला भी शामिल था, लेकिन बाद के वर्षों में वो कई मामलों में बरी या दोषमुक्त साबित हुए। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं। वो पूर्व बाहुबली नेता और गैंगस्टर से राजनीतिज्ञ बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक इंटरनेशनल शूटर रह चुके हैं। विनीत सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह एक जाना माना नाम है। पूर्वांचल क्षेत्र में उन्हें एक बाहुबली नेता के रूप में देखा जाता है और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज रहे हैं। ब्रिजेश सिंह का नाम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व माफिया डॉन के तौर पर जाना जाता है। जन्म वाराणसी के धरहरा गांव में हुआ था। ये कभी कॉलेज के होनहार छात्र थे, लेकिन 1984-85 में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इनका मुख्तार अंसारी के गैंग के साथ दशकों लंबा और खूनी गैंग वॉर चला।
1: जयशंकर सिंह उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस विनोद दिवाकर की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उन 19 बाहुबलियों के बारे में ब्यौरा मांगा है कि आखिर इनको लाइसेंस कैसे दिए गए, जब इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन 19 लोगों में नाम राजा भैया, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह, बृजभूषण शरण सिंह समेत तमाम लोगों के नाम शामिल हैं।
0: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने ये आदेश दिया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी लाइसेंस धारियों के सही पते, आपराधिक मामले, लाइसेंस की स्थिति और सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी साझा की जाए। हाईकोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणियां जयशंकर उर्फ बैरिस्टर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य मामले में सूबे के भीतर निजी हथियारों के दुरुपयोग पर सुनवाई करते हुए की। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, सच्ची आत्मरक्षा का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना होता है, न कि सार्वजनिक स्थलों को डर और दबदबे के माहौल में बदलना। इसलिए जो संस्कृति बंदूकों और डराने धमकाने को बढ़ावा देती है, उसे कभी भी शांतिपूर्ण और कानून सम्मत समाज के अनुकूल नहीं माना जा सकता। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आगे जोड़ा कि जिस समाज में सशस्त्र व्यक्ति अपनी ताकत और धमकियों के दम पर दबदबा बनाते हैं, वो समाज कभी भी अधिक स्वतंत्र या शांतिपूर्ण नहीं बन सकता। अदालत ने साफ किया कि बिना सोचे समझे हथियारों तक पहुँच समाज के लिए एक गंभीर खतरा है।
1: उत्तर प्रदेश में हथियारों का लाइसेंस दिए जाने के मामले में दायर की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से हलफनामा भी मांगा गया, लेकिन इस हलफनामे से जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक असलहों के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और वहीं 23,000 से अधिक लाइसेंस की अर्जियां

0: तमाम दफ्तरों में मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं। इतना ही नहीं, 20,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको विभिन्न जिलों से एक से अधिक लाइसेंस दिए गए हैं।
1: इस मामले में कोर्ट ने इसी साल मार्च महीने में ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि वो अपने अपने जिलों के सभी थानों के अनुसार निजी व्यक्तियों के पास मौजूद हथियारों का पूरा ब्यौरा सौंपें। इसके साथ ही जिला अधिकारियों के पास लाइसेंस जारी करने, रिन्यू करने या ट्रांसफर करने के लिए लंबित पड़े आवेदनों की जानकारी भी मांगी गई थी। कोर्ट के सामने जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। कुल लाइसेंस उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। लंबित आवेदन वर्तमान में अलग अलग श्रेणियों के 23,407 आवेदन पेंडिंग हैं। पारिवारिक लाइसेंस प्रदेश के 20,960 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक हथियार हैं। आपराधिक रिकॉर्ड, सबसे गंभीर बात यह है कि 6,062 मामलों में ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिनके खिलाफ दो या उससे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाई कोर्ट ने सिर्फ हथियारों तक ही अपनी जांच सीमित नहीं रखी है। कोर्ट ने सरकार को विशेष रूप से ये बताने का निर्देश दिया है कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय इन लोगों को क्या कोई सरकारी सुरक्षा भी दी गई है। अगर हाँ तो उन्हें किस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, उनकी सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी तैनात हैं, सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मियों की रैंक क्या है। कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही को जानबूझकर कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा और इस अदालत द्वारा इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता कृपा शंकर शुक्ला और विकास शुक्ला रखेंगे। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में शासन और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई रिपोर्ट पेश करता है। आज तक ब्यूरो।
2: ट्रिशा शर्मा केस में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपित सास की अग्रिम जमानत संबंधी सुनवाई अब सोमवार को होगी। कोर्ट ने इसके लिए ट्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही ट्रिशा के पति समर्थ को अब हिरासत में ले लिया गया।
1: ट्रिशा मौत केस में टर्निंग पॉइंट, हिरासत में पति समर्थ। ट्रिशा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, एम्स की स्पेशल टीम भोपाल जाएगी। ट्रिशा की मौत पर परिवार के सवाल, डबल हैंगिंग मार्क का मतलब क्या है? ट्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश, -80 डिग्री में रखा जाएगा। पति समर्थ ने अग्रिम याचिका वापस ली, 4 याचिकाओं पर सुनवाई। मॉडल और एक्ट्रेस ट्रिशा शर्मा डेथ केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के विरुद्ध सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। कोर्ट ने ट्रिशा के शव को -80 डिग्री पर सुरक्षित रखने को कहा है। इस मामले में आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम याचिका वापस ले ली गई है और समर्थ सरेंडर करने पहुंचा तो उसे हिरासत में ले लिया गया। हाईकोर्ट 4 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इसमें आरोपी सास, पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की जमानत याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गिरिबाला सिंह, ट्रिशा शर्मा की सास जो शुरू से सवालों के घेरे में हैं, अब चुप हैं। गिरिबाला सिंह भले ही अब कुछ न बोले, लेकिन उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। उन पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने बेटे को बचाने के इल्जाम हैं। इस एक घटना ने इन आरोपों को और गहरा करने का काम किया है।
3: अरे कानून ने क्या आपको सब बताए?
4: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं। अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं।
5: पीड़ित परिवार पूछिए, पीड़ित परिवार से पूछिए, पीड़ित परिवार कहता है
4: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं
5: और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है।
4: स्वागत है सीबीआई जांच का।
1: 10 दिन पहले भोपाल में हुई ट्रिशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गई, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है। त्रिशा का पति और इस केस का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया।
4: ने जा रहे हैं सर, इतने जॉर्ज साहब इतने जवाब दे दीजिए बस कि क्या आप लोग बयान दर्ज कराने जा रहे हैं?
6: कर दिया, अभी साली हड्डी टूट गई होगी पैर। अरे माफी मांगो, मेरा पैर आप लोगों के चक्कर में कुचला गया गाड़ी के नीचे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या?
1: मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे समर्थ सिंह पर 30,000 रुपए का इनाम पुलिस ने रखा हुआ था। सुबह बड़े नाटकीय घटनाक्रम में समर्थ के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका वापस ले ली और शाम को वो वकील के साथ जबलपुर में सरेंडर करने पहुँच गया। एक तरफ त्रिशा का पति समर्थ फरार था तो इस दौरान समर्थ की मां और त्रिशा की सास गिरिबाला अपनी ही बहू पर आरोप लगाती रही। मसलन वो घंटों फोन पर बात करती थी और घर से गायब रहती थी, पूछने पर कुछ भी बताने से इनकार करती थी। सवाल ये है कि त्रिशा के जीते जी यही शिकायत उन्होंने त्रिशा के घर वालों से क्यों नहीं की?
7: मैम किससे बात करती थी वो आप बताए, देर तक फोन हेडफोन लगा?
8: अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं, किससे बात हो रही थी?
1: जब त्रिशा का भाई अपनी बहन का रिश्ता बचाने भोपाल पहुंचा था तो ऑडियो में कथित तौर पर गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आज तक इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता लेकिन त्रिशा का परिवार इसे मानसिक प्रताड़ना का बड़ा सबूत बता रहा है।
9: I didn't see shampoo with anybody. I said the kind of intimacy.
10: Yes, we did do it for a favor.
1: समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 10 दिन बाद भी पता नहीं लगा सकी उससे सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिली भगत के कारण ऐसा हुआ?
4: जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहाँ से, उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे दे के अलग किया, आप लोगों ने कोशिश करी आपको धक्का दे के अलग किया, भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया कक्ष है, उसका कोई अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है वहाँ वो अंदर है, मैं पीछे पीछे गया तो वहाँ समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का देकर के उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया।
1: समर्थ इस वक्त भले ही कानून के शिकंजे में हो लेकिन त्रिशा के पिता ने आरोप लगाया कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है और वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब उसके सरेंडर के बाद जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
2: बहुत छोटा चला, बहुत छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
12: क्या आपका शनि आपकी कुंडली में शुभ है या शनि आपको जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा है? क्या है शनि के शुभता अशुभता के लक्षण, जानिए भाग्य चक्र।
13: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल We wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
14: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Jam out to your favorite songs with today's hits. Tune In has got you covered with the top songs of today, from pop songs to EDM bangers. The hits are on. And hip-hop beats.
17: I'm in the game, I should I join with this G23.
16: Today's hits will keep the party going 24/7. Listen now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
11: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: अब से चार दिन के भारत दौरे पर आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सुबह कोलकाता और दोपहर में पहुंचेंगे दिल्ली। क्वाड सहित अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। ऋषा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपित और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया। आज कोर्ट में पेशी, बार काउंसिल ने रद्द किया वकालत का लाइसेंस। सीबीआई करेगी पूरे केस की जांच। नीट परीक्षा कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पुणे से फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपित मनीषा हवलदार गिरफ्तार। एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर किया तनयू। पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर सुलगी सियासत। सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने खोला मोर्चा। कहा यह है कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार। बॉर्डर सुरक्षा पर अमित शाह का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर लागू होगा स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम। कहा देश से निकाले जाएंगे घुसपैठिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ मानशु दीक्षित। शुरुआत बड़ी खबर से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से चार दिवसीय भारत दौरे पर हैं, 23 तारीख से 26 मई तक, और ये उनका अहम दौरा रहेगा। अब इसमें व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सहयोग, ये प्रमुख एजेंडे शामिल होंगे। रूबियो कोलकाता, ताजनगरी आगरा, पिंक सिटी जयपुर और फिर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली का दौरा करेंगे और भारतीय नेताओं के साथ कई उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। सूत्रे बता रहे हैं कि अमेरिका भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी में है। रवाना होने से पहले मार्को रूबियो ने भारत को महान साझेदार बताते हुए कहा कि अमेरिका भारत की जरूरत के मुताबिक अधिक से अधिक ऊर्जा आपूर्ति के लिए तैयार है। वैश्विक सप्लाई चेन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी रूबियो हिस्सा लेंगे। इस दौरान इंडो पैसिफिक सुरक्षा, रक्षा साझेदारी और व्यापारिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। तो एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ तनाव चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ मार्को रूबियो का ये भारत दौरा एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदलने वाला साबित हो सकता है। इस दौरे के चार बड़े मायने। सबसे पहले मार्को रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। अब ये चीन को सीधा संदेश है। अमेरिकी दूतावास ने इस दौरे की घोषणा करते हुए क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी को फ्रंट पर रखा है। जारी की गई आधिकारिक तस्वीरों में चारों देशों के प्रतिनिधि अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ एकजुट दिखाई दे रहे हैं। अब इस बैठक का मुख्य एजेंडा हिंद प्रशांत क्षेत्र को पूरी तरह मुक्त और खुला रखना है, जो सीधे तौर पर इस क्षेत्र में चीनी दबदबे को रोकने की बड़ी घेराबंदी है। और दूसरा मुद्दा है हॉर्मुज संकट के बीच भारत को बंपर एनर्जी का ऑफर। भारत के लिए रवाना होने से ठीक पहले मियामी में पत्रकारों से बात करते हुए रूबियो ने भारत को एक बेहतरीन साझेदार और बड़ा सहयोगी बताया है।
1: Can the U.S. provide more energy itself, or what else can the U.S. do with that?
2: Well, we want to sell them as much energy as they'll buy. And obviously, you've seen, I think we're at historic levels of U.S. production and U.S. export. We want to be able to do more. We were already in talks with them to do more. We want to be a bigger part of their portfolio. We also think there's opportunities with Venezuelan oil. In fact, it's my understanding that the interim president of Venezuela will be traveling to India next week. As well, so there's opportunities. There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them, and so it is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. Something I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe, like I went, I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs, and that was my first meeting. And I'm glad we're able to do it now in India, and we're going to do one later in the year as well.
3: Can it come back to?
0: और आपको दिखाते हैं कि आज अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर आ रहे हैं और रूबियो के दौरे से भारत अमेरिकी संबंधों में फिर से नई गर्मजोशी की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर से आज तक की खास बातचीत आपको सुनाते हैं।
4: मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस यात्रा का क्या महत्व है, क्योंकि इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। इस यात्रा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं?
5: रोहित, आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे पता है कि आप भारत वापस जा रहे हैं, इसलिए हम शनिवार को आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की उम्मीद करते हैं। मार्को रूबियो की इस भारत यात्रा का बहुत महत्व है। अमेरिका भारत के साथ रिश्तों को लेकर गंभीर है और इसलिए विदेश मंत्री, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं, 4 दिनों के लिए भारत आ रहे हैं, जो मामूली बात नहीं है। जब विदेश मंत्री यात्रा करते हैं तो आम तौर पर वो 1 या 2 रातों के लिए ही आते हैं। वो अभी तक किसी एक देश में 4 दिनों के लिए नहीं गए हैं, इसलिए जब विदेश मंत्री यहाँ आएंगे तो वो दिल्ली, कोलकाता, आगरा और जयपुर जाएंगे। इसका बहुत महत्व है, इससे भारत अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत होंगे।
6: आपने बिल्कुल सही कहा, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो कोलकाता से शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली लौटेंगे, द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, फिर जयपुर आगरा जाएंगे, वापस आएंगे और क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मतलब ये एक बहुत बड़ा 4 दिवसीय कार्यक्रम है। हमें बस इतना बताइए कि हम किन ठोस परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। क्या कोई ठोस परिणाम हो सकते हैं जिनकी हम उम्मीद कर सकते हैं?
5: मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी होंगी, साथ ही क्वाड सम्मेलन से संबंधित भी होंगी। क्वाड में भागीदार होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे नतीजे होंगे जिनके बारे में चारों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम पिछले लगभग 5 महीनों से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 महीनों से हूँ। विदेश मंत्री ने डॉक्टर जयशंकर के साथ नियमित रूप से बातचीत की है। वो कई बार मिले हैं, अमेरिका में भी और अन्य कार्यक्रमों में भी, इसलिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बातें करना अच्छा है, लेकिन काम करना उससे भी बेहतर है।
7: तो ये तो अमेरिकी विदेश मंत्री की बात होगी। अब पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ चीन दौरे की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हालिया चीन यात्राओं के बाद ये दौरा अब चर्चा में है। पाक पीएम शहबाज शरीफ आज से 23 मई से 26 मई तक चीन दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीएम ली कियांग से मुलाकात करेंगे।

0: चीन से तेहरान तक पाक का कूटनीतिक शो ऑफ। पाकिस्तान चीन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ। शी जिनपिंग और ली कियांग से अहम बैठकें, B2B निवेश सम्मेलन। हर मौसम की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का लक्ष्य। पाकिस्तान की यह यात्रा इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। पहली पाक पीएम शरीफ की चीन की और दूसरी पाक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा। हाल के दिनों में अमेरिका और रूस जैसे देशों के नेताओं की चीन यात्रा के बाद शरीफ का चीन जाना और भी हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है। पाक पीएम शहबाज शरीफ की यह यात्रा चीन और पाकिस्तान के बीच 75 वर्षों की राजनीतिक संबंध को आगे बढ़ाने की एक औपचारिक प्रक्रिया है। पाकिस्तानी पीएम की इस यात्रा में क्या खास होगा? पाकिस्तान चीन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ। बीजिंग मित्रता समारोह में शिरकत। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और पीएम ली कियांग के साथ बैठक। हांगझो B2B निवेश सम्मेलन में भागीदारी। चीनी न्यूज एजेंसी के अनुसार चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान अच्छे दोस्त और हर मौसम के रणनीतिक सहयोगी हैं, जो पहाड़ों और नदियों से जुड़े हैं और सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं।
1: अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। भोपाल की त्रिशा शर्मा मौत मामले में उसके पति और मुख्य आरोपित समर्थ सिंह को जबलपुर की जिला अदालत में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज पुलिस समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश करेगी और हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर अदालत में पेशी जरूरी है। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समर्थ सिंह की वकालत का लाइसेंस रद्द कर दिया। अब इस पूरे केस की जांच कौन कर रहा है? CBI। CBI सभी पहलुओं को जोड़ते हुए इस मामले की गहराई तक जाने की तैयारी में है। आज समर्थ सिंह की कोर्ट में पेशी होगी। बार काउंसिल ने भी समर्थ का लाइसेंस रद्द कर दिया है और समर्थ की तरफ से अर्जी भी लगाई गई थी। त्रिशा शर्मा मौत मामला जो पिछले काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। कल भी बयान सामने आया था जो त्रिशा की सास गिरीबाला कोर्ट में जाती हैं, उसके बाद बाहर निकलती हैं।
2: कोई सरेंडर नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं चल रही है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मुझे जब आखिरी बार खबर मिली तो ये मिली कि वो कोर्ट नंबर 32 के अंदर है। मैंने ये सोचा कि वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है, शायद वहाँ पे उस पर सुनवाई चल रही होगी। मैं उस कोर्ट का दरवाजा खुलवा के अंदर गया, जो दरवाजा अंदर से बंद था, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट जबलपुर के कोर्ट रूम के अंदर आराम से पूरी लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में समर्थ सिंह मास्क पहन के बैठे हुए थे। जज साहब डायस पे नहीं थे, वहां मौजूद 3 बाबू थे। मैंने उनसे पूछा, आपने किस हैसियत से इनको बिठा के रखा है? उनके पास मेरी बात का जवाब देने कोई जवाब नहीं था। मुझे देखते ही साथ जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ, वो भागे वहां से। उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे दे के अलग किया, आप लोगों ने कोशिश करी, आपको धक्का दे के अलग किया। भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया कक्ष है, उसका कोई अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है, वहां वो अंदर है। मैं पीछे पीछे गया तो वहां समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का दे करके उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया।
1: तो त्रिशा शर्मा के परिवार के वकील का यही कहना है कि यहां पर पूरी तरह से सिस्टम की लापरवाही है और गिरीबाला का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। वही त्रिशा शर्मा केस में फरार पति अब हिरासत में है, तो अब उनकी सास से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर यह है कि त्रिशा शर्मा की सास गिरीबाला सिंह की जमानत रद्द करने की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने ये मामला सुना जाएगा और त्रिशा की सास गिरीबाला की बेल पर सुनवाई सोमवार को होगी। तो पिछले 10 दिनों से भोपाल में त्रिशा का शव इंसाफ का इंतजार कर रहा है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। आखिर त्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसका कत्ल हुआ, अब इसकी पड़ताल CBI को करनी है।
3: त्रिशा मौत केस में टर्निंग पॉइंट, हिरासत में पति समर्थ। त्रिशा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, एम्स की स्पेशल टीम भोपाल जाएगी। त्रिशा की मौत पर परिवार के सवाल, डबल हैंगिंग मार्क का मतलब क्या है? त्रिशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश -80 डिग्री में रखा जाएगा। पति समर्थ ने अग्रिम याचिका वापस ली, 4 याचिकाओं पर सुनवाई। मॉडल और एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा डेथ केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के विरुद्ध सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। कोर्ट ने त्रिशा के शव को -80 डिग्री पर सुरक्षित रखने को कहा है। इस मामले में आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम याचिका वापस ले ली गई है और समर्थ सरेंडर करने पहुंचा तो उसे हिरासत में ले लिया गया। हाईकोर्ट 4 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इसमें आरोपी सास, पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की जमानत याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 10 दिन पहले भोपाल में हुई त्रिशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गई, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है। त्रिशा का पति और इस केस का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया।
1: और अब बड़ी खबर पुणे से, नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का एक्शन जारी है। सीबीआई ने पुणे से फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपित मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया। अब इसे एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। एक और हैरानी की बात है, महाराष्ट्र से नीट केस की 3 महिला आरोपी गिरफ्तार हुई। आप सोचिए इनमें कॉमन क्या है, तीनों महिला आरोपियों में तीनों का नाम मनीषा ही है। तो मनीषा हवलदार, इससे पहले मनीषा वाघमारे गिरफ्तार हुई थी, एक और मनीषा को गिरफ्तार किया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर मनीषा की नियुक्ति की थी, लेकिन ये मोहतरमा पेपर लीक कराने में चुकी हुई थी। फिजिक्स पेपर की एक्सपर्ट के तौर पर चुना गया था और फिजिक्स पेपर लीक कराने के मामले में गिरफ्तारी मनीषा हवलदार की हो चुकी है। खबर, बड़ी खबर इस वक्त की, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई अब जांच कर रही है और सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियों का दौर भी बढ़ता जा रहा है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ अभी भी की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कितने मास्टरमाइंड हैं नीट पेपर लीक मामले में। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कितनी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, किन किन राज्यों तक ये नेटवर्क फैला हुआ है और क्या इससे पहले भी पेपर लीक हुए हैं। हालांकि 2024 सभी को पता है हो चुके हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, और ये बड़ी खबर आपको अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि देश में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। और पिछले कुछ वक्त की बात करें तो आपको याद होगा पहले 3 रुपए बढ़ाए गए और उसके बाद कुछ 90-91 पैसे बढ़ाए गए और एक बार फिर से पेट्रोल के दाम 87 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। पीटीआई के हवाले से जो खबर आ रही है और डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है और पेट्रोल भी महंगा हो गया है, यानी धीरे धीरे ये पेट्रोल महंगा हुआ है। 10 दिन तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल महंगा डीजल महंगा, तो आने वाले वक्त में महंगाई और बढ़ेगी। और जैसा कि कहा जा रहा था कि अभी भी तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है, तो लगभग ये बताया जा रहा था कि करीबन 17 या 28 रुपए बढ़ेंगे, तो उसके बाद पेट्रोल डीजल की जो पेट्रोल की जो कंपनियां हैं, तेल की कंपनियां हैं, उनको नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आएंगी। तो आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। सरकार की तरफ से तो लगातार यही कहा जा रहा था कि अभी हालात हमारे काबू में हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि तेल महंगा होता जा रहा है तनाव की वजह से मिडिल ईस्ट में, तो ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और एक बार फिर से देखिए, पेट्रोल के दाम 87 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं, तो डीजल 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 10 दिन में तीसरी बार ये बढ़ोतरी हो गई है और धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए। सरकारी नौकरी के सपनों का सौदा, एसएससी परीक्षा में पास कराने के नाम पर लाखों की डील और पर्दे के पीछे चल रहा हाईटेक एग्जाम रैकेट। यूपीएसटीएफ ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया जो ऑनलाइन परीक्षा में सेटिंग कर अभ्यर्थियों को पास कराने का दावा करता था।
0: सरकारी नौकरी का सपना और उसे बेचने वाला एक संगठित गिरोह, एसएससी परीक्षा में पास कराने के नाम पर चल रहे हाईटेक खेल का यूपीएसटीएफ ने बड़ा पर्दाफाश किया है। ये तस्वीरें उस हाईटेक गिरोह की हैं जो एसएससी परीक्षा में सफलता का शॉर्टकट बेच रहा था। 4 लाख रुपए लेकर पास कराने का दावा और ऑनलाइन एग्जाम में सेटिंग का खेल। यूपीएसटीएफ ने ग्रेटर नोएडा से मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप चौहान, अरुण कुमार, संदीप भाटी, निशांत राघव, अमित राणा, शाकिर मलिक और विवेक कुमार शामिल हैं। छापेमारी में 50 लाख रुपए कैश, लैपटॉप, मोबाइल और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया कि ये गिरोह ऑनलाइन परीक्षा सिस्टम को हैक नहीं करता था, बल्कि कंपनी के सर्वर को बाईपास करके प्रॉक्सी सर्वर लगाता था। इसके बाद स्क्रीन शेयरिंग व्यूअर एप्लीकेशन के जरिए परीक्षा का पेपर बाहर बैठे सॉल्वर तक पहुंचाया जाता था। फिर सॉल्वर बाहर से सवाल हल करके अभ्यर्थियों को उत्तर उपलब्ध कराते थे। गिरोह CAPF, SSF कांस्टेबल, GT और असम राइफल्स राइफलमैन परीक्षा 2026 में सेटिंग कराने का झांसा देता था। संदेह है कि नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। अब STF ये पता लगाने में जुटी है कि इस खेल में और कौन कौन शामिल है और कितने अभ्यर्थियों से करोड़ों की वसूली की गई है।
1: गुरुग्राम की बात कर लेते हैं, जहां देर रात बड़ा बिजली संकट खड़ा हो गया। सेक्टर 72 स्थित 220 KVA बिजली घर का मुख्य ट्रांसफार्मर जल गया। अब ट्रांसफार्मर में खराबी आने के बाद क्या हुआ, 7 बिजली घर जो पावर स्टेशन है वो ठप हो गए। अब उनके ठप होने से क्या हुआ, बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली संकट का असर सेक्टर 15, सेक्टर 38, 44, 46, सेक्टर 52, सेक्टर 56 और मारुति 66 KVA बिजली घरों पर भी पड़ा। अब इसके चलते सेक्टर 38 से लेकर सेक्टर 57 तक, सेक्टर 15 पार्ट 1 और पार्ट 2, साथ ही सेक्टर 18 के बड़े हिस्सों में कई घंटों से बिजली गुल है। बिजली आपूर्ति ठप होने का असर रैपिड मेट्रो सेवा पर भी पड़ा। अब जानकारी के मुताबिक पिछले 1 घंटे से रैपिड मेट्रो की सेवाएं बाधित रहीं, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऑफिस से लौट रहे लोगों को क्या हुआ, वो अटक गए बीच में। कई स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई। बिजली विभाग के अधिकारियों के ये कहना है कि ट्रांसफार्मर को ठीक करने में 8 से 10 घंटे का समय लग सकता है। तकनीकी टीम मौके पर मरम्मत कार्य में जुटी है और देर रात तक बिजली सप्लाई बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है, ऐसा अभी तक जो जानकारी आई।
4: मैं इस वक्त गुरुग्राम के सेक्टर 56 मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। दरअसल आज शाम 7:50 के दौरान ये वाकया घटा, जब सेक्टर 72 के 220 KVA के सब स्टेशन में अचानक आग लग गई थी और इसी भीषण आग के चलते सेक्टर 56 से DLF फेज 2 और सिकंदरपुर एक्सचेंज तक का ये रूट बाधित हो गया। इस पूरे रूट पर अंधेरा छा गया था, जो मेट्रो जहां चल रही थी वहीं रुक गई, जिसके चलते यात्रियों में हड़कंप मच गया था। आप देख सकते हैं ये वही रूट है जहां से जब जैसे ही बिजली बाधित हुई वैसे यहां से सफर करने वाले तकरीबन 60 से 70 वो यात्री थे जो DLF फेस 2 की तरफ जा रहे थे, सिकंदरपुर एक्सचेंज की तरफ जा रहे थे। तो वही एक मेट्रो सिकंदरपुर एक्सचेंज से सेक्टर 56 की तरफ चल रही थी जिसमें तकरीबन 180 यात्री सवार थे। और ये घटना इतनी खौफनाक थी कि यात्रियों में अचानक हड़कंप मच गया और वो तमाम यात्री जो मेट्रो में सफर कर रहे थे वो पटरियों पर चलने लगे।
1: कटिहार में छात्रा से छेड़खानी के विरोध के बाद 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मंचलों की तरफ से छात्राओं के साथ लगातार छेड़खानी किए जाने का आरोप है। अब यह बताया जा रहा है कि एक 9वीं की छात्रा ने परिजनों को जानकारी दी तो उनके साथ छेड़खानी हो रही है, जिसके बाद विरोध करने पर छात्रा के परिवार के साथ मारपीट की गई। मतलब परिवार विरोध करने गया कि हमारी छात्रा हमारी बेटी के साथ छेड़खानी हो रही है, तो सामने की तरफ से मारपीट हो गई, ऐसा कहा गया। अब देखते ही देखते मामला बढ़ गया, दोनों पक्षों के लोग आ गए। बीच रेलवे ट्रैक के पास जमकर पत्थरबाजी हो गई, दोनों एक दूसरे की तरफ पत्थर मारने लगे, हालात बिगड़े। पुलिस को बताया गया। भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। कटिहार के डीएम एसपी ने खुद मोर्चा संभाला, घटनास्थल का दौरा किया, लोगों को समझाया, शांत कराया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है ताकि हालात यहां पर बिगड़े नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से लोग नाराज है। खासे तौर पर
5: बच्ची के साथ छेड़खानी को लेकर के कुछ समस्या हुई थी, इसमें कुछ दो पक्षों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अभी हम और एसपी साहब भी यहाँ पर आए हैं और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद है यहाँ पे, और जो भी इशू है उसके पुलिस अग्रतर कार्रवाई कर रही है। अभी स्थिति सामान्य, किसी तरह कोई समस्या नहीं है। जो भी उसमें विधिक कार्रवाई है वो पुलिस आगे कर रही है, जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। स्थिति लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और पूरी शांतिपूर्ण बनी हुई है और पर्याप्त मात्रा में मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। पुलिस को दबिश डाल रही है और जो भी दोषी लोग हैं बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे और उनको चिन्हांकरण करके और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और टीमें लगी हुई है इसके लिए।
6: सहायक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की को छेड़छाड़ को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था, जिसमें कि कुछ लोग इकट्ठा भी हो गए थे। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंचकर और अतिरिक्त बल भी हम लोगों ने पुलिस लाइन से दे दिया है। साथ ही साथ डीएम सर और हमारे द्वारा जो यहाँ का भ्रमण भी किया गया, लोगों से बात की गई है और आश्वासन दिया गया है कि इसमें जो भी दोषी हैं जिनके द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा था और जो अन्य लोग हैं जो विधि व्यवस्था खराब कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। इसके लिए टीम हम लोग अलग से लगा दी है इसके लिए।
1: और अगली जो खबर है वो युवाओं के रोजगार को लेकर पीएम मोदी की पहल से जुड़ी हुई है। देश भर में आज 19वां रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है और इस अवसर पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कार्यक्रम का आयोजन देश के 47 अलग अलग स्थानों पर एक साथ किया जा रहा है, जहां चयनित युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी। अब इन नियुक्तियों में अब रेल होगा, गृह होगा, स्वास्थ्य होगा, वित्त मंत्रालय समेत कई विभाग शामिल हैं। अब तक कुल 18 रोजगार मेलों के जरिए करीब 12 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। रोजगार योजना के जरिए सरकार का मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है और इसके जरिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित करना भी सरकार का बड़ा लक्ष्य है। तो पीएम रोजगार योजना, अब उसका उद्देश्य क्या है कि युवाओं को सरकारी रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं, जो कि आजकल बहुत सीमित हो गए हैं। भर्ती प्रक्रिया जो होती है उसको बहुत तेज किया जाए, उसको पारदर्शी बनाया जाए ताकि उसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो। जो संस्थान है वहां पर कौशल और कार्य क्षमता को बढ़ाना भी एक मिशन है। मिशन मोड में रोजगार सृजन का इजाफा करना ये भी एक कोशिश की जा रही है और सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। और ये बताया गया है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वक्त में जो बताया गया है कि कुल 18 रोजगार मिले हुए हैं, 12 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र अभी तक दिए गए। देखिए भले ही अभी सुबह है, मौसम थोड़ा ठंडा है, लेकिन आसमान से वैसे आमतौर पर आग बरस रही है। तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और इस भीषण गर्मी में लड़ने के लिए अब झारखंड सरकार ने अनोखी पहल की। पहली बार ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को कूलिंग जैकेट दिए गए हैं ताकि तपती सड़कों पर ड्यूटी कर रहे जवान राहत महसूस कर सकें।
7: झुलसाती गर्मी, आग उगलती सड़कें और इनके बीच घंटों खड़े ट्रैफिक जवान। रांची में हीट वेव ने हालात बेहाल कर दिए हैं। अब गर्मी को मात देने के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस ने पहली बार कूलिंग जैकेट उतारी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 कूलिंग जैकेट जवानों को दिए गए हैं।
8: अब इससे क्या फायदा हो रहा, क्या राहत है?
9: बहुत अच्छा राहत है, अंदर में ठंडा लग रहा है।
8: अंदर में ठंडा तो क्या है, कूलर वूलर लगा हुआ अंदर?
9: नहीं, हवा आ रहा है।
8: हवा आ रहा है और वो हवा ठंडा है?
9: ठंडा
8: एकदम, आराम से है, गला तक ही आ रहा है।
9: यहाँ इधर गर्मी है, इधर ठंडा,
8: लेकिन फिर भी राहत।
7: शहर में मोबाइल ई रिक्शा से मुफ्त पानी भी बांटा जा रहा है ताकि लोग डिहाइड्रेशन से बच सके। उधर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है। सदर अस्पताल में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए अलग बेड और विशेष इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग ने 27 मई तक राहत के आसार नहीं जताए हैं। ऐसे में गर्मी से जंग अब सिस्टम और लोगों दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। आज तक ब्यूरो।
1: तो अब पुलिसकर्मी महसूस कर रहे हैं ठंडा ठंडा कूल कूल। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
12: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
15: क्या आपका शनि आपकी कुंडली में शुभ है या शनि आपको जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा है? क्या है शनि के शुभता अशुभता के लक्षण? जानिए।
11: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
12: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
13: Ba-da-ba-ba.

जनता को एक बार फिर लगा महंगाई का झटका। 10 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 87 पैसे तो डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। आज से 4 दिन के भारत दौरे पर आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सुबह कोलकाता और दोपहर में पहुंचेंगे दिल्ली। क्वाड सहित अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। क्रोएशिया शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपित और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया। आज कोर्ट में पेशी। बार काउंसिल ने रद्द किया वकालत का लाइसेंस। सीबीआई करेगी केस की जांच। नीट परीक्षा कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पुणे से फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपी मनीषा हवलदार गिरफ्तार। एंटी ने एक्सपर्ट के तौर पर किया था नियुक्त। बॉर्डर सुरक्षा पर अमित शाह का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर लागू होगा स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम। का देश से निकाले जाएंगे घुसपैठिए।

और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत पहुंच चुके हैं, कोलकाता पहुंच चुके हैं और कोलकाता के बाद वो दिल्ली जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से भारतीय दौरे पर हैं और कोलकाता पहुंच चुके हैं मार्को रूबियो। कोलकाता के बाद जो खबर आ रही है कि मार्को रूबियो जयपुर और उसके बाद दिल्ली आएंगे। 4 दिन की उनकी भारत यात्रा है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। कोलकाता इस वक्त पहुंच चुके हैं, ये वो तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले जब मार्को रूबियो, ये वो तस्वीरें हैं जब विदेश से अमेरिका से निकलने के वक्त की है भारत के लिए और उसके बाद भारत अभी पहुंच चुके हैं कोलकाता में। और अब आपको दिखाते हैं भाग्य चक्र।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि किन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली का शनि शुभ है या अशुभ है, और अगर शनि के लक्षण ये बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में शनि अशुभ है तो उसको बेहतर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और ये जानेंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि बिना कुंडली देखे, बिना हाथ की रेखाओं को देखे, आप आदमी के लक्षणों से जान सकते हैं कि उसका शनि कैसा है, शुभ है या अशुभ है। तो ऐसे कैसे जान सकते हैं, कैसे लक्षण समझ सकते हैं? देखिए, हर ग्रह की अपनी विशेषता होती है, अच्छी भी और बुरी भी, और ग्रह के अच्छे और बुरे लक्षण होते हैं जो व्यक्ति के ऊपर दिखाई देते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के लक्षणों को समझें तो आप उस व्यक्ति के ग्रहों को जान सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति के स्वभाव और आदतों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस ग्रह का प्रभाव अच्छा या बुरा व्यक्ति के ऊपर होगा उसी ग्रह के स्वभाव और आदत उसकी होगी। शनि के जो लक्षण होते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, ये बहुत साफ होते हैं, और शनि के लक्षणों को पहचानना बहुत सरल होता है। आदमी खाता कैसे है, बोलता कैसे है, उसका पहनावा कैसा है, उसके चलने का तरीका कैसा है, ये सब अगर माइन्यूटली देखा जाए तो आप बड़ी आसानी से जान जाएंगे कि किस व्यक्ति के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा है। शनि अगर जीवन में अशुभ हो तो उसके लक्षण क्या हैं, ये आपको बताएंगे आगे। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, मानसिक तनाव कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा
क्रीम। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में तनाव बढ़ सकता है, परिवार में अशांति से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब कौन से लक्षण ये बताते हैं कि हमारे जीवन में हमारा शनि अशुभ है, ये बात हम कैसे जान सकते हैं? अगर शनि अशुभ होगा तो व्यक्ति की वाणी और स्वभाव कठोर होगा, व्यक्ति प्रेम से नम्रता से बात नहीं करेगा, कठोरता से रूखे स्वभाव से बात करेगा। शनि अगर अशुभ है तो व्यक्ति के बाल रूखे होते हैं, सधे हुए संवरे हुए नहीं होते। और जिनका शनि अशुभ होता है ऐसे लोग लापरवाह और कामचोर स्वभाव के होते हैं, ज्यादातर अपना काम टालते रहते हैं। जिनका शनि अशुभ होता है उनके जीवन में आप देखेंगे कि आम तौर पर कोई बड़ी घटना घटती है उम्र के 35-36 साल के बाद, और उसके बाद जीवन में बड़ा बदलाव आ जाता है। शनि अगर अशुभ होता है तो व्यक्ति जीवन में निम्न काम में रहता है और गलत काम करता है और छुपाता है। शनि के अशुभ होने का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि जिनका शनि अशुभ होता है ऐसे लोगों को कदम कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। छोटी से छोटी चीज पाने के लिए, छोटे से छोटा काम करने के लिए जीवन में संघर्ष बना रहता है। और एक स्थिति में जीवन में अकेलापन महसूस होता है। यानी अगर शनि आपका नकारात्मक है, अशुभ है, तो आपको सब कुछ होने के बावजूद, सबके रहने के बावजूद आपको निगेटिविटी और अकेलापन महसूस होगा। आगे शनि के शुभ लक्षणों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के

सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न हेमंत बैनर्जी ने हमें लिखा है और हेमंत जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 फरवरी 1961, शाम के 4:10 और जन्म का स्थान है बरेली। में लिखते हैं कोलकाता से। हेमंत जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मुझे तनाव बहुत होता है, चिंता बहुत रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा

हेमंत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य में ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप मेंटली ज्यादा परेशान हैं ऐसा कुंडली में दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का मामला ठीक है और अभी आपका जीवन आराम से चलेगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में या काले धागे में शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। प्रयास जारी रखें, सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा पढ़ें तो बहुत बेहतर होगा। तो शनि अशुभ है तो किन लक्षणों से जानेंगे ये आपने जाना। अगर शनि आपके जीवन में शुभ है तो कौन से लक्षण दिखेंगे, कौन से प्रभाव दिखेंगे वो भी जानते हैं। शनि जब कुंडली में शुभ होता है, शनि का प्रभाव होता है तो व्यक्ति लंबा और दुबला पतला होता है। ऐसे लोगों के बाल आम तौर पर घने होते हैं। ऐसे लोगों के बाल घने रहते हैं जिनकी कुंडली में शनि की शुभता होती है। जिनका शनि शुभ होगा ऐसे लोग बड़े डिसिप्लिन्ड होंगे, टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, टाइम से काम करेंगे और कर्मठ होते हैं, अपना काम करने में ईमानदार रहते हैं। देखिए, शनि शुभ होता है तब भी जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है, परिश्रम बहुत करना पड़ता है, लेकिन इस परिश्रम का फल मीठा होता है। शनि शुभ हो तो परिश्रम के फल मिलते हैं और ऐसे लोग परिश्रम से आगे बढ़ते हैं। और जिनका शनि शुभ होता है आम तौर पर जीवन के मध्य भाग में लगभग 35 साल के बाद आध्यात्मिक हो जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर आ जाती है। शनि अगर शुभ होगा तो ऐसे लोग कानून से, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट से या आध्यात्म से संबंध रखते हैं। शनि अगर आपका लीड कर रहा है और आपके लिए शुभ है तो जीवन में चीजों को पाने में विलंब तो हो सकता है लेकिन चीजें मिलेंगी जरूर। विलंब से ही सही, लेकिन जीवन में बहुत सारा धन आपको प्राप्त होगा। यानी आपकी कुंडली में शनि अगर शुभ होगा तो आप अनुशासित होंगे, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, काम करने में थोड़ी देरी होगी लेकिन देरी होने के बावजूद आप तमाम सफलताएं अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। तो ये तो कुंडली का शनि हो गया जो बता रहा है कि आपके लक्षण शुभ हैं या नहीं है। ब्रह्मांड में जो शनि भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, जैसे आज के समय में शनि देव मीन राशि में हैं, तो जो वर्तमान में शनि हैं वो शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वर्तमान में शनि की मुश्किल आ रही है, कैसे जानेंगे? घर आपका एकदम बढ़िया है, घर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में सीलन अगर आने लगे, बिना वजह के अगर घर में सीलन आ रही हो तो समझिए कि इस समय शनि आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा है। बिना वजह के आपको चोट लगने लगे, खास तौर से पैरों में बार बार अगर चोट लगे तो समझिए शनि आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा है। बिना वजह के आपके हड्डियों में दर्द होने लगे, पेन होने लगे, खास तौर से

कमर में और पीठ में ज्यादा दर्द होने लगे तो समझिए कि शनि आपको शुभ फल नहीं दे रहा है। और सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है और पीठ में ज्यादा दर्द होने लगे तो समझिए कि शनि आपको शुभ फल नहीं दे रहा है। और सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, आपके बाल जरूरत से ज्यादा अगर झड़ने लगें तो आप समझ लीजिए कि शनि आपको अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा है। शनि आपको शुभ फल नहीं दे रहा है तो जीवन में हर कार्य में मुश्किल आएगी, आपको शारीरिक समस्या परेशान करेगी, शरीर दर्द होगा और मेहनत करने के बावजूद उसका फल आपको नहीं मिलेगा अगर शनि ब्रह्मांड में आपको अशुभ परिणाम दे रहा है तो। देखिए, जीवन में शनि अगर कमजोर है तो क्या होगा, संघर्ष ज्यादा करेंगे, परिणाम नहीं मिलेंगे। शनि अगर अशुभ है तो संघर्ष भी करना पड़ेगा और परिणाम कतई नहीं मिलेंगे। कमजोर वाले में तो उपाय करने से मिल भी सकते हैं, शनि अशुभ होगा तो परिणाम नहीं मिलेंगे। शनि अगर अशुभ है तो संघर्ष भी करना पड़ेगा और परिणाम कतई नहीं मिलेंगे। कमजोर वाले में तो उपाय करने से मिल भी सकते हैं, शनि अशुभ होगा तो परिणाम कतई नहीं मिलेंगे। और शनि अगर शुभ होगा तो तुलनात्मक रूप से संघर्ष कम होगा, सफलता जल्दी मिलेगी। अब लक्षणों से आपने समझ लिया कि शनि आपका शुभ नहीं है, अशुभ है। क्या उपाय करेंगे इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कार्यक्रम में आगे बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, परिवार में विवादों से बचाव करें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। वृश्चिक राशि, सेहत अच्छी रहेगी, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब लक्षणों से अगर आपने जान लिया कि आपका शनि अशुभ है, आपको अशुभ फल दे रहा है, तो क्या उपाय करेंगे, अपना आचरण और अपना आहार व्यवहार शुद्ध रखिए। आप मांस मदिरा का सेवन करें
या आप अपशब्द बोलें, बेवजह लोगों को अपमानित करें, तो इससे आपका शनि सुधरेगा नहीं और खराब होगा। तो अपना आचरण और आहार व्यवहार शुद्ध रखिए, सफाई से रहिए, स्वच्छता से रहिए और धर्म का ठीक तरीके से पालन करिए। शनि कितना भी अशुभ क्यों ना हो, अगर आप भगवान शिव के या भगवान कृष्ण के भक्त हैं और नियमित रूप से उनकी उपासना करते हैं तो शनि देव की पीड़ा आपको नहीं मिलेगी। देर तक सोने से दिन में और देर रात तक जगने से शनि खराब होता है, इससे बचना चाहिए। हल्के नीले रंग के कपड़े जीवन में ज्यादा प्रयोग करिए, आपको लाभ होगा। रोज शाम को सूर्यास्त के बाद शनि मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक तनाव में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग

कुंभ राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, करियर में कुछ बदलाव होगा, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

राशि परिवार में खुशहाली आएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं उस शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, शनि की जो धातु है वो लोहे को माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि अगर आप शनिवार को लोहा खरीदें तो इससे शनि भारी होगा, जीवन में दुर्घटना होगी, संघर्ष बढ़ेगा। देखिए, जिनकी कुंडलियों में शनि की स्थिति अच्छी है, शनि अनुकूल है, वो शनिवार को लोहा खरीद सकते हैं, उनके लिए ज्यादा मुश्किलें नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि गड़बड़ है, शनि खराब है, तब शनिवार को लोहा खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है। जिनकी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है उन्हें शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, बाकी लोग शनिवार को लोहा खरीद सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 5, नए कार्यों की शुरुआत होगी। नंबर 6, रिश्तों की समस्या हल होगी। नंबर 7, सर्दी जुखाम से बचाव करें। नंबर 8, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 9, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव हो शनि मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। अगर आज कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में किसी बड़े काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर आज जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा।
कार्यक्रम में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बड़ा शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। और आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि वालों को। बेवजह की चिंता और तनाव हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

चार दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। कोलकाता पहुंचे विदेश मंत्री, दिल्ली, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। दोपहर 2 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे मार्को रूबियो। भारत अमेरिका के ऊर्जा सुरक्षा और क्वाड में भारत अमेरिका व्यापार पर अहम चर्चा। भारत के साथ अमेरिकी ऊर्जा सहयोग बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी। दोनों देशों के बीच अहम बैठक। व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर भारत अमेरिका में मंथन। वैश्विक तनाव के बीच ऊर्जा और अहम संस्थानों पर व्यापक चर्चा। और हॉर्मुज तनाव के बीच भारत अमेरिका ऊर्जा साझेदारी पर बड़ा फोकस। 26 मई को दिल्ली में होने वाली क्वाड बैठक में भी शामिल होंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। आज से 3 दिनों के चीन दौरे पर पाक पीएम शहबाज शरीफ। चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक संबंध की वर्षगांठ। बीजिंग के मित्रता समारोह में शिरकत करेंगे पाक पीएम। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और पीएम ली कियांग के साथ बैठक। हांगझोंग P2B निवेश सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे शहबाज शरीफ। पाकिस्तान चीन के रिश्तों पर जोर। अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थता का मुख्य देश बना पाकिस्तान। पाक सेना प्रमुख पहुंचे तेहरान। शांति बहाली पर बातचीत जारी। शांति प्रस्ताव पर बातचीत में खाड़ी देश भी शामिल। कतर, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की भी रख रहे हैं अपना रुख। पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर मचा सियासी घमासान। भड़के सीएम योगी, बोले ऐसी टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार दिखाती है। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने खोला मोर्चा। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा यह समाज और लोकतंत्र के लिए घातक, अपराधी ना जाए। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के बाद यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा एआई जनरेटेड वीडियो है। महोबा दौरे के दौरान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दुष्कर्म पीड़िता से मिलने के दौरान पीएम के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम शुभेंदु का पहला दिल्ली दौरा। राष्ट्रपति मुर्मू पीएम मोदी से मुलाकात के अलावा अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और रक्षा मंत्री से भी मुलाकात। भोपाल में त्रिशा शर्मा मौत केस, मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चला चाबुक, वकालत का लाइसेंस रद्द। त्रिशा शर्मा मौत मामले में नया ट्विस्ट। जबलपुर कोर्ट में मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, सरेंडर करने पहुंचा था। ऋषि शर्मा की चक्कर दूसरी बार होगा पोस्टमार्टम। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दी इजाजत, अब सीबीआई करेगी जांच। आज तक से बोले ऋषि शर्मा के पिता, रिटायर्ड जज के बेटे समर्थ को बचाया जा रहा है, हमारे वकील को मारा गया, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऋषि शर्मा केस में सास गिरीवाला की जमानत रद्द करने की याचिका पर 25 मई को होगी सुनवाई। आईपैक रेड केस में ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई टली, अब 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पीएम मोदी की झालमुड़ी खिलाने वाले विक्रम को मिली सीआरपीएफ सुरक्षा, लगातार मिल रही थी जान से मारने की धमकी। 2027 यूपी चुनाव से पहले अखिलेश के संदेश के सियासी संकेत, बोले सभी 403 सीटों पर हम मुस्तैद, साथ आने वाले को फायदा। अखिलेश यादव की सीट नहीं जीत की बात वाले बयान पर कांग्रेस ने कहा इंडिया गठबंधन में सब साथ। देवरिया को सीएम योगी ने दी 655 करोड़ की सौगात, 19 विकास परियोजनाओं को शिलान्यास। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा बोले गाय, बछड़ा, ऊंट, अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैर कानूनी, उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली में 28 मई को बकरीद के मौके पर बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर, केंद्र सरकार ने छुट्टी की तारीख में किया बदलाव। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली दंगा केस में साजिश के आरोपी उमर खालिद को हाईकोर्ट से राहत, मां की सर्जरी के लिए 3 दिन की अंतरिम जमानत की मंजूरी। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के अलंकरण समारोह में जवानों को सम्मानित किया, कहा भारत ने आतंकवाद और पाकिस्तान को हमेशा दिया मुंह तोड़ जवाब। नीट परीक्षा केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन, फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपित मनीषा हवलदार कूड़े से गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक टीसीएस केस में चार्जशीट दाखिल, निदाकान समेत 4 आरोपियों के नाम। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के बाद हिंसा, मामले में अब तक 19 गिरफ्तार, पुलिस जांच तेज। मुंबई में पुलिस बार बांद्रा तालाब का डी वॉटरिंग हुआ शुरू, बीएमसी ने स्वामी विवेकानंद झील के पुनर्जीवन का काम तेज किया। रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2026 के लिए रिकॉर्ड 2,87,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने की घोषणा की। रांची में भीषण गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस को दिए कूलिंग जैकेट, फैन वाली जैकेट 8 घंटे तक करेगी एसी जैसी ठंडक। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के राहुल गांधी पर तीखा पलटवार, ट्वीट कर कांग्रेस के इतिहास पर सवाल उठाते हुए हास्यास्पद बताया बयान को।
भीषण गर्मी के बीच मोगा में पानी का संकट गहरा है। 30 साल पुरानी बस्तियों में टैंकर से पानी की सप्लाई। कर्नाटक के दयानंद सागर विश्वविद्यालय ने एनवीडिया के साथ साझेदारी में भारत की पहली एआई फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की। 175 करोड़ रुपए के निवेश से परिसर में शिक्षा, एआई इकोसिस्टम और रियल टाइम एआई क्षमताओं को विकसित करना है मकसद। दिल्ली में भी गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच हुआ तापमान। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आने वाले एक हफ्ते तक जारी रहेगी गर्मी का असर। राजस्थान में भी प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग का अलर्ट, हीटवेव से सावधानी बरतने की सलाह। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में भी गर्मी ने बढ़ाई बेजुबानों की परेशानी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास 45 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी हीट वेव की चेतावनी। मौसम विभाग की दोपहर में घरों से बाहर ना निकलने की अपील। उत्तर भारत में गर्मी से राहत पाने के लिए जम्मू कश्मीर की ओर रुख कर रहे सैलानी। बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंचे पर्यटक। जम्मू कश्मीर में भी डोडा समेत कई इलाकों में तेज बारिश। तापमान में गिरावट से लोगों को राहत। पहाड़ों पर अचानक मौसम में बदलाव। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश। शिमला में बारिश के बाद खिले सैलानियों के चेहरे। बीते कई दिनों से गर्मी ने बढ़ाई थी लोगों की परेशानी। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में हुई ताजा बर्फबारी। तापमान में आई भारी गिरावट। सैलानी जमकर उठा रहे लुत्फ। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोटोलाइट्स ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं साइप्रस के राष्ट्रपति। पुणे की क्लिमोरा इंटरनेशनल ने 24 घंटे में 50 से ज्यादा एआई प्लेटफॉर्म बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हेल्थ डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी में प्रयोग होंगे प्लेटफॉर्म। तेलंगाना के मंत्री के वेंकट रेड्डी का 14 टॉपर बच्चों को सरप्राइज गिफ्ट। हवाई जहाज से हैदराबाद से विशाखापट्टनम घूमने जाएंगे बच्चे। शांति के लिए जैन आचार्य लोकेश को मिला चैंपियन ऑफ पीस एंड जस्टिस सम्मान। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी ने सम्मानित किया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शुरू हुआ मशहूर विविट फेस्टिवल। शानदार रोशनी से नहाया ओपेरा हाउस। दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित फर्नीचर मार्केट में लगी आग। आग की चपेट में कई दुकानें आई जल गई। आग ने विकराल रूप धारण किया। आसमान में आग की लपटें दिखी। दुकानदारों को बहुत नुकसान। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बहुत मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गुरुग्राम के सेक्टर 72 के सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर जलने के बाद 7 बिजली घर ठप। ट्रांसफार्मर जलने से रैपिड मेट्रो सेवा बाधित। कई इलाकों में अंधेरा छा गया। मेट्रो ट्रैक के किनारे लोग नजर आए। अहमदाबाद में शॉर्ट सर्किट के कारण मोम बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग। 15 गाड़ियों ने काबू पाया। अहमदाबाद में एक इमारत में लगी दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की। भयंकर आग लगी। लोग को बाहर निकाला गया। सूरत में एक बिल्डिंग के 9वें फ्लैट पर बंद फ्लैट में आग लगी। 11वीं-12वीं मंजिल तक फैला धुआं। 10 लोगों को रेस्क्यू किया। मुंबई में 40 करोड़ के फर्जी जीएसटी बिल मामले में अमित उपाध्याय गिरफ्तार। आर्थर रोड जेल के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन कर तेज कार्रवाई की उठाई मांग। वाराणसी में गंगा स्नान के दौरान शराब पीने का वीडियो वायरल। बिहार से आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस रवाना। ओडिशा के गंजाम में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस ने ऑटो में मारी टक्कर। 6 लोगों की मौत, 4 घायल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक शख्स ने अपने बुजुर्ग मां की पीट पीट कर हत्या की। बाद में खुद भी कुएं में कूदकर खुदकुशी की। यूपी के कन्नौज में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर की टक्कर से पलटा ट्रैक्टर। बाइक सवार समेत 3 की मौत। बेगूसराय में पुलिस लिखी कार में धक्का लगने के बाद कार सवार महिला की दबंग गई। पिकअप चालक का कॉलर पकड़कर सरेआम पीटा। बेगूसराय में दबंगों का तांडव। जमीन विवाद के कारण घर में घुसकर परिवार को बेरहमी से पीटा। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में चलती ट्रेन से मां ने अपने ही 1.5 महीने के मासूम को फेंका। लोगों ने बचाई दूसरे बच्चे की जान। दुर्ग में घर से पूरे परिवार के 4 लोगों के शव बरामद। मौके से आर्थिक तंगी और घरेलू विवाद से जुड़ा सुसाइड नोट मिला। ओडिशा में काल बैसाखी तूफान का तांडव। टेंट गिरने से 3 लोगों की मौत। इटावा में आगरा कानपुर हाईवे पर बसों की भिड़ंत में 2 यात्रियों की मौत। 2 घायल। चालक पर शराब के नशे का आरोप। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी डाई में स्विमिंग पूल में डूबने से छात्र की मौत। परिवार ने राशि मांगी।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
3: You're listening to CNBC.
4: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
5: Keep it on smooth jazz.
6: This is Roots Reggae.
7: Exclusively on TuneIn.
8: This is Classic Hip Hop.
9: Exclusively on TuneIn.
2: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
10: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
11: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
12: एक हिंट तो देते
13: विक्रम
12: हिंट
11: बड़े आराम से
14: आगे आगे
12: उधर
14: करेक्ट करेक्ट
15: मिल गया आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा
16: लायन ओज फैमिली सुपर एक्शन फैमिली लायन
17: इसमें है फाइबर बीटा ग्लूकोन प्रोटीन मैग्नीशियम तत्व इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली
18: और वही कहाँ गए थे घूमने
19: जीके मैक्स
20: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
19: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
20: जेके वॉल मैक्स
19: बेस्ट पेंट
20: जेके मैक्स
19: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग
21: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है
22: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे
23: डायरेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस
20: बस दो हजार
24: अगर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा
25: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो
26: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं
27: इसमें माइक्रो फाइबर है
26: माइक्रो फाइबर यानी
27: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत
26: हमारे सीमेंट में नहीं है
27: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है
28: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

तकरीबन पूरा हिंदुस्तान प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है। कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। सबसे ज्यादा बदतर हालात उत्तर प्रदेश में है। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में अपना नाम दर्ज करा चुके बांदा में गर्मी से बेहाल लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। आग की भट्टी की तरह तप रहे बांदा में गर्मी की वजह से रोजाना बीमार होने वालों का आंकड़ा 1000 के ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यूपी के बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, आगरा, झांसी समेत 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गर्मी से निपटने के इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली भी 46 डिग्री का टॉर्चर झेल रही है। भीषण गर्मी के बीच पीक पावर डिमांड 8231 मेगावाट के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। SLDC के मुताबिक इस सीजन में बिजली की खपत 9000 मेगावाट पार जाने का अनुमान है। दिल्ली में पावर डिमांड पिछले साल के मुकाबले इस बार 76% ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा अभी और चढ़ेगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ इलाकों में आज पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की उम्मीद है, लेकिन इससे गर्मी में झुलस रहे उत्तर भारत को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

ईरान पर हमले की डेडलाइन करीब आ रही है। ईरान अमेरिका महायुद्ध को लेकर जितनी तेजी से घड़ी की सुई घूम रही है, उतनी ही पाकिस्तान की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। गृह मंत्री मोहसिन नकवी पिछले दो दिनों से ईरान को मनाने में जुटे हैं और अब पाक आर्मी प्रमुख आसिम मुनीर बातचीत की कमान संभालने जा रहे हैं। समस्या ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। ईरान ने अपने प्रस्ताव में युद्ध पूरी तरह खत्म करने की मांग की है और फ्रीज किए गए पैसे वापस मांगे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने की शर्त भी रखी है, लेकिन बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अटकी हुई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई ने साफ संदेश दिया है कि संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं भेजा जाएगा, उसकी परमाणु क्षमता पर कोई समझौता नहीं होगा। इजरायली मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान इस बातचीत की आड़ में अपना फायदा देख रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अगर वो ईरान को अच्छी डील दिलाने में मदद करेगा तो पाबंदियां हटने के बाद ईरान कर्ज निपटाने में उसकी मदद करेगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी फिर से आगे बढ़ सकता है, जो पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। यानी पाकिस्तान के लिए ये एक थ्री वे डील है जिसमें शांति, पैसा और पाइपलाइन तीनों शामिल हैं। लेकिन ये सपना पाकिस्तान के लिए लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: Step into the heart of the American zeitgeist with me, Billy Bush. My new show, Hot Mics, is now streaming on TuneIn. It's the radio talk show that's going to redefine what it means to be in the know. From sports and politics to entertainment, tech, pop culture, and everything in between. You'll hear from A-list stars, athletes, politicians, and more. No filter, no fluff, just the real talk. Because when the mic is hot, the conversations are even hotter. Live Mondays and Wednesdays at 5 p.m. Eastern, 2 Pacific. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
4: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
5: विक्रम एक हिंट तो देते
6: विक्रम
5: हिंट
4: बड़े आराम से
7: और वही कहाँ गए थे घूमने
8: जीके मैक्स
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
10: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट
12: जेके मैक्स
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग
14: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है
15: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे
16: यार
17: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं
18: इसमें माइक्रोफाइबर है
17: माइक्रोफाइबर यानी
18: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत
17: हमारे सीमेंट में नहीं है
18: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है
19: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है

0: साल था 2017 जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और नारा दिया यूपी को ये साथ पसंद है। हालांकि ये साथ महज 54 सीटों के साथ नतीजों में नजर नहीं आया। वैसे 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर साथ आई, जहां 43 सीट जीतकर परिणाम भी पक्ष में आए। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में फिर से विधानसभा चुनाव है और अखिलेश के एक संदेश के कई सियासी संकेत निकाले जाने लगे हैं। पहले आपको बताते हैं कि पार्टी की बैठक में अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा है। पार्टी यूपी की सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे एसपी के मजबूत संगठन का फायदा मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश अगला यूपी चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या गठबंधन को लेकर अखिलेश कांग्रेस के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। दरअसल ये बयान उस घटनाक्रम के बाद आया है जहां कुछ दिन पहले रायबरेली में राहुल गांधी दलित शहीद वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उससे ठीक पहले कांग्रेस के दो नेता मायावती से मिलने जाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। अब समाजवादी पार्टी ने ये पूछना भी शुरू कर दिया है कि किससे पूछकर कांग्रेसी नेता बहन जी से मिलने गए थे।
1: जो कांग्रेस के लोग गए, अभी किससे पूछ करके गए, किसके निर्देश पर गए, हम लोगों को तो जानकारी हुई है कि शायद डांट भी पड़ी है इनको। तो ये सोचने की बात है कि सांसद और अध्यक्ष अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं। तो साफ तौर पर, और मिलने भी किससे गए, मायावती जी से आप ऐसे उठे और चले गए बिना अपॉइंटमेंट के, तो अपॉइंटमेंट भी लेना चाहिए था। और वो बहुत बड़ी नेता है और इनको कैसे पता चला कि उनकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल छोड़ती हैं, तो वो कांग्रेस के लोग समझेंगे और उस पर सफाई देंगे। लेकिन हमारा बहुत ही क्लियर है कि हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बने और पीडीए की सरकार बने।
2: हमारी मीटिंग चल रही थी पार्टी कार्यालय में, जिसमें तनुज पुनिया सांसद जी, जो हमारे एससी डिपार्टमेंट के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आए हुए थे, हमारे एससी डिपार्टमेंट के भी पदाधिकारी आए हुए थे। और वीरा पासी जी की प्रतिमा का अनावरण राहुल जी ने कल किया है, तो उसको करने का जो प्रोग्राम होना था उसकी तैयारी मीटिंग थी। मीटिंग करने के बाद हम लोग निकले, चलो कहीं लंच कर लेते हैं, तो हम निकले और कोने पर सामने बहन जी का बंगला है। तो मेरे साथ चलने वालों को भी किसी को एहसास नहीं। मुझे अचानक मेरे मन में याद आया कि जब भी पूरे देश से लोग आते हैं, मिशनरी अम्बेडकरवादी लोग आते हैं या बसपा से जो जुड़े पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं, मेरे घर भी जरूर आते हैं मिलने, तो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एसटी डिपार्टमेंट के, तो तुम्हारे अंदर क्या इतना घमंड है, तुम बहन जी के बंगले से सामने से निकलते हो, वहाँ हालचाल भी नहीं पूछ सकते। मेरे मन में आया, तो मैंने सोचा कि चलो आज बहन जी के हालचाल पूछते हैं अगर होंगी तो।
0: सियासी गलियारों में सुगबुगाहट ये है कि कहीं कांग्रेस की नजर दलित वोटों पर तो नहीं है जो अखिलेश को असहज बना रही है। सवाल कि क्या कांग्रेस अखिलेश के पीडीए में सेंधमारी करने की कोशिश पे तो नहीं है। सवाल ये भी कि कहीं कांग्रेस मायावती के साथ तो नजदीकियां नहीं बढ़ा रही।
3: निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
0: हालांकि दोनों दल के नेता गोलमोल जवाब देकर लीपापोती की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से एक साल से भी कम वक्त में अखिलेश का कांग्रेस को बार बार आईना दिखाना कहीं न कहीं उसे सख्त संकेत जरूर दे रहा है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।

0: देश के लोगों को एक बार फिर लगा महंगाई का झटका। 10 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 87 पैसे तो डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि। सीएनजी भी महंगी। आज से 4 दिन के भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री 26 मई तक कोलकाता, आगरा, जयपुर और दिल्ली का करेंगे दौरा। क्वाड साझेदारी, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा पर व्यापार चर्चा। प्रिशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपित और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया। आज कोर्ट में पेशी। बार काउंसिल ने रद्द किया वकालत का लाइसेंस। सीबीआई करेगी केस की जांच। नीट परीक्षा कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पुणे से फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपी मनीषा हवलदार गिरफ्तार। एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर किया था नियुक्त। बॉर्डर सुरक्षा पर अमित शाह का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर लागू होगा स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा सिस्टम। का देश से निकाले जाएंगे घुसपैठिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सुबह के 8 बज चुके हैं और बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते हैं 8 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में हैं। बुलेटिन में बात करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की। भारत दौरे पर है जो कोलकाता पहुंच गए हैं और अपने दौरे में मार्को रूबियो कई शहर जाएंगे, कई अहम मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ करेंगे बात प्रिशा मर्डर केस की, जिसका आरोपी स्वयं समर्थ सिंह आज अदालत में पेश पुलिस की तरफ से किया जाएगा। हम आपको बताएंगे नीट पेपर लीक में हुई एक और गिरफ्तारी का एनटीए से कैसे कनेक्शन निकला है, और ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कैसे अभद्र टिप्पणी देते हैं, जिसके बाद अब हंगामा देखा जा रहा है। साथ ही बात भीषण गर्मी के बीच शहर शहर पावर कट की करेंगे। लोग परेशान हैं और बहुत मुसीबत झेलनी पड़ रही है, क्योंकि गुरुग्राम भी अंधेरे में डूबा और उमस गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिशा मौत मामले की। मध्य प्रदेश पुलिस त्रिशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को लेकर देर रात जबलपुर से भोपाल पहुंची, जहां समर्थ सिंह को कटारा हिल्स पुलिस थाने में लाया गया है और आज पेशी की जाएगी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समर्थ सिंह को लेकर भोपाल पहुंची है पुलिस। समर्थ को कटारा हिल्स थाने लाया गया है और आज कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, समर्थ सिंह जो कि कई दिनों से फरार था, तलाश की जा रही थी और अब आज कोर्ट पेश किया जाएगा।
1: आज तक इस समय पहुंच गया है उस जगह पर जहां समर्थ सिंह को रात के अंधेरे में लाया गया है। हम इस वक्त भोपाल के कटारा हिल्स थाने में हैं, उसी थाने में जहां समर्थ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है त्रिशा की मौत के मामले में। और जबलपुर में समर्थ को भोपाल पुलिस ने कल देर रात वहां से डिटेन किया, जबलपुर पुलिस से कस्टडी ली और फिर समर्थ को लेकर के रात के अंधेरे में इसी कटारा हिल्स थाने लाया गया है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं रात में उस समय की जब उसे थाने में लाया गया था। और ये तस्वीरें फिलहाल अगर आप देखें कटारा हिल्स थाने की, जहां पे बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को गेट पर ही तैनात कर दिया गया है। अंदर जाने की अनुमति शायद नहीं है आज। सामने अगर जो आपको दिखाएं अंदर लॉकअप है जहां पे फिलहाल समर्थ को रखा गया है, वो कटारा हिल्स थाना है। ये कुछ समय पहले ही ये नया थाना भोपाल में खुला था और उसके बाद ये जो मामला दर्ज हुआ है उस देर रात आरोपी समर्थ सिंह को यहीं लाया गया है। त्रिशा की मौत के मामले में देश भर में लगातार बहस छिड़ी हुई है, गुस्सा है लोगों में। और समर्थ कई दिनों तक फरार रहा था, जिसके बाद कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे थे पुलिस पे, लेकिन फिलहाल देर रात पुलिस उसे लेकर के अब कटारा हिल्स थाने पहुंच गई। और आज तक इकलौता वो चैनल है जो उस जगह पर मौजूद है जहां पे कटारा हिल्स थाने में समर्थ को लाया गया है। हम कोशिश करेंगे कि हम और आपको नजदीक से वो तस्वीर दिखाएं, अंदर जाकर के दिखाने की कोशिश करें। सर, अंदर जाने में क्या दिक्कत है?
2: अनुमति नहीं है भैया।
1: नहीं, वहां तक तो जा सकते हैं ना, गेट तो है वहां तक।
2: अभी वरिष्ठ अधिकारी नहीं है हमारे, और हमें मना किया है कि अभी अनुमति नहीं है अंदर जाने की। हमारे वरिष्ठ
1: अधिकारी यहाँ से भी अंदर नहीं आ सकते,
3: परमिशन नहीं है
4: ऑफिशियल्स के लिए,
1: सिर्फ अधिकारी जाएंगे।
4: अधिकारी
1: तो आप देख सकते हैं, ये सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है इस थाने की। फिलहाल ये बैरिकेड जो है यहाँ आमतौर पर नहीं होते थे, ये रातों रात लगाए गए हैं ताकि कोई अंदर ना जा पाए, भीड़ ना बहुत इकट्ठी हो, क्योंकि समर्थ जो है वो एक हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी है, खुद भी क्रिमिनल लॉयर है, माँ रिटायर्ड जज है, और ऐसे में जिस थाने के लॉकअप में फिलहाल रात को रखा गया है समर्थ को, वहां पे पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी है और बैरिकेड लगा के पुलिस के कई जवानों को गेट पर ही तैनात कर दिया गया है ताकि लोग इससे आगे ना जा पाए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो तुषा की मौत मामले में फिलहाल पुलिस आज दोपहर को किसी भी समय समर्थ को यहां से कोर्ट लेके जा सकती है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो हमें पुलिस के सूत्रों से मिल रही है, समर्थ की पुलिस रिमांड मांगेगी और इस दौरान उससे जानकारी इकट्ठा की जाएगी कि त्विशा और उसके बीच में आखिर ऐसे कैसे संबंध थे कि शादी के 5 महीनों के भीतर ही, जैसे कि पुलिस अब तक दावा करती आई है कि त्विशा ने आत्महत्या कर ली, और साथ ही में पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी कि अगर समर्थ अपने आप को निर्दोष मानता है तो फिर वो फरार क्यों हुआ, और फरारी के दौरान उसने समय कहां काटा, किसने उसकी मदद की, ये तमाम जानकारियां पुलिस रिमांड में लेने के बाद समर्थ से ले सकती है। लेकिन इन सबके बीच में हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस जगह की दिखा रहे हैं जहां देर रात समर्थ को लाया गया है और फिलहाल उसे इसी थाने में रखा गया है। कैमरामैन अमरीश के साथ दवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा हमारे सहयोगी रवीश पाल भी बता रहे थे, आज भोपाल की अदालत में त्विशा के पति समर्थ सिंह की पेशी होगी। कल पुलिस ने समर्थ सिंह को जबलपुर से हिरासत में लिया था और अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे, उसी जगह पर समर्थ को रखा गया है। समर्थ जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था जहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। रवीश, आज का ताजा अपडेट क्या है आपके पास?
1: ताजा तस्वीरें दिखाते हैं पहले तो, अपडेट साथ साथ में ये भी बता दूंगा हिमांशु। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कटारा हिल्स थाने की, देर रात अंधेरे में समर्थ को यहीं लाया गया और फिलहाल इसी थाने में उसे रखा गया है। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक समर्थ ने रात भर कुछ नहीं खाया, फिलहाल वो सो रहा है, रात भर वो रास्ते में जागा रहा। पुलिस कर्मियों ने उससे कुछ बातें जरूर की लेकिन बहुत ज्यादा उसने पुलिस से बात नहीं की है और फिलहाल वो थाने के भीतर ही सो रहा है और किसी भी तरीके की विशेष डिमांड जो है वो समर्थ की तरफ से फिलहाल पुलिस थाने में नहीं की गई है। खबर यह है कि दोपहर को किसी भी समय 11 बजे के बाद समर्थ को इस थाने से बाहर निकाला जाएगा और उसे भोपाल अदालत ले जाया जाएगा जहां जज के सामने उसकी पेशी होगी। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि समर्थ की हम रिमांड लेंगे पहले, क्योंकि पुलिस रिमांड के दौरान ही समर्थ से कुछ जरूरी जानकारियां हैं जो लेनी बाकी हैं, क्योंकि समर्थ इतने दिनों तक फरार रहा इसीलिए रिमांड जरूरी हो जाती है, ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार फरारी के दौरान वो रहा कहां, क्या वजह थी कि वो फरार हुआ, जबकि वो खुद
0: एक क्रिमिनल लॉयर है। जिनके जवाब अभी बाकी है और उन जवाबों की तलाश पुलिस और सीबीआई को भी होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 10 दिन हो गए, 10 दिन भोपाल में त्विशा का शव इंसाफ का इंतजार कर रहा है। त्विशा ने आत्महत्या की या उसका कत्ल हुआ, अब जांच सीबीआई के हवाले है और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी।
5: त्विशा मौत केस में टर्निंग पॉइंट, हिरासत में पति समर्थ। त्विशा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, एम्स की स्पेशल टीम भोपाल जाएगी। त्विशा की मौत पर परिवार के सवाल, डबल हैंगिंग मार्क का मतलब क्या है? त्विशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश, -80 डिग्री में रखा जाएगा। पति समर्थ ने अग्रिम याचिका वापस ली, 4 याचिकाओं पर सुनवाई। मॉडल और एक्ट्रेस त्विशा शर्मा डेथ केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब त्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के विरुद्ध सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। कोर्ट ने त्विशा के शव को -80 डिग्री पर सुरक्षित रखने को कहा है। इस मामले में आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम याचिका वापस ले ली गई है और समर्थ सरेंडर करने पहुंचा तो उसे हिरासत में ले लिया गया। समर्थ इस वक्त भले ही कानून के शिकंजे में हो, लेकिन त्रिशा के पिता ने आरोप लगाया कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है और वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब उसके सरेंडर के बाद जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामाबाद से जहां आतंकी हमजा बुरहान के जनाजे में बड़े आतंकी संगठनों के कई शीर्ष चेहरे शामिल हुए हैं। जनाजे में हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख सैयद सलाउद्दीन और अल बदर का चीफ बख्त जमीन खान भी मौजूद रहा। इस दौरान भारी हथियारों से लैस आतंकियों की मौजूदगी देखी गई। आपको याद होगा हमजा बुरहान जिसकी हत्या कर दी गई थी मुजफ्फराबाद में पीओके में। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या जानकारी है?
4: हमजा बुरहान जिसकी अज्ञात हमलावरों ने गोली मार के हत्या की थी, और वो तस्वीरें और वो खबर सबसे पहले आज तक ने देश को बताई थी कि कैसे जो पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड, रियल मास्टरमाइंड था, उसकी अज्ञात हमलावरों ने गोली मार के हत्या कर दी। इस्लामाबाद में उसका नमाजे जनाजा हुआ था और आतंक की दुनिया में हमजा बुरहान का रसूख कैसा था आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकी संगठन अल बदर का जो चीफ है बख्त जमीन खान वो पहुंचा हुआ था। उसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन का जो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का जो चीफ है आतंकी सैयद सलाउद्दीन वो भी

0: मान के चलिए आप, कोलकाता में पेट्रोल 109.70 रुपए था, अब हो गया 110 पार हो गया यहाँ पर, और कोलकाता में डीजल 96 से अब पहुंच गया है 96.98 रुपए यानी 97 रुपए। अब दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, सुबह सुबह लोग जब पेट्रोल पंप पर पहुंचे उन्हें खबर मिली कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। हमारे सहयोगी अमन भारद्वाज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, अमित भारद्वाज की रिपोर्ट।
1: अमेरिका ईरान वॉर का असर अंतर्राष्ट्रीय फ्यूल बाजार पर तो पड़ ही रहा है, भारत में भी आम आदमी की जेब पर लगातार इसका झटका लगता जा रहा है। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई तो सीएनजी भी महंगा हो गया है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अब सीएनजी आपको 1 रुपए और महंगा मिलेगा, यानी कि 81.09 रुपए प्रति किलो सीएनजी अब आपको दिल्ली में पड़ेगा, यानी कि महंगाई की मार अब आम आदमी तक जा पहुंची है। बीते 10 दिनों से भी कम में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5 रुपए का लगभग इजाफा हुआ है। सर, आप लोगों के लिए, आप क्या टैक्सी चलाते हैं?
2: हाँ जी।
1: क्या नाम है आपका?
2: दर्शन सिंह।
1: दर्शन जी, क्या असर है जेब पर, गाड़ी चलाने पर, बिजनेस पर और घर पर?
2: हाँ सर, बहुत ज्यादा असर है। पहले इन्होंने 3 रुपए बढ़ाए हैं, अब आज रात को 1 रुपया और बढ़ा दिया। ऐसे हमारे पर ये असर पड़ रहा है, क्लाइंट कोई बैठ नहीं रहा, महंगाई की वजह से पैसे हमें मिल नहीं रहे हैं। जो इन्होंने करना वो एक बार ही बढ़ा दे, एक बार हमें भी पता चल।
0: और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। 4 दिवसीय भारत दौरे पर, कुछ देर पहले कोलकाता पहुंच चुके हैं, जोरदार स्वागत उनका किया गया। अब देखिए, आज से 26 मई तक, अब आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 23 तारीख है, 23, 24, 25, 26 भारत के दौरे पर रहेंगे, और इस अहम दौरे में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सहयोग प्रमुख एजेंडे में वो शामिल रहेंगे जो बैठकें होंगी। वहीं रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे और भारतीय नेताओं के साथ कई उच्च स्तरीय बैठक करने की भी खबर है।
3: भारत अमेरिका संबंधों को नई मजबूती देने के मकसद से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कोलकाता पहुंच चुके हैं। कोलकाता में रूबियो का स्वागत हुआ, जिसके बाद वो सीधा दोपहर में दिल्ली पहुंचेंगे। नई दिल्ली में रूबियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। रविवार को पूरे दिन द्विपक्षीय बैठकों और अमेरिका 250 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमेरिका ने कहा है कि भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत जारी है। ये मुद्दा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक में भी अहम एजेंडा रहने की संभावना है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी। इसके अलावा वेस्ट एशिया, संकट और वैश्विक आर्थिक प्रभाव भी एजेंडे में शामिल है। सोमवार को रूबियो आगरा और जयपुर का दौरा करेंगे। मंगलवार को जयपुर से वापस दिल्ली लौटकर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। मार्को रूबियो का यह दौरा भारत अमेरिका रिश्तों को नई दिशा देने और इंडो पैसिफिक सहयोग को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्टर आज तक।
0: तेईस मई आज हो गई, अब 24, 25, 26 यानी 4 दिन। अब ये देखिए, यहां पर आपको मार्को रूबियो दिखाई भी दे रहे होंगे, मार्को रूबियो दिखाई दे रहे होंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दूं, और ये बहुत बड़ी खबर है। इवांका ट्रंप, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं, उनको लेकर ये बड़ी खबर कि उनको मारने की कोशिश की गई, ये सूत्रों से बड़ी खबर है। और बताया जा रहा है IRGC, इवांका ट्रंप को IRGC के एक आतंकवादी ने हत्या के लिए टारगेट किया, ताकि प्रेसिडेंट की तरफ से अपने गुरु को मारने का बदला लिया जा सके। जो सोर्सों के हवाले से खबर आ रही है, सूत्र के हवाले से, कि IRGC के निशाने पर ट्रंप की बेटी, और ये फ्लोरिडा में। चलिए, प्रणय हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या जानकारी मिल पा रही है? बहुत बड़ी खबर है।
4: निश्चित रूप से अगर ये खबर सच है तो काफी बड़ी खबर से कहा जा सकता है। हालांकि अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को मारने की कोशिश की गई। IRGC कथित तौर पर IRGC ट्रेंड एक आतंकी जिसका नाम मोहम्मद बकर साद दाऊद अल साद बताया जा रहा है, करीब 32 साल का ये शख्स है जिसे पकड़ा गया है, और जिसने ये स्वीकार किया कि उसने इवांका और खास तौर पर जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को टारगेट करने की कसम ली थी, और उसने फ्लोरिडा के उनके घर पे टारगेट करने की कोशिश की। ये इराक का जो है नेशनल है, इराक का नागरिक बताया जा रहा है, और ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को मारना चाहता था, इसलिए क्योंकि कासिम सुलेमानी को मारा गया था।

0: छह साल पहले आपको याद होगा ईरान के जो कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनको मारा गया था बगदाद के अंदर एक ड्रोन स्ट्राइक के अंदर, और उसका कथित तौर पर ये बदला लेना चाहता था। आपको याद होगा हिमांशु, कई बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी जो हमले हुए हैं उसके अंदर कई बार ये बताया गया, जताया गया कि ईरान इसके पीछे हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई, नहीं किसी चीज के तौर पर ईरान ने कभी ये स्वीकार किया कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है, लेकिन फिर भी ये आरोप लगातार लगते रहे। लेकिन अगर ये खबर सही है तो ये निश्चित रूप से बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका के भीतर घुसकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं, आपको याद है कुछ दिनों पहले वो घटना भी हुई थी जब व्हाइट हाउस प्रेस के डिनर के अंदर गोलीबारी की घटना हुई थी, उसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी थी कि इतने नजदीक राष्ट्रपति जहां मौजूद हों, अमेरिका की पूरी सीनियर कैबिनेट मौजूद हों वहां पर, उस हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर और एक फाइव स्टार होटल के अंदर एक शख्स बंदूक लेके घुस जाता और गोलीबारी करते हुए जो है वो सिक्योरिटी कॉर्डन को तोड़ देता है। ये बड़ी घटना थी, तो ये निश्चित रूप से अमेरिका के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर भी बताता है, और साथ ही राष्ट्रपति के ऊपर असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं उनके राष्ट्रपति चुनाव से लेकर अभी तक, ये भी महत्वपूर्ण और गंभीर।
1: प्रणय, द पोस्ट की अगर खबर ये सही है तो आने वाले वक्त में हो सकता है जो तनाव अभी बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया है ये और ज्यादा बढ़ जाए, हालात और ज्यादा बिगड़ जाए। शुक्रिया प्रणय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
9: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
10: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
11: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
12: धनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Character, the taste of success.
2: यार
3: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
4: इसमें माइक्रोफाइबर है.
3: माइक्रोफाइबर यानी
4: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
3: हमारे सीमेंट में नहीं है.
4: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
5: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
6: In association with
7: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
8: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
6: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
9: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
10: Summer cool cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.
11: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.
12: आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि 4 लेन की सड़कें हो पाएंगी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है क्योंकि देवरिया तो पहले जब मैं गोरखपुर से सांसद था लगभग हर महीने मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त होता था, लगभग हर महीने, क्योंकि यहां पर तत्कालीन सरकार के उत्पीड़न, तत्कालीन सरकार की अराजकता, समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जो उस समय व्यवस्था पैदा की गई थी उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी हिंदू यावानी, कभी व्यापारिक संगठनों के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आना पड़ता था. और तब मैं देखता था कि गोरखपुर से देवरिया की सड़क 2 लेन बमुश्किल थी, और उसमें भी कहीं कहां पर वो सिंगल लेन ही थी.
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का खुलासा। अमेरिकी मीडिया द पोस्ट का दावा, ईरान समर्थित आतंकी मोहम्मद बकर के पास मिले इवांका के घर के ब्लूप्रिंट। आज से 4 दिन के भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री 26 मई तक कोलकाता, आगरा, जयपुर और दिल्ली का करेंगे दौरा। स्क्वाड साझेदारी, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा। देश के लोगों को एक बार फिर महंगाई का झटका। 10 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 87 पैसे तो डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। सीएनजी भी 1 रुपए महंगी। विशाल शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपित और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया। आज कोर्ट में पेशी। बार काउंसिल ने रद्द किया वकालत का लाइसेंस। सीबीआई करेगी जांच। और नीट परीक्षा कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पुणे से फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपित मनीषा हवलदार गिरफ्तार। एंटी एक्सपर्ट के तौर पर किया था नियुक्त।

0: और एक खबर सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली वालों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली, अचानक से मौसम थोड़ा बदला सा नजर आ रहा है और दिल्ली में अब बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। 3-4 दिन से ऐसी गर्मी पड़ रही थी कि लोग घरों से बाहर निकल नहीं रहे थे, बत्ती गुल हो गई थी, घरों से निकलना बंद हो गया था, पसीना टपक रहा था, लेकिन अब बूंदाबांदी होने लगी, हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं। अब मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में तेज आंधी के साथ बारिश होगी, ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आज गर्मी से आपको राहत मिलने वाली है, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी होगी, आंधी चलेगी, तो थोड़ा सा सावधान भी रहिए क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 2-3 दिनों से जो गर्मी पड़ रही थी 45-46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था तापमान, पारा चढ़ रहा था, तो अब आज उसमें राहत है। कुछ इसी तरह से हवाएं चलेंगी, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होगी और अभी भी हवाएं चली रही हैं, आप लोग भी महसूस कर ही रहे होंगे। जो लोग घर में बैठे हैं वो अगर अपने घर की बालकनी में जाएंगे, खिड़की में जाएंगे, तो उनको भी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा महसूस हो सकती है। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आज दिल्ली का मौसम क्या कह रहा है, कुछ बदला सा दिख रहा है?
1: मेरी सड़कों पर आप जो नमी देख पा रहे हैं, अचानक से बरसात शुरू हो गई है और आधे घंटे पहले मौसम विभाग का अलर्ट आया था, बूंदाबांदी काफी तेज है और सबसे बड़ी बात है दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है जिसमें थंडर स्टॉर्म कहा गया था कि आंधी तूफान चलेंगे। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं और उसमें हवा की रफ्तार जो है वो 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, यानी ये थोड़ा सा चेतावनी भरा है कि 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा हो सकती है, जिससे लोगों की ये सलाह दी जाती है कि ज़्यादा बाहर न निकले जब तक जरूरी ना हो। लेकिन ये बात और है कि हम 43-45 डिग्री का जो सितम देख रहे थे सूरज देवता का, उससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। सड़कों पर आप ये देख पा रहे हैं कि अब धीरे धीरे नमी है और हालांकि बूंदाबांदी जो है वो काफ़ी तेज़ है और बादलों में भी जब तक हमने देखा कि सूरज देवता कह बरपा रहे थे तो उससे अचानक से 10 मिनट पहले ही राहत मिलनी शुरू हुई है। ये देखिए बादलों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे दिल्ली NCR पर, हालांकि ये कंप्रेशन की वजह से है, ये एक मौसम जो मौसम का सिस्टम होता है उसकी वजह से, चूँकि अत्यधिक गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी कुछ समय से लगातार, जिसकी वजह से ये परिवर्तन हुआ है और इन काले बादलों का डेरा अचानक से दिल्ली समेत पूरे NCR पर है। और उसी के साथ साथ ये जो कहते हैं हम आमतौर पर कहते हैं कि टहनियाँ लहला रही हैं, लेकिन इस समय हवा की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है और उसी के साथ साथ बूंदाबांदी है, तो उन्हीं को हम जो है दिल्ली NCR में कई इलाकों में महसूस कर रहे हैं। तो आज सुबह इस समय अगर मैं कहूँ तो तापमान 26-27 डिग्री है, 25 डिग्री के लगभग होगा और ये गिरावट जो है कि कहाँ 42-43-45 डिग्री और कहाँ 25-26 डिग्री में, तो 20 डिग्री का ये जो गिरावट है उसका असर दिखाई दे रहा है। तो ये जो असर है ये आपको दिल्ली समेत हरियाणा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इन तमाम इलाकों में।
0: बिल्कुल आशुतोष, सूर्य देवता ने भी कहा होगा कि NCR वाले तो वैसे ही परेशान है, आज इनको गर्मी से थोड़ी राहत दे देते और आपके चेहरे पर वो खुशी दिखाई भी दे रही है। बहुत से लोग अब सैटरडे संडे के लिए अब शायद हो सकता है बाहर भी निकल जाएंगे घरों से। चलिए अब आपको दिखाते हैं नॉन स्टॉप 100।

0: वैश्विक तनाव के चलते तेल बाजार में उथल पुथल। भारत में पिछले 10 दिनों में 5 रुपए बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में मुंबई तक तेल के दामों के साथ साथ सीएनजी के दामों में उछाल। 1 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़े सीएनजी के दाम। 86 पैसे की बढ़त के साथ 93.51 रुपए हुआ पेट्रोल। 91 पैसे महंगा होकर डीजल। 92.49 रुपए प्रति लीटर। आतंकी हमजा बुरहान के जनाजे में पहुंचे आतंकी संगठन के टॉप मोस्ट आतंकी। इस्लामाबाद में दफनाया गया आतंकी हमजा बुरहान। अलबदर का चीफ वक्त जमीन खान भी पहुंचा। आतंकी संगठन अलबदर के चीफ आतंकी वक्त जमीन खान की सुरक्षा में AK-47 और आधुनिक हथियार दिखे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की कथित साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक आरोपी ने इवांका की हत्या की योजना बनाई थी। आरोपी ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। सूत्रों का दावा, आतंकी ने इवांका की हत्या करने की कसम खाई थी और उसके पास फ्लोरिडा स्थित घर का पूरा नक्शा भी था। 4 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। कोलकाता पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री। दिल्ली, आगरा, जयपुर और कई जगह जाएंगे। दोपहर 2 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे मार्को रूबियो। भारत अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा और क्वाड में भारत अमेरिका व्यापार पर अहम चर्चा। भारत की ऊर्जा अमेरिकी ऊर्जा सहयोग बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी। दोनों देशों के बीच से लेकर अहम बैठक। व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर भारत अमेरिका में मंथन। वैश्विक तनाव के बीच ऊर्जा और अहम संसाधनों पर व्यापक चर्चा। हॉर्मुज तनाव के बीच भारत अमेरिका ऊर्जा साझेदारी पर बड़ा फोकस। 26 मई को दिल्ली में होने वाली क्वाड बैठक में भी शामिल होंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। आज से 3 दिनों के दौरे पर पाक पीएम शहबाज शरीफ। चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक संबंध की वर्षगांठ। बीजिंग में मित्रता समारोह में शिरकत करेंगे पाक पीएम। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और पीएम ली कियांग के साथ बैठक। हांगझो B2B निवेश सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे शहबाज शरीफ। पाकिस्तान चीन के रिश्तों पर जोर। अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थता का मुख्य देश बना पाकिस्तान। पाक सेना पहुंचे पाक प्रमुख सेना प्रमुख पहुंचे तेहरान। शांति प्रस्ताव पर बातचीत में खाड़ी देश भी शामिल। कतर, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की ने भी रखा अपना रुख। पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर मचा सियासी घमासान। भड़के सीएम योगी, बोले ऐसी टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को दिखाती है। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोला। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा, यह समाज और लोकतंत्र के लिए घातक अपराधी है अजय। अभद्र टिप्पणी के बाद यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने सफाई दी, कहा यह तो AI जनरेटेड वीडियो है। महोबा दौरे के दौरान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दुष्कर्म पीड़ित से मिलने के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम शिवेंदु का पहला दिल्ली दौरा। राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के अलावा अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और रक्षा मंत्री से मुलाकात। भोपाल में त्रिशा शर्मा मौत केस, मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चाबुक चला, वकालत का लाइसेंस रद्द। त्रिशा शर्मा मौत मामले में नया ट्विस्ट। जबलपुर कोर्ट में मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया। त्रिशा शर्मा के शव का दूसरी बार होगा पोस्टमार्टम। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दी इजाजत, अब CBI करेगी पूरे मामले की जांच। आज तक से बोले त्रिशा शर्मा के पति रिटायर्ड जज के बेटे समर्थ को बचाया जा रहा है, हमारे वकील को मारा गया, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। त्रिशा शर्मा केस में सासगिरी बाला की जमानत रद्द करने की याचिका पर 25 मई को सुनवाई होगी। आईपैक रेड केस में ममता बनर्जी के खिलाफ ED की याचिका पर सुनवाई टली, अब 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले विक्रम को मिली CRPF सुरक्षा, लगातार मिल रही थी जान से मारने की धमकी। 2027 यूपी चुनाव से पहले अखिलेश के संदेश के सियासी संकेत, बोले सभी 403 सीटों पर हम मुस्तैद, साथ आने वाले को फायदा। अखिलेश यादव ने सीट नहीं जीत की बात वाले बयान पर कांग्रेस ने कहा, इंडिया गठबंधन में सब साथ है। देवरिया को सीएम योगी ने दी 655 करोड़ की सौगात, 19 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा, बोले गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली में 28 मई को बकरीद के मौके पर बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर, केंद्र सरकार ने छुट्टी की तारीख में बदलाव किया। दिल्ली दंगे का आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। दिल्ली दंगा केस में साजिश का आरोपित उमर खालिद को हाईकोर्ट से राहत, मां की सर्जरी के लिए 3 दिन की अंतरिम जमानत। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के अलंकरण समारोह में जवानों को संबोधित किया, सम्मानित किया, कहा भारत ने आतंकवाद और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है हमेशा। नीट परीक्षा केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन, फिजिक्स पेपर लीक के मुख्य आरोपी मनीष हवलदार गिरफ्तार पुणे से। महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस केस में चार्जशीट दाखिल, निंदा खान समेत चार आरोपियों के नाम। मुंबई में बंद्रा ईस्ट में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के बाद हिंसा मामले में 19 गिरफ्तार, जांच तेज। मुंबई में पहली बार बंद्रा तालाब की डी वॉटरिंग का काम शुरू, बीएमसी ने स्वामी विवेकानंद झील के पुनर्जीवन का काम तेज किया। रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2026 के लिए रिकॉर्ड 2,87,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने की घोषणा की। रांची में भीषण गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस को कूलिंग जैकेट दिए, 8 घंटे तक एसी जैसी ठंडक। फिरोजाबाद में पावर हाउस में लगा कूलर, भीषण गर्मी। फिरोजाबाद में पावर हाउस में लगा कूलर, भीषण गर्मी से ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने की कोशिश। भीषण गर्मी के बीच मोगा में पानी का संकट गहराया, 30 साल पुरानी बस्तियों में भी लोग टैंकर से पानी भर रहे हैं। कर्नाटक के दयानंद सागर विश्वविद्यालय में एनवीडिया के साथ साझेदारी में भारत की पहली एआई फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की। 175 करोड़ रुपए के निवेश से परिसर में शिक्षा, एआई इकोसिस्टम और रियल टाइम एआई क्षमताओं को विकसित करना मकसद है। दिल्ली में गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान, लेकिन आज दिल्ली वालों को राहत, ठंडी हवाएं चल रही हैं, हल्की बारिश भी हुई। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, आज तेज आंधी चल सकती है। राजस्थान में भी प्रचंड गर्मी का दौर जारी है, मौसम विभाग का अलर्ट, हीट वेव से सावधानी बरतने की सलाह। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी गर्मी ने बढ़ाई बेजुबानों की परेशानी, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास 45 डिग्री तापमान। मध्य प्रदेश के कई शहरों में हीट वेव की चेतावनी, मौसम विभाग ने दोपहर में घरों से बाहर निकलने की अपील की। उत्तर भारत में गर्मी से राहत पाने के लिए जम्मू कश्मीर की ओर रुख कर रहे सैलानी, बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंच रहे पर्यटक। जम्मू कश्मीर में भी डोडा समेत कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में गिरावट, पहाड़ों पर मौसम बदला, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में चमाचम बारिश हुई। शिमला में बारिश के बाद सैलानियों के चेहरे खिल गए, बीते कई दिनों गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी, अब राहत है। हिमाचल के रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट, सैलानी मजे ले रहे। दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित फर्नीचर मार्केट में आग लगी, करोड़ों का नुकसान। आग ने विकराल रूप ले लिया, आसमान में आग की लपटें देखी गई, लाखों का फर्नीचर जल गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया, जांच जारी है। गुरुग्राम के सेक्टर 72 के सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर जल गया, 7 बिजली घर ठप। रैपिड मेट्रो सेवा भी बाधित हो गई, हालांकि अब दोबारा से शुरू हो गई है, मेट्रो ट्रैक के किनारे लोग चलते नजर आए। अहमदाबाद में शॉर्ट सर्किट के कारण मोम बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी, 15 गाड़ियों ने काबू पा लिया। अहमदाबाद में इमारत में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया, लोगों को रेस्क्यू किया। सूरत में एक बिल्डिंग के 9वें फ्लोर में बंद फ्लैट में आग लगी, 11वीं-12वीं मंजिल तक आग फैल गई, 10 लोगों को रेस्क्यू किया। मुंबई में 40 करोड़ के फर्जी जीएसटी बिल मामले में अमित उपाध्याय गिरफ्तार, ऑथर रोड जेल के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन कर तेज कार्रवाई की उठाई मांग। वाराणसी में गंगा स्नान के दौरान शराब पीने का वीडियो वायरल, बिहार से आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस रवाना हो गई। ओडिशा के गंजाम में भीषण सड़क हादसा, 3 रफ्तार बस ने ऑटो में टक्कर मारी, 9 की मौत, 6 लोगों की मौत, 4 घायल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक शख्स ने अपनी बुजुर्ग मां की पीट पीट कर हत्या कर दी, बाद में कुएं में कूद के खुदकुशी की। यूपी के कन्नौज में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर की टक्कर से पलटा ट्रैक्टर, 3 लोगों की मौत। बेगूसराय में पुलिस लिखी कार से धक्का लगने के बाद कार सवार महिला की दबंग गई, पिकअप चालक को कॉलर पकड़कर पीटा। बेगूसराय में दबंगों का तांडव, जमीन विवाद के कारण घर में घुसकर परिवार को बेरहमी से पीटा। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में चलती ट्रेन से मां ने अपने ही 1.5 महीने के मासूम को फेंका, लोगों ने बचाई दूसरे बच्चे की जान। दुर्ग में एक घर से पूरे परिवार के 4 लोगों के शव बरामद, मौके से आर्थिक तंगी और घरेलू विवाद से जुड़ा सुसाइड नोट मिला। ओडिशा में काल बैसाखी तूफान का तांडव, ट्रेन गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। इटावा में आगरा कानपुर हाईवे पर बसों की भिड़ंत में दो यात्रियों की मौत, दो घायल, चालक पर शराब के नशे का आरोप। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय में स्विमिंग पूल में डूबने से छात्र की मौत, परिवार ने जांच की मांग की। झारखंड के रामगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, मोबाइल देखने के चक्कर में अनियंत्रित बस ने ट्रक को टक्कर मारी, 6 से ज्यादा यात्री घायल। पंजाब के मोगा में दोपहिया वाहन सवार महिला ने पैदल चल रहे युवक को मारी टक्कर, दोनों की हालत गंभीर। केदारनाथ यात्रा पड़ाव के सोनप्रयाग में बड़ा हादसा, पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। गुजरात के नवसारी में जनगणना प्रशिक्षण के बीच हॉल में घुसा बंदर, शिक्षकों के बीच मची अफरा तफरी। सूरत में पिता ने ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलने से रोका तो घर में भाग गए 3 बच्चे, पुलिस ने बच्चों को परिवार से मिला दिया। कान फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का ग्लैमरस लुक। कान फिल्म फेस्टिवल में पंजाबी सिंगर और कलाकार मीत कौर का लुक भी सामने आया, रेड कार्पेट पर भारत का मान बढ़ाया। साउथ मेगा स्टार चिरंजीवी की आगामी फिल्म मेगा 158 की शूटिंग शुरू, पवन कल्याण भी पहुंचे। रॉकिंग मंचू मनोज के बर्थडे पर डेविड रेड्डी का टीजर आउट, ब्रिटिश काल की झलक दिखी, दशहरा पर रिलीज होगी। मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ और आप वर्ल्ड टूर में अपने गीतों से बिखेर रहे हैं जलवा। सरकार ने देशभर में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का भरपूर स्टॉक होने का दावा किया। अप्रैल में क्रूड आयात में 4.3% की कमी के बावजूद महंगे प्राइस ने तेल आयात बिल 50% तक बढ़ा दिया। देश विदेश में मेलोडी ट्रॉफी की मांग बढ़ने के बाद पार्ले ने इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अगस्त तक हॉर्मोन स्ट्रेट बंद रहा तो दुनिया भर में 2008 जैसी बड़ी आर्थिक मंदी की आशंका, रैपिडन एनर्जी ग्रुप की चेतावनी। रुपए को 100 के पार जाने से रोकने के लिए आरबीआई ने $5 अरब की स्वैप नीलामी की। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 55,000 करोड़ का फंडिंग गैप होने का अनुमान, फंडिंग की भारी कमी से मिडिल क्लास और कम इनकम वालों के लिए घर का ख्वाब साकार करना मुश्किल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि किन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली का शनि शुभ है या अशुभ है। और अगर शनि के लक्षण ये बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में शनि अशुभ है तो उसको बेहतर करने के उपाय क्या हैं? बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और ये जानेंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि बिना कुंडली देखे, बिना हाथ की रेखाओं को देखे आप आदमी के लक्षणों से जान सकते हैं कि उसका शनि कैसा है, शुभ है या अशुभ है। तो ऐसे कैसे जान सकते हैं, कैसे लक्षण समझ सकते हैं? देखिए, हर ग्रह की अपनी विशेषता होती है, अच्छी भी और बुरी भी। और ग्रह के अच्छे और बुरे लक्षण होते हैं जो व्यक्ति के ऊपर दिखाई देते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के लक्षणों को समझें तो आप उस व्यक्ति के ग्रहों को जान सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति के स्वभाव और आदतों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस ग्रह का प्रभाव अच्छा या बुरा व्यक्ति के ऊपर होगा उसी ग्रह के स्वभाव और आदत उसकी होगी। शनि के जो लक्षण होते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, ये बहुत साफ होते हैं। और शनि के लक्षणों को पहचानना बहुत सरल होता है। आदमी खाता कैसे है, बोलता कैसे है, उसका पहनावा कैसा है, उसके चलने का तरीका कैसा है, ये सब अगर माइन्यूटली देखा जाए तो आप बड़ी आसानी से जान जाएंगे कि किस व्यक्ति के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा है। शनि अगर जीवन में अशुभ हो तो उसके लक्षण क्या हैं, ये आपको बताएंगे आगे। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, मानसिक तनाव कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा
क्रीम। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में तनाव बढ़ सकता है, परिवार में अशांति से बचाव करें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब कौन से लक्षण ये बताते हैं कि हमारे जीवन में हमारा शनि अशुभ है, ये बात हम कैसे जान सकते हैं? अगर शनि अशुभ होगा तो व्यक्ति की वाणी और स्वभाव कठोर होगा, व्यक्ति प्रेम से नम्रता से बात नहीं करेगा, कठोरता से रूखे स्वभाव से बात करेगा। शनि अगर अशुभ है तो व्यक्ति के बाल रूखे होते हैं, सधे हुए संवरे हुए नहीं होते। और जिनका शनि अशुभ होता है ऐसे लोग लापरवाह और कामचोर स्वभाव के होते हैं, ज्यादातर अपना काम टालते रहते हैं। जिनका शनि अशुभ होता है उनके जीवन में आप देखेंगे कि आम तौर पर कोई बड़ी घटना घटती है उम्र के 35-36 साल के बाद, और उसके बाद जीवन में बड़ा बदलाव आ जाता है। शनि अगर अशुभ होता है तो व्यक्ति जीवन में निम्न काम में रहता है और गलत काम करता है और छुपाता है। शनि के अशुभ होने का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि जिनका शनि अशुभ होता है

पाने के लिए, छोटे से छोटा काम करने के लिए जीवन में संघर्ष बना रहता है और एक स्थिति में जीवन में अकेलापन महसूस होता है। यानी अगर शनि आपका नकारात्मक है, अशुभ है, तो आपको सब कुछ होने के बावजूद, सबके रहने के बावजूद आपको निगेटिविटी और अकेलापन महसूस होगा। आगे शनि के शुभ लक्षणों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के

सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

लोग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न हेमंत बैनर्जी ने हमें लिखा है और हेमंत जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 फरवरी 1961, शाम के 4:10 और जन्म का स्थान है बरेली। मेल लिखते हैं कोलकाता से। हेमंत जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मुझे तनाव बहुत होता है, चिंता बहुत रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। हेमंत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य में ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप मेंटली ज्यादा परेशान हैं ऐसा कुंडली में दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का मामला ठीक है और अभी आपका जीवन आराम से चलेगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में या काले धागे में शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। प्रयास जारी रखें, सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा पढ़ें तो बहुत बेहतर होगा। तो शनि अशुभ है तो किन लक्षणों से जानेंगे ये आपने जाना। अगर शनि आपके जीवन में शुभ है तो कौन से लक्षण दिखेंगे, कौन से प्रभाव दिखेंगे वो भी जानते हैं। शनि जब कुंडली में शुभ होता है, शनि का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति लंबा और दुबला पतला होता है। ऐसे लोगों के बाल आम तौर पर घने होते हैं। ऐसे लोगों के बाल घने रहते हैं जिनकी कुंडली में शनि की शुभता होती है। जिनका शनि शुभ होगा ऐसे लोग बड़े डिसिप्लिन्ड होंगे, टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, टाइम से काम करेंगे और कर्मठ होते हैं, अपना काम करने में ईमानदार रहते हैं। देखिए, शनि शुभ होता है तब भी जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है, परिश्रम बहुत करना पड़ता है, लेकिन इस परिश्रम का फल मीठा होता है। शनि शुभ हो तो परिश्रम के फल मिलते हैं और ऐसे लोग परिश्रम से आगे बढ़ते हैं। और जिनका शनि शुभ होता है आम तौर पर जीवन के मध्य भाग में लगभग 35 साल के बाद आध्यात्मिक हो जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर आ जाती है। शनि अगर शुभ होगा तो ऐसे लोग कानून से, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट से या आध्यात्म से संबंध रखते हैं। शनि अगर आपका लीड कर रहा है और आपके लिए शुभ है तो जीवन में चीजों को पाने में विलंब तो हो सकता है लेकिन चीजें मिलेंगी जरूर। विलंब से ही सही लेकिन जीवन में बहुत सारा धन आपको प्राप्त होगा। यानी आपकी कुंडली में शनि अगर शुभ होगा तो आप अनुशासित होंगे, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, काम करने में थोड़ी देरी होगी लेकिन देरी होने के बावजूद
आप तमाम सफलताएं अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। तो ये तो कुंडली का शनि हो गया जो बता रहा है कि आपके लक्षण शुभ हैं या नहीं हैं। ब्रह्मांड में जो शनि भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, जैसे आज के समय में शनि देव मीन राशि में हैं, तो जो वर्तमान में शनि हैं वो शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वर्तमान में शनि की मुश्किल आ रही है, कैसे जानेंगे? घर आपका एकदम बढ़िया है, घर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में सीलन अगर आने लगे, बिना वजह के अगर घर में सीलन आ रही हो, तो समझिए कि इस समय शनि आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा है। बिना वजह के आपको चोट लगने लगे, खास तौर से पैरों में बार बार अगर चोट लगे, तो समझिए शनि आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा है। बिना वजह के आपके हड्डियों में दर्द होने लगे, पेन होने लगे, खास तौर से कमर में और पीठ में ज्यादा दर्द होने लगे, तो समझिए कि शनि आपको शुभ फल नहीं दे रहा है। और सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, आपके बाल जरूरत से ज्यादा अगर झड़ने लगे, तो आप समझ लीजिए कि शनि आपको अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा है। शनि आपको शुभ फल नहीं दे रहा है तो जीवन में हर कार्य में मुश्किल आएगी, आपको शारीरिक समस्या परेशान करेगी, शरीर दर्द होगा, और मेहनत करने के बावजूद उसका फल आपको नहीं मिलेगा अगर शनि ब्रह्मांड में आपको अशुभ परिणाम दे रहा है। तो देखिए, जीवन में शनि अगर कमजोर है तो क्या होगा, संघर्ष ज्यादा करेंगे, परिणाम नहीं मिलेंगे। शनि अगर अशुभ है तो संघर्ष भी करना पड़ेगा और परिणाम कतई नहीं मिलेंगे। कमजोर वाले में तो उपाय करने से मिल भी सकते हैं, शनि अशुभ होगा तो परिणाम कतई नहीं मिलेंगे। और शनि अगर शुभ होगा तो तुलनात्मक रूप से संघर्ष कम होगा, सफलता जल्दी मिलेगी। अब लक्षणों से आपने समझ लिया कि शनि आपका शुभ नहीं है, अशुभ है। क्या उपाय करेंगे इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कार्यक्रम में आगे बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, परिवार में विवादों से बचाव करें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, परिवार में विवादों से बचाव करें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, परिवार में विवादों से बचाव करें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। वृश्चिक राशि, सेहत अच्छी रहेगी, करियर में सुधार होगा,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब लक्षणों से अगर आपने जान लिया कि आपका शनि अशुभ है, आपको अशुभ फल दे रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? अपना आचरण और अपना आहार व्यवहार शुद्ध रखिए। आप मांस मदिरा का सेवन करें या आप अपशब्द बोलें, बेवजह लोगों को अपमानित करें, तो इससे आपका शनि सुधरेगा नहीं और खराब होगा। तो अपना आचरण और आहार व्यवहार शुद्ध रखिए, सफाई से रहिए, स्वच्छता से रहिए और धर्म का ठीक तरीके से पालन करिए। शनि कितना भी अशुभ क्यों ना हो, अगर आप भगवान शिव के या भगवान कृष्ण के भक्त हैं और नियमित रूप से उनकी उपासना करते हैं तो शनि देव की पीड़ा आपको नहीं मिलेगी। देर तक सोने से दिन में और देर रात तक जगने से शनि खराब होता है, इससे बचना चाहिए। हल्के नीले रंग के कपड़े जीवन में ज्यादा प्रयोग करिए, आपको लाभ होगा। रोज शाम को सूर्यास्त के बाद शनि मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक तनाव में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

कुंभ राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, करियर में कुछ बदलाव होगा, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, शनि की जो धातु है वो लोहे को माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि अगर आप शनिवार को लोहा खरीदें तो इससे शनि भारी होगा, जीवन में दुर्घटना होगी, संघर्ष बढ़ेगा। देखिए, जिनकी कुंडलियों में शनि

घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर आज जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बड़ा शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। और आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि वालों को। बेवजह की चिंता और तनाव हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोटस।

0: E3 products. ये रिश्ता लंबा चले।
1: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
2: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
3: विक्रम, एक हिंट तो देते।
4: विक्रम!
3: हिंट।
4: बड़े आराम से।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट?
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
3: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रो फाइबर है।
3: माइक्रो फाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
3: हमारे सीमेंट में नहीं है।
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
8: The taste of success.
9: पैसा बाजार CPL में आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं।
10: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो, जीतो।
11: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
12: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
13: अनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
16: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
17: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
18: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
16: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
19: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
17: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
16: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
20: In association with
21: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
22: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
23: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: मई जून के महीने में जब आसमान आग उगलता है तो राहत देते हैं बिजली के उपकरण, लेकिन अगर बिजली ही ना आए तो फिर एसी, कूलर, फ्रिज, पंखे शोपीस बनकर रह जाएंगे। इस प्रचंड गर्मी में से राहत या बिजली के उपकरण दे सकते हैं या फिर खुद प्रकृति, लेकिन आसमान से राहत मिलती दिख नहीं रही, इसीलिए सहारा बिजली और उसके उपकरणों का है। देश में जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया बिजली की खपत बढ़ती गई और इस बार भारत में बिजली खपत के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 21 मई 2026 को बिजली खपत उच्चतम स्तर पर रही। 21 मई को बिजली की खपत 271.82 गीगावाट रही। 20 मई को 265.44 गीगावाट। 19 मई को 260.45 गीगावाट। 18 मई को 257.37 गीगावाट रही। गर्मी के इन कठिन दिनों में लोग बिजली उपकरणों के सहारे ही दिन काट रहे हैं। सबसे ज्यादा बिजली डिमांड शहरी इलाकों में रहती है। जितना बड़ा शहर उतनी ज्यादा मांग, उतनी ही ज्यादा खपत। इन शहरों की डिमांड को पूरा करने के लिए गांव से बिजली काट कर इधर सप्लाई कर दी जाती है। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो यहां भी बिजली खपत के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली में 21 मई को बिजली की मांग सबसे उच्च स्तर पर थी। 21 मई को राजधानी में 8,231 मेगावाट बिजली की खपत हुई, जबकि 20 मई को ये 8,000 मेगावाट तक थी। विद्युत मंत्रालय का अनुमान था कि इस बार देश में 270 गीगावाट तक बिजली की डिमांड हो सकती है, जबकि 21 मई के दिन अनुमान से अधिक खपत रही। पिछले 3 सालों में किस तरह से देश में बिजली खपत रही, आइए समझते हैं। 2026 की बात करें तो अभी सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 2025 में किसी एक दिन अधिकतम खपत 242.77 गीगावाट रही और वो जून का महीना था। 2024 में 250 गीगावाट तक डिमांड पहुंची थी और वो मई का महीना था। गर्मी की वजह से देश में अचानक बिजली की खपत और डिमांड बढ़ी है। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय इसके लिए पहले से तैयार था। मंत्रालय ने 21 मई को आई पीक डिमांड और सप्लाई का डेटा शेयर किया। 270.82 गीगावाट की रिकॉर्ड मांग को पूरा करने के लिए अलग अलग ऊर्जा स्रोतों से बिजली ली गई। इसमें कोयले से बनने वाली बिजली का हिस्सा 62% रहा, 22% सौर ऊर्जा से आया, 5% हाइड्रो पावर प्लांट से आया, पवन ऊर्जा का हिस्सा भी 5% रहा। पीक डिमांड और सप्लाई को लेकर ऊर्जा मंत्रालय अपनी पीठ थपथपा रहा है कि बिना किसी कठिनाई के सब हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि कहीं से बिजली कम करके कहीं सप्लाई की गई। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का खुलासा। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा, ईरान समर्थित आतंकी मोहम्मद बकर के पास मिले इवांका के घर के ब्लूप्रिंट। आज से चार दिन के भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, कोलकाता में मदर टेरेसा हाउस का किया दौरा, आगरा जयपुर और दिल्ली भी जाएंगे मार्को। क्वाड साझेदारी, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा। देश के लोगों को एक बार फिर लगा महंगाई का झटका, 9 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल में 87 पैसे तो डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, सीएनजी भी महंगी। रुषा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपित और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, आज कोर्ट में पेशी, बार काउंसिल ने रद्द किया वकालत का लाइसेंस, सीबीआई करेगी जांच। और दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ बूंदाबांदी, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, तेज गर्मी से मिली राहत, मुंबई में भी बरसात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल गया, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, तापमान में जबरदस्त गिरावट। दिल्ली समेत उत्तर भारत में लगातार बढ़ रहा तापमान, कई राज्यों में 40 डिग्री के पार। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, 14 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी। यूपी के कई जिलों में गर्मी के रेड अलर्ट, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, आगरा और झांसी समेत कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के लिए भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश के 37 जिलों में लपट का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों से की दोपहर में बाहर ना निकलने की अपील। केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक समेत दक्षिणी भारत के मौसम सिस्टम में मॉनसून के करीब आने पर रुक रुक कर बारिश। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में तेज हवाओं के साथ होगी हल्की बारिश। हिमाचल में भी बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में गरज के साथ बारिश की चेतावनी। कश्मीर के डोगरा पास और आसपास के इलाकों में बेमौसम बर्फबारी, आईएमडी का अगले 48 घंटों के दौरान आंधी तूफान का आसार। जम्मू में धीरे धीरे सूरज दिखा रहा गर्मी, गर्म हवाओं के साथ पारा बढ़ रहा है। गाजियाबाद में 23 मई से बंद रहेंगे सभी स्कूल, बच्चों को लू से बचाने के लिए डीएम का आदेश। गुरुग्राम में बड़ा बिजली संकट, सेक्टर 72 के 220 केवीए बिजली घर का मुख्य ट्रांसफार्मर टूटने से 7 बिजली घर ठप, रैपिड मेट्रो की सेवा कई घंटों के लिए बाधित हुई, अब बहाल। विदर्भ के ब्रह्म भूमि में 47.2 डिग्री पहुंचा पारा, 25 मई तक कई जिलों में हीटवेव के रेड और ऑरेंज अलर्ट। बिहार के कटिहार में छात्रा के साथ छेड़खानी के बाद दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी, मौके पर डीएम एसपी ने मामला शांत कराया। तनावपूर्ण माहौल के बाद मौके पर भारी पुलिस तैनाती, जीएम ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। अहमदाबाद में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 50 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। अहमदाबाद में एक इमारत में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। बिहार में शराबबंदी के बीच नशीले इंजेक्शन की तस्करी जारी, पटना में 2000 इंजेक्शन के साथ आरोपित गिरफ्तार। इंदौर में गंदगी के बीच चल रही आइसक्रीम फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की छापेमारी, फैक्ट्री को सील किया। अमृतसर के खालसा कॉलेज में कुत्तों से क्रूरता का आरोप, वीडियो वायरल होने पर छात्रों और एनिमल एक्टिविस्ट ने प्रदर्शन किया। शराबबंदी वाले बिहार में 50 लाख की जब्त शराब पर चला बुलडोजर, गोपालगंज में डीएम के आदेश पर 6,471 लीटर शराब को नष्ट किया। बाराबंकी में बिजली कटने पर घर के बाहर सड़क किनारे सो रहे लोगों को डंपर ने कुचला, परिवार के 4 लोगों की मौत। सोनप्रयाग में बोल्डर गिरने से सीसीटीवी वीडियो सामने आया, हादसे में एक शख्स की जान गई। दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित फर्नीचर मार्केट में आग लगी, कई दुकानों को नुकसान। आग ने विकराल रूप ले लिया, आग की लपटें दूर तक दिखाई दी, दुकानदारों को बहुत नुकसान हुआ। खबर मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया, जांच जारी है। गुरुग्राम के सेक्टर 72 के सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर जला, 7 बिजली घर ठप। ट्रांसफार्मर जलने से रैपिड मेट्रो सेवा बाधित हुई थी, कई इलाकों में अंधेरा छाया, मेट्रो ट्रैक के किनारे चलते नजर आए लोग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जिला प्रशासन जम्मू कश्मीर पुलिस का ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान, तस्कर को अवैध कमर्शियल संपत्ति को ध्वस्त किया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक शख्स ने अपनी बुजुर्ग मां की पीट पीट कर हत्या की, बाद में कुएं में कूद के खुदकुशी की। यूपी के कन्नौज में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर की टक्कर से पलटा ट्रैक्टर, 3 लोगों की मौत। बेगूसराय में पुलिस लिखी कार में धक्का लगने के बाद महिला की दबंग गई, पिकअप चालक कॉलर को कॉलर पकड़कर पीटा। बेगूसराय में दबंगों का आतंक, जमीन विवाद के कारण घर में घुसकर परिवार को बेरहमी से पीटा। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में चलती ट्रेन से मां ने अपने ही 1.5 महीने के मासूम को फेंका, लोगों ने बचाई दूसरे बच्चे की जान। दुर्ग में एक घर से पूरे परिवार के 4 लोगों की शव बरामद, मौके से आर्थिक तंगी और घरेलू विवाद से जुड़ा सुसाइड नोट मिला। ओडिशा में काल बैसाखी तूफान का तांडव, टेंट गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। इटावा में आगरा कानपुर हाईवे पर बच्चों की बढ़त पर 2 यात्रियों की मौत और 2 घायल, चालक पर शराब के नशे कारू। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय में स्विमिंग पूल में डूबने से छात्र की मौत, परिवार ने जांच की मांग की। झारखंड के रामगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, मोबाइल देखने के चक्कर में अनियंत्रित बस ने ट्रक को टक्कर मारी, 6 से ज्यादा यात्री घायल हुए। पंजाब के मोगा में 2-पहिया वाहन सवार महिला ने पैदल चल रहे युवक को टक्कर मारी, दोनों की हालत गंभीर। केदारनाथ यात्रा पड़ाव के सोनप्रयाग में बड़ा हादसा, पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। गुजरात की रफ्तारी में जनगणना प्रशिक्षण के बीच हॉल में घुसा बंदर, शिक्षकों के बीच अफरा तफरी। सूरत में पिता ने ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलने से रोका तो घर से भाग गए 3 बच्चे, पुलिस ने परिवार से मिलाया। वैश्विक तनाव के चलते तेल बाजार में उथल पुथल, भारत में पिछले 10 दिनों में 5 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। दिल्ली में मुंबई तक तेल के दामों के साथ साथ सीएनजी के दामों में भी उछाल, 1 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़े सीएनजी के दाम। 84 पैसे की बढ़त के साथ 99.51 रुपए हुआ पेट्रोल, 91 पैसे महंगा होकर डीजल, 92.49 रुपए प्रति लीटर। आतंकी हमजा बुरहान के जनाजे में पहुंचा आतंकी संगठन का टॉप मोस्ट आतंकी, इस्लामाबाद में दफनाया गया आतंकी बुरहान। अलबदर का चीफ वक्त जमीन खान भी पहुंचा, आतंकी संगठन अलबदर के चीफ आतंकी वक्त जमीन खान की सुरक्षा में AK-47 और आधुनिक हथियार दिखे। ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की कथित साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी जांच एजेंसी के मुताबिक ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक आरोपी ने इवांका की हत्या की योजना बनाई। आरोपित ईरानी सैन्य कमांडर कासम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। सूत्रों का दावा है कि आतंकी ने इवांका की हत्या करने की कसम खाई थी और उसके पास उसके घर का ब्लूप्रिंट मौजूद था। 4 दिवसीय भारत यात्रा पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कोलकाता पहुंचे, दिल्ली आगरा जयपुर भी जाएंगे। दोपहर 2 बजे करीब दिल्ली पहुंचेंगे मार्को रूबियो। भारत अमेरिका के ऊर्जा संरक्षण सुरक्षा और क्वाड में भारत अमेरिका व्यापार पर अहम चर्चा। भारत के साथ हमारी ऊर्जा सहयोग बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी, दोनों देशों के बीच इसे लेकर अहम बैठक। व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर भारत अमेरिका में मंथन, वैश्विक तनाव के बीच ऊर्जा और अहम संसाधनों पर व्यापक चर्चा। और उस तनाव के बीच भारत अमेरिका ऊर्जा साझेदारी पर बड़ा फोकस, 26 मई को दिल्ली में होने वाली है क्वाड बैठक। आज से 3 दिनों के चीन दौरे पर पाक पीएम शहबाज शरीफ, चीन और पाकिस्तान के रणनीतिक संबंध की वर्षगांठ। बीजिंग के मित्रता समारोह में शिरकत करेंगे पाक पीएम, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और पीएम ली कियांग के साथ एक बैठक। हांग झोउ B2B निवेश सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान चीन के रिश्तों पर जोर। अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थता की मुख्य भूमिका निभा रहा है पाकिस्तान, पाक सेना प्रमुख पहुंचे तेहरान, शांति बहाली पर बातचीत जारी। शांति प्रस्ताव पर बातचीत में खाड़ी देश भी शामिल, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की भी रख रहे हैं अपना रुख। पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर मचा सियासी घमासान, भड़के सीएम योगी, बोले ऐसी टिप्पणी कांग्रेस की राजनीतिक कुसंस्कार दिखाती है। पीएम मोदी पर टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने खुला मोर्चा। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा, ये समाज और लोकतंत्र के लिए घातक, अपराधी है अजय। पीएम मोदी पर टिप्पणी के बाद पूरे यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने सफाई दी है और कहा है कि ये तो एआई जनरेटेड वीडियो है। महोबा दौरे के दौरान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दुष्कर्म पीड़िता से मिलने के दौरान पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम शिवबिंदु का पहला दिल्ली दौरा। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और रक्षा मंत्री से ही मुलाकात की। भोपाल में कृष्णा शर्मा मौत केस में मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चाबुक, वकालत का लाइसेंस रद्द। कृष्णा शर्मा मौत मामले में नया दृष्ट, जबलपुर कोर्ट में मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया। कृष्णा शर्मा के शव का दूसरी बार होगा पोस्टमार्टम, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दी इजाजत। आज तक से बोले कृष्णा के पिता, रिटायर्ड जज के बेटे समर्थ को बचाया जा रहा है, हमारे वकील को मारा गया, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। कृष्णा केस में सास गिरीवाला की जमानत रद्द करने की याचिका पर 25 मई को सुनवाई होगी। आईपैक रेट केस में ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई टली, अब 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले विक्रम को मिली सीआरपीएफ सुरक्षा, लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। 2027 यूपी चुनाव से पहले अखिलेश के संदेश के सियासी संकेत, बोले सभी 403 सीट पर हम मुस्तैद। अखिलेश यादव की सीट नहीं जीत की बात वाले बयान पर कांग्रेस ने कहा, इंडिया गठबंधन में सब साथ। देवरिया को सीएम योगी की 655 करोड़ की सौगात, 19 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा बोले, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी दी तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में 28 मई को बकरीद के मौके पर बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर, केंद्र सरकार ने छुट्टी की तारीख में किया बदलाव। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली दंगा केस में साजिश के आरोपी उमर खालिद को हाईकोर्ट से राहत, मां की सर्जरी के लिए 3 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर। दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में 20 मई को मां और बेटे की हत्या के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने आरोपी सौरभ को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। नीट परीक्षा केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन, फिजिक्स पेपर लीक के मुख्य आरोपी मनीष हवलदार गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक टीसीएस केस में चार्जशीट दाखिल, निदा खान समेत 4 आरोपियों के नाम। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के बाद हिंसा मामले में अब तक 19 गिरफ्तार। मुंबई में पहली बार बांद्रा तालाब का डी वॉटरिंग हुआ शुरू, बीएमसी ने स्वामी विवेकानंद झील के पुनर्जीवन का काम तेज किया। रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2026 के लिए रिकॉर्ड 287,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने की घोषणा। कान फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की तस्वीरें सामने आईं, ईवा लॉन्गोरिया के साथ शेयर की तस्वीरें। कान फिल्म फेस्टिवल में पंजाबी सिंगर और कलाकार मीत कौर का बोल्ड लुक रेड कार्पेट पर दिखा। साउथ मेगा स्टार चिरंजीवी की आगामी फिल्म मेगा 158 की शूटिंग शुरू हो गई, पवन कल्याण भी पहुंचे क्लैप्टन। रॉकिंग मंचू मनोज के बर्थडे पर डेविड रेड्डी की टीजर आउट, ब्रिटिश काल की दिखी झलक। मशहूर गायक दोसांझ ऑरा वर्ल्ड टूर में अपने गीतों से बिखेर रहे हैं जलवा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
2: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
3: जहां खबर वहां खबरदार।
7: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

तकरीबन पूरा हिंदुस्तान प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है। कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। सबसे ज्यादा बदतर हालात उत्तर प्रदेश में है। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में अपना नाम दर्ज करा चुके बांदा में गर्मी से बेहाल लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। आग की भट्टी की तरह तप रहे बांदा में गर्मी की वजह से रोजाना बीमार होने वालों का आंकड़ा 1000 के ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यूपी के बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, आगरा, झांसी समेत 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गर्मी से निपटने के इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली भी 46 डिग्री का टॉर्चर झेल रही है। भीषण गर्मी के बीच पीक पावर डिमांड 8231 मेगावाट के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। SLDC के मुताबिक इस सीजन में बिजली की खपत 9000 मेगावाट पार जाने का अनुमान है। दिल्ली में पावर डिमांड पिछले साल के मुकाबले इस बार 76% ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा अभी और चढ़ेगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ इलाकों में आज पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की उम्मीद है, लेकिन इससे गर्मी में झुलस रहे उत्तर भारत को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: वो समुद्री रास्ता जो अमेरिका इसराइल से युद्ध छिड़ने के बाद ईरान का सबसे मजबूत हथियार बना, जिस रास्ते के दम पर ईरान ने दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई का रास्ता रोक दिया, वही हॉर्मुज रूट एक बार फिर अमेरिका ईरान के बीच जंग छिड़ने की वजह बन सकता है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज को लेकर अब ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है जिस पर ट्रंप तिलमिला उठे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को नियंत्रित करने के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने बताया कि एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिससे हॉर्मुज के ट्रैफिक से टोल वसूली को व्यवस्थित किया जा सके। इस प्लान को ईरान की ओर से जल्दी ही दुनिया के सामने रखा जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट लगातार विवाद के केंद्र में है। ऐसे में ईरान के टोल वसूली के प्लान पर ट्रंप भड़के हुए हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि हॉर्मुज पर टोल उन्हें कतई पसंद नहीं है और ईरान इस वसूली को फौरन बंद करे।
1: We want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job.
0: अमेरिका ईरान जंग में अगर कोई सबसे अहम और खतरनाक मोर्चा बनकर उभरा है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है, लेकिन अब यही रास्ता ईरान की अहम ताकत बना हुआ है। अमेरिका और ईरान दोनों ओर से अपनी शर्तों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया जा रहा है। तमाम रिपोर्ट के मुताबिक ईरान फिलहाल किसी भी हाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को राजी नहीं दिख रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका सैन्य ताकत के जरिए इस रास्ते को खोलने की कोशिश करता है तो ये जंग और लंबी और खतरनाक हो सकती है। यही नहीं, कुछ दिन पहले पूर्व CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स ने भी चेतावनी दी थी ईरान इस ताकत को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। उनके मुताबिक तेहरान इस स्ट्रेट के जरिए भविष्य में किसी भी शांति समझौते में अपने लिए सुरक्षा गारंटी और आर्थिक फायदे हासिल करने की कोशिश करेगा। ऐसे में साफ है कि ईरान ऊर्जा सप्लाई के इस अहम रूट पर दबदबा कम नहीं करने को किसी भी सूरत में राजी नहीं। अब देखना होगा कि ट्रंप की धमकी का ईरान पर क्या असर होगा, और अगर ईरान अपने रुख पर अड़ा रहा तो क्या दोनों देशों के बीच और भी विनाशकारी युद्ध होगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी नींद अभी खुली होगी तो उनके लिए एक झटके वाली खबर है क्योंकि आज सुबह सुबह महंगाई के झटके लगे हैं। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़ी है, डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के ही दाम बढ़े अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं क्योंकि CNG के दाम भी बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गया, डीजल हो गया 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर। वहीं CNG की कीमतें 1 रुपए बढ़ गई हैं, अब 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलो।
3: अमेरिका ईरान वॉर का असर अंतर्राष्ट्रीय फ्यूल बाजार पर तो पड़ ही रहा है, भारत में भी आम आदमी की जेब पर लगातार इसका झटका लगता जा रहा है। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई तो CNG भी महंगा हो गया है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अब CNG आपको 1 रुपए और महंगा मिलेगा, यानी कि 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलो CNG अब आपको दिल्ली में पड़ेगा, यानी कि महंगाई की मार अब आम आदमी तक जा पहुंची है। बीते 10 दिनों से भी कम में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5 रुपए का लगभग इजाफा हुआ है। सर, आप लोगों के लिए, आप क्या टैक्सी चलाते हैं?
4: हाँ जी।
3: क्या नाम है आपका?
4: दर्शन सिंह।
3: दर्शन जी, क्या असर है जेब पर, गाड़ी चलाने पर, बिजनेस पर और घर पर?
4: हाँ सर, बहुत ज्यादा असर है। पहले इन्होंने 3 रुपए बढ़ाए हैं, अब आज रात को 1 रुपया और बढ़ा दिया। ऐसे हमारे पर ही असर पड़ रहा है, क्लाइंट कोई बैठ नहीं रहा, महंगाई की वजह से पैसे हमें मिल नहीं रहे हैं। जो इन्होंने करना वो एक बार ही बढ़ा दे, एक बार हमें भी पता चले कि हम आगे किसी को बताए कि हमें ये रेट मिले, तो ये रात को 1 रुपया बढ़ा देते हैं, कभी 3 रुपए बढ़ा देते हैं, अच्छी बात नहीं है। सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं ये महंगाई की वजह से।
3: इस तरफ जो आप देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ है, और अब अगर आप दिल्ली में डीजल भरवाएंगे, निर्भर करता है कि किस पेट्रोल पंप पर भरवा रहे हैं, वहां पे आपको बढ़े हुए कीमत रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। रिफ्रेश हो रहा है, ये पेट्रोल की कीमतें हैं, 99 रुपए 54 पैसा प्रति लीटर आपको पेट्रोल पड़ेगा। निर्भर करता है कि किस पेट्रोल पंप पर आप तेल भरवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर लगातार महंगाई का जो असर है कीमतों पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डीजल अगर आप बात करें तो 92 रुपए 53 पैसा प्रति लीटर आपको पड़ेगा। कुल मिलाकर आज 87 पैसे पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और डीजल की कीमतों में 91 पैसा प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है। बीते 10 दिनों से कम में लगभग 5 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई है, जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर आपको दिखाई देगा लोग खड़े हैं, बढ़ी हुई कीमतों के बारे में बहुत सारे लोगों को अभी पता भी नहीं है। गिग वर्कर्स बहुत सारे हैं जो आपके घर में डिलीवरी करते हैं, रैपिडो जैसे गाड़ियां चलाते हैं, एग्रीगेटर्स के साथ काम करते हैं, या फिर जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर ही नहीं सकते, वैसे लोगों के लिए और भी ये मुश्किल होता है बजट मेंटेन करना। लेकिन
2: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: Order for Jennifer C.
6: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
5: Yeah. Can you handle that much caffeine?
6: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
5: Oh, really? That's great.
6: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
5: Yeah, you just said that.
6: Did you say I just said that?
5: Yeah, I'm cutting you off.
6: I can't have any more? Why not?
7: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
8: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
10: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
11: चुनाव लड़ा और नारा दिया यूपी को ये साथ पसंद है। हालांकि ये साथ महज 54 सीटों के साथ नतीजों में नजर नहीं आया। वैसे 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर साथ आई, जहां 43 सीट जीतकर परिणाम भी पक्ष में आए। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में फिर से विधानसभा चुनाव है और अखिलेश के एक संदेश के कई सियासी संकेत निकाले जाने लगे हैं। पहले आपको बताते हैं कि पार्टी की बैठक में अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा है। पार्टी यूपी की सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे एसपी के मजबूत संगठन का फायदा मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश अगला यूपी चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या गठबंधन को लेकर अखिलेश कांग्रेस के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। दरअसल ये बयान उस घटनाक्रम के बाद आया है, जहां कुछ दिन पहले रायबरेली में राहुल गांधी दलित शहीद वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उससे ठीक पहले कांग्रेस के दो नेता मायावती से मिलने जाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। अब समाजवादी पार्टी ने ये पूछना भी शुरू कर दिया है कि किससे पूछकर कांग्रेसी नेता बहन जी से मिलने गए थे।
12: जो कांग्रेस के लोग गए, अब ये किससे पूछ करके गए, किसके निर्देश पर गए, हम लोगों को तो जानकारी हुई है कि शायद डांट भी पड़ी है इनको। तो ये सोचने की बात है कि सांसद और अध्यक्ष अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं। तो साफ तौर पर, और मिलने भी किससे गए, मायावती जी से आप ऐसे उठे और चले गए बिना अपॉइंटमेंट के, तो अपॉइंटमेंट भी लेना चाहिए था। और वो बहुत बड़ी नेता है और इनको कैसे पता चला कि उनकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल छोड़ती हैं, तो वो कांग्रेस के लोग समझेंगे और उस पर सफाई देंगे। लेकिन हमारा बहुत ही क्लियर है कि हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बने और पीडीए की सरकार बने।
13: हमारी मीटिंग चल रही थी पार्टी कार्यालय में, जिसमें तनुज पुनिया सांसद जी, जो हमारे एससी डिपार्टमेंट के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आए हुए थे, हमारे एससी डिपार्टमेंट के भी पदाधिकारी आए हुए थे, और वीरा पासी जी की प्रतिमा का अनावरण राहुल जी ने कल किया है, तो उसको करने का जो प्रोग्राम होना था उसकी तैयारी मीटिंग थी। मीटिंग करने के बाद हम लोग निकले, चलो अब कहीं लंच कर लेते हैं, तो हम निकले और कोने पे सामने बहन जी का बंगला है। तो मेरे साथ चलने वालों को भी किसी को एहसास नहीं, तो मुझे अचानक मेरे मन में याद आया कि जब भी पूरे देश से लोग आते हैं, मिशनरी अम्बेडकरवादी लोग आते हैं या बसपा से जो जुड़े पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं, मेरे घर भी जरूर आते हैं मिलने, तो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एसटी डिपार्टमेंट के, तो तुम्हारे अंदर क्या इतना घमंड है, तुम बहन जी के बंगले से सामने से निकलते हो, वहाँ हालचाल भी नहीं पूछ सकते। मेरे मन में आया, तो मैंने सोचा कि चलो आज बहन जी के हालचाल पूछते हैं अगर होंगी तो।
11: सियासी गलियारों में सुगबुगाहट ये है कि कहीं कांग्रेस की नजर दलित वोटों पर तो नहीं है, जो अखिलेश को असहज बना रही है। सवाल कि क्या कांग्रेस अखिलेश के पीडीए में सेंधमारी करने की कोशिश पे तो नहीं है। सवाल ये भी कि कहीं कांग्रेस मायावती के साथ तो नजदीकियां नहीं बढ़ा रही।
14: निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं, और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
11: हालांकि दोनों दल के नेता गोलमोल जवाब देकर लीपापोती की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से एक साल से भी कम वक्त में अखिलेश का कांग्रेस को बार बार आईना दिखाना कहीं न कहीं उसे सख्त संकेत जरूर दे रहा है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।

ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का खुलासा। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा, ईरान समर्थित आतंकी मोहम्मद बकर के पास के मिले इवांका के घर के ब्लूप्रिंट। आज से चार दिन के भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, कोलकाता में मदर टेरेसा हाउस का किया दौरा, आगरा जयपुर और दिल्ली भी जाएंगे। क्वाड साझेदारी, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा। देश के लोगों को एक बार फिर लगा महंगाई का झटका, 9 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल में 87 पैसे तो डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, सीएनजी भी 1 रुपए महंगी। विशाल शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपित और पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, आज कोर्ट में पेशी, बार काउंसिल ने रद्द किया वकालत का लाइसेंस, सीबीआई करेगी मामले की जांच। और दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ बूंदाबांदी, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, तेज गर्मी से मिली राहत, मुंबई में भी बरसात।

0: नमस्कार, आप देखिए आज तक मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करते हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बेटी का नाम है इवांका ट्रंप और उनकी हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे और ये पता चला है कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC आपने सुना होगा, IRGC से ट्रेनिंग पाए खतरनाक आतंकवादी जिसका नाम मोहम्मद बकर साद दाऊद अल सादी। इस आतंकी ने इवांका ट्रंप की जान लेने का पूरा प्लान तैयार किया था, यह खबर आ रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से यह बड़ी खबर है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से ट्रेनिंग पाए एक खतरनाक आतंकवादी जिसका नाम फिर आपको बता रहे हैं मोहम्मद बकर साद दाऊद अल सादी, इसके पास से फ्लोरिडा में इवांका ट्रंप के घर का ब्लूप्रिंट मिला है। तैयारी की गई थी और यह भी बताया गया है कि अपने गुरु की हत्या की जो हत्या की गई थी उसका बदला लेने के लिए अब इसने प्लानिंग की थी। इवांका ट्रंप को निशाना बनाने की तैयारी थी और अब इसका पर्दाफाश हुआ है, इसका खुलासा हुआ है, पकड़ लिया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी को पकड़ लिया है जिसका नाम अभी आपने सुना, ईरान की IRGC से इसने ट्रेनिंग ली थी और कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना ये चाहता था। अभी ईरान के टारगेट पर ट्रंप का परिवार, ऐसा दावा किया जा रहा है द पोस्ट की तरफ से, जो सूत्रों से खबर मिली है। रोहित शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आमतौर पर आप इनसे हमेशा अमेरिका में मिले लेकिन अभी इस वक्त ये दिल्ली में मौजूद हैं। रोहित, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और अगर ये खबर सच है तो फिर हम ये मान के चलें कि अमेरिका और ईरान के रिश्तों में भी और बहुत बड़ा तनाव देखने को भी मिल सकता है। क्या खबर आप आई अभी तक?
1: देखिए, ये अगेन ये न्यूयॉर्क पोस्ट ने जो है ये स्टोरी ब्रेक की है और उन्होंने ये जो है जानकारी सामने दी है कि इस तरह से एक इंडिविजुअल है जो कासिम सुलेमानी का रिश्तेदार था और वो बदला लेना चाहता था और उस क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार कासिम सुलेमानी का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक बदले की भावना से उसने ये प्लान बनाया था, ये प्लॉट किया था कि वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की किसी फैमिली मेंबर को टारगेट कर सकता है। उसने इवांका ट्रंप का जो है उस पर जीरो इन किया और उसके बाद उनके पास से इस इंडिविजुअल के पास से एक उनके घर का जो हम मैप कहते हैं वो मिला है। तो काफी चौंकाने वाली बात है। अच्छी बात यह है कि शी इज फाइन, यू नो, कुछ एक्ट ऐसा नहीं हुआ जिससे उनके कोई उन्हें क्षति पहुंची इवांका को। लेकिन सरप्राइजिंग और शॉकिंग ये है कि अगेन IRGC की हम बात कर रहे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है और उसके बीच में ये खबर आना कि IRGC से ट्रेन किया हुआ एक इंडिविजुअल, अगर आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर इस तरह का कोई अंजाम करता है, अटेम्प्ट भी करता, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं रुकते। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले तो वो खुद कह रहे थे कि मुझे सऊदी अरब ने और UAE ने रोक लिया, वो काफी यू नो फ्रस्ट्रेटेड है एक तरह से यहां से। तो उसके बीच में एक खबर आना कहीं ना कहीं एक नया वेरिएबल जरूर इंट्रोड्यूस करता है।
0: वही रोहित, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में और कितना तनाव यहां पर देखने को मिलेगा, इस बारे में हम बात करेंगे लेकिन इस खबर से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट यहां पर दिखाते हैं।

0: जिस वक्त अमेरिका ईरान फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े, जब ईरान में फिर से तबाही का अमेरिका का प्लान तैयार हो चुका है, किसी भी वक्त ईरान में विध्वंस के लिए हमले का ऐलान हो सकता है। ठीक उसी वक्त ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश रची गई। इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई, और सबसे चौंकाने वाली बात ये साजिश की कड़ी सीधे ईरान से जोड़ती दिख रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहे आतंकी को पकड़ लिया है। उसकी पहचान 32 साल की मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने गुरु और ईरानी सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था, और इसके लिए IRGC से ट्रेनिंग पाए इस आतंकी ने पूरा खाका तैयार कर लिया था। आतंकी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी कासिम सुलेमानी को अपना गुरु मानता था, और तभी से ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में था। आरोपी अल सादी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार, खासकर उनकी बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की कसम खाई थी। जांच के दौरान सुरक्षा बलों को अल सादी के पास से फ्लोरिडा में मौजूद इवांका ट्रंप के आलिशान घर का पूरा ब्लूप्रिंट भी बरामद हुआ है। वो काफी समय से उनके घर की रेखी कर रहा था। वॉशिंगटन में इराकी दूतावास के पूर्व डिप्टी मिलिट्री अटैचे एंटी फाद कनबर ने इस आतंकी के इरादों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अल सादी लोगों से कहता फिर रहा था कि हमें इवांका ट्रंप को मारना होगा। वो कहता था कि हमें ट्रंप के पूरे घर को उसी तरह जलाकर खाक कर देना चाहिए जिस तरह उसने कासिम सुलेमानी के घर को तबाह किया था। यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है, तफ्तीश जारी है। ये गिरफ्तारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके सीधे निशाने पर ट्रंप का परिवार आ गया है। आज तक ब्यूरो।
1: तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। एक बार फिर रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रोहित शर्मा हमारे साथ में बने हुए हैं। रोहित, इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया है? जिस आतंकवादी का जिक्र किया गया है, मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी, ये कितने वक्त से अमेरिका में रह रहा था और किस हद तक ये पहुंच चुका था अपने मंसूबों को कामयाब करने में? आप शायद म्यूट हैं, एक बार देखिएगा प्लीज रोहित।
2: सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा कि ये जो इंडिविजुअल है ये एक ट्रेंड IRGC कमांडर है, लेकिन ये एक इराक में मिलिट्री डेप्यूटी मिलिट्री अटैचे हुआ करता था, जो अमेरिका ऑब्वियसली इमिग्रेट हुआ, और उसके बाद आई थिंक इसकी जो फैमिली है वो भी इसके साथ इमिग्रेट हुई। तो उस पर अभी हमें अगेन वील हैव टू फिगर आउट कि कब से रह रहा था। इस बारे में न्यूयॉर्क पोस्ट ने अभी तक ज्यादा बात नहीं की है। ऑब्वियसली आई थिंक इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, लेकिन शॉकिंग बात जो मुझे सबसे ज्यादा ये लगती है कि अमेरिका में इतना ज्यादा जब भी कोई आता है, विजिटर हो, इमिग्रेट करे, तो उनकी पूरी बैकग्राउंड सर्च होती है, रिसर्च होती है कि कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो एक IRGC ट्रेन कमांडर का अमेरिका में आना जो कासिम सुलेमानी से रिलेटेड है, ये सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि अमेरिका ने उसे एडमिट कैसे किया, और अगर किया भी तो अगेन उसके पास इस तरह की प्लानिंग वो कर रहा था, तो उसे पहले क्यों नहीं रोका गया, पहले क्यों नहीं पकड़ा गया। हालांकि ये बात ये भी सही है कि इससे पहले वो कुछ कर पाता उसे पकड़ लिया गया। तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा वी हैव टू वेट एंड वॉच कि ऑफिशियली जब इस पे बयान आएगा सरकार की तरफ से तो हमें देखना होगा। व्हाइट हाउस शायद इस पे कमेंट जरूर कर सकता है, वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन अगेन अच्छी बात यह है कि इवांका की जान को फिलहाल खतरा नहीं है, इन दैट सेंस फॉर दिस इंडिविजुअल। सरप्राइजिंग बात यह है कि ये कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को अपना उसको अगेन उनके साथ कुछ क्षति पहुंचाने की कोशिश करने वाला था। और मुझे लगता है इस बीच में दोनों चीजें साबित हो जाती है जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कहते आए हैं कि पहला कि ईरान में जो IRGC के कमांडर्स है वो अमेरिकन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो डेथ टू अमेरिका की जो बात करते हैं वो साबित हो जाती है। दूसरी बात कि जो ट्रंप फैमिली है, जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तीन बार उनके
1: उन पर खतरा भी बना हुआ, ये भी कहा जा सकता है। रोहित, बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए, अमेरिका ईरान में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर वो बता देते हैं, और ये बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान पर नए हमलों की तैयारी में जुटा है। व्हाइट हाउस, पेंटागन में हलचल तेज है, और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति निजी कार्यक्रम तक रद्द कर चुके हैं, यहां तक कि उन्होंने अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में शामिल होने का कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिया है, और सभी निजी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। बेटे की शादी, अब बेटे की शादी में कौन बाप नहीं जाता है, कौन पिता नहीं जाता है, लेकिन यहां पर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सभी निजी कार्यक्रम रद्द किए, और यह बताया जा रहा है कि उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी जिसमें उन्हें शामिल होना था अब वो भी कैंसिल कर दिया है। रोहित बने हुए हमारे साथ, रोहित से भी जान लेते कि इसके क्या मायने। रोहित, अब एक ये खबर आई तो तनाव यहां पर बढ़ गया, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि शायद हमले की तैयारी है, निजी कार्यक्रम सब रद्द कर दिए, शादी तक में नहीं जा रहे अपने बेटे की।
2: देखिए, वो थोड़ा सा मुझे पर्सनल मामला लगता है, हम भी काफी सरप्राइज थे जब ये बात आई कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्राइवेट अफेयर है, शायद मैं ना जा पाऊं। फिर उन्होंने ये बात कही कि देखिए ईरान ने मुझे काफी बिजी कर रखा है, जो सच सच बात भी है। एक इस सीज फायर को ही ऑलमोस्ट इतना समय हो गया है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम दोनों को जोड़ के भी देख सकते हैं, लेकिन एक पर्सनल अफेयर है, इनकी दूसरी शादी है, आई थिंक दे वो बहुत उसे कम लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो हो सकता है चीजें। लेकिन अगेन, इफ यू पुट टू एंड टू टुगेदर, तो सही ऑब्वियसली बात है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा समय से कोशिश कर रहे हैं इस युद्ध को रोकने की। कभी उन्होंने थोड़े दिन पहले ही कहा था कि मैं फिर से अटैक करने वाला था, मुझे गल्फ के जो नेशंस है उन्होंने रोक लिया कि आप फिर से एस्केलेट हो जाएगी चीजें, तो आई थिंक वो थोड़ा ऑसलेट कर रहे हैं बीच में कि सीज फायर की तरफ जाएं या फिर से ऑपरेशन को जारी रखें, और उस बीच में ये शादी है तो शायद बिकॉज ऑफ जो भी चल रही है चीजें शायद।
1: रोहित, जरा शॉर्ट में बताइए कि सीज फायर की तैयारियों को लेकर ट्रंप बिजी बताए जा रहे हैं या फिर ईरान पर नए हमलों की तैयारी को लेकर?
2: दोनों चीजों को, वो हमेशा दोनों चीजें अपने साथ लेके चलते हैं। देखिए, जहां तक डील की बात है, डील में अमेरिका काफी क्लियर है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुल जाना चाहिए, यही दो शर्तें हैं। बाकी की जो चीजें हैं जो चल रही है, आई थिंक उसको लेके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शायद ज्यादा बिजी हैं।
1: और ये बात यहां पर कही भी जा रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कब क्या सोचे, कब क्या करें, अब कोई पहले से नहीं सोच सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी खबर बता दें, आज अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत पहुंच गए हैं, कोलकाता से वो तस्वीरें भी हमने देखी, 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे, और भारत दौरे के तहत रूबियो ने कोलकाता में कई कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। रूबियो ने कोलकाता में मदर टेरेसा हाउस का दौरा किया, जिसके बाद वो आगे की बैठकों और कूटनीतिक कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय राजधानी रवाना हुए। देखिए, 23 तारीख आज है, 23, 24, 25, 26 भारत में ही रहेंगे मार्को रूबियो। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ग्रेबियल भी उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। 4 दिन के भारत दौरे पर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे, और उससे पहले कई कार्यक्रम हैं, उन सभी कार्यक्रम में भी जुड़ेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं मदर टेरेसा स्कूल कोलकाता, वहां जाते हैं मार्को रूबियो और वहां पर मुलाकात करते हैं नंद से, और ऐसे ही कई कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होंगे मार्को रूबियो। और अभी तो ये कोलकाता से तस्वीरें आई हैं, उसके बाद अभी कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचेंगे, जयपुर भी जाने का प्रोग्राम है।

0: कहा जैसा आपने कहा और जो तस्वीरें हम देख रही हैं कि AK-47 अत्याधुनिक हथियार लिए सुरक्षा गार्ड आतंकी वहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये माना जाए कि ये जो टॉप आतंकी हैं जिनको पाकिस्तान ने जगह दी है, आश्रय दिया है, उनको भी अपनी जान का खतरा है कि कब कौन आए अज्ञात हमलावर और गोली से निपटा दे।
1: बिल्कुल, और इसी वजह से जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है उसने सभी आतंकी संगठनों के मुफिया को भेजा हमजा बुरहान की के नमाज जनाजा में, ताकि ये मैसेज बाकी आतंकियों को जाए जिनमें खौफ है कि वो डरने की जरूरत नहीं है, उनको मोटिवेट करने के लिए। जबकि हकीकत ये है कि जितने आतंकी हैं वो तो डरे हुए, आतंकियों के आका भी डरे हुए हैं। इसकी तस्वीर, ये एविडेंस आज तक के पास है, ये इस्लामाबाद की तस्वीर है, वीडियो है, जिसमें जो अल बदर का चीफ है बदजमीन खान वो नमाज जनाजा में जा रहा है, आसपास सुरक्षा का घेरा है, AK-47 अत्याधुनिक हथियारों से लैस।
0: अरविंद, ये बात तो कही जाएगी कि आतंकियों के आकाओं का ये खौफ देखकर अच्छा लग रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात नीट पेपर लीक की, जिसकी जांच के दौरान CBI ने एक और आरोपित मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया। मनीषा हवलदार NTA में बतौर एक्सपर्ट नियुक्त थी और उस पर फिजिक्स का पेपर आउट करने का आरोप है। पेपर लीक मामले में अब तक की 11वीं गिरफ्तारी है, इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब मनीषा हवलदार की बारी है, इससे पहले मनीषा वाघमारे थी। और ये देखिए, मनीषा हवलदार को जब गिरफ्तार किया गया, अब वो कई तस्वीरें आई हैं। मनीषा हवलदार को CBI ने गिरफ्तार किया है, पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि पूछताछ में कई और नाम सामने आए, कई और कड़ियां जुड़ जाएं।
2: पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और अब नीट का फिजिक्स का पेपर आउट करने वाले आरोपी पर CBI का शिकंजा कस गया है। पुणे से CBI ने मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया है। केस की आरोपी मनीषा मंधारे की तरह ही मनीषा हवलदार बतौर एक्सपर्ट NTA से जुड़ी थी, जिसकी फिजिक्स के प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी। आरोप है कि अप्रैल 2026 में उसने परीक्षा से जुड़े कई फिजिक्स सवाल मनीषा मंधारे को शेयर किए। जांच एजेंसी के मुताबिक जो सवाल मनीषा हवलदार ने शेयर किए थे उनका मिलान NEET UG 2026 के असली फिजिक्स पेपर सेट से किया गया और दोनों में समानता पाई गई। CBI लगातार इस मामले में देश भर के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ हो रही है। इसके आधार पर पेपर लीक करने वालों पर CBI का शिकंजा कसता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस केस में अब तक जो 3 महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं, उन तीनों का नाम मनीषा ही है। आज तक ब्यूरो।
0: सरकारी नौकरी के सपनों का सौदा, SSC परीक्षा में पास कराने के नाम पर लाखों की डील और पर्दे के पीछे चल रहा हाईटेक एग्जाम रैकेट। उत्तर प्रदेश STF ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया जो ऑनलाइन परीक्षा में सेटिंग किया करता था, अभ्यर्थियों को पास कराने का दावा किया करता था।
2: सरकारी नौकरी का सपना और उसे बेचने वाला एक संगठित गिरोह। SSC परीक्षा में पास कराने के नाम पर चल रहे हाईटेक खेल का UP STF ने बड़ा पर्दाफाश किया है। ये तस्वीरें उस हाईटेक गिरोह की हैं जो SSC परीक्षा में सफलता का शॉर्टकट बेच रहा था। 4 लाख रुपए लेकर पास कराने का दावा और ऑनलाइन एग्जाम में सेटिंग का खेल। UPSTF ने ग्रेटर नोएडा से मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप चौहान, अरुण कुमार, संदीप भाटी, निशांत राघव, अमित राणा, शाकिर मलिक और विवेक कुमार शामिल हैं। छापेमारी में 50 लाख रुपए कैश, लैपटॉप, मोबाइल और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया कि ये गिरोह ऑनलाइन परीक्षा सिस्टम को हैक नहीं करता था, बल्कि कंपनी के सर्वर को बाईपास करके प्रॉक्सी सर्वर लगाता था। इसके बाद स्क्रीन शेयरिंग व्यूअर एप्लीकेशन के जरिए परीक्षा का पेपर बाहर बैठे सॉल्वर तक पहुंचाया जाता था, फिर सॉल्वर बाहर से सवाल हल करके अभ्यर्थियों को उत्तर उपलब्ध कराते थे। गिरोह CAPF, SSF कांस्टेबल, GT और असम राइफल्स राइफलमैन परीक्षा 2026 में सेटिंग कराने का झांसा देता था। संदेह है कि नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। अब STF ये पता लगाने में जुटी है कि इस खेल में और कौन कौन शामिल है और कितने अभ्यर्थियों से करोड़ों की वसूली की गई।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
4: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
5: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
4: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रो फाइबर है।
4: माइक्रो फाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
4: हमारे सीमेंट में नहीं है?
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
8: डायरेक्टर The taste of success.
9: बस दो हजार
10: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा।
11: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
7: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/27 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
8: Visit your nearby Lowe's on Richmond Highway in Alexandria.
3: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: In association with
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.

अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा, ईरान समर्थित आतंकी मोहम्मद बकर के पास मिले इवांका के घर के ब्लूप्रिंट। आज से चार दिन के भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री, कोलकाता में मदर टेरेसा हाउस का किया दौरा, आगरा, जयपुर और दिल्ली में भी जाएंगे मार्को रूबियो। क्वाड साझेदारी, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा। देश के लोगों को एक बार फिर से लगा महंगाई का झटका, 9 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल में 87 पैसे, डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, सीएनजी भी 1 रुपए प्रति किलो महंगी। यूपी में भीषण गर्मी में पावर कट के आक्रोश पर चढ़ा सियासी पारा, अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार का महाविद्युत आपदा बताया विद्युत विभाग को, और यूपी के ऊर्जा मंत्री ने कहा आईने में खुद को देखो

0: तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। और बुलेटिन के हिस्से में हम बात करेंगे मौसम की, बात गर्मी की और बात बिजली की। प्रयागराज से दिल्ली तक की बात करेंगे, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के कई इलाके धधक रहे हैं प्रचंड धूप गर्मी, तो वहीं आज दिल्ली से एक राहत भरी खबर। और ये राहत कब तक रहेगी इसके बारे में अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बात महाराष्ट्र के विदर्भ की भी करेंगे, जहां पारा 45 पार करके 46 पर बना हुआ है, कम होता नहीं दिख रहा, आगे बढ़ सकता है। जबरदस्त गर्मी है इस वक्त वहां पर, और ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जगह से भी आ रही हैं। विदर्भ देखिए कैसे धधक रहा है, लोग गन्ने के जूस पीने में लगे हुए हैं। जहां उन्हें ठंडा पानी मिल जाता है या जहां पेड़ मिल जाता है पेड़ की छांव में, वो रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत देखिए अब क्या है, जब गर्मी बढ़ रही है तो लोगों के पास या तो एसी, कूलर, पंखा यही बचा है, लेकिन जब बत्ती ही नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, बिजली नहीं होगी तो क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश कई जगह बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, कटौती है, जिसको लेकर अब सियासत भी हो रही है। लेकिन शुरुआत अच्छी खबर से कर लेते हैं, शुरुआत दिल्ली से करेंगे, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में आज सुबह थोड़ी सी राहत देखी गई, थोड़ी सी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, तेज हवाएं भी चल रही हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं, लुका छुपी मान के चलिए, क्योंकि कभी हल्की बूंदाबांदी बारिश, हल्की छांव और अभी अभी कुछ देर पहले धूप भी निकल आई है। तो दिल्ली में मौसम बदल रहा है, पल पल बदल रहा है। तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, पारा 45 डिग्री तक पहुंचा हुआ था, अब उसमें गिरावट है। अभी कुछ देर पहले की बात है, जब जो टेम्परेचर है दिल्ली एनसीआर में वो 26-27 का देखा जा रहा था,
1: तो 43-45 डिग्री का सितम झेल रही दिल्ली एनसीआर के लिए अचानक मौसम में बदलाव हुआ है और ऊपर बादलों का साया, तो थंडरस्टॉर्म, जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि थंडरस्टॉर्म के साथ हवाओं के अचानक से जो तापमान है वो 30 डिग्री के नीचे आ गया है, बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। तो दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों पर बूंदाबांदी भी आपको मिलेगी और थोड़ी सी राहत जरूर इससे तापमान में मिलेगी, हालांकि सिर्फ एक दिन के लिए हो सकता है, यानी सप्ताहांत में। अगर आप घरे देखिए आंधी तूफान जो है ना, हवा के थपेड़े बहुत ही तेज चलने लगे हैं, तो डस्ट स्टॉर्म भी, और जिसका असर सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद, फरीदाबाद, इन तमाम इलाकों में होगा। और इसी के साथ साथ ये देखिए हवाओं के थपेड़ों के साथ सड़कों पर आपको धूल पूरा दिखाई देगा चारों तरफ से, लेकिन इसी के साथ साथ मौसम में बदलाव भी हुआ है, तापमान भी नीचे आया है और बूंदाबांदी भी शुरू हुई है। और इसी के साथ मौसम में जो मिजाज थोड़ा सा बदला है, तो बहुत सारे लोग जो सप्ताहांत में अगर घर पर हैं उनको राहत जरूर मिलेगी। लगातार 43-44-45 डिग्री का हम सितम झेल रहे थे मई में, तो आज कम से कम राहत जरूर है, बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है दिल्ली में, जाहिर है थोड़ा सा धूल तूफान है ये भी चल रहा है। तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे इलाकों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली से नासिर खान के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
0: देखिए आज थोड़ी राहत है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि दिल्ली में गर्मी ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुधवार को 14 साल बाद मई की सबसे गर्म रात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा था कि अगले एक हफ्ते तक भीषण गर्मी रहेगी, हालांकि आज सुबह कुछ राहत है जैसा कि अभी आशुतोष मिश्रा बता रहे थे, लेकिन दिल्ली में भले ही तापमान कुछ कम हुआ है, दिल्ली वाले 65 डिग्री तक की गर्मी का टॉर्चर झेल रहे हैं। थर्मल कैमरे से जानिए गर्मी का असल हाल।
2: गर्मी वो नहीं है जो तापमान में दिखती है, गर्मी वो नहीं जिसे हम सिर्फ अपनी आंखों से देख पाए या महसूस कर पाए। गर्मी की गर्माहट हर किसी के लिए अलग होती है, कुछ के लिए तो बहुत ही भयानक।
3: अगर ये ब्लू है ना डॉट, पेड़ की छाया आ रही है ना, मैं अगर यहाँ ले आऊँ, 36 दिखा रहा है यहाँ है ना, 36 से 37 के बीच, पर अगर जहाँ धूप का एक्सपोजर ज्यादा है वहाँ मैं ले जाऊँ तो 48 हो जाएगा।
2: दिल्ली में पारा 45 डिग्री के पार, लेकिन हकीकत केवल इतनी नहीं। अगर हम कहें कि दिल्ली वाले 65 डिग्री से ज्यादा की गर्मी से दो चार हो रहे हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? आखिर जब तापमान 45 डिग्री के पार दिख रहा हो तो फिर 65 डिग्री या फिर उससे ज्यादा का टॉर्चर दिल्ली वाले कैसे अनजाने में सहने को मजबूर हैं? ये समझने के लिए हमने थर्मल कैमरे की नजर से आज गर्मी को देखा है, जो दिखाता है कि तापमान कितना है और असल में गर्मी का एहसास कितना है। ये रंगों से गर्मी को मापता है। अगर किसी व्यक्ति और सामान के आसपास गर्माहट ज्यादा है तो गहरे लाल पीले रंग दिखते हैं। कम गर्मी को नीले और जामुनी रंग में दिखाया जाता है। ग्रीन पीस एनजीओ के थर्मल कैमरा और टेम्परेचर मीटर की मदद से आज तक ने यह जानने की कोशिश की है कि सतह का वास्तविक तापमान कितना है और जमीन पर गर्मी की असल स्थिति क्या है।
4: मैं ये रोड देख सकता हूँ, इसका कितना तापमान दिखा रहा है?
5: जो इस टाइम इसका सरफेस टेम्परेचर दिखा रहा है वो है 62 दिखा रहा है, 63 दिखा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें 63 डिग्रीज दिखा रहा है। कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रहा है, लाइक 60 से नीचे तो जा नहीं रहा है, 62, 62.5, 62.8, 62.9, और अब यहाँ आएंगे तो 64 हो रहा है।
2: तो दिल्ली के नंद नगरी में तापमान की असलियत थर्मल कैमरे में अलग है, मतलब यहाँ असली गर्मी दावों से कहीं ज्यादा है। दिल्ली में जहाँ पर पेड़ है वहाँ गर्मी कम, ये थर्मल कैमरे में भी दिखता है, इसे आप भी देखिए।
5: अभी जो थर्मल कैमरा दिखा रहा है 44 दिखा रहा है, 42 दिखा रहा है, बीच में 43 भी दिखा रहा है।
4: तो कहीं ना कहीं आपने साफ तौर पर देखा कि बाहर जब हम शूट कर रहे थे ओपन में एकदम सूरज की रोशनी के नीचे, तो वहाँ जो सड़क का सरफेस टेम्परेचर था वो 60 प्लस था, पर जैसे हम कुछ मीटर आगे आए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे दो बड़े पेड़ लगे हूँ, उनका सीधा सीधा असर सरफेस टेम्परेचर पर देखा जा रहा है कि जहाँ अब जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री के आसपास है सरफेस का, तो साफ तौर पर यह बयां करता है कि कैसे पेड़ प्रदूषण साथ के साथ गर्मी दोनों से निपटने के लिए कितने कारगर हैं।
2: लेकिन जहाँ पर कोई शेड नहीं कंक्रीट, वहाँ पर तापमान अनुमान से कहीं ज्यादा, इतना ज्यादा कि कोई भी जल जाए।
4: गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है, स्टील की बनी हुई गाड़ी है, लोहे की बनी हुई गाड़ी है, तो इसका तापमान, इसके सरफेस का तापमान क्या होगा, क्योंकि गाड़ी सीधा सीधा धूप में समय खड़ी है, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि धूप की रिफ्लेक्शन भी इस पर पड़ रही है, पर थर्मल इमेजरी के जरिए हम जानना चाहेंगे इसके सतह का क्या तापमान है। तो मैम क्या तापमान दिखा रहा है आपका थर्मल कैमरा?
3: अभी यहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर अगर हम देखते हैं इस डॉट के जरिए तो वो हमें दिखा रहा है 59 एंड 62 तक जा रहा है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है ठीक गाड़ी के ऊपर अगर आप देख सकते हैं।
2: तो भले ही तापमान 45-46 डिग्री के आसपास पहुंचे, लेकिन कंक्रीट का जंगल बन चुकी दिल्ली में रहने वाले 65 डिग्री तक की गर्मी झेलने को मजबूर कहे जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी गर्मी, वो चाहे घर के अंदर खाना बना रही रेहड़ी हो या फिर सड़क पर सामान बेच रहा कोई रेहड़ी पटरी वाला। थर्मल कैमरा हमें बताता है भले ही आसमान से गर्मी बरसाते सूरज की तपिश में अंतर ना हो, फिर भी गर्मी सभी के लिए समान नहीं है, गर्मी का एहसास सबके लिए अलग अलग है।
0: बिजली संकट की बात कर लेते हैं, गर्मी की तो बात कर ही ली है, क्या आपके शहर या गांव में भी बिजली नहीं आ रही है? आज पूरी पड़ताल होगी। यूपी के अलग अलग शहरों की हम बात करेंगे, राजधानी लखनऊ से कानपुर तक की बात होगी, बात हाईटेक सिटी गुरुग्राम की करेंगे जहां बिजली ऐसी कटी कि रैपिड मेट्रो के पहिए थम गए, जाम हो गए, ट्रेन ठप पड़ गई। यूपी वालों का हाल तो बहुत बेहाल है, दिन में काम करें, रात में बिजली के विद्युत विभाग का जो सब स्टेशन है वहां पर धरना प्रदर्शन करें, तो हर एक तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाएंगे। लेकिन आपको ये बात भी समझनी होगी कि हालात कितने बिगड़ गए हैं, और उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को और अच्छे से हम आपको बताते हैं यूपी में कितनी बिजली कटौती, प्रयागराज में कितनी हो रही है, 6 घंटे, वाराणसी में 6 घंटे, लखनऊ में 6 घंटे, यानी 6-6 घंटे, और 3 प्रमुख शहर हैं ये, प्रयागराज, वाराणसी, ये तो राजधानी उत्तर प्रदेश की, 6 घंटे बिजली कटौती। अब आप समझ लीजिए हाल कितना बेहाल है। अयोध्या में 6 घंटे, इटावा में 6 घंटे, आगरा में 6 घंटे, और 6 घंटे का आंकड़ा है। लखनऊ राजधानी, अब आगरा ताजनगरी, दूर दुनिया से पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं, इटावा, अयोध्या, अब आप देखिए अलीगढ़, रामपुर, नोएडा, नोएडा में तो अघोषित जब मन चाहे मतलब बिजली चली जाए, कुछ इस तरह का हाल यहां पर है। रामपुर में 6 घंटे, अलीगढ़ में 6 घंटे बिजली यहां पर जा रही है, मतलब सुबह दफ्तर में रहिए, शाम को आइए तो वो जो कहते हैं ना बिजना पंखा हाथ से फिराते हैं, बिल्कुल वैसे हालात हो गए। ग्रेटर नोएडा अघोषित, गाजियाबाद अघोषित, यूपी में कितनी बिजली कटौती है ये हम आपको बता रहे हैं। परेशानी लोगों की बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश इस समय प्रचंड गर्मी झेल रहा है, आप देख रहे हैं प्रयागराज, बांदा जैसे जिले सबसे गर्म स्थान पर बने हुए, बांदा की हालत तो आपने देखी 48 पार हो गया वहां। अब ये बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें दोगुनी कर दी हैं, दोपहर में घर से निकलना नहीं है, लेकिन घर में अगर लाइट नहीं है तो लोगों के मन में ये सवाल है कि हम करें क्या।
6: सूरज की तपिश से आसमान से आग बरस रही है, बीते 2 सप्ताह से पूरा देश गर्मी में झुलस रहा है। भारत के 50 सबसे गर्म शहरों में 26 शहर उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में भी बांदा, प्रयागराज, जालौन ऐसे शहर हैं जहां सबसे ज्यादा गर्मी है और जहां का तापमान 46 डिग्री बीते कई दिनों से पार कर चुका है। और यही वजह है कि पूरे प्रदेश में बिजली का संकट हाहाकार मचा रखा है। बिजली के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिन रात काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डिफॉल्ट जितने भी आएंगे, फॉल्ट आएंगे, उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बढ़ता हुआ तापमान और इस तापमान में बढ़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयां दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि उस डिमांड को पूरी कर पाना संभव होता नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि बीते कई रातों से कई शहरों में बिजली सेंटर्स पर हंगामा हो रहा है, तोड़फोड़ कर रहे हैं लोग और नाराजगी इस बात की कि बिजली की कटौती रात भर उनको सोने नहीं देती, यानी दिन में आसमान से बरस रही आग और रात में बिजली के संकट ने लोगों की जिंदगी मुहाल कर रखी है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।
0: तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बेहिसाब बिजली कटौती हो रही है, तस्वीरें देखिए आप समझ ही जाएंगे। मतलब हालात ऐसे हैं कि कोई शेड्यूल नहीं, कोई नियम कायदा कानून नहीं, जब मर्जी बिजली काट दी जाती है। इस अघोषित बिजली कटौती से ऐसा नहीं है कि सिर्फ लखनऊ परेशान है, प्रयागराज परेशान है, आगरा परेशान है, ये बताया जा रहा है कि पूरा यूपी परेशान है।

0: 45 डिग्री के टेम्परेचर में यूपी वाले बेहाल हैं। लू से बचने के लिए घर में रहने को कहा गया है और घर पर बिजली नहीं आ रही। यूपी के हर जिले में ऐसा ही हाल है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक और हापुड़ से लेकर रामपुर तक भयंकर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, हंगामा कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस भीषण गर्मी में बिजली की सप्लाई क्यों नहीं कर पा रही। सरकारी दावा है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, तो फिर लोगों को बिजली क्यों नहीं मिल पा रही। सरकार कह रही है कि लू से बचना है तो घर में रहो, और घर में तो बिजली ही नहीं आ रही। यूपी में बिजली एक खोज। यह हंगामा मेरठ में हुआ, वो भी मेयर आवास के बाहर। बिजली नहीं आई तो लोगों ने मेयर का घर ही घेर लिया। खूब हंगामा किया, नारेबाजी हुई। बाद में मेयर भी बाहर आए और अपनी बेचारगी जताने लगे। कहने लगे कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि शहर में बिजली नहीं आ रही। पता होता तो वो इन लोगों के साथ बिजली घर चले जाते।
1: मैं अब मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ यहाँ पे। पहली चाहे कितनी देर लगे, नंबर वन मुझे अभी इस चीज जानकारी मिल रही है बेटे। अगर मुझे ये चीज और पहले मिल जाती, मैं आपके साथ बिजली घर पे होता। मैं वैसे नहीं कह रहा, अभी भी एक बार मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे बड़ा अधिकारी है। एक मिनट बात हो जाए, आपके सामने बात हो।
0: अब जरा कानपुर देहात का हंगामा देख लीजिए। ये मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। भीषण गर्मी में लगातार बिजली कट रही है। मुश्किल से इनके हॉस्टल में 8 से 9 घंटे ही बिजली आ रही है। इससे इनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और ये परेशान भी हो रहे हैं। मजबूरी में ये कॉलेज के गेट के बाहर सड़क पर उतर आए और जमकर गुस्सा फूटा और नारेबाजी की। ये तस्वीरें हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप ये समझ सकें कि लोगों का गुस्सा किस कदर फूट रहा है और लोग बिजली कटौती से कितना परेशान हो चुके हैं। लेकिन ये बिजली कटौती क्यों हो रही है? क्या सरकार के पास यूपी की जनता के लिए बिजली नहीं है? यूपी के बिजली मंत्री ए के शर्मा का दावा है कि पीक आवर्स में यूपी में बिजली की डिमांड बढ़कर 32 से 33 हजार मेगावाट तक पहुँच रही है। रात को 3:19 पर बिजली की उच्चतम मांग में जो बिजली सप्लाई की गई वो 30,276 मेगावाट थी। यानी सरकार खुद मान रही है कि करीब 2 से 3 हजार मेगावाट बिजली की कमी है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार विभिन्न स्रोतों से बिजली ले रही है और बिजली की सप्लाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद बिजली की भीषण कमी बनी हुई है। मंत्री जी पोस्ट कर रहे हैं कि आपका संयम और सहयोग प्रार्थनीय है, लेकिन जनता कैसे संयम कर ले? 45 से 47 डिग्री के तापमान में जब बिजली ही 6 से 8 घंटे आएगी और रात भर गायब रहेगी, तो जनता तो सड़कों पर उतरेगी।
2: उत्तर प्रदेश का हाल आपने समझ लिया। अब गुरुग्राम लिए चलते हैं आपको, जहां रैपिड मेट्रो भी बिजली की मार से परेशान हो गई। बिजली कट गई, गर्मी और बिजली संकट के बीच मेट्रो तक की बिजली कट गई। और इसका असर यह हुआ कि गुरुग्राम रैपिड मेट्रो जहां थी वहीं रह गई, यानी ठप हो गई। यात्री ट्रेन में थे, फंसे रह गए। काफी देर तक मेट्रो रुकी रही। यात्रियों को लगा कि आ जाएगी, चलने लगेगी, लेकिन नहीं हुआ। फिर अंत में क्या हुआ, इमरजेंसी गेट खुलते हैं, यात्री निकलते हैं और फिर रेलिंग के जरिए धीरे धीरे चलते चलते मेट्रो ट्रैक पर चलते हुए स्टेशन तक पहुंचते हैं और वहां से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं।

0: ये गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो है, बिजली चली गई है इसलिए ट्रेन के पहिए ठप हो गए। जिस एलिवेटेड ट्रैक पर रैपिड मेट्रो दौड़ती है उस पर यात्री पैदल चलने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जमीन से करीब 40 फीट ऊपर एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ने वाली मेट्रो की बिजली कटी तो ट्रेन जहां थी वहीं रुक गई। अचानक हुए इस पावर फेलियर से ट्रेनों में अंधेरा छा गया, यात्रियों के बीच अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया। किसी तरह से इमरजेंसी गेट के जरिए यात्रियों को उतारा गया और फिर रेलवे ट्रैक पर चलते हुए सब लोग पास के स्टेशन पहुंचे।
1: इस पूरे रूट पर अंधेरा छा गया था, जो मेट्रो जहां चल रही थी वहीं रुक गई, जिसके चलते यात्रियों में हड़कंप मच गया था।
0: गुरुग्राम के सिकंदरपुर से सेक्टर 56 की ओर जा रही ट्रेन में करीब 60 से 70 यात्री सवार थे। ये गाड़ी DLF फेज 2 पार करके सिकंदरपुर एक्सचेंज की तरफ बढ़ रही थी, तभी ब्लैकआउट हो गया। वहीं सेक्टर 56 से सिकंदरपुर की ओर जा रही मेट्रो में लगभग 180 यात्री थे। बिजली कटी तो सबको पटरियों पर उतरना पड़ा और जैसे तैसे पैदल जाना पड़ा। गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो का ये हाल क्यों हुआ इसे भी जान लीजिए। सेक्टर 72 के पावर सब स्टेशन से रैपिड मेट्रो में बिजली की सप्लाई होती है। शुक्रवार की शाम पिक ओवर में अचानक पावर स्टेशन में आग लग गई। पहले एक ट्रांसफार्मर चला, फिर दूसरे ट्रांसफार्मर तक फैल गई।
2: करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको, 220 केवी का ऑयल लीकेज उधर हुई। जो ऑपरेटर चेक करता है रूटीन में, उसने सडनली जैसे भाई वो लीक कर रहा है तो इसमें बंद कर दो, आग ना लग जाए, उसको ब्रेकर काट लेगा। इन मीन टाइम वो ब्लास्ट हो गया और आग फायर पकड़ी इसको। वो हुआ तो इसे फॉल्ट इतना बड़ा ट्रैवल किया कि जो सिटी के कोलर्स होते हैं फटे और चारों तरफ फैले ना, बगल वाले उसमें भी उसने मतलब हमारा फॉल्ट क्रिएट कर दिया और इससे पूरा ब्लैकआउट हो गया था।
0: गुरुग्राम के बिजली विभाग की माने तो गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर फूक गया, जिसकी वजह से मेट्रो की पावर सप्लाई प्रभावित हुई। विभाग ने दावा किया कि बिजली गुल होने के कुछ ही घंटों के अंदर वैकल्पिक उपाय कर लिया गया, सप्लाई चालू कर दी गई। नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम आज तक। और इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, जिस जगह त्रिचा शर्मा की मौत हुई जिसकी जांच अब CBI कर रही है, उस जगह की तस्वीरें भी आई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जिस जगह त्रिशा की जान गई उस जगह की कुछ तस्वीरें, ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो कई तरह के सवाल खड़े करती है। और सबसे बड़ी बात, अब CBI इस पूरे मामले की जांच करेगी और यही वो जगह है जिसके बारे में अब CBI जांच करेगी। रवीश हमारे साथ जुड़े हुए। रवीश, इस तस्वीर के बारे में जरा और बताइए।
3: देखिए, आज तक ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जनता तक पहुंचाई है, दर्शकों तक। यही वो जगह ही है और यही जगह नहीं, इसमें वो फंदा भी आपको दिख जाएगा जिससे त्रिशा ने फांसी लगाई थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक ने हासिल की है और जो इतने दिनों से लगातार सीन ऑफ क्राइम जो बंद पड़ा हुआ है, पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन में उसको ले रही है, इस तस्वीर तक अब आज तक पहुंच गया है। त्रिशा का आखिरी पल जो है वो इसी जगह पे बीता था। छत पे लगा हुआ ये सोलर पैनल के नीचे का वही लोहे का रॉड है जिसमें अगर आप देखें तो जिमनास्ट का बेल्ट टंगा हुआ है और उसी पे एक फंदा भी लटका हुआ है जो आप बेल्ट देख रहे हैं, जिस बेल्ट से त्रिशा ने फांसी लगाई है। तो यही वो जगह है और यही वो फंदा है जिससे त्रिशा ने 12 मई को कथित रूप से फांसी लगाई थी। और ये तस्वीरें आज तक पर दर्शक अपनी एक्सक्लूसिव इस समय देख रहे हैं और ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी है क्योंकि जांच एजेंसियों के साथ की थी। अब पुलिस के पास तो इन्वेस्टिगेशन है ही, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने CBI को भी अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भेजी है इस जांच के लिए, तो जाहिर सी बात है CBI के लिए भी ये तस्वीर अब बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। और ये बताता है कि आखिरी लम्हे में किस तरीके से त्रिशा जो है वो यहाँ पे तड़पी होगी, क्योंकि जो निशान उसके गले पे पाए गए हैं वो इसी बेल्ट के हैं जो आपको इस जिमनास्ट बेल्ट के साथ लटका हुआ नीचे की तरफ काले रंग का दिखता है।
0: बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आज तक की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
8: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now. Sokudo.
9: बस दो हजार
10: इधर स्कोर करेगा तो इत्तेफाक इनाम जीतेगा और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो एक लाख तक जीतेगा।
11: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर क्रेडिट स्कोर देखो और एक लाख तक जीतो।
12: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
13: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
14: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
12: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
15: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
13: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
12: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
4: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Monte Carlo, it's the way you make me feel.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
0: In association.
3: बस दो दो हजार
4: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा
5: और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो एक लाख तक जीतेगा.
6: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और एक लाख तक जीतो.
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

सामने आई त्रिशा शर्मा की मौत वाली जगह की तस्वीर, सीबीआई ने सील किया क्राइम सीन। जल्द दोबारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई। पुलिस के शिकंजे में पति समर्थ सिंह से पूछताछ।

को एक बार फिर लगा महंगाई का झटका। 9 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 87 पैसे तो डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। सीएनजी भी महंगी। यूपी में भीषण गर्मी में पावर कट के आक्रोश पर चढ़ा सियासी पारा। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार का महाविद्युत आपदा बताया। यूपी के ऊर्जा मंत्री ने कहा, आईने में खुद को देखो। चार दिन के भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री, कोलकाता में मदर टेरेसा हाउस का किया दौरा। आगरा, जयपुर और दिल्ली भी जाएंगे मार्को रूबियो। क्वाड साझेदारी, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा। और ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश खुलासा। अमेरिकी मीडिया, न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा, ईरान समर्थित आतंकी मोहम्मद बकर के पास मिले इवांका के घर के ब्लूप्रिंट।

ट्रिशा मौत केस में बड़ा अपडेट, जहां ट्रिशा की हुई थी मौत उस जगह की तस्वीर सामने आई। भोपाल में ट्रिशा शर्मा केस में मुख्य आरोपित पति समर्थ सिंह पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चाबुक चला, वकालत का लाइसेंस रद्द। ट्रिशा शर्मा मौत मामले में नया ट्विस्ट, जबलपुर कोर्ट में मुख्य आरोपित पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, सरेंडर करने पहुंचा था। ट्रिशा शर्मा के शव का दूसरी बार होगा पोस्टमार्टम, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इजाजत दी, अब सीबीआई करेगी जांच। सास गिरीबाला की जमानत रद्द करने की याचिका पर 25 मई को होगी सुनवाई। वैश्विक तनाव के चलते तेल बाजार में उथल पुथल, भारत में पिछले 10 दिनों में 5 रुपए बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली से मुंबई तक तेल के दामों के साथ साथ सीएनजी के दाम में भी उछाल, 1 रुपए प्रति किलो बढ़े। 86 पैसे की बढ़त के साथ 99.51 रुपए हुआ पेट्रोल, 91 पैसा महंगा होगा डीजल, 92.49 रुपए प्रति लीटर। आतंकी हमजा बुरहान के जनाजे में पहुंचा आतंकी संगठन का टॉप मोस्ट आतंकी, इस्लामाबाद में दफनाया गया आतंकी हमजा बुरहान। अलबदर का चीफ वक्त जमीन खान भी पहुंचा, आतंकी संगठन अलबदर के चीफ आतंकी वक्त जमीन खान की सुरक्षा में AK-47 दिखे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की कथित साजिश का बड़ा खुलासा। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक ईरान से बढ़ते आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक आरोपी ने इवांका की हत्या की योजना बनाई थी। आरोपी IRGC कमांडर कासम सुलेमानी के मौत का बदला लेना चाहता था। सूत्रों का दावा कि आतंकी ने इवांका की हत्या करने की कसम खाई थी और उसके पास फ्लोरिडा स्थित इवांका के घर का नक्शा था। 4 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कोलकाता पहुंचे, अब दिल्ली आगरा और जयपुर भी जाएंगे। दोपहर 2 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे मार्को रूबियो, भारत अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा और क्वाड में भारत अमेरिका व्यापार पर अहम चर्चा। भारत के साथ ऊर्जा अमेरिका सहयोग बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी में है और दोनों देशों के बीच इसे लेकर अहम बैठक। व्यापार ऊर्जा रक्षा सहयोग पर भारत अमेरिका में मंथन, वैश्विक तनाव के बीच ऊर्जा और अहम संसाधनों पर व्यापक चर्चा। और मुस्त तनाव के बीच भारत अमेरिका ऊर्जा साझेदारी पर बड़ा फोकस, 26 मई को दिल्ली में होने वाली क्वाड बैठक में भी शामिल होंगे अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो। आज से 3 दिनों के चीन दौरे पर पाक पीएम शहबाज शरीफ, चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक संबंध की वर्षगांठ। बीजिंग के मित्रता समारोह में शिरकत करेंगे पाक पीएम, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और पीएम ली कियांग के साथ पाक पीएम की बैठक। होंगझोउ B2B निवेश सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान चीन के रिश्तों पर जोर। अमेरिका ईरान के बीच शांतिवार्ता में मध्यस्थता का मुख्य देश बना पाकिस्तान, पाक सेना प्रमुख पहुंचे तेहरान, शांति बहाली पर बातचीत जारी। शांति प्रस्ताव पर बातचीत में खाड़ी देश भी शामिल, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की भी अपना रुख रख रहे हैं। पीएम मोदी पर अजय राय के अपशब्द कहने पर मचा सियासी घमासान, सीएम योगी भड़के, बोले ऐसी टिप्पणी कांग्रेस की राजनीतिक कुसंस्कार दिखाती है। पीएम पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोला, बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा यह समाज और लोकतंत्र के लिए घातक, अजय राय अपराधी। अभद्र टिप्पणी पर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने सफाई दी, कहा यह तो AI जनरेटेड वीडियो है। मऊ दौरे के दौरान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम शिवेंदु का पहला दिल्ली दौरा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के अलावा अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। आईपैक रेड केस में ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई टली, अब 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले विक्रम को मिली CRPF सुरक्षा, लगातार मिल रही थी जान से मारने की धमकी। 2027 यूपी चुनाव से पहले अखिलेश के संदेश के सियासत संकेत, बोले सभी 403 सीटों पर हम मुस्तैद, साथ आने वालों का फायदा। अखिलेश यादव की सीट नहीं जीत की बात वाले बयान पर कांग्रेस ने कहा इंडिया गठबंधन में सब ठीक। देवरिया को सीएम योगी की 655 करोड़ की सौगात, 19 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा बोले गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी गैरकानूनी है, उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली में 28 मई को बकरीद के मौके पर रहेंगे बंद सभी सरकारी दफ्तर, केंद्र सरकार ने छुट्टी की तारीख में बदलाव किया। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। दिल्ली दंगा केस में साजिश के आरोपित उमर खालिद को हाईकोर्ट से राहत, मां की सर्जरी के लिए 3 दिन की अंतरिम जमानत को मंजूरी। दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में 20 मई को मां और बेटे की हत्या के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने आरोपी सौरभ को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। नीट परीक्षा केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन, फिजिक्स पेपर लीक के मुख्य आरोपी मनीषा हवलदार गिरफ्तार।
महाराष्ट्र के नासिक टीसीएस केस में चार्जशीट दाखिल, निदा खान सहित चार आरोपियों का नाम। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के बाद हिंसा मामले में 19 गिरफ्तार। मुंबई में पहली बार बांद्रा तालाब का डी वाटरिंग शुरू हुआ, बीएमसी ने स्वामी विवेकानंद झील के पुनर्जीवन का काम तेज किया। रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2026 के लिए रिकॉर्ड 2,87,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने की घोषणा। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं को साथ में हल्की बारिश, तापमान में जबरदस्त गिरावट। दिल्ली समेत उत्तर भारत में लगातार बढ़ रहा तापमान, कई राज्यों में 40 डिग्री के पार पहुंचा। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, 14 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी। यूपी के कई जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, आगरा और झांसी समेत कई जिलों के लिए भीषण गर्मी। पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट। मध्य प्रदेश के 37 जिलों में लू का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों से दोपहर में घर से बाहर न निकलने की अपील की है। केरल, तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के मौसम सिस्टम में मॉनसून के करीब आने पर रुक रुक कर बारिश। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। हिमाचल में भी बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में गरज के साथ बारिश की चेतावनी। अहमदाबाद में गर्मी के चलते बड़े सब्जियों के दाम, बाजारों में सन्नाटा। कश्मीर के दो जिला और आसपास के इलाकों में बेमौसम बर्फबारी, आईएमडी के अगले 48 घंटे आंधी तूफान के आसार। जम्मू में धीरे धीरे सूरज दिख रहा है, अपना रुद्र रूप दिखा रहा है, गर्म हवाओं के साथ पारा बढ़ रहा है। गाजियाबाद में 23 मई से बंद रहेंगे सभी स्कूल, बच्चों को लू से बचाने के लिए डीएम के सख्त निर्देश। गुरुग्राम में बड़ा बिजली संकट, सेक्टर 72 के 220 केवीए बिजली घर का मुख्य ट्रांसफार्मर फटने से 7 बिजली घर ठप हो गए। विदर्भ की ब्रह्मभूमि में 47.2 डिग्री पहुंचा पारा, 25 मई तक कई जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट। वलसाड़ में बदला मौसम, कई इलाकों में जोरदार बारिश। प्रयागराज में गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री पर पहुंचा। अयोध्या में भीषण गर्मी के चलते घटी राम भक्तों की संख्या, सड़कों पर सन्नाटा। देश के 50 शहरों में यूपी के 26 शहर सबसे ज्यादा गर्म, लखनऊ में भी गर्म शहरों में शामिल। चंडीगढ़ में भी गर्मी के चलते सड़कों पर सन्नाटा, पर्यटकों की संख्या घट गई। बिहार के कटिहार में छात्रा के साथ छेड़खानी के बाद दो समुदायों में पत्थरबाजी, मौके पर डीएम एसपी ने पहुंचकर मामला शांत कराया। रामपुर माहौल के बाद मौके पर भारी पुलिस की तैनाती, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। अहमदाबाद में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 50 लोगों को निकाला गया सुरक्षित बाहर। अहमदाबाद में एक इमारत में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। बिहार में शराबबंदी के बीच नशीले इंजेक्शन की तस्करी जारी, पटना में 2000 इंजेक्शन के साथ आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में गंदगी के बीच चल रही आइसक्रीम फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की छापेमारी। अमृतसर के खालसा कॉलेज में कुत्तों से क्रूरता का आरोप, वीडियो वायरल होने पर छात्रों और एनिमल एक्टिविस्टों ने प्रदर्शन किया। शराबबंदी वाले बिहार में 50 लाख की जब्त शराब पर चला बुलडोजर, गोपालगंज में डीएम के आदेश पर 6,471 लीटर शराब को नष्ट किया गया। बाराबंकी में बिजली कटने पर घर के बाहर सड़क किनारे सो रहे लोगों को डंपर ने कुचला, परिवार के 4 लोगों की मौत। सोनप्रयाग में बोल्डर गिरने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, हादसे में एक शख्स की जान गई। दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आई कई दुकानें। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, आसमान को छूती नजर आई आग की लपटें, दुकानदारों को बहुत नुकसान हुआ। खबर मिली तो दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया, जांच जारी है। गुरुग्राम के सेक्टर 72 के सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर जल गया, परेशानी लोगों की बढ़ गई। ट्रांसफार्मर जलने से रैपिड मेट्रो सेवा भी बाधित हुई, कई इलाकों में अंधेरा छाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस का ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान, एक तस्कर को अवैध कमर्शियल संपत्ति को ध्वस्त किया। हरियाणा के
महेंद्रगढ़ में एक शख्स ने अपनी बुजुर्ग मां की पीट पीट कर हत्या की, बाद में खुद भी खुदकुशी कर ली। यूपी के कन्नौज में भीषण सड़क हादसा हुआ, कंटेनर की टक्कर से पलटा ट्रैक्टर, बाइक सवार समेत तीन की मौत। बेगूसराय में पुलिस ने की कार में धक्का लगने के बाद कार सवार महिला की दबंग गई, पिकअप चालक का कॉलर पकड़कर सरेआम पीटा। बेगूसराय में दबंगों का आतंक, जमीन विवाद के कारण घर में घुसकर परिवार से पिटाई। ईंधन संरक्षण की दिशा में सीएम देवेंद्र फडणवीस की शानदार पहल, मुंबई से शिरडी जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल। राजकोट में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कहा देश में विकास की गति लगातार बढ़ रही है। नैनीताल में 21वें राज्यपाल गोल्फ कप टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ, कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं गोल्फ में। देहरादून में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैराथन का आयोजन, सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट, काशी की कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच, 3D इमेज जारी। लंबे इंतजार के बाद ऐश्वर्या राय पहुंची कान फिल्म फेस्टिवल, रेड कार्पेट पर ग्लैमर। डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिक ब्लू मरमेड राउंड में ऐश्वर्या राय दिखाई दी, पेप्सिको स्माइल करते हुए हैंड वेव करती दिखी ऐश्वर्या। रामचरण की फिल्म बेदी के नए गाने हल्ला लालो का प्रोमो रिलीज हो गया। कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म नाग जिला में डबल रोल में आएंगे नजर, खलनायक के किरदार निभाएंगे विलेन का भी किरदार। आईपीएल में आज लखनऊ और पंजाब की भिड़ंत, इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने दोनों टीमें। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 7 मुकाबलों में कांटे की टक्कर, जिसमें पंजाब को 4, एलएसजी को 3 मुकाबलों में जीत मिली। प्लेऑफ के दौर से बाहर हो चुकी है लखनऊ की टीम, हालांकि अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ इस सत्र को खत्म करना चाहेगी। पंजाब को प्लेऑफ की रेस में अपनी दावेदारी बनाए रखने के लिए इस मैच में जीत जरूरी है, नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए एक बड़े अंतर से दर्ज करनी होगी जीत। पिछले कुछ मैचों से खराब गेंदबाजी से जूझ रही पंजाब की टीम इस बार अर्शदीप और चहल पर होंगी सबकी निगाहें।

अमेरिका में जो हलचल मची हुई है उसके बारे में बात करते हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को मारने की साजिश का खुलासा हुआ। IRGC के ट्रेंड आतंकी के पास से, जो IRGC से ट्रेंड आतंकी है, उसके पास से इवांका के घर के ब्लूप्रिंट बरामद हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर जंग के हालात बन गए हैं, जिसको देखते हुए ट्रंप ने अपने बेटे जूनियर ट्रंप की शादी में जाने का प्लान रद्द कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान को लेकर बड़ा फैसला जल्द ही लिया जा सकता है, अब वो सीज फायर को लेकर हो, शांति को लेकर हो या युद्ध को लेकर हो। वहीं अमेरिका में टीम ट्रंप को बड़ा झटका लगा है।

0: ईरान में विध्वंस के लिए हमले का ऐलान हो सकता है। ठीक उसी वक्त ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश रची गई। इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई और सबसे चौंकाने वाली बात ये साजिश की कड़ी सीधे ईरान से जोड़ती दिख रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहे आतंकी को पकड़ लिया है। उसकी पहचान 32 साल की मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने गुरु और ईरानी सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था और इसके लिए IRGC से ट्रेनिंग पाए इस आतंकी ने पूरा खाका तैयार कर लिया था। आतंकी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी कासिम सुलेमानी को अपना गुरु मानता था और तभी से ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में था। आरोपी अल सादी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार, खासकर उनकी बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की कसम खाई थी। जांच के दौरान सुरक्षा बलों को अल सादी के पास से फ्लोरिडा में मौजूद इवांका ट्रंप के आलिशान घर का पूरा ब्लूप्रिंट भी बरामद हुआ है। वो काफी समय से उनके घर की रेखी कर रहा था। वॉशिंगटन में इराकी दूतावास के पूर्व डिप्टी मिलिट्री अटैचे एंटी फाद कनबर ने इस आतंकी के इरादों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अल सादी लोगों से कहता फिर रहा था कि हमें इवांका ट्रंप को मारना होगा। वो कहता था कि हमें ट्रंप के पूरे घर को उसी तरह जलाकर खाक कर देना चाहिए जिस तरह उसने कासिम सुलेमानी के घर को तबाह किया था। यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है, तफ्तीश जारी है। ये गिरफ्तारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके सीधे निशाने पर ट्रंप का परिवार आ गया है। आज तक ब्यूरो।
1: युवाओं के बेरोजगार को लेकर पीएम मोदी की पहल की बात करते हैं। देश भर में आज 19वां रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है और इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। कार्यक्रम का आयोजन देश के 47 अलग अलग स्थानों पर एक साथ किया जा रहा है, ये शुरू हो चुका है, जहां चयनित युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी। अब इन नियुक्तियों में रेल, गृह, स्वास्थ्य, वित्त मंत्रालय समेत कई विभाग भी शामिल हैं।
2: उनको एंगेज कर सके, नियुक्ति के बाद अपनी जिम्मेवारी हेतु अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए मिशन कर्म योगी प्रारंभ किया गया है, जो अब एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी का रूप धारण कर चुका है। इस मिशन कर्म योगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: जल्द लौटेंगे इस खबर पर, लेकिन यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।

0: you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
3: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
5: इसमें माइक्रो फाइबर है।
3: माइक्रो फाइबर यानी
5: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
3: हमारे सीमेंट में नहीं है?
5: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
6: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
7: The taste of success.
8: बस दो हजार
9: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
10: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।

सामने आई त्रिशा शर्मा की मौत वाली जगह की तस्वीर, क्राइम सीन सील, जल्द दोबारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई, पुलिस के शिकंजे में पति समर्थ सिंह से पूछताछ। देश के लोगों को लगा एक बार फिर महंगाई का झटका, 9 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 87 पैसे तो डीजल 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ, सीएनजी भी महंगी। यूपी में भीषण गर्मी में पावर कट के आक्रोश पर चढ़ा सियासी पारा, अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को बताया महाविद्युत आपदा, यूपी के ऊर्जा मंत्री ने कहा आईने में खुद को देखो। चार दिन के भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री, कोलकाता में मदर टेरेसा हाउस का किया दौरा, आगरा जयपुर और दिल्ली भी जाएंगे मार्को रूबियो, क्वाड साझेदारी, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा। और ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का खुलासा, अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा, ईरान समर्थित आतंकी मोहम्मद बकर के पास मिले इवांका के घर के ब्लूप्रिंट।

0: और एक बार फिर से सुनते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को।
1: नियुक्ति पत्र मिला है, आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है, अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई, और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान, अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं, तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। ASML, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और AI पार्टनरशिप्स, UAE का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। UAE और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूर पड़ती है, यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे साथियों। हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपये 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा MRO इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो PLI स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं, उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं, तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इस कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है, और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। IITs को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो Tier 2 और Tier 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to... But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.

0: समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं पे संगठन को बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके। समाजवादी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में मजबूत है, पीडीए मजबूत है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है, इसलिए आने वाले समय में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
1: समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही दल 403 की 403 विधानसभाओं पर अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चाहे किसी का चुनाव चिन्ह कोई भी हो वहां से लड़े तो उसे दूसरे दल के संगठन का लाभ मिल सके। निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

पीएम मोदी ने रोजगार मेले में 47 शहरों के 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा विकास के भागीदार हैं युवा, विदेशी निवेश से बढ़ेंगी नौकरियां, 5 देशों के दौरे का जिक्र। यूपी में भीषण गर्मी में पावर कट के आक्रोश पर चढ़ा सियासी पारा, अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बोला हमला, महाविद्युत आपदा बताया, योगी के मंत्री बोले आईने में खुद को देखें अखिलेश। देश के लोगों को एक बार फिर लगा महंगाई का झटका, 9 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल में 87 पैसे तो डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, सीएनजी भी 1 रुपए महंगा। 4 दिन के भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, कोलकाता में मदर टेरेसा हाउस का किया दौरा, आज पीएम मोदी से भी मिलेंगे, क्वाड साझेदारी, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा। और सामने आई त्रिशा शर्मा की मौत वाली जगह की तस्वीर, क्राइम सीन सील्स, पुलिस के शिकंजे में पति समर्थ सिंह से पूछताछ, आज कोर्ट में पेशी, जल्द दोबारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई।

0: भाई साहब इतने परेशान है, सारे टैक्सी वाले स्टेशन पे ही सो रहे हैं और पार्किंग के पैसा फ्री में दे रहे हैं और काम ना निकल कतई भी।
1: इधर तेल भी महंगा है, पेट्रोल डीजल पे भी पैसे बढ़ चुके हैं, तो इन फ्रिजों पे भी फर्क पड़ रहा है। फलों पे
2: 2 रुपए किलो प्रयाग वालों ने बढ़ा दिया, मदर डेयरी ने बढ़ा दिया, अमूल ने बढ़ा दिया, तो जब दूध के 2 रुपए बढ़ गए तो आप खुद देखो ना क्वांटिटी 100 किलो में कितने का फर्क आ गया, 200 रुपए का फर्क आ गया ना।
3: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे।
4: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये विशेष एपिसोड इसलिए क्योंकि युद्ध की वजह से, जिस तरह की स्थिति हम मिडिल ईस्ट के युद्ध की वजह से देख रहे हैं पूरे विश्व में, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, उसी के साथ सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त भारत के सामने ये है कि धीरे धीरे पहले कीमतें बढ़ाई गई, फिर 90 पैसे कीमतें बढ़ाई गई पेट्रोल डीजल की, ऐसे में आम आदमी तक मार पहुंच रही है, माल ढुलाई बढ़ेगा, उसकी वजह से अगर आने वाले वक्त में महंगाई दर में भी हम जबरदस्त इजाफा देखें तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। खुदरा महंगाई दर 3.4 के आसपास जरूर है, लेकिन 8.3 पर होलसेल महंगाई दर पहुंच गया, चैलेंज बड़ा है। रुपया अगर आप देखिए तो डॉलर के मुकाबले वो भी जिस तरह से गिर रहा है, टूट रहा है, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कोविड जैसे हालात हैं और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि शायद हमारे 12 साल का काम खत्म हो जाएगा, जो हमने 12 साल में प्रोग्रेस किया था, और ऐसा पीएम ने पहले कभी नहीं कहा था किसी भी स्थिति में, तो ये भारत के लिए चिंता की बात है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री को गद्दार कहा है तमाम मुद्दों पर, तो वो ये कह रहे हैं कि देश के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप पर कैसी मार और इसके इर्द गिर्द हो रही सियासत के क्या मायने। प्रदीप भंडारी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, हमारे साथ माधव आनंद महासचिव आरएलएम के जुड़ रहे हैं और अश्विनी महाजन जी अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इधर आलोक शर्मा जी के साथ आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं और अखिल स्वामी जी अर्थशास्त्री के तौर पर, ताकि आप समझ पाएं कि इस वक्त पे हमें क्या करना है। भाई इस पूरी लड़ाई और इधर उधर की जो हाई पिच डिबेट होती है उसमें ये लोग नहीं बताते कि हमें अब क्या करना है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि पश्चिम एशिया के युद्ध से बने हालात का असर क्या हो रहा है। टैक्सी और ऑटो यूनियन किराए में फौरन बढ़ोतरी की मांग पर 3 दिनों की हड़ताल पर है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं।
0: भाई साहब इतने परेशान हैं, सारे टैक्सी वाले स्टेशन पे ही सो रहे हैं और पार्किंग के पैसा फ्री में दे रहे हैं और काम ना निकल कतई भी। इतनी मट्टी पलित हो रही, देखियो इनकी शिकल देखो, एक बार घुमाओ नहीं, बहुत ज्यादा मट्टी पलित हो रही है। जहां गाड़ी पहले 1000 रुपए में जा रही है, 600 500 600 500 इतनी मट्टी पलित हो रही है। सीएनजी बढ़ा रहे हैं, डीजल बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, पर भाई रेट नहीं बढ़ा रहे।
4: भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तकरीबन 4% बढ़ी हैं। इसका असर लगभग हर क्षेत्र पर हो रहा है। मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि अगले महीने यानी जून से कारों के दाम 30,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ने की वजह से कंपनी कारों के दाम बढ़ाने के लिए मजबूर है। उधर दिल्ली और केरल में दूध के दाम बढ़ने के बाद बिहार में सुधा दूध और राजस्थान में सरस दूध के दाम भी 2-2 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। देश भर की सब्जी मंडियां, फल मंडियां पहले से महंगी होने लगी हैं।
1: इधर तेल भी महंगा है, पेट्रोल डीजल पे भी पैसे बढ़ चुके हैं, तो इन फ्रिजों पे भी फर्क पड़ रहा है फलों पे। और कीवी जो है पहले 100 रुपए की 4 होती थी, अब कीवी जो है जब से ईरान में लड़ाई हुई है अब से 150 रुपए पीस, 60 रुपए पीस चल रहा है, इसलिए उस पर भी कीवी पे और चीजों फलों पे भी असर पड़ा है।
5: सर पहले दही हम 100 रुपए किलो बेचते थे, आदमी आधा किलो 50 के लिए जाता था, अभी भी वो 50 की, तो कारोबार तो डाउन होता जा रहा है। वजह क्या है कि ईंधन बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, कमर्शियल हम यूज करते हैं दुकान पे, हमारे को कमर्शियल यूज करने की वो है तो हम कमर्शियल यूज करते हैं, तो कमर्शियल के रेट बढ़ गए और बिल भी नहीं रहा।
4: चढ़ रही महंगाई के बीच सियासत का पारा भी चढ़ रहा। असम में नई विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल के भाषण में बढ़ती कीमतों का जिक्र नहीं होने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने वॉकआउट करके प्रदर्शन किया। इस बीच जब आर्थिक तूफान आने की आशंका में सियासत जमकर हो रही है तो आमतौर पर बीजेपी के विरोध में रहने वाले एक्टर कमल हासन ने बचत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन किया है. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की भी मांग की है.
6: एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज आस्क्ड अस टू सेव एनर्जी ओवर द नेक्स्ट ईयर. इन मोमेंट्स लाइक दिस नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट राइज अबव पार्टी पॉलिटिक्स. As Mr. Vajpayee ji famously said, governments will come and go, but the nation shall remain.
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों में वैश्विक संकट से पड़े असर का समाधान तलाशते नजर आ रहे हैं. साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडुलिडिस के साथ मुलाकात में उन्होंने ग्लोबल संस्थाओं के रिफॉर्म पर जोर दिया.
3: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे. हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो है.
4: पांच देशों के दौरे के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की तस्वीर भी प्रधानमंत्री ने साझा की, जिसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया गया. आज तक ब्यूरो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल आप ही से है प्रदीप भंडारी जी. अब सवाल यह है कि मुश्किल स्थिति तो आ गई है, वजह युद्ध हो कुछ भी हो, लेकिन क्या हमने तैयारी में या फिर जो कटौतियां करनी थी ऑस्टेरिटी मेजर्स उसमें देरी कर दी, ये प्रश्न आज भी उतना ही बड़ा बना हुआ है. दूसरी तरफ जिस तरह से कीमतें बढ़ रही है, आपके पास क्या काउंटर मेजर है, आपका रोड मैप क्या है, देश को बताइए.
7: देखिए अंजना जी, मैं रोडमैप बताऊं उसके पहले मैं कहना चाहता हूं आज काफी व्यथित हूं कि देश की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने 140 करोड़ के रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गद्दार कहा है. इससे स्पष्ट होता है कि सॉफ्ट सपोर्ट ऑन पाकिस्तानी टेरर, एमरजेंसी लागू करने वाली कांग्रेस पार्टी, सीआईए से पैसा लेने वाली कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है, कोई उनके पास कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं. और राहुल ने पहले कहा था वो इंडियन स्टेट को लड़ना चाहते हैं, आज स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी का जो रिमोट कंट्रोल है वो प्रो पाक फोर्सेज और एंटी इंडिया एलिमेंट्स में. अब मैं आ जाता हूं तथ्यों पर. अगर मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात करूं, ग्लोबली अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें, एवरेज मेरे पास पूरा डेटा है, हर कंट्री में इन्फ्लेशन 25% से 22% के बीच में बढ़ा है, कोई भी मेजर इकोनॉमी. भारत में पेट्रोल और डीजल एवरेज 4.2% से बढ़ा है. अभी IMF की चीफ ने कहा है कि इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी में मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स को हैंडल करने का काम भारत का है. 80 बिलियन डॉलर के हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, 5% हमारा एवरेज इन्फ्लेशन है, 88 बिलियन डॉलर के FDI है, 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए और हिंदुस्तान टॉप मोस्ट इक्वल सोसाइटीज में एज पर वर्ल्ड बैंक जीनी कोफिशिएंट में. समस्या जरूर ग्लोबली है, परंतु हमारे पास वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और इस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर हम सबको कुछ ना कुछ कट की जो बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, अगर हम करेंगे तो हम जैसे कोविड काल को हमने पास किया था, हम इस काल को भी पास करेंगे, भले वो सप्लाई साइड हो गया या डिमांड साइड हो गया.
4: चलिए जवाब दीजिए आशुतोष जी, वो कह रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है. अब ये भी एक सच्चाई है ना कि 800-900 किलो टन सोना भारतीय खरीद लेते हैं एक साल में, तो अगर इस तरह के ऑस्टेरिटी मेजर्स की जरूरत है, ये युद्ध भारत ने तो शुरू किया नहीं है.
8: नहीं, लेकिन ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ईरान युद्ध की वजह से, असली दिक्कत इस बात को लेकर है. लेकिन एक बात पे सहमति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, एक बात पे सहमत है कि देश पे बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, इसमें तो दोनों आदमी सहमत हैं. अब ये क्यों है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए दो चीजें हैं. पहली बात, आपका जो FII है, जो जिसे कहते हैं आपकी ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो पिछले 5 महीने में 2,00,000 करोड़ रुपए बाहर गया. आप कह सकते हैं ईरान युद्ध की वजह से हुआ, लेकिन अगर आप डेटा उठा के देख लें 2025 में 1,66,000 करोड़ क्यों गया, 2022 में 1,30,000 करोड़ क्यों बाहर गया, 2021 में 1,34,000 करोड़ बाहर क्यों गया, इसका मतलब जो ट्रेंड था वो ट्रेंड आउटफ्लो का बढ़ रहा था लगातार और ईरान वार ने उसमें दिक्कत पैदा कर दी. अब दूसरी बात, अगर आप देखें हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल जो हमारा GDP कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 3.54 करोड़ का है, मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.98% का है. सवाल क्या है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो रिकॉर्ड तेजी से बढ़ता जा रहा है. इस वक्त 700 क्या कहते हैं 7,750 बिलियन डॉलर का 7% के 17% की ग्रोथ पिछले साल दिखाई पड़ी उसमें, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो स्टेबल है बल्कि नीचे जा रहा है, 442 बिलियन डॉलर। अगर आपका इंपोर्ट बढ़ता जाएगा, अगर आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है इकॉनमी में इंबैलेंस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इकॉनमी के अंदर। अगर आप दो छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, आपका जो गोल्ड इंपोर्ट है, गोल्ड इंपोर्ट 82% की गति से बढ़ा है अप्रैल के महीने में, 82%।
4: तो गोल्ड का खान कहां से बना ले इंडिया में?
8: क्यों खरीद रहे लोग? अब इस सवाल का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना।
4: खरीद रहे हैं लोग,
8: इसलिए मैं क्योंकि लोग गोल्ड खरीद रहे हैं क्योंकि उनको मार्केट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर गोल्ड तो दो कारणों से खरीदा जाता है, एक तो इसलिए कि भाई हम ज्वेलरी पसंद करने वाले लोग हैं, लेकिन जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती तो लोगों को लगता है जब हमारी दिक्कत पैदा होगी, आर्थिक संकट होगा, तो गोल्ड होगा जो उनको बचाएगा। ये स्थिति जब आपने पैदा की है,
4: ठीक है, ये इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई लोगों का विश्वास नहीं रहा, उनको लगा कि भाई सोना ही हमको सुरक्षित रहेगा भविष्य के लिए, तब खरीद में बढ़ोतरी।
7: देखिए, पहली बात तो आशुतोष जी ने कहा कि एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, गलत है। एक्सपोर्ट्स 80 बिलियन डॉलर क्रॉस हो चुके हैं और पिछले महीने के कंपेरिजन में 4% बढ़े। दूसरा, इन्होंने कहा कि गोल्ड स्पेसिफिक हिंदुस्तान की चीज नहीं है, ग्लोबली गोल्ड की डिमांड पिछले 10 सालों में सबसे हाइएस्ट है, हर कंट्री के अंदर हाइएस्ट है, ये हर सेंट्रल बैंक के अंदर जो गोल्ड है वो 80% से ऑन एन एवरेज किया है। तो ये इंडिया स्पेसिफिक बात नहीं है। जरूर इंडिया की इंपोर्ट इसलिए बढ़ी है क्योंकि आप ये मैप से समझ सकते हैं, पहले हमारे यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो स्थिति थी, ये देश का इलेक्ट्रिसिटी मैप था जहां हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हर कोने पे नहीं पहुंचाए। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की गति और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हर कोने पे पहुंच चुकी है, तो इंडिया की एनर्जी डिमांड बढ़ी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है, जैसे जो गोल्ड एक नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है, उसको अगर हम कम करें, तो एसेंशियल इंपोर्ट जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जरूरत है वो हम लोग को लेना पड़ेगा। पर बड़ी बात क्या, मैं वापस से कहूंगा, करंट अकाउंट डेफिसिट अंजना जी 2% से कम है, यूपीए के समय 6% था, ट्विन डेफिसिट की बात करी थी, फिस्कल डेफिसिट 5-5.5% यूपीए के समय 10-15% के बीच में था, पेट्रोल पंप 8 बजे के बाद बंद करने की बात कर रहे थे। मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूं कि ये क्राइसिस अगर आगे भी चलता है, हमारे पास वो मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स झेलने की स्टेबिलिटी है, साथ में ये जरूर है कि अगर ग्लोबली समस्या होगी तो भारत में भी आएगी।
4: चालाकी करते हैं ना, कभी देखिए 90 पैसे बढ़ा दिया, इसमें आदमी प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता, फिर कभी 3 रुपए बढ़ा दिया, ये क्या तरीका बढ़ाने का? इसमें
7: 2022 से लेके 26 के बीच में एक भी बार पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, यूपीए ने ऑन एवरेज 154% से दाम बढ़ाए, हमने उसका आधा भी नहीं बढ़ाया। हम तो चाह ही रहे कि कम से कम बढ़े, जिससे कि हम आम आदमी पे उसकी लीस्ट इम्पैक्ट दे सके। इसका तो आपको और आशुतोष जी को स्वागत करना चाहिए। ये मैं
4: छोटा सा जवाब अखिल जी का,
8: थोड़ा जवाब उन्होंने लंबा दिया, थोड़ा
4: अच्छा जल्दी
8: देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा हमारे देश के अंदर। हाँ। लेकिन जब 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब हम कितने परसेंट इंपोर्ट करते थे? 80%। अगर हमने मेजर्स लिए होते तो 90% नहीं बढ़ता, ये फेलियर है। फेलियर क्यों है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेटा साफ तौर पर कहता है कि क्रूड ऑयल लगातार 6 महीने श्रिंक किया है, उसका प्रोडक्शन श्रिंक किया है, और पिछले महीने -5.2%। नेचुरल गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है लगातार 20वें महीने प्रोडक्शन में 5% का है। रिफाइनरी प्रोडक्ट श्रिंक किया है पिछले 6 महीने में 11 महीने में 6 महीने।
4: ठीक है,
8: अब फर्टिलाइजर में अब आप सोचिए,
4: आपको
8: आप
4: ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में आपकी घटी है,
8: 10 सेकंड
4: ठीक है,
8: जब सबको मालूम है कि भाई कार को लेकर गाड़ियों को लेकर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो आपको एनर्जी प्रोडक्शन न केवल तेजी के साथ बढ़ाना चाहिए बल्कि उसके कुछ अल्टरनेट मेजर्स भी करने चाहिए। आपने क्यों नहीं किए,
4: क्या किया आपने, जल्दी बताइए।
7: बहुत अच्छी इन्होंने बात करी, ये रहा मेरे पास में डेटा। इंडिया का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कंजम्पशन पहले जो था, जो नॉन फॉसिल फ्यूल हमारा 10% भी नहीं था, आज 50% हम नॉन फॉसिल फ्यूल से अपनी इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग डिमांड को मीट कर रहे हैं। तो हम जाना चाहते हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल, जिसमें क्रूड की बात आ रहा है, उसकी डिमांड हम 30% तक करें, हम आज की तारीख में 50% तक पहुंचे, तो हम लॉन्ग टर्म मेजर। इन्होंने बोला ऑयल के रिस्पेक्ट में क्या किया, जीरो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व थे, आज की स्थिति के अंदर हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए एक्सकवेशन लार्जर केजी बेसिन में भी हमने शुरू कर दिया है और आगे भी शुरू किया। 10 सेकंड, प्रधानमंत्री जी नॉर्डिक कंट्रीज में गए, यूएई में गए, यूएई के साथ हमने लॉन्ग टर्म डील करी है जिससे कि हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है, एलपीजी के रिजर्व हैं, वो भी बढ़ सके। तो हम तो स्टेप्स ले ही रहे हैं, पर ये हम सबको स्वीकारना पड़ेगा कि भारत आज 6-7% पे ग्रो कर रहा है, तो हमारी एनर्जी डिमांड्स हैं, इसलिए नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स लाइक गोल्ड को हमें कम करना होगा।
4: अखिल स्वामी जी,
9: मैं मान लेता हूं प्रदीप जी जो भी बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी इकॉनमी बहुत बढ़िया है, हर फ्रंट में हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, आपत्ति मुझे केवल एक है, पिछले 12 साल में जो हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2007-08 का सब प्राइम क्राइसिस कैसे निभाया था, अगर देश के गरीब लोगों के हाथ में आप पैसा देंगे, मनरेगा के अंदर जो पैसा दिया गया था पूरा वर्ल्ड हिल रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए मजबूत थी गरीब लोगों के हाथ में। देखिए एक सिद्धांत अर्थशास्त्र का समझ लीजिए, जब अमीर आदमी के हाथ में पैसा आता है वो सप्लाई क्रिएट करता है, जब गरीब आदमी के हाथ में पैसा आता है वो डिमांड क्रिएट करता है। हम कंजम्पशन इकोनॉमी है, हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी का पिछले 12 साल में इन लोगों ने ऐसा ध्वस्त किया है। ये जीडीपी की बात करते हैं, ये फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं, सारे के सारे बड़े पूंजीपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर देते हैं, ट्रकर्स स्ट्राइक पे हैं, 18 लाख

0: आलोक जी आ रहे हैं,
1: गरीब
0: आइए आलोक
1: आदमी
0: जी, आइए
1: को,
0: आइए इधर से आ जाइए,
1: गरीब आदमी
0: आइए
1: का पैसा, क्योंकि गरीब की परचेजिंग पावर आपने छीन ली है।
0: आइए जल्दी
1: देखिए, एक बार बंगाल के अंदर एक अकाल आया था, खुद खाद्य भंडार भरे हुए थे, लोग
0: माइक
1: भूखे
0: लगा।
1: मरे थे, कारण ये थी लोगों का परचेजिंग पावर नहीं थी। आपने पिछले 12 साल में बड़े बड़े, और एक जो आप सोने की बात कर रही थी, देखिए सोना कौन खरीद रहा है, ये हम जैसे मध्यम वर्ग 1.5 लाख रुपए तोले का सोना खरीदेंगे, 80 करोड़ लोग वो खरीदेंगे जो 5 किलो अनाज पे जिंदा है, ये खरीद रहे हैं। बड़ा मजाक चल रहा है सोशल मीडिया पे, मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी मुकेश अंबानी जी से कहती हैं, ये मोदी जी से कहलवाने की क्या जरूरत थी, मैं ही टन दो टन सोना हर महीने खरीदती हूँ, नहीं खरीदूंगी। ये बड़े बड़े पूंजीपति पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और हम लोग सोना बेच रहे हैं, हम लोग प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल रहे हैं। हमारे घरों के अंदर 12,000 रुपए में नोएडा के वर्कर, जो बेचारे वर्कर 12,000 में खर्चा नहीं चला पा रहे थे, सड़क पे आए थे, उनका जीवन कैसे चले।
2: अखिल जी आपने कहा कि भारत के अंदर कंजम्पशन ड्रिवन इकॉनमी है, भारत में कंजम्पशन कम हो रहा है। सुनिए डेटा, मैं इनको फैक्ट चेक करूंगा, भारत के अंदर कंजम्पशन 60% बढ़ा है, दुगना हुआ है। 2013 में भारत के अंदर प्राइवेट कंजम्पशन $1 ट्रिलियन का था, अब यह बढ़कर $2.1 ट्रिलियन का हो चुका है, 7.2% से ग्रो हुआ है। तो यह पूंजीपति का कंजम्पशन नहीं है, गरीब मीडियम वर्ग का है, यह सच्चाई की बात है। किसी ने माइक ऑफ किया, झूठ बोलना बंद
1: कीजिए। पूंजीपतियों से
2: कोफिशिएंट वर्ल्ड बैंक का कहता है इंडिया इज
1: वापस लीजिए, पूंजीपतियों से गरीबों में बांटिए,
2: सोसाइटी
1: गरीबों को दीजिए,
2: बात कर रहे हैं। गरीब 20 करोड़ गरीबी रेखा के बाहर आ चुके हैं। अभी आपका आर्ग्यूमेंट था कि प्राइवेट कंजम्पशन नहीं बढ़ा है, 61% नेशनल डीजीपी का पहुंच चुका है। कांग्रेस के समय 12% महंगाई थी, कांग्रेस के समय में 6% करंट अकाउंट डेफिसिट,
1: इनकम नहीं बढ़ रही है,
2: 2001 अरे इनकम दुगनी हो गई,
1: भूखा मार दिया आपने,
2: दुगनी हो गई पर कैपिटा इनकम, दुगनी हो
1: आपने मिडिल क्लास को भूखा मार दिया,
2: 50 पर कैपिटा इनकम थी डॉलर की, वो बढ़ के
1: अमीरों को सारी संपत्ति आप दे रहे हैं,
2: आप बिना
1: पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं,
2: आप शायद कांग्रेस
1: चाइना से इंपोर्ट ले रहे हो, चाइना से इंपोर्ट डबल हो गया है, एक्सपोर्ट 15%
0: आलोक शर्मा जी,
1: आप चीन के लिए अपना रास्ता खोल दिया है।
0: आलोक शर्मा जी, चुनौतियां बहुत है, लेकिन ये इसमें एक साथ मिलकर चलना होगा, गद्दार कह देने से थोड़ी उसका हल निकल जाएगा।
3: चुनौतियां हैं ही कहां, बीजेपी तो मानने को ही तैयार नहीं है, मोदी जी तो मेलोडी मेलोडी खेल रहे हैं, फिर चुनौतियां कहां हैं। मैं समझता हूं कि देश प्रेमी वो व्यक्ति होता है जो संकट के समय में अपने देश को संभालता है, देश प्रेमी वो व्यक्ति होता है जो एपस्टीन फाइल वाले पेट्रोलियम मिनिस्टर को बाहर करता है, देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है देश के सामने, देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो चुनाव चुनाव नहीं खेलता रहता है, देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो हिंदू मुसलमान नहीं करता, देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो ट्रंप के कहने से सीज फायर नहीं करता, देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो यूएस से ऐसी ट्रेड डील करे जिससे पूरी तरह से किसान हमारा बर्बाद हो जाए, देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो नीट के पेपर लगातार 3 साल से आउट हो रहे हैं, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है, लेकिन मेलोडी मेलोडी खेल रहे हैं वो। मुझे लगता है कि देश प्रेम और देश भक्ति में क्या फर्क है बीजेपी वालों को पता ही नहीं है, क्योंकि पूरी लाइफ तो इनके संस्कार वही रहे हैं मुखबरी के, तो इनको देशभक्ति क्या होती है वो नहीं पता है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो जिनको जितने नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते हैं उनको सबको मुख्यमंत्री मंत्री सब बना देते हैं, फिर इनकी देश प्रेम कहां चली जाती है। ट्रंप के कहने से रशिया से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, ट्रंप के कहने से फिर शुरू कर देते हैं, 6 साल अपने देश की जनगणना नहीं कराते हैं और उसके बाद भी आप कहें कि साहब वो तो देश प्रेमी है। ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन सबका रेल बना रखा है, सबको जेब में रख रखा है, लोकतंत्र की हत्या हो रखी है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या कर रहा है पूरा देश देख रहा है। तो मुझे लगता है कि देश प्रेमी और देशभक्त इस परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है।
0: जवाब
2: अंजना जी, देखिए देश की जनता कांग्रेस पार्टी को गद्दार समझती है, तभी 99 चुनाव तक राहुल गांधी को विपक्ष में बैठाई। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जो पाकिस्तान के हाफिज सईद जिसको इंडोर्स करते हैं, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने CIA से पैसा लिया है, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसने जाकर 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसको पाकिस्तान के अंदर सब बैक करते हैं, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने 70 सालों तक देश को गरीब रखा, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जो भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहती है, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसके राहुल गांधी विदेश में क्या टूरिज्म, किस लड़की से मिलते हैं, क्या टूरिज्म करने जाते हैं, किससे मिलते हैं, किसी को नहीं पता, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जो जॉर्ज सोरोस के एजेंट को भारत छोड़ो यात्रा में अपने साथ में बैठाती है, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जो 66 करोड़ अपने खर्च पे करती है, राहुल गांधी हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जाते हैं जिसमें 11 करोड़ की इनकम है, 40 करोड़ का ये है, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसके अंदर परिवार फर्स्ट की बात होती है। है, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने देश में इमरजेंसी लागू करी, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसके कारण देश इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर गया, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने 12% इन्फ्लेशन दिया, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी भी पाकिस्तान के सामने आंख उठाकर नहीं देखा, असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसने चीन के साथ में सीक्रेट डील करी जिसके बारे में अभी तक नहीं बताया।

0: असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि वो भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ है और भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री, क्योंकि कांग्रेस का परिवार 99 चुनाव से विपक्ष में बैठा है, उसको गद्दार कहती है। 99 चुनाव देश की जनता ने हराए, आगे 99 और हराएगी, और ये तो इंडियन स्टेट के खिलाफ है। कहते हैं चुनाव की क्या जरूरत है, चुनाव चुनाव, ये इनकी मंशा सोचिए। भारत के लोकतंत्र की नींव पे हमला करना चाहते हैं क्योंकि परिवार सत्ता पे नहीं बैठा है, इसीलिए डेंजरस है। डेंजरस के साथ में ये हानिकारक है और इवन है, इवन है ये देश के लोकतंत्र, देश के लिए लोकतंत्र।
1: इन्हीं के एक पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा में भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी सीआई के एजेंट हैं।
0: झूठ,
1: एक शब्द नहीं बोलते हैं लोग,
0: झूठ बोल रहे हैं।
1: सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी
0: आप स्टेटमेंट सीआई से पैसा लिया है,
1: वापस
0: सीआई के
1: क्या, मैं बीच में नहीं बोला,
0: मैं प्रधानमंत्री मैं बिल्कुल बोलूंगा,
1: यार मछली बाजार मत बनाओ यार,
0: झूठ नहीं बोलेंगे,
1: पूरे देश का मछली बाजार बना दिया
0: आप लोग, शांत रहो, समझे,
1: आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला
0: प्रधानमंत्री जी को,
1: शांत रहो,
0: आप शांत रहिए आलोक जी,
1: आपके टाइम पे आप जवाब दीजिए,
0: असली गद्दार आप लोग हैं,
1: आप लोग अपने समय
0: के रात तक गद्दारी करते हैं,
1: समय पे उत्तर देना ठीक है, आज तक आप, हम सीआईए के एजेंट हैं, हम ये हैं, एक आदमी को जेल नहीं भेज पाए, इतने कमजोर हो
0: गए, ऊपर से नीचे से बेल पे भार हो गया,
1: फिर नीचे मत बोलो भाई। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था 2018 में बननी थी, बनी 24, उसके बाद 24 से भी वो अब 27 आते आते, 26 आते आते चौथे नंबर से छठे पे पहुंच गए, उस पर बात नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट चाइना से लगातार लगभग 9 गुना बढ़ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार घाटे में चल रहा है। हम देशद्रोही थे, हम गद्दार थे, हम 56 रुपए में पेट्रोल डीजल दे रहे थे, आज ये सैकड़ा पार करके जा रहा है, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। दुर्भाग्य ये है कि विदेश नीति को अपनी मित्र नीति बना दिया, विदेश नीति को इन्होंने पूरी तरह से अपनी छवि कैसे चमकाई जाए उस नीति पे कन्वर्ट कर दिया, अर्थनीति का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। और दिक्कत यह है, जितनी योजनाएं चलाई, वो नोटबंदी हो, जनधन हो, पीएम इंटर्नशिप हो, मुद्रा लोन हो, मेक इन इंडिया हो, सब बड़े बड़े व्यापारियों के लिए थी, उसका जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। 2017 से लेकर आज तक एक भी मीट्रिक टन स्टोरेज पेट्रोल और डीजल की नहीं बढ़ाई, एक रिफाइनरी नहीं बनाई, एक का उद्घाटन करने जा रहे थे उसमें भी आग लग गई, और उसके बाद कहते हैं कि मैं तो साहब बहुत काम कर रहा हूं। 2,00,000 करोड़ विनिवेश हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट पिछले 2 महीने में, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। लोग आज कह रहे हैं कि हमारा फीस कैसे जाएगी बच्चों की, ये केवल महंगाई तक सीमित नहीं है, केवल महंगाई तक सीमित नहीं है मामला, इसको चिल्लाने से या कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिन कहीं भुखमरी की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे। आज 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, अरे भाई चेताएंगे हम,
0: ये इनकी मंशा है।
1: देश के प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले यही बोला, जो मैंने बोला देश के प्रधानमंत्री ने बोला,
0: चार दिन बोला
1: देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह की खाद्यान्न की समस्या है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मानना ही नहीं चाहते हैं, शतक लगने वाला है, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूं, मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। दुर्भाग्य यह है कि आप वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, क्या किसी ने कोई एनालिसिस किया? 1-2% लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उसके अलावा कर ही नहीं सकते। क्या ड्राइवर करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन वर्कर करेंगे, क्या एग्रीकल्चर फार्मर करेंगे?
2: मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी।
0: 1978 में सीए से पैसा लेने वाली एक गद्दार कांग्रेस, एक गद्दार कांग्रेस, 70 सालों में अरे पकोड़े तलने वाले भी बिजनेस बन जाते हैं, जाके पढ़ो, एक बीच में बात हो रही है अंग्रेजी में,
1: बताओ मैं एक व्यक्ति को बता दो जिसको,
0: अरे भैया सुनो, सबसे ज्यादा
1: 50 सालों
0: में जब देश आजाद हुआ था, देश की अर्थव्यवस्था चाइना से ऊपर थी, नेहरू इंदिरा राजीव ने जाकर ऐसा बंटाधार कर दिया कि देश में 15% महंगाई कर दी, नेहरू राजीव इंदिरा मनमोहन सोनिया ने ऐसा बंटाधार कर दिया कि देश में 15% इन्फ्लेशन कर दिया, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा, इनको घबराइए कि देश में नेपाल जैसे हालात क्यों नहीं हो रहे, ये चाहते हैं कि देश का लोग आपका अहंकार आपको ऐसा ले डूबेगा, 99 चुनाव बनाए देश की जनता आपको
1: 199 चुनाव
0: रहेगी, अरे जलन क्यों हो रही है कि इटली के साथ स्ट्रेटेजिक डील हो रही है, राहुल जाके जॉर्ज सोरोस जॉर्ज सोरोस करें, ये
3: जलन तो स्वाभाविक होगा, विपक्ष में बैठे हैं तो जलन होने दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए आज भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो प्रश्न उठाया जा रहा है, अंजना जी मैं तो बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखता हूँ और रखना भी चाहिए, जो प्रश्न पर जो प्रश्न नहीं जो प्रश्न नहीं जो जो प्रश्न सुन लीजिए जो
2: आशुतोष जी
3: भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं मुझे लगता है उसका जवाब जो है ना एक राजनीतिक विरोध के माध्यम से नहीं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और तथ्यों के माध्यम से दिए जाने की आवश्यकता है। और आज जो पूरी दुनिया जिस स्थिति में है एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, सबको पता है कि कोविड की महामारी हो या वैश्विक जैसे युद्ध की स्थिति अभी जो बनी हुई है या सप्लाई चेन संकट है या आर्थिक अस्थिरता है, इन सब ने यह चीज तो साबित कर दिया है कि जो देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है वैसे देश संकट के समय ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इस विपरीत परिस्थिति में भी भारत अस्थिरता विश्वास और विकास तीनों को बनाए रखा है और उसका पूरा श्रेय मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बता उसमें भी आ रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। यही भारत 2014 से पहले आलोक जी आप भी बहुत विद्वान हैं फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था। सारे अर्थशास्त्री बैठो आप बोलने दीजिए ना फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था फ्रेजाइल फाइव। आज वही भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यही भारत ग्रोथ इंजन जो है के रूप में जैसे वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। और यह सब अचानक से नहीं हुआ यह प्रधानमंत्री जी की जो है सशक्त नीति और ईमानदारी के कारण जैसे यह सब संभव पाया। यही भारत उपभोक्ता के रूप में जाना जाता था यही भारत सप्लायर के रूप में जाना जाता है। यही अर्थव्यवस्था को आप लोगों ने फाइल में बंद करके रखा था और यही अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता से जोड़ने का काम किया है। चुनौतियां हैं प्रधानमंत्री चुनौतियों को मानते हैं लेकिन आपके तरफ प्रधानमंत्री जी चुनौती पे राजनीति नहीं करते हैं चुनौती पे समाधान करने की कोशिश करते हैं। यही हमने और आप में अंतर है। आप चुनौतियों पे राजनीति करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी चुनौतियों पे समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जान लीजिए मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश जो है सो सेफ है। आप लोग विपक्ष में है आप लोग अदरगल बातें करते रहिए आज आप आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी उपलब्धियां गिना रहे हैं। पहले भारत जो कहता था संभावना के लिए जाना जाता था भारत आज भारत उपलब्धियों के लिए जाना जाता है।
4: माधव जी में भी जोश आ गया और आप भी शालीनता जोड़ अश्विनी जी अभी तक नहीं बोल पाए
2: 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को गर्मी देखा था उसके बाद पांच किलो राशन बन गया था भाई और इटली के साथ जिसमें बड़ी सी दिक्कत है 20 बिलियन डॉलर
5: का ट्रेड पहुंचने वाला है। अब मेलोडी करेंगे अब सोरोस करो अब सोरोस करो हम मेलोडी करके 20 बिलियन डॉलर पहुंचाएंगे पूरे देश को इलेक्ट्रीफाई कराए जो 70 सालों में आप नहीं कर पाए। शर्म आनी चाहिए
4: अश्विनी जी
5: सब कांग्रेस पूछ रहे हैं आपको
4: अश्विनी जी
2: इलेक्ट्रिफिकेशन के आंकड़ों पे आपसे
5: 28
2: अरे सुनिए ना
5: भाई इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है 70 सालों में किया
2: सुनो
5: उत्तर देता हूं ये सच्चाई
2: उत्तर देता हूं। आपने कहा हमने 13,500 करोड़ को इलेक्ट्रीफाई किया
5: मैंने बोला ही नहीं सर मैंने बोला मोदी जी ने घर तक का है
2: मोदी जी ने लाल किले से कहा सुनिए
5: हर घर तक
2: अरे सुनो ना भाई 7 लाख गांव थे इसमें हमने 12,500 गांव को एक साल में दिया
5: झूठ
2: आप फिर जो
5: अरे कैलकुलेट कर लो ना आपने जितने गांव को
2: कैलकुलेट कर लो
5: हमने 11 साल में
2: कैलकुलेट कर लो
5: मैं
2: पॉलिटिकल साइंस
4: वाले हूं
5: बिल्कुल कैलकुलेट
2: कर लो
4: शांति से बैठ
2: के कैलकुलेट कर लो
4: बिल्कुल कैलकुलेट अरे चुप हो जाइए आप लोग चुप हो जाइए। अश्विनी जी तीन बातें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। चैलेंज तो है इससे कोई इनकार करे आंखें बंद कर ले ये उसकी उसका शौक है। कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल डीजल की कीमत अगर ऐसे बढ़ रही है तो असर उसका दिखेगा ही माल ढुलाई और फिर कैस्केडिंग इफेक्ट। दूसरा रुपया लगातार डॉलर के सामने गिर रहा है अब ऐसे में भारत के सामने क्या स्थिति है क्या रोडमैप है?
6: देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इस राजनीति से बाहर आना चाहिए। ये राष्ट्रीय संकट है और अंतर्राष्ट्रीय संकट है और इस प्रकार की मैं अभी सुन रहा था बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बातें हो रही हैं। ये जो वर्तमान स्थिति है अगर मान लिया मोदी जी ये कह रहे हैं कि देश में ऑयल की कंजम्पशन कम करनी चाहिए विदेश यात्राओं को रोकना चाहिए सोने की खरीद कम करनी चाहिए
2: चुनाव के बाद याद आया मोदी जी को
6: बीच में मत बोलिए
2: पहले चुनाव चुनाव खेल रहे थे अब विश्व
5: इलेक्शन का समर्थन करोगे
0: हाँ है ना, वन नेशन यही एक्सपोज हो गए ना, नहीं नहीं करो, चलो राहुल गांधी से समर्थन करा दो, 24 घंटे में करा दो समर्थन, नहीं है
2: 12 साल
0: से नहीं, इनको नहीं गुम हो जाएंगे,
2: 12 साल
0: कांग्रेस ने ऑफिशियली ऑफिशियली जाके कहिए राहुल से, कांग्रेस पार्टी को ऑफिशियली ट्वीट करवाइए कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में, यह सच्चाई है,
2: यही
0: झूठ मत बोलिए, यही है
2: सरकार आपकी करेगा विपक्ष
0: भैया, सर्वसम्मति से
2: होगा वन नेशन वन इलेक्शन को बनाए, उसकी रिपोर्ट कहां है,
0: अपनी तेलंगाना कर्नाटक ऑलरेडी सबमिट हो गई है,
2: कहां है,
4: चलिए एक बार अगर मुमकिन हो तो मुझे इन दोनों के साथ दिखा दीजिए, आज हल्ला बोल के इस एपिसोड में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ने कहा है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, प्रवक्ता ही ये बोल रहे हैं लेकिन ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए। इसी के साथ मेरे शो में ही आलोक शर्मा जी ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल में आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाइए क्योंकि उससे भी कीमतें घटेंगी, पता है 15% 20% तो वही घट जाएगा, हम जो हम लोग जितना पैसा दे रहे हैं, दोनों पर सहमति बनी है, अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल में क्या होता है और अब देखते हैं उस कमिटी में क्या होता है जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाया गया है। अश्विनी जी अब आप बात बोलिए और मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं संरक्षण दूं, बोले
6: जी आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद
4: बोलिए
6: कि आप आज
2: को आज
6: आज
0: केरला में आपने दूध के दाम 4 रुपए से बढ़ा दिए, ये आपकी सच्चाई है, सबसे ज्यादा दूध के दाम केरला में बढ़ा है, सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल डीजल में कांग्रेस की सरकारें लगा रही
4: है, छोटा सा
2: पाकिस्तान को पूछ लूं, राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा अभी,
0: घर में घुसके मारेंगे,
2: क्या कहा है,
0: घुसके मारेंगे,
2: क्या कहा है, घर में घुसके मारेंगे, क्या कहा, बताइए
0: पाकिस्तान को घर में बताइए, याद है क्यों ऑपरेशन सिंधु 2.0 होगा, आप पहले बताओ,
2: आप तो बातचीत कर रहे हो यार,
0: जैसे ऑपरेशन सिंधु ऑपरेशन सिंधु 2.0 नहीं बोला, सब ऐसा गलत कोट कर रहे
4: हैं,
0: नहीं
4: बोला, नहीं बोला,
0: नहीं बोला, घर में घुसके मारेंगे, जब भी आप जैसे चीनी एम्बेसडर के पास गए चोरी चोरी छिपके छिपके पाकिस्तानी के साथ भी चोरी चोरी छिपके छिपके जाओगे तब भी पाकिस्तान से हमला करेंगे,
4: बोल ली थी आप लोगों को, यहाँ बुला लिया था आपको, आज मैं पक्का टॉफी खिलाऊंगी,
0: मेलोडी
4: इतना जहर आ गया,
2: मैं भी यही बोलने वाला,
4: इटली वाली नहीं है वो, इंडिया की है, गलत मत बोलिए, अश्विनी जी प्लीज लेट हिम स्पीक,
6: प्रदीप जी मुझे लगता है कि मैं प्रदीप जी से तो को आदेश दे सकता हूँ कि आप चुप रहिए, आप भी चुप रहिए, तो मेरा ये कहना है कि सामने सामने अर्थशास्त्र का विषय है और यहाँ राजनीति हो रही है, तो इसको हमें ये करना चाहिए कि सभी राजनीतिक दल एक बार बैठे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और कम से कम एक भाषा बोले,
2: नहीं तो कौन बुलाएगा ऑल पार्टी मीटिंग, अभी तक क्यों नहीं बुलाई, इसका उत्तर है आपके पास,
0: देश नहीं चलाते हैं, चलाएंगे याद रखना, ये देश के चुने हुए प्रधानमंत्री चलाते हैं, देश की लोकतंत्र, देश की जनता चलाते हैं, और एक ओबीसी समाज का आपने अपमान किया है, ओबीसी सेना ईबीसी सेना के नीतीश कुमार जी का अपमान किया है, देश देख रहा है 100 साल तक बिहार में सत्ता में नहीं आओगे, आपने ईबीसी का अपमान किया है,
2: मैंने देश देख रहा है,
0: मैंने इनके युवराज का अपमान किया, जिससे
2: कौन देखेगा,
0: ये नहीं रहेंगे उसके बाद भी नहीं आएंगे,
6: प्रदीप जी
2: मैंने उस युवराज का भी अपमान किया है जिसका पता नहीं कौन सा नशा
6: कर रहा है, हमने
4: प्रदीप जी युवराज क्यों बोल रहे हैं, अपने वाले को भी युवराज मान रहे हैं क्या,
2: युवराज उसने शुरू किया,
4: तो अपने वाले को मत बोलिए ना सर,
2: हम तो कभी भी कार्यक्रम,
4: आप नाम लीजिए ना, आप मत बोलिए युवराज, मत बोलिए
2: देश के युवराज,
6: हमने प्रदीप जी को कहा है चुप रहने के लिए और आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि देखिए या तो तरीके से
2: मोदी जी से निवेदन क्यों नहीं करते, मुझे थोड़ी बुला लिया ऑल पार्टी मीटिंग,
4: ऑल पार्टी मीटिंग,
2: आप मोदी जी को चिट्ठी लिखिए, आज ही लिखिए, यहीं बैठ के मैं कागज में देता हूँ,
6: आप मुझे आपके कागज की जरूरत नहीं, आप एक बार बोलने तो दीजिए, आप बोलते रहेंगे क्या,
2: बोलिए बोलिए,
6: मतलब ये क्या तरीका है,
2: बताइए ना,
6: दिस इज नॉट वे, नो वे, तो मेरा ये निवेदन है कि आज ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है लेकिन राष्ट्रीय समस्या तो है ही, और प्रधानमंत्री ने भी एक जनता से अपील की है, वो भी मैंने कहा, तो मेरा ये कहना है कि सभी पार्टियों को राष्ट्रहित में विचार करना चाहिए, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि आप इसको कंजम्पशन को कम करिए या ये करिए, तो अगर रुपया बचेगा तो मोदी जी का रुपया है क्या,
2: सभी को जनता करेगी तो सरकार, तो इसलिए सरकार के दो कदम बताइए पिछले 2 महीने में जो ऐसा लगता हो कि इस वजह से ये डॉलर हमारा बचेगा, 2 कदम बताइए मुझे,
6: देखिए
1: सरकार जो कदम
6: जो सरकार कर सकती है वो कर रही है।
1: दो कदम बताइए ना,
7: सरकार कुछ नहीं कर रही है।
1: मैं बताता हूँ,
4: केवल दो कदम बताइए, दो कदम बताइए।
7: राहुल गांधी कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं, वही राहुल गांधी सरकार चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ही सब कुछ कर रहे हैं।
0: 30,000 मैट्रिक टन एलपीजी प्रोडक्शन था एक क्राइसिस शुरू होने के पहले, 50,000 मैट्रिक टन क्रॉस हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर 48% पेट्रोल के दाम बढ़े, 40% बढ़े, भारत में 3% बढ़े। ये सरकार कर रही है। अगर कांग्रेस होती तो कहती 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद कर दो, कांग्रेस होती तो कहती आइसक्रीम जो है वो मत खाओ। यही है आपको इलॉजिकल देश की जनता कहती है, तभी 12 साल से यहाँ बैठे हो और आने वाले 25 साल भी बैठोगे। ये सच्चाई है, एक एक सत्य कर रहा है। 12.5 घंटे तो रिजाइन करो तेलंगाना से, रिजाइन करो तेलंगाना से, रिजाइन करो केरला से, केरला भी ट्वीट किया। ओ केसी वेणुगोपाल जी धन्यवाद करो, क्यों केरला से रिजाइन करो ना, क्यों केरला से रिजाइन करो आलोक शर्मा। एक काम करो, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखो, आलोक जी एक राहुल गांधी को चिट्ठी लिख दो, बोलो केरला से रिजाइन
4: करेंगे।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिचौलिया संस्कृति और इस तरह भ्रष्टाचार पे जो चोट पहुंचाया है, और डीबीटी के माध्यम से जो लाखों करोड़ों जो है लोगों के, गरीब लोगों के खाते पहुंचाने का काम किया, असली प्रॉब्लम यहाँ इन लोगों को लगता है।
8: सुनिए, सवाल पूछूं आपसे, मेरा सवाल यह है कि ये नोट जो है 97 के पार क्यों जा रहा है, अगर सब कुछ अच्छा है तो इसका जवाब
3: देखिए। देखिए ग्लोबल क्राइसिस तो मैंने पहले कहा, चुनौतियां हैं।
8: अरे ग्लोबल क्राइसिस तो अभी हुई भाई,
3: तो बोल रहे हैं चुनौतियां हैं। सरकार चुनौतियों को नहीं ढक रही है, सरकार चुनौतियों को नहीं ढक रही है। बस अंतर इतना ही है, अंतर इतना ही है।
4: क्योंकि एक सेकंड प्लीज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इकोनॉमिक्स पर है नहीं, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा अभी दुरुस्त दिख रहा है, इतना कम नहीं हुआ है अभी, वो 690 अरब डॉलर के आसपास है। क्यों रुपया गिर रहा है, इसकी वजह क्या है?
3: देखिए बहुत सारे इसमें इश्यूज होते हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट की उन्होंने बात की, और अभी जो वैश्विक स्थिति है जब हम लोग का एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, दोनों सारा चीज बहुत और जो
1: जब रुपया गिरता है तो एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन मोदीनॉमिक्स में रुपया गिर रहा है और एक्सपोर्ट भी गिर रहा है।
0: कंप्लीटली झूठ, ये सार्वजनिक
3: सप्लाई चेन, अर्चना जी सप्लाई चेन संकट को समझने की आवश्यकता। सप्लाई चेन संकट को जब समझेंगे तो भारत चाह के भी बहुत सारे जगह पे माल नहीं पहुंचा पा रहा है। सप्लाई चेन संकट सिर्फ भारत के लिए नहीं है, सप्लाई चेन संकट पूरे विश्व के लिए है। और सप्लाई चेन संकट जो है आर्थिक मंदी का बहुत बड़ा फैक्टर है। जो
8: मालूम, इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था 1.5 साल पहले, जिसमें सवाल पूछा गया था कि आपकी आय बढ़ रही है या घट रही है। 65% लोगों ने कहा था कि आय बढ़ नहीं रही है। ये इंडिया टुडे का सर्वे है। ये क्यों ऐसा हो रहा, लोग क्यों गोल्ड खरीद रहे हैं? 97 पे आपका रुपया जा रहा है, सब कुछ चंगा है। अगर सब चंगा है तो, और पिछले 3 सालों के अंदर ये भयानक स्थिति भी हुई, कोविड के पहले का मैं आपको डेटा बता देता हूं। तो कोविड के पहले के क्वार्टर में, जनवरी से मार्च के बीच में 2020, आपकी जीडीपी ग्रोथ थी 3.1, आपका मैन्युफैक्चरिंग था -1.23 समथिंग लाइक, माइनस पे था। आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो माइनस पे था।
4: काउंटर पॉइंट आपके लिए भी है, जैसे उनसे मैंने पूछा भाई, एक सेकंड, काउंटर पॉइंट ये है कि सुनिए, बाकी देशों के भी जो करेंसी है वो भी गिर रहा है। रूबल, नहीं नहीं, एक सेकंड, रूबल देखिए 4 रुपए के
8: आपका सवाल बिल्कुल सही है। ग्लोबल क्राइसिस आने के बाद से सबकी करेंसी में ड्रॉप हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रॉप जो दिखाई पड़ रहा है वो भारत की करेंसी में। कोविड के बाद जो सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी सबसे ज्यादा नीचे गई थी, -27% भारत की गई थी। क्यों गई थी? क्यों गई थी?
1: अंजना जी, बहुत गंभीर विषय है ये। जिस तरह से आज बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, सब चंगा सी, मुझे लगता है आर्टिफिशियली रुपए को चुनाव की वजह से रोक के रखा, आर्टिफिशियली पेट्रोल डीजल के प्राइस नहीं गिरने दिए। इसका पूरा नुकसान होगा, जो कदम 4 महीने पहले उठाने चाहिए थे आज उसको उठाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, अगर इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में गैप बढ़ता चला जाएगा तो डॉलर किस तरह से जाएगा? डॉलर बाहर चला जाएगा। और डिसइन्वेस्टमेंट जिस तरह से 2 महीने में गया है, अगर ये डिसइन्वेस्टमेंट इसी तरह से 3-4 महीने चला गया तो बहुत बुरी हालत इकोनॉमी की हो जाएगी। लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं।
9: अंजना जी, ये समझना बहुत आवश्यक है, कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज होती हैं, कुछ इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज होती हैं। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज होती हैं, वो जानबूझ के अपने करेंसी को वीक करती हैं, जिसको जिसमें उन्हें एक्सपोर्ट में फायदा हो। भारत इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जापान एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। उनका करेंसी का वीक होना उनके लिए फायदेमंद है, हमारा करेंसी का वीक होना हमारा। ये लोन हम जो नए ले रहे हैं, पुराने लोन को वापस लेने के लिए रहे, हम डेट ट्रैप में हैं, हम डेट ट्रैप में हैं।
6: देखिए, भारत डेट ट्रैप में नहीं है, इतनी बात समझ लेनी चाहिए।
9: मैं लिख दे सकता हूँ, आप देश के ऊपर कर सकता हूँ।
6: देखिए, अगर बीच में अगर बीच में बोलेंगे तो
1: बताइए ना, डेट ट्रैप कैसे नहीं, आप बताइए।
6: आप यही बात कीजिए, आपको मालूम है क्या,
1: बताइए,
6: आप भी ऊंचा बोल सकते हैं क्या,
1: बताइए ना भाई, डेट ट्रैप में कैसे।
6: देखिए, जब हमारा जब आपने छोड़ा था ना, तो उस समय 58 से 62% था जीडीपी जेड डेट, और आज की डेट में 56% है। जब जीडीपी के डेप के, अरे आपको मालूम नहीं है कुछ, आपको मालूम नहीं है, चुप रहिए। फिर
1: सर्वे 2025 का पढ़ लीजिए,
6: मुझे भी बोलना आता है,
1: पीएचडी इकोनॉमिक्स में ही है।
6: हाँ, अगर
1: मैक्रो इकोनॉमिक्स
6: अगर पढ़ा होगा ना, 56% है आज, आज
9: पॉलिटिकल साइंस में डिग्री नहीं
1: है, बेकार की बात।
6: अगर अगर आपकी डिग्री, इसका मतलब
1: सारे हाईवे बैंकों के पास डिग्री है,
6: मैं
1: सारे के सारे हाईवे
6: कुछ कह नहीं सकता,
1: जहां एक टोल था वहां 6-6 टोल है। मैं आपकी
6: डिग्री के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन
1: टोल है,
6: लेकिन ये इट्स अ फैक्ट,
1: दिल्ली से टोल है।
4: अरे मत कीजिए आलोक जी, बहुत ज्यादा
1: दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस
3: वे आलोक जी झगड़ा करने से तो कोई फायदा होगा नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग झगड़ा कर लेंगे, उसे इकोनॉमिक कमेटी आदि हो जाएगी। लेकिन मैं हम लोग को यह भरोसा करना पड़ेगा, हम लोग को यह भरोसा करना पड़ेगा कि 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जितने भी निर्णय लिए हैं, देश हित में निर्णय लिए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जो 7 अपीलें की है, उस 7 अपीलों को अगर हम लोग अक्षरशः पालन करें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थिर, विकास और विश्वास भारतीय अर्थव्यवस्था में बना रहेगा।
9: आशुतोष जी ने इंडिया टुडे की सर्वे की बात बोली, इंडिया टुडे के सर्वे को वापस से कोट करता, वही सर्वे कहता है कि 48.88% लोग सरकार के इकोनॉमिक मैनेजमेंट से खुश है, आधा इन्होंने कॉमा लगाया था। दूसरी बात, हिंदुस्तान में कोई डेट ट्रैप नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर 10 गुना ज्यादा है यूपीए के समय से। ये झूठ बोला, चाइना $2 trillion इंपोर्ट करता है, हम $900 billion इंपोर्ट करते हैं, चाइना हमसे 3 गुना ज्यादा इंपोर्ट करता है, चाइना को इंपोर्ट नहीं, झूठ बोलते हैं। सच्ची बात यह है, दुनिया के अंदर ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है, भारत में लीस्ट इंपैक्ट पड़ेगा, इतना आश्वस्त हम आपको करना चाहते हैं।
4: चलिए इसी के साथ इस बहस का अंत करते हैं। आज मुसीबत मैंने खुद मोल ली थी, मैंने सबको यहाँ बुला लिया था, बहुत धन्यवाद आप सभी का। अरे सर, आप पैनलिस्ट हैं या आप कैसी बात करते हैं, अच्छा नहीं शोभा देता है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज।
10: Teaching and learning is evolving. That evolution is powered by those who know how to merge technology with effective instruction. A master's degree in education technology and instructional design at WGU equips you with the skills you need to turn innovative thinking into real-world impact, so you can shape learning in academic or corporate settings. Learn more at wgu.edu.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
13: TuneIn's How To A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
15: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
4: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रोफाइबर है।
4: माइक्रोफाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
4: हमारे सीमेंट में नहीं है?
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
8: The taste of success.
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स न्यूज प्लेटफॉर्म, 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज के साथ फैंस ने जताया भरोसा। मैच एनालिसिस, मस्ती मजाक और बैंटर मेरे साथ सिर्फ स्पोर्ट्स तक। कोई नहीं है दूर दूर तक, मैदान में सिर्फ स्पोर्ट्स तक।

0: महंगाई की मार ऐसी है जो चुपचाप जीप खाली करती है और इसका असर रसोई से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक साफ नजर आता है। कभी सब्जियों के दाम चौंकाते हैं तो कभी पेट्रोल डीजल जेब पर बोझ बढ़ा देता है। इस बार मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि एक साथ कई मोर्चों से दबाव बन रहा है। देश में एक तरफ जहां भीषण गर्मी पड़ रही है और कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ मॉनसून कमजोर रहने का अनुमान है। अनुमान के मुताबिक इस बार जून से सितंबर के बीच औसत 92% ही बारिश होगी। कम बारिश से फसल और ग्रामीण इनकम पर असर पड़ने की आशंका है। वैसे खाने पीने के सामान भी महंगे हो सकते हैं। महंगाई की इस तस्वीर में तेल का खेल भी एक बड़ा फैक्टर बन चुका है। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें ऊंचाई पर बनी हुई हैं। तेल महंगा होने का मतलब है महंगा ट्रांसपोर्ट, महंगी खेती और आखिर में हर सामान की कीमत में बढ़ोतरी। इस बीच चुनौती ये है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो RBI को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जिसका असर ग्रोथ पर पड़ सकता है। वैश्विक हालात भी इस आग में घी डाल रहे हैं। ईरान से जुड़े तनाव ने सप्लाई चेन को झटका दिया, क्योंकि दुनिया का 25% पॉलीप्रोपाइलीन मिडल ईस्ट से आता है, जबकि 20% पॉलीएथिलीन की सप्लाई भी वहीं से होती है। इसके अलावा यूरिया की कीमत भी फरवरी से दोगुनी हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि प्लास्टिक, केमिकल और फर्टिलाइजर महंगे हो रहे हैं और इसका असर हर इंडस्ट्री और आम आदमी पर पड़ रहा है।
1: एज प्रेसिडेंट ऑफ एपेक चैम्बर, मैं मानता हूं कि ईरान वार का डायरेक्ट इम्पैक्ट MSME सेक्टर पर पड़ रहा है। ऑयल एंड गैस के दाम बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लास्टिक एंड अदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। इस सिचुएशन में MSME सेक्टर को एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल और ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग पर फोकस करना होगा।
0: साफ है कि युद्ध की आज फैक्ट्री से लेकर बाजार तक महसूस हो रही है। इसकी वजह बढ़ती लागत है जो कंपनियों की कीमतें बढ़ाने को मजबूर कर रही है। वैसे हालात केवल भारत तक सीमित नहीं है, अमेरिका में भी महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया। एनर्जी महंगी होने से खाने, बिजली और ट्रांसपोर्ट सब पर असर पड़ा और यही असर धीरे धीरे दुनिया भर में फैल रहा है। हालांकि भारत के पास एक राहत भी है। दरअसल देश में 602 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा अनाज भंडार मौजूद है। इसमें 222 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 380 लाख मीट्रिक टन चावल है। ये स्टॉक कीमतों को काबू में रखने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर बारिश लंबे समय तक कम रही तो ये सहारा भी कमजोर पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले में 47 शहरों के 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, विकास के भागीदार हैं युवा, विदेशी निवेश से बढ़ेंगी नौकरियां। 5 देशों के दौरे का जिक्र। कोलकाता से दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, थोड़ी देर में पीएम मोदी से मुलाकात। क्वाड साझेदारी, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा। यूपी में भीषण गर्मी में पावर कट के आक्रोश पर चढ़ा सियासी पारा। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बोला हमला, महाविद्युत आपदा बताया। योगी के मंत्री बोले, आईने में खुद को देखें अखिलेश। देश के लोगों को एक बार फिर लगा महंगाई का झटका। 9 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 87 पैसे तो डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। सीएनजी भी महंगा। और सामने आई त्रिशा शर्मा की मौत वाली जगह की तस्वीर, क्राइम सीन सील। पुलिस के शिकंजे में पति समर्थ सिंह से पूछताछ, आज कोर्ट में पेशी, जल्द दोबारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बात करते हैं जो कि भारत दौरे पर हैं। कोलकाता से दिल्ली पहुंच गए हैं, सुबह वो आप तस्वीरें देखी होंगी आपने जब वो कोलकाता पहुंचे थे, और अब वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत दौरे के तहत मार्को रूबियो ने कोलकाता में कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और कई नन से मुलाकात उन्होंने की। अब दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात होगी। भारत 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अब विदेश मंत्रालय ने बताया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पैनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आ रहे हैं। मार्को रूबियो आ गए हैं और बाकी दो मेहमान भी जल्द आएंगे। मंत्रालय के मुताबिक ये बैठक स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का साझा नजरिया आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। और अब वक्त उछला है नॉनस्टॉप 100 का रफ्तार से। प्रेजेंटेड

0: एक तरफ खाकी और दूसरी तरफ काला कोट, क्या हो रहा है, समाधान निकल पा रहा है कि नहीं?
1: देखिए अभी फिलहाल ये समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह कि वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के आड़ में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर उन लोगों के भी उन वकीलों के भी चैम्बर तोड़ दिए जो मानक के अनुसार और कई साल पुराने थे, जिनको तोड़ने के आदेश नहीं थे। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा नाराजगी है वो है वकीलों पर किए गए लाठीचार्ज को। आज शनिवार है, एक सप्ताह हो चुका है, यानी बीते रविवार को ये लाठीचार्ज हुआ था। वकीलों के चैम्बर को के ऊपर बुलडोजर चला, वकीलों ने विरोध किया तो लाठीचार्ज किया गया। तो ये कहा गया कि वकीलों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया, पुलिस ने जानबूझकर बर्बरतापूर्ण बर्ताव किया और उसमें कई वकील घायल हो गए। इसी को लेकर जो टकराव की स्थिति है वो लगातार जारी है। जो सेंट्रल बार एसोसिएशन के चाहे महामंत्री हों, अवनीश दीक्षित हैं, या लखनऊ बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी हों, सारे लोग एकजुट होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और सीधे से कहना है कि जो वकीलों के चैम्बर तोड़े गए, जो गलत थे, जो गैरकानूनी ढंग से थे, जिनके खिलाफ हाईकोर्ट का आदेश नहीं था, उनके जो तोड़ेगा उन पर कार्रवाई हो तोड़ने वालों पर, और उचित जो सरकार की तरफ से जो मुआवजा हो सकता है या मदद हो सकती है वो की जाए, क्योंकि वहां पर वकील 30-40 साल से रहते हैं। लिहाजा इन मांगों को लेकर लगातार गतिरोध जारी है, बायकॉट जारी है सेंट्रल बार एसोसिएशन और लखनऊ बार।
0: संतोष, यही तो बात है, पुराने वक्त से हम देखे जा रहे हैं काला कोट और खाकी, अब देखते हैं कौन किस पर होगा हावी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चीन से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। चीन के शांसी प्रांत में एक कोयला खदान में भीषण धमाका हुआ और यह बताया जा रहा है कि इस सदी का सबसे बड़ा हादसा है ये। 84 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, आंकड़ा और बढ़ सकता है, कई गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा चीन में पिछले एक दशक का सबसे बड़ा कोयला खदान हादसा माना जा रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक विस्फोट शुक्रवार को शांसी प्रांत के किनुयान काउंटी में हुआ। हादसे से पहले खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अलर्ट जारी किया गया था। इसके कुछ समय बाद जोरदार विस्फोट हुआ। जिस समय धमाका हुआ उस वक्त खदान के अंदर 247 मजदूर काम कर रहे थे। अब ये साफ नहीं है कि कितने लोग अब भी अंदर फंसे हुए हैं। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, बताया जा रहा है कि पिछले एक सदी में ये सबसे बड़ा कोयला खदान हादसा है जिसमें 84 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है, हुआ कैसे ये?
2: देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आप ही दर्शकों को बता रहे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी गैसों के रिसाव के चलते एक बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से ये घटना हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी हिमांशु कि पिछले एक दशक से ज्यादा से चीन ने अपने इन सभी माइनिंग के, आप कह सकते हैं कि माइनिंग को लगातार बंद करना या फिर इस पे जो लॉ है वो स्ट्रिक्ट करने शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर भी ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ये लापरवाही है या फिर कोई ऐसा बड़ा आप कह सकते हैं कि गैस रिसाव हुआ जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सका, इन तमाम चीजों के बारे में भी जांच परख की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले एक दशक का सबसे बड़ा हादसा यह है और यह भी कि चीन लगातार इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरीके से माइनिंग के अंदर यह हादसा हुआ, करीबन 100 से ज्यादा, करीबन 80 से ज्यादा लोग इसमें की मौत हो गई, कई लोग मिसिंग भी बताया जा रहा है, कई लोग जो है वो समय माइनिंग के अंडरग्राउंड काम भी कर रहे थे जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है, तो ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है जो लगातार चीन में चलाया जा रहा है। लेकिन जरूर है, इसमें एक संकेत जरूर दिया है कि कितना ज्यादा आप कह सकते प्रभावशाली ब्लास्ट रहा होगा जब ये पूरी की पूरी कोल माइनिंग के अंदर इतने ज्यादा लोगों की कैजुअल्टीज हुई, इतने ज्यादा लोग मारे गए।
0: 84 लोगों की तो मौत की पुष्टि हुई है, बहुत से लोग तो अभी तक फंसे नहीं हुए, फंसे हुए हैं, और एक ही वो गाड़ी है जो अंदर तक जा सकती है, सामान ले जा सकती है, तो ये आंकड़ा कितना बढ़ सकता है बहुत चिंता का विषय है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
6: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
5: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
7: You're listening to MSNBC.
5: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
8: Call something classic, you've got

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
3: और वही कहां गए थे घूमने
4: जीके मैक्स
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है।
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1,00,000 तक जीत सकते हैं।
6: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
7: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
8: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: आगे आगे
12: करेक्ट।
13: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: Bring on the off-road. Bring home a new Honda. With a great deal on your favorite Honda vehicles, conquer trails and back roads in cars built for exploring. With the rugged Honda Pilot, Ridgeline, CR-V, and Passport, the road might stop. You're not done. All from the 2025 Kelley Blue Book Best Value brand.
4: Based on 2025 Consumer Choice Awards from Kelley Blue Book, visit kbb.com for more information.
5: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
6: What you got for me, Jack?
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
7: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
8: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
9: इसमें माइक्रोफाइबर है।
8: माइक्रोफाइबर यानी
9: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
8: हमारे सीमेंट में नहीं है,
9: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
10: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
11: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
12: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
13: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
14: नीट की परीक्षा से पहले एक गैस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गैस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
15: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
13: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
16: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
14: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
13: जहां खबर वहां खबरदार।
1: इन एसोसिएशन विद
0: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

चीन से तेहरान तक पाक का कूटनीतिक शो ऑफ। पाकिस्तान चीन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ। शी जिनपिंग और ली कियांग से अहम बैठकें, B2B निवेश सम्मेलन। हर मौसम की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का लक्ष्य। पाकिस्तान की यह यात्रा इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। पहली पाक पीएम शरीफ की चीन की और दूसरी पाक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा। हाल के दिनों में अमेरिका और रूस जैसे देशों के नेताओं की चीन यात्रा के बाद शरीफ का चीन जाना और भी हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है। पाक पीएम शहबाज शरीफ की यह यात्रा चीन और पाकिस्तान के बीच 75 वर्षों की राजनीतिक संबंध को आगे बढ़ाने की एक औपचारिक प्रक्रिया है। पाकिस्तानी पीएम की इस यात्रा में क्या खास होगा? पाकिस्तान चीन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ। बीजिंग मित्रता समारोह में शिरकत। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और पीएम ली कियांग के साथ बैठक। हांगझो B2B निवेश सम्मेलन में भागीदारी। चीनी न्यूज एजेंसी के अनुसार चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान अच्छे दोस्त और हर मौसम के रणनीतिक सहयोगी हैं, जो पहाड़ों और नदियों से जुड़े हैं और सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

पीएम मोदी ने रोजगार मेले में 47 शहरों के 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा विकास की भागीदारी है युवा। विदेशी निवेश से बढ़ेंगी नौकरियां। 5 देशों के दौरे का जिक्र। कोलकाता से दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। थोड़ी देर में पीएम मोदी से मुलाकात। क्वाड साझेदारी, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा। यूपी में भीषण गर्मी में पावर कट के आक्रोश पर चढ़ा सियासी पारा। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बोला हमला, महाविद्युत आपदा बताया। योगी के मंत्री बोले आईने में खुद को देखें अखिलेश। देश के लोगों को एक बार फिर महंगाई का झटका। 9 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 87 पैसे, डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। सीएनजी भी 1 रुपए महंगी। और सामने आई त्रिशा शर्मा की मौत वाली जगह की तस्वीर। क्राइम सीन सील। पुलिस के शिकंजे में पति समर्थ सिंह से पूछताछ। आज कोर्ट में पेशी। जल्द दोबारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। स्वागत है आपका। और अब बात ईरान और अमेरिका के बीच जो नई तनातनी शुरू हो गई है उसकी करेंगे। फिर से नई धमकी देते हुए कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम नहीं रहने देंगे। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के लिए यूरेनियम को हासिल करके रहेंगे, लेकिन इसका सीधा और करारा जवाब ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की तरफ से आया है। मुज्तबा खामेनेई ने अपने आदेश में कहा है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी के हाथों में नहीं सौंपेंगे।

0: ईरान अमेरिका में एनरिच यूरेनियम पर छिड़ेगा महायुद्ध। यूरेनियम पर आर पार ट्रंप की धमकी, बनाम मुश्तबा का आदेश। सुप्रीम लीडर मुश्तबा का मैसेज क्लियर है, यूरेनियम नहीं सौंपेंगे। ४४० किलो एनरिच यूरेनियम की जंग महायुद्ध तक जाएगी। ईरान का यूरेनियम हासिल करना ट्रंप का बन जाएगा बुरा सपना। युद्ध में ट्रंप जहां से चले थे आज भी वहीं खड़े हैं। जिस एनरिच यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम के लिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जंग थोप दी, आज भी उस यूरेनियम पर अमेरिका के हाथ खाली हैं। अमेरिका ईरान के साथ किसी भी कीमत पर यूरेनियम पर डील चाहता है, लेकिन ईरान के इरादों से लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान का 440 किलो एनरिच यूरेनियम हासिल करना एक बुरा सपना बन जाएगा। और अब ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक नई जंग की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि किसी भी हाल में ईरान में मौजूद करीब 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को ईरान के हाथ लगने नहीं दिया जाएगा। जब व्हाइट हाउस में ट्रंप से पूछा गया कि क्या 60% तक यानी परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब के स्तर तक एनरिच किया गया यूरेनियम ईरान के पास रहेगा, इसके जवाब में ट्रंप ने इनकार करते हुए कहा कि वो अमेरिका के पास आएगा। जमीन में दबे यूरेनियम को अमेरिका निकालेगा और नष्ट कर देगा, क्योंकि इसकी जरूरत अमेरिका को नहीं है, लेकिन ईरान के हाथ लगा तो वो इससे परमाणु हथियार बना सकता है। जाहिर है संवर्धित यूरेनियम का मुद्दा बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का विस्फोट कर सकता है।
1: No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay?
0: ईरान के एनरिच यूरेनियम पर ट्रंप के बयान के साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का भी आदेश आता है। मुश्तबा ने कहा कि खबरदार, ख्वाब भी मत देखना, नहीं देंगे ईरान का गड़ा हुआ खजाना। एनरिच्ड यूरेनियम भंडार ईरान से बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, यूरेनियम का ये कीमती स्टॉक देश के बाहर नहीं जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामेनेई ने अमेरिका और इसराइल को दो टूक शब्दों में अपनी रेड लाइन समझा दी है। इजरायली और अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार करते हुए मुश्तबा खामेनेई ने हुक्म जारी किया है कि ईरान का गड़ा हुआ खजाना यानी उसका वेपन्स ग्रेड यूरेनियम किसी भी कीमत पर देश के बाहर नहीं जाएगा। दुनिया भर के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान से लापता 440 किलोग्राम यूरेनियम नहीं मिला तो ये खतरा हमेशा सिर उठाए रहेगा कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि 440 किलो एनरिच यूरेनियम को ईरान ने इस्फहान और नताज में कहीं छिपा रखा है। ये वही एनरिच यूरेनियम है जिसकी मदद से ईरान बहुत कम वक्त में एटमी हथियार बना सकता है। मतलब यूरेनियम नहीं मिला तो इसकी गारंटी कौन देगा कि अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद भी ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ट्रंप का दावा यही है कि ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को वो हासिल कर लेंगे।
2: You said you want to get the enriched uranium. How are you going to get the enriched uranium?
3: It's very easy. If we have a deal with them, we're going down and we'll take it ourselves.
0: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक राफेल ग्रोसी की माने तो बीते साल अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम वर्षा की थी। उस वक्त 440 किलो एनरिच यूरेनियम परमाणु सेंटर में मौजूद था और उसे शिफ्ट करने के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन वो कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि यूरेनियम को लेकर ईरान का अपना दावा है। एक इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ है, सब कुछ मलबे में दब गया है, उन्होंने कहा कि सरकार के पास मटेरियल वापस पाने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये भी कि वो हमले के दौरान स्टॉक के भविष्य के बारे में बातचीत करने को तैयार नहीं है। ईरान की माने तो संवर्धित यूरेनियम अमेरिकी हमले के बाद एटमी सेंटर के मलबे में दब गया, लेकिन इस दावे की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी नहीं करती। हमले के बाद ईरान ने एटमी साइट पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को निरीक्षण की इजाजत नहीं दी थी। वहीं एटमी हथियारों के जानकार बताते हैं कि ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है। इसे थोड़ा और एनरिच करके ईरान एक दो नहीं बल्कि 9 परमाणु बम बना सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को हथियार योग्य बनाने के लिए अहम सेंट्रीफ्यूज का काम 99% पूरा कर रखा है। यही वजह है कि इसराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान के पास मौजूद यूरेनियम है।
4: אנחנו פועלים עכשיו לא רק כדי להשמיד את הטילים הבליסטיים ואת תוכניות הגרעין שנשארו, מעט נשאר, אלא גם להשמיד את התעשיות שמאפשרות לייצר את התוכניות הללו. וכבר עכשיו, לאחר 20 יום, אני יכול לבשר לכם, לאיראן אין היום אפשרות להשאיר אורניום ואין לה אפשרות לייצר טילים בליסטיים. אנחנו ממשיכים בריסוק היכולות הללו. אנחנו נרסק אותם עד דק, עד עפר.
0: ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम 60% तक संवर्धित यूरेनियम है, जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी मटेरियल से थोड़ा ही कम है। इससे सिर्फ 10 के आसपास एटम बम बनाए जा सकते हैं। साथ ही दावा किया जा रहा था कि ईरानी सरकार के पास लगभग 200 किलोग्राम 20% एनरिच्ड वाला यूरेनियम था। माना जाता है कि 60% एनरिच्ड यूरेनियम का लगभग आधा हिस्सा इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर एक टनल कॉम्प्लेक्स में स्टोर किया गया था, लेकिन अब वो कहाँ है कुछ पता नहीं। ईरान को ट्रंप की तरफ से भेजे गए युद्ध विराम के प्रस्ताव में 440 किलो संवर्धित यूरेनियम भी एक बड़ा मुद्दा है। ट्रंप यही चाहते हैं कि ईरान अपना 440 किलो यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे या फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में रखे, क्योंकि ट्रंप भी समझते हैं कि ईरान से संवर्धित यूरेनियम हटाए बिना युद्ध विराम करना सुलगती हुई आग को छोड़ देने जैसा है। आज तक ब्यूरो
5: सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुमित ईरान होकर भी आए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार भी हैं, हालात समझते भी हैं। सुमित, यूरेनियम पर सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के आदेश के बाद जो अभी उन्होंने दिया, उससे क्या लगता है कि क्या कभी एनरिच्ड यूरेनियम पर ईरान और ट्रंप की डील हो पाएगी?
6: देखिए सईद, एनरिच यूरेनियम के साथ दो शर्तें हैं अमेरिका की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 400 किलो का जो एनरिच यूरेनियम है वही लगातार हैंडओवर करने की बात की जा रही है, उसके साथ दो शर्तें और हैं जो ईरान को मंजूर नहीं। सबसे पहली बात तो ईरान ने साफ तौर पर इस बात को लेकर पहले बातचीत करने के लिए तैयार था कि एनरिच यूरेनियम को वो रूस को दे दे ताकि कम से कम बातचीत का दायरा या फिर बातचीत हो सके, लेकिन फिर अमेरिका की तरफ से जो शर्तें रखी गई उसके बाद सुप्रीम लीडर की तरफ से साफ कह दिया गया कि एनरिच यूरेनियम कहीं नहीं जाएगा, वो ईरान में ही रहेगा। दूसरी बड़ी शर्त थी अमेरिका की कि जो फैसिलिटीज है एनरिच यूरेनियम की, जो उनकी साइट्स हैं उसमें जो फोर्दो और नतांज है उन साइट्स के ऊपर खास तौर पर जो उनका उन साइट्स को बंद करना पड़ेगा। तीसरी जो साइट है इस्फहान की, जिसके अंदर जो जो जो कैपेबिलिटीज हैं एनरिच यूरेनियम को करने की, वो करीबन पहले और दूसरे स्टेज पर है। बाकी दोनों फैसिलिटीज पर यानी फोर्दो में और नतांज के अंदर वो जो उनके पास स्पिनर्स हैं यानी जो एनरिच करने के जो प्रोसेस होता है वो उनके पास 5 स्टेज और 6 स्टेज का है, तो उन दोनों को बंद करना पड़ेगा। वो भी ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया। ईरान का मानना यह है कि ये उसने सारी कैपेबिलिटीज को पिछले 4 से 5 दशकों के अंदर हासिल किया है, वो लगातार इन सारी को ऐसे ही सरेंडर नहीं करना चाहता और ये जानता है कि देखिए अगर एनरिच यूरेनियम इस तरीके से हैंडओवर कर दिया गया तो निश्चित तौर पर ईरान के लिए बहुत दिक्कत होगी, खासतौर पर सुप्रीम लीडर के ऊपर दिक्कत होगी, क्योंकि 40 साल तक जो उन्होंने सैंक्शन झेले वो एक तरीके से नल एंड वॉइड हो जाएंगे। शायद इसी वजह से ईरान ने इन चीजों से मानने से इनकार कर दिया है।
5: बहुत अच्छे तरीके से सुमित ने समझाया। और ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु विवाद और यूरेनियम की तनातनी अभी थमी भी नहीं कि अब समंदर से एक और बेहद खौफनाक खबर आ रही है। हॉर्मुज इस वक्त महायुद्ध का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि ईरान और ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर फीस वसूली के सिस्टम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नई बनाई गई पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने कहा कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया की सीमा तय कर दी है। अब अथॉरिटी के मुताबिक यहां से गुजरने के लिए परमिट जरूरी होगा, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मन स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और यहां किसी तरह का टोल नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इसका विरोध किया है।
7: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की दादागिरी, अब क्या करेंगे ट्रंप? हॉर्मुज में टोल वसूलने पर अड़ा ईरान, ओमान से पेमेंट सिस्टम पर बात। हॉर्मुज पर छिड़ेगा महायुद्ध, नेटो ने की हॉर्मुज के लिए तैयारी। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने पर अड़ गया है। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि ईरान की इस जिद से कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि हॉर्मुज पर कोई टोल लगे। उनका कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है और ये न केवल सभी के लिए खुला बल्कि सभी के लिए मुफ्त होना चाहिए। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज से एक भी जहाज उसकी मर्जी के बिना नहीं गुजर सकता। जिस जहाज को गुजरना है वो विदेश मंत्रालय के जरिए अर्जी दे, फिर उसे IRGC की नेवी मंजूर करेगी। ईरान जहाजों से तय की गई फीस भी वसूलेगा और इस बीच IRGC नेवी ने दावा किया है कि बीते 24 घंटे में तेल टैंकर समेत 35 कंटेनर जहाजों ने उसकी इजाजत से हॉर्मुज स्ट्रेट को पार किया है।
8: Let me just one follow-up on that. How do you want things to end up with the Strait of Hormuz, though? Would you like them to?
1: Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know. It sounds like a lot of money, but whether it's $500 or $200 or $300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And
7: Donald Trump कह रहे हैं कि हॉर्मुज सभी के लिए मुफ्त और मुक्त होना चाहिए। लेकिन ईरान ने हाल ही में फारसी खाड़ी जल डबरू बाध्य प्राधिकरण यानी PGSA का गठन किया है। इसके जरिए वो हॉर्मुज जल डबरू मध्य को अपने नियंत्रण वाला समुद्री क्षेत्र बनाने का इरादा रखता है और बाकायदा ईरान ने हॉर्मुज का एक नक्शा जारी कर अपना प्रभाव क्षेत्र भी दुनिया को दिखा दिया है। ईरान अमेरिका की इस जंग में दुनिया चने के साथ खून की तरह पिस रही है, क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों ने अपनी अपनी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी कर रखी है। वो हॉर्मुज जहां से पूरी दुनिया का तेल और गैस गुजरता है, इसीलिए दुनिया भर में तेल और गैस का संकट खड़ा हुआ है। ऐसे में अब हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी पर अब नेटो में बड़ी हलचल देखी जा रही है। अब तक डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज खुलवाने में नेटो की ओर से मदद न मिलने पर तीखे बयान देते रहे हैं। अब खुद नेटो देश बड़ी बैठक करने वाले हैं। आने वाली 7 और 8 जुलाई को तुर्की की राजधानी अंकारा में नेटो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस बार का सम्मेलन वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। तुर्की दूसरी बार इस समिट की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा और संवेदनशील एजेंडा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी संकट और ईरान की ओर से लगाई गई नाकेबंदी है। अगर जुलाई की शुरुआत तक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा तो नेटो वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए एक नौसैनिक बेड़ा भेजने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। नेटो के सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप ने पुष्टि की है कि ये सैन्य विकल्प पूरी तरह मेज पर है और ब्रिटेन के साथ ही फ्रांस जैसे देश पहले से ही समुद्री सुरक्षा योजनाओं को अमली जामा पहनाने में जुटे हैं। अगर ये मिशन शुरू होता है तो ये नेटो के इतिहास का एक बड़ा आउट ऑफ एरिया यानी अपने तय क्षेत्र से बाहर का ऑपरेशन होगा जो गठबंधन की सैन्य भूमिका को सीधे मिडल ईस्ट तक बढ़ा देगा। हालांकि इस मिशन पर अभी पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है। कई यूरोपीय देश डर रहे हैं कि नेटो के सीधे उतरने से ईरान के साथ तनाव और अधिक भड़क सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नेटो इस समिट में खाड़ी देशों यानी UAE, कतर, बहरीन और कुवैत के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है ताकि एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति बनाई जा सके। ऐसे समय में जब हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच भयंकर तनाव है, तब US सेंट्रल कमांड ने अपनी मुस्तैदी और तैयारी की तस्वीरें जारी की हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस समय अरब सागर में पूरी तरह तैनात है और जबरदस्त मुस्तैदी बनाए हुए है। आधिकारिक बयान में साफ किया गया है कि अमेरिकी नौसेना का यह दस्ता ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ लागू की गई अमेरिकी नाकेबंदी को कड़ाई से प्रभावी बनाने के मिशन पर है। अमेरिकी नौसेना की ओर से ईरानी बंदरगाहों की जा रही इस घेराबंदी को क्षेत्र में किसी भी संभावित सैन्य टकराव से पहले अमेरिकी दबदबा कायम रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
5: तो देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, आज आपने तस्वीरें देखी भी होंगी, कोलकाता पहुंचे और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे और रूबियो के दौरे से भारत अमेरिकी संबंधों में फिर से नई गर्मजोशी की उम्मीद जताई जा रही है। अब ऐसे में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर से आज तक की खास बातचीत आपको सुनवाते हैं।
9: मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस यात्रा का क्या महत्व है, क्योंकि इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, इस यात्रा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं?
10: रोहित, आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे पता है कि आप भारत वापस जा रहे हैं, इसलिए हम शनिवार को आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की उम्मीद करते हैं। मार्को रूबियो की इस भारत यात्रा का बहुत महत्व है। अमेरिका भारत के साथ रिश्तों को लेकर गंभीर है और इसलिए विदेश मंत्री, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं, 4 दिनों के लिए भारत आ रहे हैं, जो मामूली बात नहीं है। जब विदेश मंत्री यात्रा करते हैं तो आम तौर पर वो 1 या 2 रातों के लिए ही आते हैं, वो अभी तक किसी एक देश में 4 दिनों के लिए नहीं गए हैं। इसलिए जब विदेश मंत्री यहाँ आएंगे तो वो दिल्ली, कोलकाता, आगरा और जयपुर जाएंगे। इसका बहुत महत्व है, इससे भारत अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत होंगे।
9: आपने बिल्कुल सही कहा, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो कोलकाता से शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली लौटेंगे, द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, फिर जयपुर आगरा जाएंगे, वापस आएंगे और क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मतलब ये एक बहुत बड़ा 4 दिवसीय कार्यक्रम है। हमें बस इतना बताइए कि हम किन ठोस परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं, क्या कोई ठोस परिणाम हो सकते हैं जिनकी हम उम्मीद कर सकते हैं?
10: मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी होंगी, साथ ही क्वाड सम्मेलन से संबंधित भी होंगी। क्वाड में भागीदार होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे नतीजे होंगे जिनके बारे में चारों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम पिछले लगभग 5 महीनों से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 महीनों से हूँ। विदेश मंत्री ने डॉक्टर जयशंकर के साथ नियमित रूप से बातचीत की है, वो कई बार मिले हैं अमेरिका में भी और अन्य कार्यक्रमों में भी, इसलिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बातें करना अच्छा है, लेकिन काम करना उससे भी बेहतर है।
5: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Your Saturday nights will never be the same.
2: The biggest hits back to back in the mix. Get ready for the biggest mix show on the planet.
3: The Tailgate Block Party.
1: The Tailgate Block Party.
2: 6 hours nonstop. Nonstop.
3: The best DJs from around the world.
1: The Tailgate Block Party.
2: Saturday night.
1: 8 p.m. Eastern.
3: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
2: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: विशा मौत केस में टर्निंग पॉइंट, हिरासत में पति समर्थ। विशा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, एम्स की स्पेशल टीम भोपाल जाएगी। विशा की मौत पर परिवार के सवाल, डबल हैंगिंग मार्क का मतलब क्या है? विशा के शव को सुरक्षित रखने के आदेश, -80 डिग्री में रखा जाएगा। पति समर्थ ने अग्रिम याचिका वापस ली, 4 याचिकाओं पर सुनवाई। मॉडल और एक्ट्रेस त्विशा शर्मा डेथ केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब त्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, जबकि आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के विरुद्ध सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। कोर्ट ने त्विशा के शव को -80 डिग्री पर सुरक्षित रखने को कहा है। इस मामले में आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम याचिका वापस ले ली गई है और समर्थ सरेंडर करने पहुंचा तो उसे हिरासत में ले लिया गया। हाईकोर्ट 4 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इसमें आरोपी सास, पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की जमानत याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 10 दिन पहले भोपाल में हुई त्विशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गई, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है। त्विशा का पति और इस केस का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया। समर्थ इस वक्त भले ही कानून के शिकंजे में हो, लेकिन त्विशा के पिता ने आरोप लगाया कि समर्थ जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है और वो फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब उसके सरेंडर के बाद जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।

कोलकाता से दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, थोड़ी देर में पीएम मोदी से मुलाकात, क्वाड साझेदारी, रक्षा सहयोग, ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में 47 शहरों के 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र का, विकास की भागीदारी है युवा, विदेशी निवेश से बढ़ेंगी नौकरियां, 5 देशों के दौरे का भी जिक्र।

तीसरी बार बड़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल में 87 पैसे तो डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, सीएनजी भी महंगी। और सामने आई ट्रिशा शर्मा की मौत वाली जगह की तस्वीर, क्राइम सीन सील, पुलिस के शिकंजे चढ़े पति समर्थ सिंह से पूछताछ, आज कोर्ट में पेशी, जल्द दोबारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ वांशु दीक्षित। दोपहर के 2 बज गए और इस वक्त की सभी बड़ी खबर लेकर हम आए हैं जो आज चर्चा में है। सबसे पहले बुलेटिन की एक झलक आपको दिखा देते हैं। बात हम आज करेंगे ट्विशा की मौत मिस्ट्री की, जो पिछले कई दिनों से अनसुलझी हुई है, जिसकी जांच अब सीबीआई के हवाले है। इस समय क्या अपडेट है ये आपको बताएंगे। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बत्ती गुल की, सियासत फुल की, यानी कि गर्मी और बिजली कटौती की भी बात की जाएगी, लोगों की परेशानी और उस पर हो रही सियासत की। सबसे पहले लेकिन ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कल जबलपुर में हिरासत में लेने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस आज ट्विशा के पति यानी समर्थ सिंह को भोपाल की अदालत में पेश करेगी। कल देर रात पुलिस समर्थ सिंह को लेकर भोपाल पहुंची, जहां समर्थ सिंह को कटारा हिल्स पुलिस थाने लाया गया। और इस बीच समर्थ सिंह को एक और झटका लगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ट्विशा के पति का वकालत का लाइसेंस रद्द कर दिया है। क्रिमिनल लॉयर था समर्थ, लेकिन अब लाइसेंस रद्द कर दिया गया है बार काउंसिल की तरफ से। मध्य प्रदेश सरकार पहले ही ट्विशा केस की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा कर चुकी है। अब ऐसे में ट्विशा शर्मा के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, परिवार का ये मानना है। और आज ये बताया जा रहा है कि कोर्ट में समर्थ सिंह को पेश किया जाएगा और वहां पुलिस समर्थ की रिमांड की मांग कर सकती है, क्योंकि बहुत सी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना है पुलिस को, सवाल पूछने हैं। तो कल समर्थ को हिरासत में लिया गया जबलपुर से, फिर भोपाल लाया गया। अब इसी बीच भोपाल पुलिस का बयान आया है। पुलिस का कहना है कि समर्थ कोर्ट में सरेंडर करने गया था, लेकिन कोर्ट ने उसका सरेंडर स्वीकार नहीं किया। जबलपुर हाई कोर्ट में सरेंडर करने गया था ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भोपाल पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी और 7 दिन की रिमांड मांगेगी।
1: कोर्ट में पहुंचा था सरेंडर करने, कोर्ट ने सरेंडर करने से मना कर दिया। इसी बीच अपनी टीम भी उधर थी, तो फिर अपनी टीम ने इसको जबलपुर टीम की मदद से कस्टडी में लिया। तो अभी तो वो देखा जाएगा कि बेसिकली कोर्ट में सरेंडर करने आया था, तो अभी किसी और व्यक्ति का तो ऐसा रोल नहीं है।
0: रवीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शुरुआत से इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। रवीश, क्या हुआ आज, क्या कोर्ट में अभी तक पेशी हो गई है समर्थ की?
2: दिया हुआ है जी? नहीं नहीं, अभी समर्थ थाने में ही मौजूद है और पुलिस की टीम जो है उसे पहले मेडिकल के लिए लेके जाएगी और उसके बाद समर्थ को जो है कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पे पुलिस उसकी रिमांड मांगेगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक पुलिस 3 से लेकर 7 दिनों तक की रिमांड समर्थ से मांग सकती है समर्थ की, और इस दौरान समर्थ से पूछताछ की जाएगी कि वो फरार क्यों हुआ, कौन लोग थे उसकी फरारी में जिन्होंने मदद की, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि खुद जुडिशरी से जुड़ा हुआ है समर्थ, इसके बावजूद उसको कानून पे भरोसा क्यों नहीं था, वो क्यों भाग गया, इस पे सवाल होंगे। समर्थ और त्विशा के बीच में अंतिम समय में क्या कुछ हुआ, क्या किसी बात को लेके विवाद था, जैसा कि व्हाट्सएप चैट में बार बार त्विशा जिक्र कर रही है, उस पर भी बातचीत होगी। जो आरोप लग रहे हैं समर्थ पे, उसके परिवार पे, कि उन्होंने दहेज मांगा 2 लाख रुपए का, और ये तमाम चीजें जो है, क्योंकि शादी के महज 5 महीनों के भीतर त्विशा ने कथित रूप से आत्महत्या की है, तो कई सवाल जो है वो पुलिस के सामने हैं, अनसुलझे सवाल हैं, वो तमाम चीजें पूछना बाकी है समर्थ से। इसीलिए पुलिस 3 से लेकर 7 दिनों तक की रिमांड आज कोर्ट से मांगने वाली है समर्थ की।
0: रविश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। लेकिन ये भी इस मामले में बता दें कि ट्विशा शर्मा मौत मिस्ट्री केस से जुड़ी जो एक बड़ी खबर आ रही है कि ट्विशा शर्मा के फांसी लगाने वाली जगह की तस्वीर फोटो सामने आई और ये एक्सक्लूसिव आज तक के पास है जो आपने देखी। ट्विशा शर्मा के फांसी लगाने वाली जगहों की वो तस्वीरें आई हैं, पुलिस ने क्राइम सीन को सील कर दिया है। ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़ी ये देखिए जो सवाल है, ये वो जगह है जहां छत पर ऊपर आप देखेंगे सोलर पैनल लगे हुए हैं और उसके बाद जो जिमनास्ट वाली जो रिंग है और उसी से आप देखेंगे कि बेल्ट भी टंगी हुई है। तो यही वो जगह है जहां पर बताया जा रहा है कि ट्विशा ने फांसी लगाई। उसके पीछे की वजह क्या थी, ये तो सीबीआई जांच का विषय है। सीबीआई इस मामले में तफ्तीश करेगी, जांच करेगी। हालांकि इस सीन को, इस जगह को अब सील कर दिया गया है, सबूत और जुटाए जा रहे हैं। तुषार शर्मा मौत को लेकर एक और बड़ी खबर, वो आपको बता दें, तुषार का आखिरी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। अब रिपोर्ट के मुताबिक तुषार शर्मा आत्महत्या करने से पहले एक्सप्रेशन ब्यूटी पार्लर गई थी और ये बताया जा रहा है कि वहां पर हेड मसाज कराई थी। अब ये वीडियो आया है, उस वीडियो की अब चर्चा भी की जा रही है क्योंकि हर एक वीडियो बहुत अहम कड़ी साबित हो सकता है जांच में।
2: आज तक आपको आज बताने वाला है तुषा की मौत से ठीक पहले उनके जो अंतिम लम्हे गुजरे थे, जिस ब्यूटी पार्लर में तुषा आई थी मौत से पहले, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आज तक ने आपको दिखाया था। अब हम उसी ब्यूटी पार्लर के भीतर मौजूद हैं और जो ब्यूटी पार्लर की संचालिका हैं किरण, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अंतिम समय में क्या कुछ हुआ था, तुषा ने इतना बड़ा जो फैसला लिया उससे ठीक पहले किस तरीके के उनके हाव भाव थे, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, क्या वो खुश थी या उदास लग रही थी या तनाव में थी। तुषा जो है वो आपकी रेगुलर कस्टमर थी या पहली बार ही उस दिन आई?
3: नहीं, वो मेरी रेगुलर कस्टमर थी जब से वो भोपाल आई थी, उसके बाद से वो यहाँ आती रहती थी। 5 या 6 विजिट हुई थी उनकी यहाँ पे।
2: कितने अंतराल में वो आ जाती थी पार्लर में विजिट कर लेती थी, महीने, एक महीना, कुछ दिन?
3: यदि उनकी दिसंबर में शादी हुई है और ये जून में है, तो यदि वो 5 बार आई है तो आप ये लगा सकते हैं कि हर महीने आई होंगी वो।
2: अच्छा, क्या हुआ, क्या था उस दिन, आप थोड़ा बता पाए अगर हमारे दर्शकों तो, कि ब्यूटी पार्लर में वो आई थी तो उसके बाद वो कहाँ कहाँ यहाँ उन्होंने क्या क्या किया? तो
3: वो आई थी और वो आई सबसे पहले उनने मेरे स्टाफ से बोला कि तुम लोग टीवी वो मूवी देख रहे हो, वो बहुत खुश थी। आई अंदर आई, फिर उनने बोला कि मेरे को रिलैक्स होने के लिए हेड ऑयल मसाज चाहिए है। देन उनने हेड ऑयल मसाज लिया, फिर उनने पेडिक्योर करवाया, फिर वो फिर अपना कुछ और स्किन का काम करने के लिए वो फिर फेशियल सेक्शन में गई। वहाँ
2: पे पहले कहाँ पे वो आई, जब उसके बाद कहाँ पे वो यहाँ पे आपके पार्लर में कहाँ, इधर उस भर बैठी या कहीं और?
3: इधर बैठी थी वो थोड़ी देर के लिए, देन उसके बाद फिर वो इधर उधर गई और उधर उनने हेड ऑयल मसाज कराई।
2: ये सीट पे एक बार आप जरा आकर के एक बार दिखा दें आप, इस वक्त हम पहुंच गए हैं, ये वो कुर्सी है
3: जी, हेड ऑयल मसाज कराई थी
2: जी।
3: उसके बाद वो इस रूम में गई थी और यहाँ पे उनका कुछ काम था जो उनने यहाँ पे कराया। उसके बाद फिर वो
2: ये मतलब ये वो चेयर है जो आखिर जो सीसीटीवी वायरल फुटेज सामने आया है जिसमें वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई है, और ये वो चेयर है जहाँ पे तुषा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं, ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं तुषा के आखिरी लम्हों की ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद वो
3: उस चेयर पे पेडिक्योर कराया था, उस चेयर पे बैठ के पेडिक्योर कराया था।
0: हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मामले से जुड़ी हर एक जानकारी, अपडेट, तस्वीरें, विजुअल्स सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाए हैं। रवीश, अब पुलिस के अधिकारियों से भी आपकी बात हुई होगी, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज है, तस्वीरें हैं, अब जांच के शोर आगे बढ़ रही है, कैसे कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और क्या चुनौती है पुलिस के सामने?
2: देखिए, आपको बता दें आज तक वो चैनल है जिसने इस मामले की हर एंगल से पड़ताल की है, हर वो तस्वीर जो दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए तुषा के अंतिम पलों से लेकर के जो कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश हुई थी समर्थ की, साथी में गिरिबाला सिंह का अगर जवाब हो जो उन्होंने आज तक से बात करते हुए तमाम सवाल उठाए थे, तो हर वो चीज़ हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो जाहिर सी बात है हमारे पास हर वो एक जानकारी है इस केस से जुड़ी हुई जो बेहद अहम है, हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ना केवल ये मौत संदिग्ध है बल्कि पुलिस की जांच भी काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध है। सवाल कई उठ रहे हैं पुलिस की जांच में, और इसीलिए शायद सरकार को लगता है कि जांच पुलिस से नहीं बल्कि सीबीआई से होनी चाहिए, और इसीलिए सीबीआई को रेकमेंड की गई है तुषा केस की जांच। अब देखते कब सीबीआई कब आती है, कब इस जांच को शुरू करती है, लेकिन इन सब के बीच हम उस पुलिस थाने के बाहर भी मौजूद है जिसके भीतर कल रात से समर्थ को रखा गया है। समर्थ को पुलिस आज कोर्ट में पेश करने वाली है, लेकिन कई सारे सवाल हैं इस केस से जुड़े हुए जिनको हम लगातार कर रहे हैं। पुलिस से जब हम बात कर रहे हैं तो पुलिस के सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि जिस जगह पर तुषा ने फांसी लगाई थी वो मटेरियल बाद में उपलब्ध करा करके पोस्टमार्टम के बाद भेजा गया, उस पर जांच हो रही है, और माना जा रहा है कि जो अधिकारी पुलिस का इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो सकती है।
0: मतलब सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिसने लापरवाही की उस पर कार्रवाई भी होगी और इसकी तह तक जाया भी जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच मध्य प्रदेश पुलिस तुषा की सास गिरिबाला के घर हाईकोर्ट का नोटिस लेकर पहुंची है, ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तुषा शर्मा की मौत के मामले में एक के बाद एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये
4: देखिए,
0: ये बताया जा रहा है ये गिरिबाला का घर है जो त्रिशा की सास है और हाई कोर्ट का नोटिस लेकर पहुंची है पुलिस। देखिए कोर्ट ने ये बहुत स्पष्ट बोल दिया कि सरेंडर स्वीकार नहीं किया गया है। अभी ये तस्वीर आप देखिए।
5: हाई कोर्ट का नोटिस है,
6: हाई कोर्ट का नोटिस निकला है गिरिबाला को गिरिबाला की गिरफ्तारी।
0: त्रिशा शर्मा की मौत के मामले की जांच तेज है, पति समर्थ सिंह हिरासत में है, उस पर कई सवाल हैं और आखिर पत्नी की मौत के बाद वो फरार क्यों हो गया था जबकि खुद अधिवक्ता है, खुद वकील था, क्रिमिनल लॉयर था, फरारी के दौरान वो कहां रहा? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर वाकई त्रिशा की मौत में उसकी कोई भूमिका रही है तो फिर अभी तक क्यों नहीं पुलिस के सामने? बहुत से सवाल है, उन सभी सवालों का जवाब भी देना होगा। लेकिन अब बात करते हैं दूसरी बड़ी समस्या की जो देशवासियों के सामने है और वो है बिजली संकट की। क्या आपके शहर या गांव में बिजली नहीं आ रही है? पूरी पड़ताल आज करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की बात हम करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर हैं। राजधानी लखनऊ से कानपुर तक की बात होगी, बात हाईटेक सिटी गुरुग्राम की भी होगी जहां बत्ती ऐसी गुल हुई कि रैपिड मेट्रो थम गई और ट्रेन ठप पड़ गई। यूपी वालों का हाल तो और भी ज्यादा बेहाल है, ऐसा बताया जा रहा है। दिन में काम करें, रात में बिजली के लिए धरना प्रदर्शन करें, हाथों से पंखा चलाएं, बिजली चलाएं, हर तरफ एक ही तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। गर्मी से लोग परेशान और ऊपर से बत्ती भी गुल। अब इस पर सियासत भी हाईफाई सियासत भी हो रही है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, गर्मी प्रचंड है। अब ये तस्वीरें देखेंगे और ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहां पर कितनी बिजली कटौती। प्रयागराज, वाराणसी और ये तो लखनऊ है, राजधानी उत्तर प्रदेश की कितने कितने घंटे? 6-6-6। प्रयागराज में भी 6 घंटे, काशी में 6 घंटे, बनारस में 6 घंटे और लखनऊ में 6 घंटे। मामला रुका नहीं है। रामनगरी अयोध्या में 6 घंटे बत्ती गुल, जबरदस्त गर्मी में। इटावा 6 घंटे बत्ती गुल। ताजनगरी आगरा में 6 घंटे बत्ती गुल, जहां पर विदेशी पर्यटक भी आते हैं। खैर वो तो होटल में रहते हैं, उनकी तो व्यवस्था है। आम लोगों की दिक्कत है यहां पर, गरीबों की दिक्कत है, क्या करें? वो इन्वर्टर के पैसे हैं नहीं उनके पास, तो ऐसे में बैठे हुए हैं, बच्चे रो रहे हैं। अब नोएडा में घोषित है, रामपुर में 6 घंटे, अलीगढ़ में भी 6 घंटे बत्ती घोषित है, लाइट जा रही। अब अघोषित मतलब कभी भी चली गई, कभी आधे घंटे के लिए, कभी 1 घंटे के लिए, मतलब फिक्स टाइम नहीं है। बाकी जगह चलिए 6-6 घंटे का है। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, यहां पर भी ऐसा है, जब मन चले राम भरोसे बत्ती गुल हो गई, ना पंखा चलेगा ना कूलर चलेगा। अब आप बैठे रहिए, या तो पेड़ के नीचे चले जाइए या फिर बाहर जाके मोहल्ले वालों से बात करिए, ऐसे ही टाइम पास करेंगे। और रात में क्या करेंगे? बिजली विभाग तक चले जाएंगे, पावर हाउस पर जाके थोड़ी देर शिकायत कर लेंगे, वहां पर भी कोई नहीं सुनेगा तो धरना प्रदर्शन कर लेंगे। यही सब कुछ हो रहा है और यही यहां पर हो रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश के बिजली संकट पर सियासत गर्मा गई। इस गर्मी में उत्तर प्रदेश की गंभीर बिजली संकट वो झेल रहा है और प्रदेश भर में मनमानी कटौती हो रही है, लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं। अखिलेश यादव, यूपी के ऊर्जा मंत्री, सोशल मीडिया पर भिड़ गए। अब देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी के सांसद, विधायक, ठेकेदार सब जिम्मेदार हैं। अब ऊर्जा मंत्री क्या कह रहे हैं? ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं आईना जब भी उठाया करो तो खुद को देख लिया करो, पहले खुद को देखो और फिर दिखाया करो। मतलब आईना जब भी उठाया करो पहले खुद को देखो और फिर दिखाया करो। यह अखिलेश यादव से। योगी शासन में बिजली में सुधार हुआ है, यह ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। अब वो कह रहे हैं कि पहले बिजली तो आती नहीं थी, अब देखिए आम जनता परेशान है, लेकिन अभी के ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं अपने टाइम पर देखो लाइट नहीं आती थी। अखिलेश यादव बोल रहे हैं अभी देखिए बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा कह रहे हैं कि 2017 से 2 गुना उपभोक्ता हो गए हैं। 3x800 मेगावाट प्लांट को मंजूरी दे दी गई है और नए पावर प्लांट नहीं है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह लड़ाई चल रही है। अब आम आदमी जिनके घर पर लाइट नहीं है, बत्ती गुल है, जिनके यहां ना कूलर चल रहा है ना पंखा चल रहा है, अब वो क्या करें? वो यही सुन रहे हैं कि पुरानी सरकार, अभी की सरकार पुरानी सरकार को कोसे जा रही है और वो गर्मी में मरे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते, देख लीजिए।
7: प्रदेश ऐतिहासिक बिजली संकट के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ सरकार है जो कहती है कि कोई कमी नहीं है, सब चंगा सी, दूसरी ओर विपक्षी नेता हैं जो इस संकट को महाविद्युत आपदा कह रहे हैं। इसमें तीसरा पक्ष है कानपुर से लखनऊ और रायबरेली तक के बीजेपी विधायकों का, जो कहते हैं कि बिजली बहुत कट रही है। और चौथा पक्ष है वो जनता जो इन सबको झेल रही है। बिजली कटौती से नाराज यूपी की जनता कहीं पावर हाउस पर धावा बोल देती है तो कहीं बिजली कर्मियों पर गुस्सा उतार रही है। कानपुर, मेरठ, लखनऊ, हापुड़ में तो लोग रात को सड़कों पर उतर गए। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने लिखा कि इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार है। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। अखिलेश के पोस्ट पर एके शर्मा ने लिखा कि आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दिखाया करो। एके शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। बिजली के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया भिड़ गए। अखिलेश यादव ने लिखा है कि सच तो यह है कि बीजेपी सरकार ने बिजली व्यवस्था को ठप कर दिया है। इस पर एके शर्मा ने लिखा कि आपके कार्यकाल से दोगुना उपभोक्ता आज यूपी में है। अखिलेश ने लिखा कि नई मांग की पूर्ति के लिए यूपी में कोई पावर प्लांट नहीं बना। इस पर एके शर्मा ने लिखा कि प्रयागराज के बेजा में 3x800 मेगावाट के प्लांट को मंजूरी मिली है। अखिलेश ने लिखा कि ट्रांसमिशन के लिए नई व्यवस्था नहीं दी गई। इस पर जवाब आया कि समाजवादी पार्टी कार्यकाल की तुलना में योगी शासन में बिजली

0: फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं सरकार से कहना चाहूंगा एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, पर उस दलित बच्ची को जिसके साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके उसके नशे के इंजेक्शन लगाए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया, उसको न्याय दीजिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं।
1: सफाई आपने सुन ली। दरअसल यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, जिनको अभी आप सुन रहे थे, वो महोबा में एक पीड़ित महिला के परिवार से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद वहां से जाते वक्त कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी। अब क्या कहा था वो तो हम आपको सुना नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरह से उसे शब्द का इस्तेमाल किया है वो सुनने में सही नहीं, लेकिन फिर भी आप एक अंदाजा दें। इसी वीडियो को AI वीडियो बता रहे हैं अजय राय। अब अजय राय के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। बीजेपी ने अजय राय की टिप्पणी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की लिखी हुई स्क्रिप्ट करार दिया।
2: शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को, धिक्कार होना चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज की भाषा आप मर्यादित राजनीतिक वातावरण में, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग है। पहले राहुल गांधी जानबूझ करके अपमानित करने की चेष्टा करते और अब अजय राय ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी है, राजनीति की कोई मर्यादा नहीं रह गई है, शुद्ध रूप से गाली गलौज की प्रयोग कर रहे। प्रधानमंत्री जी के प्रति इतनी घृणा, इतनी नफरत आखिर कांग्रेसियों को क्यों है? क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश के सर्वोच्च पद पर एक पिछड़ी बिरादरी का एक सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति वहां तक पहुंच गया? पूरी कांग्रेस पार्टी आज होड़ में मची हुई है, प्रतिस्पर्धा में लगी हुई है कि कौन प्रधानमंत्री जी के प्रति कितने अशोभनीय अमर्यादित टिप्पणियां कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है।
3: जो व्यक्ति आपकी कुशलता चाहता है, जो जब आप जिंदगी मौत से लड़ रहे थे उस समय प्रधानमंत्री जी आपकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आप प्रधानमंत्री जी के लिए गाली गलौज कर रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अजय राय जी जरूर बताइए ये स्क्रिप्ट प्रियंका गांधी का था या राहुल गांधी का था? अगर आप मौन रहेंगे तो देश और उत्तर प्रदेश समझ जाएगा कि ये वहीं से आपके हाईकमान का स्क्रिप्ट आपको मिला जो आपने पढ़ा।
1: वक्त हो गया बहुत छोटे सा ब्रेक का, आप देखते रहिए।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुड़।

0: your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: यार
2: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रोफाइबर है।
2: माइक्रोफाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है,
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
10: बस 2000
11: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
12: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
13: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
16: Character, the taste of success.
17: हर चेहरा सिर्फ एक नाम नहीं होता, उसके पीछे होती है एक कहानी। कभी सुर्खियों में, कभी सवालों में, हम बताते हैं उस चर्चा का सच। चर्चित चेहरा देखना ना भूलें सोमवार से शुक्रवार शाम ठीक 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. So thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
6: It's your boy,
3: just
6: Jay-Z.
3: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
7: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: बस दो दो हजार
10: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो एक लाख तक जीतेगा।
11: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो और एक लाख तक जीतो।
1: In association with
2: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
0: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
1: Hint, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
0: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू। समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
12: आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि 4 लेन की सड़कें हो पाएंगी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है क्योंकि देवरिया तो पहले जब मैं गोरखपुर से सांसद था लगभग हर महीने मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त होता था, लगभग हर महीने, क्योंकि यहां पर तत्कालीन सरकार के उत्पीड़न, तत्कालीन सरकार की अराजकता, समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जो उस समय अव्यवस्था पैदा की गई थी उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी हिंदू याबानी, कभी व्यापारिक संगठनों के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आना पड़ता था, और तब मैं देखता था कि गोरखपुर से देवरिया की सड़क 2 लेन बमुश्किल थी, और उसमें भी कहीं कहां पर वो सिंगल लेन ही थी।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: जिनके शांति प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट से 80 से ज्यादा लोगों की मौत, हादसे के समय बड़ी संख्या में मजदूर खदान के अंदर मौजूद थे। हादसे से पहले खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अलर्ट जारी किया गया था, इसके बाद जोरदार धमाका हुआ। पीएम मोदी ने 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा, प्रोग्राम देश के 47 शहरों में आयोजित हुआ। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने अपने 5 देशों की विदेश यात्रा का जिक्र किया, कहा आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। महोबा में पीएम नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर FIR। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला, कहा जनता की कमाई पर किश्तों में लूटमार। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दाम तीसरी बार बढ़ने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा जनता को खुलकर लूट रहे क्योंकि अपने अमीर दोस्तों की तिजोरी भरनी है। तेजस्वी यादव ने भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा आने वाले दिनों में जनता को और भयंकर महंगाई झेलनी होगी। राहुल गांधी के महंगाई पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष के तंज पर किया पलटवार, बोले बीजेपी का मतलब कमिटमेंट की राजनीति और कांग्रेस का मतलब कॉम्प्रोमाइज की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलाई पदाधिकारियों की बैठक, यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर हलचल। यूपी में उम्मीद पोर्टल पर 31,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द, दस्तावेजों में खामियां मिली। जांच में कई संपत्तियों के खसरा नंबर वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड से बेल नहीं हुए, दस्तावेजों के मिलान और रिकॉर्ड सत्यापन के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं। लखनऊ में वकीलों और पुलिस के बीच टकराव अब बेहद गंभीर स्तर पर, बार एसोसिएशन की ओर से वकीलों को करीब 600 लाठियां बांटी गईं। वकीलों में चैंबर्स तोड़े जाने और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भारी नाराजगी, आरोप है कि पहले पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया था। केरलम के मुख्यमंत्री VD सतीशन ने सोनिया गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, दिसंबर 2023 संसद सुरक्षा चूक मामले में UAPA के तहत 13,000 पन्नों की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल।

चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की कथित साजिश का बड़ा खुलासा। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक आरोपी ने इवांका की हत्या की योजना बनाई थी। आतंकी हमजा बुरहान के जनाजे में पहुंचा आतंकी संगठन का टॉप मोस्ट आतंकी, इस्लामाबाद में दफनाया गया आतंकी हमाज बुरहान। अल बदर का चीफ वक्त जमीन खान भी पहुंचा, उसकी सुरक्षा में AK-47 और आधुनिक हथियार भी लिए आतंकी दिखाई दिए। मौत केस में बड़ा अपडेट, जहां सुषा की हुई थी मौत उस जगह की तस्वीरें सामने आई।

0: एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, और इन दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को अल्टीमेटम दे चुके हैं और माना जा रहा है कि ट्रंप कभी भी ईरान पर हमले की आदेश दे सकते हैं। ईरान पर फिर सैन्य कार्रवाई से पहले अमेरिका में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। ईरान के खिलाफ रणनीति पर मंथन चल रहा है और यह माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा पेच ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज रूट को लेकर है, जिस पर दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि ईरान के पास समय बहुत कम बचा है और किसी भी वक्त वो ये तनाव फिर से महायुद्ध में बदल सकता है। उस बीच एक और खबर पर अमेरिका और ईरान में तनातनी बढ़ सकती है। ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है, जिसके तार भी ईरान से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। IRGC का नाम आ रहा है। ऐसे हालात में दोनों देशों के बीच फिर भीषण युद्ध का खतरा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ और यह पता चला कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से ट्रेनिंग पाए एक खतरनाक आतंकवादी जिसका नाम मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी ने इवांका ट्रंप की जान लेने का पूरा प्लान तैयार किया था।
1: जिस वक्त अमेरिका ईरान फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े, जब ईरान में फिर से तबाही का अमेरिका का प्लान तैयार हो चुका है, किसी भी वक्त ईरान में विध्वंस के लिए हमले का ऐलान हो सकता है। ठीक उसी वक्त ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश रची गई। इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई और सबसे चौंकाने वाली बात ये साजिश की कड़ी सीधे ईरान से जोड़ती दिख रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहे आतंकी को पकड़ लिया है। उसकी पहचान 32 साल की मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने गुरु और ईरानी सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था और इसके लिए IRGC से ट्रेनिंग पाए इस आतंकी ने पूरा खाका तैयार कर लिया था। आतंकी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी कासिम सुलेमानी को अपना गुरु मानता था और तभी से ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में था। आरोपी अल सादी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार, खासकर उनकी बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की कसम खाई थी। जांच के दौरान सुरक्षा बलों को अल सादी के पास से फ्लोरिडा में मौजूद इवांका ट्रंप के आलिशान घर का पूरा ब्लूप्रिंट भी बरामद हुआ है। वो काफी समय से उनके घर की रेखी कर रहा था। वॉशिंगटन में इराकी दूतावास के पूर्व डिप्टी मिलिट्री अटैची एंटी फाद कनबर ने इस आतंकी के इरादों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अल सादी लोगों से कहता फिर रहा था कि हमें इवांका ट्रंप को मारना होगा। वो कहता था कि हमें ट्रंप के पूरे घर को उसी तरह जलाकर खाक कर देना चाहिए जिस तरह उसने कासिम सुलेमानी के घर को तबाह किया था। यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है। तफ्तीश जारी है। ये गिरफ्तारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके सीधे निशाने पर ट्रंप का परिवार आ गया है। आज तक ब्यूरो।
0: कुछ देर पहले हमारे सहयोगी रोहित शर्मा से हमने बात की थी इस मामले को लेकर, तो उनके पास क्या कुछ जानकारी अभी तक आई है तो वो हम आपको यहां पर बता देते हैं। रोहित, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और अगर ये खबर सच है तो फिर हम ये मान के चलें कि अमेरिका और ईरान के रिश्तों में भी और बहुत बड़ा तनाव देखने को भी मिल सकता है। क्या खबर आ पाई अभी तक?
2: देखिए, ये अगेन ये न्यूयॉर्क पोस्ट ने जो है ये स्टोरी ब्रेक की है और उन्होंने ये जो है जानकारी सामने दी है कि इस तरह से एक इंडिविजुअल है जो कासिम सुलेमानी का रिश्तेदार था और वो बदला लेना चाहता था, और उस क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार कासिम सुलेमानी का नाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बदले की भावना से उसने ये प्लान बनाया था, ये प्लॉट किया था कि वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की किसी फैमिली मेंबर को टारगेट कर सकता है। उसने इवानका ट्रंप का जो है उस पर जीरो इन किया, और उसके बाद उनके पास से, इस इंडिविजुअल के पास से एक उनके घर का जो हम मैप कहते हैं वो मिला है। तो काफी चौंकाने वाली बात है। अच्छी बात यह है कि शी इज फाइन, कुछ एक्ट ऐसा नहीं हुआ जिससे उनके कोई उन्हें क्षति पहुंची इवांका को। लेकिन सरप्राइजिंग और शॉकिंग ये है कि अगेन आईआरजीसी की हम बात कर रहे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, और उसके बीच में ये खबर आना कि आईआरजीसी से ट्रेंड किया हुआ एक इंडिविजुअल, अगर आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर इस तरह का कोई अंजाम करता है, अटेम्प्ट भी करता, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं रुकते। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले तो वो खुद कह रहे थे कि मुझे सऊदी अरब ने और यूएई ने रोक लिया। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है एक तरह से ईरान से। तो उसके बीच में एक खबर आना कहीं ना कहीं एक नया वेरिएबल जरूर इंट्रोड्यूस करता है।
0: रोहित, इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया है? जिस आतंकवादी का जिक्र किया गया है, मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी, ये कितने वक्त से अमेरिका में रह रहा था और किस हद तक ये पहुंच चुका था अपने मंसूबों को कामयाब करने में? आप शायद म्यूट हैं, एक बार देखिएगा प्लीज रोहित
2: सॉरी,
0: जी।
2: मुझे माफ
0: हाँ
2: कीजिएगा कि ये जो इंडिविजुअल है ये एक ट्रेंड आईआरजीसी कमांडर है, लेकिन ये एक इराक में मिलिट्री डेप्यूटी मिलिट्री अटैचे हुआ करता था, जो अमेरिका ऑब्वियसली इमिग्रेट हुआ, और उसके बाद आई थिंक इसकी जो फैमिली है वो भी इसके साथ इमिग्रेट हुई। तो उसपे अभी हमें अगेन वील हैव टू फिगर आउट कि कब से रह रहा था। इस बारे में न्यूयॉर्क पोस्ट ने अभी तक ज्यादा बात नहीं की है। ऑब्वियसली आई थिंक इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी। लेकिन शॉकिंग बात जो मुझे सबसे ज्यादा ये लगती है कि अमेरिका में इतना ज्यादा जब भी कोई आता है, विजिटर हो, इमिग्रेट करे, तो उनकी पूरी बैकग्राउंड सर्च होती है, रिसर्च होती है कि कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो एक आईआरजीसी ट्रेन कमांडर का अमेरिका में आना जो कासिम सुलेमानी से रिलेटेड है, ये सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि अमेरिका ने उसे एडमिट कैसे किया, और अगर किया भी तो अगेन उसके पास इस तरह की प्लानिंग वो कर रहा था, तो उसे पहले क्यों नहीं रोका गया, पहले क्यों नहीं पकड़ा गया। हालांकि ये बात ये भी सही है कि जिससे पहले वो कुछ कर पाता उसे पकड़ लिया गया। तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा वील हैव टू वेट एंड वॉच कि ऑफिशियली जब इस पे बयान आएगा सरकार की तरफ से, तो हमें देखना होगा। व्हाइट हाउस शायद इस पे कमेंट जरूर कर सकता है, वील हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन अगेन अच्छी बात यह है कि इवांका की जान को फिलहाल खतरा नहीं है, इन दैट सेंस फॉर दिस इंडिविजुअल। सरप्राइजिंग बात यह है कि ये कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को अपना उसको उसको अगेन उनके साथ कुछ क्षति पहुंचाने की कोशिश करने वाला था। और मुझे लगता है इस बीच में दोनों चीजें साबित हो जाती है जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कहते आए हैं, कि पहला कि ईरान में जो आईआरजीसी के कमांडर्स है वो अमेरिकन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो डेथ टू अमेरिका की जो बात करते हैं वो साबित हो जाती है। दूसरी बात कि जो ट्रंप फैमिली है, जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, 3 बार उनके
0: उन पर
2: उनके
0: खतरा भी बना हुआ, यह भी कहा जा
2: ऊपर
0: सकता है। तो अमेरिका ईरान में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और यह बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान पर नए हमले की तैयारी में जुटा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि समझौते की यह बात हो रही हो। व्हाइट हाउस और पेंटागन में हलचल तेज है, और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति निजी कार्यक्रम तक रद्द कर चुके हैं, यहां तक कि उन्होंने अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में शामिल होने का कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिया है।

0: क्या पश्चिम एशिया में एक बार फिर बारूदी बवंडर उठने वाला है? क्या एक बार फिर ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला होने वाला है? क्या ट्रंप जल्द ही ईरान में तबाही वाले प्लान पर अमल करेंगे? क्या फिर भीषण हमले मणिपुर को युद्ध की आग में झोंकेंगे? यूं तो कई दिनों से ईरान पर फिर अमेरिकी हमले की अटकलें हैं, लेकिन इस बीच ट्रंप ने जिस तरह से अपने सारे निजी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, उससे आशंका है कि ईरान में तबाही का ऑर्डर कभी भी आ सकता है। CBS और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ व्हाइट हाउस में अहम बैठक की। बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी विंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। माना जा रहा है कि ट्रंप की सबसे ज्यादा नाराजगी परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के रुख पर है और अब उसका सब्र जवाब दे चुका है, क्योंकि इस जंगी माहौल के बीच ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपने रुख पर अड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला मुज्तबा खामेनी ने साफ आदेश दिया है कि यूरेनियम को किसी भी सूरत में देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। यानी ईरान अपनी उस बात पर कायम है कि वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव या प्रतिबंधों के आगे झुककर अपने परमाणु संवर्धन अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। ईरान का यही रुख अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गुस्से को बढ़ा रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच फिर से महायुद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है।
1: Two or three days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
0: राष्ट्रपति ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है।
1: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. But I don't know. Do I get what? I never get tired. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days, if I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do.
0: दरअसल अमेरिका एक ऐसी डील का इंतजार कर रहा है जिसमें ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ दे। ट्रंप ने ईरान को पराजित देश बताते हुए कहा कि अगर ईरान ने जल्द फैसला नहीं किया तो बड़े पैमाने पर हमला शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ट्रंप की इस धमकियों से बेपरवाह है। सरकारी एजेंसी नूर न्यूज ने विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता इस्माइल बगाई के हवाले से कहा, हमें ईरान के व्यूज मिल गए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ईरान का ये रवैया ट्रंप के गुस्से को भड़का रहा है। ट्रंप के सब्र का बांध टूट रहा है। खतरनाक युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। उधर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से कहा गया है कि अगर उनकी जमीन पर अटैक होता है तो उसका पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। IRGC ने कहा है कि इस बार अमेरिकी हमले से एक ऐसा युद्ध शुरू होगा जिसे सीमित करना मुश्किल होगा। ये लड़ाई इस क्षेत्र की सीमाओं को पार करके और आगे तक फैल जाएगी। अमेरिका ईरान के बीच तल्खी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये स्थिति फिर से महायुद्ध की ओर बढ़ती दिख रही है। आज तक ब्यूरो।
2: सिर्फ परमाणु कार्यक्रम ही नहीं, हॉर्मुज पर भी अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और ये ना जाने कब खत्म होगा। खासतौर पर हॉर्मुज रूट पर ईरान के टोल वसूली वाले प्लान से ट्रंप का गुस्सा भड़का हुआ है। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर फिर से ईरान को चेतावनी दी और इस समुद्र रास्ते को लेकर दोनों देशों के बीच फिर से जंग की स्थिति बनी है।
3: वो समुद्री रास्ता जो अमेरिका इजराइल से युद्ध छिड़ने के बाद ईरान का सबसे मजबूत हथियार बना, जिस रास्ते के दम पर ईरान ने दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई का रास्ता रोक दिया, वही हॉर्मुज रूट एक बार फिर अमेरिका ईरान के बीच जंग छिड़ने की वजह बन सकता है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज को लेकर अब ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है जिस पर ट्रंप तिलमिला उठे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को नियंत्रित करने के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने बताया कि एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिससे हॉर्मुज के ट्रैफिक से टोल वसूली को व्यवस्थित किया जा सके। इस प्लान को ईरान की ओर से जल्दी ही दुनिया के सामने रखा जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट लगातार विवाद के केंद्र में है। ऐसे में ईरान के टोल वसूली के प्लान पर ट्रंप भड़के हुए हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि हॉर्मुज पर टोल उन्हें कतई पसंद नहीं है और ईरान इस वसूली को फौरन बंद करे।
4: It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's $500 or $200 or $300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job.
3: अमेरिका ईरान जंग में अगर कोई सबसे अहम और खतरनाक मोर्चा बनकर उभरा है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है। लेकिन अब यही रास्ता ईरान की अहम ताकत बना हुआ है। अमेरिका और ईरान दोनों ओर से अपनी शर्तों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया जा रहा है। तमाम रिपोर्ट के मुताबिक ईरान फिलहाल किसी भी हाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को राजी नहीं दिख रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका सैन्य ताकत के जरिए इस रास्ते को खोलने की कोशिश करता है तो ये जंग और लंबी और खतरनाक हो सकती है। यही नहीं, कुछ दिन पहले पूर्व CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स ने भी चेतावनी दी थी कि ईरान इस ताकत को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। उनके मुताबिक तेहरान इस स्ट्रेट के जरिए भविष्य में किसी भी शांति समझौते में अपने लिए सुरक्षा गारंटी और आर्थिक फायदे हासिल करने की कोशिश करेगा। ऐसे में साफ है कि ईरान ऊर्जा सप्लाई के इस अहम रूट पर दबदबा कम नहीं करने को किसी भी सूरत में राजी नहीं। अब देखना होगा कि ट्रंप की धमकी का ईरान पर क्या असर होगा और अगर ईरान अपने रुख पर अड़ा रहा तो क्या दोनों देशों के बीच और भी विनाशकारी युद्ध होगा। आज तक ब्यूरो
2: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ बड़ी वर्चुअल मीटिंग हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की है और बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के एमओयू पर अहम चर्चा हुई है और जल्द ही आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाले देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है पश्चिम बंगाल। आपको याद होगा इससे पहले ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री थी तब ये योजना पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दी थी उन्होंने, तो अब 36वां राज्य बनने जा रहा है पश्चिम बंगाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और शुभेंदु अधिकारी की बड़ी वर्चुअल मीटिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में हर संभव सहयोग और सहायता का भरोसा दिलाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पश्चिम बंगाल को आवंटित 2,103 करोड़ रुपए में से पहली किश्त के 500 करोड़ रुपए जारी किए गए। इंद्रजीत कुंडू जुड़े हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। इंद्रजीत, क्या जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई वर्चुअल मीटिंग जो हुई?
7: देखिए, कल शुभेंदु अधिकारी दिल्ली से वापस आए हैं और आपने देखा जितने भी केंद्रीय सरकारी मंत्री हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, रक्षा मंत्री, उन सबसे मीटिंग के बाद आज जेपी नड्डा से भी मीटिंग थी। केंद्रीय सरकारी जितने भी अभी तक स्कीम है वो इतने दिनों तक पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो पा रहा था। ममता बनर्जी सरकार ने उसको ब्लॉक करके रखा था, अब किस तरह से उसको चालू किया जाए, जैसे आयुष्मान योजना हो या स्वच्छ भारत, और केंद्र सरकार की ओर से जो फंड है वो किस तरह से पश्चिम बंगाल में फिर से शुरुआत हो वो आए, इसी को लेकर बार बार चर्चाएं हो रही है। उसी के संदर्भ में फिर से शुभेंदु अधिकारी ने जेपी नड्डा के साथ भी मीटिंग की है और इसी तरह का चर्चा भी हुआ।
2: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त चला एक और बहुत छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God. get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.

0: बस दो दो हजार
1: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा,
2: और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा।
3: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
4: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

कोलकाता से दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, थोड़ी देर में पीएम मोदी से मुलाकात, क्वाड साझेदारी, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले में 47 शहरों के 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा विकास के भागीदार हैं युवा, विदेशी निवेश से बढ़ेंगी नौकरियां, 5 देशों के दौरे का सिर। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान योजना की एंट्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ वर्चुअल मीटिंग में लगी मुहर, 500 करोड़ की पहली किश्त जारी। यूपी में भीषण गर्मी में पावर कट के आक्रोश से पढ़ा सियासी चारा अपारा, अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बोला हमला महाविद्युत आपदा, इसे बताया योगी के मंत्री बोले आईने में खुद को देखें अखिलेश। और सामने आई ट्विशा शर्मा की मौत वाली जगह की तस्वीर, क्राइम सीन सील, पुलिस के शिकंजे में पति समर सिंह से पूछताछ, आज कोर्ट में पेशी, जल्द दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

कोलकाता से दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो, दिल्ली, आगरा और जयपुर भी जाएंगे विदेश मंत्री हमारे। कोलकाता में मदर टेरेसा हाउस में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया दौरा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे। ये मोदी से मुलाकात करेंगे और भारत के साथ अमेरिका ऊर्जा सहयोग बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी, दोनों ही देशों के बीच में अहम बैठक। व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर भारत अमेरिका में मंथन, वैश्विक तनाव के बीच में ऊर्जा और अहम संसाधनों पर व्यापक चर्चा। होर्मुज तनाव के बीच में भारत अमेरिका ऊर्जा साझेदारी पर बड़ा फोकस, 26 मई को दिल्ली में होने वाली क्वाड बैठक में होंगे शामिल। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट से 80 से ज्यादा लोगों की मौत, हादसे के समय बड़ी संख्या में मजदूर खदान के भीतर मौजूद। यह हादसा चीन के पिछले एक दशक का सबसे बड़ा कोयला खदान का हादसा माना जा रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ के मुताबिक विस्फोट शुक्रवार को शांक्सी प्रांत के किनवान में हुआ है और यह इलाका बीजिंग से लगभग 520 किलोमीटर की दूरी पर है, पश्चिम इलाके। हादसे से पहले खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अलर्ट जारी किया गया था और इसके कुछ ही देर बाद यह विस्फोट वहां पर हो गया। जिस समय धमाका हुआ उस समय खदान के भीतर 247 मजदूर काम कर रहे थे, अभी यह साफ नहीं कि भीतर कितने लोग फंसे हुए, राहत और बचाव का काम चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ वर्चुअल मीटिंग, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। बैठक में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के एमओयू पर भी अहम चर्चा। पश्चिम बंगाल जल्द ही आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला देश का 6वां राज्य बन रहा है, बनने जा रहा है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पश्चिम बंगाल को 500 करोड़ की पहली किश्त दी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में हर संभव सहयोग और सहायता देने का भरोसा दिलाया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पश्चिम बंगाल को 2103 करोड़ रुपए आवंटित। यमुनी ने 19 में रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा, यह प्रोग्राम देश के 47 शहरों में आयोजित किया गया। सरकार का दावा कि अब तक 18 रोजगार मेलों में लगभग 12 लाख युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने अपने 5 देशों की विदेश यात्रा का जिक्र किया, कहा भारत की विकास यात्रा दुनिया उसका हिस्सा बनना चाहती है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं तो भारत की युवा ताकत की चर्चा करता हूं, आज के जैसे मौके युवाओं को पहले कभी नहीं मिले। पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर में निवेश कर रहा है। बहुभंगी पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर FIR, बीजेपी जिला समिति के सदस्य ने करवाई FIR। नीट छात्र से मिलने पहुंचे अजय राय पर बिना प्रशासनिक अनुमति के कार्यक्रम करने और रास्ता रोकने का भी आरोप, मामले में कानूनी जांच शुरू। राहुल गांधी पर महंगाई पर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा कि वो देश को गुमराह करने की कोशिश करें, भ्रम फैलाने की कोशिश करें। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला, कहा कि जनता की कमाई पर किश्तों में लूटमार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलाई पदाधिकारियों की बैठक, यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर हलचलें शुरू। लखनऊ में वकीलों और पुलिस के बीच में टकराव, अब बेहद गंभीर स्तर पर, बार एसोसिएशन की ओर से वकीलों को लगभग 600 लाठियां बांटे गए। दावा किया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए यह कदम उठाया गया, जिला लखनऊ न्यायालय में इस समय वकीलों की हड़ताल चल रही है। वकीलों के चैंबर तोड़े जाने और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जबरदस्त नाराजगी, आरोप है कि पहले पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया था। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, दिसंबर 2023 संसद सुरक्षा चूक मामले में यूएपीए के तहत 13,000 पन्नों की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई। उत्तर प्रदेश में गर्मी और बिजली कटौती पर सियासी संग्राम तेज, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के चलते प्रदेश की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की कथित साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक आरोपी ने इवांका की हत्या की प्लानिंग की थी। आरोपी ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। सूत्रों का दावा किया कि आतंकी ने इवांका की हत्या करने की कसम खाई थी और उसके पास उसके फ्लोरिडा स्थित घर पर पूरा नक्शा भी मौजूद था। वैश्विक तनाव के चलते तेल बाजार में जबरदस्त उथल पुथल, भारत में पिछले 10 दिनों में 5 रुपए बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम।
दिल्ली से मुंबई तक तेल के दामों के साथ सीएनजी के दामों में भी उछाल, 1 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़े सीएनजी के दाम। 86 पैसे की बढ़त के साथ अब 99.91 रुपए हुआ पेट्रोल, 91 पैसे महंगा होकर डीजल 92.49 रुपए प्रति लीटर। आतंकी हमजा बुरहान के जनाजे में पहुंचा टॉप आतंकी, मोस्ट वांटेड आतंकी, इस्लामाबाद में दफनाया गया था यह आतंकी हमजा बुरहान। अल बदर का चीफ बख्त जमीन खान भी पहुंचा और आतंकी संगठन अल बदर के चीफ आतंकी बख्त जमीन खान की सुरक्षा में 47 अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकी दिखे। यूपी में उम्मीद पोर्टल पर 31,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द, दस्तावेजों में मिली खामियां, जांच में कई संपत्तियों के खसरा नंबर वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड से मेल नहीं हुए, दस्तावेजों के मिलान और रिकॉर्ड सत्यापन के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दाम तीसरी बार बढ़ने पर पीएम मोदी पर साधा निशान, कहा कि जनता को खुलकर लूट रहे हैं क्योंकि अपने अमीर दोस्तों की तिजोरी भरनी है। तेजस्वी यादव ने भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला, आने वाले दिनों में जनता को और भयंकर महंगाई झेलनी होगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष के तंज पर किया पलटवार, बोले कि बीजेपी का मतलब कमिटमेंट की राजनीति और कांग्रेस का मतलब कॉम्प्रोमाइज की राजनीति। ईशा मौत केस में बड़ा अपडेट, ईशा की जहां मौत हुई थी उस जगह की तस्वीर सामने आई। भोपाल में ईशा शर्मा की मौत मामले में मुख्य आरोपी पति समर सिंह पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चला चाबुक, वकालत का लाइसेंस रद्द किया गया। ईशा शर्मा मौत मामले में नैटोरिस जबलपुर कोर्ट के मुख्य आरोपी पति समर सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है और सरेंडर करने पहुंचा था। ईशा शर्मा के शव का दूसरी बार होगा पोस्टमार्टम, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इजाजत दी, अब सीबीआई करेगी मामले की जांच। ईशा शर्मा केस में सास गिरीबाला की जमानत रद्द करने की याचिका पर 25 मई को सुनवाई होगी। एमपी के 37 जिलों में लू का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों से दोपहर में बाहर ना निकलने की अपील की। केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक समेत दक्षिणी भारत के मौसम सिस्टम में मानसून के करीब आने पर रुक रुक कर बारिश। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का अनुमान। हिमाचल में भी बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। अहमदाबाद में गर्मी के चलते बढ़े सब्जियों के दाम, बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखा। कश्मीर के जोजिला और आसपास के इलाकों में बेमौसम बर्फबारी, आईएमडी का अनुमान, अगले 48 घंटों के दौरान आंधी तूफान के आसार। जम्मू में धीरे धीरे दिखा रहा था सूरज, गर्मी गर्म हवाओं के साथ लगातार बढ़ रहा है पारा। गाजियाबाद में 23 मई से बंद रहेंगे सभी स्कूल, बच्चों को लू से बचाने के लिए डीएम का आदेश। गुरुग्राम में बड़ा बिजली संकट, सेक्टर 72 के 220 केवीए बिजली घर का मुख्य ट्रांसफार्मर जलने से 7 बिजली घर ठप, रैपिड मेट्रो की सेवा कई घंटों के लिए रही बाधित। विदर्भ के ब्रह्मभूमि में 47.2 डिग्री पहुंचा पारा, 25 मई तक कई जिलों में हीट वेव का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। वलसाड में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। प्रयागराज में गर्मी और लू का प्रकोप जारी, कई इलाकों में तापमान पहुंचा 46 डिग्री के पार। अयोध्या में भीषण गर्मी के चलते घटी राम भक्तों की संख्या, अब सड़कों पर सन्नाटा सा पसरा। देश के 50 शहरों में यूपी के 26 शहर सबसे ज्यादा गर्म, लखनऊ में भी सबसे गर्म शहरों में शहर शामिल है। चंडीगढ़ में भी गर्मी के चलते सड़कों पर सन्नाटा, घटी पर्यटकों की संख्या। छत्तीसगढ़ के कुदरतगढ़ धाम में मंदिर में लगी भीषण आग, पुजारियों की झोपड़ी जलकर हुई खाक, वीडियो हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ के गौरेला में लापरवाही के चलते बड़ा हादसा टला, बाल बाल बचाए कि वह घटना सीसीटीवी में कैद। भीलवाड़ा में 11 साल की बच्ची ने फिल्मों से प्रेरित होकर रची अपहरण की झूठी कहानी, मां की डांट से नाराज होकर उठाया कदम। रायसेन के चौसिंगा का शिकार करने पर 2 सगे भाइयों समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, बंदूक के और मांस भी जब्त। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस का ड्रग तस्कर के खिलाफ बड़ा एक्शन, एक ड्रग तस्कर अवैध कमर्शियल संपत्ति को उसके ध्वस्त किया गया। सीएम योगी को रिसीव करने के लिए देवरिया डीएम की फर्राटा दौड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोयम्बटूर में 10 साल की बच्चे की हत्या पर सियासत तेज, डीएमके ने पूछा कि सुरक्षा के दावे कहां गए, लोगों ने विरोध करते हुए न्याय की मांग की। जूनागढ़ में ऑयल मिल में अचानक भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका।
बनीनाथ हाईवे के पास में सड़क पर पलटा वाहन, 9 लोग थे सवार, चालक की हालत गंभीर, अन्य घायल। राजस्थान के स्टेट लेवल वॉलीबॉल खिलाड़ी की हरियाणा में बेरहमी से हत्या, 3 दिन तक युवक को बनाया गया बंधक, जमकर की गई मारपीट। दिल्ली के गोविंदपुरी डबल मर्डर केस में फरार आरोपी को पकड़ा, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी नार्कोटिक्स टीम ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। टीएमसी पार्षद की संदिग्ध मौत, 10 लाख की उगाही और राजनीतिक दबाव के लगे आरोप। महाराजगंज में प्रेमी से मिली बेवफाई से हाथ होकर युवतियों ने बंद पड़े मोबाइल टावर पर वो चढ़ी और पुलिस ने सकुशल नीचे उतारा। मथुरा में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को रौंद, एक प्राइमरी स्कूल में जा घुसा, 3 लोग इसमें घायल। मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पूर्व वार्ड सदस्य थी मृतका, पुलिस ने पड़ोसी को हिरासत में लिया। बिहार के कटिहार में छात्रा के साथ छेड़खानी के बाद दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी, मौके पर पहुंचे डीएम, एसपी ने मामले को करवाया शांत। तनावपूर्ण माहौल के बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती, डीएम ने दिया आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा। अहमदाबाद में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 50 लोगों को निकाला गया सुरक्षित बाहर। अहमदाबाद में एक इमारत में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर किसी तरह पाया काबू। बिहार में शराबबंदी के बीच में नशीले इंजेक्शन की तस्करी जारी, पटना में 2000 इंजेक्शन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में गंदगी के बीच में चल रहे आइसक्रीम फैक्ट्री पर खाद्य विभाग के छापेमारी, फैक्ट्री को किया गया सील। अमृतसर के खालसा कॉलेज में कुत्तों से क्रूरता का एक आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद छात्र एनिमल एक्टिविस्ट ने किया प्रोटेस्ट। शराबबंदी वाली बिहार में 50 लाख के जब्त शराब पर चला बुलडोजर, गोपालगंज में डीएम के आदेश पर 6471 लीटर शराब को किया गया नष्ट। बाराबंकी में बिजली कटने पर घर के बाहर सड़क किनारे सो रहे लोगों को डंपर ने कुचल दिया, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। सोनप्रयाग में बोल्डर गिरने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, हादसे में एक शख्स की मौत हुई थी। लंबे इंतजार के बाद ऐश्वर्या राय पहुंची कान फिल्म फेस्टिवल, रेड कार्पेट पर बिखर रहा ग्लैमरस जलवा, ड्रामेटिक इलेक्ट्रिक ब्लू मरमेड गाउन में बला की खूबसूरत लग रही थी ऐश्वर्या राय, सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये तस्वीर और स्टनिंग लुक। एप्स पर स्माइल करते हुए हैंड वेव करते दिखी ऐश्वर्या, अपने सिग्नेचर पोज में फोटोज क्लिक करवाई। रामचरण की फिल्म पीदी ने नए गाना हिल लल्लू के जो प्रोमो है रिलीज हुआ है, इस गाने में रामचरण और जानवी कपूर का एक जबरदस्त डांस दिखाई दे रहा है। कार्तिक आर्यन के आने वाले फिल्म नाग जिला में डबल रोल करते दिखाई देंगे, खलनायक के किरदार को भी निभाएंगे और नायक का किरदार भी निभाया जाएगा, 14 अगस्त को होगी रिलीज। आईपीएल में आज लखनऊ और पंजाब की भिड़ंत, तिखाना क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। दोनों ही टीमों के बीच में अब तक हुए 7 मुकाबलों में कांटे की टक्कर, जिनमें पंजाब को 4 तो एलएसजी को 3 मैच में जीत मिली। प्लेऑफ के रेस से पहले बाहर हो चुके लखनऊ, हालांकि अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ इस सत्र को खत्म करना चाहेगी एलएसजी। पंजाब को प्लेऑफ के रेस में अपनी दावेदारी बनाए रखने के लिए इस मैच को जीतना जरूरी और नेट रन रेट को भी बेहतर करने के लिए एक बड़े अंतर से जीत आवश्यक। पिछले कुछ मैचों में खराब गेंदबाजी से जूझ रही है पंजाब की टीम, इस बार अर्शदीप और चहल पर सबकी होंगी निगाहें।

0: और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल से आ रही बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की एंट्री हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ एक वर्चुअल मीटिंग हुई, इसमें मुहर लगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पश्चिम बंगाल को आवंटित 2103 करोड़ रुपए में से पहली किस्त में के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में हर संभव सहयोग और सहायता का भरोसा दिलाया। पश्चिम बंगाल जल्द ही आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। तो बीजेपी शासित राज्यों में ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, ये तो लागू हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं थी और बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र था। और अब बात करते हैं नीट पेपर लीक की, जिसकी जांच के दौरान सीबीआई ने एक और आरोपी मनीष हवलदार को गिरफ्तार किया है। मनीष हवलदार को भी एनटीए ने बतौर एक्सपर्ट ही नियुक्त किया था और फिजिक्स का पेपर आउट करने का उन पर आरोप है। और पेपर लीक के मामले में अब ये 11वीं गिरफ्तारी है, एक और गिरफ्तारी, और मनीषा नाम की एक और किरदार सामने आई। ये मनीषा हवलदार है, ये भी कोई और नहीं बल्कि फिजिक्स का पेपर लीक करने का इन पर आरोप है। ये भी पेपर सेटर्स में से एक।
1: पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और अब नीट का फिजिक्स का पेपर आउट करने वाले आरोपी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। पुणे से सीबीआई ने मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया है। केस की आरोपी मनीषा मंधारे की तरह ही मनीषा हवलदार बतौर एक्सपर्ट एनटीए से जुड़ी थी, जिसकी फिजिक्स के प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच।

0: सुप्रीम कोर्ट का कामकाज प्रभावित है। वकीलों का चैंबर तोड़े जाने और बुलडोजर की कार्रवाई से नाराजगी है। वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने लाठी से पीटा था, अब बदला लेने के लिए ऐलान हुआ है। सवाल यह है कि वो वकील जो कानून के जानकार माने जाते हैं, नियमों को जानते हैं, वो क्या पुलिस पर हमला करने के लिए लाठियां उठा भी लेंगे जैसे कि लाठियां बांटी गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं और आसनसोल से बड़ी खबर, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर को अब बुलडोज कर दिया गया है। अधिकारियों की मौजूदगी में टीएमसी ऑफिस को ध्वस्त किया गया, जमींदोज किया गया। इस दौरान बड़ी भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। पिछले कुछ दिनों में आसनसोल में बनपुर इलाके में चौथा टीएमसी पार्टी कार्यालय है जिस पर एक्शन हुआ है, इसे बुलडोजर से हटाया।
1: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद आप देख पा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय पर जिस तरह से बुलडोजर अभियान चल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि आसनसोल के जो सेल आईएसपी, जो सेल के जमीन पर अवैध तरीके से तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय बना हुआ था, उन सब कार्यालयों पर आप देख पा रहे हैं कि बुलडोजर अभियान चल रहा है। देख पा रहे हैं कि आप जिस तरह से बुलडोजर से ये आसनसोल के बनपुर रेलवे स्टेशन के बगल में ये तृणमूल कांग्रेस के जो पार्षद जो है अशोक रुद्रो, उसके पार्टी ऑफिस था और उस पार्टी ऑफिस को अभी बुलडोजर से देख सक रहे हैं कि बुलडोजर से इसे तोड़ा जा रहा है। हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो पार्टी ऑफिस था, ये ठीक जो आसनसोल के जो बनपुर रेलवे स्टेशन है ठीक उसके विपरीत में ये पार्टी ऑफिस था और इसी पार्टी ऑफिस से जो बोला जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के जो पार्षद हैं अशोक रुद्र के यहाँ पे ये पार्टी ऑफिस था, उस पार्टी ऑफिस को यहाँ पे बुलडोज किया जा रहा है। आप देख ही पा रहे हैं कि हम दिखाना चाहेंगे कि ये पार्टी ऑफिस था जिस पार्टी ऑफिस से ये जो काउंसलर का पार्टी ऑफिस, आप देख पा रहे हैं कि ये पार्टी ऑफिस था जहां से अशोक रुद्र जो यहां के पार्षद हैं उनके पार्षद का यहां से काम होता था। लेकिन ये बताया जाता है कि ये सेल जो है सेल के जमीन पे ये अवैध तरीके से निर्माण कराया गया था और बताया जा रहा है कि इसको लेकर लगातार नोटिस दी गई थी लेकिन उसको तोड़ा नहीं गया था या हटाया नहीं गया था, जिसके बाद आज सेल प्रशासन द्वारा यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं कि जो पार्टी ऑफिस है उस पे देखिए बुलडोजर अभियान चल रहा है।
0: और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सुख।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर. ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट.
2: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

कोलकाता से दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, थोड़ी देर में पीएम मोदी से मुलाकात, क्वाड साझेदारी, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले में 47 शहरों के 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा विकास के भागीदार हैं युवा, विदेशी निवेश से बढ़ेगी नौकरियां, 5 देशों के दौरे का जिक्र। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान योजना की एंट्री, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ वर्चुअल मीटिंग में लगी मुहर, 500 करोड़ की पहली किश्त जारी। यूपी में भीषण गर्मी में पावर कट के आक्रोश पर चढ़ा सियासी पारा, अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बोला हमला महाविद्युत आपदा बताया, योगी के मंत्री बोले आईने में खुद को देखें अखिलेश। सामने आई ट्रिशा शर्मा की मौत वाली जगह की तस्वीर, क्राइम सीन सील, पुलिस के शिकंजे में पति समर सिंह, आज कोर्ट में पेशी, जल्द ही दोबारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई।

और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ी खबर, आरोपी समर्थ को कोर्ट में पेश किया गया है, ये बड़ी खबर आपको देते हैं। आरोपी को कोर्ट लाया गया है क्योंकि कोर्ट में पेशी है, समर्थ ने ये सरेंडर किया है, ढूंढा जा रहा था, फरार चल रहा था, लेकिन ट्विशा केस में आपको ये बड़ी खबर आपको देते हैं, इस समय कोर्ट लाया गया है समर्थ सिंह को और कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस कस्टडी की मांग करेगी, इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में करेगी क्योंकि मुख्य आरोपी हैं ट्विशा केस में, ट्विशा के हस्बैंड समर्थ सिंह, जिन पर बेहद गंभीर आरोप हैं और पेशे के लिए अब कोर्ट लाया गया। समर्थ को यूं तो कई दिनों से पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं वो भागा भागा फिर रहा था, फरार चल रहे थे और भोपाल कोर्ट में आरोपी समर्थ के पेशी है। ट्विशा मौत मामले में आपको बता दें कि नई नई अपडेट क्या है, कई सारे वीडियोस भी अब आए हैं, ट्विशा के बहुत सारे वीडियोस इस बीच में सामने आए हैं, व्हाट्सएप चैट, सहेलियों की बातें, तो अब बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ट्विशा मौत मामले में बड़ा अपडेट है, समर्थ ने सरेंडर किया है और अब कोर्ट में ले जाया गया है आरोपी समर्थ को। इसके साथ साथ बार काउंसिल की अपनी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई समर्थ के खिलाफ, जहां उसका वकालत का जो लाइसेंस है उसे रद्द करने का निर्णय लिया गया है। समर्थ की मां के खिलाफ भी लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, उनको भी किसी तरह की राहत मिल नहीं रही है, तो जांच लगातार चल रही है और ट्विशा के पति का वकालत का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, मामले को बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बिजली संकट की, क्या आपके शहर या आपके गांव में बिजली नहीं आ रही है, आज पूरी पड़ताल होगी। यूपी के अलग अलग शहरों की हम बात करेंगे, राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर तक की बात होगी, बात हाईटेक सिटी गुरुग्राम की भी हम करेंगे, क्या बिजली आ रही है वहां, ये आपको बताएंगे। बिजली ऐसी कट रही है कि रैपिड मेट्रो के पहिए तक वहां जाम हो गए, ट्रेन ठप पड़ गई, यूपी वालों का हाल तो बेहाल है, दिन में काम करें रात में बिजली के लिए धरना प्रदर्शन, हर एक तस्वीर आज आपको दिखाई जाएगी। नौ तपा अभी शुरू भी नहीं हुआ और मौसम का पारा सातवें आसमान पर है, गर्मी बढ़ी तो बिजली की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन क्या बिजली सबको मिल रही है, यूपी में बिजली कटौती, लोग परेशान है, हालात ऐसे हो गए लोगों को रातें भी जाकर काटने पड़ रहे हैं क्योंकि प्रचंड गर्मी है और बत्ती गुल है।

0: उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बिजली कटौती हो रही है। कहने को तो सरकार दावा करती है कि डिमांड सप्लाई सब बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, इटावा, आगरा जैसे जिलों में 6 घंटे की निर्धारित कटौती होती है, लेकिन हकीकत में इससे ज्यादा घंटे तक बिजली गुल रहती है।
1: बिजली के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिन रात काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डिफॉल्ट जितने भी आएंगे, फॉल्ट आएंगे, उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन बढ़ता हुआ तापमान और इस तापमान में बढ़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है।
0: लखनऊ में क्या हाल है देख लीजिए। महिला का गुस्सा बिजली कर्मचारियों पर उतर रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही है। लखनऊ में लोगों ने रात को सड़क ही जाम कर दी। ये दुबग्गा पावर हाउस के तहत आने वाला मॉडर्न पिंक सिटी इलाका है।
2: निकल जाओ वरना फंसी जाओगे, निकल जाओ।
0: यहाँ पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बीती रात लोगों का सब्र जवाब दे गया। लगातार कटौती हो रही है, लोग ना सो पा रहे हैं ना कोई और काम हो रहा है, तो बीती रात लोगों ने सड़क ही जाम कर दी। हजारों लोग सड़कों पर उतरे और जाम लगा दिया। पुलिस भी आई लेकिन लोग हटे नहीं। ये लखनऊ का फैजुल्ला गली इलाका है। बिजली है नहीं इसलिए लोग परेशान हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग गली में एक एक कर ऐसे घर में इकट्ठे होते हैं जहां हवा लगने की संभावना रहती है।
1: क्या ये रोज आप लोग ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही दिन कट रहा है?
3: हाँ, जब बिजली नहीं आ रही तो लोग इस तरह बैठते हैं, और छुट्टियां भी हो गई हैं तो बड़ी समस्या बनी हुई है। जब से तापमान बढ़ा है तब से बिजली संकट बहुत गहरा गया है।
1: रात में भी लाइट नहीं रहती?
3: रात भर नहीं रहती है।
4: अब लोग कल दो दिन से रात में सो ही नहीं पा रहे हैं, लाइट की आवाज आई और गर्मी हाई है, न छत पे सोना हो पा रहा है, न कहीं बाहर निकलना हो पा रहा है, किसी तरह से रात बीतती है।
5: बिजली की समस्या इतना ज्यादा है कि हम लोग रात भर नहीं सो पाते हैं, और अगर बिजली आई भी तो लो वोल्टेज में आती है जिसका कोई मतलब नहीं है।
6: एक हफ्ते से हम लोग बहुत परेशान है, रात रात भर दौड़ते रहते हैं, गर्मी से तबाह है, ना सो पाते हैं, दिन में बताओ नौकरी करते हैं, रात भर जागते रहते हैं, क्या करेंगे।
0: यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई का रोस्टर है, लेकिन अघोषित कटौती होने की वजह से ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे ही बिजली आती है। लोकल फॉल्ट और ट्रिपिंग से समस्या और बढ़ जाती है। शहरी इलाकों में मांग बढ़ने पर ग्रामीण इलाकों की बिजली काट दी जाती है क्योंकि ग्रामीण अंचल से बिजली विभाग को कम राजस्व मिलता है। यूपी में बिजली और गर्मी से बचे हाहाकार से बीजेपी के विधायक भी परेशान हैं। ये रायबरेली के बीजेपी के विधायक अशोक कोरी हैं, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अशोक कोरी बिजली विभाग के कर्मचारियों को हड़का रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि वो जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के लिए बिजली नहीं दे रहे हैं।
7: आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए? अभी जगदीशपुर से लड़कों का फोन आया, वहां से फोन आ रहा है, अभी एक लड़का और फोन किया, जो है लगातार इतना कैसे कटौती हो रही? हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा है कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है। 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, मैं दिन भर अपने गांव में था, कल भी मैं गांव में था, 5-5, 6-6 घंटे। किस हिसाब से आपका रोस्टर है? रोस्टर तो चलो मान लिया रोस्टर है, बिना रोस्टर वाली कटौती आप लोग ऐसी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जानबूझ के आप लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं।
0: अशोक कोरी रायबरेली से विधायक है और उनके इलाके में बिजली सप्लाई का बहुत बुरा हाल है। लोग खुद बता रहे हैं कि 24 में से सिर्फ 4-6 घंटे बिजली आती है। लोग विधायक को ही शिकायत करेंगे तो विधायक जी ने बिजली विभाग के अधिकारियों की क्लास लगा दी। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
8: यूपी में भी हिस्सा बिजली कटौती हो रही है, मतलब हालात ऐसे हैं कि कटौती का कोई शेड्यूल ही नहीं है, कोई नियम नहीं है, जब मर्जी बिजली काट दो। इस अघोषित बिजली कटौती से पूरा यूपी परेशान है।

0: 45 डिग्री के टेम्परेचर में यूपी वाले बेहाल हैं। लू से बचने के लिए घर में रहने को कहा गया है और घर पर बिजली नहीं आ रही। यूपी के हर जिले में ऐसा ही हाल है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक और हापुड़ से लेकर रामपुर तक भयंकर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, हंगामा कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस भीषण गर्मी में बिजली की सप्लाई क्यों नहीं कर पा रही। सरकारी दावा है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, तो फिर लोगों को बिजली क्यों नहीं मिल पा रही। सरकार कह रही है कि लू से बचना है तो घर में रहो, और घर में तो बिजली ही नहीं आ रही। यूपी में बिजली एक खोज। यह हंगामा मेरठ में हुआ, वो भी मेयर आवास के बाहर। बिजली नहीं आई तो लोगों ने मेयर का घर ही घेर लिया, खूब हंगामा किया, नारेबाजी हुई। बाद में मेयर भी बाहर आए और अपनी बेचारगी जताने लगे। कहने लगे कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि शहर में बिजली नहीं आ रही, पता होता तो वो इन लोगों के साथ बिजली घर चले जाते।
1: मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ यहाँ पे, पहली चाहे कितनी देर लगे। नंबर वन है, मुझे अभी इस चीज जानकारी मिल रही है बेटे, अगर मुझे ये चीज और पहले मिल जाती मैं आपके साथ बिजली घर पे होता। मैं वैसे नहीं कह रहा, अभी भी एक बार मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे बड़ा अधिकारी है, एक मिनट बात हो जाए आपके सामने बात हो।
0: अब जरा कानपुर देहात का हंगामा देख लीजिए। ये मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, भीषण गर्मी में लगातार बिजली कट रही है। मुश्किल से इनके हॉस्टल में 8 से 9 घंटे ही बिजली आ रही है। इससे इनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और ये परेशान भी हो रहे हैं। मजबूरी में ये कॉलेज के गेट के बाहर सड़क पर उतर आए और जमकर गुस्सा फूटा और नारेबाजी की। ये तस्वीरें हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप ये समझ सकें कि लोगों का गुस्सा किस कदर फूट रहा है और लोग बिजली कटौती से कितना परेशान हो चुके हैं। लेकिन ये बिजली कटौती क्यों हो रही है? क्या सरकार के पास यूपी की जनता के लिए बिजली नहीं है? यूपी के बिजली मंत्री एके शर्मा का दावा है कि पीक आवर्स में यूपी में बिजली की डिमांड बढ़कर 32 से 33 हजार मेगावाट तक पहुँच रही है। रात को 3:19 पर बिजली की उच्चतम मांग में जो बिजली सप्लाई की गई वो 30,276 मेगावाट थी। यानी सरकार खुद मान रही है कि करीब 2 से 3 हजार मेगावाट बिजली की कमी है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार विभिन्न स्रोतों से बिजली ले रही है और बिजली की सप्लाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद बिजली की भीषण कमी बनी हुई है। मंत्री जी पोस्ट कर रहे हैं कि आपका संयम और सहयोग प्रार्थनीय है, लेकिन जनता कैसे संयम कर ले? 45 से 47 डिग्री के तापमान में जब बिजली ही 6 से 8 घंटे आएगी और रात भर गायब रहेगी तो जनता तो सड़कों पर उतरेगी ही।
2: यूपी के बिजली संकट पर सियासत गर्मा गई है और इस गर्मी में उत्तर प्रदेश में गंभीर बिजली संकट है और सियासत भी जमकर चल रही है। प्रदेश भर में मनमानी बिजली कटौती चल रही है और इस बीच भी अखिलेश यादव और यूपी के ऊर्जा मंत्री सोशल मीडिया पर आपस में भिड़ गए।
3: प्रदेश ऐतिहासिक बिजली संकट के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ सरकार है जो कहती है कि कोई कमी नहीं है, सब चंगा सी, दूसरी ओर विपक्षी नेता है जो इस संकट को महाविद्युत आपदा कह रहे हैं। इसमें तीसरा पक्ष है कानपुर से लखनऊ और रायबरेली तक के बीजेपी विधायकों का, जो कहते हैं कि बिजली बहुत कट रही है, और चौथा पक्ष है वो जनता जो इन सबको झेल रही है। बिजली कटौती से नाराज यूपी की जनता कहीं पावर हाउस पर धावा बोल देती है तो कहीं बिजली कर्मियों पर गुस्सा उतार रही है। कानपुर, मेरठ, लखनऊ, हापुड़ में तो लोग रात को सड़कों पर उतर गए। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने लिखा कि इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार है। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। अखिलेश के पोस्ट पर एके शर्मा ने लिखा कि आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दिखाया करो। एके शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। बिजली के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया भिड़ गए। अखिलेश यादव ने लिखा है कि सच तो यह है कि बीजेपी सरकार ने बिजली व्यवस्था को ठप कर दिया है। इस पर एके शर्मा ने लिखा कि आपके कार्यकाल से दोगुना उपभोक्ता आज यूपी में है। अखिलेश ने लिखा कि नई मांग की पूर्ति के लिए यूपी में कोई पावर प्लांट नहीं बना। इस पर एके शर्मा ने लिखा कि प्रयागराज के बेजा में 3x800 मेगावाट के प्लांट को मंजूरी मिली है। अखिलेश ने लिखा कि ट्रांसमिशन के लिए नई व्यवस्था नहीं दी गई। इस पर जवाब आया कि समाजवादी पार्टी कार्यकाल की तुलना में योगी शासन में बिजली ट्रांसमिशन में 6 गुना की वृद्धि हुई है। यूपी सरकार के मंत्री लाख दावे करें कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सब चंगा सी, लेकिन आज की हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। आज तक ब्यूरो।
2: उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां पर रैपिड मेट्रो की भी बिजली कट गई थी। गर्मी और बिजली संकट के बीच में मेट्रो तक की बिजली कट रही है और इसका असर यह हुआ कि गुरुग्राम रैपिड मेट्रो ठप हो गई। यात्री ट्रेन में फंस गए, काफी देर तक मेट्रो रुकी रही और फिर अंत में इमरजेंसी गेट खोलने पड़े, यात्रियों को निकालना पड़ा। मेट्रो ट्रैक पर चलकर ये यात्री स्टेशन तक पहुंचे।

0: ये गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो है, बिजली चली गई है इसलिए ट्रेन के पहिए ठप हो गए। जिस एलिवेटेड ट्रैक पर रैपिड मेट्रो दौड़ती है उस पर यात्री पैदल चलने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जमीन से करीब 40 फीट ऊपर एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ने वाली मेट्रो की बिजली कटी तो ट्रेन जहां थी वहीं रुक गई। अचानक हुए इस पावर फेलियर से ट्रेनों में अंधेरा छा गया, यात्रियों के बीच अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया। किसी तरह से इमरजेंसी गेट के जरिए यात्रियों को उतारा गया और फिर रेलवे ट्रैक पर चलते हुए सब लोग पास के स्टेशन पहुंचे।
1: इस पूरे रूट पर अंधेरा छा गया था, जो मेट्रो जहां चल रही थी वहीं रुक गई, जिसके चलते यात्रियों में हड़कंप मच गया था।
0: गुरुग्राम के सिकंदरपुर से सेक्टर 56 की ओर जा रही ट्रेन में करीब 60 से 70 यात्री सवार थे। ये गाड़ी DLF फेज 2 पार करके सिकंदरपुर एक्सचेंज की तरफ बढ़ रही थी, तभी ब्लैकआउट हो गया। वहीं सेक्टर 56 से सिकंदरपुर की ओर जा रही मेट्रो में लगभग 180 यात्री थे। बिजली कटी तो सबको पटरियों पर उतरना पड़ा और जैसे तैसे पैदल जाना पड़ा। गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो का यह हाल क्यों हुआ इसे भी जान लीजिए। सेक्टर 72 के पावर सब स्टेशन से रैपिड मेट्रो में बिजली की सप्लाई होती है। शुक्रवार की शाम पिक ओवर में अचानक पावर स्टेशन में आग लग गई। पहले एक ट्रांसफार्मर चला, फिर दूसरे ट्रांसफार्मर तक फैल गई।
2: करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको, 220 केवी का ऑयल लीकेज ऑब्जर्व हुई। जो ऑपरेटर चेक करता है रूटीन में, उसने सडनली जैसे भाई वो लीक कर रहा है तो इसमें बंद कर दूं, आग ना लग जाए, उसको ब्रेकर काटने लगा। इन मीन टाइम वो ब्लास्ट हो गया और आग फायर पकड़ी इसको। वो हुआ तो इसे फॉल्ट इतना बड़ा ट्रैवल किया कि जो सिटी के कोलर्स होते हैं फटे और चारों तरफ फैले ना, बगल वाले उसमें भी उसने मतलब हमारा फॉल्ट क्रिएट कर दिया और इससे पूरा ब्लैकआउट हो गया था।
0: गुरुग्राम के बिजली विभाग की माने तो गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर फूक गया, जिसकी वजह से मेट्रो की पावर सप्लाई प्रभावित हुई। विभाग ने दावा किया कि बिजली गुल होने के कुछ ही घंटों के अंदर वैकल्पिक उपाय कर लिया गया, सप्लाई चालू कर दी गई। नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम आज तक।
3: और अब जयपुर की हम बात करेंगे। जयपुर के साथ पूरा राजस्थान सूरज की तप पेश है। राजस्थान में पारा 40 डिग्री के पार है।
4: रेगिस्तानी राजस्थान में मौसम की कहर की वजह से लोगों का हाल बुरा है। कड़कती हुई धूप और तेज गर्मी से अक्सर लोग राहत ढूंढते हुए देखे जा सकते हैं। अगर तापमान की बात की जाए तो प्रदेश की राजधानी जयपुर में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फालोदी, बीकानेर और चूरू में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगले कुछ घंटों में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं और मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है। हालांकि इसकी वजह से हो सकता है कि तापमान में थोड़ी गिरावट आए, लोगों को कुछ राहत मिले। इस मौसम में, तेज गर्मी में आवश्यकता है कि लोग जो है वो अपना बचाव करके रखें, जो शरीर है उसको समय समय पर हाइड्रेट करते रहें। पानी, छाछ, लस्सी, जूस, ये वो तमाम पेयजल पदार्थ हैं जिसके सेवन से शरीर जो है वो हाइड्रेटेड रह सकता है और लू लगने का या हीट वेव से ग्रसित होने का संभावना जो है वो कम की जा सकती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।
3: और अब रुकने छोड़े से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक बिजली संकट के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ सरकार है जो कहती है कि कोई कमी नहीं है, सब चंगा सी। दूसरी ओर विपक्षी नेता है जो इस संकट को महाविद्युत आपदा कह रहे हैं। इसमें तीसरा पक्ष है, कानपुर से लखनऊ और रायबरेली तक के बीजेपी विधायकों का, जो कहते हैं कि बिजली बहुत कट रही है। और चौथा पक्ष है वो जनता जो इन सबको झेल रही है। बिजली कटौती से नाराज यूपी की जनता कहीं पावर हाउस पर धावा बोल देती है तो कहीं बिजली कर्मियों पर गुस्सा उतार रही है। कानपुर, मेरठ, लखनऊ, हापुड़ में तो लोग रात को सड़कों पर उतर गए। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने लिखा कि इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार है। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। अखिलेश के पोस्ट पर एके शर्मा ने लिखा कि आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दिखाया करो। एके शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। बिजली के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया भिड़ गए। अखिलेश यादव ने लिखा है कि सच तो यह है कि बीजेपी सरकार ने बिजली व्यवस्था को ठप कर दिया है। इस पर एके शर्मा ने लिखा कि आपके कार्यकाल से दोगुना उपभोक्ता आज यूपी में है। अखिलेश ने लिखा कि नई मांग की पूर्ति के लिए यूपी में कोई पावर प्लांट नहीं बना। इस पर एके शर्मा ने लिखा कि प्रयागराज के बेजा में 3x800 मेगावाट के प्लांट को मंजूरी मिली है। अखिलेश ने लिखा कि ट्रांसमिशन के लिए नई व्यवस्था नहीं दी गई। इस पर जवाब आया कि समाजवादी पार्टी कार्यकाल की तुलना में योगी शासन में बिजली ट्रांसमिशन में 6 गुना की वृद्धि हुई है। यूपी सरकार के मंत्री लाख दावे करें कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सब चंगा सी, लेकिन आज की हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। आज तक ब्यूरो

कोलकाता से दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री मोदी से भी होगी मुलाकात। क्वाड साझेदारी, रक्षा सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर होगी चर्चा।

0: युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा विकास के भागीदार है युवा। विदेश निवेश से बढ़ेगी नौकरियां, 5 देशों के दौरों का जिक्र भी किया। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान योजना की हुई एंट्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ वर्चुअल मीटिंग में लगी मोहर, 500 करोड़ की पहली किश्त भी जारी। यूपी में भीषण गर्मी से पावर कट के आक्रोश पर चढ़ा सियासी पारा, अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बोला हमला, महाविद्युत आपदा का बताया योगी के मंत्री, बोले आईने में खुद देखें अखिलेश। सामने आई त्विशा शर्मा की मौत वाली जगह की तस्वीर, क्राइम सीन हुआ सीन, पुलिस के शिकंजे में पति समर सिंह से पूछताछ भी, आज कोर्ट में होगी पेशी, जल्द दोबारा पोस्टमार्टम की भी कार्रवाई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। पूरी दुनिया में इस समय वैश्विक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान फिर से तीसरी जंग की तैयारियां तेज कर चुके हैं, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के देश भी अपने नागरिकों को ईरान ना जाने और देश में ही रहने की एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। वहीं एक और बड़े घटनाक्रम ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, अमेरिकी एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। पिछले 24 घंटे में इन तमाम बड़ी घटनाओं ने दुनिया भर में एक बार फिर से नए खूनी संघर्ष की बातों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। रणभूमि स्पेशल में आज देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कुछ खास है इस बार रणभूमि स्पेशल में। रणभूमि स्पेशल में पहली खबर जो हम आपको बताएंगे वो है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस समय भारत के 4 दिन के दौरे पर है। उनके एजेंडे में व्यापार से लेकर रणनीतिक साझेदारी भी शामिल है। रणभूमि स्पेशल में दूसरी खबर में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव में की खबरों के बारे में, जिसमें कहा जा रहा है कि कभी भी डोनाल्ड ट्रंप एक नए युद्ध का आगाज कर सकते हैं। आगे आपको पूरी खबर बताएंगे। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर में हम आपको जानकारी देंगे अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान की जंग की पूरी तैयारियां कैसे कर रहा है। रणभूमि स्पेशल की चौथी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे एक सनसनीखेज घटना को लेकर, जिसपे आपको रूबरू कराएंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश बेनकाब हुई है। सवाल है कि क्या इवांका की जिंदगी खतरे में। रणभूमि स्पेशल में आखिरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि कैसे आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया, और वो भी अपने घर में। आज रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केजे सिंह सर होंगे और पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा सर भी हमारे साथ जुड़े होंगे, उनका रुख भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के 4 दिन की भारत यात्रा को लेकर, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। ईरान युद्ध के मद्देनजर बदलते हालातों के बीच ऐसे मुद्दों पर डील होने की उम्मीद है जिससे भारत और अमेरिका के कारोबार और कूटनीतिक रिश्तों और ज्यादा मजबूत होंगे। अब से कुछ देर पहले ही पीएम मोदी और रूबियो की मुलाकात हुई है। रूबियो दिल्ली के जयपुर और आगरा भी जाएंगे, यानी दिल्ली के बाद उनका जो रुख होगा वो जयपुर और आगरा के लिए होगा। किन किन मुद्दों पर उनके साथ बातचीत होगी, देखते हैं सबसे पहले एक खास रिपोर्ट, और इसके साथ ही हमारे इन तमाम खबरों के बारे में विश्लेषण करेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी गीता मोहन भी हमारे साथ जुड़ी हैं। गीता मोहन का रुख करते हैं। गीता, देखिए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की टेंशन बढ़ी हुई है लगातार भारत के टैरिफ को लेकर, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
3: जी बिल्कुल, ये जो दौरा है ये क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के चलते हो रहा है, लेकिन देखिए बहुत स्पेशल बना दिया है क्योंकि 4 सिटीज का दौरा करेंगे जिसे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल कहा जाता है, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर और आगरा, 3 बहुत अहम सिटीज जहाँ का जहाँ पर सेक्रेटरी रूबियो जाने वाले हैं। लेकिन उन्होंने दिल्ली की शुरुआत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल ऑन के साथ, अभी अभी वो मुलाकात खत्म हुई है, डिटेल्स बड़े जल्द पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। कल बायलैटरल मीटिंग है, क्वाड से पहले बायलैटरल मीटिंग करके वो सीधे जयपुर आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर वहां पर भी लोगों से मुलाकात करेंगे, इंस्टीट्यूशन से मिलेंगे और फिर वापस आके 26 तारीख को क्वाड फॉर मिनिस्टर्स मीटिंग है जहां पर कई सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, मैरिटाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक। लेकिन कल जो बायलैटरल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सुमित बात होगी ट्रेड टैरिफ पर जो परेशानियां हो रही हैं, जो युद्ध चल रहा है ईरान को ईरान के साथ उसके चलते जो तेल और गैस की किल्लत महसूस कर रहा है भारत, इन सब चीजों पर बातचीत होने वाली है कल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई है, उस पर डिटेल्स बड़े जल्द पता चल जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है ईरान जरूर टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा होगा और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्योता जरूर दिया होगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्वाड फॉर लीडरशिप समिट के लिए जो इस साल के आखिर में होना इंडिया होस्ट कर सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गीता मोहन हमारी सहयोगी। देखिए बता रही थी कि ये मीटिंग भले ही क्वाड को लेकर हो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस मीटिंग के अंदर मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर, सप्लाई चेन को लेकर और मौजूदा हालातों में किस तरीके से अमेरिका और भारत आगे बढ़ सकते हैं एक वैश्विक शक्ति के तौर पर, इसको लेकर भी जिक्र होगा। सबसे पहले मार्को रूबियो के इस दौरे को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: भारत के लिए क्या लेकर आए हैं मार्को रूबियो, भारत से क्या लेकर जाएंगे मार्को रूबियो, महायुद्ध के महासंकट के बीच महाशक्तियों की मुलाकात, ऊर्जा से लेकर व्यापार तक कई मुद्दों पर होगी बात। कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्नी जिनेट डी रूबियो के साथ उतरते अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, साथ में अमेरिका के प्रिंसिपल डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट गैब्रियल। कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्नी जिनेट डी रूबियो के साथ उतरते अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, साथ में अमेरिका के प्रिंसिपल डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट गैब्रियल। रूबियो की 4 दिन की भारत यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब दुनिया भर में ईरान युद्ध की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं और बदलते हालात के बीच भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। ट्रंप की तल्ख बयानबाजी और पश्चिम एशिया के संकट के बीच रूबियो की ये यात्रा न सिर्फ रिश्तों को और मजबूत करेगी बल्कि तेल के खेल को खतरनाक होने से बचाने का काम भी करेगी। रूबियो कई मुद्दों पर अपनी साफ साफ राय रखते हैं, न वो सोच में उलझते दिखते हैं, न घंटों भर में अपने बयान से पलटते हैं। इसीलिए भारत के लिए रवाना होने से पहले ही उन्होंने अपनी यात्रा का बड़ा एजेंडा दुनिया के सामने रख दिया था।
1: We want to sell them as much energy as they'll buy, and obviously you've seen, I think we're at historic levels of U.S. production and U.S. export. We want to be able to do more. We were already in talks with them to do more. We want to be a bigger part of their portfolio. We also think there's opportunities with Venezuelan oil. In fact, it's my understanding that the interim president of Venezuela will be traveling to India next week as well. So there's opportunities. There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so it is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. Something, I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe like I went, I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs and that was my first meeting. And I'm glad we're able to do it now in India. And we're going to do one later in the year as well.
0: कोलकाता पहुंचने के बाद रूबियो ने मदर टेरेसा हाउस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा भी किया। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रहीं। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी उनके साथ रहे। सर्जियो गोर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ऐसे पल ये याद दिलाते हैं कि अमेरिका भारत साझेदारी केवल मजबूत नीतियों पर ही नहीं बल्कि साझा मूल्यों और निस्वार्थ सेवा की भावना पर भी आधारित है जो सीमाओं से परे है। कोलकाता में कुछ घंटे गुजारने के बाद मार्को रूबियो दिल्ली के लिए रवाना हो गए जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वो जयपुर और आगरा भी जाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग मजबूत करने के लिए भारत 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया जापान के विदेश मंत्रियों के साथ साथ मार्को रूबियो इस बैठक का भी हिस्सा होंगे। उनके 4 दिन के भारत दौरे के 4 मुख्य मुद्दे होंगे ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और रक्षा।
2: मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी होंगी, साथ ही क्वाड सम्मेलन से संबंधित भी होंगी। क्वाड में भागीदार होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे नतीजे होंगे जिनके बारे में चारों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम पिछले लगभग 5 महीनों से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 महीनों से हूँ।
0: हुर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर संकट के बाद से भारत ने तेल के लिए कई विकल्पों को आजमाया है। ये संकट अभी टला नहीं है। व्यापार के लिहाज से और कूटनीति में संतुलन को देखते हुए सहमति बनाने के लिए रूबियो के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: और उनके 4 दिनों के इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मार्को रूबियो की बैठक हुई है, उसकी ताजा तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं और ये बताएंगे कि आखिरकार ये मीटिंग कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है, तस्वीरें सीधे आप हम दिखा रहे हैं ये, और कहा जा रहा है कि दिल्ली में पीएम मोदी से मिले हैं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो 4 दिन के भारत दौरे पर है, और पीएम मोदी और मार्को रूबियो के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। हम आपको बता रहे हैं कि ना सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर बल्कि इस समय के ताजा हालातों को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई बायलैटरल रिलेशंस को लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ताजा तस्वीरों में आप देख सकते हैं मार्को रूबियो और प्रधानमंत्री मोदी, वेटिकन में जयशंकर, और आप देख सकते हैं कि एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद है। इसके अलावा जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं वो भी आपको नजर आ जाएंगे। और ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये मीटिंग कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि देखिए, दिल्ली आ जाने के बाद वो सबसे पहले कोलकाता लैंड किए थे, उसके बाद वो दिल्ली आए हैं, दिल्ली के बाद वो जयपुर और आगरा जाएंगे, और उसके बाद मंगलवार को क्वाड की मीटिंग करेंगे। क्वाड की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी एक मीटिंग या उनकी एक मुलाकात, इसमें ना सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर बल्कि इस समय वैश्विक संकट जो पैदा हो गया है सप्लाई चेन को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर भी उनके साथ बातचीत में इन चीजों के ऊपर जिक्र हुआ। और देखिए, हम आपको ये ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी जो बैठक होनी थी, जो मुलाकात होनी थी, वो हो गई है, जिसमें भारत अमेरिका के सहयोग को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इस समय मौजूदा हालात में वैश्विक हालातों के अंदर आगे बढ़ाया जा सके, सुरक्षा, व्यापार और तकनीक को लेकर कैसे दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर एक बड़ी चर्चा हुई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, और इस मुलाकात को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस समय के ताजा हालात में कैसे भारत और अमेरिका वैश्विक चुनौतियों का सामना एक साथ कर सकते हैं, और भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, ना सिर्फ आप कह सकते हैं डिफेंस के मामलों में, विदेश नीति और दूसरे मामलों में भी आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको एक बड़ी खबर और बता दें कि इसी दौरान, इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मार्को रूबियो ने अमेरिका आने का न्योता भी दिया है, यानी अमेरिका आने के लिए न्योता दिया गया है। और खासतौर पर यह भी आपको, जिस तरीके से हमारी सहयोगी गीता मोहन भी बता रही थी कि क्वाड की जो मीटिंग है वो भारत में होनी है इस साल के अंत तक, उसमें प्रधानमंत्री मोदी उसका जिक्र कर सकते हैं, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आने का न्योता दे सकते हैं। लेकिन उसी बीच ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिका आने का न्योता दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ गए हैं। प्रणय उपाध्याय का रुख करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रणय, देखिए आज उनका यह दौरा, चार दिन का दौरा क्वाड को लेकर है, लेकिन ताजा हालातों को देखें तो यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ क्या मीटिंग को लेकर अपडेट मिल पाया?
4: देखिए, काफी महत्वपूर्ण मीटिंग थी, एक घंटे के करीब ये बैठक चली, और इस बैठक के अंदर काफी विषयों के ऊपर, भारत और अमेरिका के संबंधों को, उनके सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे व्यापार कारोबार का मुद्दा हो, उसके अलावा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का जो इशू है उसको लेकर कैसे दोनों देश मिलकर साथ काम कर सकते हैं, और साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर किस तरीके से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मिलकर आगे बढ़ाया जा सकता है। ये तमाम मुद्दे थे जो कि बातचीत के अंदर आए प्रधानमंत्री मोदी के साथ में अमेरिकी नेतृत्व की। ये पहली उच्च स्तरीय बैठक आप कह सकते हैं, क्योंकि फरवरी 2025 में, उसमें आपको याद है, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी। उसके बाद ये पहली बैठक थी जिसके अंदर अमेरिकी विदेश मंत्री भारत आए हैं, उनका ये पहला दौरा है के तौर पर। और उसके साथ ही इस बैठक के अंदर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे, साथ ही अमेरिका के जो राजदूत हैं सर्जियो गोर, वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद थे। और कल द्विपक्षीय मुलाकात होनी है, द्विपक्षीय चर्चा होनी है, और स्वाभाविक रूप से भारत की क्वाड की अध्यक्षता भी कर रहा है, क्वाड की शिखर बैठक भारत के अंदर होनी है, उसके लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो जल्दी ही भारत आएंगे, उनके भारत यात्रा का भी एक कार्यक्रम है, और उसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित किया गया है अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो दोस्ताना रिश्ते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेश लेकर एक तरीके से सेक्रेटरी मार्को रूबियो भारत आएंगे।
3: जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय उपाध्याय आपका। देखिए प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार ये बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है, और इसमें ना सिर्फ वो विदेश मंत्री जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति का एक न्योता, एक संदेश लेकर आए, बल्कि अब इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे कैसे बढ़ाया जा सके इस पर भी बातचीत। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि मार्को रूबियो का चार दिन के दौरे में आखिरकार कहां कहां वो जाएंगे, उनके कार्यक्रम, उनकी इंगेजमेंट क्या है। चलिए आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको दिखाता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हो गई है, जो एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेश प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाया। अब क्या है कार्यक्रम? जयशंकर से रूबियो की बातचीत होगी, और यह भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, व्यापार हो, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, उस पर कैसे बातचीत हो, द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे, यह एक महत्वपूर्ण है। यानी आज जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के 250 कार्यक्रम में होंगे शामिल, 250 कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सोमवार को आगरा और जयपुर का दौरा करेंगे। आपने देखा कि कैसे लगातार इससे पहले भी आपको याद होगा जो जेडी वेंस आए थे वो भी इस समय आगरा और कई जगहों पर गए थे, वो भी आगरा और जयपुर जा रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में क्वाड की बैठक में शामिल होंगे, यानी क्वाड की बैठक में शामिल होने वाले हैं। उस बैठक का एक चौथा दिन का जो हम आपको बता रहे हैं एस्पेक्ट, आज वो कोलकाता पहुंचे, फिर दिल्ली, दिल्ली के बाद वो आगरा और जयपुर जाएंगे और उसके बाद मंगलवार को वापस दिल्ली आकर क्वाड की बैठक में वो शामिल होंगे। यानी ये कुछ महत्वपूर्ण एंगेजमेंट है जो उनकी होने वाली, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी। अब उनके आने का एजेंडा क्या है ये भी आप समझ लीजिए। अब अमेरिका भारत साझेदारी कैसे आगे बढ़ सकती है इस चैलेंजिंग दौर के अंदर, चुनौतीपूर्ण दौर के दौर में कैसे दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। अब व्यापार, निवेश और ऊर्जा को लेकर, यानी टैरिफ को लेकर, ऊर्जा को लेकर, यहां तक कि ऑयल को लेकर, सप्लाई चेन को लेकर दोनों के बीच में बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। अब क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर बातचीत होगी, रणनीतिक साझेदारी पर सहमति बनेगी, आगे कैसे अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाए उस पर सहमति जताई जाएगी और वेस्ट एशिया और वैश्विक आर्थिक संकट पर भी चर्चा होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस समय के मौजूदा हालात में ना सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत और तमाम दुनिया के देश इस वैश्विक संकट से जूझ रहे हैं और यही वजह है कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी, इन महत्वपूर्ण विषयों पर भी बातचीत हो सकती है। आज से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर है। रूबियो के दौरे से भारत अमेरिका के संबंधों में फिर से नई गर्मजोशी की उम्मीद जताई जा रही। ऐसे में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर्क से आज तक की खास बातचीत हुई, आइए आपको सुनाते हैं।
5: मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस यात्रा का क्या महत्व है, क्योंकि इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, इस यात्रा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं?
6: रोहित, आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे पता है कि आप भारत वापस जा रहे हैं, इसलिए हम शनिवार को आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की उम्मीद करते हैं। मार्को रूबियो की इस भारत यात्रा का बहुत महत्व है। अमेरिका भारत के साथ रिश्तों को लेकर गंभीर है और इसलिए विदेश मंत्री, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं, चार दिनों के लिए भारत आ रहे हैं, जो मामूली बात नहीं है। जब विदेश मंत्री यात्रा करते हैं तो आम तौर पर वो एक या दो रातों के लिए ही आते हैं, वो अभी तक किसी एक देश में चार दिनों के लिए नहीं गए हैं। इसलिए जब विदेश मंत्री यहाँ आएंगे तो वो दिल्ली, कोलकाता, आगरा और जयपुर जाएंगे। इसका बहुत महत्व है, इससे भारत अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत होंगे।
5: आपने बिल्कुल सही कहा, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो कोलकाता से शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली लौटेंगे, द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, फिर जयपुर आगरा जाएंगे, वापस आएंगे और क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मतलब ये एक बहुत बड़ा चार दिवसीय कार्यक्रम है। हमें बस इतना बताइए कि हम किन ठोस परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं, क्या कोई ठोस परिणाम हो सकते हैं जिनकी हम उम्मीद कर सकते हैं?
7: मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी होंगी, साथ ही क्वाड सम्मेलन से संबंधित भी होंगी। क्वाड में भागीदार होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे नतीजे होंगे जिनके बारे में चारों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम पिछले लगभग 5 महीनों से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 महीनों से हूँ। विदेश मंत्री ने डॉक्टर जयशंकर के साथ नियमित रूप से बातचीत की है, वो कई बार मिले हैं अमेरिका में भी और अन्य कार्यक्रम।

0: सोर्सेस से हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी, जो हमारी जरूरत है क्रूड ऑयल की, गैस की, इन सब चीजों की आपूर्ति की, ये वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हुए सिचुएशन और भी खराब हो गई है। और इससे पहले जो अमेरिका ने सेंक्शन वगैरह लगाई थी उससे भी हमारी कुछ सीमाएं सीमित हो गया था ये सब। तो अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि वो अमेरिकन ऑयल और खासतौर से वेनेजुएलन ऑयल जो है वो भारत को बेचे।
1: बिल्कुल
0: इससे उसके दो मकसद सॉल्व होते हैं। एक तो उनके खुद का ऑयल और जो वेनेजुएला का ऑयल इस समय अमेरिका के कंट्रोल में है वो उससे भारत को भेजा जाएगा, और दूसरे इससे इनडायरेक्टली भारत की डिपेंडेंस रशिया पे कम करने की कोशिश है उनकी, कि रशिया पे जो भारत की डिपेंडेंस है उसे इससे कम कर दिया जाए अमेरिका के इंटरेस्ट में। हमारे इंटरेस्ट
1: बिल्कुल
0: में तो ये है कि हमें चाहिए ऑयल, हमें हम तो वैसे ही डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वेनेजुएला का तेल हम काफी परिचित हैं, हालांकि हैवी क्रूड होने के बावजूद हमारे पास फैसिलिटीज हैं उसे रिफाइन करने की, वहां सिर्फ इकोनॉमिक्स पे आके बात अटक सकती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे साथ
0: दूसरा
1: केजी सिंह सर
0: एनर्जी
1: भी हैं,
0: सिक्योरिटी।
1: माफ कीजिए, हमारे
0: जी
1: साथ केजी सिंह सर भी हैं। केजी सिंह सर, अचल सर जिस तरीके से बता रहे थे कि देखिए दोबारा से अपने रिश्तों को रिवाइव करना, रीसेट करना, लेकिन जो कदम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाए गए पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो टैरिफ्स को लेकर हो, चाहे वीजा को लेकर हो, और जो क्लोजनेस या फिर जो चीजें अमेरिका ने की पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान को अपने साथ खड़ा करके, क्या उनको रीसेट करना इतना आसान होगा? और वो भी ऐसे दौर के अंदर जब अमेरिका कमजोर होता जा रहा है, ईरान को लेकर उसकी मुखालफत होती जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजीज फेल होती जा रही है।
2: सुमित, जय हिंद। मैं आपके श्रोताओं को ये बता देना चाहूंगा कि मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि फॉरेन मिनिस्टर का इक्विवेलेंट होता है, उसके अलावा आजकल अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, एनएसए भी हैं, जो रोल अजीत डोभाल करते हैं वो भी वो कर रहे हैं। तो उनकी अहमियत इन डबल रोल के अंदर देखी जानी चाहिए। अभी हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ रीसेट तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब हो गए थे। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका ने हमें, जो हमने सिंदूर के अंदर एक्स कैलिबर एमिनेशन और दूसरी असले इस्तेमाल किए थे, उनकी आपूर्ति की थी, वो हमें वो क्रिटिकल था, उसको टाइम पर उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। अब इसी तरीके से जो तेजस हवाई जहाज हमने बनाना है उसके इंजन का मसला है, F414 इंजन की सप्लाई अच्छी
1: जी
2: तरीके से रेगुलेट हो, टाइम पर आए, इसके बारे में काफी भारत को निराशा हुई है अमेरिका से, मैं तो
1: बिल्कुल
2: कहूंगा।
1: बिल्कुल
2: और अब हम उम्मीद करते हैं कि इस विजिट से वो दूर होगी।
1: बिल्कुल
2: और क्वाड में भी जिस तरीके से हमारे मन में ये शंका यह शक पैदा हो जाता है, क्या वर्ल्ड एक G2 कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ रहा है? क्या अमेरिका और चीन अपना अपना अधिकार क्षेत्र बनाएंगे और भारत को ठंडे बस्ते में छोड़ देंगे? ये
1: लेकिन बिल्कुल सर, लेकिन इन
2: सवाल।
1: तमाम खबरों के बीच सर, एक बड़ी खबर, एक बड़ा इनपुट लगातार युद्ध क्षेत्र से भी आ रहा है। अब रुख करते हैं पश्चिमी एशिया की ओर, जहां पर इस वक्त फिर से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। तनाव को कम करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर तेहरान में, और अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने ईरान के स्पीकर गालिबाफ से मुलाकात भी की, और माना जा रहा है कि उन्होंने अमेरिकी प्रस्ताव को लेकर गालिबाफ को बात कर अमेरिका के प्रस्ताव हैंडओवर किया या अमेरिका की शर्तों को समझाया। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इस युद्ध क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबरें हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म delicious breakfast right before it ends.
5: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
6: Ba-da-ba-ba-ba. TuneIn has the music.
7: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
8: TuneIn Poolside has the music I love.
7: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii.
9: Let's go. Yeah, you leave this world behind.

0: and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Sokudo.
1: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
2: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
5: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
8: इसमें माइक्रो फाइबर है।
7: माइक्रो फाइबर यानी
8: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
7: हमारे सीमेंट में नहीं है,
8: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
9: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने हैं ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबा केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
4: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।
7: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
8: What about me, Jack? What about me?
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
9: Well played, Jack. Well played.
7: Jack FM, playing what we want.
10: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
11: साल से इंडिया टुडे मीडिया

0: मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
1: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
2: आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि 4 लेन की सड़कें हो पाएंगी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है क्योंकि देवरिया तो पहले जब मैं गोरखपुर से सांसद था लगभग हर महीने मुझे देवरिया आने का अवसर प्राप्त होता था, लगभग हर महीने, क्योंकि यहां पर तत्कालीन सरकार के उत्पीड़न, तत्कालीन सरकार की अराजकता, समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जो उस समय व्यवस्था पैदा की गई थी उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी हिंदू यावानी, कभी व्यापारिक संगठनों के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए आना पड़ता था। और तब मैं देखता था कि गोरखपुर से देवरिया की सड़क 2 लेन बमुश्किल थी, और उसमें भी कहीं कहां पर वो सिंगल लेन ही थी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, सुरक्षा, व्यापार और तकनीक पर हुई चर्चा। ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस आने का दिया न्योता। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान योजना की हुई एंट्री। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ वर्चुअल मीटिंग में लगी मोहर। 500 करोड़ की पहली किश्त भी जारी की गई।

मार्को रूबियो की मुलाकात हुई है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे बड़ी बातें, क्योंकि मुलाकात करीबन एक घंटे चली है और इस एक घंटे की मुलाकात में कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर यह चर्चा की गई है। अमेरिका और भारत के व्यापार को लेकर भी बातचीत की गई है। यहां तक कि मार्को रूबियो ने डोनाल्ड ट्रंप का एक न्योता भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया, जिसमें उन्हें व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया गया है। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को लेकर भी बातचीत की गई। रूबियो से मुलाकात पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट भी सामने आया है। और देखिए, एक तरफ बातचीत की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जंग के बादल भी मंडराने लगे हैं। ईरान और अमेरिका युद्ध को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। एक तरफ ट्रंप ने हॉर्मूज और यूरेनियम को लेकर तल्ख बयानबाजी एक बार फिर से करना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने संभावित हमलों को लेकर तैयारियां पुख्ता कर ली है। इस बीच हलचले बढ़ गई हैं तेहरान में, जहां पर आसिफ मुनीर पहुंचे हुए हैं। कतर के प्रतिनिधिमंडल भी अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मुलाकात ने आस को तेज कर दिया है, लेकिन आशंका यही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरीके से नए युद्ध का आगाज कभी भी कर सकते हैं।

0: हॉर्मुज और यूरेनियम पर जारी घमासान, दोनों मुद्दों पर सरेंडर नहीं करेगा ईरान। व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, क्या फिर मचेगा कोहराम? रूबियो ने जताई उम्मीद, बात से बनेगी बात। हॉर्मुज में फिलहाल गोलियों की गूंज नहीं है, लेकिन जहाजों की आवाजाही भी नहीं है। अभी भी सैकड़ों जहाज समंदर में फंसे हुए हैं, क्योंकि ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका वहां से लौटने को। अमेरिका विनाशकारी युद्धपोतों से ईरानी बंदरगाहों पर निगाह बनाए हुए है और ईरान है कि उसने हर हाल में टोल टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया है। इस बीच कई खाड़ी देशों की ईरान पर हमला न करने की अपील से ये उम्मीद जगी थी कि मामला कूटनीति के जरिए ही हल किया जाएगा, लेकिन इस बीच चौंका देने वाली खबर आ रही है कि ट्रंप अपने कुछ निजी कार्यक्रमों को छोड़कर व्हाइट हाउस लौट आए हैं। कई आला अफसरों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। वैसे भी ट्रंप ने फिर दोहराया है कि उन्हें हॉर्मुज में टोल जैसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
1: Right now they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And
0: हॉर्मुज के अलावा दूसरा बड़ा पेच यूरेनियम पर फंसा हुआ है। अमेरिका अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि हर हाल में यूरेनियम को वो लेकर रहेगा, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी हाल में यूरेनियम देश के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
1: We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay?
0: तो क्या कुछ ही घंटों में महायुद्ध फिर से शुरू होने वाला है? क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? इन सवालों के जवाब जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मांगे गए तो उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ बातचीत भी जारी है और हो सकता है कि उसी के जरिए कोई हल निकल जाए।
2: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal. You asked me if I'm optimistic. I don't characterize it as optimistic or pessimistic. We're going to respond based on the facts as we see them and as they emerge. So what the president has outlined is his priorities are clear. Iran can never have a nuclear weapon. The issue of highly enriched uranium has to be discussed. Its disposition has to be dealt with.
0: इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान शांति दूत बना घूम रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली है। उधर कतर की एक टीम भी तेहरान पहुंची है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच पीस प्लान पर सहमति बनाई जा सके। पाकिस्तान के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 48 घंटों में मुलाकात हावी रहती है या बमों की बरसात की तैयारियां जोर पकड़ती हैं। आज तक ब्यूरो।
3: तो आपने अभी हमारी एक खास रिपोर्ट देखी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अमेरिका से भी आ रही है जहां जंगी तैयारियों को लेकर बड़े फैसले किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अपने बेटे जूनियर ट्रंप की शादी में जाने का प्लान रद्द कर दिया है। रिपोर्ट की माने तो ईरान को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है और माना यह जा रहा है कि ट्रंप कभी भी बड़ा एक्शन का प्लान तैयार करने के बाद उसको ग्रीन सिग्नल दे सकता है। व्हाइट हाउस में ईरान पर हमले को लेकर कोई खास रणनीति बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसी के चलते वो अपने बेटे ट्रंप जूनियर की शादी में भी नहीं जा रहे हैं, उसके प्रोग्राम को भी उन्होंने रद्द कर दिया है। और देखिए इसी बीच ये आशंका जताई जा रही है कि इस युद्ध को लेकर ट्रंप कोई बड़ा फैसला कभी भी ले सकते हैं, लेकिन अमेरिकी हमले की आशंका को देखते हुए ईरान भी बड़े तैयारियां कर रहा है। ईरान की सेना अधिकतम अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पर कर दी गई है। ईरान में तेहरान के पश्चिम में सभी शहरों के एयरपोर्ट को बंद कर दिया है क्योंकि सबसे अधिक खतरा उन्हीं शहरों पर है। आपको याद होगा कि ईरान ने अपनी एयरलाइंस को दोबारा सुचारू रूप से शुरू कर दिया था, खासतौर पर ना सिर्फ तेहरान बल्कि इस्फहान और कई जगहों पर हमने देखा था कि ईरान ने नॉर्मलसी के फैक्टर्स को आगे बढ़ाते हुए फ्लाइट्स की आवाजाही को शुरू कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से इस बढ़ते घटनाक्रम को देखते हुए ईरान ने अपने पश्चिमी इलाकों के कई इलाकों में खासतौर पर अपने एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें कि ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट का आज 85वां दिन है। अमेरिका से युद्ध के बाद 85 दिन से ईरान में इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है। कई जगहों पर इंटरनेट को खोला गया, इंटरनेट मॉनिटरिंग की जा रही है और उसी बीच आज 85 दिन इंटरनेट सेवाओं को बाधित हुए हो चुके हैं। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट का शनिवार को 85वां दिन हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क 2000 घंटे से अधिक समय से लगभग पूरी तरीके से ठप है। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अचल मल्होत्रा सर, जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा, ईरान द्वारा, ये तो फिर से ऐसा लग रहा है कि तीसरा युद्ध दोबारा से होगा। पहले जून 2025 में हुआ, उसके बाद हमने फरवरी में देखा और अब दोबारा से तीसरे युद्ध की तैयारियां दोनों देश कर रहे हैं।
4: सुमित देखिए, ये बात जो समझ में नहीं आ रही कि आखिर चल क्या रहा है, इसको डीकोड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक तरफ आपका जो मैसेंजर है वो आपके प्रपोजल लेकर ईरान गया है और वो वहां पे कंसिडर किए जा रहे हैं और उसका रिस्पांस आने से पहले ही अगर आप ये फैसला कर लेते हैं कि ये ईरान की तरफ से जो है कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा और हमले की तैयारी करते हैं, तो बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि बातचीत के बीच में हमला करना, ये तो फिर वही पिछले दो बार का पैटर्न हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि पिछले दो हमलों में, बड़े हमलों में, ना तो अमेरिका को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए ना इसराइल को अचीव हुआ, तो तीसरा हमला इन दो हमलों से किस हद तक और किस तरह से अलग होगा, जो अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स है कि परमाणु न्यूक्लियर को लेकर या हॉर्मोस को लेकर, ये कैसे अचीव हो गए। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से हार्डलाइन स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, साइकोलॉजिकल वारफेयर कह लो, इन्फो वारफेयर कह लो। अमेरिका मुझे लगता नहीं है कि वापिस जंग में जाना चाहेगा। रीजन ऑफ कोर्स मिड टर्म इलेक्शंस, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, उसकी डिक्लाइनिंग पॉपुलैरिटी की भी बात हो रही है। इसराइल भले ही ना चाहे कि ये इसराइल चाहता है कि वॉर नहीं रुके, दूसरी बात है, लेकिन क्या अमेरिका दोबारा जाना चाहेगा इस वॉर में? अगर वो जाएगा तो ऐसी कौन सी नई चीज लेके आएगा कि कंक्लूसिव हो जाए? फिर अगर उसके ऑब्जेक्टिव बातचीत की टेबल पे नहीं हो रहे तो फिर युद्ध के तरीके से उसे रिजोल्व कर पाए। तो बड़ी शशोपज और ये पेचीदा सी पोजीशन है, इसे समझना, डीकोड करना बहुत मुश्किल है।
3: लेकिन सर, अचल सर, इन तमाम चीजों के बीच हमारे साथ केजे सिंह सर। केजे सिंह सर, हम अमेरिका की बात तो कर रहे हैं, देखिए अमेरिका के लिए इसमें टेक अवे क्या होगा, अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी कैसे दोबारा से एस्टेब्लिश कर पाएगा, लेकिन जब आप ईरान की बात करते हैं, ईरान ने तो इस पूरे युद्ध को अमेरिका इजराइल के बाद एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील कर दिया और अभी भी ईरान ये कह रहा है कि अगर दोबारा से हमले हुए तो ये मान के चलिएगा कि पूरे रीजन के अंदर हम इस युद्ध को फैला देंगे। तो इसका संकट, इसकी गंभीरता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ईरान समझ रहा है कि देखिए हम तो बर्बाद होंगे ही होंगे, आप सबको बर्बाद कर डालेंगे।
5: सुमित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं अचल जी की बात से भी पूरी तरीके से सहमत हूं कि अब करें क्या, या तो ग्राउंड पे ट्रूप डिप्लॉय करें या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करें। मतलब उनकी जो उनके पास जो ऑप्शन है इस लड़ाई में कुछ नया करने के, वो भी लिमिट होते जा रहे हैं। और अमेरिका का जो असला है, जो स्टेमिना है, उसमें भी बहुत असर पड़ा है। अमेरिका के बहुत सारे एयरक्राफ्ट गिरे हैं, रीपर ड्रोन गिरे हैं, तो उसने बहुत सारी अपनी हाई कॉस्ट मिसाइल्स को इस्तेमाल कर डाला है। तो सवाल तो है, और ये रीजनल कन्फ्लिक्ट तो बन चुकी है जिसमें रीजनल रीसेट भी हो रहा है। आप देखिए, पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया और सऊदी अरेबिया में ट्रूप्स, अपने हवाई जहाज, एयर डिफेंस को डिप्लॉय किया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अलग थलग पड़ गया है किसी तरीके से। चार मुल्कों ने मिलकर एक सऊदी या सुन्नी क्वाड बना डाला है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान। तो हालात तो बहुत पेचीदा हैं और मेरे विचार से, मेरी ये उम्मीद है, मैं आशावादी भी हूं कि ये गीदड़ भभकियां करने के बाद वो समझेंगे कि अब इसको और आगे ले जाना ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ करके इस लड़ाई को खत्म करना चाहिए।
3: बिल्कुल सर, उम्मीद पूरी दुनिया को इसी बात की है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इन्हीं बयानबाजियों में खत्म हो जाए, कहीं आगे ना बढ़ जाए। लेकिन आशंका इस बात की भी है, देखिए एक तरफ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान दोनों तरफ इसमें अपना फायदा बटोर रहा है, एक तरफ सऊदी के साथ अपने डिप्लॉयमेंट कर उन पर खर्चा उनसे लेकर, दूसरी तरफ अमेरिका के नजदीक जाकर और ईरान के नजदीक जाकर अपने आप को एक डिप्लोमेटिकली एक बड़ा देश देखकर। और अब इसी बीच एक बड़ी सनसनीखेज खबर अमेरिका से भी आ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया गया। पता चला है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से ट्रेनिंग पाए खतरनाक आतंकवादी मोहम्मद बकार साउद सादी ने इवांका ट्रंप की जान लेने का पूरा प्लान तैयार किया था। और यह भी कहा जा रहा है कि इससे अमेरिका से बदला लेने की कोशिश थी, जैसे जनरल सुलेमानी को अमेरिका ने न्यूट्रलाइज किया था 2020 में, उसी के बाद इस बदले लेने की तैयारी में था शख्स।
6: जिस वक्त अमेरिका ईरान फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े, जब ईरान में फिर से तबाही का अमेरिका का प्लान तैयार हो चुका है, किसी भी वक्त ईरान में विध्वंस के लिए हमले का ऐलान हो सकता है। ठीक उसी वक्त ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश रची गई, इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई। और सबसे चौंकाने वाली बात ये, साजिश की कड़ी सीधे ईरान से जोड़ती दिख रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहे आतंकी को पकड़ लिया है। उसकी पहचान 32 साल की मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने गुरु और ईरानी सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था, और इसके लिए IRGC से ट्रेनिंग पाए इस आतंकी ने पूरा खाका तैयार कर लिया था। आतंकी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी कासिम सुलेमानी को अपना गुरु मानता था और तभी से ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में था। आरोपी अल सादी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार, खासकर उनकी बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की कसम खाई थी। जांच के दौरान सुरक्षा बलों को अल सादी के पास से फ्लोरिडा में मौजूद इवांका ट्रंप के आलिशान घर का पूरा ब्लूप्रिंट भी बरामद हुआ है। वो काफी समय से उनके घर की रेखी कर रहा था। वॉशिंगटन में इराकी दूतावास के पूर्व डिप्टी मिलिट्री अटैचे एंटी फाद कनबर ने इस आतंकी के इरादों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अल सादी लोगों से कहता फिर रहा था कि हमें इवांका ट्रंप को मारना होगा। वो कहता था कि हमें ट्रंप के पूरे घर को उसी तरह जलाकर खाक कर देना चाहिए जिस तरह उसने कासिम सुलेमानी के घर को तबाह किया था। यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है, तफ्तीश जारी है। ये गिरफ्तारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके सीधे निशाने पर ट्रंप का परिवार आ गया है। आज तक ब्यूरो,
3: बल्कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से तनाव में, क्योंकि आप विदेश नीति कह लीजिए, अपनी होमलैंड सिक्योरिटी कह लीजिए, हर तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटके लग रहे हैं। वहीं इसी बीच अमेरिका में टीम ट्रंप के एक बड़ा झटका लगा। तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ही अमेरिकी सियासी गलियारों में इस इस्तीफे को लेकर कयासों का बाजार बेहद गर्म। हम आपको बड़ी स्क्रीन पर एक बार ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार तुलसी गबार्ड ने तो हालांकि देखिए अपने रेजिग्नेशन को लेकर अपने पर्सनल रीजन का हवाला दिया है, लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर उनके कौन कौन से लोग करीबन छोड़ चुके हैं आपको देखें। लॉरी जेवेज जो अमेरिकी के श्रम मंत्री थी, 20 अप्रैल 2025 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अगर आप बात करें होमलैंड सुरक्षा मंत्री यानी क्रिस्टी नोएम ने भी 5 मार्च 2026 को अपने पद से उनको बर्खास्त कर दिया गया था। अब अटॉर्नी जनरल जो थी पैम बॉन्डी, उनको भी 2 अप्रैल 2026 को पद से बर्खास्त कर दिया गया था। ये माना जाता है कि ये तमाम वो नाम है जो उनके आप कह सकते हैं माइक वॉल्ट्स जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे 30 अप्रैल 2025 को उनके पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद 17 मार्च 2026 को भी पद से बर्खास्त हुए ग्रेग बोविनो को भी उनके बॉर्डर पेट्रोल चीफ के पद से हटा दिया गया। अब नाम सुसान मोनोराजे जो CDC निदेशक थी उनको अगस्त 2025 में उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। ये तमाम खबरें, ये तमाम चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एक आंकड़ों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 30% से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं और 20% से ज्यादा उनके जो मंत्री हैं वो पिछले जो डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है इसमें या तो हटा दिए गए या उनको बर्खास्त कर दिया गया। चले अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, रणभूमि में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help you save. Valid through 527. While supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
10: Visit your nearby Lowe's on Richmond Highway in Alexandria.
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
12: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
13: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
14: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
15: Jack, you're killing me.
14: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.

नौकरी की सुरक्षा और करियर के सुनहरे सपने दिखाने वाला आईटी सेक्टर इन दिनों खौफ के साए में। कल तक जो कंपनियां टैलेंट की तलाश में रहती थी वही आज अपने दफ्तरों के दरवाजे बंद कर रही हैं। ये संकट किसी एक कंपनी का नहीं है, ये दिक्कत पूरी टेक इंडस्ट्री में है जो बदलाव के ऐसे दौर से गुजर रही है जहां इंसान से ज्यादा एआई की अहमियत बढ़ गई है। इस साल की शुरुआत ही ग्लोबल टेक मार्केट के लिए किसी बुरे सपने की तरह हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2026 के शुरुआती 5 महीनों में ही टेक सेक्टर की 92,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म हो गई हैं। अकेले अप्रैल में 45,000 कर्मचारियों की छटनी हुई है जो पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा है। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियां लगातार अपने स्टाफ में कटौती कर रही है। कंपनियां इस छटनी की वजह कोरोना के समय हुई ज्यादा भर्ती और एआई से बढ़ती एफिशिएंसी को बता रही है। लेकिन हकीकत यह है कि मशीनी दिमाग अब तेजी से वर्कफोर्स की जगह ले रहा है। यही वजह है कि ब्लॉक इंक, अमेजॉन, मेटा, स्नैप, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई बड़ी कंपनियां कर्मचारियों की छुट्टी कर रही हैं। इसकी वजह है कोडिंग में कर्मचारियों की जगह एआई लेता जा रहा है। एक तरफ टेक कंपनियां मिडिल क्लास कर्मचारियों को पिंक स्लिप थमा रही हैं, तो दूसरी तरफ एआई पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। डेटा के मुताबिक गूगल, मेटा, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट इस साल एआई पर $674 अरब खर्च करने वाले हैं। ये खर्च 2 साल पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। एआई पर बढ़ता निवेश और कर्मचारियों की घटती संख्या सब बताती है कि कंपनियां वर्कफोर्स का ढांचा बदल रही हैं। इस पूरी उथल पुथल का असर कर्मचारियों के कॉन्फिडेंस पर भी पड़ा है। ग्लासडोर की रिपोर्ट के मुताबिक टेक सेक्टर में काम करने वाले लोगों का भरोसा गिरकर 47% पर आ गया है। एट्रिशन रेट कम होने की वजह से कंपनियां परफॉर्मेंस के नाम पर लोगों को बाहर निकाल रही हैं। ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसे एआई टूल्स पूरे वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर रहे हैं। कंपनियां फायदे में होने के बावजूद छोटे और फोकस्ड एआई आधारित टीम के साथ काम करना चाहती हैं। आईटी सेक्टर में आया ये बदलाव इशारा करता है कि आने वाले वक्त में डिग्री नहीं एआई के साथ तालमेल बिठाने की कला ही करियर बचा पाएगी। आदित्य खेराना, आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रधानमंत्री से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो, सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को दिया व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में 47 शहरों के 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा विकास के भागीदार हैं युवा, विदेशी निवेश से बढ़ेगी नौकरियां। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान योजना की एंट्री, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की सीएम शुभेंदु के साथ वर्चुअल मीटिंग में मुहर, 500 करोड़ की पहली किश्त जारी। विश्व केस में आरोपी समर सिंह को 7 दिन के पुलिसिया रिमांड, सामने आई मौत वाली जगह की तस्वीर, कल दिल्ली एम्स की टीम करेगी दूसरा पोस्टमार्टम। तेहरान दौरे पर ईरानी राष्ट्रपति और स्पीकर से मिले पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर, अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा, संवर्धित यूरेनियम पर अटकी बात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर वन शो दंगल। यूपी की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज मुद्दा बिजली है। भीषण गर्मी, बिजली की लंबी कटौती और परेशान जनता के बीच समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर हमला तेज कर दिया। अखिलेश यादव ने लगातार दूसरे दिन सोशल मीडिया पर योगी सरकार पर हमला बोला और इस बार सिर्फ बिजली नहीं, पूरी की पूरी व्यवस्था को महाविद्युत आपदा बता दिया। अखिलेश यादव का हमला जब विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलकर सरकार के मंत्री तक पहुंचा तो योगी के मंत्री ए के शर्मा ने 440 वोल्ट का जवाब भेज दिया। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि पिछली सरकारों में अंधेरा व्यवस्था थी, आज रिकॉर्ड बिजली सप्लाई हो रही है। कुछ तकनीकी दिक्कतों को विपक्ष मुद्दा बनाकर भ्रम फैला रहा है। भीषण गर्मी के बीच में लखनऊ से लेकर छोटे छोटे शहरों तक रात में लोग पावर कट से परेशान रहे क्योंकि गर्मी 46 डिग्री सेल्सियस के पार है, लेकिन कई इलाकों में बिजली सप्लाई लो वोल्टेज पर चल रही है। गर्मी में बिजली की कटौती की समस्या को देखकर मायावती भी मैदान में है। उन्होंने ये माना कि भीषण गर्मी और बिजली कटौती ने गरीब किसान, व्यापारी और मध्यम वर्ग की जिंदगी मुश्किल बना दी है। यानी गर्मी आसमान से बरस रही है लेकिन राजनीतिक करंट जमीन पर दौड़ रहा है। अब बड़ा और सीधा सवाल यह है कि क्या यूपी में बिजली की लड़ाई 2027 की पावर की लड़ाई बन चुकी है? क्या योगी सरकार ने समय रहते बिजली की खपत और आपूर्ति, सप्लाई और डिमांड का अनुमान लगाने में योगी सरकार नाकाम रही? क्या भीषण गर्मी की वजह से यूपी सरकार बिजली खपत का वॉट नहीं नाप सकी? आज इन्हीं सवालों पर होगी बहुत बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट।
1: यूपी में गर्मी बढ़ी तो बिजली गई तो सियासत आ गई और अब पावर कट से शुरू हुई बहस सीधे पावर की लड़ाई तक पहुंच गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगातार दूसरे दिन सोशल मीडिया के जरिए योगी सरकार पर हमला बोला। इस बार सिर्फ बिजली नहीं, पूरी व्यवस्था को महाविद्युत आपदा बता दिया। बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से यूपी में असहनीय बिजली संकट चल रहा है। दरअसल इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी सरकार, बीजेपी के बिजली मंत्री, बीजेपी के सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद से लेकर बिजली विभाग के उच्चाधिकारी और भ्रष्ट ठेकेदार जिम्मेदार, जो इस नाकाम सत्ता में अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदार है। सवाल जवाब इन लोगों से किया जाए। इसके जवाब में यूपी के बिजली मंत्री ने पलटवार किया, कहा कि पिछली सरकारों में अंधेरा व्यवस्था थी, आज रिकॉर्ड बिजली सप्लाई हो रही है। कुछ तकनीकी दिक्कतों को विपक्ष मुद्दा बनाकर भ्रम फैला रहा है। अखिलेश जी, जब भी आईना उठाइए तो पहले खुद को देखिए फिर दिखाइए। आपके समय समाजवादी पार्टी के चार चार शासनकाल के अंत में 2012 से 2017 में यूपी की बिजली औसत पीक डिमांड 13,000 मेगावाट, जबकि पिछले चार वर्षों का औसत है 30,000 मेगावाट। 2017 के तुलना में लगभग दोगुने से ज्यादा उपभोक्ताओं को आज बिजली दी जा रही है। 2017 में यूपी में तापीय बिजली का उत्पादन 5,160 मेगावाट था, जो आज 9,120 मेगावाट है, यानी लगभग दोगुना। ऐसे में यूपी में सोशल मीडिया पर सियासी मैसेज ज्यादा गर्म हो रहे हैं, कहीं फ्यूज उड़ रहा है, कहीं राजनीतिक करंट दौड़ रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मैदान में आ गए। उन्होंने यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली की कम आपूर्ति और कटौती का सवाल उठाया। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी में बिजली की कम आपूर्ति और कटौती आदि से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों, करोड़ों मेहनत कश लोगों का जीवन कष्टदायी बना हुआ है। इसको लेकर लोग अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि जनता किसकी बात मान, क्योंकि गांव से लेकर शहर तक शिकायतें लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं ओवरलोडिंग, कहीं ट्रिपिंग, कहीं घंटों का पावर।
2: बिजली के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिन रात काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डिफॉल्ट जितने भी आएंगे, फॉल्ट आएंगे, उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बढ़ता हुआ तापमान और इस तापमान में बड़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है।
1: आंकड़े बताते हैं कि 22 मई को बिजली की अधिकतम मांग 30,357 मेगावाट रही। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के आदेश पर 31 मई तक नया बिजली रोस्टर लागू कर दिया गया। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों नगर पंचायतों को 21.5 घंटे तथा जिला मुख्यालयों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति देने का स्केड्यूल है, लेकिन अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण इलाकों में 18 की जगह 8 से 10 घंटे बिजली मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रिपिंग और लोकल फॉल्ट के कारण ये समस्या और बढ़ सकती है। वहीं यूपी सरकार का दावा है कि रिकॉर्ड बिजली सप्लाई दी जा रही है। भीषण गर्मी और बढ़ती डिमांड के कारण दबाव जरूर है। दरअसल देश के 50 सबसे गर्म शहरों में 26 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। बांदा, प्रयागराज, जालौन में तापमान 46 डिग्री के पार गया। यूपी में फिलहाल बिजली सिर्फ जरूरत नहीं, सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुकी है, क्योंकि जनता भीषण गर्मी और अंधेरे में बैठी हो तो विपक्ष को हमला करने के लिए ज्यादा रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। 2027 विधानसभा चुनावों से पहले पावर कट की ये लड़ाई सीधे सियासी पावर की लड़ाई में बदलती जा रही है। अब देखना यह है कि जनता किसे करंट देती है और किसका चुनावी फ्यूज उड़ाती है। आज तक
0: चलिए अब दंगल के सवालों पर डालते हैं नजर, जिनके इर्द गिर्द आज की बहस हमारी केंद्रित रहेगी। सवाल नंबर एक, क्या भीषण गर्मी की वजह से यूपी में बिजली की किल्लत बढ़ गई है? सवाल नंबर दो, क्या सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में अंतर है, फर्क है? सवाल नंबर तीन, क्या बिजली संकट का कनेक्शन अब 2027 के पावर सप्लाई से जुड़ेगा? चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे के शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे सुनील सिंह साजन, कांग्रेस प्रवक्ता अनिल यादव हमारे साथ हैं, आरएलडी प्रवक्ता निशा चौधरी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक सतीश प्रकाश भी हमारे साथ हैं। के शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि बिजली दी जा रही है, पावर सप्लाई दी जा रही है, लेकिन कहां दी जा रही है, किसे दी जा रही है? क्या आप स्वीकार करेंगे कि ऊर्जा ये पावर सप्लाई के मामले में आप फेल हो गए हैं?
3: देखिए राजीव जी, ये फेल शब्द तो बिल्कुल उचित नहीं है, और ये ठीक है कि थोड़ी बहुत समस्या आई है, और थोड़ी क्यों आई है मैं वो भी बताता हूं। बिजली में तीन बातें हैं, हाँ मैं बताता हूं क्यों है वो। तीन चीजें, एक डिमांड है, एक सप्लाई है, और एक है फॉल्ट। हम डिमांड और सप्लाई की बात तो करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पीक डिमांड लगभग 30,500 मेगावाट की है, सॉरी जो डिमांड है, और लगभग इतनी ही बिजली वहां पर आपूर्ति हो रही है। बिजली की कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है।
0: एक बार दोबारा मुझे डेटा बताएंगे कि सप्लाई कितनी हो रही है? डिमांड अगर 30,357 की है, सप्लाई कितनी?
3: अब मैं बता दूं, सप्लाई भी उतनी ही है, सप्लाई में कोई कमी नहीं है। बिजली की मैंने पहले ही कहा कि वहां बिजली की कोई कमी नहीं है सर, बिजली की कोई कमी नहीं है।
0: तो ये जो कट लग रहे हैं, परिस्थिति जो कट लग रहे हैं, एक शहर में नहीं, अलग अलग शहरों में, वो क्या है?
3: मैं बताता हूं सर, इसी चीज को बता रहा हूं। होता क्या है कि जहां इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इतने प्रचंड गर्मी में ट्रांसफार्मर का फूकना, वायर का टूटना, इस तरह की समस्या बनी रहती है, और इसके लिए अलर्ट मोड में बिजली विभाग वहां काम भी कर रहा है। पहले सब स्थिति क्या थी, जब ट्रांसफार्मर फूकता था तो गांव के लोग 500-500 रुपए का चंदा करके एक ट्राली में भर के ट्रांसफार्मर को लेके जाते थे और जेई को घुस देते थे, फिर भी 10 दिन लगते थे ट्रांसफार्मर बदलने में। आज आप जो है 24 घंटे के अंदर वहां ट्रांसफार्मर।
0: के शर्मा जी, हम पुरानी व्यवस्था पर बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि फॉल्ट है, लेकिन क्या रिपेयरिंग संयोग नहीं है के शर्मा जी कि एक साथ इतने शहरों में फॉल्ट, मतलब कानपुर में फॉल्ट, लखनऊ में फॉल्ट, गाजियाबाद में फॉल्ट, नोएडा में फॉल्ट, ललितपुर में फॉल्ट, कहां कहां फॉल्ट नहीं है?
3: नहीं, फॉल्ट की स्थिति क्यों है सर, प्राकृतिक स्थिति, अभी प्राकृतिक आपदा क्या है?
0: अच्छा,
3: 48 डिग्री टेम्परेचर, 46 डिग्री टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर वहां पर बिजली प्रभावित हो रही। मैं एक चीज मानता हूं कि जो वायर उस समय समाजवादी सरकार या पिछली सरकारों में रहा, उसको पूरी तरह से बदल पाने में हम कामयाब नहीं हुए क्योंकि अभी उसमें काम चल रहे हैं, हजारों किलोमीटर की वायरिंग को चेंज किया गया है और आने वाले समय में वो काम चल भी रहे हैं। और यही नहीं, वहां पर उपभोक्ता की भी स्थिति कितनी बदली है। पहले वहां के उपभोक्ता होते थे उत्तर प्रदेश में 1.80 करोड़, 1,80,00,000, आज बढ़ के हुए हैं 3,70,00,000। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में हमने बिजली पहुंचाई है सौभाग्य योजना के तहत, जो केंद्र सरकार की योजना है। मैं आपको इसके साथ ही याद दिला दूं कि सौभाग्य योजना 2014 में लागू हुई थी, 2017 तक अखिलेश जी की सरकार थी, 3 साल तक सौभाग्य योजना पर कुंडली मार के बैठे रहे, किसी गांव में बिजली नहीं पहुंचने दिया इन्होंने, ना उसकी वायरिंग चेंज होनी हुई,
0: तो ना स्मार्ट खंभे
3: चेंज हुए।
0: के शर्मा जी,
3: हमने आगे 17 से लगातार
0: प्राकृतिक आपदा बताने लग गए, 46 डिग्री बताने लग गए। ऐसा तो नहीं कि यूपी में टेम्परेचर इतना पहली बार पहुंच रहा हो, मैं हर साल पहुंचता है ना।
3: ना ना, मैं आप तो ये कुछ समय के लिए ये परिस्थिति होती है और गांव में थोड़ी बिजली इस समय काटनी भी पड़ती है। राजीव जी, आप तो उत्तराखंड से आते हैं और आप तो गांव की हालत भी जानते हैं। गेहूं की कटाई हो चुकी है, फसल है, इतने हाई टेम्परेचर में और प्रकृति के इस समय जो हालात हैं उसमें आज जब करंट गुजरता है तो स्पार्किंग होती है, आग लगती है, ये सब भी समस्याएं हैं होती हैं ये हाई टेम्परेचर के। इसलिए ये कहना कि वहां पर बिजली की आपूर्ति नहीं है, पूरी है।
0: के शर्मा जी, आपकी आपने जो दलील दी, जो आपने तर्क दिया, मेरा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। आप कह रहे हैं कि गर्मी
3: भी चल रही है,
0: आपने अपनी समस्याएं बताई, ठीक है। मेरा सवाल यह है कि एक तरफ हीट वेव और साथ में बिजली सप्लाई का रुकना, क्या ये जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्योंकि लोग घर के भीतर रहेंगे और भीतर भी गर्मी है, वहां लाइट ही नहीं है।
3: नहीं, जान के साथ खिलवाड़ कैसे,
0: गर्मी उबल रहा है आदमी घर के अंदर।
3: मैं ये कह रहा हूं कि क्या स्पार्क होके आग लगना ज्यादा खतरनाक है या गर्मी को सह लेना थोड़ा ज्यादा खतरनाक है?
0: अच्छा, तो स्पार्क की वजह से आप बिजली रोक देते हैं कि कहीं स्पार्क ना हो जाए, कि खेत में जल जाए।
3: गांव की नहीं, मैं आपको आप मेरी बात को थोड़ा सा अलग अलग करके रखिएगा। मैं गांव की हालत बताया, गांव के संदर्भ में। शहरों में जो बिजली आपूर्ति अबाध गति से चल रही है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं पर वायर टूटा, कहीं ट्रांसफार्मर है, तो उसकी रिपेयरिंग वर्क तत्काल होते हैं। ये सब चीजें इतनी गर्मी के अवसर पर देखने को मिलता है, ये सामान्य स्थिति बनती है।
0: सामान्य स्थिति बनती है, ठीक है।
3: ना पूरे वर्ष भर की स्थिति है, ना ऐसी,
0: लेकिन ऐसी ये यूपी के साथ ही क्यों है ना? मैं खुद नोएडा में रहता हूँ, मतलब यूपी में रहता हूँ। मेरा सवाल है कि मैं बगल दिल्ली में ये समस्या नहीं, सिर्फ यूपी में क्यों है? लेकिन सुनील सिंह साजन अभी जो बीजेपी तर्क रख रहे हैं, प्राकृतिक आपदा, ट्रांसफर जलना, एक वो ये अपनी स्वीकार कर रहे नाकामी कि भाई आपके समय में जो वायर लगे थे हम उनको बदल नहीं पाए हैं, ये भी एक रीजन है। फिर करंट कहीं खेतों को ना जला दे, वो भी सारी चीजें सोच रही है बीजेपी, लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं।
4: और न ही झूठ बोलने वाले लोग हैं। आपने कहा कि कुछ मामले में आप फेल हैं, तो बीजेपी को लगा रहे आपने हमें फेल कैसे कह दिया, उनको फेल से आपत्ति है। बिजली फेल हो जाए, बच्चे फेल हो जाएं, किसान फेल हो जाए, सरकार फेल चल रही है, लेकिन इनको आप फेल मत कहो। और क्या अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं? अभी भी 10 साल की सरकार होने जा रही है और आप पिछली सरकारों पर ही आरोप लगा रहे हैं। और हम कह रहे, चलिए आप आरोप लगा रहे हैं, आप तर्कों के साथ आरोप लगाइए। हम तो आज तक में बैठ करके कह रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बिजली उत्पादन पे काम किया, एटा का प्लांट, और हम कह रहे, चलिए आप आरोप लगा रहे हैं, आप तर्कों के साथ आरोप लगाइए। हम तो आज तक में बैठ करके कह रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बिजली उत्पादन पे काम किया, एटा का प्लांट समाजवादी सरकार में लगा, अलीगढ़ में प्लांट समाजवादी सरकार में लगा, पनकी कानपुर में प्लांट समाजवादी सरकार में लगा, ललितपुर का प्लांट समाजवादी सरकार में लगा, प्रयागराज
0: लगा या फिर वर्क भी कर रहा था, काम भी कर रहा था या सिर्फ लगा?
4: समाजवादी पार्टी की सरकार में वर्क किया,
0: ठीक है,
4: चालू हुआ। अरे भाई, कहां से बिजली आपको मिलती?
0: ठीक है,
4: हमको पूरा कर लेने दीजिए। घाटमपुर, अंबेडकर नगर, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन भाजपाइयों से पूछो कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों से आप सरकार में हो, लगभग 10वां साल चल रहा है, एक यूनिट बिजली उत्पादन पे काम किया है और ज्ञान ऐसा देते हैं। अभी हो सकता है थोड़े दिन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी आकर के भी इस पर ज्ञान देने लगे और वो ये कहने लगे कि जो घर में 2 AC चला रहे हैं वो देशद्रोही हैं, जो AC बंद करेगा वो राष्ट्रवादी है, जो बिजली का उपयोग नहीं करेगा वो असली देशभक्त है। जहां ये फेल हो जाते हैं वहां फिर ये ज्ञान देने लगते हैं। हम आज तक के कार्यक्रम में, राजीव जी आपके कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती दे रहे हैं, इनकी सरकार को, योगी सरकार को, कि पिछले 10 साल में अगर एक यूनिट बिजली उत्पादन पर आपने काम किया हो,
0: इसका जवाब दे लेते हैं ना। के शर्मा जी बताइए, आप कह रहे हैं कि हमने सप्लाई में बढ़ोतरी की है, सपा के राज से 2.5 गुना 2 गुना आपने बिजली सप्लाई कर दी है, लेकिन बिजली उत्पादन केंद्र कितने आपने बनाए, बताइए।
3: नहीं, मैं बताता हूं सर, बिल्कुल बताता हूं। शायद साजन जी शायद अध्ययन करके आए हैं या अध्ययन करके भी झूठ बोलना चाह रहे हैं। 2017 तक उत्तर प्रदेश की अपनी उत्पादन, जितना सुना रहे थे उत्पादन उसमें कि ये हमने फैक्ट्री लगाई, ये उद्योग लगाया, ये लगाया, फैक्ट्री लगाई, टोटल उत्पादन क्या होता था, 5160 मेगावाट। 2000, ये मैं आपको कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, राजीव जी आप अपने प्रोड्यूसर से कह के डाटा लिखवा लीजिए, मैं सरकार का डाटा दे रहा हूं आपको। 2017 तक उत्पादन क्षमता थी उत्तर प्रदेश की 5160।
0: कंप्लीट करने दीजिए ना,
3: सुने 2022। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए, आज उत्तर प्रदेश की अपनी उत्पादन क्षमता है 9120 मेगावाट। समझ में आया साजन साहब, फिर से बताऊं, डबल हो चुके हैं, डबल। आप एक यूनिट की बात कर रहे हैं, आपको ये तक नहीं पता है, आपके समय में सोलर ऊर्जा का नाम भी नहीं था। हाँ सुन लीजिए, मैं बताता हूं, पूरी सुनो ना, पूरी सुनो, सोलर ऊर्जा के नाम भी लेने वाला कोई नहीं था। आज आपको पता है उत्तर प्रदेश 1400 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करती है, सोलर एनर्जी। अभी अभी अयोध्या में एक पूरी यूनिट कंप्लीट हुई है सोलर एनर्जी की, और अभी 800 मेगावाट के 3 परियोजनाएं भी स्वीकृत हुई हैं, लेकिन हमने पहले ही डबल कर रखा है सोलर एनर्जी। आप गंगा एक्सप्रेस वे पे जाएंगे ना, आपको बड़ा, आप तो घूमते रहते हैं वहां पर, दोनों साइड देखिएगा कितने सोलर।
0: के शर्मा जी, आप जो डेटा दे रहे हैं, मतलब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है,
3: जो है बिजली का उत्पादन हो रहा है।
0: नहीं, आदम गुंडवी साहब का शेर है ना कि आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा दावा, ये आपका आंकड़ा झूठा, ये दावा किताबी, इसलिए क्योंकि लोगों को तो बिजली मिल ही नहीं रही ना। अगर वो बिजली उत्पादन हो रही है तो वो जा कहां रही है, लोगों के घरों तक पहुंच नहीं रही है।
3: दो चार घटना, राजीव जी मैं आपको बताऊं, दो चार घटनाओं से आप पूरे प्रदेश का आकलन मत कीजिए।
0: ओके,
3: बहुत बड़ा प्रदेश है, 80 जिलों का प्रदेश है, ये वही समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। जब इनका समय होता था तो केवल रामपुर, लखनऊ, इटावा, मैनपुर और कन्नौज, 5 ऐसे जिले थे। और एक बात कहकर समाप्त करता हूँ, इसी 5 जिलों में बिजली आती थी, और ये इतने बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं। यह आपका रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये आप देख लीजिएगा। मैं अभी आपको इसको
0: मैं लेकिन के शर्मा जी, आप जब ये दावा करते हैं ना, तो हमारी टीम भी जगह जगह गई है, हर शहर में अंधेरे में हमारी टीम, हमारे संवाददाता भी थे। हम तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, मैं आपके पास लौटूंगा, हम तस्वीर भी दिखा देते हैं, ये देखिए तस्वीरें, ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, और एक शहर में हम अलग अलग जगह की तस्वीर दिखाएंगे। आज तक की टीम भी रात के समय में उठी ही रही, क्योंकि लोग उठे थे तो आज तक भी उठना पड़ता, आज तक भी उठा। अब आप एक एक तस्वीर देखिए, ये रियलिटी है। आंकड़े भले ही कुछ कहते हो कि कितना मेगावाट आपने उत्पादन बढ़ा दिया हो, लेकिन रियलिटी है, ये छोटे शहर नहीं है, बड़े बड़े शहर हैं। इन शहरों में लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ VVIP एरिया में भी हमने बड़े बड़े सोसाइटीज में रात भर लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देखा है। इतना बुरा हाल देखने को मिला, इतना बुरा हाल, आप इसको सिर्फ फॉल्ट कहेंगे? क्या ये फॉल्ट सिर्फ एक शहर का, ये बड़ा सवाल है। ये लखनऊ की एक और तस्वीर देखिए, लोग बिजली दफ्तर में पहुंच गए। ये कुछ तस्वीरें, ऐसे हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें, मतलब तस्वीर दिखाने में आएंगे तो बहुत लंबा, हमने शो भी किया उस पर, बहुत लंबा समय चले जाएगा। लेकिन अनिल यादव, आप बताएं, जो ये बीजेपी इस समय तर्क दे रही है कि फॉल्ट ये है, कुछ जगहों पर फॉल्ट हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरे प्रदेश में बिजली की सप्लाई ठप है, यह सिर्फ फॉल्ट है। क्या कांग्रेस को भी सिर्फ फॉल्ट दिखाई दे रहा है?
5: आपने बड़ी अच्छी लाइन आज ली है कि बत्ती जो है वो गुल है और सियासत फुल है। मैं इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड कर देता हूँ, क्योंकि सिर्फ बत्ती गुल नहीं है, बत्ती के साथ साथ डीजल और गैस भी गुल है, और जो इस प्रदेश की व्यवस्था है सरकार की वो पूरी तरीके से लुल है, क्योंकि सत्ता जो है, जो सरकार है, वो नशे में तुल है। अब देखिए समस्या क्या है कि जो शर्मा जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 46 डिग्री टेम्परेचर है तो ऐसा होता ही है, तार जलते ही है, बिजली जाती है। इन्होंने कौन सी नई बात कह दी? इनके मंत्री पहले कहते थे कि भाई अगस्त में बच्चे मरते ही हैं। तो जिस पार्टी के लोगों की मानसिकता यह है कि ये तो होता ही आया है, ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो आप इनसे क्या उम्मीद करिएगा भाई? आज उत्तर प्रदेश का और देश का जो नागरिक है वो चौतरफा मार झेल रहा है। बाहर गर्मी का आलम यह है कि बाहर निकल नहीं सकते हैं, आप घर में रहेंगे तो बिजली आ नहीं रही है। आपको पता है बाराबंकी में एक परिवार घर से बाहर निकल के रात को सोया, क्योंकि रात में बत्ती नहीं थी, उसको ट्रक उसके ऊपर चढ़ के चला गया, 4 लोगों की मृत्यु हो गई उसमें। लेकिन केकर शर्मा जी

0: आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं चेंज हुई है, 9 साल किसकी सरकार थी भाई, क्यों ट्रांसमिशन लाइन चेंज नहीं हुई है? जनरेटर फूक जाते हैं, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, डीजल डीजल नहीं है जनरेटर। अगर आदमी चाहे कि कहीं जनरेटर चला के अपना काम कर सके तो डीजल मुहैया नहीं है। आप बताइए आज क्या करेगा कोई
1: ठीक
0: आदमी।
1: है,
0: लेकिन लेकिन सबसे
1: मैं
0: खराब
1: जवाब दे
0: बात
1: देता हूँ,
0: यह
1: ठीक है
0: है कि
1: अनिल
0: बस
1: जी,
0: मैं 10 सेकंड
1: कंप्लीट करें, 10 सेकंड में कंप्लीट करें, फिनिश करें। हाँ
0: आज आज इस सरकार का जो निष्ठुर रवैया है, जो सबसे बड़ी समस्या है कि ये किसी समस्या को मानना ही नहीं चाहते। जब तक मानेंगे नहीं तब तक ठीक कैसे करेंगे? आज अगर ये कहें कि हाँ हमारी गलती है, हमसे हम नाकामयाब हुए, हम करेंगे तो शायद जनता के के जख्मों पे थोड़ा मरहम लगे, लेकिन ये तो बेशर्मी है।
1: केके शर्मा जी, मैं आपसे एक साथ ही जवाब लेता हूँ, एक बार निशा चौधरी आपके पास भी आ गए, क्या वाकई समस्या को
0: नहीं नहीं मैं
1: समझना
0: एक
1: नहीं
0: छोटा सा
1: समझ रहे,
0: जवाब
1: इसमें
0: दे
1: राज्य
0: देता हूं, मैं थोड़ा सा
1: सरकार,
0: क्लियर कर देता हूं।
1: मैं आपके पास
0: आपने
1: आऊंगा ना,
0: इतनी
1: पूरे सारे
0: समस्याएं
1: सवाल आप ही
0: बताई,
1: की तरफ तो हैं आज
0: मैं बोल
1: सारे।
0: देता हूं छोटा सा
1: चलो
0: इसमें।
1: बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए।
0: हाँ, मैं बोल देता हूं अभी छोटा सा एक, क्योंकि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सी बात उठाई है इसलिए बोल रहा हूं। खैर, वैसे तो कोई भी बिना वजूद की पार्टी है ये, वहां पर इनका तो कोई विषय नहीं है, लेकिन मैं भी फिर भी कहता हूं एक बात इन्होंने महत्वपूर्ण उठाई। इन्होंने कहा कि आपके जनप्रतिनिधि बोल रहे। बिल्कुल साहब, हमारे जनप्रतिनिधि इस कठिन समय पर जनता के बीच खड़े हैं, और वो बिजली विभाग के कर्मचारी और उसके बीच खड़े होकर जनता की समस्याओं को तुरंत जो है समाधान के लिए उनको डायरेक्शंस भी दे रहे हैं,
1: नहीं, लेकिन
0: और
1: केके
0: उस
1: शर्मा जी,
0: समस्या
1: आपने
0: पर
1: शायद
0: जनता
1: वीडियो
0: के
1: देखा
0: साथ
1: होगा,
0: खड़े हैं।
1: वो
0: आपकी
1: भी
0: तरह
1: डायरेक्शन
0: एयर
1: ही दे पा रहे
0: कंडीशन
1: हैं,
0: कमरे
1: बिजली
0: में
1: वो
0: आ
1: भी
0: रहा
1: नहीं
0: है,
1: दे
0: नहीं
1: पा
0: नहीं
1: रहे
0: आप
1: हैं,
0: इन्होंने मानना
1: बिजली
0: शुरू
1: वो
0: कर
1: भी
0: दिया
1: नहीं दे
0: है।
1: पा
0: एयर
1: रहे
0: कंडीशन
1: हैं,
0: कमरे में बैठ के काम नहीं कर रहे हैं,
1: वो भी ये कह रहे हैं कि कहीं
0: और वो
1: ये
0: यदि
1: अधिकारी
0: कहीं
1: जानबूझ के
0: कोई
1: सरकार को
0: ऐसा
1: बदनाम के
0: काम
1: लिए करने के लिए तो
0: करें
1: नहीं कर रहे हैं,
0: तो
1: मतलब बिजली कुल मिला के वो भी नहीं दे पा रहे, वो भी शिकायत ही कर पा रहे हैं बस।
0: काम भी करा रहे हैं।
1: नहीं केके शर्मा जी, आपके विधायक भी सिर्फ
0: नहीं
1: शिकायत कर
0: नहीं
1: पा रहे हैं,
0: मैं
1: ऐसा क्यों
0: यही
1: है?
0: कह रहा हूं राजू जी, यदि वो वहां उपस्थित हैं और जनता की समस्या को समाधान के लिए वो बिजली विभाग के लोगों से सबसे संपर्क करके और उस समस्या का लगातार समाधान कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफार्मर फूका, कहीं वायर टूटा है, कहीं कुछ जो
1: हाँ,
0: है वो सारे फॉल्ट को सही करा रहे हैं। ये
1: सही तो
0: हमारे
1: नहीं हो पा
0: जनप्रतिनिधि है
1: रहा,
0: जो जनता के बीच खड़े हैं, इनकी तरह एयर कंडीशन कमरों में बैठ के बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। और इतना दूसरी
1: ज्यादा
0: बात जो सही मैं
1: हो
0: कह
1: गया
0: रहा
1: है
0: था,
1: कि
0: मैं
1: जनता
0: उसको पूरा
1: खुशी से
0: कर दूं,
1: सड़कों पे बाहर
0: कि
1: आ गई है।
0: आपकी एक रिपोर्ट है सर राजीव जी, मैं आपकी एक रिपोर्ट सुना देता हूं, ये
1: बताइए।
0: 2014 की रिपोर्ट है। अभी साजन साहब बहुत बखान कर रहे थे कि इनके समय बहुत अच्छे हालात थे और ये थे, क्या रिपोर्ट है इसको आपको पढ़ देता हूं। इटावा में 72% उपभोक्ता नहीं जमा करते बिजली का बिल, ये आपकी रिपोर्ट है सर, और
1: ठीक
0: इसमें
1: ठीक है,
0: सारा
1: ये सब
0: डिटेल
1: तो
0: आपने लिखा
1: इतिहास का
0: हुआ है
1: हिस्सा
0: और
1: है।
0: कहां कहां क्या क्या
1: अभी
0: होता है,
1: समाजवादी पार्टी भी
0: ये
1: सत्ता में नहीं
0: दो
1: है,
0: चार। और
1: छोड़
0: ये
1: दीजिए अब,
0: नहीं,
1: ये तर्क
0: यहां
1: नहीं
0: तो
1: हो सकता अब।
0: छोड़िए,
1: केके शर्मा जी
0: यहां
1: की पुरानी सरकार में ये होता था, वो होता था,
0: मैं
1: इतनी
0: तो
1: सप्लाई
0: बता
1: होती
0: रहा
1: थी,
0: हूं
1: उतनी सप्लाई
0: आपने,
1: होती,
0: साजन
1: ये
0: जी
1: मीटर था,
0: अपने
1: वो नहीं था, वो तर्क
0: शासनकाल
1: नहीं
0: को
1: हो
0: गा
1: सकता
0: रहे
1: अब।
0: थे ना,
1: हाँ
0: नहीं, साजन जी अपने शासनकाल को गा रहे थे इसलिए बताना जरूरी पड़ गया
1: ठीक
0: मुझे।
1: है,
0: और मैं इतना भी और बता दूं कि केवल केवल उपभोक्ता नहीं सर, ये मुलायम सिंह के यहां छापा पड़ा था घर पे इटावा में सिविल लाइन में, 4 लाख रुपए 5 यूनिट का लगा हुआ था उनके घर पे, और वो जो है 40 यूनिट जो है यूज करते थे।
1: ठीक है, मैं अब इससे पीछे ज्यादा
0: इतनी
1: इतिहास में नहीं
0: बिजली
1: जाना
0: उनकी
1: दूंगा, क्योंकि एट
0: उपयोग होती
1: प्रेजेंट
0: थी,
1: लोग
0: 4 लाख
1: परेशान हो रहे
0: से
1: हैं,
0: ज्यादा।
1: लोग झुलस रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान
0: मैं
1: हैं।
0: इसलिए
1: और
0: तो
1: इतने,
0: बता रहा हूं कि
1: केके
0: हमारे
1: शर्मा जी लौटूंगा,
0: प्रधानमंत्री
1: मैं भी ग्रामीण और जो शहरी इलाके उनमें भी बड़ा भेदभाव, उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन सतीश सतीश जी, क्या सप्लाई और डिमांड को एक्चुअल में सरकार समझ ही नहीं पाई और उसे अब फॉल्ट का नाम दिया जा रहा है?
2: नहीं, देखो बिल्कुल 100% ये एक सवाल है। पहली बात तो के शर्मा जी को एक बात बता दूं कि बिजली ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसकी टेम्परेचर जो टेस्टिंग है मैक्सिमम रेम 60 डिग्री है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो बिजली ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ है अगर वो 60 डिग्री से नीचे, तो काम करेगा ही करेगा, 60 डिग्री के ऊपर फेलियर होगा। अब आपका टेम्परेचर कितना, इसको नाप लीजिए। देखिए सवाल क्या है, आम व्यक्ति का सवाल क्या है, आज उत्तर प्रदेश का जो पावर प्रोडक्शन है वो लगभग 29 गीगावाट है, और जो पीक आवर की जो डिमांड है वो 32 गीगावाट के आसपास पहुंच गई है। ये कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई का जो खेल है यही असली कारण है। वो बिजली के जो वायर्स हैं वो लोड की वजह से, लोड जब बढ़ेगा, टेम्परेचर की वजह से नहीं फूक रहे, लोड की वजह से, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश शायद एक ऐसा राज्य है कि जहां पर पर्सन कंजप्शन सबसे कम है, 665 किलोवाट। जरा गुजरात का और सुनिए, गुजरात में जो पर पर्सन, क्योंकि अगर इंडिया लेवल पर आप देखेंगे 1371 किलोवाट है नेशनल एवरेज, गुजरात का जस्ट डबल है।

0: 2400 कुछ है। आप सुनिए, आपका जो एके सिंह है, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि एके सिंह जी ने तमाम जीवन गुजरात के अंदर गुजारा,
1: शर्मा जी,
0: एक
1: हाँ
0: एक आईएएस के रूप में। क्या उनको नहीं मालूम था कि गुजरात का जो पावर कंजक्शन है, उनको सीखा तो होगा ना गुजरात में जाकर के। आज वो मंत्री बनकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे से एक सवाल का आप जवाब दीजिए, कहीं ना कहीं सरकार फेल है। आपने उत्तर प्रदेश में घंटे बजवाए हैं, आपने उत्तर प्रदेश में मंदिर की राजनीति करी है। मैं योगी जी से ये उम्मीद नहीं करता, वो धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एके सिंह नाम के जो आईएएस भी रहे हैं
1: शर्मा, एके
0: गुजरात में।
1: शर्मा,
0: एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल और पूछ लू सर, एक सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है, आप यहां बैठ के झूठ बोलते हैं। पहला उत्तर प्रदेश का जो सोलर पावर प्लांट है वो इलाहाबाद नैनी में लगा, 2008 में किसकी सरकार थी आप जान लीजिए, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। आपको मालूम है 2003 में उत्तर प्रदेश एक्ट बना, 2003, जिसमें उस एक्ट ने यह कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार से यह डिमांड करी कि उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको परमिशन दिया जाए, क्योंकि जो बिजली है वो केंद्र और राज्य दोनों उसको शेयर करते हैं। बिना केंद्र की अनुमति के आप नीतियों में परिवर्तन नहीं कर सकते।
1: ठीक है सतीश
0: आपने
1: जी,
0: प्लांट नहीं बनाए। अनपारा सी का मालूम है आपको कौन सा है? अनपारा सी में 500 मेगावाट के दो पावर प्लांट किए गए 2009 की सरकार में, बीएसपी की सरकार में। आपको मालूम है पहला प्राइवेट का जो उत्तर प्रदेश में लगाया गया वो कहां है? रोजा है ना। तो मेरा मानना यह
1: सतीश
0: है कि आपने सवाल
1: आपके
0: नहीं खड़े
1: सवाल
0: करने,
1: आपके ही
0: आप
1: सवाल
0: जवाब नहीं
1: मैं
0: दे
1: केके
0: पाते।
1: शर्मा जी की तरफ ले जा रहा हूं, आप ही के सवाल की। केके शर्मा जी, तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में यह हाल है कि जो प्रति व्यक्ति खपत है पूरे देश की तुलना में सबसे कम है, और उसके बावजूद भी बिजली नहीं मिल पा रही है।
0: 2014 से
1: मैं इसका जवाब
0: 2000
1: देता
0: अब
1: हूं
0: तक
1: राजीव जी,
0: गुजरात
1: मैं
0: का
1: बस
0: पावर कनेक्शन जब डबल
1: एक
0: हुआ है,
1: करेक्शन
0: दस
1: कर
0: डबल
1: देता
0: हुआ है।
1: हूं।
0: जी जी
1: बस ठीक है भैया, हो गया सर, हो गया, आप मुझे बोलने दीजिए ना। बस एक छोटा सा करेक्शन करता हूं, मैंने 5 यूनिट बोला बोला था, 5 किलोवाट का कनेक्शन था मुलायम सिंह जी के घर में, और 40 किलोवाट वो यूज करते थे, इसलिए छापा पड़ा था, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा। अब मैं बताता हूं कि ये जो डबल इंजन की सरकार क्या है। डबल इंजन की सरकार, देश का बिजली उत्पादन कितना है राजीव जी? देश में बिजली का उत्पादन है 538 गीगावाट, और पूरे देश में खपत ऑल टाइम हाई पीक डिमांड है 270 गीगावाट। 538 उत्पादन है, 270 खपत है, बाकी जो है बचत है, जो अन्य
0: बचत आ जा
1: देशों
0: रही
1: के
0: है।
1: को भी भारत देता है। अब मैं
0: नहीं
1: बताता
0: नहीं
1: हूं,
0: नहीं नहीं आप सुनिए सुनिए,
1: हमारी सरकार आने के बाद मोदी जी ने
0: नहीं, आप गलत
1: पूरे
0: बोल रहे
1: भाई,
0: हैं।
1: अभी
0: सुनिए
1: बीच में,
0: सुनिए,
1: बीच बीच में
0: आज
1: नहीं,
0: मेरी बात
1: मैंने
0: सुनिए
1: बीच में
0: सुनिए।
1: नहीं बोला
0: सतीश
1: था,
0: जी, सतीश
1: ये
0: जी, भाई
1: मैं
0: मैं
1: उनको
0: उनको
1: कंप्लीट
0: कंप्लीट
1: करने
0: करने
1: दीजिए
0: दीजिए
1: ना,
0: ना, आप
1: अभी मैं
0: अपने
1: निशा
0: समय
1: जी के पास भी नहीं
0: बोलिएगा,
1: जा पाया।
0: आप अपने
1: नहीं,
0: समय
1: मैं एक
0: बोलिएगा,
1: एक अपने अपने समय,
0: मुझे
1: मैंने
0: कंप्लीट
1: आपको
0: करने
1: सतीश जी,
0: दीजिए,
1: मैंने कहीं
0: आपके
1: टोका
0: समय
1: नहीं
0: में
1: रोका,
0: जाने
1: नहीं
0: नहीं
1: आपको
0: देना
1: पूरा
0: मुझे।
1: बोलने का समय दिया, मैं आऊंगा आऊंगा।
0: एक सवाल के बाद में मैं आपके यहां बोलूंगा ही नहीं, बिल्कुल चुपचाप बैठ के
1: चल
0: सुनूंगा।
1: सब
0: सुनिए
1: करें,
0: जरा,
1: सवाल है
0: देश
1: आपका,
0: के
1: बताता हूं
0: प्रधानमंत्री
1: अब
0: जी
1: यहां
0: ने
1: क्या
0: पहली
1: क्या है।
0: बार नेशनल
1: मोदी
0: ग्रिड
1: जी
0: की बात
1: ने
0: करी।
1: आने के
0: सुनिए,
1: बाद,
0: नेशनल ग्रिड की बात करी थी
1: भैया
0: ना।
1: भैया
0: नेशनल ग्रिड
1: शांत
0: इसलिए
1: रखो,
0: है कि बिजली का
1: राजीव
0: रोका
1: जी
0: नहीं
1: इस
0: जा
1: तरह से
0: सकता।
1: कैसे डिबेट
0: अगर
1: होगी?
0: अगर किसी स्टेट
1: नहीं
0: में
1: नहीं
0: पावर
1: इनको इनको थोड़ा
0: एक्सेस में
1: आपको
0: है
1: शांत
0: तो
1: करना
0: आप
1: पड़ेगा
0: ट्रांसफर
1: सर, ऐसे
0: करेंगे।
1: कैसे मैं बोल
0: आपने
1: पाऊंगा?
0: नेशनल
1: सतीश जी
0: ग्रिड
1: ये
0: को नहीं
1: पॉइंट आ
0: ना,
1: गया,
0: ये
1: केके
0: ज्यादा
1: शर्मा जी
0: ज्ञानी
1: जवाब
0: होंगे तो
1: देंगे
0: हम
1: ना,
0: क्या करें, आप
1: नेशनल
0: बताइए।
1: ग्रिड की भी बात करें, वो जरूर, कि
0: यस
1: कहीं अगर
0: वही
1: ज्यादा
0: आने
1: है तो
0: का,
1: दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया जाएगा जहां पर
0: यस।
1: कम है। केके शर्मा जी बोले,
0: नहीं,
1: मैं बताना चाह रहा हूं कि मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने इस देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। पहले क्या होता था, एक राज्य दूसरे राज्य से बिजली खरीदता था, और वो बिजली किस तरह से वो देता है नहीं देता है सारे सिस्टम थे। तब मोदी जी ने वन नेशन वन ग्रिड किया, और उसके आधार पर हर राज्य जो है बिजली ले सकता है केंद्र से। तो उत्तर प्रदेश को बिजली क्यों नहीं जाएगी जब इतनी इस पर बिजली है? तो ये तो प्रश्न ही बुनियादी रूप से गलत है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी है, पूरे देश में
0: आपने
1: कमी नहीं
0: देखा
1: है,
0: है,
1: कहां से उत्तर प्रदेश में
0: अरे
1: कमी हो
0: योगी जी
1: जाएगी?
0: की सरकार है,
1: जितना
0: योगी जी
1: वहां
0: की
1: का
0: सरकार
1: उत्पादन
0: है,
1: हमने बढ़ाया, दोगुना किया,
0: सरकार क्यों
1: उसके
0: दे रही
1: बाद
0: है?
1: की
0: आप
1: बची
0: बताओ
1: बिजली
0: ना,
1: हम दे रहे
0: आप
1: हैं,
0: अगर नेशनल
1: वहां
0: ग्रिड
1: कोई
0: है,
1: कमी नहीं
0: बाकी
1: है।
0: स्टेट के पास
1: वहां जो
0: रिन्यूएबल एनर्जी
1: मैंने
0: है,
1: जो कहा
0: तो
1: कि
0: उत्तर
1: वहां जो
0: प्रदेश सरकार क्यों
1: प्राकृतिक
0: नहीं
1: आपदा
0: खरीद
1: के
0: रही?
1: कारण
0: ये
1: से जो
0: सवाल आपको
1: इतनी
0: योगी जी से
1: हाई
0: पूछना चाहिए
1: टेम्परेचर
0: ना।
1: में जो दिक्कतें आ रही
0: जब
1: हैं,
0: नेशनल
1: जो
0: ग्रिड की बात
1: ट्रांसफार्मर फूक
0: एक
1: रहे
0: मिनट
1: हैं,
0: सतीश
1: सतीश
0: जी,
1: जी
0: सतीश
1: सतीश
0: जी,
1: जी प्लीज
0: प्लीज
1: प्लीज
0: प्लीज,
1: प्लीज,
0: थोड़ी
1: नहीं
0: बहुत
1: नहीं
0: बात
1: ऐसे
0: हो
1: नहीं,
0: सकती
1: ऐसे
0: है
1: नहीं चलेगा,
0: सप्लाई में,
1: बहुत गंभीर मसला
0: बस
1: है
0: मैं
1: भाई,
0: इस बात को कह
1: लोग
0: रहा
1: लोग
0: हूं।
1: परेशान हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी वेस्ट ना हो जाए, चीजें सामने आए। केके शर्मा जी 30 सेकंड में कंप्लीट करें, फिर मैं निशा जी के पास जाऊंगा। 30 सेकंड में कंप्लीट करें जो सवाल उनका है। हाँ बोलिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि वहां पर बिजली की सप्लाई में कोई कमी नहीं है,
1: केवल जो है कुछ आपदा ऐसी है जिसके कारण से थोड़ा सा बाधा उसमें उत्पन्न हो रही है, कुछ घंटे का कट हो रहा है, फिर वो चीजें चेंज हो रही है, तो वो चीजें सही की जा रही है और वहां से बिजली आबाद गति से दी जा रही है। लेकिन ट्रांसफार्मर फूकना, वायर का टूट जाना, ये सब समस्याएं इस दौर पे हैं इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण से, जिसको हमारे कार्य वहां के जो बिजली विभाग है, हमारे जो
2: वही तो नहीं हो पा रहा है, रात दिन यही तो बड़ा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि चलिए मान लीजिए एक बार के लिए आपदा भी है, तो या तो आपके पास ऐसा तंत्र नहीं है कि जो उस आपदा को दुरुस्त करे, या तो वो तंत्र इतना कमजोर है कि उसको कई कई घंटे लग जाने, शायद दिन भी लग जाने कि वो ठीक ही नहीं कर पा रहे। लेकिन निशा जी, मतलब आप आरएलडी का जिस क्षेत्र में दबदबा है, वहां तो हमने कल प्रोटेस्ट देखा, मेयर के घर के बाहर लोग चले गए, वहां खड़े होकर प्रोटेस्ट करने लगे और मेयर कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता था कि यहां बिजली ही नहीं है, तो उन्होंने भी फोन ऑन मिलाए लेकिन उसके बावजूद भी वो भी सॉल्यूशन दे नहीं पाए। क्या आपको लग रहा है कि इससे परेशानी आपके भी बढ़ सकती, दबाव आप पर भी बढ़ रहा है क्योंकि बिजली सप्लाई एक्चुअल में नहीं हो पा रही है जैसा दावा कर रहे हैं?
3: नहीं, देखिए एक चीज तो आप देखिए कि कितनी पहले इसकी उत्पादन हो रहा था और कितनी खपत हो रही थी, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, इसको जनता समझ भी रही है। हाँ, इस बात से हम भी सहमत हैं कि कुछ न कुछ टेक्निकल फोल्ट की वजह से जनता परेशान हो रही है, लेकिन उस टेक्निकल फोल्ट को दुरुस्त करने के लिए चाहे हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे कोई भी चुने हुए प्रतिनिधि, हर कोई अपनी जगह पर उस काम में बहुत तंदुरुस्ती के साथ बहुत दुरुस्त होकर के उस काम को कर रहे हैं। लेकिन पहले जो खपत थी, आज उससे लगभग डबल खपत हो गई है। 5000 के लगभग पहले मेगावाट यूज होता था और आज 2017 के बाद लगभग 30,000 मेगावाट की आज खपत होने जा रही है।
2: तो इसका मतलब है
3: ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंचाई गई
2: उद्योगों को। शहरों में कितनी बिजली दे रहे हैं आप और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी बिजली दे रहे हैं? अगर आपकी खपत बढ़ गई है,
3: आप मुझे कम से कम ये तो नहीं हो रहा ना कि अपने जिलों में तो दे रहे हैं और बाकी में नहीं दे रहे? पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र तक बिजली पहुंचाई गई आज, उस व्यवस्था को आज उद्योगों का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अगर बढ़ोतरी हुई तो डिमांड भी बढ़ी है। लेकिन उसकी सप्लाई के दौरान अगर ये टेक्निकल फोल्ट कहीं ना कहीं तापमान बहुत अधिक है उसकी वजह से लगा लीजिए, या कहीं ना कहीं जो एक टेक्निकल फोल्ट है, ये तो आप घरेलू उसमें भी देखें तो गर्मियों में बहुत अधिक तापमान होने के बाद घरेलू एसी उपकरण ये सब खराब होने शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं टेक्निकल फोल्ट आ जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन मेन है कि क्या सरकार की जो नीति और नियत है वो सही है या नहीं। अच्छा, वो आप बताइए मुझे, सही नहीं होती तो आज क्या उत्पादन इतना होता है? क्या गांव-गांव तक
2: आप कह रहे हैं कि कोई खोट नहीं है?
3: लेकिन
2: सुनील सिंह साजन जी, एक तो वो आपके समय के में जो है बिजली खपत और अपने समय में बढ़ी हुई बिजली खपत के बारे में बता रहे हैं कि हमने घर घर तक बिजली भी पहुंचाई, लेकिन इस टेक्निकल फॉल्ट को समाजवादी पार्टी समझ नहीं पा रही। बस आपको हर जगह राजनीति करनी है क्योंकि आपको
3: जरूरी तो सबसे ज्यादा जरूरी तो,
2: और वो कह रहे भेदभाव भी तो नहीं है।
3: आप मुझे सबसे पहले तो सबसे
2: जिला विशेष को मिलती थी सुविधाएं,
3: आज सबको मिल रहा है।
2: ठीक है,
4: सुन लीजिए राजीव जी, एक तो बीजेपी का पहला झूठ कि सोलर प्लांट सबसे पहले ये लेकर के आए। सतीश जी ने अभी बताया कि आदरणीय बहन जी के समय शुरू हुआ था, जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए थे कन्नौज वाले प्लांट का उद्घाटन करने। ये दरअसल बीजेपी और इनके सहयोगियों की विचारों की दिक्कत यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि एके शर्मा का जवाब केके शर्मा को देना पड़ रहा है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कितना दे पाएंगे? मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपके दर्शकों से पूछ रहा हूं, चलिए मैं नहीं भाजपा से पूछता। जब भाजपा वालों ने इन विचारों ने एक यूनिट बिजली उत्पादन का कोई काम नहीं किया है तो ये बिजली बढ़ा कहां से रहे हैं? झूठ से बिजली नहीं बढ़ती, नफरत से बिजली नहीं बढ़ती है, भ्रष्टाचार से बिजली नहीं बढ़ती है, और भाषणों से भी बिजली नहीं बढ़ती
2: दूसरे प्रदेशों से।
4: आप मोदी जी से दिलवा लीजिए, योगी जी से दिलवा लीजिए, लेकिन तो ये बताएं ना कि कितना खरीद रहे हैं, कितना दे रहे हैं? हम तो पूछ रहे हैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? पहले ये बताएं कि क्या 10 साल में एक भी यूनिट उत्पादन का काम इन्होंने किया है, और अगर नहीं किया है तो फिर ये तो वही कारखाने हैं ना जो पिछली सरकारों ने लगवाए हैं।
2: अनिल यादव जी, आप भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? मैं एक साथ ही आऊंगा क्योंकि शर्मा जी, एक बार अनिल जी को भी
4: सुन, आप बताइए ना, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? इनसे कहिए कि झूठ क्यों बोल रहे हैं?
5: ये डबल बहानों की सरकार है। आप देखिए कि जब ऊर्जा मंत्री से पूछा जाता है, लोग उनको रोक के कहते हैं कि भाई साहब बिजली नहीं आ रही है, 20-20 घंटे कटौती हो रहे हैं, तो वो कहते हैं बोलो जय श्री राम। अब बताइए जय श्री राम मैं पूरे दिन बोल सकता हूं, अगर एक मिनट भी किसी के घर, किसी गरीब के घर पे लाइट आ जाए तो मैं पूरे दिन बोल दूं, लेकिन ये इनके बहाने हैं। मुख्यमंत्री जी से अगर बात करी जाए तो उनके भाषण सुनिए, वो कहते हैं कि नमाज रोड पे पड़ी जा रही है। अरे भैया नमाज को बाद में देख लीजिएगा, बिजली को देखिए, गैस सिलेंडर को देखिए, डीजल को देखिए। आज देश का जो नागरिक है, प्रदेश का जो नागरिक है, जब मोदी जी की तरफ देख रहा है उम्मीदों की तरफ, उम्मीद लगाकर, आशा लगाकर, तो क्या देख रहा है मोदी जी? उसे विदेश से मेलोडी ट्रॉफी दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से ये डबल बहानों की सरकार चल रही है। और के शर्मा जी देखिए, जब भी कोई कोई जेन्युइन बात करता है, अभी वो राजनीतिक विश्लेषक इतने अच्छे सवाल कर रहे थे, उन्होंने कहा इनको चुप करा दीजिए। अरे किस किस को चुप कराइएगा भाई आप? आपकी पुलिस कहती है जब लोग प्रदर्शन करने आते हैं कि बिजली नहीं हो रही है, लखनऊ में आपकी पुलिस कह रही है कि या तो वापस लौट दो नहीं तो मुकदमे कर दिए जाएंगे। अब बताइए आम आदमी कहां जाएगा? उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं सब अच्छा है। अरे मुझे बताइए कि क्या ये लोग जश्न मना रहे हैं कि भाई इतनी ज्यादा बिजली आ रही है कि लोग सड़क पर निकल आए हैं, भाजपा के लिए तालियां बजाते हुए सड़क पर निकल रहे हैं? ये जो छात्र भी कुछ दिन पहले नीट की परीक्षा लीक होने से, मुझे लग रहा है उनको भी इतनी ज्यादा खुशी होगी कि वो सड़क पर आ गए होंगे। सब लोग मजे में है, सब बढ़िया तालियां बजा रहे हैं, बस एक विपक्ष नहीं है। अरे विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि वो जनता
2: की बात आई। इस बीच में एक बड़ी खबर भी जल्दी से दे देते हैं, बिजली संकट है उत्तर प्रदेश में, इस बीच में कार्रवाई की खबर मिल रही, योगी सरकार ने कार्रवाई की है बिजली संकट पर, कुछ अधिकारियों पर एक्शन हुआ है, गाजियाबाद के मेरठ के तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं जहां पर ये फॉल्ट की बात बीजेपी करे तो गाजियाबाद के अधिशासी अभियंता पर कांच गिर गई है, उन पर कार्रवाई की गई है, उनको सस्पेंड किया गया, अधिशासी अभियंता योगेश कुमार सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो योगेश कुमार को हालांकि अटैच भी कर दिया गया है, मेरठ उनको अटैच कर दिया गया है, ये इस समय जानकारी मिल रही है। और बिजली विभाग के कुछ और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानकारी मिल रही है, तो अधिकारियों पर एक्शन हो रहा है, बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही थी, तो अब बीजेपी के प्रवक्ता भी इसे एक फॉल्ट ही बता रहे हैं, अब अधिकारियों पर कार्रवाई चल रही है, जैसे जैसे और अधिकारियों के नाम भी आएंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन के शर्मा जी, सारे सवाल आपकी तरफ थे, अब आप एक एक करके सब सवालों का जवाब दीजिए, बताइए कितनी बिजली किस किस प्रदेश से खरीद रहे हैं आप, जब आपने एक भी यूनिट लगाया ही नहीं है प्रदेश में, तो बिजली कहां से आ रही है इतनी?
1: पहले तो मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, इनको जो है बिजली की समस्या में नमाज आ जा रही, तो मुझे लगता है जो सड़कों पे हमने नमाज रोका है उसका बड़ा दर्द कांग्रेस पार्टी और सपा को तो है ही है, तो ये तो तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर हैं। लेकिन याद रखिए अनिल जी, हम नमाज में भी कार्रवाई करेंगे और बिजली पर भी कार्रवाई करेंगे, हम नमाज भी सड़कों पर नहीं होने देंगे। आपको दर्द होता हो तो होते रहे, अपने घर में बैठ के मातम मनाइए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कह रहे एक यूनिट, ये कैसे हो गया राजीव जी कि 5160 मेगावाट से बढ़कर वहां पर उसका उत्पादन 9120 मेगावाट हो गया? हमने यदि क्षमता नहीं बढ़ाई होती तो ये कैसे पैदावार होता, ये कैसे बढ़ते बिजली पैदा होती वहां पर? और अभी साजन जी कह रहे हैं, हमें याद है सुनील जी, ये लखनऊ में स्टेडियम में ना 150-150 शिला पट्टी लगा के और एक साथ उस शिला पट्टी से लोकार्पण किया करते थे अखिलेश यादव, ये पूरा देश देखता था सर, एक साथ उस शिला पट्टी लगा के वो जो लोकार्पण आप लोग करते थे, केवल लोकार्पण करते थे, काम कुछ नहीं होता था, रिजल्ट जीरो था उसका। तो ये पट्टी लगाना, ये लोकार्पण करना, इसका राग गाना छोड़ दीजिए। अभी तो आप सारे जितने भी वहां पर हाईवे बने हैं सब पर आप ही लोग दावा करते हैं कि हमारा ही प्रोजेक्ट था जी, हम ही ने बनाया था जी। तो इस तरह के खोखले बातों से कुछ नहीं होने वाला, जो सच है कि वहां पर बिजली का उत्पादन बढ़ा है और हमने सोलर पावर से एनर्जी वहां पैदा की है, तो आप जो है ना यहाँ झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। ये समाजवाद का झूठ, समाजवाद का झूठ यहाँ देश में चलने वाला नहीं है सुनील साजन जी, समझ लीजिए। इसीलिए दो बार से चुनाव हार रहे हो और तीसरी बार भी हारना तय हो चुका है, दो बार से हार रहे हो, तीसरी बार भी हारोगे, कोई नहीं रोक पाएगा वहां पर। तो यहाँ आप इसलिए ये समझिए, यदि काम किए होते तो हारे क्यों होते?
2: अब सॉल्यूशन
1: काम किए होते तो हारे क्यों होते?
2: राजनीति होती रहती है, मतलब प्रचंड गर्मी है, लोग इस समय उपाय चाहते हैं, आप उपाय बताएं ना, उपाय क्या है, उपाय क्या है?
1: 2017 का चुनाव किन बातों पर हुआ? 2017 का चुनाव किन बातों पर हुआ? 2017 के चुनाव,
2: अरे चुनाव चुनाव पर आते हैं, मुझे थोड़ा सा आएंगे, एक ही करके बोलेंगे। सुनील जी, आप सॉल्यूशन क्या है, समाजवादी पार्टी के पास क्या सॉल्यूशन बताइए
1: मुझे, बोल नहीं नहीं मुझे बोलने तो दीजिए, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए राजीव जी, फिर आप बुलवा लीजिए।
2: मैं लौटता हूँ,
1: मैं ये कह रहा हूँ 2017 का चुनाव किन मुद्दों पर हुआ था?
4: हम विपक्ष में हैं राजीव,
1: ध्यान हो तो 2017 का चुनाव का मुद्दा
4: झूठ बोलना बंद
2: करके, एक एक करके प्लीज, मैं लौटूंगा के शर्मा जी 30 सेकंड में, क्योंकि समय कम है तो बहुत जल्दी जल्दी हम अपनी बात रखेंगे। के सुनील जी 30 सेकंड में अपनी बात कम रखिएगा।
4: देखिये, हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बिजली उत्पादन में कोई जानकारी नहीं, अगर हमारे नेता विपक्ष में हैं और 5 साल शानदार काम किया बिजली उत्पादन पर, तो अगर वो हमसे सुझाव मांगेंगे, हमारे नेता से सुझाव मांगेंगे, तो हम भी जनता के लिए काम करेंगे।
2: सुनील जी, अगर आपका काम शानदार था तो आपकी तुलना में तो डबल कर दिया उन्होंने पावर सप्लाई, तो इनका काम तो बहुत शानदार नहीं होना चाहिए फिर?
4: अरे कहां से कर दिया, मतलब इनकी बातों से कह रहे हैं कि डबल कर दिया? हम केवल आपसे जानना चाहते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, भाजपा वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो है नहीं, अगर एक भी यूनिट बिजली उत्पादन पे काम नहीं किया तो बिजली ले कहां से आए? झूठ बोलने से बिजली आ रही है, भाषण देने से बिजली आ रही है,
2: क्षमता बढ़ाने से आ रही
4: है? यही तो हम पूछ रहे हैं कि भाई आप बताओ कहां से, अरे कहां से क्षमता बढ़ा दी, किस कारखाने की क्षमता बढ़ा दी, नाम बताएं। ये महा झूठे लोग हैं भाजपा वाले, इनके चक्कर में आप मत फंसिए, अब जनता भी नहीं फंस रही, केवल झूठ महाझूठ फिर झूठ फिर महाझूठ।
2: राजीव, लौट रहा हूँ, एक ही करके आ रहा हूँ, जल्दी से मैं आऊंगा, क्योंकि सवाल मुझे मालूम है कि आगे भी आप ही की तरफ ही आएंगे। सतीश जी को भी ऐड करने दीजिए, सतीश जी को भी ऐड करूँ, उसके बाद जवाब एक साथ ही ले लूंगा आपसे। सतीश जी
0: देखिए, राजीव जी सीधा देखिए, अगर पूरे देश में पावर एक्सेस है और जैसा के शर्मा जी कह रहे हैं कि नेशनल ग्रिड पे अभी काम नहीं हुआ है, अगर नेशनल ग्रिड तैयार है और बाकायदा मोदी जी जिस स्टेट से आते हैं, गुजरात से आते हैं, वो गुजरात के लोगों से अपील करें कि उत्तर प्रदेश के मेरे भाई जिन्होंने मेरी सरकार बनाई, जिन्होंने मुझे बाकायदा वहां का एमपी बनाया, आज मैं गुजरात के लोगों से अपील करता हूं कि बिजली दे ना, थोड़ी सस्ती बिजली भिजवा दो, उत्तर प्रदेश के लोगों का फायदा होगा। और एक बात और कहता हूं, सुनिए, इनकी नीयत में खोट है। अब योगी जी जानबूझ करके एक जाति विशेष के तमाम जो अधिकारी है उनको सस्पेंड करेंगे, योगी जी की जात का एक भी आदमी अब सस्पेंड नहीं होगा। आप सुनिए, आपकी नियत में खोट है, आपकी सोच में खोट है, और आप उत्तर प्रदेश में सुनिए, जातिवाद ही बना रहे हो, सुनिए सुनिए, वो सवाल
1: औकात पर आ गए हो,
0: ये
1: सरकार
0: आपने
1: यही सच्चाई है तुम्हारी,
0: बताओ ना कैसे करोगे,
1: यही तुम्हारी सच्चाई है, जाति के बगैर कोई बात नहीं कर पाओगे,
0: सरकार अपनी गलत नीतियों का
1: जाति के बगैर कोई बात नहीं कर पाओगे,
0: आपको मालूम है,
1: यही तुम्हारी हकीकत है,
0: इंजीनियर कैसे बनता है,
1: यही तुम्हारी हकीकत है,
0: आप करके दिखाओ ना,
1: जाति कहां से आ गई भैया,
0: हलाओ और जाति,
1: ये बिजली की जाति कहां से आ गई,
0: हलाओ और जाति,
1: बिना जाति के रह नहीं पाते हो क्या,
0: जवाब देंगे,
1: ये जहर बोलना जरूरी होता है क्या,
0: सुनिए,
1: ये जहर की खेती करनी जरूरी होती है क्या,
0: एके शर्मा की गलती,
1: इसी जाति ने भंडार में आपको नहीं जवाब दिया है,
0: अगर सस्पेंड करना तो
2: अब एक नया हो गया। सतीश जी आपके सवाल आ गया, के के शर्मा जी अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों हो रही है जब बिजली का उतना उत्पादन नहीं है प्रदेश में, तो सप्लाई कहां से होगी, वो तो आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब भी नहीं दे रहे, कितने यूनिट नए बने हैं, कितने यूनिट उत्पादन बढ़ा है, कितने की आवश्यकता है, दूसरे प्रदेशों से कितना ले रहे हैं?
1: राजीव जी, मैंने इतनी देर से मैं क्या सुना रहा हूं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये आंकड़े मैं दे रहा हूं क्या, ये मैं आंकड़े दे रहा हूं या सरकार के आंकड़े हैं? मैं कब से आपको कह रहा हूं कि 5160 मेगावाट से 9000 मेगावाट कर लिया, पूरे देश में बिजली एक्स्ट्रा है, जो है बिजली जो है पैदावार ज्यादा है, खपत कम है, इसके बाद क्या आंकड़े दूं मैं आपको? ये तो इसी के लिए बने हैं ना, विपक्ष क्या हमारी बात की सराहना करेगा क्या? आप देख रहे हैं यहां पर कि यदि कोई कर्मचारी कोई अधिकारी यदि अपना काम नहीं कर रहा है तो उस पर एक कार्रवाई हो रही है, तो उसमें इनको जात नजर आ गई, बिजली की डिबेट कर रहा है इसमें जात ढूंढ रहे,
3: कितनी गलत बात,
1: ये इनकी मानसिकता
0: है,
1: ये इनका स्तर है,
0: गलती
1: इससे आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति किस लेवल पर बात करते हैं,
0: आपके अंदर है
1: इनको जो है अब दलित दिखाई पड़ेगा, यही मैं कह रहा हूँ कि इनका स्तर यही बना हुआ है, इनका स्तर यही है कि हर चीज
2: सतीश जी मंत्री की गलती है या जाति विशेष शर्मा की गलती है, मतलब आप इसमें जाति ढूंढ रहे हैं, ये तो सवाल है, अपना उसमें शर्मा की गलती हो गई आपके
0: नजर में, बताइए के शर्मा कौन है
1: इस लेवल पर
0: एके शर्मा जी बाकायदा गुजरात से आते हैं, बिजली विभाग के भी उन्होंने काम किया है, उसके भी मुखिया रहे हैं, और 2014 से लेकर अब तक गुजरात का प्रोडक्शन जस्ट डबल हो गया है।
2: हम जाति जाति पर डाइवर्ट नहीं करेंगे भाई।
0: जो है ये सवाल पूछता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये योगी मोदी जी से सवाल पूछते हैं कि गुजरात में
2: 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करेंगे,
0: समय हम जिताएंगे, फायदा गुजरात की जनता लेगी। सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? हम सवाल पूछेंगे।
2: कुछ
1: क्या ये कहना चाहते हैं?
2: ऑडियो में कुछ इशू है। इस बीच में सिर्फ आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत यूएस के संबंध बेहद अहम है और मार्को रूबियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी खबर आपको देते हैं, उनका जो दौरा है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं।
6: And tangible and enduring, we've expanded commercial ties now with more than 20 billion in investments. 20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship. That's why we're introducing a new America First visa scheduling tool that prioritizes business professionals that strengthen these ties. But the facility, as I said, is not just for those that are applying for visas. It's also for you, the Americans who work here, the men and women of this mission who are at the front lines every single day of advancing America's national interest and in America's national security. So it's an honor, really, to be here today. I wanted to keep this brief because it's hot. Although it's not humid. Like, I'm from Miami. There's the humid hot, and then there's this hot. But it's like, what time is it? It should be getting cooling off by now. And so I don't want to keep you here much longer than you need to be. But I want to say one thing. This facility saved Americans money because it's going to make us more efficient. It's going to allow us to do the work we have to do anyways, but allow us to do it more accurately, faster, and in a more efficient way. And so this is very important. And again, I want to close by thanking the team here at the U.S. Embassy for your hard work, for your professionalism, for your patriotism. The work you do benefits your country and benefits Americans that are here and ultimately Americans back home and across the globe. And it is at the cornerstone of this important partnership between us and India, which, as I said, is an incredibly important one. And it's the reason why I'm here in this visit, to reaffirm those ties, to build upon them. And we think in the months ahead, we're going to have even more exciting and new announcements to make about the development and the strengthening of the relationship between the two countries. And all of you will be at the forefront of that. So thank you very much. Thank you.

0: शुक्र दे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एंड इट्स हॉट, बहुत गर्मी है ये भी वो कहते हुए सुनाई दिया। और साथ साथ उन्होंने कहा कि न्यू अनाउंसमेंट भी बड़ी जल्दी होंगी, बहुत अच्छी दिशा में बातचीत हो रही है, व्यापार सुरक्षा तकनीक पर हमारी बातचीत हुई है। और अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे आसिफ, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
5: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for

0: In-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं।
10: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
11: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
12: इसमें माइक्रो फाइबर है।
11: माइक्रो फाइबर यानी
12: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
11: हमारे सीमेंट में नहीं है,
12: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
13: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
14: In association with
15: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
16: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
14: Hint, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
17: शारदा यूनिवर्सिटी, the world comes together at शारदा यूनिवर्सिटी, where are you?
18: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
19: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: था 2017 जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और नारा दिया यूपी को ये साथ पसंद है। हालांकि ये साथ महज 54 सीटों के साथ नतीजों में नजर नहीं आया। वैसे 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर साथ आई, जहां 43 सीट जीतकर परिणाम भी पक्ष में आए। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में फिर से विधानसभा चुनाव है और अखिलेश के एक संदेश के कई सियासी संकेत निकाले जाने लगे हैं। पहले आपको बताते हैं कि पार्टी की बैठक में अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा है। पार्टी यूपी की सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे एसपी के मजबूत संगठन का फायदा मिलेगा। हमारा नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश अगला यूपी चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या गठबंधन को लेकर अखिलेश कांग्रेस के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। दरअसल ये बयान उस घटनाक्रम के बाद आया है जहां कुछ दिन पहले रायबरेली में राहुल गांधी दलित शहीद वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उससे ठीक पहले कांग्रेस के दो नेता मायावती से मिलने जाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। अब समाजवादी पार्टी ने ये पूछना भी शुरू कर दिया है कि किससे पूछकर कांग्रेसी नेता बहन जी से मिलने गए थे।
1: जो कांग्रेस के लोग गए, अब ये किससे पूछ करके गए, किसके निर्देश पर गए, हम लोगों को तो जानकारी हुई है कि शायद डांट भी पड़ी है इनको। तो ये सोचने की बात है कि सांसद और अध्यक्ष अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं। तो साफ तौर पर, और मिलने भी किससे गए, मायावती जी से आप ऐसे उठे और चले गए बिना अपॉइंटमेंट के, तो अपॉइंटमेंट भी लेना चाहिए था। और वो बहुत बड़ी नेता है और इनको कैसे पता चला कि उनकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल छोड़ती हैं, तो वो कांग्रेस के लोग समझेंगे और उस पर सफाई देंगे। लेकिन हमारा बहुत ही क्लियर है कि हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बने और पीडीए की सरकार बने।
2: हमारी मीटिंग चल रही थी पार्टी कार्यालय में, जिसमें तनुज पुनिया सांसद जी, जो हमारे एससी डिपार्टमेंट के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आए हुए थे, हमारे एससी डिपार्टमेंट के भी पदाधिकारी आए हुए थे, और वीरा पासी जी की प्रतिमा का अनावरण राहुल जी ने कल किया है, तो उसको करने का जो प्रोग्राम होना था उसकी तैयारी मीटिंग थी। मीटिंग करने के बाद हम लोग निकले, चलो कहीं लंच कर लेते हैं, तो हम निकले और कोने पे सामने बहन जी का बंगला है। तो मेरे साथ चलने वालों को भी किसी को एहसास नहीं, मुझे अचानक मेरे मन में याद आया कि जब भी पूरे देश से लोग आते हैं, मिशनरी अम्बेडकरवादी लोग आते हैं या बसपा से जो जुड़े पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं, मेरे घर भी जरूर आते हैं मिलने, तो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एसटी डिपार्टमेंट के, तो तुम्हारे अंदर क्या इतना घमंड है, तुम बहन जी के बंगले से सामने से निकलते हो, वहाँ हालचाल भी नहीं पूछ सकते। मेरे मन में आया, तो मैंने सोचा कि चलो आज बहन जी के हालचाल पूछते हैं अगर होंगी तो।
0: सियासी गलियारों में सुगबुगाहट ये है कि कहीं कांग्रेस की नजर दलित वोटों पर तो नहीं है जो अखिलेश को असहज बना रही है। सवाल कि क्या कांग्रेस अखिलेश के पीडीए में सेंधमारी करने की कोशिश पे तो नहीं है। सवाल ये भी कि कहीं कांग्रेस मायावती के साथ तो नजदीकियां नहीं बढ़ा रही।
3: निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
0: हालांकि दोनों दल के नेता गोलमोल जवाब देकर लीपापोती की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से एक साल से भी कम वक्त में अखिलेश का कांग्रेस को बार बार आईना दिखाना कहीं न कहीं उसे सख्त संकेत जरूर दे रहा है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, कहा सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी पर बात। ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में 47 शहरों के 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, का विकास के भागीदार हैं युवा, विदेशी निवेश से बढ़ेंगी नौकरियां। विश्व केस में आरोपी समर सिंह को 7 दिनों की पुलिस रिमांड, सामने आई मौत मांगने जगह की तस्वीर, कल दिल्ली एम्स की टीम करेगी दूसरा पोस्टमार्टम। 12वीं परीक्षा की सेकंड कॉपी लेने के लिए सीबीएसई ने 1 दिन बढ़ाई तारीख, अब 24 मई तक छात्रों के पास मौका। सीबीएसई ने इंटरनेट ट्रैफिक और वेबसाइट में मानी दिक्कत की बात। तेहरान दौरे पर ईरानी राष्ट्रपति और स्पीकर से मिले पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर, अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा, संवर्धित यूरेनियम पर अटकी बात।

0: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ें। हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से नहीं तो संघर्ष से भी देख लो।
1: किसी धर्म को लेकर के या समाज को लेकर के कितनी नफरत भरी है।
2: योगी जी का बयान एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता।
3: क्या करेंगे आप, सबको मार डालेंगे? क्या करेंगे, सबको गोली मार देंगे? क्या करेंगे आप?

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बात योगी आदित्यनाथ की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद से पहले सड़क पर नमाज के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया है जिस पर हंगामा हो रहा है। योगी ने साफ कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। योगी ने सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए दी जाने वाली उस दलील को खारिज किया कि मस्जिदों में जगह नहीं होती, इसीलिए सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। सुनिए,
1: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रही है, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है, तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो।
0: संदेश और बोली दोनों एकदम साफ है, आप भी समझ रहे होंगे। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद कमोवेश सड़कों पर नमाज पढ़ी जानी बंद हो गई है। योगी सरकार ने बीते 9 वर्षों में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स पर कानून का पालन कराने जैसे कई और कदम उठाए जिसे पहले वोट बैंक के दबाव में नजरअंदाज किया जाता था। आपने देखा ही होगा पश्चिम बंगाल में भी अब सड़क पर नमाज के खिलाफ योगी का ताजा बयान ऐसे समय में आया है जब बंगाल में बीजेपी सरकार आई है सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने जैसे एक्शंस वहां पर लिए जा रहे हैं। और 15 मई की कोलकाता की तस्वीर है जहां पर एक मार्केट में इस बात पर झड़प हो गई पुलिस के साथ कि हम तो सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। इधर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर, पिछले हफ्ते शुक्रवार को कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर ये पुलिस की लोगों से झड़प हो गई थी। बंगाल के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा टेस्ट 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में होने वाला है। यूपी में योगी का ब्रांड हिंदुत्व पहले से है लेकिन सड़क पर नमाज को लेकर योगी की नई एक जो चेतावनी है वो नए तेवर में आपको सुनाई दे रही है।
2: इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी।
3: इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं।
1: अगर कोई औरंगजेब को अपना नायक और आदर्श मानता है तो मैं मानता हूं कि वह एक कोई मानसिक विकृति का शिकार है। भारत के अंदर लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था और उसको कोई आदर्श माने तो यह तो, और इसलिए इस प्रकार की मानसिक विकृति का उपचार का सबसे अच्छा सेंटर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आइए ना, हम बहुत अच्छे ढंग से उपचार करवाएंगे।
0: तो इतना तो तय है योगी आदित्यनाथ के अपने तेवर है, अपना अंदाज है और हिंदुत्व की बात करते हुए कोई वो मिलावट इधर उधर के शब्दों की करते नहीं है, ना किसी की सोचते हैं, ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। वो सीधा हिंदुत्व के एजेंडे पर, हिंदुत्व की लाइन पर खुलकर बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पर विपक्ष ने हमेशा निशाना साधा है। नमाज को लेकर योगी के ताजा बयान को विपक्ष एंटी मुस्लिम बता रहा है। सुनिए,
4: मतलब सैकड़ों ऐसे बयान हैं जो एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति उन बयानों को नहीं दे सकता है। ये बयान ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में किसी धर्म को लेकर के या समाज को लेकर के कितनी नफरत भरी है।
5: योगी जी का बयान एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। लोगों ने मुझसे पूछा कैसे, तो मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को दो नजरों से देखते हैं, दो निगाहों से, एक हिंदू नजर, एक मुस्लिम नजर।
0: वैसे जब राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों के दम पर सत्ता हासिल करती जा रही है, तो अब विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी को हिंदुत्व पर काउंटर करने की कोशिश शुरू की है। लखनऊ में वकीलों के चैंबर के बाहर हुए लाठीचार्ज की एक तस्वीर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट की। तस्वीर में पुलिस की लाठी के जद में आ रहे एक व्यक्ति के हाथ में रामचरित मानस है, उसी के जरिए उन्होंने ये हमला किया। अखिलेश यादव ने इस तस्वीर पर लिखा, श्री रामचरितमानस हमारी सौहार्दपूर्ण संस्कृति का संविधान है और मानवीय व्यावहारिक मर्यादा का आचार संहिता कोश। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने जिस तरह लखनऊ में श्री रामचरितमानस का अपमान तिरस्कार किया है, वो किसी भी तरह क्षमा करने योग्य नहीं है। भाजपाइयों का सिर्फ एक धर्म है, वो है पैसा। देश अधर्मी भाजपा को अब हमेशा के लिए हटा देगा, ये अखिलेश यादव ने पोस्ट लिखा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम आज बातचीत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वारिस पठान प्रवक्ता AIMIM के, मोहम्मद फैज खान संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु त्रिवेदी जी, सब आरोप ये लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में नागरिकों को दो नजर से देखते हैं धर्म के आधार पर।
6: बिल्कुल दो नजर से नहीं देखते, बिल्कुल ईमानदारी से एक ही नजर से देखते हैं, और वो नजर है कानून की नजर। किसी को नमाज से कोई आपत्ति नहीं है, अगर सड़क पे नमाज करनी है नियमानुसार परमिशन लीजिए और उसके बाद करिए, कौन रोक रहा है? आखिर ये बताइए, मुहर्रम का जुलूस निकलता है कि नहीं? बल्कि सरकार पूरी व्यवस्था करती है, शबे बारात की व्यवस्थाएं होती हैं कि नहीं? सड़क पर भी होती हैं, सजावटें भी होती हैं, कहीं कोई उसके ऊपर कोई रोकता है नहीं। पर बगैर परमिशन लिए हम ये करेंगे, यानी अपने को कानून से ऊपर मानेंगे, ना जगह की परमिशन लेंगे ना समय की परमिशन लेंगे, ये मेरी शहंशाही है कि मैं जहां चाहूंगा वहां पे बैठ जाऊंगा, ये थोड़ा उचित प्रतीत नहीं होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की व्यवस्था को बनाए रखने की बजाय विपक्षी दलों ने सोचा कि इस अव्यवस्था के अंदर से कुछ वोट की व्यवस्था दिख जाए, तो वो जो कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों को, वो मतलब नेताओं को मुस्लिम वोट का थोक विक्रेता मानने के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं अंजना जी, ये कोई प्रतिबंध की बात पहली बार तो हुई नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 22 साल 1977 to 1999, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार रही, मुलायम सिंह की भी रही और मायावती जी की भी सरकार रही, 22 साल शियाओं को मदे साबा का जुलूस नहीं निकालने दिया गया। प्रतिबंध, नहीं निकालने देंगे, सिर्फ सुनियों का जुलूस निकलेगा। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तब उनको परमिशन मिली। कारगिल में नहीं निकालने दिया जाता था शिया समुदाय को जुलूस, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब परमिशन मिली। तो कुछ नया नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, जो लोग जगह की कमी का बात कहते हैं, तो मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड के पास 38 लाख एकड़ जमीन है। मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, 38 लाख एकड़ में स्क्वायर मीटर्स आते हैं लगभग 1544 करोड़ स्क्वायर मीटर,
0: ठीक है?
6: अब अगर मुस्लिम पॉपुलेशन 20 करोड़ मान लीजिए, तो सिर्फ पुरुष ही आते हैं नमाज अदा करने, तो 10 करोड़ मान लीजिए, तो 10 करोड़ को अगर आप डिवाइड करें तो जानते कितना आएगा? लगभग 170 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मीटर प्रति व्यक्ति, जबकि एक व्यक्ति को नमाज करने के लिए एक स्क्वायर मीटर की जरूरत है। यानी जितनी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है उसके एक बटे दस को भी यूज कर ले तो जगह की कोई कमी नहीं है। और ऑफिशियली बोल चुके हैं कि उन जमीनों के ऊपर तो इन्होंने ना कोई हॉस्पिटल बना रखा है, ना कोई अनाथालय बना रखा है, ना कुछ कर रखा है। अब ये और भी गजब बात है कि जमीन मेरे पास ढेर सारों है, इतनी है कि अगर हम साष्टांग दंडवत करके भी करना चाहें तो भी सब कुछ हो जाए, मगर ना ना ना ना, ना मुझे उस जमीन के अलावा सरकार की जमीन पर ही बैठ के, यानी उधर कानून का ये दुरुपयोग करना है कि जमीन मेरी और उसके बाद सरकारी जमीन पर ही नमाज करना है। ये जो मानसिकता है ये समस्या है, यहाँ धार्मिक विषय बिल्कुल नहीं, यहाँ विषय संविधान और कानून की पालन की मानसिकता का है।
0: उन्होंने साफ ये कहा है कि आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए, अगर आपको इतनी ही वो है तो आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए। अब सीधा आरोप विपक्ष ये लगा रहा है कि आप एंटी मुस्लिम है सुधांशु जी, और ये 2027 की लड़ाई के लिए अभी से पिच और टोन सेट किया जा रहा है। इस पर जवाब दीजिए ना। अन्य धर्मों में भी कई जगहों पर आप देखेंगे, चाहे नवरात्र के दौरान अलग अलग आयोजन किए जाते हैं या मंदिरों के बाहर कई बार आयोजन होते हैं, तब तो शिफ्ट में पूजा करने के लिए किसी को नहीं कहा जाता। उनका डायरेक्ट आरोप है कि एंटी मुस्लिम है, इस पर जवाब दीजिए।
6: आप दूसरी बात बताता हूं। देखिए, जहां तक ये बात है, आपने कहा शिफ्ट की, तो मैंने उसका उत्तर तो पहले दे दिया। रिवक बोर्ड की जमीन पर जाके करिए ना, सवाब का सवाल है वो, तो मजहब के लिए दी गई है। क्यों नहीं करना भाई वक्त की जमीन पे, सड़क पे क्यों करना है? परमिशन लीजिए, पार्क में करिए, मस्जिद के पास। जहां तक शिफ्ट की बात है, क्यों अंजना जी, मंदिरों में जाते हैं लोग तो सब एक ही टाइम पे दर्शन करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। आते हैं, दर्शन करते हैं, एक शिफ्ट चली जाती है, दूसरा आते हैं, दूसरा जन समुदाय आता है, वो दर्शन करता है, फिर वो चला जाता है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू, मैं ये कहना चाहूंगा भाई, हमारे हिंदू धर्म में तो फिर भी मुहूर्त का महत्व है। जैसे श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा में चंद सेकंड का महत्व था, अब यहां तो मुहूर्त का चक्कर नहीं है कि मुझे इस सेकंड के बीच में ही करना है, तो आप तो आराम से कर सकते हैं। तो अगर हमें वहीं करना है मस्जिद में, तो हम शिफ्ट में कर लें, नहीं तो जो आपके मजहब के नाम पे दी हुई जमीन है उस पे कर लें। इसमें कौन सी समस्या है, हमारी समझ के बाहर है। समस्या केवल यह है कि कानून मेरी जेब में, और इनको समझा कौन रहा है, वो लोग जो कहते हैं संविधान मेरी जेब में।
0: ठीक है, चलिए अब सुनील सिंह यादव जी, आप सवाल का जवाब दीजिए कि भाई लॉ ऑफ द लैंड क्यों नहीं चलेगा
7: जी?
0: एक तो पूर्व जितनी सरकारें थी उन्होंने ये होने दिया,
7: कानून,
0: और एक सेकंड सवाल सुनिए, पूरा सवाल सुनिए, उन्होंने ये होने दिया, इसीलिए एक बहुत बड़ा तबका इसको अपना हक और अधिकार मानने लगा। लॉ ऑफ द लैंड साफ कहता है, कोई भी सड़क पर ट्रैफिक को बाधित करके सड़क पर कोई भी धार्मिक काम नहीं कर सकता है, अगर उसकी इजाजत अलग से नहीं ली गई है, और ये बिना इजाजत किया जा रहा है। जब लॉ ऑफ द लैंड ऐसा कह रहा है, तो सिर्फ इसलिए करने दिया जाए क्योंकि पूर्व सरकारों ने ये होने दिया वोट तुष्टिकरण के लिए, क्यों भाई?
7: देखिए अंजना जी, एक जो भारतीय जनता पार्टी ये माहौल बनाती है कि भाई हम कानून व्यवस्था के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो हम कानून व्यवस्था के खिलाफ तो नहीं है। हम ही थोड़े कह रहे हैं कि आप कानून तोड़िए, और कोई भी धर्म, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी आम आदमी को तकलीफ पहुंचा करके हमारा धर्म का कामकाज नहीं पूरा होता, ना नमाज पूरी होती, ना पूजा पाठ होता है। आप असल मुद्दा समझिए, उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को 9.5 साल हो गए। इनसे अब जब जनता सवाल पूछेगी आपने काम क्या किया, तो इनके पास जवाब तो है नहीं, ना तो इन्होंने मेडिकल सेक्टर में काम किया, ना एजुकेशन सेक्टर में काम किया। हां, स्कूल बंद करने का काम किया है, शराब के ठेके खोलने का काम किया है, इंफ्रा पे आपने क्या काम किया? आप जिस वादे के साथ आए थे, अपना आप घोषणा पत्र ले लीजिए, उस पर आपने क्या काम किया है? और आज मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके की भाषा है, आप अभी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रही थी कि भाई वो एंटी मुसलमान है, नहीं, वो एंटी मुसलमान के साथ साथ एंटी पिछड़ा भी हैं, एंटी दलित भी हैं। आज आपके ही चैनल पर मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश के शिक्षक अपना हक पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए तब तपाती हुई धूप में और गर्म सड़क पर रेंग रहे थे कीड़ों की तरह, और कह रहे थे कि हमारी स्थिति योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कीड़ों वाली कर दी है। तो ये पिछड़ों का भी तो हक छीनते हैं, दलितों का भी तो हक छीनते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश में करेंगे तो हमसे दूसरे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे।
0: सुनील जी, आप चुनाव की वजह से सरकार जान रही है। सिर्फ एक सेकंड, एक जो प्रोटेस्ट में आप सिर्फ दो जातियों की बात कर रहे हैं, आपकी भी तो नजर चुनाव पर ही है ना, आपको जाति सूट करता है, वरना क्या वहां पर सिर्फ दलित और पिछड़े ही आए हुए हैं प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं?
7: जाति की बात ही नहीं कर रहे हैं,
0: आप तो बोले
7: अंजना,
0: आप बोले दलित और पिछड़ों के खिलाफ है, वो सड़क पर रेंग रहे थे।
7: हाँ, तो दलित और पिछड़ों का आरक्षण किसने छीना? योगी आदित्यनाथ ने छीना। बीजेपी केवल मुसलमान के खिलाफ नहीं है, वो पिछड़े और दलितों के भी खिलाफ है, और बेरोजगारों को लेकर के तो योगी आदित्यनाथ जी का बयान आपके भी चैनल पे चला।
0: सच्चाई है, सच्चाई है कि सुनील जी और सच्चाई ये भी है कि चुनाव के ही मद्देनजर, ठीक है मैं आपकी बात मान रही, चुनाव के मद्देनजर ही आप भी जाति लेकर आए, वरना सिर्फ देखिए सिर्फ जो है ना कोई भी पार्टी अगर वो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं तो आप भी जात जात के ब्रांच पर चढ़ जाते हैं, उसकी टहनी पर चढ़ जाते हैं, वरना आप ये नहीं करते। आप कहते कि युवाओं को जो दिक्कत हो रही है आज वो रेंग रहे थे, लेकिन आप काहे जाति लेके आए? क्योंकि आपको ये सूट करता है पॉलिटिकली, जैसे उनको हिंदुत्व सूट करता है। सुधांशु जी, संविधान की शपथ लेकर कोई मुख्यमंत्री बनता है और संविधान की शपथ लेकर भाई कमरे में नहीं आ रहे हो तो संख्या कंट्रोल करो, ये सब आपको लगता है कि, और ये अगर ऐसे प्यार से बोल रहे नहीं मानोगे तो मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं, ये कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने, क्या ये सही है?
7: देखिए अंजना,
0: क्या तरीके है वो भी बता
6: दीजिए। संविधान की शपथ लिए हुए एक मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश, मैं सारी बात, पहली बात तो मैं कह दूं, जो समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है, आपके लाखों दर्शकों के लिए कह दूं, भारत की उभरती हुई शक्ति तमाम विदेशी शक्तियों को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए भारत के अंदर रोकने का पूरा प्रयास हो रहा है। साम दाम दंड भेद चार होते हैं, साम दाम दंड से भारत नहीं झुका है, अब भेद उत्पन्न करने का अंतिम प्रयास चल रहा है। बंगाल चुनाव के बाद ये साबित हो गया कि राज्य के आधार पर भेद पैदा करना मुश्किल है, तमिलनाडु वाले उत्तर दक्षिण में भेद कर रहे थे वो मुश्किल हो गया, भाषा पे लड़ाई लड़वा रहे थे तमिल हिंदी उस पर मुश्किल हो गया, अब अंतिम अस्त्र इनका उत्तर प्रदेश

0: बड़ा सौहार्दपूर्ण, इसमें तो सेकुलर मिठास नजर आ रही थी। और फिर मैं ये भी कह दूं, वो कोई बाबरी ढांचे की रक्षा के लिए नहीं था। 30 अक्टूबर 90 को कार सेवा थी और मैक्सिमम गोलियों से लोग मरे 2 नवंबर 1990 को, जिस दिन कोई कार सेवा नहीं थी।
1: ठीक है, मैं वारिस जी और मोहम्मद फैज खान के पास जाऊं, उससे पहले सुनील जी एक डायरेक्ट सवाल है आपसे। ठीक है सुनील जी, एक डायरेक्ट सवाल है जी। आप कहते हैं ना कि धर्म जाति इसका अपमान कोई ना करे। आप कहिए, राजकुमार भाटी आपके प्रवक्ता है ना पार्टी के, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर क्या कहा है? इससे अपमानजनक तुलना कोई कर सकता है? वो भी तो एक जाति से लोग हैं, ब्राह्मणों का ऐसा अपमान किया है, क्या एक्शन ले रही है आपकी पार्टी उनके खिलाफ?
2: हाँ देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने को बुलाया था, उन्हें समझाया और इस बात को कहा है कि हमारा कोई भी साथी और कोई भी प्रवक्ता कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जात या किसी की भावना को ठेस पहुंचे या आहत हो। देखिए हम समाजवादी लोग हैं और इस पर भरोसा करते हैं, इस पर विश्वास करते हैं कि आप जब तक समान रूप से किसी को नहीं देखेंगे। हम बीजेपी आरएसएस नहीं है कि बोलें कुछ करें कुछ।
1: अभी कह रहे थे कि मैं लौट रही हूँ, वारिस पठान और मोहम्मद फैज भी इंतजार कर रहे हैं। अगर सलाह भर से वो मान जाते और हृदय परिवर्तित हो जाता तो अब सुधांशु जी भी यही जवाब देंगे,
3: बाकी बात नहीं सुनेंगे।
1: अब लीजिए, अब मेरे साथ ये एंगल खेलने लगे डिबेट में। हे प्रभु बस कीजिए गुरु जी, सुनील सिंह यादव जी बस कीजिए
3: भाई,
1: थोड़ा सा वारिस जी को मैंने सोचा
3: ले लीजिए
1: भाई, मेरे साथ कार्ड मत खेलिएगा, मेरे साथ कार्ड मत खेलिएगा, ये सब बोलिए।
2: नहीं नहीं, कार्ड आपके साथ नहीं खेलना।
1: हाँ, मैं एकदम मत खेल।
2: अंजना जी प्लीज, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्यों पड़ी? हम इधर उधर की बात नहीं करते हैं। पीडीए हमारा नारा है, पीडीए हमारी प्राथमिकता है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, शोषित, वंचित, जो भी सरकार से पीड़ित है वो हमारे नारे में है।
1: चलिए ठीक है, कहीं आपने अच्छे से बोल दिया, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं उसमें ए से आधी आबादी भी कर देते हैं क्योंकि उसका जिक्र नहीं है पीडीए में, अगड़ों की भी जिक्र कर देते हैं। तो ठीक है, अगड़ों के लिए वो सरकार बनाने की नहीं सोच रहे हैं, तो शायद इसीलिए उनके प्रवक्ता इस तरह की भाषा बोलते हैं। सुधांशु जी सिर्फ दो लाइन सर, दो लोग सिर्फ मुंह ताक रहे हैं तब से।
3: पीडीए को कमजोर मत करिए,
1: हम काय को कमजोर करेंगे?
0: दो लाइन
1: तो है ही वहां संभालने के लिए, इतने बड़े बड़े।
0: अंजना जी आपने पूछा,
1: हाँ
0: अंजना जी,
1: हाँ
0: अंजना जी आपने पूछा ब्राह्मणों का अपमान। अरे ब्राह्मणों छोड़िए, इनको यादवों के अपमान की भी चिंता नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2007 आजमगढ़ का दंगा, जब मुस्लिम समाज और यादव समाज में झगड़ा हो गया था और यादव समाज की महिलाओं को छेड़ा गया था, मुलायम सिंह जी ने कहा था मौलवी से माफी मांगो जाके, तब रमाकांत यादव ने
1: लौट के आ रही हूं
0: भाजपा की टिकट पे सांसद बने।
1: ठीक है वारिस पठान,
0: बस
1: वारिस
0: पठान मुझे बोलना था किसी के समाज के। अरे भाई
1: वारिस पठान जी, वारिस पठान जी
0: पत्नी के बारे में टिप्पणी करने के बाद मौन साध के बैठ गए, ये अंतर है पंडित और मौलवी को कैसे तराजू पे तोला जाए।
1: वारिस पठान जी, योगी आदित्यनाथ ने क्या गलत कहा है? आप तो लॉयर है पेशे से, आपको तो पता है लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है। और पूरी लिस्ट देखिए देशों की, जहां पर ये जितने मुस्लिम कंट्रीज है वो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, पूरा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, सड़क पर नमाज बैन है यहां पर, यूएई भाई इतनी यूएई की आप लोग बात करते हैं, यूएई वहां पर बैन है, ईरान में बैन है, ईरान के लिए हमारे देश में कई लोग पैसा सोना सब इकट्ठा कर रहे हैं, उस ईरान में भी सड़क पर नमाज पढ़ना बैन है। फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, खैर बाकी के जो देश हैं जिसमें यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, वहां बैन है। और यहां पे भारत में जब अलाउड नहीं है तो किस, सऊदी में भी बैन है, सड़क पर किस हक से आप नमाज पढ़ेंगे? क्यों?
4: सबसे पहले तो अंजना जी, जितना वक्त आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को दिया बोलने के लिए, मुझे उसका आधा समय खाली दीजिए, मैं अपनी बात रख दूंगा अनइंटरप्टेड, थैंक यू वेरी मच। बात नंबर एक, अंजना जी देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा और वाकई में लॉ ऑफ द लैंड से चलेगा, योगी की दादागिरी, धांधली, धमकी से नहीं चलेगा। बात साफ है, एक योगी टोटल फेल हो चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से, संविधान की शपथ लेके बैठे मगर कौन सा संविधानिक काम कर रहे हैं यह बताइए मुझे। हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत, हर आए दिन संविधान की धजिया उड़ा रहे, सुप्रीम कोर्ट बोलता है आप बुलडोजर की बात मत करिए, वो बुलडोजर से उड़ा देते, कटमुल्ला तक बोल देते, पाकिस्तान कभी भेज देते, कभी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी की बात कर देते, तो कौन से दिन योगी ने संविधान की बात की? कभी नहीं। बात नंबर दो, देखिए नमाज पढ़ना एक एसेंशियल हिस्सा है मुसलमान का, कौन रस्ते पे नमाज पढ़ता है, किसको शौक है धूप में, गर्मी में, बारिश में बाहर खड़े होकर नमाज पढ़े रस्ते के अंदर, जब मस्जिद में जगह नहीं होती

0: तो तकलीफ के कारण आदमी जुम्मा की नमाज या ईद की दो जो नमाजें वो पढ़ लेता है 5-7 मिनट के लिए, क्योंकि जो जुम्मा की और ईद की नमाजें हैं ये फर्ज है और इसमें इंसान को खुतबा सुनना जरूरी होता है, जमात के साथ पढ़ना होता है, इसलिए वह पढ़ता है। तो कौन से सबके पेट में दर्द क्यों हो जाता है, फिर कौन सा ट्रैफिक का वायलेशन हो जाता है, किसकी आस्था को ठेस पहुंच जाती है। अब आपने लॉ ऑफ द लैंड की बात करी, इक्वालिटी की बात करी, संविधान की बात कर रहा हूं मैं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारे हिंदू भाई बहन नॉन मुस्लिम त्यौहार मनाते हैं रस्तों के ऊपर, हमने गरबा खेलते हुए देखा है, एयरपोर्ट पर डांडिया रास खेलते हुए देखा है, ट्रेनों में हमने भजन कीर्तन करते हुए देखा है, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उनकी आस्था का सवाल है, सेक्युलरिज्म में हम रहते हैं, सबको अपना त्यौहार मनाने का हक है। कांवड़िया यात्रा निकालते हैं,
1: एक सेकंड एक सेकंड कर दिया जाता है सड़क सड़क पर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सड़क पर आपने कब किसी को देखा है बैठकर मंदिर घंटी बजाते हुए पूजा करते हुए? अब आप चिल्लाएंगे तो वारिस भाई सुन नहीं पाएंगे।
0: मैंने देखा, चलिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ मुंबई में चिल्लाए नहीं, मेरे आवाज जाता नहीं, मैंने देखा है मुंबई में, चलिए मेरे साथ, मैंने देखा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने
1: देखा,
0: मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, मैं खुद
1: मैं भी दिल्ली से उड़ के आऊँ तो आपका देखने के लिए मैं कुछ भी बोल दो।
0: हमने गणेश का जो फेस्टिवल होता है,
1: हाँ उसके लिए अरे आज की बात हो रही है ना,
0: अरे आज की बात मैं तो आपको बताने के लिए लेके चल रहा हूँ, मुंबई में आप आएंगे मैं आपको लेके चल के दिखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ तथ्य में बोल रहा हूँ, बीजेपी की तरह हवा में फायर नहीं करता हूँ, जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ, सबके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, देश के संविधान को हाजिर नाजिर रखते हुए बोल रहा हूँ मैं। मेरी बात खत्म नहीं हुई अंजना जी, 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट कर दूंगा प्लीज। अब योगी जी ने ये नया फितरा शुरू कर दिया, मुझे बताइए ना, कांवड़ियों पे तो फूल बरसाते, हम तो आपत्ति नहीं उठाते, तो फिर नमाज ही के लिए क्यों, क्या तकलीफ है आपको मुसलमानों से? खाने पीने से नफरत मुसलमानों के, बुरके से नफरत, हिजाब से नफरत, अब नमाज से नफरत, और ये करके ईद ने क्या कर दिया? एक होड़ लगी है इसमें सीएम की, बीजेपी के कौन बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन जो सबसे ज्यादा मुसलमान को गाली दे उसको चैंपियनशिप से नवाज दिया जाता है, कहीं पर कोई बोल रहा था यहाँ पे पड़ेगा लात मारेंगे, तमाम चीजों से इन्होंने पूरा ध्यान भटका दिया। नीट का पेपर लीक हो गया उससे ध्यान भटका दिया आज इन लोगों ने, पूरी तरह से पेट्रोल डीजल का 3-3 रुपया भाव बढ़ गया उसके ऊपर से पूरा ध्यान भटका दिया ये लोगों ने। देश सवाल कर रहा है, मोदी जी वहां जाके या हबीबी कैफल हाल करके शेख को मिल रहे हैं वहां पर, और या भारतीय मुसलमान के ऊपर उनके मंत्री जुलुम कर रहे हैं, जुलुम जुलुम का खात्मा
1: जुलुम हो रहा है,
0: बोलते सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की, ये विश्वास इस तरह हासिल करेंगे? अरे एक आदमी मुसलमान नमाज पढ़ा तो आपको तकलीफ क्यों, जुल्म नहीं है ये? मुसलमान को लात से रस्ते में मारा जाता है,
1: अरे वोट तो देता नहीं कोई आपको यूपी में, खाली जुल्म जुल्म करते रहते हैं
0: ये मुसलमानों,
1: वोट देते नहीं आपको ये लोग, नहीं वोट तो देता नहीं मुस्लिम तबका, क्यों
0: रस्ते में नमाज पढ़ा था नहीं देखा दिल्ली में,
1: एक सीट नहीं अभी तक जीत पाए आप यूपी में,
0: अंजना जी वोट
1: सब भरोसा अखिलेश जी पे करते हैं,
0: हिंदू भी देगा सिख ईसाई सब वोट देंगे हमको वो अरे तो इन लोग कर देते
1: पार्टी का नाम बदलिए,
0: ध्रुवीकरण की राजनीति, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी, मुसलमानों से नफरत फैलाने नहीं बदलेंगे,
1: क्यों?
0: पार्टी का नाम बहुत अच्छा है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बहुत खुशी हमको नाम से, हमको खुशी होता है, इनको बोलो नाम बदले। और मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहूंगा, मेरे मित्र बैठे हुए यहाँ पर, अरे 10 सेकंड में मेरा सवाल पूछ लेने दीजिए अंजना जी, समाजवादी के मेरे मित्र बैठे हैं सुनील जी, सुनील जी आपने नमाज के ऊपर तो बोला ही नहीं, क्या नमाज अलाउड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप उसके ऊपर, बताइए ना पीडीए का मतलब क्या है, अभी आपने कहा अल्पसंख्यक मुसलमान भी आ गया उसमें, बोलिए ना कब बोलेंगे आपको मुसलमानों के वोट चाहिए, आज मुसलमानों के ऊपर इतनी बात हो गई, लाउड स्पीकर के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, अजान से नींद खराब हो रही है बीजेपी वालों की, उस पर आप नहीं बोले, रस्ते में नमाजी को लात मारा जा रहा है आप उसके ऊपर नहीं बोले, आप किस बात के ऊपर बोलेंगे फिर मुसलमानों के वोट क्यों चाहिए?
1: चलिए ठीक है ठीक है, अब एक बार मोहम्मद फैज साहब बोले फिर मैं आ रही हूँ सुनील जी आपके पास, वारिस जी अब आपको मैं समझ गई, आपको अपने नेता से भी पूरा विश्वास हट गया है, क्योंकि जो जो आपके नेता को बोलना चाहिए था वो आप चाह रहे हैं अखिलेश बाबू यादव बोले, अखिलेश यादव क्यों बोले, आप उनके नेता से क्यों बुलवाना चाहते हैं, आप अपना लेके ढोल पीटिए, वोट आपको दे नहीं रही है जनता। मोहम्मद फैज खान साहब वो ऐसे ही दे रहे हैं उनको,
0: इसलिए बोल रहा हूँ,
1: अरे वो ऐसे ही दे रहे हैं,
0: मगर मुसलमानों के हक की बात नहीं करते ना ये लोग,
1: अरे उनको वो वैसे ही दे रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा है कि भाई बीजेपी को हरा सकते हैं,
0: समझदार हो चुका है
1: आप पर वो भरोसा नहीं करते हैं, उनको पता है कि बीजेपी को वही
0: हराएंगे ना, कहाँ हरा सके, अरे कहाँ हरा, इतने टाइम हार गए ये लोग कहाँ,
1: अरे वो कहते हैं कि आप आओगे तो खाली वोट काटोगे, बीजेपी को फायदा होगा। मोहम्मद फैज खान साहब आज बड़ा सवाल ये है कि लॉ ऑफ द लैंड से देश चलेगा या किसी के हक मान लेने से चलेगा कि भाई मैं तो नमाज पढ़ूंगा सड़क पर।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इशरहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उकदतम मिन निसानी यफ्कहु कौली। बिरादरान हिंद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय अंजना जी, सबसे पहले मैं करेक्शन करना चाहूंगा, वारिस पठान भाई ने जो कहा ईद की नमाज जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, लोग सड़कों तक निकल के पढ़ते हैं, वो नमाज फर्ज नहीं है, फर्ज ही नहीं है वो नमाज वाजिब है, पहली बात तो। अब दूसरी बात, मेरी बात आप समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात ने कुरान शरीफ में सूरह अखलास दिया है, कुल वल्लाह वहद अल्लाहुस्समद। जी बहुत शुक्रिया, आपने सही चीज को कबूल किया, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ वारिस भाई जी, बहुत शुक्रिया। अब देखिए सूरह अखलास
0: फर्ज है ना, ये तो बता दो,
2: कुल वल्लाह वहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन।
0: जुमा की नमाज फर्ज है
2: जी, हाँ जुमा की फर्ज है, मैंने कहा सर, मैंने जुमा की कहा फर्ज है, मैंने केवल ईद की कहा और आपने स्वीकार भी लिया, उसके लिए शुक्रिया आपका। सूरह इखलास में कहा गया कुल वल्लाह वहद अल्लाहुस्समद, अल्लाह एक है, पाक और बेनियाज है। बेनियाज का मतलब होता है नीडलेस, अल्लाह को किसी भी कट्टरपंथी मौलाना की जरूरत नहीं है अपना काम करवाने के लिए। कोई मौलाना मुफ्ती उलेमा जिसका जो काम था वो नहीं करेगा तो अल्लाह अपना काम मोदी जी से करवा रहा है, अल्लाह अपना काम योगी जी से करवा रहा है, क्योंकि अगर सड़क पर एक कंकर भी पड़ा है तो मुसलमान होने के नाते हमारा यह मानना है कि वहां से मुसलमान नहीं गुजरा, क्योंकि मुसलमान गुजरता तो सड़क का कंकर हटाता। पूरी सड़क को घेर लेना, उस समय कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई सामान की डिलीवरी लेकर जा रहा है, किसी को ऑफिस जाना है, उन सब कार्यों को बाधित कर देना इस्लाम की शिक्षा नहीं है, और अल्लाह इस काम से नाराज होता है। और मुस्लिम उलेमाओं मुफ्तियों को यह काम करना चाहिए था, उन लोगों ने नहीं किया। यहां पर अंजना जी आप कानून की बात कर रही हैं, कानून के अनुसार भी सड़क के घेर कर नमाज पढ़ना गलत है और इस्लाम के अनुसार भी गलत है। तो देखो अल्लाह को क्या पसंद था, अल्लाह को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पसंद नहीं थी, ये उलेमा मुफ्ती और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने बनाए रखा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, मोदी जी को फिर अल्लाह ने लाया और उन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म किया, तो अल्लाह अपना काम करवा लेगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुस्लिम उलेमा मुफ्तियों को करना चाहिए था, नहीं किया, मोदी जी को लाया, उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट करवाया कि भैया वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल होना चाहिए, और सुधांशु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो सकता है। तो वक्फ की प्रॉपर्टी का आप सही इस्तेमाल कीजिए, उसका अमेंडमेंट एक्ट इसी सरकार ने लाया। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, शिफ्ट में नमाज बिल्कुल पढ़ी जा सकती है, और यही नियम है इस्लाम का, जो योगी जी कह रहे हैं ना अकॉर्डिंग टू इस्लाम कह रहे हैं, केवल कानून के अनुसार नहीं कह रहे। और ईद के वक्त में और कई जुमे के वक्त भी जो समझदार इमाम मुफ्ती हैं हमारी कई मस्जिदों में, हम जो राष्ट्रवादी जाते हैं भाई, ये डिसाइड कर लेते हैं कि 1000 की कैपेसिटी है मस्जिद में और 3000 नमाजी हैं, तो 3 शिफ्ट में नमाज होगी, यदि 4000 है तो 4 शिफ्ट में होगी, 2000 है तो 2 शिफ्ट में होगी। यही इस्लाम का सही तरीका, ये नहीं सड़कों को घेर लिया। अब दूसरी बात, योगी जी ऐसी भाषा क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। छठे साठ्यम समाचरेत, आप प्रेम से नहीं समझेंगे तो कानून व्यवस्था समझाने के लिए आपको उन्हीं की तरह का आचरण करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात और कहूंगा, हाँ, अंजना जी बस मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किजवाई और ये वारिस पठान भाई, ये सब मुझे काफिर कहते रहे, मुनाफिक कहते रहे, संघी कहते रहे, लेकिन बंगाल का रिजल्ट आने के बाद अखिलेश यादव जी ने हनुमान चालीसा का स्टेटस लगाया, और वही फराज किदवई जो मुझे काफिर मुनाफिक संघी कहते थे, टीवी चैनल पर बैठकर हनुमान चालीसा गाने लगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। योगी जी जो कर रहे अकॉर्डिंग टू इस्लाम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कानून कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको।
3: क्या बात कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कानून कर रहे हैं, नमाज अलाउड नहीं करने का इस्लाम ने बोला है क्या?
0: बिल्कुल, सड़क पे नमाज पढ़ने का इस्लाम ने बोला,
3: किस तरह की आप बात कर रहे हैं?
0: सड़क पर नमाज पढ़ना इस्लाम के खिलाफ है।
3: नमाज पढ़ लिया तो क्या तकलीफ हो जाती है? सड़क
0: पे बाधा पैदा करना इस्लाम के खिलाफ है।
3: कावड़ यात्रा निकालता तब
0: इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम के खिलाफ है। वक्त की जमीनों पर अपना घर बना लेना इस्लाम के खिलाफ है। भैया ये सब आपको करना चाहिए।
1: सुधांशु जी एक सेकंड, वो इसकी तुलना सीधा कावड़ यात्रा से कर रहे हैं कि भाई कावड़ यात्रा तो निकाली जाती है ना, उन पर तो आप फूल बरसाते हैं।
4: बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कावड़ यात्रा के लिए परमिशन ली जाती है और सड़क का एक हिस्सा होता है और कुछ दिनों के लिए होता है, आप भी परमिशन लीजिए। मैंने बचपन में खूब शबे बारात के देखे हुए हैं, पंडाल लगे हुए बचपन में, परमिशन लेके होता था।
3: गाड़ी तोड़ने
4: मुहर्रम का भी जरूर करता है, परमिशन लेके होता है, मदे साबा का जुलूस निकलता है परमिशन लेके। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो बात वारिस पठान ने कही एक वकील के नाते एक बात बहुत साफ हो गई कि अगर इसका अर्थ हो गया कि नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है, वो सड़क पर भी हो सकती है, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे जो ये दावा करते हैं प्लेस का इंपॉर्टेंस नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, गर्भगृह में ही मंदिर हो मूर्ति होगी और मूर्ति की पूजा गर्भगृह में ही होगी, सड़क पर नहीं होगी। तो स्थान का महत्व यहां है, पहला पॉइंट नंबर वन। दूसरा मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, ये बकरीद है, इसमें बकरे काटे जाते हैं विशुद्ध धार्मिक आधार पर। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में बलि होती थी साल में एक दो दिन, तो तमाम एनिमल लवर्स जो थे वो एकदम लबरेज हो गए जानवरों के प्रति मोहब्बत से, मगर वही धार्मिक आधार के ऊपर करोड़ों बकरे काटे जाते हैं, कोई एनिमल लवर की लवराई दिखती नहीं है, लगता पता नहीं कहां क्रूड ऑयल लेने चली जाती है, और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को भी नहीं दिखती है, और ना कोई कोर्ट में जाता है। और मैं एक और बात बता दूं, ये जो बकरीद शब्द है इसमें बकर का अर्थ बकरा नहीं है, बकर का शब्द अरबी में अर्थ होता है बड़ा, यानी जैसे अबू बकर अल बगदादी का मतलब बड़ा, वो बकरा नहीं है। ये भारत में आके जबरदस्ती बकरी की बलि देनी शुरू की, क्योंकि बकरी की बलि की परंपरा प्राचीन काल से भारत में थी, तो ये भी एक तरीके से इंडियन एडॉप्शन इन्होंने किया है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान छोड़िए, अरे कहां गए वो पशु प्रेमी, कहां गए वो लोग, करोड़ों कटते हुए बकरों में दर्द नहीं दिखता है। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, लाखों दर्शकों को आगाह करना चाहता हूँ, फिर गौर से देखिए, इनको न पर्यावरण से मतलब है, न इनको हवा से मतलब है, न इनको जानवर से मतलब है, इनको सिर्फ हिंदू धर्म के लिए समस्या पैदा करने से मतलब
1: है।
4: अखिलेश जी ने किया, पठान साहब छोड़िए ना, आपने टाइम पे बोलिए
1: पारस भाई, अंजना जी कम्प्लीट,
4: रामचरित मानस का जब उल्लेख अखिलेश जी ने किया तो मुझे लगा कि वक्त कैसे कैसे हालात बदलता है। रामचरितमानस जो पार्टी फाड़ती थी, आज वो रामचरितमानस का उल्लेख कर रही है। मुझे याद है हम लोग यंग एज के थे जब 93 का चुनाव था और नारा लगा था मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो हमारी एक नेत्री ने कहा था नारा केवल इसलिए लग रहा है हिंदू समाज ने एकता दिखाने में थोड़ी कमी कर दी है, जिस दिन एकता वास्तविक दिखेगी उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आप देखिए थोड़ी सी एकता बंगाल में दिखी है, और जैसा अभी इतने फैज खान साहब ने कहा कि वो हनुमान जयंती भी याद आई है, हनुमान जी का स्टेटस भी लगा है, रामचरितमानस भी याद आई है। तो मेरा मानना है, मैं सुनील जी से कहूंगा, अखिलेश जी से कहिए कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खीज, तुलसी लिख गए रामचरितमानस में, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खीज, खेत पड़े पर जाम है उल्टा सुल्टा बीज, अरे रीझ के ना सही खींच के ही भज लो तो शायद कुछ पाप कट जाए।
1: सुनील जी जवाब दीजिए।
5: जी देखिए अंजना जी, इनके राम अलग हैं, हमारे राम अलग हैं। इनके राम वो हैं जिसके नाम पर ये चंदा चोरी कर लेते हैं, इनके राम वो हैं जिनके नाम पर जमीन घोटाला कर लेते हैं, हमारे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो बराबरी का रास्ता दिखाते हैं, जो महिलाओं का सम्मान दिखाते हैं, जो पिछड़ों और दलितों को गले लगाना सिखाते हैं, जो सबरी के जूठे बेर खाते हैं, हमारे राम तो वो हैं। इनसे पूछो राम के रास्ते पर कैसे। और मैं जो बात कह रहा था अंजना जी, आज 6 बजे के शो में, अंजना जी के शो में जो करोड़ों लोग दर्शक हैं, उनको आज ये बहस देखने को नहीं मिल रही कि नीट का पेपर कैसे लीक हो गया, या डीजल पेट्रोल गैस के दाम कैसे बढ़ गए, या रोजगार को लेकर के लोग कैसे भटक रहे हैं। मैं आपके कार्यक्रम में पूछ रहा हूं, 10 साल की लगभग इनकी सरकार होने जा रही है, आप योगी आदित्यनाथ को बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बता रहे हैं, 10 उनके काम बता दीजिए जो जनहित के हों, और इनका कर्म क्या है। हमारे नेता ने कहा है कि बीजेपी का कर्म है भ्रष्टाचार, धर्म है पैसा कमाना, तो ये अपना कर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, और जनता की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। जनता कर्जदार हो जाए, जनता को गैस ना मिले, डीजल ना मिले, उसके घर खाना ना बने, उसके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए, इलाज उसको ना मिल पाए, पानी साफ ना मिल पाए, इनको कोई लेना देना नहीं। ये तो वो विद्वान लोग हैं ना जो गाय को भी मिथुन बता देते हैं, जब इनको गाय काटनी होती है तो मिथुन बता देते हैं, जब इनको मछली खानी होती है तो ये शुभ बता देते हैं। तो ये जो नकली हिंदू है ना, हम लोग असली हिंदू बनाम नकली हिंदू की भी लड़ाई है।
1: ठीक है सुधांशु जी इसका जवाब तो देंगे, लेकिन दो बातें आपको भी सुनील सिंह यादव जी बता दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आप गेस्ट होते हैं उसी दिन का शो देखते हैं। जब नीट पर या महंगाई पर हम लोग शो करते हैं तो उस दिन आप 6 बजे कुछ और कर रहे होते हैं, शो नहीं देखते हैं,
4: और इसी
1: चैनल पे और नीट पर अनेकों मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में रोज हम लोग रात 9 बजे कर रहे हैं। नीट पर लगातार सीरीज आज तक कर रहा है और नीट को अगर फोरफ्रंट पर कोई लाया है तो आज तक लाया है, लेकिन ठीक है वो तो आप अपने हिसाब से ही कहेंगे। सुधांशु जी जल्दी से 2 लाइन का जवाब उनकी बात, सिर्फ 2 लाइन,
4: बस 2 लाइन में। सुनील भाई आप कहां से मिथुन को ले आए बीच में? अब अगर गोपालक समाज को भी ना पता हो, लाखों दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, मिथुन में लिखा इट इज नाइदर ए काउ नॉर ए बफेलो, ना वो गाय है ना भैंस, मगर क्या बताए अकल बड़ी है भैंस।
1: बफेलो बफेलो पे नहीं था कि नीट और ये सबसे क्या धान भटकाया जा रहा है, लेकिन चलिए आज हल्ला बोल में इतने की इजाजत देता है वक्त।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
2: इसमें माइक्रो फाइबर है।
1: माइक्रो फाइबर यानी
2: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
1: हमारे सीमेंट में नहीं है?
2: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
3: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट?
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग। जेके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट?
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
6: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड।
11: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: बंगाल से आपको देते हैं, शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और बकरीद के लिए राज्य में छुट्टी की घोषणा में कटौती कर दी गई है। पहले की छुट्टियों और अब की छुट्टियों में अंतर होगा। अब 26 और 27 मई को नहीं बल्कि सिर्फ एक दिन 28 मई को छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी खबर, पहले दो दिन छुट्टियां होती थी लेकिन अब सिर्फ एक दिन बकरीद पर छुट्टी मिलेगी, 28 मई को छुट्टी मिलेगी। नई सरकार, नया फैसला। हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू भी जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, ये नई सरकार का नया निर्णय, लेकिन पहले दो दिन क्यों मिलती थी और अब एक दिन करने के पीछे का निर्णय के बारे में बताएं।
3: देखिए, नवंबर पिछले साल जब ममता बनर्जी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था तब ये कहा गया था कि 26 और 27 तारीख को ईद की छुट्टी मिलेगी। तब 27 तारीख को ईद मनाने की बात हुई थी तो ईद के एक दिन पहले की छुट्टी भी दी गई थी सरकार की ओर से, दो दिन का छुट्टी उस वक्त सरकारी छुट्टी का घोषणा किया गया था। लेकिन अब जब नाकोदा मस्जिद की ओर से कोलकाता में ये बता दिया गया है कि 28 तारीख को ईद मनाया जाएगा, इसीलिए सिर्फ एक दिन की छुट्टी उसको रिवर्स कर दिया गया है। पहले दो दिन का अनाउंसमेंट किया था ममता बनर्जी सरकार ने, अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने ये कहा है कि सिर्फ एक ही दिन छुट्टी मिलेगा, वो भी 28 तारीख को, जिस दिन ईद मनाई जाएगी। तो 26 और 27 तारीख के रिवर्स करके अब सिर्फ 28 तारीख को पश्चिम बंगाल सरकार ऑफिशियली उस दिन छुट्टी का घोषणा कर चुकी है।
2: क्या टीएमसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है?
3: अभी तक तृणमूल कांग्रेस ने, विरोधी दल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है।
2: बहुत शुक्रिया इंद्रजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब पश्चिम बंगाल में बकरीद पर सिर्फ एक दिन की छुट्टी होगी और शुभेंदु सरकार ने इसका ऐलान कर दिया। अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक,
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
4: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
2: इसमें माइक्रो फाइबर है।
1: माइक्रो फाइबर यानी
2: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
1: हमारे सीमेंट में नहीं है?
2: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
3: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: 2027 में यूपी में होगा एसपी कांग्रेस गठबंधन। गठबंधन को लेकर एसपी कांग्रेस में माइंड गेम। कांग्रेस ने क्यों खटखटाया मायावती का दरवाजा? अखिलेश क्यों कर रहे 403 सीट की तैयारी? यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी का साथ कभी खुशी तो कभी गम वाला रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन फ्लॉप रहा, दोनों मिलकर 54 सीट जीत पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन हिट रहा, दोनों ने मिलकर 43 सीटें जीत ली। लेकिन अब सामने 2027 का विधानसभा चुनाव है और दोनों पार्टियां तू डाल डाल मैं पात पात का खेल खेल रही है। इस खेल में अब अखिलेश का नया पैतरा सामने आया है। समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश ने कहा है पार्टी सभी 403 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर चुकी है। गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे हमारे संगठन का फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को बूथ स्तर तक सहयोग मिलेगा। हमारा नारा है बात सीट की नहीं जीत की है। तो अब सवाल यह है कि अखिलेश सभी 403 सीटों पर तैयारी की बात क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले दो घटनाक्रमों पर गौर कीजिएगा। रायबरेली में राहुल गांधी दलित शहीद वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उससे ठीक पहले कांग्रेस के दो नेता मायावती से मिलने जाते हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है और फिर अखिलेश यादव का ऐलान आता है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए तैयार हैं। तो क्या अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को ये मैसेज दे रहे हैं कि मायावती से हाथ मिलाने की किसी भी कोशिश की उन्हें कोई परवाह नहीं? हालांकि खुद मायावती के ना मिलने से कांग्रेस की किरकिरी हो चुकी है और मिलने जाने वाले नेताओं को ये कहते नहीं बन रहा कि आखिर वो बहन जी के पास गए ही क्यों थे।
1: उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहाँ बस इन जनरल पूछा अगर व्यस्त नहीं है तो दो मिनट उनसे हालचाल हो जाए। सी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन उन क्योंकि हमारे समाज की दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे।
2: निश्चित तौर से वो उनका अपना व्यक्तिगत उनसे मिलने का वो कार्यक्रम था, उसमें पार्टी का कोई निर्णय पार्टी के किसी नेतृत्व से कोई वार्ता नहीं, वो अपने अपने अपने निर्णय से वो गए थे।
3: कांग्रेस के सांसद और अनुसूचित जाति के
2: व्यक्तिगत रूप से हो सकता है उनके रिश्ते हों, उनके परिवार के रिश्ते हों, वो अपने उस नाते पारिवारिक रिश्ते के नाते मिलने गए थे।
3: यूपी कांग्रेस का उससे कोई रोल नहीं था?
2: जी नहीं, हमारी जानकारी में नहीं, हम लोगों की तरफ से कोई निर्देश नहीं।
0: कांग्रेस लाख इनकार करे लेकिन उसकी नजर दलित वोटों पर है और ये बात अखिलेश को असहज कर रही है। वो रह रहकर कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हार के बावजूद अखिलेश यादव ममता से मिलने कोलकाता गए और जब तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ विजय से हाथ मिलाया तो कटाक्ष भी तगड़ा किया। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं और आज तक इस खास शो में अगले आधे घंटे दिन भर की सभी बड़े खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। वैश्विक हालात के साथ आपसे साझेदारी पर बात। ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को दिया गया व्हाइट हाउस आने का न्योता। बंगाल में बकरीद की छुट्टी में एक दिन की कटौती। शुभेंदु सरकार ने 26 और 27 की जगह 28 मई को अवकाश देने का किया फैसला। आधिकारिक सूचना जारी। यूपी में बिजली कटौती पर सियासी जंग के बीच सरकार ने सख्ती दिखाई। गाजियाबाद और मेरठ से एक एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड। अखिलेश ने बताया महाविद्युत आपदा। विशा केस में आरोपी संवर सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड। सामने आई मौत वाली जगह की तस्वीर। कल दिल्ली एम्स की टीम करेगी दूसरा पोस्टमार्टम। 12वीं परीक्षा की आंसर शीट लेने के लिए सीबीएसई ने एक दिन बढ़ाई तारीख। अब 24 मई तक छात्रों के पास मौका। सीबीएसई ने इंटरनेट ट्रैफिक और वेबसाइट में मानी दिक्कत की बात। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भीषण गर्मी के बीच जारी बिजली कटौती से, जिससे जनता बेहाल है। यूपी में पावर कट को लेकर जनता का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आ रहा है।
1: भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली कटौती ने आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक और हापुड़ से लेकर रामपुर तक भयंकर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। राजधानी लखनऊ का हाल देखिए। महिला का गुस्सा बिजली कर्मचारियों पर उतर रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। लखनऊ में लोगों ने रात को सड़क ही जाम कर दी। ये दुबग्गा पावर हाउस के तहत आने वाला मॉडर्न पिंक सिटी इलाका है। यहाँ पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बीती रात लोगों का सब्र जवाब दे गया।
2: क्या ये रोज आप लोग ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही दिन कट रहा है?
3: हाँ, जब बिजली नहीं आ रही तो लोग इस तरह बैठते हैं और छुट्टियां भी हो गई हैं तो बड़ी समस्या बनी हुई है। जब से तापमान बढ़ा है तब से बिजली संकट बहुत गहरा गया है।
4: अब लोग कल 2 दिन से रात में सो ही नहीं पा रहे हैं।
1: आम जनता ही नहीं, विधायक जी का हाल भी बुरा है। रायबरेली के बीजेपी के विधायक अशोक कोरी का बिजली कर्मियों को हड़काने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
5: आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं।
1: मेरठ में बिजली से बेहाल जनता ने मेयर आवास की ओर कूच कर दिया। नारेबाजी और हंगामा किया। जनता के सामने मेयर साहब भी खुद को लाचार बता रहे हैं। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज में करीब 14 से 16 घंटे बिजली कट रही है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में छात्र अब कॉलेज के बाहर मोर्चा लेकर बैठे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर यूपी में बिजली कटौती से जनता को कब राहत मिलेगी? कब वो भीषण गर्मी के बीच सड़कों की बजाय घरों में आराम से रहेगी? आज तक ब्यूरो।
0: एक ओर पावर कट से जनता बेहाल है तो दूसरी ओर इस पर सियासत जमकर हो रही है। विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं सरकार बिजली कटौती से उन दावों को लगातार खारिज कर रही है।
1: यूपी में बिजली कटौती ने एक ओर जनता को बेहाल कर रखा है तो वहीं इस पर सियासत भी जोरदार है। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार हैं। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर दिखाया करो। एके शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया। और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। मायावती भी बिजली कटौती पर भड़की नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी में बिजली की कम आपूर्ति और कटौती आदि से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों, करोड़ों मेहनत कश लोगों का जीवन कष्टदायी बना हुआ है। इसको लेकर लोग अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। कहने को तो सरकार दावा करती है कि डिमांड सप्लाई सब बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करते हैं। यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, इटावा, आगरा जैसे जिलों में 6 घंटे की निर्धारित कटौती होनी है, लेकिन हकीकत में इससे ज्यादा घंटे तक बिजली गुल रहती है।
2: बिजली के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिन रात काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डिफॉल्ट जितने भी आएंगे, फॉल्ट आएंगे, उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बढ़ता हुआ तापमान और इस तापमान में बढ़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है।
1: यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई का रोस्टर है, लेकिन अघोषित कटौती की वजह से ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली आती है। लोकल फॉल्ट और ट्रिपिंग से समस्या और बढ़ जाती है। शहरी इलाकों में मांग बढ़ने पर ग्रामीण इलाकों की बिजली काट दी जाती है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से बिजली विभाग को कम राजस्व मिलता है। बहरहाल सियासी खींचतान के बीच जनता बेहाल नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी में बिजली संकट के बीच में अधिकारियों पर अब गाज गिरी है और बड़ी कार्रवाई हुई है। कुछ जगहों पर अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। बिजली की सप्लाई बाधित होने, आम लोगों को परेशानी के बीच में बिजली संकट पर अब अधिशासी अभियंता पर गाजियाबाद के कार्रवाई हुई है। गाजियाबाद के अधिशासी अभियंता को राहुल को मेरठ अटैच कर दिया गया है, तो ये कार्रवाई हुई है कि उनको मेरठ अटैच कर दिया गया। तो दूसरी तरफ मेरठ के जो योगेश कुमार है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मेरठ में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था। उधर यूपी में एक और सियासत हो रही है और कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बैन को लेकर सियासत है, जहां प्रधानमंत्री मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की इस अमर्यादित टिप्पणी ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। मामला अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। महोबा में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी की शिकायत के बाद महोबा पुलिस ने अजय राय समेत करीब 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
7: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय अभद्र टिप्पणी भी की। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
6: दरअसल महोबा में अजय राय दलित महिला से मिलने पहुंचे थे, जहां अब वो पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी को फर्जी एआई वीडियो बता रहे हैं।
8: कि जो महोबा में गया था वो एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक रेप किया गया है, उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए और उसको उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया है अपराधियों ने। आज उसकी बात मैंने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा। उन्होंने एआई जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, पर उस दलित बच्ची को जिसके साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके नशे के इंजेक्शन लगाए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया, उसको न्याय दीजिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं।
6: उधर बीजेपी अजय राय पर चौतरफा हमलावर है। योगी आदित्यनाथ ने भी अजय राय की भाषा पर सवाल खड़े किए।
9: सर मानी चाहिए कांग्रेसियों को, धिक्कार होना चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? गाली गलौज की भाषा आप मर्यादित राजनीतिक वातावरण में, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग है? पहले राहुल गांधी जानबूझ करके अपमानित करने की चेष्टा करते और अब अजय राय ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। राजनीति की कोई मर्यादा नहीं रह गई है, शुद्ध रूप से गाली गलौज की प्रयोग कर रहे।
6: मामला अब तूल पकड़ रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: द पश्चिम बंगाल में नई सरकार के बाद सियासी तस्वीर बदल गई, जहां शुभेंदु अधिकारी शुभेंदु राज में बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही। ऐसा एक बुलडोजर आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर पर भी आज कर जा।
10: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद आप देख पा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय पर जिस तरह से बुलडोजर अभियान चल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि आसनसोल के जो सेल आईएसपी, जो सेल के जमीन पर अवैध तरीके से तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय बना हुआ था, उन सब कार्यालयों पर आप देख पा रहे हैं कि बुलडोजर अभियान चल रहा है। देख पा रहे हैं कि आप जिस तरह से बुलडोजर से ये आसनसोल के बनपुर रेलवे स्टेशन के बगल में ये तृणमूल कांग्रेस के जो पार्षद जो है अशोक रुद्रो, उसके पार्टी ऑफिस था, और उस पार्टी ऑफिस को अभी बुलडोजर से देख सक रहे हैं कि बुलडोजर से इसे तोड़ा जा रहा है। हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो पार्टी ऑफिस था, ये ठीक जो आसनसोल के जो बनपुर रेलवे स्टेशन है, ठीक उसके विपरीत में ये पार्टी ऑफिस था।
0: और एक बड़ी खबर आपको देते, बंगाल से बड़ी खबर, शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लिया और बकरीद को लेकर यह बड़ा फैसला है। राज्य में छुट्टी की घोषणा में कटौती कर दी गई है। पहले दो दिनों यानी कि 26 और 27 मई को छुट्टी थी, लेकिन अब उसे बदल दिया गया है। राज्य सरकार ने अब 28 मई को एक ही दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। नई शुभेंदु सरकार ने ममता बनर्जी के कार्यकाल में की गई पिछली छुट्टी की घोषणा में यह बदलाव किया है। ममता सरकार ने पिछले साल नवंबर में जारी अधिसूचना में दो दिन की छुट्टी यानी कि ईद के दिन और ईद से एक दिन पहले की घोषणा थी छुट्टी की, लेकिन अब उसमें बदलाव है। शुभेंदु सरकार ने एक दिन की छुट्टी कम कर दी है। अब आज सीबीएसई के जहां पर छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने 12वीं स्टूडेंट्स के लिए स्कैन आंसर शीट हासिल करने की तारीख अब बढ़ा दी है, दूसरी बार ये बढ़ाई है। पहले तारीख 22 मई थी, जिसे बढ़ाकर 23 मई किया गया और अब इसे 24 मई कर दिया गया है। इस निर्णय से उन हजारों छात्रों को राहत मिलेगी जो तकनीकी समस्याओं की वजह से निर्धारित समय सीमा में आवेदन ही नहीं कर पाए थे। सीबीएसई ने पहले रिवैल्यूएशन फीस में कटौती की थी। आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए 700 की जगह 100 रुपए ही देने होंगे। मार्क्स वेरीफाई या टोटलिंग के लिए 500 की जगह अब 100 रुपए देने होंगे। वहीं प्रति सवाल दोबारा कॉपी जंचवाने के लिए अब 100 रुपए की जगह सिर्फ 25 रुपए ही लगेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट के बाद छात्रों के विरोध के बीच यह फैसला लिया था। इस बार छात्रों ने रिजल्ट पर नाराजगी जताई थी। वहीं इस बार दोबारा कॉपी जांच के आवेदन के मामले पिछले सालों की तुलना में बहुत ज्यादा है। द नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जिस पर फिजिक्स के पेपर को आउट कराने का आरोप है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस मामले में 3 महिलाएं गिरफ्तार की जा चुकी हैं और तीनों ही महिलाओं का नाम मनीषा है। यह मामले में 11वीं गिरफ्तारी है।

0: पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और अब नीट का फिजिक्स का पेपर आउट कराने वाले आरोपी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। पुणे से सीबीआई ने मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया है। केस की आरोपी मनीषा मंधारे की तरह ही मनीषा हवलदार बतौर एक्सपर्ट एनटीए से जुड़ी थी, जिससे फिजिक्स के प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी। आरोप है कि अप्रैल 2026 में उसने परीक्षा से जुड़े कई फिजिक्स सवाल मनीषा मंधारे को शेयर किए। जांच एजेंसी के मुताबिक जो सवाल मनीषा हवलदार ने शेयर किए थे, उनका मिलान नीट यूजी 2026 के असली फिजिक्स पेपर सेट से किया गया था और दोनों में समानता पाई गई। हैरानी की बात यह है कि इस केस में अब तक जो तीन महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं, उन तीनों का नाम मनीषा ही है। इस बीच नीट पर जारी सियासत के बीच राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक से परेशान होकर सुसाइड करने वाले छात्र के परिवार से फोन पर बात की।
1: नमस्कार, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर।
2: बोलो,
1: कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे?
2: 3 साल।
3: बोलो, आप हिम्मत रखो।
2: 3 साल से पढ़ाई कर रहा था, अब की बार उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला, तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया है अभी बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड
1: किया। तो पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की
2: है? नहीं, ये तीसरी बार था
1: और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा।
0: बहरहाल इस पूरे मामले में नीट पेपर कराने वाली संस्था एनटीए की भूमिका सवालों के घेरे में है, जो कि हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
4: आज लखनऊ से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने है, जहां पर पुलिस के खिलाफ लखनऊ में बार एसोसिएशन ने वकीलों को लाठियां थमा दी। अब क्या लखनऊ में वकील पुलिस की लाठी का जवाब लाठी से देंगे?

0: लखनऊ बार एसोसिएशन में बढ़ रही ये लाठियां अब पुलिस के एक्शन पर पलटवार के लिए तैयार हैं। 17 मई को बुलडोजर एक्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के खिलाफ अब वकीलों ने खुद भी हाथों में लाठी रखने का जिम्मा ले लिया है। बार एसोसिएशन की तरफ से वकीलों को करीब 600 लाठियां बांटी गईं। वकीलों का दावा है कि पुलिस कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए ये कदम उठाया गया है, यानी अगर पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो वकील भी जवाब में लाठीचार्ज के लिए तैयार है। लाठीचार्ज के खिलाफ लखनऊ जिला कोर्ट में वकीलों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते कोर्ट का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित है। वकीलों के चैम्बर्स तोड़े जाने और बुलडोजर की कार्रवाई से भयंकर नाराजगी है। वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने लाठी से पीटा था, अब बदला लेने का ऐलान हुआ है, यानी अगर पुलिस दोबारा एक्शन लेगी तो बार एसोसिएशन के वकील पुलिस का जवाब लाठी से देंगे। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: राजस्थान के जालौर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने है, जहां पर एक युवक पर बीच सड़क पर स्कॉर्पियो से हमला करने की कोशिश की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सरेआम युवक पर बार बार गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर पिछले दिनों से ये दो पक्षों में तनाव था, जिसके बाद सुपारी देकर हिस्ट्री शीटर ने शख्स पर स्कॉर्पियो के जरिए जानलेवा हमला करने की कोशिश की। इस घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। ये राजस्थान की जालौर की मार्केट की चहल पहल के बीच की तस्वीर है, लेकिन कोई दूर दूर तक पुलिसकर्मी दिखाई नहीं देता। बीच सड़क पर यह कुचलने का प्रयास होता है, हाथों में डंडे लेकर खूब मारा जाता है। आपसी संघर्ष में हुआ, लेकिन सवाल यह कि कानून व्यवस्था पुलिस कहां थी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे की, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लगभग एक घंटे चले इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: दुनिया भर में बढ़ रहे तनाव के बीच ये भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने वाली तस्वीर है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से करीब एक घंटे लंबी मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा, व्यापार, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। ये दौरा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हो रहा है और इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। रूबियो की चार दिन की भारत यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया भर में ईरान युद्ध की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं और बदलते हालात के बीच भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। इससे पहले रूबियो पत्नी के साथ कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचने के बाद रूबियो ने मदर टेरेसा हाउस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा भी किया। कोलकाता में कुछ घंटे गुजारने के बाद मार्को रूबियो दिल्ली के लिए रवाना हुए। वो जयपुर और आगरा भी जाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग मजबूत करने के लिए भारत 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों के साथ साथ मार्को रूबियो इस बैठक का भी हिस्सा होंगे। उनके चार दिन के भारत दौरे के मुख्य चार उद्देश्य होंगे, ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और रक्षा।
3: मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी होंगी, साथ ही क्वाड सम्मेलन से संबंधित भी होंगी। क्वाड में भागीदार होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे नतीजे होंगे जिनके बारे में चारों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम पिछले लगभग 5 महीनों से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 महीनों से हूँ।
2: होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर संकट के बाद से भारत ने तेल के लिए कई विकल्पों को आजमाया है। ये संकट अभी टला नहीं है। व्यापार के लिहाज से और कूटनीति में संतुलन को देखते हुए सहमति बनाने के लिए रूबियो के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। आज तक
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूबियो से मुलाकात के बाद दुनिया की भलाई के लिए अमेरिका और भारत को साथ आकर काम करने पर जोर दिया, तो वहीं रूबियो ने भी मौजूदा हालातों में भारत की भूमिका को बेहद अहम बताया।
4: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term. And so I think that is important to note, because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen in ways that don't often make headlines or aren't splashy, but are important and real and tangible and enduring. We've expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific.
1: अब बात करते हैं देश के लोगों को सुबह सुबह लगे महंगाई के झटके कि देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे तो डीजल के दाम 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर अब 99.51 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया, तो डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ और इसके दाम अब 92.49 रुपए पहुंच गए। वहीं सीएनजी की कीमत भी बढ़ी है, अब दिल्ली में 81.09 रुपए प्रति किलो सीएनजी हो गई है। बात आईपीएल की, आईपीएल में आज मुकाबला है पंजाब और लखनऊ के बीच और पिछले 6 मैच हारने के बावजूद पंजाब की टीम प्लेऑफ की रेस में बने हुए, लेकिन उसके लिए आज उसे हर हाल में लखनऊ को उसी के मैदान पर हराना होगा। पंजाब के पास जीत दिलाने वाले खिलाड़ी तो हैं, लेकिन लगातार हार से निराश पंजाब का खेमा क्या आज ये चमत्कार दिखा पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।
2: एक तरफ है 10वें पायदान पर अटकी लखनऊ की टीम, दूसरी तरफ है प्लेऑफ की उम्मीद में जीत तलाश रही पंजाब की टीम। लखनऊ इस सीजन इतना हार चुकी है कि अब एक जीत से उसका बनना बिगड़ना कुछ है ही नहीं, सिवाय इसके कि अपने स्टेडियम में अपने फैंस के बीच ऋषभ पंत जाते जाते आखिरी मुकाबले में जीत हासिल कर थोड़ी बहुत साख बचा ले। लखनऊ को ऑलराउंडर मिचेल मार्श की गैर मौजूदगी खल सकती है, जो इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे। अब देखना यह है कि जोश इंग्लिश बल्लेबाजी में इस नुकसान की कितनी भरपाई कर पाते हैं। उधर पंजाब के लिए तो मामला करो या

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: अपनी इलेक्ट्रिक सवार
3: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
4: अरे भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबडी कैन ड्रीम।
3: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
5: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
6: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: यार
2: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रोफाइबर है.
2: माइक्रोफाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बस 2000
3: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
4: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
5: आगे आगे,
6: अरे उधर उधर गया।
5: करेक्ट करेक्ट,
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
12: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
13: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
14: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
15: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
16: विक्रम, एक हिंट तो देते।
17: विक्रम!
16: हिंट।
15: बड़े आराम से।
18: करेक्टर, The taste of success.
19: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
20: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
21: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
22: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।

0: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
1: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
0: जहां खबर वहां खबरदार।
3: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
4: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
5: आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा।
6: बिजली ठप हुई, रैपिड मेट्रो अटकी तो मुसाफिरों को कुछ इस तरह से मुसीबत झेलनी पड़ी। पटरियों के किनारे किनारे चलकर लोग किसी तरह स्टेशन तक पहुंचे। तस्वीरें दिल्ली से सटे गुरुग्राम की हैं, जहां भीषण गर्मी के बीच बढ़ते लोड से बिजली सप्लाई का ढांचा ही बैठ गया। शहर के कई सेक्टर्स में अंधेरा पसर गया।
7: 220 केवीए के सब स्टेशन में अचानक आग लग गई थी और इसी भीषण आग के चलते सेक्टर 56 से DLF फेज 2 और सिकंदरपुर एक्सचेंज तक का ये रूट बाधित हो गया। इस पूरे रूट पर अंधेरा छा गया था। जो मेट्रो जहां चल रही थी वहीं रुक गई, जिसके चलते यात्रियों में हड़कंप मच गया।
6: दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 72 के मुख्य बिजली घर का ट्रांसफार्मर फूंक गया, जिसकी वजह से एक साथ सात बिजली घर बंद पड़ गए, जिसका असर सिर्फ घरों की बिजली तक नहीं रहा बल्कि रैपिड मेट्रो सेवा पर भी पड़ा। रैपिड मेट्रो एक घंटे से ज्यादा समय तक ठप रही है, जिससे हजारों यात्री परेशान हुए। गर्मी भीषण है और बिजली कट दोहरी मुसीबत। गुरुग्राम के कई सेक्टर्स में लोग पूरी रात इस संकट को झेलने को मजबूर रहे। आज तक ब्यूरो।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। वैश्विक हालात के साथ आपसी साझेदारी पर बात। ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का दिया गया न्योता। बंगाल में बकरीद की छुट्टी में एक दिन की कटौती। शुभेंदु सरकार ने 26 और 27 की जगह 28 मई को अवकाश देने का फैसला किया। आधिकारिक सूचना जारी। यूपी में बिजली कटौती पर सियासी जंग के बीच सरकार की सख्ती। गाजियाबाद और मेरठ से एक एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असेसमेंट। अखिलेश ने बताया महाविद्युत आपदा। विशाखा केस में आरोपी समर सिंह को 7 दिनों की पुलिस रिमांड। सामने आई मौत वाली जगह की तस्वीर। कल दिल्ली एम्स की टीम करेगी दूसरा पोस्टमार्टम। ईरान से तनातनी के बीच ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से हड़कंप। ईरान के नक्शे पर लगाया अमेरिका का झंडा। लिखा मध्य पूर्व का अमेरिका।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: नमस्कार। विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। आज विशेष में बात ट्विशा की, जिसकी मौत अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। आज एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर सिंह को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने समर्थ की 7 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है। वहीं ट्विशा के परिवार वालों की ओर से दिए गए आवेदन पर कोर्ट ने समर्थ का पासपोर्ट जब्त करने का भी आदेश दिया है। आज एम्स की टीम भोपाल पहुंचने वाली है, जो कि कल पोस्टमार्टम करेगी। इस बीच में ट्विशा की मौत से पहले के सीसीटीवी ने सबको चौंका दिया है।

0: आखिर क्या है ट्रिशा की मौत का सच? क्या ट्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई? पिछले 11 दिनों से ट्रिशा का शव इंसाफ का इंतजार कर रहा है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, सीबीआई को हर पहलू की पड़ताल करनी है। अभी ट्रिशा की मौत के कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनका सच सामने आना बाकी है। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ट्रिशा के घर के उस हिस्से की तस्वीर भी सामने आई है, जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी। आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि ट्रिशा ने यहीं पर सुसाइड किया था। यही वो जगह है जहां वो फंदे से लटकते मिले। लेकिन सवाल यह है कि अमूमन इस तरह के सुसाइड घर के बंद कमरे में की जाती है, ताकि घर का कोई सदस्य ना आ सके। लेकिन ट्रिशा ने सुसाइड छत जैसी खुली जगह पर किया, जिसका कुछ हिस्सा ही बंद था, जहां से कोई भी उसे सुसाइड करते देख सकता था या फिर रोक सकता था। जबकि इस दौरान घर में परिवार के लोग मौजूद थे, जो कि कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ट्रिशा ने छत को क्यों सुसाइड के लिए चुना। परिवार दावा कर रहा है कि वो नशे की हालत में थी और उसने वहीं फांसी का फंदा लगाकर खुद की जान ले ली। अब सुसाइड से पहले की ये तस्वीर भी चौंकाने वाली है, जो कि एक ब्यूटी पार्लर की है, जहां ट्रिशा सुसाइड से पहले पहुंची थी। ट्रिशा के आखिरी मेकअप का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें वो ससुराल के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में नजर आ रही है। वीडियो में ट्रिशा बेहद रिलैक्स दिखाई दे रही है, लेकिन इस फुटेज को भी जब्त कर लिया गया है। 12 मई जिस दिन ट्रिशा की मौत हुई, ट्रिशा शर्मा दोपहर लगभग 3:30 बजे पार्लर पहुंची थी और शाम लगभग 6:15 पर वहां से निकली।
1: वो आई थी और वो आई सबसे पहले उनने मेरे स्टाफ से बोला कि तुम लोग टीवी वो मूवी देख रहे हो। वो बहुत खुश थी, आई अंदर आई, फिर उनने बोला कि मेरे को रिलैक्स होने के लिए हेड ऑयल मसाज चाहिए है। देन उनने हेड ऑयल मसाज लिया, फिर उनने पेडिक्योर करवाया, फिर वो अपना कुछ और स्किन का काम करने के लिए वो फिर फेशियल सेक्शन में गई। वहाँ पे उन्हें
2: पहले कहाँ पे वो आई, जब उसके बाद कहाँ पे वो यहाँ पे आपके पार्लर में कहाँ, इधर उस बार बैठी या कहीं और?
1: इधर बैठी थी वो थोड़ी देर के लिए, देन उसके बाद फिर वो इधर उधर गई और उधर उन्हें हेड ऑयल मसाज कराई।
2: ये सीट पे एक बार जरा आकर के एक बार दिखा दें आप। इस वक्त हम पहुंच गए हैं, ये वो कुर्सी है।
1: जी हेड ऑयल मसाज कराई
2: जी।
1: उसके बाद वो इस रूम में गई थी और यहाँ पे उनका कुछ काम था जो उनने यहाँ पे कराया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे,
2: ये मतलब ये वो चेयर है जो आखिरी जो सीसीटीवी वायरल फुटेज सामने आया है, जिसमें वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई हैं, और ये वो चेयर है जहाँ पे ट्रिशा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं ट्रिशा के आखिरी लम्हों की ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद वो उस चेयर
1: पे पेडिक्योर कराया था, उस चेयर पे बैठ के पेडिक्योर कराया था,
2: वो वाली चेयर।
1: जी जी जी।
0: अब सवाल ये है कि क्या सुसाइड से पहले कोई ब्यूटी पार्लर में रिलैक्स होने जा सकता है? ब्यूटी पार्लर ट्रिशा के ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी पर है, और उनको सर्विस देने वाले ने साफ कहा कि कहीं पर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ट्रिशा किसी भी तरह की टेंशन में है।
1: वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी।
2: कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था?
1: नहीं नहीं नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी।
2: पास में ही घर है उनका?
1: हाँ हाँ, उनका पास में ही घर है।
2: अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उन्हें उनसे को देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा, तो उस दिन क्या था? उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था, या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही हैं?
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसते हुए अंदर आई थी और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उनने करवाया था। उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं। तो फिर उनने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा, तो उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई।
2: बस यही मेरा एक सवाल था, हेड ऑयल मसाज ये पहली बार उन्होंने करवाया था, इससे पहले भी उन्होंने करवाया था, या सिर्फ उसी दिन आपको स्पेशली उन्होंने कहा कि?
1: पहले भी कराया होगा, बट मेरे को देखना पड़ेगा रजिस्टर की इससे पहले कौन कौन सी सर्विसेज
2: ली। उस दिन उन्होंने ये बोला था कि मुझे सर दर्द हो रहा है, कुछ रिलैक्स होना है,
1: सर दर्द या मेरे को रिलैक्स होना है ऐसा कुछ बोला होगा, तो मेरे को ऐसा कुछ बताओ। तो हेड ऑयल मसाज कराई थी या सर दर्द हो रहा होगा, एकदम याद नहीं है, एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं है कि क्या बोला था, बट रिलैक्स तो होना था उनको, तो इसलिए उनने हेड ऑयल मसाज कराई थी।
0: इस कड़ी में सबसे अहम किरदार है त्विशा के पति समर सिंह का, जिससे पुलिस को कई सच उगलवाने हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि त्विशा को सुसाइड करना पड़ा, और अगर ये हत्या है तो फिर आखिर त्विशा को क्यों मारा गया? क्या हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, या फिर सच में त्विशा ने नशे की हालत में खुद की जान ले ली?
3: नहीं, अभी उतना नहीं। देखो, इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है, हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना थोड़े कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा। सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। रात को 3 बजे तो काफी लेट नाइट तो आया है, फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीजें होती हैं।
0: बहरहाल त्विशा की मौत अपने आप में कई सवाल समेटे हुए है, जिसका सच आना अभी बाकी है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो। जब सवाल बहुत सारे हैं तो परिवार पोस्टमार्टम की मांग लगातार कर रहा था, और अब कल पोस्टमार्टम होना है। और बड़ी खबर इससे जुड़ी भी आपको दे दें, दिल्ली एम्स की 4 सदस्य टीम अब मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं, और कल ये 4 सदस्य टीम त्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। पहले यूं तो पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन परिवार को उस पोस्टमार्टम पर भरोसा नहीं है। परिवार का आरोप है कि अपने पद का, अपनी पोस्ट का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके फैमिली ने उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला जरूर किया है। तो ऐसे में वो दूसरे पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे थे, बकायदे इसके लिए कोर्ट गए, कोर्ट की तरफ से परमिशन मिली, और एम्स के डॉक्टर्स ही इस पोस्टमार्टम को करेंगे। और त्विशा केस में अब कल दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा, और तब तक डेड बॉडी को भी पूरी तरह से सुरक्षित रखने का निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया। 4 सीनियर डॉक्टर्स का एक पैनल जो इस मामले में पोस्टमार्टम करेगा। इस पूरे मामले में त्विशा की सास भी सवालों के घेरे में है, जिस पर लगातार अपने रसूख का इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। गिरीवाला सिंह, त्विशा शर्मा की सास, जो शुरू से सवालों के घेरे में है और चुप है। गिरीवाला सिंह भले ही कुछ न बोले, लेकिन उन पर लगे गंभीर आरोप है। अपने रसूख का इस्तेमाल अपने बेटे को बचाने में करने के इल्जामों को इस एक घटना ने और गहरा करने का काम किया।
4: स्वागत है सीबीआई जांच का, हम स्वागत करते हैं सीबीआई का। सीबीआई जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और इस बात की जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए।
0: जिस ब्यूटी पार्लर में त्विशा गई थी, वहाँ त्विशा की सास को लेकर भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। 12 मई को त्विशा ब्यूटी पार्लर गई थी, जिसके अगले दिन यानी 13 मई को सुबह 11:30 बजे त्विशा की सास गिरीबाला सिंह का फोन आया। किरण का दावा है कि इस दौरान गिरीबाला ने बार बार पूछा, क्या त्विशा पार्लर आई थी, वो कितने बजे आई, कितने बजे गई, और पेमेंट कैसे किया गया,
2: कि जो हुआ उसका आपको कब पता चला कि ऐसा हो गया है हादसा?
1: मुझे पता चला जब गिरीबाला मैम का फर्स्ट कॉल आया, और उनने मुझसे पूछा कि त्विशा कब आई थी, कब गई। तो मैंने फिर उनको बोला कि ठीक है, मैं पार्लर पहुंच के बताती हूँ, स्टाफ से पूछ के कि कब आई थी, कब गई थी। फिर उनका सेकंड कॉल आया था, तो मिस कॉल था, मैं उठा नहीं पाई थी, तो मैंने वापस उनको कॉल बैक किया, उनसे पूछा कि मैम आपने कॉल किया था क्या। तो उनने बोला हाँ, मुझे पता करना था, पूछना था कि त्विशा कब आई और कब गई।
2: ये कब कॉल आया था आपके पास?
1: वो ये 13 तारीख के ही कॉल है।
2: 13।
1: फिर मैं जब यहाँ आई तो मैंने उनको कॉल लगा के बताया कि मैम त्विशा मैम आई थी, वो इतने बजे आई थी और इतने बजे गई। मैंने बाहर का फुटेज देखा कि वो गई कैसे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा बाहर की मैडम लग रहा है घर पहुंची नहीं है, या कुछ तो भी ऐसा है जिसकी वजह से मैम का बार बार कॉल आ रहा है। फिर मैंने उनको जब बताया फोन करके कि मैम इतने बजे आई थी, इतने बजे गई थी।
0: त्विशा की सास गिरीबाला बार बार ये जानने की कोशिश कर रही थी कि ब्यूटी पार्लर में कुछ तो हुआ होगा। उन्होंने खास तौर पर यह जानना चाहा कि क्या त्विशा के आने का कोई रिकॉर्ड, पेमेंट डिटेल या कोई सबूत मौजूद है। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट के सबूत नहीं थे, क्योंकि त्विशा ने शादी के बाद से ही ब्यूटी पार्लर का पैकेज ले रखा था। ऐसे में उस दिन उसने पेमेंट नहीं की थी, लेकिन जब ट्रिशा की सास को ब्यूटी पार्लर में सीसीटीवी होने की जानकारी मिली तो वो कुछ लोगों के साथ ब्यूटी पार्लर पहुंचे जो लोग खुद को वकील बता रहे थे।
1: मैंने मैम से पूछा कि क्या हो गया है मैम, ट्रिशा मैम ठीक तो है ना? तब उनने मुझे बताया कि उनने सुसाइड कर ली है।
2: आपको भरोसा हुआ?
1: नहीं, मेरे को लगा शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है, उनने कोशिश करी होगी या कुछ हुआ नहीं होगा। तो फिर जब पांच लोग बाद में आए थे, मैंने उनसे पूछा जो फुटेज लेने के लिए आए थे।
2: कौन लोग थे वो?
1: उनको, वो एडवोकेट लग रहे थे मुझे।
2: अच्छा, मतलब
1: एडवोकेट वाले का। हाँ, उनके पास आई कार्ड भी था, वो पहने हुए थे और एडवोकेट थे। और उनने बताया कि वो मतलब फुटेज चाहिए पुलिस को, मैडम आई थी गई थी तो वो आप दिखा सकते हैं क्या सीसीटीवी? तो मैंने बोला दिखाया उनको। फिर उसके बाद उनने फुटेज ली। और
2: क्या वो गिरिबाला सिंह के वकील थे?
1: ये नहीं पता, क्योंकि ये मैंने उनसे पूछा नहीं। अच्छा। क्योंकि मुझे लगा कि मे बी होंगे उनके, या उनने ये बोला कि पुलिस को चाहिए, पुलिस को चाहिए।
0: इस पूरे खेल में पुलिस की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मामले का अहम सबूत सीसीटीवी ट्रिशा की सांस ले गए, लेकिन पुलिस की टीम ब्यूटी पार्लर तक नहीं पहुंच सकी।
1: पुलिस तो नहीं आई
2: अभी, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं?
1: नहीं, कोई नहीं आया।
2: आपसे कोई सबूत वकीलों ने बाद में इसके अलावा, फुटेज के अलावा?
1: नहीं, कुछ भी नहीं।
0: 11 दिन पहले भोपाल में हुई ट्रिशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गया, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है।
4: अरे कोई कानून ने क्या आपको सब बताए?
5: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं अभी तक। पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं।
6: परिवार कहता है,
5: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है।
6: साहब, आप यही जांच को लेकर जो पत्र लिखा है,
4: स्वागत है सीबीआई जांच का।
0: एक तरफ ट्रिशा का पति समर्थ फरार था, तो इस दौरान समर्थ की माँ और ट्रिशा की सास गिरिबाला अपनी ही बहू पर आरोप लगाती रही। मतलब वो घंटों फोन पर बात करती थी, घर से गायब रहती थी, पूछने पर नहीं बताती थी। सवाल ये है कि ट्रिशा की जीते जी यही शिकायत आपने कभी ट्रिशा के घर वालों से क्यों नहीं की?
2: निकले मैम, किससे बात करती थी वो, आप बताए? देर देर तक फोन, हेडफोन लगा।
7: अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं, किससे बात हो रही थी। ठीक है,
0: जब ट्रिशा का भाई अपनी बहन का रिश्ता बचाने भोपाल पहुंचा था, तो ऑडियो में कथित तौर पर गिरिबाला सिंह अपनी बहू के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती सुनाई दी। आज तक वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ट्रिशा का परिवार इसे मानसिक प्रताड़ना का एक बड़ा सबूत बता रहा है।
8: ऑडियो की जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर, भोपाल इनके निवास पर गए थे, तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है, उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है। तो बोल रही नहीं, ये तो हमारा अधिकार है।
0: समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 11 दिन बाद भी पता न लगा सकी, उससे भी सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिलीभगत के कारण ऐसा हुआ।
9: ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरिबाला जी को। और ये सारी चीजें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरिबाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे।
0: इस बीच एमपी पुलिस ट्रिशा के सास गिरिबाला के घर हाईकोर्ट का नोटिस लेकर पहुंचे।
10: आप बताइए जो भी
11: इन्फॉर्मेशन
12: सर, हाईकोर्ट का नोटिस है,
11: हाईकोर्ट का नोटिस निकला है गिरिबाला को गिरिबाला की गिरफ्तारी।
0: अब ट्रिशा का ससुराल सवालों के घेरे में, जिसमें सास की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो। और विशेष में अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ होंगे फौरन हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
1: After multiple assassination attempts, they can't even get...
2: They're reliable.
3: Always when I need them.
0: To live sports action.
4: One-hand jam by LeBron on the break.
5: That's another three, Steph Curry.
0: And your favorite music.
6: Well, the dawn begins to crack.
0: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads, and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
9: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
10: अरे भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, anybody can dream.
9: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
11: Breathable fabrics, awesome comfort, effortless style, AD from the house of Arvind.
12: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
13: इसमें माइक्रोफाइबर है।
12: माइक्रोफाइबर यानी
13: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
12: हमारे सीमेंट में नहीं है,
13: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
14: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
15: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
16: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
17: समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था, नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 403 विधानसभाओं के संगठन को बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके। समाजवादी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में मजबूत है, पीडीए मजबूत है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है। इसलिए आने वाले समय में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को, बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
18: समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही दल 403 की 403 विधानसभाओं पर अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चाहे किसी का चुनाव चिन्ह कोई भी हो, वहां से लड़े तो उसे दूसरे दल के संगठन का लाभ मिल सके। निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।
19: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: पिशा मौत मिस्ट्री पर आपने देखा विशेष, अब आगे देखिए अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। वैश्विक हालात के साथ आपसी साझेदारी पर बात। ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को दिया गया व्हाइट हाउस आने का न्योता। बंगाल में बकरीद की छुट्टी में एक दिन की कटौती। शुभेंदु सरकार ने 26 और 27 की जगह 28 मई को अवकाश देने का किया फैसला। आधिकारिक सूचना जारी।

गाजियाबाद और मेरठ से एक एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड, अखिलेश ने बताया महाविद्युत आपदा। बीजेपी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा को नई जिम्मेदारी, संसद के पिटिशन कमेटी के बनाए गए अध्यक्ष, सरकार को सुझाव देना आयोग का अहम काम। विशाख केस में आरोपी समर सिंह को 7 दिनों की पुलिस रिमांड, सामने आई मौत वाली जगह की तस्वीर, दूसरे पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली से एम्स की टीम रवाना।

0: वायरलेस पे मैसेज दे दो।
1: तो चीता का लोकेशन सर लंका तलैया से 100 मीटर्स की दूरी पर सर।
0: बता देना कितने टीम लगेगा, अभी लोकेशन कहाँ है?
2: कैसे ले लीजिए आप लेफ्ट से ले लीजिए।
3: गाड़ी चली जाएगी अंदर
4: सर, इधर से जा सकती है सर।
0: चीता यहाँ से आसपास ही है,
5: कई बार बहुत पास होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है।
6: नहीं नहीं चलते चलो चलते चलो, वो जो
4: चलते रहो यार, चल जाएंगे चीते निकल जाएंगे।
0: तेरा यहाँ से राइट ले लिया
4: है,
6: सामने लेपट लेपट लेपट लेपट।
7: सामने खड़ा सर यहाँ।
0: हाँ तुम बैक
6: कहाँ पर, कहाँ पर मूव कर रहे
7: हैं? मूव कर रहे हैं सर आगे।
0: हाँ हाँ हल्के हल्के चलो तुम जरा।
6: पता रखना है
7: मूव कर रहे हैं
6: कि वो कहाँ
7: सामने
6: किधर इधर मूव कर रहा है,
0: दिखा तुमको
7: सामने
0: दिख रहा है क्या इतिश
7: पूरे सामने जा रहे हैं। देखो सब झुक के देखो जी फिर
6: हाँ। अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ इसको कहते हैं गोल्ड माइन। एक ढूंढने निकले थे, दो साथ में मिल रहे हैं।

इंसानों की बनाई सबसे खूबसूरत बस्ती से ज्यादा अद्भुत होते हैं ऊपर वाले के बनाए ये जंगल। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। आज एक अद्भुत कहानी सुनाने के लिए हम आपको मध्य प्रदेश लेकर आए हैं, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क। जी, पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस आकार के एक मैमल को किसी जगह पर पुनर्स्थापित किया गया हो। एक चीते की कहानी नहीं है, एक समूचे देश के संघर्ष और उसकी सफलता की कहानी है जो आज कूनो से हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दरअसल अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो यहां पर आपको अलग अलग प्रजातियों के जो बिग कैट्स होते हैं वो दिखते हैं। कुल दुनिया में होते हैं 7। भारत इकलौता वो देश है जहां पर 5 बिग कैट्स हैं। बब्बर शेर हमारे पास है, बाघ हमारे पास है, हमारे पास है तेंदुआ, हमारे पास है स्नो लेपर्ड और अब हमारे पास है चीता। किस तरीके से 7.5 दशकों के बाद चीता की वापसी भारत में हुई है कूनो नेशनल पार्क से, आज वो पूरी कहानी आपको हम सुनाएंगे।

0: चीता दुनिया का सबसे तेज शिकारी, जिसकी रफ्तार ही उसकी सबसे अद्भुत ताकत है।
1: चीता एक बहुत ही अद्भुत वन्य प्राणी है। पूरे भारत में केवल कुनो नेशनल पार्क में चीता है।
2: सबसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, जैसे ओपन स्पेस उसको अगर मिल जाए और जानवर जितने दूर में भी हो, मतलब तुरंत उसको जो है वो पीछे दौड़ा के उसको पकड़ लेता है।
0: चीता, जिसको इससे पहले भारत के खुले जंगलों में 70 सालों में कभी नहीं देखा गया,
3: सिर्फ एक स्पीशीज की वापसी नहीं है, ये हमारी नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज जो है उसकी वापसी है।
0: चीता, जिसकी भारत में मौजूदगी गवाह है दुनिया के सबसे अकल्पनीय वन्य जीव प्रयोग की।
3: पहला इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है बड़े मैमल का, आज तक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।
0: हम निकले उसी अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय चीते को देखने। पहली बार दुनिया का कोई न्यूज चैनल भारत के इन चीतों के बिल्कुल नजदीक पहुंचा। दिल थाम के देखिए, बिल्कुल करीब से देखिए, सिर्फ 10 मीटर की दूरी से हम आपको भारत में चीतों की अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय तस्वीरें दिखाएंगे। हम पहुंचे उस जगह जहां दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा और सबसे सफल वन्य जीव प्रोजेक्ट चलाया गया, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क, यानी वो जगह है जहां पर अफ्रीका के खुले सवाना से चीतों को लाकर बसाया गया। हम आपको उन नन्हे शावकों की अद्भुत तस्वीर दिखाएंगे। चीतों की अविश्वसनीय रफ्तार दिखाएंगे। विदेश से आई अफ्रीकी बिल्लियों का देसी कनेक्शन दिखाएंगे। ये चीते इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि अफ्रीका से लाने के बाद इन चीतों में से ही 33 चीतों ने भारत में जन्म लिया है। चीते अद्भुत इसलिए भी हैं क्योंकि जंगल में उनको देख पाना बेहद मुश्किल माना जाता है। इनकी कोई तय दिनचर्या नहीं होती, ये लगातार इधर उधर भटकते रहते हैं, जिससे इनको ढूंढना लगभग असंभव हो जाता है। चीता सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम का इंजन माना जाता है। चीते के आने से घास के मैदानों का संतुलन बेहतर होता है, शिकार की संख्या नियंत्रित रहती है और जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी मजबूत होती है। आसान भाषा में कहें तो चीता जंगल का फिटनेस ट्रेनर है। जहां चीता स्वस्थ रहता है वहां का इकोसिस्टम भी स्वस्थ माना जाता है।
4: सूरज की स्थिति को देखकर आप समय का अंदाजा अभी लगा सकते हैं। अभी 6 नहीं बजे हैं और जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री इस समय भी हो चुका है। गर्मी जैसे जैसे दिन में और आगे बढ़ेगी, चुनौतियां सबके लिए बढ़ेंगी।
0: हम कूनों के चीतों की तलाश में सुबह सुबह ही निकल पड़े। गर्मी तेज थी लेकिन सुबह के वक्त तापमान में थोड़ी राहत रहती है और यही समय जंगली जानवरों के निकलने का भी होता है। कुनो नेशनल पार्क में सूखे साल और खैर के पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं। इन्हीं जंगलों के बीच से हमारी जिप्सी चली जा रही थी। कहीं पेड़ों से घिरे चौड़े रास्ते, कभी संकरी पगडंडियां।
4: ये कुनो नेशनल पार्क जो है, ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स हैं, सूखे जंगल हैं। आप यहाँ के पेड़ों को देखकर ही समझ सकते हैं, बहुत कांटेदार पेड़ यहाँ पर हैं। इस पूरे जंगल को, इस रिजर्व क्षेत्र को आइडियल माना गया जब चीतों को एक बार फिर भारत लाने के प्रयास की शुरुआत हुई। और देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पर वो ढले भी हैं, पानी के हिसाब से यहाँ पर कूनो नदी भी बहती है, और जो बाकी हिस्से हैं जहाँ तक नदी का पानी नहीं जा सकता है वहाँ तक पानी ले जाने की व्यवस्था, पानी ले जाने की कोशिशें यहाँ जो वन विभाग है उसकी तरफ से भी की जाती हैं। लेकिन जैसा पूरा क्षेत्र यहाँ पर देखते हैं मैदानी ना, क्योंकि चीते दौड़कर अपने प्रे को पकड़ते हैं, अपने शिकार पर झपट्टा मारते हैं, तो ये पूरा विस्तार ऐसा ही इन जंगलों का रहता है। दरअसल काफी रिसर्च, सैटेलाइट मैपिंग और अध्ययन के बाद कूनो को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ का जंगल, जलवायु और शिकार अफ्रीकी चीता के स्वभाव से काफी मेल खाते हैं। कूनो में घास के मैदान, खुला वन क्षेत्र और झाड़ियाँ बड़ी संख्या में हैं। और चीता घने जंगल का शिकारी नहीं होता, उसे तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए खुला इलाका चाहिए होता है। कूनो ने चीते के लिए यही इलाका मुहैया कराया।
3: मैं उत्तम कुमार शर्मा हूं, मैं वर्तमान में फील्ड डायरेक्टर चीता प्रोजेक्ट हूं मध्य प्रदेश में, और लगभग 4 सालों से चीता प्रोजेक्ट अंतर्गत कूनो के डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहा हूं।
4: जो पूरा इसका क्षेत्र है वो कितना क्षेत्र है और इस समय कितने चीते यहां पर हैं?
3: हमारे यहाँ पे 53 चीते भारतवर्ष में हैं, 53 में से 50 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं, और 3 चीते हमने पिछले साल गांधी सागर सेंचुरी, जो दूसरी चीता इंट्रोडक्शन साइट है, वहाँ हमने शिफ्ट किए हैं, और 16 चीते खुले जंगलों में घूम रहे हैं। कूनो का क्षेत्रफल जो है वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान का 748 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर कूनो वाइल्ड लाइफ डिवीजन हम देखें तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बफर क्षेत्र भी जुड़ जाता है, तो टोटल मिलके करीबन 1800 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल क्षेत्र जो मेरे अंडर आज की तारीख में है। लेकिन अगर हम चीतों का मूवमेंट देखें जो पिछले 1.5 साल में हमने देखा है कि खुले जंगलों में, तो जो आसपास का जंगल है, शिवपुर जिले का है, शिवपुरी जिले का है, ग्वालियर का है, मुरैना का है, और इवन राजस्थान भी चीते जो है वहाँ भी आ जा रहे हैं, तो इस प्रकार से 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का क्षेत्र वो कवर कर रहे हैं।
4: चीतों को जंगल में देखना मुश्किल होता है, वो एक जगह नहीं रहते, ना अपना इलाका मार्क करते हैं, फिर उनका रंग भी ऐसा है कि सूखे जंगल में वो ऐसे छिप जाते हैं कि आसानी से नजर नहीं आते। उनको ढूंढने के लिए जरूरत होती है ट्रैकर्स की, इसीलिए सबसे पहले हम वन विभाग की ट्रैकर्स टीम के पास जा पहुंचे। पेट्रोलिंग कैंप बरेड घाट, और सर नमस्ते, आप लोग यहीं पे आप लोगों की तैनाती रहती है?
5: जी,
4: यहाँ पे चीता तो अब आया है, यहाँ पर वैसे कौन कौन से जानवर है?
5: चीता अभी आए हैं, तेंदुआ भी हैं, लकड़बग्गा भी हैं, भालू भी हैं, और
4: बाकी चीतल वगैरह तो
5: बहुत हैं, नील गाय भी हैं, सावर भी हैं, और अन्य और भी हैं बहुत हैं।
4: आपको सब कितना समय इधर?
6: मुझे यहाँ पे कूनो में 2017 से पोस्टेड हूँ मैं।
4: अच्छा।
6: और मैं मुझे कार्य करने का मौका 2.5 साल से मिला है। ये जब से चीता आए हैं उसके बाद में।
4: अच्छा, और आप सर?
7: मैं
4: यहीं से हैं,
7: यहीं
4: का रहने वाले हैं, तो यहाँ के रहने वाले हैं। आपके यहाँ पर चीता आ गया तो अच्छा लगा? अच्छा लगा कि चीता आ गया। ये आपको, आप लोग क्या पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं टाइम टाइम पे? तो वो जो कहा जा रहा है कि एक आर्म्ड जो एक आर्मी मैन साथ में लेके, तो वो ये वो टीम है जिससे मैं मुलाकात कर रही हूँ, तो आप लोग बता सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि चीता कहाँ पर स्पॉटिंग उसकी हुई है ताकि हम लोग को मतलब कैमरे के लिए विजुअल्स मिल पाए?
6: हम लोग
5: कम्युनिकेशन में हम रखते
6: हैं,
5: कम्युनिकेशन जैसे सेट पे कम्युनिकेशन होता है, जैसे जानकारी मिलती है उस तरीके से अपन उसी आधार पर चलते हैं।
4: तो एक बार चेक कीजिए ना कहीं से जानकारी आ रही हो तो।
6: मोबाइल 2 रिपोर्ट ओवर सर। सर एनिमल की लोकेशन सर आपके नॉलेज में है?
8: गाड़ी के नीचे है, ट्रैकिंग टीम से 100 मीटर दूर।
6: जी सर।
4: अच्छा
6: जी,
4: यहाँ पर यहाँ से कितनी दूर होगा? अब हम गाड़ी में सवार होके जा सकते हैं यहाँ से जिप्सी में?
6: जी
4: ठीक है, थैंक यू।

0: मैं अमृतांशु सिंह, यहाँ कोनो में एसडीओ फॉरेस्ट के हैसियत से काम कर रहा हूँ।
1: ये क्या इक्विपमेंट है और किस तरीके से ये काम करता है?
0: जी, ये एक टेलोनिक्स TR-8 रेडियो रिसीवर है। ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है।
1: हाँ।
0: ये डायरेक्शनल एंटीना है, एच टाइप कोलैप्सिबल। आप देखेंगे इसमें जो एंटीना है ये नॉन ब्रेकेबल है, स्प्रिंग शेप्ड है।
1: हाँ।
0: और ये हमारा रिसीवर डिवाइस है। ये डायरेक्शनल इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें गेन और बीप आता है, सिग्नल स्ट्रेंथ आता है।
1: हाँ।
0: जिस भी डायरेक्शन में चीता होगा, चीता के कॉलर में एक एमिटर लगा हुआ होता है।
1: हाँ।
0: वो एमिटर हर एक सेकंड में एक बीप देता है।
1: अच्छा।
0: ये उसको कैप्चर करता है।
1: ठीक है।
0: अगर चीता इस डायरेक्शन में तो बीप की स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी।
1: हाँ।
0: हम थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो बीप की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी।
1: ओके।
0: तो ऐसे हमें पता चलता है सभी डायरेक्शंस में चीता का डायरेक्शन कहाँ है।
1: इसकी सबसे बड़ी जरूरत क्यों है?
0: अभी हमारे पास एनिमल्स का नंबर काफी कम है, तो हमने सभी जो भी एनिमल्स छोड़े हुए हैं, एडल्ट्स हैं जो बाहर हम ट्रैक कर रहे हैं, उनके गले में कॉलर लगाया हुआ है।
1: हाँ।
0: जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, इस ट्रैकिंग की, इंटेंसिव ट्रैकिंग की जरूरत कम होती जाएगी।
1: तो अभी जैसे अगर हम इससे कहें तो कितना सिग्नल मिल रहा है?
0: अभी एक्चुअली एनिमल हमारी रेंज में नहीं है।
1: हाँ, और इसीलिए हम जमीन पर भी खड़े हैं, वरना आप जब फॉरेस्ट के एरिया में, बिल्कुल उस एरिया में होते हैं जहां पर चीते हैं, तो वहां पर आप केवल अपनी गाड़ी में सवार होते हैं।
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो लेकिन इसका इस्तेमाल करके आप हमें हेल्प करेंगे चीता स्पॉट करने में?
0: बिल्कुल, आइए।
1: चलिए। खामोश जंगल के बीच हमारी जिप्सी आगे बढ़ चली
2: किस तरफ जाना है?
3: लंका दलिया से कितने दूर पे है?
0: देयर आर 100 मीटर्स इनसाइड द फॉरेस्ट सर फ्रॉम द रोड सर, राइट हैंड साइड। जी सर, अप्रोचेबल है।
1: जहां ट्रैकर्स को सबसे ज्यादा सिग्नल्स मिल रहे थे, हमारी गाड़ी जंगल के उस इलाके में आगे बढ़ गई।
4: ठीक है, ठीक, फिर ऐसे राइट ले लिया।
1: जंगल में चीता दिखना किस्मत और धैर्य दोनों का खेल होता है। अधिकतर वन्य जीव इंसानों की आहट से सतर्क हो जाते हैं और छिप जाते हैं, इसीलिए सफारी में इंतजार ही सबसे बड़ा रोमांच है। हम भी एक जगह पहुंचकर इंतजार करने लगे।
5: सामने देखा था सर, या तो ये नाले में चल गया है, कहीं ये बैठ गया है।
6: जब एक एक्सपर्ट शिकारी होता है, उसे ढूंढ निकालना उतना ही मुश्किल होता है। अब यहाँ पर एक मूवमेंट की बात हो रही है और इसी एरिया में जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार है, लेकिन फिलहाल हम उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहां पर वो चीता हो सकता है।
1: अच्छा, दिखा तुमको? दिखा हितेश? अच्छा, हाँ। ये जो आप डायरेक्शनल एंटीना देख रहे हैं, इसके जरिए जो चीतों को रेडियो कॉलर्स हैं उनके जरिए ट्रैक किया जा सकता है। बहुत बड़ी अहमियत इसकी होती है। उसी के साथ अभी ट्रैक किया जा रहा है। बहुत ज़रूरत इसलिए होती है कि आपको ये पता करना है, पता रखना है कि वो कहाँ,
5: सामने,
6: किधर, इधर मूव कर रहा है।
5: सामने, सामने पेड़ों के सामने।
6: चलिए चलिए, वो वहां पर हम इस समय चीता को देख सकते हैं, लेकिन यहां से
1: और फिर हमको दिखाई दिया इस सफारी का सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दृश्य। हमारी आंखों के सामने दुनिया का सबसे तेज शिकारी था, चीता, शिकार करके सुस्ताता हुआ। पहली बार टीवी पर भारत के जंगलों में चीता, लेकिन सिर्फ एक नहीं, पीछे थी उसकी बहन।

0: ये हमारी लक की शुरुआत हो गई है, क्योंकि बोत्सवाना से जिन चीतों को इस साल लाया गया था और कुनू नेशनल पार्क में आज़ाद जो फॉरेस्ट का एरिया है, खुले फॉरेस्ट का एरिया है, वहाँ पर छोड़ा गया है, उनमें से एक मादा चीता ये है इस समय, वो हमारी तरफ ही देख रही है। आप जंगल के भीतर न केवल उन्हें बचाने की चुनौती बल्कि उनके लिए भी चुनौतियों को समझिए। ये दो मादा चीतों का यहाँ पर मूवमेंट बताया गया था, जिनमें से एक को हम इस समय देख रहे हैं, और हमें ये बताया जा रहा है कि ये दोनों बहनें हैं। सर, दोनों बहनें हैं, ये दो बहनें हैं जो कि बोत्सवाना से आई हैं और यहाँ पर कुनू नेशनल पार्क में खुले जंगल में इस समय आप देख रहे हैं। यहाँ पर अपना चेहरा उसने काफ़ी देर तक साफ किया है, और ये देखिए दूसरी जो है वो भी अब उठ खड़ी हुई है, दूसरी मादा चीता जो है वो भी खड़ी हो गई है, और एक के पीछे एक दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं। मुमकिन है कि कुछ देर पहले एक शिकार किया हो इसने, क्योंकि अपना चेहरा, हाथ, पेट भरा हुआ एक तो दिख रहा है, दूसरा वो अपने पंजों को साफ करते हुए, अपने चेहरे को साफ करते हुए यहाँ पर बैठकर कर रही थी। इसको कहते हैं गोल्ड माइन। एक ढूंढने निकले थे, दो साथ में मिल रहे हैं।
1: बोत्सवाना से फरवरी 2026 में 9 चीते कुनू लाए गए। इन दो बहनों को हाल ही में खुले जंगल में छोड़ा गया था। अफ्रीका का बोत्सवाना दुनिया में सबसे बड़ी चीता आबादी वाले देशों में गिना जाता है। दरअसल भारत सरकार कई अफ्रीकी देशों के साथ चीता ट्रांसलोकेशन पर काम कर रही है। 17 सितंबर 2022 को नमीबिया से 8 चीते भारत के कुनू लाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी।
0: इन चीतों को कई चरण में यहां पर आखिरकार रिलोकेट किया जाएगा। अभी आपको भले ही देखकर ये लगे कि ये कहीं कोई चिड़ियाघर का पिंजड़ा तो नहीं है, तो नहीं, ये चंद समय के लिए रहने वाला है, वरना यहां पर कई किलोमीटर लंबा एक पूरा इलाका इन 8 चीतों के नाम किया गया है। ताज़ा ताज़ा पहुँचे हैं नमीबिया से, अब समझिए कि एक लंबे सफ़र का असर आप लोगों पर क्या होता है। तो कुछ वैसा ही असर इन सब पर है। अधिकतर समय ये अलसा रहे हैं, लेटे हुए हैं, अनमने से दिख रहे हैं, कुछ कुछ शायद नींद में भी होंगे। 8,500 किलोमीटर का सफ़र कोई छोटा सफ़र तो होता नहीं है, और इनकी उम्र भी इतनी नहीं है कि इन सारी चीज़ों को अभी वो अपने उस हिसाब से समझ पाए।
1: इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से भी चीते भारत लाए गए। इन चीतों को विशेष कार्गो विमान के जरिए भारत लाया गया। भारत पहुंचने के बाद उन्हें सीधे पार्क में बने क्वारंटीन बाड़ों में रखा गया। यात्रा के दौरान चीतों की सेहत पर लगातार डॉक्टरों और विशेषज्ञों की निगरानी रखी गई। भारत में चीते की वापसी को वन्य जीव संरक्षण के इतिहास का सबसे बड़ा और साहसिक प्रयोग कहा जा रहा है।

0: पहुंचे। फिर 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से तीसरा बड़ा दल भारत पहुंचा। इसमें 9 चीते शामिल थे जिनमें 6 मादा और 3 नर थे। बावन में भारत से चीते शिकार के चलते विलुप्त हो गए थे। तब ये छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में ज्यादा पाए जाते थे। उसके बाद से अब कूनों में चीता की सफल वापसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मानी जाती है। इस वक्त कूनों के जंगलों में 53 चीते हैं, जिनमें से 33 चीते भारत में ही जन्मे हैं, यानी 33 चीते शुद्ध तौर पर जन्म से भारतीय हैं। ये इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जंगल में कई शिकारी होने की वजह से चीतों के बच्चों का सर्वाइवल रेट यानी जिंदा रहने का दर बहुत कम होता है। ऐसे में 33 बच्चों का जन्म लेना और जिंदा रहना अद्भुत है।
1: भविष्य के लिए भी कुछ एक चैलेंज है कि चीता हमारे वाइल्ड में स्थापित हो जाए। जो शुरुआती चैलेंज जो प्रोजेक्ट में हम लोग मानते थे, लिस्ट आउट करते थे, वो ये कि जब आए तो एक जो चीता की मृत्यु दर है वो एक निश्चित सीमा के अंदर रहे। चीता जो है वो सबको ये पता था कि लॉस होगा चीता में, लेकिन एक निर्धारित सीमा के अंदर हो, तो वो हमने इंश्योर किया। दूसरी चिंता ये थी कि इनकी ब्रीडिंग होगी कि नहीं होगी, उसके बारे में भी बहुत एप्रीहेंशन था, क्योंकि चीता बड़ा पुअर ब्रीडर माना जाता है, स्पेशली जब कैप्टिविटी में या इनक्लोज स्पेस में रखते हैं तो बड़ा पुअर ब्रीडर माना जाता है। लेकिन उसमें भी हमको बड़ी अच्छी सफलता मिली, और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि आज हमारे यहाँ पे 33 भारत में जन्मे हुए बच्चे हैं।
2: अच्छा,
1: जो 3.5 साल के चीता के इतिहास में मुझे नहीं लगता
2: सिटीजन है वो।
1: हाँ, मुझे नहीं लगता है कि कहीं और इस प्रकार की सफलता प्राप्त हुई।
0: चीतों को एक देश से दूसरे देश में लाकर बसाना आसान नहीं है, इसमें कई चुनौतियां भी हैं।
3: मेरा नाम यश बंधु है, मैं यहाँ पर वन परिषद अधिकारी पालपुर पश्चिम के पद पर पदस्थ हूँ, और मैं यहाँ पर लगभग 4 साल से काम कर रहा हूँ चीता प्रोजेक्ट के अंदर।
2: यहाँ पर प्रोटेक्शन कितना बड़ा एक इशू है जिसको आप लोग एड्रेस करते हैं?
3: लाइक बिफोर चीता प्रोजेक्ट, यहाँ पे मेन जो पर कैपिटा गन ओनरशिप है वो बहुत ज्यादा है।
2: अच्छा,
3: चंबल का हाँ। जो ये पार्ट रहा है पुराना, जो लेगेसी है उस हिसाब से, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा समस्या ज्यादा थी। तो हमने शुरुआत से जब चीता प्रोजेक्ट है उससे पहले से ही हमने सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद में जो सघन गश्ती के रूप में हमने शुरुआत से फुट पेट्रोलिंग पर ज़्यादा जोर दिया है इसके।
2: अच्छा,
3: में तो उसके बाद में हमारा जो स्टाफ है वो कम से कम 4 के पेयर में, जिसमें एक वन रक्षक होता है, एक आर्म्ड एक्स सर्विस जो हम एक्स आर्मी पर्सनल को हायर करते हैं, वो आर्म्ड होते हैं उनकी पर्सनल कंसर्न सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, वो रहते हैं, और 2 चौकीदार रहते हैं। ये चीता आने के बाद में प्रोटेक्शन एज ए होल हमारा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहा है, अपार्ट फ्रॉम चीता मॉनिटरिंग तो है ही, और उसके साथ में प्रोटेक्शन वॉज वेरी बिग इशू, और जिसको हमने बहुत अच्छे से एड्रेस किया। इसी वजह से अभी जो कूनों में आप अभी देखेंगे कि आपको चीतल की डेंसिटी भी बहुत अच्छी दिखेगी, आपको दूसरे हर्बीवोर्स भी दिखेंगे। हमने पानी के पॉइंट्स भी बहुत बढ़ाए हैं।
4: भावनात्मक रूप से हमारे कूनों के बाहर भी चीता जाता है, तो हमारे चीता मित्र भी सहयोग करते हैं, स्थानीय लोग भी सहयोग करते हैं, और सभी का जुड़ाव है। और ये जो प्रजाति हमारे यहाँ से विलुप्त हो गई है उसके कंजर्वेशन के लिए हम लगातार प्रयास रहते हैं।
0: खैर, उधर हमारी बोत्सवाना सिस्टर्स जा चुकी थी और हम भी आगे बढ़ गए थे।
5: राइट ले लिया है।
0: हमारी गाड़ी थोड़ी ही दूर बढ़ी थी कि हमको कुछ हिरण दिखाई दिए। हिरणों का कूनों में दिखना आम बात है। ये सांभर थे जो अलार्म कॉल दे रहे थे। अलार्म कॉल एक हिरण तब करता है जब उसको जान का खतरा महसूस होता है। हमारे साथ बैठे वन विभाग को अंदेशा था कि आसपास तेंदुआ हो सकता है।
6: अरे आगे गाड़ी के आगे कोई लेपर्ड है, अलार्म कॉल चीतल की आ रही है, हमें लगता
2: अच्छा,
6: है कि
2: अच्छा।
6: आसपास ही हमारे
2: को सामने लेपर्ड लेपर्ड लेपर्ड लेपर्ड।
0: उनका ये कहना ही था कि एक तेंदुआ सूरज की रोशनी में सोने जैसा चमका हुआ हमें दिखाई दिया।
2: आगे आगे वो पानी पीने के लिए जा रहा है।
0: हालांकि हमारे पहुंचने की वजह से सांभर जान बचाकर भाग चुके थे।
5: कूनों में जो एपेक्स प्लेट

0: लेपर्ड है, यहाँ पे टाइगर नहीं है, तो लेपर्ड यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, तो उनकी संख्या काफी अच्छी है। चीता भी लेपर्ड के बीच में रहना सीख रहा है। मेरे ख्याल से दोनों के बीच में कोई ऐसा मेजर कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों के ऐसे ध्यान में नहीं है।
1: अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा या धीरे धीरे?
0: चीता सामान्यतः चीता का जो व्यवहार होता है वो लड़ाई करने वाला नहीं होता है, वो हम जिसे कहते हैं कि वो फ्लाइट रेदर देन फाइट, वैसा बिहेवियर चीता का रहता है। वो अगर कोई अपने से बड़ा कार्निवर देखता है जिसमें वो लेपर्ड को भी बड़ा कार्निवर समझता है तो नॉर्मली साइड से चला जाता है।
1: और कोनों में एम्पल है, मतलब जो खाना दोनों के लिए उपलब्ध है?
0: दोनों के लिए खाना उपलब्ध है, कुनों में प्रे डेंसिटी अच्छी है। हाँ। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि ये प्रे डेंसिटी जो है वो बढ़े।
1: अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो साइज किसका बड़ा होता है, चीता का या तेंदुए का?
0: तेंदुआ वजन में थोड़ा ज्यादा है, जैसे तेंदुए औसत नर तेंदुए का वजन 65-70 किलो हम मान सकते हैं
1: मोर,
0: जबकि औसत नर चीता का वजन 60-65, तो 5-10 किलोग्राम का अंतर होता है वजन। ऊंचाई में जैसे चीता थोड़ा सा लेपर्ड से ज्यादा ऊंचा होता है, लेकिन आप दोनों की बनावट में अगर देखेंगे तो चीता थोड़ा सा स्लिम ट्रिम आपको दिखेगा, ऊंचा टांगे ऊंची होती हैं, हाइट में ऊंचा है। लेपर्ड जो है थोड़ा स्टर्डी दिखेगा, मसल मास ज्यादा लेपर्ड में देखने को दूर से देखने को।
2: बहरहाल इस बीच ट्रैकर्स को दूसरे चीते के पास होने के अलर्ट भी मिल रहे थे।
3: 100 मीटर इनसाइड द फॉरेस्ट है फ्रॉम द रोड।
4: राइट साइड पे?
3: राइट हैंड साइड।
2: और हमने अपनी जिप्सी सिग्नल की दिशा में दौड़ा दी, क्योंकि हमारा मन दो चीते देखने के बाद भी नहीं भरा था। हमारी किस्मत अच्छी थी, ट्रैकिंग टीम की मदद से हमने एक और चीते को लोकेट कर लिया।
1: भर पेट खाना खाने के बाद ये हल्की इतनी गर्मी है कि जिस पेड़ में उसको छांव मिल गई है थोड़ी सी, वहाँ पर आंखें बंद हैं लेकिन सर उठा के हमारी ही तरफ देख रही है। पर एक्चुअली जिस तरीके से वन विभाग यहाँ पर लगा हुआ है, एक एक चीता किस तरीके से जी रहा है, किस तरीके से उसका पूरा दिन चल रहा है, हर एक बात को ट्रैक करके रखना और ये सुनिश्चित करना कि भारत में अगर एक बार फिर चीते थ्राइव करने हैं, मतलब केवल यहाँ पर आकर उन्हें भूल नहीं जाना, एक एक ऐसा आयोजन नहीं होना कि अच्छा भारत में चीते ले आए गए हैं, बल्कि उन्हें उनके रख रखाव को अपना कर्तव्य मानकर दिन रात एक एक व्यक्ति इस काम में लगा रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर हो रही है, लेकिन उसके बीच भी आपको ये भी तो देखना है कि जिन्हें वापस आप अपने देश में लेकर आए हैं, अपने देश की माटी में, जो हम कहते हैं कि हम इकलौते देश हैं पूरी दुनिया में जिसके पास 5 बिग कैट हैं, तो उनमें ये चीता भी बड़े शान से शामिल है। और हमारी तो कितनी पुरानी कहानियाँ रही हैं जिनमें चीता उसका हिस्सा रहे हैं। ये अलग बात है कि शिकारियों के कारण, इनके शिकार के कारण धीरे धीरे होकर ये 50 के दशक में ही विलुप्त हो गए, लेकिन एक बार फिर अगर आए हैं तो पूरे देश का सपना पूरा करने का जिम्मा इस पूरे विभाग ने उठाया हुआ है।
2: हम चीते के बिल्कुल पास थे, फिर भी हमारे मन में एक सवाल था कि शेर बाघ चीते गाड़ियों पर हमले क्यों नहीं करते?
0: नहीं, वो जब तक हम गाड़ी में रहते हैं ना तो गाड़ी को वो एक यूनिट समझता है जानवर, चाहे टाइगर हो लेपर्ड हो या वो, तो गाड़ी में इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं करता कि कितने लोग हैं, ये लोग हैं वो लोग, तो गाड़ी को एक बड़ी यूनिट मान के वो चलता है। इस वजह से गाड़ी से दूर,
1: गाड़ी उसका खाना नहीं है, खाना उसका नहीं, शिकार नहीं है,
0: और बड़ी भी है उससे साइज में, तो उस वजह से वो कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप जमीन पर पैर रखेंगे तो उसे पता चलता है कि कोई इंडिविजुअल है, तो वो फिर आपके लिए भी खतरा है और जानवर को भी डरता है उससे।
1: एक चीता, जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि जिस पोज में यहाँ पर सो रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो जागा हुआ है, उसका सर उठा हुआ लेकिन आंखें बंद, लेकिन इस समय वो विश्राम कर रहा है, सोने की स्थिति में है। ऐसी ही बहुत सारी दिलचस्प जानकारियाँ चीते के बारे में है जो शायद आपको ना पता हूँ।

0: बिग कैट फैमिली यानी जंगली बिल्लियों का परिवार है। इस परिवार में 7 बड़ी जंगली बिल्लियां शामिल हैं। शेर, बाघ, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा, स्नो लेपर्ड और चीता। ये सभी जानवर एक दूसरे से वजन, पंजे, दांत, बाइट, फोर्स और रफ्तार के आधार पर अलग हैं। शेर और बाघ का वजन सबसे ज्यादा होता है। तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, प्यूमा और जगुआर पेड़ों पर चढ़ना जानते हैं, लेकिन जब बात आती है रफ्तार की तो चीते से अकल्पनीय रफ्तार किसी की भी नहीं होती।
1: मेरा नाम त्रिकुरल है। मैं पिछले 2.5 साल से यहाँ कूनो में डिप्टी डायरेक्टर कूनो के रूप में काम कर रहा हूँ।
0: चीता एक प्रेडेटर के रूप में क्या उसकी सबसे फियर्स कैरेक्टरिस्टिक होती है?
1: चीता का सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट जो कहते हैं उसकी स्पीड है। चीता एक कोर्सिंग प्रेडेटर कहा जाता है कि जो सबसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल है।
0: एक उसकी अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज एक चीता कैसा होता है? उसकी लंबाई, उसका वेट, एक फुल ग्रोन अडल्ट चीता।
1: फुल ग्रोन अडल्ट मेन मेल हम कहते हैं वो सामान्यतः अराउंड 55 to 65 किलोस के बीच में होता है। अगर फीमेल्स की बात करें तो अराउंड 45 to 55 के बीच में होता है। सो मेल चीता जो चीता के वो सब वो सबसे तेज दौड़ने की वजह से जो है उसके बॉडी उस तरीके से डिजाइंड एरोडाइनेमिकली डिजाइंड है। हेड जो है उसके बहुत छोटा रहता है और उसके लिम्स बहुत लॉन्ग होता है और बॉडी बहुत स्लीक रहता है। और जो सबसे तेज जब जोड़ता है उसके टेल एक्ट्स एज़ अ रडर। अच्छा। जैसे उसके डायरेक्शन बदलने के लिए सबसे तेज दौड़ने के वक्त भी जो है उसको डायरेक्शन वो बदल सकता है। और उसके मेन अनदर डिफरेंस जो है बाकी जानवर को जैसे कार्निवोर्स को, टाइगर और लेपर्ड्स को जो है उसके नेल्स जो है पूरी रिट्रैक्टेबल होता है। हाँ। वो बाहर जो है आपके नेल्स दिखेंगे नहीं, बट चीता का नेल्स जो है सेमी रिट्रैक्टेबल होता है इन ऑर्डर टू गिव इट ग्रिप व्हाइल रनिंग।

0: सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। फुल स्पीड पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन उसमें स्टैमिना बहुत कम होता है। एक चीते की दौड़ मुश्किल से एक मिनट की ही होती है, या यूं कहें कि सिर्फ 200 से 300 मीटर फुल स्पीड पर दौड़ने के बाद ही चीता थक जाता है। अगर इतनी देर में चीते ने अपना शिकार पकड़ लिया तो ठीक, वरना उसको दोबारा शिकार करने में फिर काफी समय लगता है। एक बार शिकार के पीछे फुल स्पीड पर दौड़ने के बाद चीते को 30 मिनट का आराम चाहिए होता है। एक स्टडी कहती है कि चीते दिन भर में सिर्फ 12% समय ही घूमते फिरते हैं, ज्यादातर वो आराम करके अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। एक चीता जब फुल स्पीड में दौड़ता है तो एक छलांग में कम से कम 21 फीट की दूरी तय करता है, जिसमें सिर्फ 2 बार उसके पैर हल्के से जमीन को छूते हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि अपनी पूरी रफ्तार के दौरान एक चीता करीब करीब उड़ ही रहा होता है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन एक चीता इतनी तेज कैसे दौड़ लेता है? दरअसल उसकी लचीली रीढ़ की हड्डी स्ट्रेच होकर उनको लंबी स्ट्राइड देती है। एक चीते के पंजे दौड़ते वक्त उसी तरह जमीन को पकड़ते हैं जैसे फुटबॉल शूज के स्पाइक्स होते हैं। अपने पंजों की वजह से चीतों को इतनी तेज दौड़ने की ग्रिप मिलती है। उनकी लंबी मोटी पूंछ एक नाव की पतवार की तरह काम करती है, जिससे वो संतुलन बनाते हैं और जल्दी जल्दी दिशा बदल सकते हैं। इससे उनको अपने शिकार को पकड़ने में आसानी होती है। चीते के नथुने बड़े होते हैं जो उनकी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करते हैं। उनके फेफड़े और दिल भी बड़े होते हैं, जिससे रक्त का प्रवाह आराम से बना रहता है। वैसे बिग कैट फैमिली में होने के बावजूद चीते की एक और खासियत उसको अद्भुत बनाती है। क्या आप जानते हैं चीता दहाड़ नहीं सकता? शेर, बाघ और जगुआर जैसे बड़े शिकारी दहाड़ सकते हैं, लेकिन चीता बिल्ली की तरह म्याऊं, गुर्राहट और चिड़िया जैसी चहचहाने की आवाजें निकालता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे रोरिंग कैट समूह से अलग मानते हैं। चीता जंगल का सबसे फिट जानवर होता है, लेकिन यहाँ एक टीम ऐसी भी थी जिसकी जिम्मेदारी चीते को फिट रखने की है।
1: ये एक चीता रेस्क्यू व्हीकल है और इनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है जंगल के भीतर। आप लोग की अगर मैं जिम्मेदारी भूमिका समझना चाहूँ कूनो जंगल के अंदर तो क्या है?
2: देखिए, जैसा कि चीता एक प्रजाति है जो वापस से इंडिया में आई है, तो कोई एक प्रजाति इतने सालों बाद वापस आई है तो अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसको बचाने की, इसके संरक्षण की।
1: क्या क्या है, किन किन चीजों के साथ आप लोग चलते हैं?
2: बेसिक चीजें जो चीता के लिए इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए जो भी जरूरत है हमारे पास, ये बहुत ही लेटेस्ट इक्विपमेंट है, ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग डिलीवरी इक्विपमेंट्स बोलते हैं इसको। इसके साथ जो भी सपोर्टिंग एसेसरीज हैं, एनिमल के वाइटल पैरामीटर के जो वाइटल पैरामीटर मॉनिटरिंग करने के जो प्रोटोकॉल के तहत जो इक्विपमेंट यूज करे जाते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स हमारे उस व्हीकल में साथ में ही रहते हैं।
1: अच्छा।
2: और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशंस होती है उसको हेल्थ को लेके, तो उसको इंटरवीन करने के लिए भी इसमें हमारे पास कोल्ड पैक्स हैं, हॉट पैक्स हैं, फैन है, मतलब सारी चीजें जो बेसिक हम लोगों को इमीडिएट किसी भी लैंडस्केप में जाने का और उस एनिमल को रिलीफ देने के लिए जो भी जरूरत है वो पूरी हम लोग अपने साथ हमेशा रेडी टू मूव कंडीशन में, अलर्ट मोड में रहते हैं।
1: काफी मुश्किल रहा होगा वो सफर भी जब चीतों को अफ्रीका के उनके नेचुरल हैबिटेट से लेकर यहाँ लाया गया था, आप उस समय से जुड़े हैं?
2: बिल्कुल, काफी काफी किसी भी एनिमल के लिए अगर एक लैंडस्केप से दूसरे लैंडस्केप में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसके लिए नया प्रेबेस, नया हैबिटेट, नया एक तरह से उसको पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम वहाँ का समझने में एक टाइम लगता है। तो उस इकोसिस्टम के साथ एडजस्ट करने के लिए हम लोगों को उनके साथ लगातार उनकी मॉनिटरिंग करना पड़ता है 24/7, उनको कंटिन्यूस ट्रैक करके उस एनिमल के स्टेटस को हम लोग अपने विजिलेंट रखते हैं कि हमारे एनिमल को किसी भी तरीके का स्ट्रेस क्रिएट ना हो। और जब स्ट्रेस क्रिएट नहीं होता उस हैबिटेट के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, एनिमल अपने आप परफॉर्म करने लग जाता है।
1: कमिटमेंट, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन फॉर चीता। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं?
3: जी मैं यही पास में गाँव है, ग्राम मोरावन, वहीं का रहने वाला।
1: अच्छा, यहीं के। और चीता यहाँ पर आया है अब
3: जी मैम,
1: कैसा आपको महसूस होता
3: बहुत
1: है?
3: अच्छा महसूस होता है मैम, रोजगार मिला है, बढ़िया हमारा सब चल रहा है, चीते को देखते हैं, टूरिस्ट भी बढ़ रहा है गांव में, विकास भी हो रहा है।
1: यहाँ पर आप लोग सारी चीजों के साथ जब भी चीते को अगर किसी तरह की दिक्कत है उसके लिए आप लोग तैनात रहते हैं, तो इसके लिए भी तो ट्रेनिंग हुई होगी ना, कि मन से डर निकला होगा?
4: सर ने हमें 1-1.5 साल हो गए जब से ट्रेनिंग दिया है, तब से हमें सब काम आने लगा है मैम, और थोड़ी मोड़ी जो भी है सर, अभी अब सर से हमें और भी सीखना है।
1: तो चीतों को पहचानते हैं आप अंदर जितने हैं?
4: हाँ जी।
0: डॉक्टरों के सामने बड़ा सवाल होता है कि चीता किस हाल में है, ये कैसे पता करे, तो ये काम करता है रेडियो कॉलर।
1: उनों में चीतों को स्थापित करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। आप कैसे जिनको दूसरे देशों से लाया गया यहाँ पर, उनको पहले क्वारंटीन करके उसके बाद एक उससे बड़े बाड़े में और उसके बाद आज़ाद जंगल में घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनको एक रेडियो कॉलर लगा रहता है, उस रेडियो कॉलर की अहमियत बड़ी होती है।
0: जंगल में छोड़े गए चीते पर नजर रखना आसान नहीं होता, यही वजह है कि वन्य जीव विशेषज्ञ चीते के गले में रेडियो कॉलर लगाते हैं। ये कॉलर चीते की लोकेशन, गतिविधि और स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखने का सबसे अहम जरिया होता है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें जीपीएस और सैटेलाइट आधारित ट्रांसमीटर लगा होता है। ये समय समय पर चीते की लोकेशन सिग्नल के रूप में कंट्रोल रूम तक भेजता रहता है। रेडियो कॉलर ये बताता है कि चीता नए जंगल में कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कितना घूम रहा है। अगर चीता बीमार हो जाए, घायल हो जाए या लंबे समय तक एक जगह पड़ा रहे तो टीम तुरंत अलर्ट हो जाती है। इससे यह भी समझ आता है कि चीता जंगल में खुद को कितनी अच्छी तरह ढाल पा रहा है। अगर चीता गांव या आबादी की तरफ बढ़े तो टीम पहले से सतर्क हो जाती है, और इंसानों और चीतों में संघर्ष ना हो इसके लिए आसपास के गांव के लोगों को चीता मित्र जागरूक करते रहते हैं।
5: जैसे ही कि गांव वालों के मन में रहता है कि हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो हमारा मेन काम यही है कि हमें उन लोगों को समझाना है कि हमारा चीता हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और अगर हम
1: चीता नहीं नुकसान पहुंचाता है कुछ भी,
5: हम चीता नहीं नुकसान पहुंचाता, और हमारे पास जंगल से लगी आदिवासी बस्तियां, जनजातीय क्षेत्र है, तो हमने कई बार कैंपिंग के माध्यम से और कविताओं के माध्यम से कई बार हमने कैंपिंग और जागरण अभियान चलाया। हमने लोकल में, आपने एक चीज पे गौर किया होगा मैम, आपको कभी भी ये घटना आपके संज्ञान में नहीं आई होगी कि कूनों में कभी शिकार हुआ है, तो ये चीता मित्रों के विशेष उपलब्धि आपके सामने यही है।
6: चीता आने से कूनों में इको टूरिज्म बढ़ा है, जिसे आज युवा गाइड्स, नेचुरलिस्ट और कई सफारी गाइड्स भी हैं। तो मैम आप कूनों आइए, इसमें इंडिया के जो फर्स्ट रीइंट्रोड्यूस हुआ है चीता, वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपको लेपर्ड, स्लॉथ बियर, काफी सारे हर्बीवोरस एनिमल एंड काफी अच्छी रिवर है जिसके नाम पर ये कूनों का नाम रखा गया है, एंड ट्रीज, लैंडस्केप, माउंटेन्स, रिवर्स, 200+ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स भी है इधर, माइग्रेटरी एंड रेसिडेंसी। सो आप इधर आइए।
0: कूनो नेशनल पार्क में जिंदगी गुजारता, सांस लेता चीता सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि भारत की खोई हुई विरासत की वापसी है। 7 दशक बाद जंगल में दोबारा गूंजती सबसे तेज शिकारी की आहट। कूनो आज सिर्फ जंगल नहीं बल्कि उम्मीद, संरक्षण और प्रकृति के पुनर्जन्म की कहानी बन चुका है। हमारी सफारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन बिग कैट फैमिली के दूसरे सदस्यों को देखने की तमन्ना अभी भी हमारे दिल में थी।
1: कैमरे में तो हमेशा के लिए ये तस्वीर कैद हो गई, लेकिन चीता हमेशा के लिए भारत की जमीन पर रहे, ये सबका उत्तरदायित्व हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई एक प्राणी विलुप्त होता है इस पृथ्वी की सुंदरता थोड़ी सी खत्म हो जाती है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में अभी के लिए इतना ही। मोहम्मद अनस जुबैर और कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: कूल फैंस से घर को सजाएं।
2: कूल फैंस बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
1: कूल फैंस घर की शान बढ़ाएं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
3: भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
2: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
4: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
8: जेके वॉल मैक्स।
6: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।
13: आगे आगे,
14: अरे उधर उधर गया।
13: करेक्ट करेक्ट,
15: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: यार
17: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
16: इसमें माइक्रो फाइबर है।
17: माइक्रो फाइबर यानी
16: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
17: हमारे सीमेंट में नहीं है,
16: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
18: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
19: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
20: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
21: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
22: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1,00,000 तक जीत सकते हैं।
23: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
24: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
25: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
24: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
26: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
27: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
28: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: आगे आगे,
1: अरे उधर
0: उधर किधर,
1: करेक्ट करेक्ट,
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: यार
2: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है.
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
5: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है.
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें.

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबा केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
4: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: देश ऐतिहासिक बिजली संकट के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ सरकार है जो कहती है कि कोई कमी नहीं है, सब चंगा सी, दूसरी ओर विपक्षी नेता है जो इस संकट को महाविद्युत आपदा कह रहे हैं। इसमें तीसरा पक्ष है, कानपुर से लखनऊ और रायबरेली तक के बीजेपी विधायकों का, जो कहते हैं कि बिजली बहुत कट रही है। और चौथा पक्ष है वो जनता जो इन सबको झेल रही है। बिजली कटौती से नाराज यूपी की जनता कहीं पावर हाउस पर धावा बोल देती है तो कहीं बिजली कर्मियों पर गुस्सा उतार रही है। कानपुर, मेरठ, लखनऊ, हापुड़ में तो लोग रात को सड़कों पर उतर गए। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने लिखा कि इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार है। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। अखिलेश के पोस्ट पर एके शर्मा ने लिखा कि आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दिखाया करो। एके शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। बिजली के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया भिड़ गए। अखिलेश यादव ने लिखा है कि सच तो यह है कि बीजेपी सरकार ने बिजली व्यवस्था को ठप कर दिया है। इस पर एके शर्मा ने लिखा कि आपके कार्यकाल से दोगुना उपभोक्ता आज यूपी में है। अखिलेश ने लिखा कि नई मांग की पूर्ति के लिए यूपी में कोई पावर प्लांट नहीं बना। इस पर एके शर्मा ने लिखा कि प्रयागराज के बेजा में 3x800 मेगावाट के प्लांट को मंजूरी मिली है। अखिलेश ने लिखा कि ट्रांसमिशन के लिए नई व्यवस्था नहीं दी गई। इस पर जवाब आया कि समाजवादी पार्टी कार्यकाल की तुलना में योगी शासन में बिजली ट्रांसमिशन में 6 गुना की वृद्धि हुई है। यूपी सरकार के मंत्री लाख दावे करें कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सब चंगा सी, लेकिन आज की हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। आज तक ब्यूरो।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, बहस बाजीगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बीजेपी की सरकारें हिंदुत्व की पिच पर चलती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन बंगाल की जीत ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की राजनीति का एक नया तेवर, नया कलेवर, नया आत्मविश्वास दिया है। और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है, पहले तो आपका परिचय यहाँ पर मौजूद जो युवा आए हैं उनसे करा देते हैं। तालियों के साथ सबसे पहले स्वागत कीजिए यहाँ पर नीले गमछे के साथ जो लोग मौजूद हैं। ये मोशन के खिलाफ लोग हैं तो इन्होंने नीला गमछा पहना हुआ है, और जो सफेद वाले हैं बहसबाजी कर, जो हमारे दर्शक हमेशा देखते हैं, वो जानते हैं कि ये लोग शांति प्रिय, मोक्ष प्राप्त, बहुत ही सिद्ध पुरुष और महिलाएं बैठी हुई हैं, तो उनको तो कोई उस पर राय ही नहीं है। ये फिर लाल वाले, इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये लाल वाले ये मानते हैं वो मोशन के पक्ष में है। तो आज का मोशन क्या है, बंगाल के पॉलिटिक्स और बंगाल के चुनावी नतीजों की बात क्यों हो रही है? बंगाल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है उत्तर प्रदेश में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से ही हिंदुत्व की पिच कर खुलकर बैटिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आज का मोशन हमने ये रखा है क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखिए, एक तरफ वो हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो सबसे बड़े दावेदार हैं, अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो अखिलेश यादव है। अब अखिलेश यादव का दाव क्या है? उनका दाव है पीडीए, जिसमें पी से वो पिछड़े कहते हैं, डी से दलित कहते हैं, ए से उन्होंने पता नहीं क्या किया है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो अल्पसंख्यकों के लिए है, कुछ कहते हैं आधी आबादी के लिए, कुछ कहते हैं अगड़े के लिए भी है, लेकिन कुल मिलाकर लड़ाई एक तरफ अगर योगी आदित्यनाथ 80-20 की कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब 95-5 की बात कर रहे हैं। अब इसमें 95 कौन है, 5 कौन है, ये हम आप पर छोड़ते हैं और जनता पर छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आज का मोशन बताते हैं। आज बहस बाजीगर का मोशन है कि आप बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में फिर से हिंदुत्व कार्ड चलेगा, ये आज का मोशन है। आप लोग भी अपनी राय इस पर रख सकते हैं। जो नीले गमछे वाले हैं, आपके लिए तमाम पार्टिसिपेंट्स को सुनने के बाद ये मौका रहेगा कि आप सफेद या लाल गमछा ले सकते हैं, और आप उनको बुलाइएगा अपनी तरफ। लाल गमछे वालों के पास ऑप्शन है कि आप सफेद या नीला लेकर उधर जा सकते हैं, तो आप उनको बुलाइएगा। फिर हम अंत में वोटिंग कराएंगे, जिससे पता चलेगा इस मोशन पर जनता की क्या राय है। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर बैठे हैं, वो भी QR कोड स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, आप उसे स्कैन करके अपना वोट इस विषय पर डाल सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं पहले अपने तीनों जजेस का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए कुर्बान अली साहब का, वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। मुझे लगता है कि कुर्बान जी पहली बार आ रहे हैं। और तीन ताल के तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्या बात है। हमारे ताऊ का जो पंचलाइन रहता है ना, उसके लिए पूरा देश इंतजार करता है, एकदम गजब। आज इन्होंने लकीरधारी शर्ट पहनी हुई है, देखते हैं
1: इतनी सारी लकीरें खींच रहे हैं लोग,
0: भगवाधारी कौन साबित होता है। सर, मैं आपके कपड़े के रंग पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि वो कौन सा रंग है। चलिए तालियों के साथ अपने पहले दो वक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आलोक शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अपनी पार्टी को फायरी अंदाज में डिफेंड करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, माथे पर टीका और दिल में बीजेपी लिए घूमते हैं, पेशे से एक वक्त पर पत्रकार थे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब अगले दो पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं। मनोज काका, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमेशा सफेद धारण करते हैं और अपनी पार्टी का, और अब तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहित कुमार सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, बहुत स्वागत है सर आपका। और अब आखिरी दो पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं। भाई तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। शादाब चौहान आगे चल रहे हैं, नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, और मोहम्मद फैज खान साहब आ गए हैं जो कि कन्वीनर है MRM के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरा नारा वारा लगवाते हुए आ रहे हैं, पहले से माहौल बना रहे हैं अपना, फैज खान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हमारे तमाम दर्शक जानते हैं कि इसमें तरीका क्या है। ये रोज की किचकिच और लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसमें डेढ़ डेढ़ मिनट का समय सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा और बाद में फिर एक मिनट का रिबाटल टाइम होगा। एक एक सवाल हम तीनों हिस्सों से लेंगे, लाल, सफेद और नीला, उसका भी वो जवाब देंगे। जजेस भी बीच में जब चाहे वो इंटरजेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्रेम शुक्ला और आलोक शर्मा का। आ जाइए। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों बोलना शुरू करें और डेढ़ डेढ़ मिनट के लिए अपनी बात रखें, जल्दी से आपको एक छोटी सी रिपोर्ट इस पर दिखा देते हैं।
2: आज की बहस का मकसद और आधार बना है राजनीति का हिंदुत्व फैक्टर। जैसे ही बंगाल में बीजेपी का हिंदू कार्ड सफल हुआ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सतर्क हो गए और अपनी रणनीति में जबरदस्त बदलाव किया है। भगवा खेमे को लगता है कि हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव उन्होंने कहा, उसे जनता ने स्वीकार कर लिया है। अब इसी फॉर्मूले को यूपी में और धार दी जा रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व के सबसे बड़े और सबसे असरदार चेहरों में से एक हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए के भरोसे नहीं हैं, बल्कि वो खुलकर रामचरितमानस और सनातन परंपरा की बात कर रहे हैं और हनुमान जी को याद कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का आजमाया हुआ नए कलेवर वाला हिंदुत्व है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए प्लस सॉफ्ट हिंदुत्व। इसीलिए आज हम पूछेंगे कि क्या बंगाल की तरह यूपी में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा।
0: आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डिबेट का समय शुरू होता है और प्रेम शुक्ला जी इस मोशन पर बोलने का कि क्या बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा, आपका समय शुरू होता है अब।
3: हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक प्राण है, ऐसे में बंगाल के बाद चलेगा या यहाँ चलेगा ये कहने की बजाय हम जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे, हमारे लिए चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा वैचारिक प्रतिष्ठान जो है, वैचारिक अधिष्ठान जो है, वो हिंदुत्व के प्रति स्पष्ट तौर पर है। और हिंदुत्व के नाम पर 1990 के दशक में महाराष्ट्र में हमारे जो लोग चुनाव जीत कर आए थे विधानसभा, कांग्रेस के लोगों ने उसमें जो है निर्वाचन याचिकाएं लगाकर हिंदुत्व के आधार पर चुनावों को रद्द किया था। और उसी पर जस्टिस जेएस वर्मा का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, मनोहर जोशी बनाम पाटिल के मामले में, उसमें बाकायदा ये कहा गया कि हिंदुत्व भारत की जीवन शैली है और हिंदुत्व को जो है सिर्फ एक पंथ या संप्रदाय मानना गलत है। तो भारत की जीवन शैली को त्याग कर तो हम कुछ करने वाले नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी हिंदुत्व तो चलना ही चलना है। अगर कोई कहेगा कि गाय काटना हमारा अधिकार है, तो गायों की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हम निश्चित तौर पर परचम लहराने में जरा सा भी संकोच नहीं करेंगे, ये हम तय है। कोई भी हम इसमें किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए। जब बंगाल में मुस्लिम तुष्टिकरण की अति हो गई तो उसका परिणाम बंगाल की जनता ने दे दिया है।
0: समय समाप्त हुआ, जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन है, अपना पिच पर ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं यहाँ पर, इस हिस्से में देखते हैं क्या है। आलोक शर्मा जी, आपके लिए इस मोशन के खिलाफ बोलने का डेढ़ मिनट का समय शुरू होता है अब।
4: हम गाय से शुरू कर लेते हैं। गोवा में बूचड़खाने खुलवाएंगे सरकारी, असम के मुख्यमंत्री इनके कहेंगे कि साहब घर में छुप के खा लेना, बाहर मत खाना। ये दोहरा चरित्र इनका है, हिंदुत्व या हिंदू और मुस्लिम करना इनकी प्राण वायु है। चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे लड़ा जाए, ये केवल देश को हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहते हैं। इनका ना हिंदुत्व से कोई लेना देना है, ना हिंदुओं से कोई लेना देना है, ना राष्ट्रवाद से कोई लेना देना है। नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला 97% बच्चे हिंदू थे। जिस तरह से बंगाल में इन्होंने किया उसमें हिंदुत्व का तो प्लास्टर चढ़ाते हैं, अंदर जो ईंटें लगती हैं वो इलेक्शन कमीशन लगाता है। हिंदुत्व के नाम पर हाथरस की बच्ची क्या न्याय पा पाई? कल ही फैसला आया है कि हिंदुत्व के नाम पर बड़े बड़े भाषण तो दिए गए लेकिन उस बच्ची के बलात्कारी कल सब छूट कर चले गए। नीट के एग्जाम में पांच बच्चों ने सुसाइड किया नीट के एग्जाम के बाद। पांचों के पांचों हिंदू हैं और इन हिंदुत्व नकली हिंदुत्ववादी वालों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। मुझे केवल ये लगता है कि कुंभ हो चाहे पटना की घटना हो, याद होगा कि किस तरह से नोएडा में एक बच्चा मर गया था, उसको पानी में डूब कर मरा, वो भी हिंदू था, इनकी तरफ से एक एक्शन नहीं हुआ। हिंदुत्व तो इनके लिए चुनाव की प्राणवायु है, इसके अलावा कुछ नहीं।
0: जबरदस्त, दोनों तरफ से ओपनिंग बैचलर ने जबरदस्त पारी खेली है। कोई सवाल, कोई प्रश्न आप लोगों का जिससे दोनों से? हाँ
5: प्रेम जी, मेरा एक सवाल।
0: हाँ, जी,
5: आपने कहा कि हिंदुत्व तो भारतीय जनता पार्टी की प्राणवायु है, भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 को हुआ था
3: जी,
5: और उस वक्त जब जो प्राणवायु बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने, गांधीवादी समाजवाद, हिंदुत्व शब्द कहीं था ही नहीं उनके।
3: तो गांधी भी तो रामराज की संकल्पना की बात करते थे, और राम क्या है?
5: हिंदुत्व की,
3: गांधीवादी समाजवाद की मैं बात करूं तो महात्मा गांधी भी रामराज की ही बात करते थे, तो रामराज तो हिंदुत्व का ही अंग है।
5: नहीं, मैं तो पूरा सवाल हो जाने प्रभु। तो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने जब पार्टी बनाई तो उन्होंने गांधीवादी समाजवाद को आदर्श माना और दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मानववाद को। ये हिंदुत्व तो राम मंदिर आंदोलन बाद से शुरू हुआ है, तो प्राणवायु तो गांधीवादी समाजवाद होगा ना?
3: ये तो नहीं, तो जनसंघ के जमाने से हिंदुत्व हमारी प्राणवायु है। उस समय भी जो है हम अनुच्छेद 370 की बात करते तो हिंदुत्व की बात थी, हम समान नागरिक संहिता की बात करते तो हिंदुत्व की बात थी, तो हम तब से कर रहे हैं। 1980 तो बहुत बात की बात है।
0: राम मंदिर आंदोलन तो आडवाणी जी ने ही किया।
4: छोटी सी बात,
0: कोई सवाल अगर इनसे भी हो।
1: आलोक जी से एक सवाल मेरा है। प्रश्न ये है कि क्या बंगाल की तरह यूपी में फिर से हिंदुत्व का कार्ड चलेगा? उनका कहना है कि वो हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे। आपसे सवाल है कि क्या वो चलेगा, और नहीं चले इसके लिए आप क्या करेंगे?
4: देखिए, अगर हिंदुत्व का कार्ड खेलकर ही चुनाव जीतना है तो हार तो पहले ही गए। इसका मतलब 12 साल 13 साल से सरकार में, केंद्र में जो बैठे हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उनका एक ही हथियार है, हिंदू मुसलमान करो, भारत पाकिस्तान करो, इसके अलावा कुछ मत करो। कार्ड नहीं चलता है, आज युवा जाग रहा है। दुर्भाग्य यह है उस कार्ड को चलाने में इलेक्शन कमीशन मदद करता है। अभी हमारे साथी ने कहा यूसीसी, अगर यूसीसी से इतना ही लगाव है तो 12 साल से आपकी सरकार केंद्र में है, एक प्राइवेट मेंबर बिल भी संसद में आज तक क्यों नहीं आया है? जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो न्यायालय से सॉल्व नहीं हो सकता है, ये तो आस्था से जुड़ा हुआ विषय। फिर जब जैसे ही सत्ता में आए, 303 सांसद आए, एक बिल नहीं लेकर आए गए राम मंदिर के लिए संसद में। अगर इतनी ही आत्मा थी, इतनी ही जागृत हो रही थी तो एक बिल ले आते भाई। फिर हमारी भाषा बोलने लगे कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, अब जो न्यायालय कहेगा उसको हम मानेंगे। अरे भाई, वो तो कांग्रेस भी कह रही थी, केवल हिंदुत्व के नाम पर रोटी कैसे बने, तवा कैसे गर्म हो, ये धंधा है इनका और कुछ नहीं। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि नीट के पेपर और एनटीए वालों ने, जिन्होंने 22 लाख बच्चों के साथ पिछले 3 साल से गबन किया है, उनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी चलेगा।
0: चलिए प्रेम शुक्ला जी, कुछ बुलडोजर उधर डाइवर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, ठीक है ना? चलेगा, ठीक है, चलिएगा, हम लोग इंतजार करेंगे। अब बोल दिया शुक्ला जी ने, चलेगा बुलडोजर, चलेगा। चलिए आइए, तालियों के साथ स्वागत कीजिए अगले दो पार्टिसिपेंट्स का, रोहित कुमार सिंह और मनोज काका। आइए, आप दोनों को भी डेढ़ डेढ़ मिनट का समय मिलेगा, विषय पर बोलने का आपका डेढ़ मिनट का समय। माइक उठाकर शुरू होता है अब।
6: देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म ये दोनों भारत के मूल आत्मा से जुड़ा हुआ है, प्रभु राम के समय से, भगवान कृष्ण के समय से। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष आज भारत की आत्मा के खिलाफ खड़ा है, हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ खड़ा है, हिंदुस्तान की आत्मा के खिलाफ खड़ा है। 7 नवंबर 1966 की घटना इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को याद है, किस प्रकार से देश की राजधानी की सड़कों पर गौ भक्तों को, गौ संरक्षकों को दौड़ा दौड़ा करके तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने गोलियां चलवाई थी, उनका नरसंहार हुआ था, उनको किरासन तेल छिड़क करके ही जलवा दिया गया था एक तरह से, और नृशंस हत्या हुआ था चारों तरफ। और उसके बाद इस देश में किस प्रकार से हिंदू विचारधारा से संबद्ध लोगों के मन में जागृति आई और लगातार कांग्रेस पार्टी का पतन होना प्रारंभ हो गया। इस देश में आप हिंदुत्व की विचारधारा को समाप्त नहीं कर सकते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित हैं, प्रभावित हैं, जुड़े हुए हैं। भगवान राम के राम राज्य के दर्शन की चर्चा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा वैश्विक स्तर पर है। राम जी के शासन को उत्तम शासन माना जाता है, राम जी के शासन से बेहतर शासन आज तक इस देश में नहीं आया, और लगातार आज देश में जो उन्नति हो रही है, जो देश की जनता ने 2014 में, 2019 में, 2024 में व्यापक जनसमर्थन सरकार को दिया है, वो राम राज्य के दर्शन को चरितार्थ करने के कारण दिया है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिडिल ऑर्डर भी मजबूती के साथ बैटिंग कर रहा है। अब आपका मनोज काका जी, डेढ़ मिनट का इस विषय पर बोलने का कि क्या बंगाल की तरह यूपी में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा। आपका समय डेढ़ मिनट का शुरू होता है अब।
7: देखिए, वो जो बात है कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो ये देश हिंदुइज्म से चलेगा, ये देश किस से चलेगा, उससे बहुत नितांत आवश्यक है कि ये देश बाबा साहब के बनाए संविधान से चलेगा। और जब बाबा साहब के बनाए गए संविधान से देश चलेगा, तो इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और जो अभी गांधी की बात हुई, जो गांधी की अवधारणा थी, जो डॉक्टर लोहिया की अवधारणा थी, जो बाबा साहब की अवधारणा थी, सब धर्म सुरक्षित तभी होगा जब ये देश संविधान के प्रस्तावना से चलेगा। और संविधान के हमारे प्रस्तावना में ये बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह धर्म, यह देश एक धर्म निरपेक्ष देश है, और सभी को अपने धर्म, उपासना, विश्वास की उसका प्रचार करने का, उसका बढ़ाने का पूरा हक है। और जो लोग हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, इस देश में किसी भी राज्य में 720 किसान हिंदू शहीद हुआ। इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुओं के बीच में है। नीट का पेपर 22 से 25 लाख युवाओं के, और 5 जो छात्र आत्महत्या कर लिए, वो सब हिंदू हैं। आज सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदू है। आज सबसे ज्यादा अगर तकलीफें पेट्रोल पंप के लाइन में और गैस सिलेंडर के लाइन में अगर कोई है, वो मेलोडी चॉकलेट से उसका काम नहीं चल रहा है, उसको गैस सिलेंडर चाहिए, उसको तेल चाहिए, वो है नहीं। तो आज जो लोग, और इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे हिंदू धर्म के आदर्श थे, रामचरितमानस में क्या कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा।
0: समय समाप्त हुआ। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गजब, एकदम मिडिल ऑर्डर दोनों तरफ से। कोई सवाल आप लोगों के? एक सवाल मेरा है मनोज काका जी, जरा बता दीजिए कि 80-20 योगी जी करते हैं, अखिलेश जी ने कहा है 95-5, कौन से 5 है जिनका वो, जिनको वो अलग कर रहे हैं?
7: 95% वही हैं,
0: वो कह रहे
7: हैं हजारों साल से जिनको अपमानित किया गया है।
0: हाँ।
7: 95% वही हैं जिनके पीने से तालाब का पानी गंदा हो जाता है, जो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते, जो मुख्यमंत्री तो रह सकते हैं लेकिन उनके उनके रहने से घर गंदा हो जाता है, जो मंदिर में नहीं जा सकते, मंदिर का दूध उनके घर से आएगा, गाय उनके घर पाली जाती है लेकिन वो मंदिर में नहीं जा सकते।
0: तो उनके 5% कौन है? पूछा था, पूरी दुनिया घुमा दिया। 95
6: बहुजन लोग हैं, 5 में परिवार, आजमगढ़, मैनपुरी, समझ गए ना? बदायूं और कोई नहीं, और आइए, आज बहुजन की बात हो रही है। 1995 में लखनऊ में राजस्थान में बहन मायावती की हत्या की साजिश किसने रची? कौन लोग थे?
7: बहन मायावती को आज बर्बाद किसने किया?
6: आज बाबा साहब अंबेडकर की याद आ रही है। अंबेडकर जी को भारत रत्न किस सरकार ने दिया, जिसको भारतीय जनता पार्टी 1989 में समर्थन कर रही थी?
7: अंबेडकर जी को सबसे ज्यादा अपमानित किया किसने किया?
6: कौन दिया?
7: अंबेडकर जी को आर्थिक
6: और बीजेपी के समर्थन की सरकार ने
7: आया करो
6: दी की नहीं दी?
7: अंबेडकर जी की आर्थिक किसने निकाला?
0: 1949 सही में बोलते हैं, लेकिन अब मुझे माइक लेना पड़ेगा,
6: कीजिएगा बिहार की है
0: क्योंकि देखिए
6: आप घर का थड़िया घरे का ना आदमी छीनेगा, दूसरा कौन छीनेगा?
0: ठीक है, माइक पे बोल दीजिए, घर का थरिया अच्छा लगा सुनने में, हम पकड़े हैं।
6: हमने कहा अंजना जी को कि घर के थरिया घरे के नुवाद में छीनी।
0: हाँ, छीनी। हाँ ठीक है, तो रुको, 95-5 कौन है?
7: ये मैंने बहुत बार
6: 5 में परिवार, 95 में उत्तर प्रदेश, जवाब रेडीमेड है जनता के जुबान पर।
1: अरे उनका माइक ले लें प्लीज, अंजना जी आपने माइक ले लिया था,
0: लेना ही पड़ेगा सर।
7: ये आपका मंच बहुत गंभीर है तो इसकी मर्यादा रखी जाए।
6: मैं चाहेगी तो मर्यादा ही खराब हो गया, बताइए तो। अब जनता के सम्मान को भी मर्यादित,
7: यहाँ कॉमेडी शो में आप नहीं आए हो, ताली लोग नाचने वालों पर भी बजाते हैं, जोकरों पर भी लोग ताली बजाते हैं, जोकरों पर भी लोग ताली बजाते हैं, जोकरों पर भी ताली बजाई जाती है।
6: जया बच्चन को नाचने वाला कह रहे हैं, अपने पार्टी की सांसद को महिला सांसद, इन्होंने हमको नाचने वाला, मतलब जो सर्कस कर रहा है नाचने वाला है, तो जया बच्चन जी सांसद राज्यसभा,
0: हो गया, अब हो गया, अब हो गया। चलिए,
7: किसी महिला
0: 95 कौन है, 5 कौन है, वो तो मत बोलिए। जया प्रदा के लिए क्या क्या बोला गया है सबको पता, मत जाइए उधर, मत जाइए, हम कह रहे हैं आपके लिए मुश्किल होगी। 95 कौन है, 5 कौन है?
7: देखिए फिर मैं कह रहा हूँ कि 95 वही है जो सदियों से, जो हजारों सालों से जिसके साथ भेद 95 वही है जिसके साथ भेदभाव,
0: समझ गए,
7: पांच वही है जिसे संविधान पसंद नहीं है, जिसे समता पसंद नहीं है, जिसे मनुवाद पसंद है, जो चाहता है कि जो बहुजन वर्ग है वो उसके उसके वो करे, उसकी दास्ता करे, वो संविधान को न माने, वही
6: राजनारायण कौन थे,
7: 5% वही लोग हैं जो जो 95% को मानव के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि पशु के दृष्टिकोण से देखते हैं।
6: सिंह कौन थे, रामजीवन सिंह कौन थे, जिन लोगों ने अपनी पीढ़ियों को कुर्बान कर दिया देश में,
7: जो लोग भी थे
6: समाजवादी आंदोलन,
7: जो लोग भी थे बहादुर लोग थे,
6: उनकी जाति
7: तुम्हारी करके यार यहाँ शाम को यहाँ सुबह यहाँ दोपहर यहाँ करने वाले लोग नहीं थे,
6: वो जो लोग भी थे तो समाजवाद नहीं होता, चलेश्वर नहीं होते तो समाजवाद नहीं होता, टारगेट करके समाजवाद को नहीं जीवित कर सकते।
0: चलिए विनोद जी,
5: मनोज काका
0: अब एक साथ तीनों का,
5: आप जिस पार्टी से आते हैं, रामन मनोहर लोहिया उसके संस्थापक थे और इस देश में रामायण मेला की शुरुआत रामन मनोहर लोहिया ने की, तो आपको क्या आपत्ति है भाई, जब राम की बात अगर बीजेपी करती है, रामायण मेला लोहिया ने शुरू किया था, तो आपको क्या आपत्ति है, आप क्यों नहीं मतलब राम का नाम लेते हैं, क्या समस्या है आपको?
0: कुर्बान अली साहब,
8: संविधान की जो शपथ लेता है वो उसमें ना तो 80-20 होता है और ना 95-5 होता है, तो जिसने 100% की बात की है, शपथ ली है, उसको 100% के लिए ही काम करना चाहिए, और उसमें लेकिन दिक्कत तब होती है कि चुनाव लड़ने के वक्त तक तो आप 80-20 भी करते हैं, हिंदू मुसलमान भी करते हैं, और शपथ लेते ही आपके स्वर बदल जाते हैं कि हम सबके लिए हैं, सबका साथ और सबका विकास, तो ये मतभेद, ये भेद क्यों होता है, ये नहीं होना चाहिए, संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता।
0: पहले ये बोलेंगे, आपको बाद में देंगे,
7: देखिए जो सारा जो सवाल रहा, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, जो माननीयों का जो सवाल रहा कि आपको राम से कोई, राम हमारे आदर्श हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदर्श वही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेकर के और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम के चंदे से ही लूट कर ले, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदर्श नहीं है। 2 बजे रात में बेटी को जला देना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदर्श नहीं, और डॉक्टर लोहिया हमारे आदर्श थे, हमें रामायण से किसी ग्रंथों से कोई समस्या नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा धर्म को माना है, और सभी धर्मों को, जो हमारे संविधान की मान्यता है कि सभी धर्मों को इस देश में पलने फूलने और उसको अपने हिसाब से उसका पालन करने का अधिकार है, वही मान्यता समाजवादी।
0: चलिए ताली बजाइए भाई के लिए, इनका टाइमर लगाइए, रुकिए, आपका टाइमर बहुत जरूरी है भाई, 45 सेकंड का टाइमर दोनों के लिए था, आपके लिए भी शुरू हो रहा है।
6: सब बैरियर टूट जाएगा, ऐसा है देश में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और इस सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या जाति और धर्म पूछ के, रंग और लिंग पूछ के उसकी सुविधाएं जनता को दी जा रही है क्या? नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, एम्स, यूनिवर्सिटी, जो भी बन रहा है, क्या जाति और धर्म पूछ के सर्टिफिकेट सरकार निर्गत कर रही है क्या कि वीजा पासपोर्ट लेके आइएगा, जाति और धर्म का 95 और 5 के वर्गीकृत भाग में रहिएगा तभी आपको सुविधा लेने दिया जाएगा। 5 किलो अनाज अगर हिंदू पा रहा है तो मुसलमान भाई भी पा रहा है, सिख बहन पा रही है तो ईसाई माँ भी पा रही है कि नहीं पा रही है? यहाँ बेटा महतारी में कोई अंतर मोदी जी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल अंतर नहीं हो रहा है, विपक्ष में बैठे लोगों की।
0: समय समाप्त हुआ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समय मानने के लिए भी आपका बहुत बहुत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों अपनी जगह पर जा प्रस्थान कीजिए, आप लोग सांस लीजिए लंबी, और किसी का मन करे तो आप गमछा बदल सकते हैं। ये क्या हो रहा है भाई, इधर तो मामला एक तरफा हुए जा रहा है, अभी तो फैज खान उतरे भी नहीं है मैदान में, हैं? फैज खान साहब अभी आएंगे तब मामला और पलटेगा,
5: मतलब
0: हो गया। कितने लोगों ने लाल गमछा लिया बदल कर भैया, तुम समझ नहीं आ रहा, त्याग दिए गमछा, सफेद लोगे नीला, व्हाइट।

0: काटने या वोट जीतने?
1: किसका काटने?
0: वोट काटने
1: नहीं, किसका वोट काटने, वो तो है ही हमारा, हमारा उन्होंने ले रखा है।
0: क्या बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा? आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब।
1: नहीं, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में संविधान का कार्ड चलेगा। बिल्कुल, सबके अपने अपने धर्म हो सकते हैं, लेकिन सावरकर जी ने 1922 में हिंदुत्व की बात की थी, तो वो एक धर्म जाति की बात हो सकती है। और भारत की पहचान को अगर कोई एक धर्म की पहचान समझता है, एक धर्म की आस्था, भारत की आस्था समझता है, मैं समझता हूं कि वो भारत की मूल भावना को समझता ही नहीं है। भावनाएं भड़का करके क्या हासिल किया जा सकता है? दूसरी बात यह है कि जो लोग बात करते हैं राम राज्य की और कहते हैं कि हिंदुत्व का कार्ड है, क्या जहां नीट का पेपर लीक हो जाए ये हिंदुत्व का कार्ड है? जहां पर बच्चों को रोजगार नहीं है, महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, उसको आप कहते हैं कि हिंदुत्व का कार्ड है? जहां कार्ड खेलने की जरूरत पड़ती हो, समझ लीजिए कि सरकारें 12-14 साल से कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ लड़ाने का कार्य कर रही है। यह बात स्पष्ट है कि इस बार न्याय का कार्ड चलेगा, और उस न्याय के कार्ड में हर उस व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा कि चाहे आपका जाति धर्म संप्रदाय कुछ भी है, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा जो आपकी बात नहीं करते हैं। रही बात धर्म की, संविधान का अनुच्छेद 25 यह सुनिश्चित करता है कि अगर आप हिंदू हैं तो अपने धर्म पे चले, मुसलमान है तो अपने पे चले। क्या नमाज रोक देने से हमारे नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, नीट के पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? कितने मुसलमान थे जो प्रभावित हुए होंगे उसमें? 97% बच्चों ने हिंदू हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है। इस देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है। अच्छा, ये बताइए कि नमाज के रोकने से क्या डॉलर नीचे आ जाएगा? तो कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। क्या हिंदुत्व का कार्ड खेलने से हमारे पेट्रोलियम की समस्या दूर हो जाएगी? क्या नोटबंदी के बाद जो कहा गया था आतंकवाद खत्म हुआ क्या? ये सब कुछ इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए करते हैं, और मुझे लगता है कि बंगाल में जो नंगा नाच हुआ उत्तर प्रदेश में नहीं।
0: जबरदस्त, दोनों तरफ से अपनी अपनी बात कही गई। कोई प्रश्न बताओ, मैं जनता से भी एक एक सवाल लूंगी।
2: जब आप ये कहते हैं कि नीट की परीक्षा में प्रभावित होने वाले छात्रों में 97% हिंदू थे, तो आप भी हिंदुत्व का कार्ड खेल देते हैं, और यही डिमांड है उनकी जो कार्ड खेलते हैं।
1: नहीं सर, हम उन लोगों को जवाब देते हैं जो कहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, उनको प्रॉब्लम ये दिखाते ना कि मुसलमान प्रॉब्लम है। असली हम उनको ये बताना चाहते हैं कि भाई आप मेरी नफरत के नाम पर आपके इश्यूज को डाइवर्ट किया जा रहा है, मेरे नाम की नफरत की दीवार लगा करके आपके बच्चों को रोजगार छीना जा रहा है, आप पर अपराध किया जा रहा है, आपकी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आपको डॉलर के नाम पर तमाम चीजों में महंगाई, आप देखिएगा आर्थिक सुनामी सामने खड़ी है, और इनको हिंदुत्व कार्ड की पड़ी है।
0: ठीक है, आप दोनों का कोई प्रश्न?
3: बस एक बात, अच्छा पूछ,
0: बोले बोले, नहीं उनके प्रश्न नहीं है।
3: मैं केवल यही कहना चाहता हूं, इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष इसीलिए है क्योंकि बेस में हिंदुत्व है। इस देश के जिस हिस्से के बेस से हिंदुत्व हटा, वो पाकिस्तान बन गया, वो बांग्लादेश बन गया।
1: यही कहूं, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इनको सांस नहीं आती। अगर ये लोग पाकिस्तान का नाम ना लें तो इनको सांस नहीं आती, इतनी मोहब्बत पाकिस्तान से। इसीलिए जिन्ना की मजार पे गए थे अडवाणी जी, हम कहते हैं पाकिस्तान के विचार को हम
4: पैरों भारत का अंग था, और आप लोगों की विचारधारा ने पाकिस्तान बना दिया, आप लोगों की विचारधारा ने बांग्लादेश बना दिया। याद रखिए, वो लोग भी आज इस बात को समझ रहे हैं, इसे पाकिस्तान के लाहौर का इस्लाम पूरा बन गया है,
0: बारी बारी बारी
4: बन गया है। क्योंकि उन्हें भी अपनी असलियत पता है कि भाई वास्तविकता यही है कि हिंदुत्व का बेस जब तक रहेगा तब तक धर्मनिरपेक्षता कायम रहेगी। अंजना जी, एक चैनल पर मुझसे पूछा गया कि मोदी जी गीता ही क्यों बांटते हैं, कुरान शरीफ और बाइबिल क्यों नहीं बांटते विदेशी प्रतिनिधियों को, तो मैंने उसके उत्तर में यह कहा कि कुरान शरीफ बांटने के लिए 57 मुस्लिम देश है, बाइबिल बांटने के लिए 125 ईसाई देश है, लेकिन गीता बांटने के लिए पूरी दुनिया में एक देश है, तो संभव नहीं। हिंदुस्तान इस देश का आधार है, हिंदुत्व।
0: छोटे हाँ,
5: मेरा सवाल है कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो हम क्यों हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हम क्यों हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मुस्लिम की बात नहीं कर पा रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हमें बात करनी चाहिए विकास की, युवा को चाहिए विकास की बातें। जिसकी नीट का पेपर लीक हो जाता है उसकी बात कोई नहीं कर पा रहा है। अब जैसे कि ओपोजिशन बात करता है कि 95 और 95 और जो 5% है 80-20 करता है, तो 80-20 को छोड़ के हम विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए।
0: एक सवाल इधर से।
6: मेरा सवाल सर से, सर आप हिंदुत्व को डिफाइन करिए कि आप क्या समझते हैं हिंदुत्व के बारे में, मुझे लग रहा है आप क्लैरिटी नहीं है उसमें थोड़ी सी।
0: शादाब चौहान से पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए ऑल इंडिया मुस्लिम मुस्लिमीन। रुके रुके रुके, अभी एक सवाल इधर से भी। नीला नीचा,
7: अगर हम 2024 का चुनाव देखें तो बीजेपी ने वो भी हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ा था, क्योंकि उस समय राम मंदिर बना था, तब तो आप एकदम पीक पे थे हिंदुत्व में, मगर कहीं ना कहीं ये देखा गया कि

0: पीडीए का फॉर्मूला हो या जातीय समीकरण हो, उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को काटा। तो अब 10 साल बाद जब आपकी एंटी इनकम्बेंसी होगी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे चरम पे होंगे, तो आपको लगता है कि जातीय समीकरण के मुद्दे और साथ में इन मुद्दों को आप हिंदुत्व के नाम पर टैकल कर पाएंगे?
1: ठीक है, छोटा सा आप दोनों जवाब दीजिए, उसके बाद से अपना रिपोर्टल राउंड शुरू।
2: मेरे भाई सावरकर साहब ने इस विचार को सामने रखा था और ये पॉलिटिकली आइडियोलॉजी है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये श्रीराम और तमाम जो धार्मिक आस्था उससे लेना देना है, तो बताइए क्या श्रीराम का राज ऐसा हो सकता है जहां पर वहां के नागरिकों के साथ भेदभाव हो, वहां की बेटियां सुरक्षित ना हो? क्या रामराज ऐसा हो सकता है? आप मुझे बताइए कि जहां पर महंगाई चरम सीमा पर हो और सरकारें काम ना करती हो, सिर्फ त्याग किसको करना है? आप पेट्रोल छोड़ दीजिए, आप चलना छोड़ दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी हवा में उड़ेंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं रामराज वो हो सकता है कि जहां तमाम लोगों के साथ भेदभाव ना हो, और यही भारत का संविधान कहता है।
1: हिंदुत्व की परिभाषा सुनी पूछी थी।
2: हिंदुत्व की परिभाषा है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारी मानेगा हम सुप्रीम होंगे, और आपको जो मुसलमान ईसाई, जैसा कि बंच ऑफ थॉट, एक किताब है बंच ऑफ थॉट, उसमें लिख रहा है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस कभी भी देश के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, यह हिंदुत्व है जिसके हम विरोधी हैं।
3: त्वा या नेस या इज्म, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिलोसफी का स्टूडेंट हूं, बहुत देर से विवाद हो रहा है यहां पे क्योंकि जज महोदय ने भी कह दिया। त्वा या इज्म या नेस, यानी कि हिंदू नेस, हिंदू इज्म या हिंदुत्व, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक वैसे ही रामराज जैसे शब्द आया, उसका इंग्लिश में अनुवाद गुड गवर्नेंस हो गया, हमने गुड गवर्नेंस से सुशासन कर लिया। मूल शब्द क्या था? रामराज। मूल शब्द हिंदुत्व है, वो किसी का भी प्राण जो नेस होता है ना, सार तत्व होता है, मैंने कहा मां का सार तत्व मातृत्व, यानी मातृत्व के बिना मां हो ही नहीं सकती, पितृत्व, पितृत्व के बिना पिता हो ही नहीं सकता, हिंदुत्व के बिना हिंदू हो ही नहीं सकता। कई सारे ऐसे हिंदू हैं जिनके अंदर हिंदुत्व नहीं है, तो उसे हिंदू नहीं माना जा सकता, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हिंदू माना जा सकता है क्योंकि उनके अंतर्गत हिंदुत्व है। भगनी निवेदिता को हिंदू माना जा सकता है क्योंकि उनके अंदर हिंदुत्व है। ममता बनर्जी को हिंदू नहीं माना जा सकता क्योंकि ब्राह्मण परिवार में ही पैदा होकर उनके अंतर्गत हिंदुत्व।
2: पहले हिंदू नहीं थे क्या? हिंदुत्व जो आया 1922 से पहले, अच्छा पहली बार कब इस्तेमाल किया गया मुझे बता दीजिए, उससे पहले सदियों से परंपरा है। सनातन धर्म क्या?
3: हिमालय हम सनातन धर्म है क्या? हिंदू
2: ये कह रहे हैं कि सावरकर जी जैसा कोई हो सुप्रीम है।
1: ताली बजा दीजिए, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, आप भी अपनी जगह पर जाइए। गजब, कमाल। रिबटल राउंड चलिए जल्दी शुरू करते। प्रेम शुक्ला जी बहुत धन्यवाद। प्रेम शुक्ला जी और आलोक शर्मा जी आइए जल्दी से रिबटल राउंड में, एक एक मिनट का समय मिलेगा और अब सवाल नहीं लिए जाएंगे। अब एक एक मिनट का फायरी रिबटल राउंड करते हैं जिसके बाद हम लोग बहस बाजीगर आज का चुनेंगे। आइए सर, चलिए प्रेम शुक्ला जी रिबटल राउंड में। बच्चों का उसका एक सवाल था कि जब पिछली बार काम नहीं किया आप 240 पर थे, इस बच्चे का था कि इसके बिना क्या होगा, नीट और ऐसे मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते हैं। आपका एक मिनट का रिबटल राउंड का समय शुरू होता है। अब
4: देखिए, हिंदुत्व की बात शुरू होते ही जो लोग जीत और हार तक सिर्फ सीमित करना चाहते हैं, इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। हम जीतते भी रहे हारते भी रहे, लेकिन हमारा हिंदुत्व प्राण है तो है। अब कोई कहेगा मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, तब उस समय जो है 12 लाख करोड़ रुपए लूट कर इटली पहुंचा दिए जाएंगे तब भी चलेगा, किसी मुसलमान को नहीं दिया गया। उस 12 लाख करोड़ में से किसी मुसलमान को कुछ नहीं मिला, लेकिन ये कहकर कि मुसलमानों का संसाधनों पर पहला अधिकार है, मुसलमानों को भरमाया जाता है, मुसलमानों को भरमाने की तुलना में हम कहते हैं कि जो कोई इस देश की संस्कृति के साथ एकनिष्ठ है, जो इस राष्ट्र को अपना राष्ट्र मानता है, हर कोई हिंदू है, हम उसको पंथ और संप्रदाय के भेद से ऊपर मानते हैं। अभी हमारे मोहम्मद फैज जी ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो सबसे बड़े हिंदू हैं, तो अब इसमें जो है मजहबी भेद लाते क्यों हैं? मजहबी भेद से ऊपर उठने की आवश्यकता है। हिंदुत्व जो है वो इस राष्ट्र की प्राणवायु है।
1: समय समाप्त हुआ। आलोक शर्मा जी आपका रिबटल राउंड का एक मिनट का समय शुरू होता है।
5: मजहबी रंग कौन लेकर आता है? जो 80-20 करता है, शमशान कब्रिस्तान करता है, मंगलसूत्र और भैंस खोल ले जाएंगे वो लोग करते हैं मजहबी बात, जो मुजरे की बात करते हैं। 12 लाख करोड़ ले गए वहां पर, इटली चले गए, मोदी जी ले तो आएंगे, अब गए मेलोनी के पास घूम ही रहे हैं, कुछ ना कुछ ले आएंगे उसमें से हिस्सा। भाषण देने से देश नहीं चलता है, दुर्भाग्य ये है कि 89 पेपर लीक हो जाए उस पर बात नहीं करेंगे। चंदा चोर भी आजकल हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राम मंदिर के वहां पर चारों तरफ की जमीनें लूट कर खा गए वो लोग भी बात कर रहे हैं, सरकारी बूचड़ खाने खुलवाते हैं वो भी हिंदुत्व की बात करते हैं, एससी एसटी और महिलाओं के ऊपर अत्याचार 50% बढ़ गया वो लोग राम राज्य की बात करते हैं, अयोध्या हारने के बाद भी इनको समझ नहीं आ रहा कि देश को क्या चाहिए। जय श्री राम का नारा लगाइए आप, जय सिया राम से आपने जय श्री राम ले आए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। क्या राम राज्य का कोई दो कदम चल पाए आप? क्या प्रभु राम होते तो लाल किले से प्राचीर से झूठ बोलते?
1: चलिए धन्यवाद, आइए जल्दी से आइए। मनोज काका जी और रोहित कुमार सिंह जी, आपका एक मिनट का समय इस विषय पर रिबटल राउंड का शुरू होता है।
6: देखिए, राहुल गांधी जी कल रायबरेली में थे, जो उनके मरहूम दादा जान फिरोज जहांगीर गांधी साहब का लोकसभा क्षेत्र था, और वहां से पता नहीं कौन सर्टिफिकेट बांट रहे थे। उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता राहुल बाबा से पूछ रही है कि रायबरेली में जो उनके मरहूम दादा जान के नाम पर कॉलेज है, और प्रयागराज की पवित्र धरती पर उनके मरहूम दादा की जो कब्र है, वहां जाकर फूल नहीं चढ़ाया। दादा ऊपर से कह रहे हैं कि पोता इतना बड़ा गद्दार मेरे परिवार का निकल गया, मेरा पिंडदान बिहार के गया जी में जाकर नहीं किया, और वो देश के गणनायक प्रधानमंत्री जी और यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने नक्सल आंदोलन को पांव से कुचलवा दिया सेना के प्रभाव से, उन पर अनर्गल प्रलाप कर रहा है। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता हमारा फुफहर है, सीता जी हमारे घर की बेटी हैं, और सीता जी हमारी फुआ हैं, और उनका ससुराल उत्तर प्रदेश है, तो एकदम उत्तर प्रदेश तैयार है। राम जी के परिकल्पना को साकार करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाएंगे। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्त।
1: चलिए अब आपका एक मिनट का रिबटल राउंड, घड़ी लग जाए, आपका एक मिनट का रिबटल राउंड मनोज काका जी शुरू होता है। आप
7: देखिए, हम समाजवादी लोग इसको बहुत मजबूती से मान रहे हैं कि जो 2024 में उत्तर प्रदेश में हुआ वही 2027 में होगा। जो 400 पार का जो घमंड 240 पे आ गया, तो उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार जो है समाजवादियों की बनेगी, और ऐसी सरकार बनेगी जिसमें नौजवानों को पेपर लीक नहीं होगा। कम से कम उत्तर प्रदेश में नौजवानों को पेपर लीक नहीं होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों और माताओं बहनों बेटियों की अच्छी सुरक्षा होगी, बेटियों को 90 जैसे सुविधा मिलेगी। आप जैसे कोई पत्रकार भी लखनऊ में कहीं फंसेगा तो तुरंत डायल 100 आकर के उसकी सुरक्षा करेगी, और उत्तर प्रदेश में पूरा संविधान होगा, संविधान की मान्यता होगी, कोई बुलडोजरी न्याय नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में संविधान का न्याय होगा। और जो अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने, सतीश चंद शर्मा ने और दिव्या दत्ता ने जो बात कही कि देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्तों का जो चयन है वो बहुमत के तानाशाही का चयन है, तो उस पर भी रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश में संविधान का और समाजवाद का रहा।
1: जबरदस्त,
6: दिव्या दत्ता नाम के कोई सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है, गूगल करके चेक कर लीजिए। और दूसरी बात सुन लीजिए, साफ साफ बात एकदम साफ है, कहीं कोई आने वाले वाला नहीं है। सतीश चंद शर्मा जी हैं, दिव्या दत्ता नाम के कोई सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है। पहले वो चेक कीजिए, फिर उस बात पर बात कीजिएगा। दीपांकर दत्ता नाम होगा,
7: हमने जो
6: दिव्या दत्ता नाम नहीं हो सकता है, नाम ठीक कीजिए। मतलब झूठी बात पड़ोसने वाले लोगों से, उत्तर प्रदेश सतर्क है, सावधान है, यूपी को बचाना है,
1: नेताजी
6: पढ़ाना है।
1: नेताजी
6: जय भीम, जय श्री राम, जय सीताराम।
1: ठीक है नेताजी, आइए जल्दी से आइए। मोहम्मद फैज खान साहब, शादाब चौहान जी,
8: हो गया?
1: हाँ जी, धन्यवाद। आपका एक मिनट का रिबटल राउंड का समय शुरू होता है। मोहम्मद फैज खान साहब, हाँ आपका अब।
9: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसमें श्री लक्ष्मी जी हैं, श्री कौन है? लक्ष्मी जी हैं, और नारायण विष्णु जी हैं, वही श्री सीता माता बनकर आती हैं। तो राम जी के पहले श्री लगता है, तो वह श्री राम सीता राम ही होता है। पहले हिंदुत्व का ज्ञान हासिल करो, जब हिंदुत्व की डिबेट में बैठते हो, तो चाहे आप श्री राम कहो या सीता राम कहो, एक ही बात है। और हिंदुत्व की लहर चल रही है, इसलिए बंगाल में कोई भी मुस्लिम आज कुर्बानी के लिए गाय खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुत्व की लहर चल रही है, इसलिए बड़े बड़े मुस्लिम नेता कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। इसलिए अपनी आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं करना। हिंदुत्व की लहर चल रही है तो मुझे काफिर मुनाफिक कहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता फराज की दुआई भी टीवी चैनल पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं।
1: समय समाप्त
9: हुआ। हिंदुत्व की लहर चल रही है, इसलिए यहाँ लोग गमछा बदल रहे हैं। हमने अभिषेक किया था जननी का अरिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडो से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन, जब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः संस्थापन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र।
1: शादाब चौहान जी, आपका एक मिनट का समय शुरू हो रहा है रिबटल राउंड का।
2: ये बड़ी विडंबना है कि लोग तालियों के लिए और किसी आयोजन को जीतने के लिए एक संवाद कार्यक्रम को धार्मिक आयोजन बदलने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके विचार उस लायक नहीं है कि वो आप तथ्यों के आधारित बात कर सकें, वो इस देश की मूल भावना की बात कर सकें, वो संविधान की बात कर सकें, वो इस विषय की बात। उन्होंने कहा कि गाय के लिए कोई मना कर रहा है कुर्बानी के, अच्छा ये एक बार भी इन्होंने नहीं बोला कि हम भी समर्थन करते हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, या ये डिसाइड किया जाए कि कोई भी यहां पर स्लॉटर हाउस नहीं होगा, जब तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए पैसा ले लेते हैं। किसने कहा उत्तर प्रदेश में कब से कब हुई गाय की कुर्बानी, मुझे बता दीजिए आप, बीजेपी की सरकार हो या नहीं हो, तब कभी भी नहीं होती। ये ऐसे विषयों पे बात करेंगे, इन्होंने एक बार भी इनके मुख से नहीं लिख रहा कि यहां पर उत्तर प्रदेश में आज महिला उत्पीड़न हो रहा है, आज बेरोजगारी की समस्या है, शैक्षिक भर्ती की समस्या है। एक बार भी इन्होंने नहीं बोला कि मुसलमानों को टारगेट करके मॉब लिंचिंग के इश्यूज आए हैं, मस्जिद मदरसा खानकाह को टारगेट किया गया, एक बार इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का प्रोपेगेंडा का काम करते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है संविधान का कार्ड चलेगा, न्याय का कार्ड चलेगा।
1: समय समाप्त, जबरदस्त, दोनों के लिए तालियां बजाओ।
9: विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दे। दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिद सऊदी अरब में नहीं है, भारत में है, और दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान सऊदी में नहीं रहते हैं, भारत में रहते हैं।
2: तो मुसलमान की बात दुनिया में सबसे परेशानी क्या है, ये तो गर्व की बात है।
9: ये विक्टिम कार्ड,
2: ये तो गर्व की बात है,
9: और मीठा
2: गर्व की बात है, परेशानी क्या है।
9: टोपी पहन के जाओ, एक बार 5 साल मुसलमानों को टोपी
2: संविधान की गुप्त रहे हैं,
1: बहुत अच्छी
2: था संविधान की ताली
1: दी है, आप संविधान को नहीं मानते, ये प्रॉब्लम
2: हमारी लड़ाई है कि आप संविधान को नहीं मानते, हम संविधान को मानते, यही लड़ाई है आपकी और हमारी। हिंदू तो कहता है कि क्रिश्चियन और मुसलमान देश के लिए नहीं सोच सकते, और हम कहते हैं कि यहां का हर बच्चा बच्चा देश के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो वीर अब्दुल हमीद ब्रिगेडियर उस्मान बनके देश के लिए अपनी कुर्बानी देगा, और बैरिस्टर ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर के समय पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये भारत की पहचान।
9: एहसान किया भारत के लिए, काम
2: जिम्मेदारी
9: निभाई है, एहसान किया भारत के लिए, काम
2: हमने जिम्मेदारी निभाई है,
9: भारत
2: ये आजादी में योगदान दिया, ये वो लोग अंग्रेजों से माफी मांगते थे, अंग्रेजों से माफी मांगते थे,
9: देश की सुरक्षा के लिए 6 बार माफी मांगी,
2: तो ऐसा करके 6 बार माफी मांगी है, एहसान था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, ताली बजा दीजिए जोर से, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत
2: धन्यवाद।
9: बोलो भारत माता की,
2: बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। इनके लिए एक धर्म महत्वपूर्ण है, मेरे लिए पूरा देश है, एक बच्चा महत्वपूर्ण।
9: हाँ, गाजा की जय बोलेंगे, फिलिस्तीन की जय बोलेंगे,
2: इराक को आंसू पाकिस्तान
9: भेजेंगे,
2: भारतीय सेना
9: के लिए
2: क्या निकलता है, इनके लिए बात कर रहे हैं, बोल देंगे। अच्छा बोलो, गोडसे आतंकवादी था, बोलो गांधी जी का हत्यारा गोडसे आतंकवादी था, बोलो
9: बोलो, शुरुआत
2: बोलो,
9: मोहम्मद हिंदा से शुरुआत से बोलो ना,
2: अरे बोलो सामने आ गया, सिर्फ बोलो, गोडसे था,
9: महमूद गजनवी
2: आतंकवादी था,
9: मोहम्मद गोडसे आतंकवादी था,
2: ये देखो
1: हम लोग चलते हैं घूमने, आइए कुश्ती की
9: चालू करो, चलिए
1: चलिए चलिए चलिए, धन्यवाद। अब बारी है वोट डालने की। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद है, वो भी मोशन के पक्ष या उसके खिलाफ में, या फिर कह नहीं सकते वाले पर वोट डाल सकते हैं। और यहाँ स्टूडियो में जितने यहाँ पर व्यूअर्स बैठे हैं, आपके लिए क्या बंगाल की तरह यूपी में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा? अगर आप मानते हैं हाँ, तो आप टीम प्रेम शुक्ला के लिए वोट करेंगे, वहीं अगर आप मानते हैं नहीं, तो आप टीम आलोक शर्मा के लिए वोट करेंगे। और कह नहीं सकते वालों को तो आजादी है, उनका जिधर मन करे आसमान में वो सफेद पंछी बनकर उड़ सकते हैं। 7 सेकेंड का आपका समय होगा। इस बीच जजेस बात कर रहे हैं, कुछ ही देर में यह फैसला लिया जाएगा कि आज का बहस बाजीगर यानी बेस्ट वक्ता इन 6 लोगों में से कौन है। चलिए, क्या बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा, इस पर वोट करने का आपका 7 सेकंड का समय शुरू होता है। अब सोचकर वोट डालिएगा। अगर आप मानते हैं कि हाँ, हिंदुत्व का कार्ड चलेगा, अभी शुरू हुआ है, 55 सेकंड तक ताली बजाना है तो ठीक है, हो जाइए, अभी तो 50 सेकंड बचे हैं। 13% लेकिन कह नहीं सकते पर भी इस बार वोट है, और ये दारोमदार होगा कि जो दोनों पार्टियां हैं वो कौन उनको अपनी तरफ कर पाता है। 11% अब हो गया है कह नहीं सकते वाले, मुझे इन पर शक तो हमेशा रहता है कि पहनते हैं सफेद गमछा और डाल देते हैं वोट कहीं और। 64% हाँ वाले हैं, आखिरी के अब 25 सेकंड बचे हैं। 24% है नहीं वाले, 64% पर पहुंचे हैं हाँ वाले, और आखिरी के अब 15 सेकंड बचे हैं जिसमें आपको ये तय करना है कि क्या बंगाल की तरह यूपी में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा। आखिरी के 10 सेकंड तुम लोग क्या कर रहे हो ऐसे फोन उठा के? अच्छा उस पे दिखा रहे हो, ठीक है ठीक है। इसी के साथ समय समाप्त हुआ। 62% कह रहे हैं हाँ बंगाल की तरह यूपी में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा। टीम प्रेम शुक्ला जीत गई है, आप लोग खड़े हो जाइए। और आलोक शर्मा जी की टीम रनर्स अप रही है कह नहीं सकते वाले, 13% लोग अभी भी हैं। तो चलिए ये एक मिजाज मीटर भी होता है जिससे पता चलता है कि तमाम बातें अपनी जगह पर हैं। नीट के सवाल पर तालियां भी बजती हैं लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो क्या होता है। अब आप तीनों के पास है फैसला और आप लोग बताएंगे कि आज इन छियों में से, बैठ जाइए सर, इन छियों में से आज का बहस बाजीगर कौन है।
8: मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हुए हैं और वो लगभग 6 साल प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने कभी भी हिंदुत्व शब्द के नाम पर राजनीति नहीं की, वोट नहीं मांगा। और जब सरकार में रहे तो उन्होंने कहा कि अयोध्या, धारा 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड को मैं बैक बर्नर पर रखता हूं और वो हमारे चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं है, जो एनडीए था। तो उत्तर प्रदेश में,
1: लेकिन बीजेपी में हमेशा रहा सर,
8: बीजेपी में रहा हो।
1: और
8: मैं कह रहा हूं कि
1: उनके गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी क्या करते थे?
8: मैं सिर्फ वाजपेयी की बात कर रहा हूं कि वाजपेयी जी ने कभी भी, उन्होंने राजधर्म की भी बात की जब गुजरात हुआ। और इसलिए इस देश, ये देश जैसे हजारों साल से चलता आया है, मिलीजुली सभ्यता और संस्कृति का देश है, ये वैसे ही चलेगा। और उसके लिए एकमात्र जो जरिया है वो डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ भारतीय संविधान है। उसको जो भी वायलेट करेगा वो इस मुल्क की स्पिरिट के खिलाफ जाएगा। मेरा सिर्फ इतना।
1: चलिए विनोद जी,
10: देखिए भारतीय संविधान को तो सभी मानते हैं, अब सवाल यह है कैसे माना जाए। हर नेता, हर पार्टी कहती है कि हम संविधान का पालन कर रहे हैं, लेकिन संविधान का उल्लंघन भी पार्टियां करती हैं और हम सबको लगता है संविधान का उल्लंघन हो रहा है। अब ये तो तय करना है कि हम संविधान की कसौटी पर किसको कितना खरा मानते हैं। आज के बहसबाजीगर को चुनने में हम लोगों को बड़ी कठिनाई आ रही है। कठिनाई इसलिए आ रही है कि एक तरफ संविधान की बात करने वाले आलोक शर्मा हैं और दूसरी तरफ जो हमारे इस बहसबाजी करके पैनल में एक नई खोज हैं, रोहित कुमार सिंह, जो जिन्होंने अपनी बात को बहुत फोर्सफुली रखा। तो इसी पर बात हो रही थी कि भाई किसको इसमें जो है रखा जाए। इसमें तो माना जा रहा है कि हम सहमत हों या असहमत हों वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी बात को फोर्सफुली, अपने तर्कों को रखने में रोहित कुमार सिंह जो है काफी हद तक सफल रहे।
1: अब थोड़ा कम ताऊ भी बोले, ताऊ ठीक थे, देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर,
10: उसमें आलोक शर्मा का भी हम लोगों ने एक नोटिस किया उस चीज को। हाँ। बाकी फिर ताऊ जो है फाइनल जो है वर्डिंग।
11: शादाब जी बहुत अच्छा बोले, मनोज काका बहुत अच्छा बोले,
1: बहुत अच्छा बोले,
11: फैज साहब तो हमेशा अच्छा बोलते हैं, बहुत फोर्सफुल। पर ये मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि आज जो है एक रैली का माहौल बना दिया गया बीच बीच में। फैज साहब ने तो भजन क्लबिंग भी कर दी थोड़ी देर के लिए। तो आज जो है कोई जीता नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के आसपास रहे पर अस्तर थोड़ा सा पॉपुलिस्ट टाइप का हो गया। तो आज मैं ये कहूंगा कि आज सभी हार गए हैं, पर हार के जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं। तो आज आपकी डिस्कवरी अंजना जी, रोहित कुमार सिंह,
1: रोहित कुमार सिंह
11: बाजीगर होते हैं।
1: वाह वाह रोहित जी, वाह वाह वाह। मतलब अगर 36 के 36 गुण, 36 गुण कहते हैं 32 गुण,
10: नहीं रोहित,
1: अगर नेता बनने के 32 के 32 गुण ढूंढे जाएं तो आपको
11: एक आखिरी बात,
1: 36 गुण बोलते हैं 32 गुण।
10: मैं प्रेम शुक्ला जी से एक आग्रह करूंगा,
1: 36 गुण है आप में नेता बनने के,
10: नजर रखें और वो आपकी पार्टी के एक बहुत बेहतरीन प्रवक्ता साबित हो सकते हैं।
11: यही मैं कहना चाहता था कि इनका यहाँ पे नाम है पॉलिटिकल, मतलब जो डिस्क्रिप्शन है पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे वैसे। आज
1: पॉलिटिकल एनालिस्ट भी आजकल क्लियर विचारधारा के साथ आते हैं, इसमें आप कोई दो राय और शक शुबा नहीं होना चाहिए। तालियों के साथ लेकिन छह वक्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात मजबूत तरीके से, और आप लोगों का धन्यवाद। अगले शनिवार फिर होगी मुलाकात, देखते रहिए आज।
12: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach in association with
13: Bharat ki apni electric sawari Sokudo. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
14: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
3: भाई, भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
2: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
4: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
5: कूल फैंस से घर को सजाएं।
6: कूल फैंस बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
5: कूल फैंस घर की शान बढ़ाएं।
7: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
8: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
9: ये थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है।
10: माल मैंने चुराया, शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया।
9: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला।
11: समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
12: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
13: कैसा लगा मेरा स्टंट?
14: विक्रम, एक हिंट तो देते।
15: विक्रम!
14: हिंट।
13: बड़े आराम से।
5: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
16: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
5: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: ये थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है।
3: माल मैंने चुराया, शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया।
2: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला।
4: समर कूल कूलर,
2: हवा अच्छी है ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
6: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
7: विक्रम एक हिंट तो देते।
8: विक्रम
7: हिंट
6: बड़े आराम से।
9: समाजवादी पार्टी को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि कौन दल किस दल के मुखिया से मिलने गया था नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 2403 विधानसभाओं के संगठन को बूथ को मजबूत करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी जा सके। समाजवादी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में मजबूत है, पीडीए मजबूत है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है, इसलिए आने वाले समय में किन दलों के साथ गठबंधन होगा या गठबंधन जो है उसमें और दल कौन शामिल होंगे, ये सभी फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को करने हैं। समाजवादी पार्टी अपने 403 विधानसभाओं पे अपने संगठन को बूथ को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
10: समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही दल 403 की 403 विधानसभाओं पर अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चाहे किसी का चुनाव चिन्ह कोई भी हो वहां से लड़े तो उसे दूसरे दल के संगठन का लाभ मिल सके। निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, 403 विधानसभाओं पर गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने का काम इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कर रहे हैं।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो, एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, वैश्विक हालात के साथ आपसी साझेदारी पर बात। ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को दिया अमेरिका आने का न्योता। अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी का बड़ा दबा, कहा एक साल के भीतर पीएम मोदी की विदाई तय। आर्थिक हालात से बढ़ रहा है असंतोष, बनेगा वजह सूत्रों की खबर। शिरडी में डिफेंस कॉम्प्लेक्स का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन, कहा मेक इन इंडिया से रक्षा कंपनीज की क्षमता बढ़ेगी, तभी देश और मजबूत होगा। ईशा केस में आरोपी समर सिंह को 7 दिनों की पुलिस रिमांड, सामने आए मौत वाली जगह की तस्वीर। दूसरे पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली से एम्स की टीम रवाना। ईरान से तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से हड़कंप। ईरान के नक्शे पर लगाया अमेरिका का झंडा, कहा तेहरान पर रविवार तक फैसला।

0: ईरान पर नए हमलों की तैयारी पूरी। फिर से शुरू होने वाला है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। मेमोरियल डे से पहले यूएस सेना ने रद्द की छुट्टियां। ईरान को लेकर बढ़ी टेंशन। बेटे की शादी छोड़कर अचानक व्हाइट हाउस क्यों लौटे ट्रंप? अमेरिकी ठिकानों पर अलर्ट मोड। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपडेट की इमरजेंसी रिकॉल लिस्ट।
1: वेस्ट एशिया में एक बार फिर जंग की आहट तेज हो गई है। इजराइल में हथियार पहुंच रहे हैं। अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड की चेतावनी दे रहा है और ईरान भी जवाबी हमले की तैयारी में जुटा है। ट्रंप की टीम की तरफ से लगातार धमकी भरे बयान आ रहे हैं तो तेहरान भी झुकने को तैयार नहीं। सवाल बड़ा है, क्या अब युद्ध तय है? क्या आने वाले कुछ दिनों में हमला हो सकता है? और अगर जंग छिड़ी तो दुनिया ऊर्जा संकट और तबाही की कितनी बड़ी कीमत चुकाएगी? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं वॉर रूम। इन सवालों का विश्लेषण करें उससे पहले इस वक्त की जो वॉर ब्रेकिंग है उस पर सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। बड़ी खबर एक और आपको दे दें। ट्रंप ने कहा कि वो जंग से एक घंटे की दूरी पर हैं। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका ईरान पर हमला करने से केवल एक घंटे दूर था, यानी सीज फायर के समय की बात ये उन्होंने कही। युद्ध को तैयार थे, हथियार लोड किए जा चुके थे, बस आदेश का इंतजार था, लेकिन आखिरी वक्त में खाड़ी देशों की अपील पर हमला रोका गया। हालांकि ट्रंप ने साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो ईरान को एक और बड़ा झटका देंगे। वहीं व्हाइट हाउस में एक हाई लेवल बैठक हो चुकी है, सैन्य विकल्पों पर चर्चा हुई है, यानी अगले 2-3 दिन ईरान के लिए खतरनाक हो सकते हैं, साथ ही पूरे खाड़ी के लिए भी। दुनिया की नजर अब अमेरिका और ईरान पर टिकी हुई है क्योंकि अगर जंग छिड़ी तो असर सीधे तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वेस्ट एशिया में जंग के बीच अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और इजराइल केवल ईरान पर हमला नहीं कर रहे थे बल्कि तेहरान में सत्ता बदलने की तैयारी भी चल रही थी। दावा है कि इजराइल की प्लानिंग में पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमद निजाद को फिर से सत्ता में लाने की बात थी और अहमद निजाद से संपर्क भी किया गया था। बताया जा रहा है कि युद्ध के पहले दिन उनके घर पर हुआ हमला, उन्हें हाउस अरेस्ट से निकालने की कोशिश थी। हमले में वो घायल हुए लेकिन बच गए। इसके बाद वो इस पूरे प्लान से पीछे हट गए और तभी से सार्वजनिक तौर पर गायब है। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि ईरान के टॉप लीडर्स को हटाकर सत्ता बदलने की बड़ी रणनीति थी। खुद ट्रंप भी इशारा कर चुके हैं कि ईरान के अंदर से बदलाव चाहिए। अब इन दावों ने पूरे मिडिल ईस्ट में सियासी भूचाल ला दिया। अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा है कि अगर दुश्मन ने फिर कोई हमला किया तो ईरान नए हथियारों और नई रणनीति के साथ नए मोर्चे खोलेगा। दरअसल कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि वो फिलहाल ईरान पर हमला रोक रहे हैं ताकि शांति समझौते की उम्मीद बनी रहे, लेकिन अब ईरान की ताजा धमकी ने वेस्ट एशिया का तनाव फिर बढ़ा दिया है। ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि अगली लड़ाई पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर सबसे जोरदार हमला किया जाएगा, यानी दोनों तरफ से जंग की भाषा भी उतनी ही तीखी है। और अब बात हम पाकिस्तान की करते हैं। क्या इमरान खान की कुर्सी गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ था? इस सवाल को हवा एक सीक्रेट पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट दे रहा है। एक क्लासिफाइड डिप्लोमेटिक टेलीग्राम लीक हुआ है। ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, जिसने इस डॉक्यूमेंट ने पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया है। ये दावा है कि इमरान खान की सरकार गिराने के लिए अमेरिका समर्थित साजिश रची गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये सीक्रेट दस्तावेज 7 मार्च 2022 का है। इसे पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत असद मजीद खान ने वाशिंगटन से इस्लामाबाद भेजा था। इसमें अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू ने इमरान खान की विदेश नीति, खासकर रशिया यूक्रेन वॉर पर पाकिस्तान के स्टैंड पर नाराजगी जताई थी। इशारा साफ है, इमरान का रूस को लेकर रुख अमेरिका को पसंद नहीं आया और उसके बाद पाकिस्तान की सत्ता में बड़ा खेल शुरू हो गया। इस खेल में आईएसआई की भी मिलीभगत होने की बात सामने आ रही है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ इस समय पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड ऑफिसर मेजर आदिल जुड़ रहे हैं। मेजर आदिल, हर मुद्दे पर खरी खरी बात करते हैं, बहुत स्वागत है आपका। ये जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं या पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से भी मेजर आदिल, ये बहुत शॉकिंग है, हैरान करने वाले हैं। मतलब इमरान खान के हटने के बाद पाकिस्तान ने यूक्रेन वॉर के लिए हथियार सप्लाई किए, आईएमएफ डील आगे बढ़ी, अमेरिका से रिश्ते सुधरे, क्या ये हम समझें कि साबित कर रहा है कि रेजिम चेंज के बदले पाकिस्तान की नीति बदलवाई गई?
2: देखिए, ये तो सारे फैक्ट्स है ना, अगर इसको, ये तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई नैरेटिव वॉरफेयर नहीं है, ये कोई मतलब जुमलाबाजी नहीं है, ये तो हकीकत है कि बिल्कुल पाकिस्तान ने जो है वो एक तरफ अमेरिकन प्रेशर के अंदर आके कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम के ऊपर 50 to 60 billion dollars का भी इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है वो कोई 35 billion US dollars है जो पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान के जनरल्स ने लिया और डबल गेन की गई, इसमें कोई शक नहीं है। इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं, अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, अमेरिकन सेनेट के अंदर रिपोर्ट दी जा चुकी है, सेंटकॉम को पता है, हेडक्वार्टर सेंटकॉम को, पेंटागन को पता है, लांगली में CIA को पता है, एंड दे आर क्वाइट ओपन अबाउट इट, इट इज पब्लिश फैक्ट के भी बिल्कुल पाकिस्तान ने डबल गेम की और डबल गेम पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल के लिए की। तो बेसिकली तो आपकी स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान, आप कहता हूं तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की ये स्ट्रेटेजी है कि ये डबल गेम की जाए, लेकिन इस डबल गेम को एक्सपोज इसलिए इमरान खान ने किया क्योंकि इमरान खान ये रियलाइज कर गए थे कि इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है उसका फायदा सिर्फ वेस्टर्न मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और ऑफकोर्स रूस और चाइनीज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को होता है, इंडिया और पाकिस्तान और उनकी जनता आवाम को नहीं होता। इसलिए उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा CIA के डायरेक्टर से भी मिलने को, और उसकी जो है वो कीमत आज दिन तक अदा कर रहे हैं। ही इज इन जेल, ही इज लॉस्ट आईसाइट इन वन ऑफ हिज आई, आंख उनकी एक जाया हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी लड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को ये हकीकत बताई। तो ये अब नैरेटिव जो डबल गेम का है या डबल डीलिंग का है, ये अब चल नहीं पा रहा, ये बड़ा क्लियर है और उसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है, तो दैट इज देयर, और इसलिए इमरान खान के खिलाफ है पाकिस्तान।
1: अच्छा, ये जो लीक दस्तावेज है उनके पॉइंट 11 में पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद ने खुद लिखा कि जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा था वो बिना जो बाइडेन या व्हाइट हाउस की मंजूरी के संभव ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था, यानी रेजिम चेंज ऊपर से तय थी। अब ये मैं आपसे समझना चाहती हूं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान का जो ISI है, वो अमेरिका के आगे इस तरीके से क्यों झुक गया?
2: देखिए, वो जो अब तो पूरा डॉक्यूमेंट लीक हो गया, जो साइफर है उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि पाकिस्तान यूक्रेन वॉर के ऊपर एग्रेसिवली न्यूट्रल है, ये अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने लिखा, एम्बेसडर असद मजीद को बताया, उन्होंने उसको उसी तरह रिपोर्ट किया। वही बात दोबारा कि इमरान खान वॉन्टेड के जो है वो पाकिस्तान हर किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, एक नॉन अलाइंड पॉलिसी रखे जिस तरह इंडिया ने रखी हुई है, और उसका फायदा जो है वो पब्लिक को होता है और इकोनॉमी को होता है, और इसीलिए इमरान खान की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान 6% GDP ग्रोथ कर रहा था, लेकिन जाहिर बात है वो वेस्टर्न डिजाइन को सूट नहीं करता। और इसमें सिर्फ एक चीज नहीं है श्वेता, ये बात समझने वाली है जरा, इसमें एक तरफ तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर के एमुनेशन, क्योंकि यूक्रेन को विंटेज एम्युनिशन दिया गया, विंटेज आर्म्स दिए गए, पुराने जो बहुत पुराने आर्म्स हैं, अमेरिकन आर्म्स हैं, वो दिए गए, जो कि जिसका एम्युनिशन वेस्टर्न कंट्रीज नहीं बनाती क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो वो अब पाकिस्तान की पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर बनता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये आर्म्स हैं, पुराने टैंक्स भी हैं, पुरानी आर्टिलरी गन्स भी हैं, पुराना वेपन्स भी है, तो उसका एम्युनिशन सारे का सारा पाकिस्तान के अंदर बनता है और वो एम्युनिशन पाकिस्तान ने उठा के बेचा यूक्रेन को, कोई शक नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा गहरी बातचीत है, इमरान खान को ब्लेम किया गया कि इमरान खान ये एम्युनिशन नहीं बेचना चाहते, ठीक, नहीं बेचना चाहते, इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट बोलते हैं किसी भी तरह से कोई साइड लेने पे, बिल्कुल ठीक किया, रशिया के खिलाफ क्यों इमरान खान जाके जो है वो स्टैंड ले लेते इस सिचुएशन के अंदर, अगर नॉन अलाइंड पॉलिसी का फायदा है तो वो क्यों ना उठाते, अगर इंडिया नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी का फायदा उठाता आया है हिस्टोरिकली तो पाकिस्तान क्यों नहीं उठा सकता।
1: मेजर आदिल, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना जो पाकिस्तान में अभी कुछ ही दिनों पहले हुई है उसकी कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं और उस पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं। ये भारत में पुलवामा का जब हमला हुआ 2019 में उसके कई मास्टरमाइंड्स थे, उनमें से एक नाम था हमजा बुरहान। गुरुवार के दिन कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसे गोलियों से भून दिया, हमजा बुरहान को मार गिराया। यानी पाकिस्तान में जितने आतंकवादी हैं अब भी, चाहे किसी भी इलाके में रहे, उनकी अब भी खैर नहीं। अज्ञात हमलावर किसी न किसी रूप में आकर उन पर बरस रहे हैं, उन पर कहर टूट रहा है उनका। अब मेजर आदिल, सबके जहन में ना धुरंधर फिल्म अभी भी ताजा है, हम क्या समझे कि इस तरह के जो आतंकवादी हैं, इस तरह के जो लोग हैं पाकिस्तान में जिनको पाकिस्तान पनाह देता है, धुरंधर का खौफ आज भी है सबके मन में?
2: देखिए, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। मैं खौफ है या नहीं है इसको आप साइड पे रख दें, धुरंधर का मैंने उसका मूवी का रिव्यू भी किया है, बट फैक्ट ये है कि इस वक्त जो प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं पाकिस्तान के, जो इंडिया के अंदर काम करते रहे हैं, रिकॉर्ड के ऊपर ये चीज़ें, इनको छुपाया भी नहीं जा सकता। मौलाना मसूद अजहर हों या हाफिज सईद हों, वो स्टेट प्रोटेक्शन के अंदर हैं और उनकी पूरी फैमिलीज को जो है वो स्टेट प्रोटोकॉल और स्टेट प्रोटेक्शन मिलता है। मसला ये होता है श्वेता कि जब आप इतने अरसे एक प्रॉक्सी नेटवर्क चलाते हैं, जिस तरह एक फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर आप क्रिएट करते हैं, तो फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर बन जाता है, वो आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। सो इस वक्त खास तौर के ऊपर पंजाब के अंदर ये जो मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको इंडिया सेंट्रिक है, जिसको खड़ा किया गया है, जिसके अंदर जैश थी, जिसके अंदर जमात उद्दावा थी, इनके अब नए नाम भी आ गए हैं, कलदम तंजीमें हैं, ये इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करना पाकिस्तानी स्टेट की मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने जब इनको खड़ा किया तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इनकी कमजोरियां जान ली। और लास्ट टाइम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को जब डिच किया गया था, टीटीपी की हम बात करते हैं, तो उसका रिएक्शन इतना सिवियर आया था कि आईएसआई के तमाम रीजनल जो हेडक्वार्टर्स खासतौर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको पहले बोलते थे, उसके अंदर, क्योंकि जाहिरी बात है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद खड़ा किया गया था और अफगान जहाद के दौर में, और जब वॉर ऑन टेरर नाम की एक चीज शुरू हुई और जनरल मुशर्रफ ने यू टर्न लिया और अपने ही लोगों को, जिनको खुद खड़ा किया गया था, उनको अमेरिका को बाउंटी मनी के अवज बेचना शुरू कर दिया, तो उनका जो रिएक्शन आया वो आज दिन तक भूला नहीं गया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में। तो इस वजह से दे आर वेरी केयरफुल के पंजाब के अंदर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके ऊपर जाहिरी बात है बराह रास्त खुद उनको प्रोटेक्ट ही किया जाए तो बेहतर है। अब फैक्ट ये है कि प्रोटेक्शन मौजूद है, फैक्ट ये है कि कागजों में कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर होना चाहिए हाफिज सईद साहब को, बट फैक्ट पूरा पंजाब जानता है कि नहीं, वो नहीं है, वो उनके साथ प्रिजन डिपार्टमेंट का एक गार्ड जरूर होता है लेकिन वो आजाद फिर रहे हैं और अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रोटोकॉल वो फिरते हैं। उनके साथ स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के एलीट के जो ट्रेंड कमांडोज हैं एलीट फोर्स के, वो उनके साथ होते हैं। तो फिर अगर खौफ नहीं है तो फिर ये प्रोटेक्शन इस लेवल की, स्टेट लेवल की प्रोटेक्शन क्यों है? तो आपका जवाब यह है कि खौफ तो है, जाहिर बात है, तभी इस लेवल की प्रोटेक्शन जो है उनको मिल रही है।
1: चलिए मेजर आदिल, बातें आपकी सही हैं लेकिन दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान के जो ज्यादातर जनरल्स हैं वो चेहरा साफ करने की जगह आईना ही साफ करने में विश्वास रखते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बारूद की बू आ रही है। अमेरिकी सेना की महानाकेबंदी ने 89 जहाजों का रास्ता रोक दिया है। ट्रंप की सीक्रेट मीटिंग भी जंग का इशारा है लेकिन ईरान झुक नहीं रहा है। बड़ी खबर यह आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उसने नाकाबंदी तोड़कर 26 जहाज निकाल दिए हैं और इंटरनेट केबल काटने की धमकी दे दी है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पानी के नीचे है। अगर ये केबल्स नष्ट हुई आधी दुनिया का इंटरनेट बंद हो सकता है। ईरान की तरफ से बड़ी चेतावनी दी जा रही है, यानी दोनों ओर से तबाही, बस एक ट्रिगर दूर है यही दावा किया जा रहा है।

0: तबाही का टाइमर टिक टिक कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बारूद की ऐसी बू आ रही है कि आधी दुनिया को अपनी बर्बादी साफ दिखने लगी है। अमेरिका और ईरान की इस सनक ने पूरी दुनिया को तेल और गैस के भीषण संकट में धकेल दिया है। पूरी दुनिया कह रही है कि हॉर्मूज स्ट्रेट खुल जाए, हालात सामान्य हो जाएं, लेकिन दुनिया की उम्मीदों पर बारूद की सोच हावी हो चुकी है।
1: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. But I don't know. I never get tired. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days, or I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do.
0: अमेरिकी सेना ने ईरान की गर्दन मरोड़ने के लिए अपनी समुद्री नाकेबंदी को अब इतना सख्त कर दिया है कि समंदर का पानी भी बिना इजाजत हिल नहीं सकता। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा पोस्ट करके सीना ठोकते हुए दावा किया है कि वो ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले पूरे व्यापारिक रूट को ब्लॉक कर रहे हैं। सेंटकॉम ने पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिकी नाकेबंदी को पूरी तरह लागू किया जा रहा है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नवासी वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता जबरन बदला गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका का दावा है कि उसने 4 जहाजों को निष्क्रिय भी कर दिया है। यह सिर्फ नाकेबंदी नहीं है, यह सीधे युद्ध को न्योता है।
2: They can either agree to a piece of paper that is satisfactory to the United States, or they can face a punishment from our military, the likes of which has not been seen in modern history. That's the choice that they face.
0: वहीं अमेरिकी मीडिया वेबसाइट एक्सियोस की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले को सिर्फ कुछ समय के लिए टालने की बात करते हुए दिखे, लेकिन पर्दे के पीछे नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ एक सीक्रेट मीटिंग कर डाली।
3: अमेरिका और ईरान ये लड़ाई को आगे नहीं चाहते हैं कि ये बढ़े, लेकिन दोनों तरफ ऐसी सॉलिड धमकियां दे रहे हैं और साथ में ये भी चाहते हैं कि लड़ाई ना हो। देखिए, दोनों साइड की नेगोशिएशन हो रहे हैं। अगर ईरान का पलड़ा इतना भारी होता तो वो तो क्लियरली पाकिस्तान को बोलता कि आप मत आइए, हम ये लड़ाई अपने टर्म्स पे खत्म करेंगे। लेकिन ईरान भी पाकिस्तान को बार बार बुला रहा है। अभी आपने देखा, 2 बार उनका इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का गया था। तो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस पूरे विश्व को दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक ही देश है इसराइल, जिसकी क्लियर कट एम और स्ट्रेटजी है। वो बार बार बोलता है कि ये युद्ध के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए और हमें वापस ईरान को हिट करना चाहिए। तो दोनों क्या चाहते हैं, बड़ा मुश्किल है बोलना, लेकिन लड़ाई नहीं चाहते हैं।
0: लेकिन अमेरिका अगर शेर है तो ईरान भी सवा शेर बनने पर अड़ा है। वो झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारते हुए ऐलान किया है कि उसने पिछले 24 घंटों में 26 जहाजों को अपनी मर्जी से हॉर्मुज स्ट्रेट से पार करवा दिया है। ये जिद पूरी दुनिया का दीवाला निकालने वाली है। खेल को समझिए। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया। जवाब में ईरान ने इसराइल और खाड़ी में अमेरिकी सहयोगियों पर पलटवार किया और हॉर्मुज स्ट्रेट को ही ब्लॉक कर दिया। हालांकि 8 अप्रैल को युद्ध विराम हुआ, लेकिन वो टिक नहीं सका। ट्रंप ने संघर्ष विराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया, पर साथ में ये दोहरी समुद्री नाकेबंदी थोप दी। लेकिन सवाल है कि इसका नतीजा क्या हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पास पहुंच चुकी हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अब इस जंग में नेटो भी कूदने की फिराक में है। अगर जुलाई की शुरुआत तक ये रूट खुला नहीं तो नेटो जहाजों को सुरक्षा देने के लिए अपनी नौसेना भेज सकता है। फ्रांस और ब्रिटेन पहले ही अपने नागरिकों और वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए अपनी सेनाएं तैनात कर चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ तेल की नहीं, बात आपके मोबाइल और इंटरनेट की भी है। ईरान समर्थित तस्नीम न्यूज एजेंसी की एक बेहद खौफनाक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पानी के नीचे जो अंडर सी इंटरनेट केबल्स बिछी हैं, उन्हें नष्ट किया जा सकता है।
3: अगर ये होता है, अब उसके क्या क्षमता है? मेरे को लगता है अगर वो बोल रहा है तो कुछ क्षमता हो सकती है। कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि उसकी ऐसी सबमरीन है छोटी सी जिसमें 10-15 लोग जा सकते हैं, बहुत छोटी छोटी सबमरीन हैं, वो शायद डिटेक्ट ना हो, अंडर वाटर जाने की काफी गहराई तक वो जा सकता है। और अगर केबल काटता है एक भी केबल तो इसमें विश्व में बहुत प्रभाव पड़ेगा, आपकी तमाम कम्युनिकेशंस डिस्टर्ब्ड हो जाएंगी, बैंकिंग सिस्टम सब कुछ डिस्टर्ब्ड होगा, और खासकर यूनाइटेड अरब एमिरेट जहाँ से ये इनके सारे लिंक्स वगैरह हैं वहाँ से इनकी ये पूरे सिस्टम्स को प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है यूएई तो एक वर्ल्ड क्लास सिटी है जहाँ पर ये सारे बिजनेस वर्ल्ड के सेंटर्स हैं, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इसको रिपेयर के लिए भी बहुत समय लगेगा। तो एक टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन हो सकता है जिसका प्रभाव काफी मात्रा में हो सकता है पूरे विश्व के लिए, और भारत के ऊपर भी इसका फर्क पड़ेगा।
0: यानी इधर अमेरिका की नाकेबंदी है, उधर ईरान का बारूदी पलटवार। एक तरफ दुनिया की लाइफलाइन यानी तेल रोकने की जंग है, तो दूसरी तरफ इंटरनेट ठप करने की धमकी। दोनों तरफ से बारूद बिछ चुका है, तबाही का महाविस्फोट बस एक ट्रिगर दूर है।
4: वॉररूम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दुनिया भर की इस उथल पुथल, इस लड़ाई संघर्ष से जुड़ी हुई और खबरें आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए वॉररूम।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक.
2: The music you love is all right here.

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: यार
2: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है।
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
2: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
3: आगे आगे करेक्ट
4: करेक्ट मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
6: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
7: विक्रम, एक हिंट तो देते।
8: विक्रम!
7: हिंट
6: बड़े आराम से।
9: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है हर दल।

0: कि सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
2: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटे कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
3: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
4: पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और अब नीट का फिजिक्स का पेपर आउट करने वाले आरोपी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। पुणे से सीबीआई ने मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया है। केस की आरोपी मनीषा मंधारे की तरह ही मनीषा हवलदार बतौर एक्सपर्ट एनटीए से जुड़ी थी, जिसकी फिजिक्स के प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी। आरोप है कि अप्रैल 2026 में उसने परीक्षा से जुड़े कई फिजिक्स सवाल मनीषा मंधारे को शेयर किए। जांच एजेंसी के मुताबिक जो सवाल मनीषा हवलदार ने शेयर किए थे उनका मिलान नीट यूजी 2026 के असली फिजिक्स पेपर सेट से किया गया और दोनों में समानता पाई गई। सीबीआई लगातार इस मामले में देश भर के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ हो रही है। इसके आधार पर पेपर लीक करने वालों पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस केस में अब तक जो 3 महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं, उन तीनों का नाम मनीषा ही है और इनमें से 2 सीधे एनटीए से जुड़ी थी। ये गिरफ्तारी एनटीए की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि एनटीए का पेपर लीक नहीं हुआ ये दावा संसदीय समिति की बैठक में एनटीए अधिकारियों ने किया। संसद की एजुकेशन कमेटी ने एनटीए के आला अधिकारियों को तलब किया। पेपर लीक को लेकर सवाल जवाब किए तो यही उत्तर मिला। एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने कमेटी के सामने साफ कहा कि पेपर उनके सिस्टम से लीक नहीं हुआ, यानी एनटीए ने माना ही नहीं कि कोई पेपर लीक हुआ। इस पर विपक्षी सांसदों ने तुरंत पलटकर सवाल किया कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर एग्जाम कैंसिल क्यों किया गया, दोबारा एग्जाम की क्या जरूरत थी?
5: जो रिकमेंडेशंस हमने दी थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रूप से संसद में रखी थी और जो अपेक्षा करते थे कि एनटीए और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री इस बात को संज्ञान में लेंगे, वो नहीं हो पाए।
4: इस सवाल का एनटीए के डीजी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। जब तक सीबीआई नहीं कहती कि पेपर लीक हुआ है तब तक वो इसे लीक नहीं मानेंगे। नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल पीडीएफ से मामला शुरू हुआ और बाद में सीबीआई जांच में राजस्थान से महाराष्ट्र तक फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ। अब दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

41 दिनों में 26 बार ईरान को मिटाने की धमकी दी ट्रंप ने, लेकिन एक मिसाइल तक नहीं दाग पाए इस दरमियान। आखिर महाशक्ति अमेरिका पीछे क्यों हट रहा है या जंग से बच क्यों रहे हैं ट्रंप? इस सवाल का जवाब है कि ईरान अकेला नहीं है और अमेरिका के साथ दुनिया उस तरह नहीं है जैसे कभी इराक अफगानिस्तान के समय थी। पर्दे के पीछे से रूस और चीन ने ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रचा है जिसे भेद पाना फिलहाल ट्रंप के बस की बात नहीं है।

0: understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain.
1: We can do whatever we want.
0: The big thing we have to do is we have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about problems. Maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. On the Iran, I had no choice because they were going to have a nuclear weapon. We're not going to give them a nuclear weapon.
2: I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent me, I didn't even finish reading it.
3: दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का राष्ट्रपति हर दिन कैमरे पर आकर कहता है कि वो ईरान को मिटा देगा, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पार। ट्रंप एक मिसाइल तक दाग नहीं पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुपर पावर अमेरिका के कदम पीछे खींच गए? क्या ट्रंप जंग से डर गए, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रचा जा चुका है जिसे भेद पाना फिलहाल ट्रंप के बस की बात नहीं है?
4: 41 डेज में तो कुछ हुआ नहीं है। पाकिस्तान ने तो ऐसी गोल बोल सबको कर रहा है, लेकिन एक तरफ जेडी वांस ने फिर परसों बोला कि बहुत पॉजिटिव टॉक्स हैं, लेकिन अभी तो जो ईरानियन सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट है वो तो बहुत साफ है कि हमारे एनरिच्ड यूरेनियम कहीं बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ ईरान में रहेगा। तो इतने अगर हार्डलाइन स्टेटमेंट्स हैं तो इशारा तो एक ही तरफ जा रहा है, युद्ध होने की पूरी संभावना है। और क्योंकि अटैक पहले फिर इसराइल और अमेरिका ही करेगा, तो इनिशिएटिव युद्ध का आज उन्हीं के पास है। और ईरान भी नहीं चाहता है कि वो इनिशिएटिव ले, लेकिन अगर उसके ऊपर वार होता है तो उसका काउंटर वार बहुत तगड़ा होगा, और फिर ये किस डायरेक्शन पे जाएगा ये युद्ध वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी स्टेज पे दोनों खड़े हैं कि युद्ध के अलावा मेरे को लगता है उनके सामने कोई विकल्प है भी नहीं।
3: तारीख नोट कर लीजिए, मंगलवार 19 मई 2026 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर तैयार था। अमेरिकी मिसाइलें ईरान की तरफ मोड़ने ही वाली थी। ट्रंप ने खुद कबूल किया कि वो ईरान पर एक बड़े सैन्य हमले की मंजूरी देने से सिर्फ एक घंटे की दूरी पर थे।
5: Other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
3: लेकिन अचानक खेल पलट गया, हमला रोक दिया गया। लेकिन ट्रंप आखिर पीछे हटे क्यों? ट्रंप की इस मजबूरी के पीछे है ईरान, रूस और चीन का वो त्रिकोण जिसने अमेरिका के हाथ बांध दिए हैं। रूस और चीन ने ईरान के इर्द गिर्द एक ऐसा अभेद चक्रव्यूह बना दिया है जिसे तोड़ना नामुमकिन है।
4: ईरान ने बहुत सपोर्ट किया है प्रेसिडेंट पुतिन को, ये जो यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, आपको पता है वो शहीद ड्रोन वगैरह कितने भारी मात्रा में दिए हैं। तो चीन और रशिया बार बार ये एक मैसेज देना चाहेगा कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। तो ईरान के साथ देखिए खड़े होने के कई तरीके हैं। एक है डायरेक्ट मिलिट्री हार्डवेयर देना, इंटेलिजेंस शेयरिंग दी जा रही है, सैटेलाइट की इमेजेस दी जा रही है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और रशिया से भी इस प्रकार ये छोटी छोटी मिलिट्री चीजें दी जा रही है। और यही चीजें हैं जो ईरान को और मजबूत दे रही है। ईरान को भी पता है कि हमारे पीछे दो देश खड़े हुए हैं, रशिया और चीन।
3: नेटो में ट्रंप के रुख और ईरान के मुद्दे पर जिस तरह का बिखराव दिखा है वो रूस के लिए राहत की खबर है। इसी नेटो के साथ जाने को लेकर यूक्रेन रूस की जंग शुरू हुई थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। यूरोप के कई देश अमेरिका की आक्रामक लाइन से सहमत नहीं दिख रहे। तेल संकट, आर्थिक दबाव और बड़े युद्ध का डर अब नेटो की एकजुटता पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में रूस ये संदेश जरूर ले रहा होगा कि पश्चिमी गठबंधन अब पहले जितना मजबूत और एकपत नहीं रहा।
6: इस समय में जिस प्रकार से ईरान को लेकर नेटो में विरोधाभास नजर आ रहा है, वो खुल के अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए, उन्होंने अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया, अपनी एयर बेसिस और नेवी को भेजने से इनकार कर दिया कि इनमें ईरान के लिए जरूर मतभेद है क्योंकि आर्टिकल 5 के अंडर नहीं है, यूरोप इसको अपने लिए सुरक्षा और इकोनॉमिक कंडीशंस के विरोध मानता है। लेकिन जब रूस का सवाल आता है, यूक्रेन का सवाल आता है, तो यहाँ पर सभी नेटो देश इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात निश्चित है कि ईरान युद्ध से रूस को इनडायरेक्ट फायदा मिल सकता है, कि अमेरिका के काफ़ी रिसोर्सेज इस समय में ईरान में लगे हुए, बल्कि अमेरिका को कई दुनिया के काफ़ी देशों से अपने रिसोर्सेज मंगाने पड़े, ऐसे में यूक्रेन को कुछ हथियारों की मदद मिलने में कमी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक नेटो का सवाल है, मैंने जो इस प्रकार से देखा है कि रशिया के खिलाफ ये अभी भी एकजुट है।
3: ऊपर से ट्रंप को अपने ही देश में विरोध झेलना पड़ रहा है, ईरान पर सख्ती को लेकर कुछ रिपब्लिकन सांसद भी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसे में ट्रंप के लिए कोई बड़ा सैन्य कदम उठाना आसान नहीं है, क्योंकि युद्ध का सीधा असर तेल की कीमतों, महंगाई और उनकी लोकप्रियता पर पड़ रहा है। यही वजह है कि लगातार सख्त बयान देने के बावजूद अमेरिका फिलहाल सीधी टक्कर से बचता दिख रहा है।
7: बातचीत अब सवालों के घेरे में है, धमकियां अब सीधे आर पार की जंग की ओर इशारा कर रही हैं। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया तो ईरान ने पूरे वेस्ट एशिया को सुलगाने की धमकी दे दी। अमेरिका के युद्ध मंत्री और उपराष्ट्रपति ने खुला ऐलान कर दिया है कि अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड, यानी बंदूक तनी है, ट्रंप जंग के लिए तैयार है और ईरान उस महाविनाश को तय बता रहा है जो ट्रंप के युद्ध के साथ शुरू होगा।
3: ये शांति नहीं, महायुद्ध से ठीक पहले का सन्नाटा है। एक तरफ टेबल पर बातचीत, दूसरी तरफ बारूद की गंध। ईरान अमेरिका में सीज फायर जरूर हुआ, लेकिन युद्ध का खतरा कम नहीं हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच की ये जंग अब धमकियों और धोखे के ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी है जहां से सिर्फ तबाही का रास्ता निकलता है। अमेरिका की साख को फारस की खाड़ी से लेकर बाल्टिक सागर तक खुलेआम चुनौती दी जा रही है। ट्रंप लगातार अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं, दुनिया का ध्यान वेस्ट एशिया पर है, लेकिन पीछे से रूस ने सबसे खतरनाक खेल कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के सनसनीखेज दावे ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। रूस का सीधा दावा है कि उसने अपनी घातक इस्कंदर एम मिसाइल के लिए परमाणु हथियार बेलारूस में अस्थायी भंडारण स्थलों तक पहुंचा दिए हैं। बाल्टिक सागर के मुहाने पर रूस की ये न्यूक्लियर तैनाती सीधे सीधे अमेरिका और नेटो की छाती पर मूंग दलने जैसी है। इस चौतरफा घेराबंदी को देखते हुए अमेरिका बौखलाया हुआ है। जवाब में अमेरिका अपने 5,000 सैनिक भेज रहा है, लेकिन वॉशिंगटन की नीतियां खुद विरोधाभासों से भरी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नल्स इतने कंफ्यूजिंग हैं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो शांति चाहते हैं या मुकम्मल तबाही।
8: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy and lives, most importantly.
3: Trump ka kehna hai ki agar Iran deal kar leta hai to bahut sara samay, energy aur jaane bach jayenge. Nahi to America lock and loaded ki niti par aage badhega.
6: अमेरिका और ईरान के जहाँ तक संबंध है, इस समय में दोनों में एक तरफ से धमकियाँ भी दी जा रही हैं, साथ साथ में दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियाँ भी की जा रही हैं। अमेरिका ने भी अपने जो बेड़े हैं उनको काफ़ी रैंप अप कर दिया है, बाकी सैनिकों को भेज दिया है और जो जो बदलाव करना था या उनके मिज़ाइल्स वगैरह भेजने थे उन्होंने काफ़ी हद तक भेज के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जैसा कि उनके उपराष्ट्रपति और डिफेंस सेक्रेटरी ने भी कहा है कि लॉक्ड लोडेड एंड लॉक्ड, यानी कि वो बिल्कुल तैयार हैं युद्ध के लिए, एक हुक्म का इंतजार है, कभी उनकी सेनाएं तैयार हैं। तो ऐसे में एक तरह से अमेरिका एक धमकाने वाली बात कर रहा है कि डील पूरा तैयारी करके गन तान के ईरान को कह रहा है तुम डील पे साइन करो, और ईरान ने भी कह दिया कि अगर हमले हुए तो पूरे मध्य पूर्व में आग लग जाएगी।
3: वाशिंगटन की तमाम धमकियों को ठेंगे पर रखते हुए तेहरान ने अमेरिका के ही एक पक्के सहयोगी ओमान के साथ मिलकर एक नया दांव खेल दिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान इस बात पर चर्चा कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर एक टोलिंग सिस्टम लागू कर दिया जाए, यानी इस क्रिटिकल वाटर वे को पार करने वाले जहाजों से ईरान पैसे वसूलेगा। साफ है बारूद की ढेर पर चिंगारी सुलग चुकी है। सीज फायर सिर्फ एक पर्दा है जिसके पीछे फारस की खाड़ी से लेकर बाल्टिक सी तक महाविनाश की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है।
7: ईरान पर हमला अमेरिका के लिए सुइसाइड मिशन की तरह होगा। माना जा रहा है कि ईरान ने 10 लाख फाइटर्स की नागरिक सेना अपनी खड़ी कर दी है। खारगा आइलैंड पर मिसाइलों का पहरा है, समुद्र से लगने वाले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में गुरिल्ला वॉर की तैयारी है, और जमीन के नीचे मिसाइलों का जाल है। उस डेथ ट्रैप में घुसना वियतनाम से आसान है, लेकिन अंजाम क्या उससे भी बदतर होगा।

0: पश्चिम एशिया में महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यह खबर बता रही है कि क्यों ईरान पर जमीनी हमला ट्रंप और अमेरिका के लिए वियतनाम से ज्यादा बुरा हो सकता है। ये तस्वीरें देखिए, ईरान के सरकारी टीवी पर शुक्रवार रात जो हुआ उसने दुनिया को हिला दिया है। 3 अलग अलग शोज में न्यूज एंकर लाइव टीवी पर हथियार लहराते और AK-47 और कई तरह के हथियार चलाना सिखाते हुए नजर आए। रक्षा एक्सपर्ट इसको अमेरिका के जमीनी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की लाइव तैयारी मानते हैं। साथ ही अपने लोगों में ईरान जोश भी भर रहा है कि दुश्मन के हमले के वक्त करना क्या है। ईरान अब सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा, खबरें हैं कि उसने 10 लाख आम नागरिकों की एक खूंखार फाइटर आर्मी खड़ी कर दी है। ईरान ने फौज में जाने की उम्र भी कम कर दी है, यानी ये साफ तौर पर जंग की तैयारी है। यही नहीं, ईरान की लाइफलाइन खर्ग आइलैंड को मिसाइलों के अभेद्य पहरे में तब्दील कर दिया गया है।
1: ईरान ने तकरीबन 10 लाख के लगभग सोल्जर्स, IRGC, सिविलियन आर्मी और मिलिशियाज, इन सबको मिला के तकरीबन 10 लाख के लोग तैयार कर दिए और काफ़ी बड़ी संख्या में भर्ती भी की गई है, जिसकी लाइनें लगी हुई थी लोगों की। वहाँ पर ये लोग गुरिल्ला युद्ध के लिए काफ़ी तैयार किए जा रहे हैं। अगर अमेरिका लैंड ऑपरेशन करता है तो उसके लिए ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है। दूसरी बात, अगर अमेरिका खर्ग आइलैंड पर हमला करता है तो उसके लिए भी ईरान ने बड़ी संख्या में एयर डिफेंस और बहुत बड़ी संख्या में सैनिक भी वहां पर तैनात कर दिए, ताकि अमेरिका खर्ग आइलैंड पर हवा से या जमीनी हमला शुरू करता है तो काफ़ी महंगा पड़े, लेकिन उनके लिए कीमत बहुत भारी पड़ेगी। तो क्या अमेरिका ये कीमत चुकाने के लिए तैयार है, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा।
0: भले ही इसे ईरान के नेशनल प्रिपेयर्डनेस की एक सिंबॉलिक डिस्प्ले कहा जा रहा हो, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ है, अगर इसराइल या अमेरिका ने आंख उठाने की हिमाकत की तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा।
2: इस बीच पाकिस्तान की गद्दारी का सबसे बड़ा कबूलनामा आया। मौलाना फजलुर रहमान ने पोल खोल दी कि 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका और आतंकियों दोनों के साथ डबल गेम खेला। एक तरफ अमेरिका से डॉलर बटोरे, दूसरी तरफ उन्हीं आतंकियों को पाला जिन्होंने अफगानिस्तान सरकार को उजाड़ फेंका। यही है पाकिस्तान का असली चेहरा।
0: दुनिया में शायद पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो एक हाथ से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का झंडा उठाता है और दूसरे हाथ से आतंकियों को बंदूकें और बारूद थमाता है। लेकिन अब पाकिस्तान के इस डबल गेम की पोल पाकिस्तान में ही खुल रही है।
3: जब ये हमारे ही लोग मुसल्लह होकर अफगानिस्तान जा रहे थे तो हमने कभी इन पे एतराज नहीं किया। जब वहां उन्होंने 20 साल जंग लड़ी और वो एक जमजुराना महारत इस हद तक हासिल कर सके तो वो स्टेट को चैलेंज करने की पोजीशन में आ गए, आज हमने उनको एक मसला बना दिया है।
0: मौलाना फजलुर रहमान ने खुलकर कबूल किया है कि 9/11 के बाद पाकिस्तान ने एक तरफ अमेरिका का साथ दिया और दूसरी तरफ आतंकियों को भी पालता रहा, यानी वॉशिंगटन से डॉलर भी लेते रहे और तालिबान को ताकत भी देते रहे।
3: अब अगर हम शिकायत करते हैं बुरहानुद्दीन रब्बानी से, फिर हम तालिबान को, वहाँ के अफगान तालिबान को अपना प्रो पाकिस्तानी समझते हैं, फिर हम उनको सपोर्ट करते हैं, फिर जब उनकी हुकूमत आती है तो हम उनको तस्लीम भी करते हैं और बतौर सफीर भी उनको जगह देते हैं, और फिर जब 9/11 होता है तो हम अमेरिका के इत्तेहादी बनकर उस पर हमलावर भी होते हैं, पाकिस्तान में अमेरिका को अड्डे भी देते हैं, फजाएं भी देते हैं, वहाँ बम्बारमेंट भी होती है, और दूसरी तरफ हम गिलाफ के नीचे पाकिस्तान में उनको जगह भी देते हैं।
0: जिस पाकिस्तान को अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा सहयोगी मानता रहा, वही पाकिस्तान पर्दे के पीछे तालिबान को इतना मजबूत कर रहा था कि वो अफगानिस्तान की सरकार को चुनौती देने लगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमेशा अपनी कठपुतली सरकार चाहता था और इसी खेल में तालिबान को खड़ा किया।
4: डेमोक्रेसी को जो है वो डब्बे में बंद कर दिया गया और फौज ने कहा कि जनाब हम बॉस हैं, हम चलाएंगे सारे का सारा काम, और अयूब खान का दौर उसके आपके सामने है। वहां से देन لیٹر آن آپ دیکھیں پھر مشرف دور کے اندر گلوبل وار اینڈ ٹیرر اس کو موقع مل گیا 9/11 کے بعد, پھر دوبارہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام کے اوپر جو ہے ڈالر آنا شروع ہو گیا. تو دیر از اے ہسٹری آف دا انسٹیٹیوشن جو پاکستان کے اوپر قابض ہے.
0: لیکن وڈمبنا دیکھیے, جن طالبان کو پاکستان نے اپنا رنیتک ہتھیار سمجھا آج وہی اس کے ہاتھ سے پھسلتے دکھ رہے ہیں. مولانا کا دعویٰ ہے کہ افغان طالبان اب بھارت کے قریب آ رہے ہیں اور پاکستان کی پوری افغان نیتی الٹی پڑ گئی ہے.
4: پہلے تو یہ ڈبل گیم چل جاتی تھی اور اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں. اس کے ریپرکشنز یہ ہیں کہ آج دشمنی اپنا ایک برادر اسلامی ملک ہے افغانستان, اس کے ساتھ بجائے دوستی ہونے کے دشمنی ہو گئی. ان کو یہ اپنا ایسٹ سمجھتے تھے, وہ اب ان کو دشمن بتاتے ہیں.
0: مولانا جو آج پاکستان میں کھڑے ہو کر بول رہے ہیں, بھارت اس سچ کو 1947 سے دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے. دراصل پاکستان وہ کرائے کا سپاری کلر ہے جو دنیا کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے. 9/11 کا ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد راولپنڈی میں ملا. دنیا کا سب سے بڑا آتنکی اسامہ بن لادن پاکستان کا اسٹیٹ گیسٹ بن کر رہا, یہاں تک کہ القاعدہ کا ہیڈ کوارٹر ایک وقت میں کراچی سے چلتا تھا. سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اب بھی پاکستان کے اس ڈبل گیم کو نہیں سمجھے گی, یا پھر ہر بار کی طرح پاکستان امریکہ جیسی سپر پاور کو ایسا ہی چونا لگا کر ڈالر اٹھتا رہے گا اور آتنکواد کا کھلا کھیل بھی کھیلتا رہے گا.
2: جنگ کے میدان کی ہر یدھ نیتی کا وشلیشن آپ نے دیکھا وار روم میں. ابھی کے لیے اتنا ہی. دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آج تک.

0: अनुष्का शर्मा मौत मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। सोमवार को सीजेआई की अगुवाई में बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली है। ट्विशा केस में बहुत बड़ा अपडेट है। एम्स की 4 सदस्यीय टीम दोबारा पोस्टमार्टम करने वाली है कल। वो आज रवाना भी दिल्ली से हो गए हैं और इस मामले में सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अनिशा माथुर हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया। अनिशा, सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेने के पीछे का आधार क्या है?
1: देखिए, अभी तो हमें जितनी इन्फॉर्मेशन है उसमें ये पता लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और ये अलेजेड इंस्टीट्यूशनल बायस और प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसी को लेकर स्वतः संज्ञान लिया गया। याद रखिएगा, पिछले 2 दिन से हम जिस तरह सारे में रिपोर्टिंग भी हो रही है, हमने आज तक भी डिटेल में ये बात रिपोर्ट की है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पोस्टमार्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि जिस की उस त्रिशा की मदर इन लॉ जो है गिरिबाला सिंह, उनको किस तरह से एंटिसिपेटरी बेल दी गई, उसके हस्बैंड समर्थ सिंह किसने किस तरह से ज्यूरिसडिक्शन का मजाक उड़ाते हुए जबलपुर में सरेंडर करने की कोशिश की और उसको कई घंटों तक गिरफ्तार नहीं किया गया, ये सारे सवाल हमने मीडिया में भी अपने आज तक के पटल पर भी उठाए हैं कई कई बारी पिछले 12 दिनों में। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है और इंस्टीट्यूशनल बायस और प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसी को लेकर जो स्वतः संज्ञान लिया गया है उसको देखते हुए सीधे तौर पर ये बात साफ है कि चीफ जस्टिस जस्टिस जयमाले बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच कोर्ट वन जो सुनवाई करेगी मंडे को, पता चलेगा कि क्या क्या वो सवाल उठाते हैं मध्य प्रदेश की अथॉरिटीज के ऊपर।
0: बहुत शुक्रिया अनिशा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और सोमवार को इस मामले में सीजीआई की अगवाली वाली बेंच ही जो है सुनवाई करेगी और स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
7: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
6: Smartless.
8: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
6: Marketplace.
9: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
6: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
10: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
11: इसमें माइक्रो फाइबर है।
10: माइक्रो फाइबर यानी
11: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत,
10: हमारे सीमेंट में नहीं है,
11: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
12: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
13: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
14: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे। उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक बिजली संकट के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ सरकार है जो कहती है कि कोई कमी नहीं है, सब चंगा सी, दूसरी ओर विपक्षी नेता है जो इस संकट को महाविद्युत आपदा कह रहे हैं। इसमें तीसरा पक्ष है कानपुर से लखनऊ और रायबरेली तक के बीजेपी विधायकों का, जो कहते हैं कि बिजली बहुत कट रही है, और चौथा पक्ष है वो जनता जो इन सबको झेल रही है। बिजली कटौती से नाराज यूपी की जनता कहीं पावर हाउस पर धावा बोल देती है तो कहीं बिजली कर्मियों पर गुस्सा उतार रही है। कानपुर, मेरठ, लखनऊ, हापुड़ में तो लोग रात को सड़कों पर उतर गए। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने लिखा कि इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार है। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। अखिलेश के पोस्ट पर एके शर्मा ने लिखा कि आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दिखाया करो। एके शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। बिजली के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया भिड़ गए। अखिलेश यादव ने लिखा है कि सच तो यह है कि बीजेपी सरकार ने बिजली व्यवस्था को ठप कर दिया है। इस पर एके शर्मा ने लिखा कि आपके कार्यकाल से दोगुना उपभोक्ता आज यूपी में है। अखिलेश ने लिखा कि नई मांग की पूर्ति के लिए यूपी में कोई पावर प्लांट नहीं बना। इस पर एके शर्मा ने लिखा कि प्रयागराज के बेजा में 3x800 मेगावाट के प्लांट को मंजूरी मिली है। अखिलेश ने लिखा कि ट्रांसमिशन के लिए नई व्यवस्था नहीं दी गई। इस पर जवाब आया कि समाजवादी पार्टी कार्यकाल की तुलना में योगी शासन में बिजली ट्रांसमिशन में 6 गुना की वृद्धि हुई है। यूपी सरकार के मंत्री लाख दावे करें कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सब चंगा सी, लेकिन आज की हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। आज तक ब्यूरो

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। वैश्विक हालात के साथ आपसी साझेदारी पर बात। ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को दिया गया अमेरिका आने का न्योता। शिरडी में डिफेंस कॉम्प्लेक्स का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। कहा मेक इन इंडिया से रक्षा कंपनियों की बढ़ेगी क्षमता, तभी देश होगा और मजबूत। 12वीं की परीक्षा की आंसर शीट लेने के लिए सीबीएसई ने 24 मई तक बढ़ाई मियां। सीबीएसई ने वेबसाइट में मानी दिक्कत। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई से मांगी जवाबदेही। ऋषा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान। सोमवार को होगी सुनवाई। भोपाल कोर्ट से आरोपी समर्थ सिंह को 7 दिन पुलिस रिमांड। ईरान और अमेरिका में छिड़ा मैप वॉर। पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी नक्शे पर लगाया अमेरिकी झंडा। बदले में तेहरान ने भी अमेरिका के मानचित्र पर दिखाया अपना ध्वज।

0: नमस्कार, मैं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। दुनिया की राजनीति में कुछ मुलाकातें सिर्फ औपचारिक नहीं होती, वो एक संदेश बन जाती हैं। आज कहानी उस नेता की जिसकी हर तस्वीर दुनिया में सुर्खियां बन जाती हैं, जिसकी मुस्कान सोशल मीडिया पर मीम बन जाती है और जिसकी राजनीति यूरोप की दिशा तय करती है। रोम की गलियों से निकलकर इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने तक का सफर आसान नहीं था। आज कहानी जॉर्जिया मेलानी की।
1: Mr. Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है।
1: My friend, how are you?
3: I'm fine.
1: Nice to see you.
2: जब दो सभ्यताएं मिलती हैं, तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं।

0: मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: और जॉर्जिया मेलोनी की जो पहचान है वो बहुत प्रखर है, वो बहुत फायर ब्रांड लीडर के रूप में मानी जाती है।
2: पहली बार वुमन प्राइम मिनिस्टर बनी है इटली में 70 सालों में, इससे पहले 65 जो प्राइम मिनिस्टर थे सब मेल थे, तो ये आउटसाइडर की तरह से आई है।
3: Parishrami safalta ki kunji hai.
4: I don't know.
5: Che significa?
3: Which means tough work is the key to success.
6: रोम की ऐतिहासिक गलियों से इस समय सिर्फ कूटनीति की तस्वीरें नहीं बल्कि एक नई केमिस्ट्री की कहानी सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात ने सोशल मीडिया से लेकर वैश्विक राजनीति तक नई चर्चा छेड़ दी। मेलोनी चॉकलेट कलोजियम की सेल्फी, गोल्डन आवर की बातचीत और एक कार में सफर करते हुए दो नेता, ये सिर्फ तस्वीर नहीं है बल्कि बदलती हुई डिप्लोमेसी की नई परिभाषा है।
7: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.

0: इतिहास की एक तस्वीर होती है और कुछ तस्वीरों का अपना इतिहास होता है। ये वही तस्वीर है।
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
0: कहते हैं कि कुछ मीठा खाना रिश्ते की गर्मजोशी का एक स्वाभाविक रूपांतरण है और मोदी मेलोनी के रिश्ते में तो ये रूपांतरण देखने लायक था। कूटनीति के समानांतर दुनिया के दो महान देशों के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच विकसित हुए इस रिश्ते की राजनीति में राष्ट्र का हासिल क्या होगा, इसकी व्याख्या आने वाले दिनों में जरूर होगी। लेकिन तस्वीरों की भी अपनी एक गवाही होती है और वो गवाही कहती है कि भारत और इटली के बीच एक नई कहानी की संभावना आकार ले रही है।
2: आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राजिए मिले।
3: With Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view. We have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. I have personally learned to appreciate the vision, the pragmatism and the leadership of the Prime Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government.
4: बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो करीब 10 बिलियन यूरो का होता था कोविड के आसपास। मिलनी के आने के बाद से और अभी जो लेटेस्ट हमारा है करीब 14.5 बिलियन डॉलर पर है। तो इससे पहले एफडीआई भारत में इटालियन कंपनी का करीब था 4 बिलियन डॉलर। अब जो लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं इसमें इनका एफडीआई है करीब 7.5-8 बिलियन डॉलर, करीब वर्चुअली दुगुना हुआ है भारत में एफडीआई इटली से, राइट।
0: दुनिया की एक महान सभ्यता को जब किसी के स्वागत के लिए खड़ा कर दिया जाता है तो कैसी होती है उसकी तस्वीर और कैसा होता है उसका तबस्सुर, ये उसकी बेमिसाल बांडी थी। दुनिया की सबसे महान कूटनीति पर्दे के पीछे से रची जाती है। उसके सूत्र शोर में नहीं खामोशियों में तलाशे जाते हैं और ये बात मोदी भी जानते हैं और मेलोनी भी। इसलिए जब पीएम मोदी के दिए गिफ्ट के वीडियो को इटली की पीएम मेलोनी ने शेयर किया तो 100 मिलियन व्यूज कुछ ही घंटे में हो गए। लेकिन सवाल सबके दिल में था कि पीएम मोदी ने मेलोडी चॉकलेट ही क्यों दिया, और मेलोनी ने भी मेलोडी को खुशी के साथ कबूल करके अपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला।
0: ये तस्वीर 3 साल पुरानी है। पीएम मोदी और पीएम मेलोनी की दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 समिट में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए मेलोनी ने कैप्शन में पहली बार मेलोडी लिखा था। ये शब्द इंटरनेट पर वायरल हो गया। मेलोडी हैशटैग ट्रेंड करने लगा और 3 साल बाद जब पीएम मोदी उन्हें मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट करते हैं तो मेलोनी हैरान रह जाती है।
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Melt.
0: इस वीडियो ने भारत और इटली के कूटनीतिक रिश्तों में एक मिठास घोल दी है.
5: It is often used in a very popular way of saying "Parishram hi safalta ki kunji ai," which means tough work is the key to success, and we are used to build our relations in this way, with a hard work which becomes success at the end.
0: सिर्फ दो दिनों के लिए पीएम मोदी इटली पहुंचे थे और जैसे ही पीएम मोदी इटली पहुंचते हैं प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी स्वागत के लिए सामने खड़ी होती हैं। इटली में सूर्यास्त का सुनहरा समय था और सामने इतिहास से भरा हुआ रोम था. गोल्डन आवर की उस खूबसूरत रोशनी में दोनों नेता शहर को निहारते नजर आए. मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी को रोम के ऐतिहासिक इलाकों के बारे में बता रही थी और प्रधानमंत्री मोदी उत्सुकता के साथ सवाल पूछते दिखाई दिए. ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, तस्वीरों में सहजता थी, अपनापन था और एक ऐसा विश्वास था जो किसी भी रणनीतिक साझेदारी की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है. पीएम मोदी के सम्मान में एक विशेष डिनर का आयोजन किया गया था. इस डिनर में सिर्फ भोजन नहीं था बल्कि भविष्य की राजनीति, वैश्विक साझेदारी और नई संभावनाओं पर अनौपचारिक बातचीत भी थी. भारत इटली सहयोग, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, अंतरिक्ष और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे बड़े वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई.
2: विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है. भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है. इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे.
5: Further develop IMEC, which is the infrastructure corridor, economic corridor between Europe, Middle East and India, which was established during the G20 summit. It is an initiative we strongly believe in because we think that it can unleash a potential and wonderful potential for our trade, for our businesses and our relations.
0: लेकिन कूटनीति की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि उसके सबसे मजबूत सूत्र अक्सर औपचारिक बैठकों में नहीं बल्कि ऐसे अनौपचारिक पलों में बनते हैं. डिनर के बाद प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी रोम के ऐतिहासिक स्मारक कोलोसियम पहुंचे. करीब 2000 साल पुराना ये स्मारक आज भी रोमन सभ्यता की ताकत और वैभव का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है. दुनिया के 7 अजूबों में शामिल इस कोलोसियम का निर्माण 70 से 72वीं ईस्वी के बीच शुरू हुआ था. यहीं कभी ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयां हुआ करती थी और हजारों लोग बैठकर इन युद्धों को देखा करते थे. इसके बाद दोनों नेता एक ही कार में साथ निकले. कार के अंदर बातचीत, मुस्कुराहट और फिर एक सेल्फी. कुछ ही मिनटों में ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी दोनों ही सोशल मीडिया की पसंद और नापसंद को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और दोनों ही ये जानते हैं कि आज सोशल मीडिया की ताकत भी ग्लोबल पावर का हिस्सा बन चुकी है. प्रधानमंत्री मोदी का ये इटली दौरा एआई, रक्षा, अंतरिक्ष और रणनीतिक साझेदारी के नए दौर के लिए तो याद रखा ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ मेलोडी मोमेंट के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा.
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
6: दुनिया की राजनीति में कुछ नेता अपने फैसलों से चर्चा में रहते हैं और कुछ अपनी मौजूदगी से. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उन्हीं नेताओं में शामिल हैं जिनकी हर तस्वीर, हर प्रतिक्रिया और हर मुलाकात कुछ मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है. चाहे डोनाल्ड ट्रंप का मजाकिया कॉम्प्लीमेंट हो, मैक्रों का अनोखा स्वागत हो या फिर एरी रामा के साथ हल्के फुल्के पल, मेलेनी हर ग्लोबल मंच को एक वायरल मोमेंट में बदल देती है।
0: दुनिया की राजनीति में अक्सर तस्वीरें सिर्फ औपचारिकता का हिस्सा होती हैं। नेता मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, कैमरे फ्लैश करते हैं और फिर सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ ऐसा नहीं होता। उनकी लगभग हर मुलाकात, हर तस्वीर और हर बातचीत कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया मीम्स और वैश्विक चर्चा का हिस्सा बन जाता है। गाजा पीस समिट के दौरान एक दिलचस्प पल देखने को मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे और मेलोनी उनके पीछे खड़ी थी। अचानक ट्रंप ने अपना भाषण रोक दिया और मेलोनी की तरफ देखकर कहते हैं, अगर मैं आपको खूबसूरत कहूं तो कोई परेशानी तो नहीं?
7: You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming.
0: इसके बाद ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा, अमेरिका में किसी महिला को खूबसूरत कहने से राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी रिस्क लूंगा।
7: My chances. We have a woman, a young woman who's I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are.
0: पूरे हॉल में हंसी गूंज उठी और ये वीडियो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
7: थैंक यू वेरी मच।
0: इसी समिट में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और मेलोनी की मुलाकात हुई। एर्दोगन ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप अच्छी लग रही हैं, लेकिन आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी। मेलोनी ने बिना देर किए जवाब दिया कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं किसी की भी जान ले लूंगी।
1: I don't want to feel so bad.
0: दोनों नेता हंस पड़े और ये हल्का फुल्का पल भी सोशल मीडिया पर छा गया। अप्रैल 2026 में यूरोपीय देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक का मुद्दा था हॉर्मुज स्ट्रेट का विकल्प क्या है। बैठक शुरू होने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मेलोनी का स्वागत किया, लेकिन स्वागत का अंदाज थोड़ा अलग था।

0: छोटा सा पल कैमरों में कैद हो गया और कुछ ही देर में पूरी दुनिया में वायरल हो गया। जनवरी 2025 में मेलोनी यूएई पहुंची अबू धाबी सस्टेनेबिलिटी वीक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। वहां अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने उनका स्वागत किया, लेकिन जिस अंदाज में स्वागत किया गया उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। एडी रामा घुटनों पर बैठ गए, दोनों हाथ जोड़ लिए और फिर मुस्कुराते हुए मेलोनी का स्वागत किया। मेलोनी पहले हंसी, फिर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की। लेकिन मेलोनी की वायरल तस्वीरों की सूची यहीं खत्म नहीं होती। एक और तस्वीर उस समय वायरल हुई जब ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बातचीत के दौरान दोनों हंसते नजर आए। लोगों ने इस तस्वीर को यूरोप्स मोस्ट रिलैक्स्ड डिप्लोमेटिक मोमेंट कहा। आज राजनीति सिर्फ संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है, अब सोशल मीडिया भी ग्लोबल पावर का हिस्सा बन चुका है। और शायद यही वजह है कि जब भी मेलोनी किसी बड़े नेता से मिलती हैं, तो वो मुलाकात सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं रहती बल्कि एक वायरल मोमेंट बन जाती है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी brought us a gift, a very, very good topic.
2: जॉर्जिया मेलेनी की हर मुलाकात कैसे वायरल मोमेंट बन जाती है ये तो आपने देख लिया, लेकिन मेलेनी की असली कहानी इन तस्वीरों और सोशल मीडिया ट्रेंड से कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। एक ऐसी लड़की जिसने बचपन में गरीबी देखी, पिता का साथ खो दिया, नाइट क्लब में काम किया और संघर्षों के बीच खुद को खड़ा किया। रोम की गलियों से निकलकर इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर किसी राजनीतिक कहानी से ज्यादा एक जिद, संघर्ष और महत्वाकांक्षा की कहानी है।
3: quello che ci racconta questa notte è che le scommesse apparentemente di osservare lealmente la Costituzione e le leggi.
0: 3 साल पहले का ये वो पल है जब इटली ने अपनी तकदीर जॉर्जिया मेलोनी के हाथों में सौंप दी थी। मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने बड़ी जीत हासिल की थी। पूरे यूरोप की नजर इस समारोह पर थी क्योंकि पहली बार इटली में कोई महिला प्रधानमंत्री शपथ ले रही थी।
3: Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
0: सियासत में जॉर्जिया मेलोनी की नई उड़ान थी। एक महाअभियान को सुनहरा मुकाम मिला था, जनतंत्र का शोर था, अरमानों की नई यात्रा पर निकला था इटली। ये तरक्की की नई नजरों की वापसी थी, तरानों के नए नजर की वापसी थी। वरना आप ही सोचिए, जब उनका जन्म होने वाला था उस वक्त उनकी माँ बड़ी दुविधा में फंसी थी, बच्ची को जन्म दे या फिर अबॉर्शन करा ले। और ये बात मेलोनी खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माय प्रिंसिपल्स में बताती है।

0: और दूसरी ओर वामपंथी और दक्षिणपंथी युवाओं के बीच हिंसक झड़पें होती रहती थी। महज 15 साल की उम्र में मेलोनी ने राजनीति में कदम रखा। गारबटेला जैसे घोर वामपंथी इलाके में रहते हुए दक्षिणपंथी इटालियन सोशल मूवमेंट से जुड़ गई। उस वक्त इटली की राजनीति में सिर्फ पुरुषों का दबदबा था। अपने लिए जगह बनाना मेलोनी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। लेकिन कुछ सालों में ही मेलोनी इटली की सियासत को समझने लगी थी।
1: 2006 में वो चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज की सदस्य बनी। 2014 में उन्होंने ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी यानी कि FDI की उन्होंने कमान संभाली। फिर इसके अलावा जब हम देखते हैं तो 2020 में वो यूरोपियन कंजर्वेटिव एंड रिफॉर्मिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बनी। और फिर 2022 में FDI की जब जीत हुई इटली में, तो ड्रेगी सरकार के जाने के बाद वो इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। बहुत सशक्त नेता हैं, बहुत शक्ति के साथ अपनी बात को रखती हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने 2022 में उन्हें विश्व की सबसे पावरफुल विमेन लीडर्स में से एक माना, सातवें पायदान पे थी।
0: मेलोनी ने 1998 में ग्रेजी इटेलिया महोत्सव शुरू किया था। शुरुआत में ये महोत्सव हाशिए पर रहने वाले युवाओं का छोटा सा ग्रुप हुआ करता था, लेकिन मेलोनी का विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने इस मंच को मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ दिया। आज यही महोत्सव दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक आयोजनों में बदल चुका है। एलन मस्क और ऋषि सुनक जैसे ग्लोबल चेहरे इस मंच का हिस्सा बनते हैं। ये दिखाता है कि कैसे मेलोनी ने अपने छोटे से आइडिया को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। अपनी लगन और जुझारू तेवर की बदौलत मेलोनी तेजी से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ती गई। 2008 में मेलोनी ने इतिहास रच दिया। महज 31 साल की उम्र में इटली की सबसे कम उम्र की मंत्री बनी। 2011 में जब सरकार गिरी तो मेलोनी ने नई राह चुनी। दिसंबर 2012 में उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी से नाता तोड़ लिया। मेलोनी ने ब्रदर्स ऑफ इटली नाम की नई पार्टी बनाई।
2: इन्होंने जो पार्टी शुरू करी थी 2012 में, शायद इसमें ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, ये उसकी को फाउंडर है। इसके साथ दो और को फाउंडर थे, ये सब एक साथ रहे हैं और आज की तारीख में ये प्राइम मिनिस्टर है। एक जो को फाउंडर है वो कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर है और दूसरा जो को फाउंडर है वो इनकी पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट है। तो इस समय इटली में पॉलिटिकल स्थिरता ये लेकर के आई।
0: ये फैसला जोखिम भरा था, लेकिन मेलोनी इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। शुरुआत में पार्टी को बहुत कम लोगों का साथ मिला। 2013 के चुनावों में मेलोनी की पार्टी को सिर्फ 2% के आसपास वोट मिले थे, पर उन्होंने उम्मीद नहीं खोई। लगातार जमीन पर काम करती रही और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। 2018 के आम चुनावों में पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 4% से ज्यादा हो गया। भले ही आंकड़ा बड़ा नहीं था, लेकिन इसने मेलोनी को इतालवी संसद में बेहद मजबूत और मुखर आवाज बना दिया। दो हजार 2018 से लेकर 2022 तक देश में 4 बार गठबंधन सरकार बनी और 3 अलग अलग प्रधानमंत्री सत्ता में रहे। मगर मेलोनी ने विपक्ष में बैठकर खुद को सबसे भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश किया। उनकी यही दूरदर्शी रणनीति 2022 के आम चुनावों में सबसे बड़ा हथियार बनी। उस चुनाव में मेलोनी ने इटली की सियासत की दिशा ही बदल दी। उनकी पार्टी को करीब 26% वोट मिले, जो पिछली बार के मुकाबले 6 गुना से भी ज्यादा की छलांग थी।
1: बिल्कुल, जॉर्जिया मेलोनी शुरू से वो जब एक युवा कार्यकर्ता थी, फिर उन्हें जब युवा मंत्री भी बनाया गया इटली की सरकार में, और फिर प्रधानमंत्री बनने तक हम जब इनका पूरा एक सफर देखते हैं तो इनका जो एजेंडा रहा है वो इटली की आंतरिक सुरक्षा, इटली की सांस्कृतिक अस्मिता, परिवारों को सुरक्षित रखने की बात, परिवारवाद को सुरक्षित रखने की बात से जुड़ा हुआ हमने देखा है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात वो बहुत प्रखरता से करते।
0: बिना किसी गॉडफादर के मेलोनी ने अपनी पार्टी को सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बना दिया और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। मेलोनी का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ एक प्रधानमंत्री का चयन नहीं था, और न ही ये जीत उनकी पार्टी की हुई थी। ये उन अरमानों की जीत हुई थी जो इटली की गलियों ने सजाए थे।
3: इटली की राजनीति को दुनिया हमेशा

0: स्थिरता के उदाहरण के तौर पर देखती रही है। बीते 77 वर्षों में वहां 68 सरकारें बदल चुकी हैं। नेताओं का आना जाना वहां आम बात माना जाता है, लेकिन इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच जॉर्जिया मेलेनी ने खुद को एक मजबूत, स्थिर और भरोसेमंद नेता के तौर पर स्थापित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इटली में मेलेनी अब दूसरी सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाली प्रधानमंत्री बन चुकी है।
1: Quello che gli inglesi definirebbero un underdog. Mi guardi, onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini? Se vuoi fare una cosa, qualsiasi cosa tu voglia fare, la fai rispettando le regole.
2: जॉर्जिया मेलोनी की ओर यूरोप का प्रचंड पूंजीवादी देश इटली उम्मीदों की नजर से देख रहा है। उत्साह का ये महासागर बता रहा है कि मेलोनी के आने के बाद इटली में सिर्फ सियासत नहीं बदली है, सोच बदली है, सरोकार बदले हैं, सियासत के संस्कार बदले हैं। जिस दिन से जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है, सियासत के साथ साथ उनका निजी जीवन भी हमेशा सुर्खियों में रहा है। 2014 में टीवी जर्नलिस्ट आंद्रिया गाब्रूनो से दोस्ती हुई, 2016 में शादी हुई और एक बेटी हुई जिसका नाम जिनेवरा रखा गया। लेकिन बेटी होने के 10 साल बाद 20 अक्टूबर 2023 को मेलोनी ने आंद्रिया के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन मेलोनी ने निजी जीवन की उथल पुथल को कभी अपनी राजनीति पर हावी होने नहीं दिया, परिवार और राजनीति के बीच हमेशा संतुलन बनाए रखा। सड़कों पर नारे लगाने से लेकर इटली की कमान संभालने तक का सफर उनके अदम साहस की गवाही देता है।
3: कि जो सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है वो है वो किस प्रकार से विदाउट मिंसिंग हर वर्ड्स अपनी बात को रखती हैं। तो इटली की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, इटली की सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखने के लिए वो परिवारवादी हैं, वो परिवार की शक्ति में विश्वास रखती हैं, ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखती हैं और वो अपनी मातृभूमि को आगे ले जाने के लिए कहती हैं कि मैं काम करूंगी और वो करती हैं। तो उनकी ये सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। और इसके अलावा दूसरी राजनीतिक शक्ति है अपनी पार्टी के और इटली के लोगों से उनका जुड़ाव, जिस तरह से एक आम नागरिक उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है, ये उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। बहुत लोकप्रिय नेता रही हैं और इसीलिए एक साधारण कार्यकर्ता से वे यहां तक पहुंची हैं।
2: रैलियों में आक्रामक दिखने वाली मेलोनी को आज दुनिया भर के नेता शांत रणनीतिकार कहते हैं। दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक उनकी इस खूबी को शेप शिफ्टर कहते हैं, यानी वो हालात और जरूरत के हिसाब से खुद को ढालना बखूबी जानती है। चुनाव प्रचार के दौरान मंच से हुंकार भरने वाली मेलोनी का विदेशी मंचों पर बिल्कुल अलग चेहरा दिखता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उनका रवैया बेहद परिपक्व और सहयोग करने वाला होता है।
4: Importanti risorse in quello che si chiama tecnicamente accordo di sviluppo.
2: विदेशी नेताओं से बात करने के लिए उन्हें किसी अनुवादक की जरूरत महसूस नहीं होती। वो इटालियन के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश भाषाएं फर्राटे से बोलती हैं। कई भाषाओं पर पकड़ उन्हें ग्लोबल स्टेटस वुमन का दर्जा दिलाती है।
4: La maternità non è in vendita, che gli uteri non si affittano, che i figli non sono prodotti da banco, che puoi scegliere sullo scaffale come se fossi al supermercato.
2: सत्ता में आने से पहले यूरोपीय संघ के कई नेता मेलोनी की कट्टरपंथी छवि से डरे हुए थे। सबको लगता था कि मेलोनी यूरोप के लिए भारी सिरदर्द बनने वाली हैं। लेकिन सत्ता संभालने के बाद मेलोनी ने अपने कूटनीतिक बर्ताव से सभी आलोचकों को गलत साबित कर दिया। यूक्रेन युद्ध के बाद मेलोनी ने जो रुख अपनाया उसने अमेरिका का भी दिल जीत लिया। युद्ध के दौरान यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति का समर्थन किया। मेलोनी अफ्रीका के साथ नए सिरे से रिश्ते कायम कर रही है। इटली खुद को पूरे यूरोप का एनर्जी हब बनाना चाहता है। इस रणनीति के पीछे मकसद है चीन और रूस के अफ्रीका में बढ़ते प्रभाव को रोकना। मेलोनी चाहती हैं कि भूमध्य सागर के रास्ते आने वाले अवैध प्रवासियों पर लगाम लगे। मेलोनी अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का बेहतरीन मॉडल बना रही है। मेलोनी अपने फैसलों से सिर्फ देश के अंदर अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर रही, वो विश्व पटल पर इटली का रुतबा भी बढ़ा रही है। उनके इसी ग्लोबल विजन ने उन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की कतार में ला खड़ा किया है। ये तस्वीर उनकी बढ़ती वैश्विक ताकत और इटली के बदलते दौर का बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन मेलोनी के एक फैसले ने ट्रंप को बहुत नाराज कर दिया है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान युद्ध में इटली भी साथ रहे, लेकिन मेलोनी ने इनकार कर दिया।
5: Do we still have the same relationship with Italy right now and Giorgia Meloni?
6: No. She's been negative. Anybody that turned us down for helping with this Iran situation, we do not have the same relationship. Just so you know, Italy gets a lot of oil from the Strait. You can call it the Strait of Hormuz or the Hormuz Strait. I said, which is better? They said, either is okay, but you can call it either one. The only thing you can't call it is the Trump Strait. They don't like that idea.
2: इटली की राजनीति अपनी भयंकर अस्थिरता के लिए पूरी दुनिया में हमेशा बदनाम रही है। 77 सालों में वहां 68 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन मेलोनी ने खुद को सबसे मजबूत और भरोसेमंद चेहरा साबित किया है। मेलोनी ने दुनिया को बता दिया है कि मेहनत और जिद के आगे कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। वो इटली के गौरव की नई पहचान बन चुकी है।
0: फिलहाल इस खास पेशकश मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए आज तक।

0: सीबीएसई के पोर्टल क्रैश, पेमेंट फेल की शिकायतों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सख्त रुख अपनाया है। ये बड़ी खबर आपको देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे मामले में सीबीएसई से जवाब मांगा है। तो सीबीएसई से जवाब मांगा है, शिकायतों पर शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई से यह रिपोर्ट तलब किया है। वेबसाइट में लोगों को दिक्कत है, चूंकि पोर्टल क्रैश हो गया था, इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पोर्टल पर जाकर चीजें चेक करनी चाहिए, लेकिन उनको दिक्कतें हुई। फिर पेमेंट को लेकर बड़ी दिक्कतें हुई, क्योंकि पेमेंट बार बार फेल हो रहे थे और अलग अलग पेमेंट दिख रहे थे, इस तरह की शिकायतें लगातार आई। और अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में सीबीएसई से जवाब मांगा है कि आखिर यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। और अब ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। सोमवार को सीजीआई की अगुवाई में बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली है। ट्विशा केस में बहुत बड़ा अपडेट है। एम्स की 4 सदस्यीय टीम दोबारा पोस्टमार्टम करने वाली है कल, वो आज रवाना भी दिल्ली से हो गए हैं। और इस मामले में सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अनिशा माथुर हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया। अनिशा, सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेने के पीछे का आधार क्या है?
1: देखिए, अभी तो हमें जितनी इन्फॉर्मेशन है उसमें ये पता लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और ये अलेजेड इंस्टीट्यूशनल बायस और प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसी को लेकर स्वतः संज्ञान लिया गया। याद रखिएगा, पिछले 2 दिन से हम जिस तरह सारे में रिपोर्टिंग भी हो रही है, हमने आज तक भी डिटेल में ये बात रिपोर्ट की है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पोस्टमार्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि त्रिशा की मदर इन लॉ जो है गिरिबाला सिंह, उनको किस तरह से एंटिसिपेटरी बेल दी गई, उसके हस्बैंड समर्थ सिंह किसने किस तरह से ज्यूरिसडिक्शन का मजाक उड़ाते हुए जबलपुर में सरेंडर करने की कोशिश की और उसको कई घंटों तक गिरफ्तार नहीं किया गया, ये सारे सवाल हमने मीडिया में भी अपने आज तक के पटल पर भी उठाए हैं कई कई बारी पिछले 12 दिनों में। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है और इंस्टीट्यूशनल बायस और प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसी को लेकर जो स्वतः संज्ञान लिया गया है उसको देखते हुए सीधे तौर पर ये बात साफ है कि चीफ जस्टिस और जस्टिस जयमाले बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच कोर्ट वन जो सुनवाई करेगी मंडे को, पता चलेगा कि क्या क्या वो सवाल उठाते हैं मध्य प्रदेश की अथॉरिटीज के ऊपर।
0: बहुत शुक्रिया अनिशा आपका इस तमाम जानकारी के लिए।

0: आखिर क्या है ट्रिशा की मौत का सच? क्या ट्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई? पिछले 11 दिनों से ट्रिशा का शव इंसाफ का इंतजार कर रहा है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, सीबीआई को हर पहलू की पड़ताल करनी है। अभी ट्रिशा की मौत के कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनका सच सामने आना बाकी है। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ट्रिशा के घर के उस हिस्से की तस्वीर भी सामने आई है जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी। आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि ट्रिशा ने यहीं पर सुसाइड किया था। यही वो जगह है जहां वो फंदे से लटकते मिले। लेकिन सवाल यह है कि अमूमन इस तरह के सुसाइड घर के बंद कमरे में की जाती है ताकि घर का कोई सदस्य ना आ सके। लेकिन ट्रिशा ने सुसाइड छत जैसी खुली जगह पर किया जिसका कुछ हिस्सा ही बंद था, जहां से कोई भी उसे सुसाइड करते देख सकता था या फिर रोक सकता था। जबकि इस दौरान घर में परिवार के लोग मौजूद थे, जो कि कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ट्रिशा ने छत को क्यों सुसाइड के लिए चुना। परिवार दावा कर रहा है कि वो नशे की हालत में थी और उसने वही फांसी का फंदा लगाकर खुद की जान ले ली। अब सुसाइड से पहले की ये तस्वीर भी चौंकाने वाली है, जो कि एक ब्यूटी पार्लर की है जहां ट्रिशा सुसाइड से पहले पहुंची थी। ट्रिशा के आखिरी मेकअप का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें वो ससुराल के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में नजर आ रही है। वीडियो में ट्रिशा बेहद रिलैक्स दिखाई दे रही है, लेकिन इस फुटेज को भी जब्त कर लिया गया है। 12 मई जिस दिन ट्रिशा की मौत हुई, ट्रिशा शर्मा दोपहर लगभग 3:30 बजे पार्लर पहुंची थी और शाम लगभग 6:15 पर वहां से निकली।
1: वो आई थी और वो आई सबसे पहले उनने मेरे स्टाफ से बोला कि तुम लोग टीवी वो मूवी देख रहे हो। वो बहुत खुश थी, आई अंदर आई, फिर उनने बोला कि मेरे को रिलैक्स होने के लिए हेड ऑयल मसाज चाहिए है। देन उनने हेड ऑयल मसाज लिया, फिर उनने पेडिक्योर करवाया, फिर वो अपना कुछ और स्किन का काम करने के लिए वो फिर फेशियल सेक्शन में गई। वहां पे उन्हें
2: पहले कहां पे वो आई, जब उसके बाद कहां पे वो यहां पे आपके पार्लर में कहां इधर उस भर बैठी या कहीं और?
1: इधर बैठी थी वो थोड़ी देर के लिए, देन उसके बाद फिर वो इधर उधर गई और उधर उन्हें हेड ऑयल मसाज कराई।
2: ये एक बार आप जरा आकर के एक बार दिखा दें। आप इस वक्त हम पहुंच गए हैं, ये वो कुर्सी है।
1: जी
2: जी।
1: उसके बाद वो इस रूम में गई थी और यहाँ पे उनका कुछ काम था जो उनने यहाँ पे कराया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे,
2: ये मतलब ये वो चेयर है जो आखिरी जो सीसीटीवी वायरल फुटेज सामने आया है जिसमें वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई हैं, और ये वो चेयर है जहाँ पे ट्रिशा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं ट्रिशा के आखिरी लम्हों की ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद वो उस चेयर
1: पे पेडिक्योर कराया था, उस चेयर पे बैठ के पेडिक्योर कराया था,
2: वो वाली चेयर।
1: जी जी जी।
0: अब सवाल यह है कि क्या सुसाइड से पहले कोई ब्यूटी पार्लर में रिलैक्स होने जा सकता है? ब्यूटी पार्लर ट्रिशा के ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी पर है और उनको सर्विस देने वाले ने साफ कहा कि कहीं पर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ट्रिशा किसी भी तरह की टेंशन में।
1: वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी।
2: कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था?
1: नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी।
2: पास में ही घर है उनका?
1: हाँ, उनका पास में ही घर है।
2: अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उन्हें उनको देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा, तो उस दिन क्या था? उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था, या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही है?
1: नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसते हुए अंदर आई थी और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उन्हें करवाया था। उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं। तो फिर उन्होंने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा, तो उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई।
2: बस यही मेरा एक सवाल था, हेड ऑयल मसाज ये पहली बार उन्होंने करवाया था, इससे पहले भी उन्होंने करवाया था, या सिर्फ उसी दिन आपको स्पेशली उन्होंने कहा कि?
1: पहले भी कराया होगा, बट मेरे को देखना पड़ेगा रजिस्टर के इससे पहले कौन कौन सी सर्विसेज
2: ली। उस दिन उन्होंने ये बोला था कि मुझे सर दर्द हो रहा है, कुछ रिलैक्स होना है,
1: सर दर्द या मेरे को रिलैक्स होना है, ऐसा कुछ बोला होगा, तो मेरे को ऐसा कुछ बताओ। तो हेड ऑयल मसाज कराई थी या सर दर्द हो रहा होगा, एकदम याद नहीं है, एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं है कि क्या बोला था, बट रिलैक्स तो होना था उनको, तो इसलिए उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई थी।
0: इस कड़ी में सबसे अहम किरदार है ट्विशा के पति समर सिंह का, जिससे पुलिस को कई सच उगलवाने हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा को सुसाइड करना पड़ा, और अगर ये हत्या है तो फिर आखिर ट्विशा को क्यों मारा गया? क्या हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, या फिर सच में ट्विशा ने नशे की हालत में खुद की जान ले ली?
3: नहीं, अभी उतना नहीं। देखो, इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है, हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना थोड़े कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा। सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। रात को 3 बजे तो काफी लेट नाइट तो आया है, फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीजें होती हैं।
0: बहरहाल त्विशा की मौत अपने आप में कई सवाल समेटे हुए है, जिसका सच आना अभी बाकी है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले में ट्विशा की सास भी सवालों के घेरे में है, जिस पर लगातार अपने रसूख का इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। गिरीवाला सिंह ट्विशा शर्मा की सास जो शुरू से सवालों के घेरे में है और चुप है। गिरीवाला सिंह भले ही कुछ न बोले, लेकिन उन पर लगे गंभीर आरोप है। अपने रसूख का इस्तेमाल अपने बेटे को बचाने में करने के इल्जामों को इस एक घटना ने और गहरा करने का काम किया।
4: स्वागत है सीबीआई जांच का, हम स्वागत करते हैं सीबीआई। सीबीआई जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और इस बात की जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए।
0: जिस ब्यूटी पार्लर में ट्विशा गई थी, वहां ट्विशा की सास को लेकर भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। 12 मई को ट्विशा ब्यूटी पार्लर गई थी, जिसके अगले दिन यानी 13 मई को सुबह 11:30 बजे ट्विशा की सास गिरीवाला सिंह का फोन आया। किरण का दावा है कि इस दौरान गिरीवाला ने बार बार पूछा क्या ट्विशा पार्लर आई थी, वो कितने बजे आई, कितने बजे गई, और पेमेंट कैसे किया गया।
2: कि जो हुआ उसका आपको कब पता चला कि ऐसा हो गया है हादसा?
1: मुझे पता चला जब गिरीवाला मैम का फर्स्ट कॉल आया और उनने मुझसे पूछा कि ट्विशा कब आई थी, कब गई, तो मैंने फिर उनको बोला कि ठीक है मैं पार्लर पहुंच के बताती हूँ स्टाफ से पूछ के कि कब आई थी कब गई थी। फिर उनका सेकंड कॉल आया था तो मिस कॉल था, मैं उठा नहीं पाई थी, तो मैंने वापस उनको कॉल बैक किया, उनसे पूछा कि मैम आपने कॉल किया था क्या, तो उनने बोला हाँ मुझे पता करना था, पूछना था कि ट्विशा कब आई और कब गई।
2: ये कब कॉल आया था आपके पास?
1: वो ये 13 तारीख के ही कॉल है। फिर मैं जब यहाँ आई तो मैंने उनको कॉल लगा के बताया कि मैम ट्विशा मैम आई थी, वो इतने बजे आई थी और इतने बजे गई। मैंने बाहर का फुटेज देखा कि वो गई कैसे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा बाहर कि मैडम लग रहा है घर पहुंची नहीं है, या कुछ तो भी ऐसा है जिसकी वजह से मैम का बार बार कॉल आ रहा है। फिर मैंने उनको जब बताया फोन करके कि मैम इतने बजे आई थी, इतने बजे गई थी।
0: ट्विशा की सास गिरीवाला बार बार ये जानने की कोशिश कर रही थी कि ब्यूटी पार्लर में कुछ तो हुआ होगा। उन्होंने खास तौर पर यह जानना चाहा कि क्या ट्विशा के आने का कोई रिकॉर्ड, पेमेंट डिटेल या कोई सबूत मौजूद है। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट के सबूत नहीं थे, क्योंकि ट्विशा ने शादी के बाद से ही ब्यूटी पार्लर का पैकेज ले रखा था। ऐसे में उस दिन उसने पेमेंट नहीं की थी। लेकिन जब ट्विशा की सास को ब्यूटी पार्लर में सीसीटीवी होने की जानकारी मिली, तो वो कुछ लोगों के साथ ब्यूटी पार्लर पहुंचे, जो लोग खुद को वकील बता रहे थे।
1: मैंने मैम से पूछा कि क्या हो गया है मैम, ट्विशा मैम ठीक तो है ना? तब उनने मुझे बताया कि उनने सुसाइड कर ली है।
2: आपको भरोसा हुआ?
1: नहीं, मेरे को लगा शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है, उनने कोशिश करी होगी या कुछ हुआ नहीं होगा। तो फिर जब 5 लोग बाद में आए थे, मैंने उनसे पूछा जो फुटेज लेने के लिए आए थे।
2: कौन लोग थे वो?
1: उनको वो एडवोकेट लग रहे थे मुझे।
2: अच्छा,
1: मतलब एडवोकेट वाले का। हाँ, उनके पास आई कार्ड भी था, वो पहने हुए थे और एडवोकेट थे, और उनने बताया कि वो मतलब फुटेज चाहिए पुलिस को, मैडम आई थी गई थी तो वो आप दिखा सकते हैं क्या सीसीटीवी? तो मैंने बोला दिखाया उनको। फिर उसके बाद उनने फुटेज ली। और
2: क्या वो गिरीवाला सिंह के वकील थे?
1: ये नहीं पता, क्योंकि ये मैंने उनसे पूछा नहीं। क्योंकि मुझे लगा कि मे बी होंगे उनके, या उनने ये बोला कि पुलिस को चाहिए, पुलिस को चाहिए।
0: इस पूरे खेल में पुलिस की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मामले का अहम सबूत सीसीटीवी ट्विशा की सांस ले गई, लेकिन पुलिस की टीम ब्यूटी पार्लर तक नहीं पहुंच सकी।
1: पुलिस तो नहीं आई
2: अभी, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं आई?
1: नहीं, कोई नहीं आया।
2: आपसे कोई सबूत वकीलों ने बाद में इसके अलावा, फुटेज के अलावा?
1: नहीं, कुछ भी नहीं।
0: 11 दिन पहले भोपाल में हुई ट्विशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गया, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है।
4: अरे कोई कानून ने क्या आपको सब बताए?
5: तीन नोटिस जारी हो चुके हैं अभी तक। पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं।
6: पीड़ित परिवार कहता है,
5: देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही
6: है।
4: स्वागत है सीबीआई जांच का।
0: एक तरफ ट्विशा का पति समर्थ फरार था, तो इस दौरान समर्थ की माँ और ट्विशा की सास गिरिबाला अपनी ही बहू पर आरोप लगाती रही। मतलब वो घंटों फोन पर बात करती थी, घर से गायब रहती थी, पूछने पर नहीं बताती थी। सवाल ये है कि ट्विशा की जीते जी यही शिकायत आपने कभी ट्विशा के घर वालों से क्यों नहीं की? और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: लुकिंग फॉर मोर स्पोर्ट्स एनालिसिस बिटवीन गेम्स? Tune in has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
9: It's college football time. College basketball feels
8: Pardon
9: like
8: my
9: it's
8: take.
10: The Rams catching the Commanders.
8: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मोदी से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात। वैश्विक हालात के साथ आपसे साझेदारी पर बात। ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री को दिया अमेरिका आने का न्योता। सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत से नाराज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मांगा जवाब। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा की आंसर शीट लेने के लिए 24 मई तक मियाद बढ़ाई। शिरडी में डिफेंस कॉम्प्लेक्स का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। कहा मेक इन इंडिया से रक्षा कंपनीज की बढ़ेगी क्षमता, तभी देश होगा और मजबूत। विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान। सोमवार को सुनवाई। 7 दिन के पुलिस रिमांड में आरोपी पति समर्थ। ईरान और अमेरिका में छिड़ा मैप वॉर। पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी नक्शे पर लगाया अमेरिकी झंडा। बदले में तेहरान ने भी अमेरिका के मानचित्र पर दिखाया अपना ध्वज।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे का दूसरा दिन आज कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और लगभग एक घंटे तक बातचीत। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने किया पोस्ट, लिखा कि रूबियो से भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी, वैश्विक शांति सुरक्षा को लेकर लंबी बात हुई। पीएम से मिलने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वैश्विक हित के लिए साथ मिलकर काम करते रहेंगे भारत अमेरिका। रूबियो ने पीएम मोदी को ट्रंप की ओर से अमेरिका आने का न्योता भी दिया, कहा कि अमेरिका में भारतीय कंपनीज ने किया है $20 अरब का निवेश। आज दिल्ली में विदेश मंत्री जयशंकर से मिलेंगे मार्को रूबियो, एनएसए अजीत डोभाल से भी करेंगे मुलाकात। ईरान को लेकर मार्को रूबियो ने कहा कि समझौते को लेकर कुछ प्रगति हुई है, लेकिन कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना सकता तेहरान। सोमवार को आगरा और जयपुर का दौरा करेंगे मार्को रूबियो, मंगलवार को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। दिल्ली से पहले कोलकाता में मदर टेरेसा हाउस में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दौरा किया, मदर टेरेसा को दी श्रद्धांजलि। ईरान से तनातनी के बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट डाला जिससे मचा हड़कंप, उसमें ईरान के नक्शे पर अमेरिका झंडा लगाया दिखाया गया। ईरान ने भी किया पलटवार, सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी नक्शे पर दिखाया अपना झंडा। यूपी में बिजली कटौती पर योगी ने सख्त नाराजगी जाहिर की, मुख्यमंत्री निर्देश के बाद शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश, गाजियाबाद और मेरठ में इंजीनियर सस्पेंड। यूपी में बिजली की किल्लत को लेकर सियासी जंग भी तेज, अखिलेश यादव ने लिखा पोस्ट, कहा कि महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी सरकार, बीजेपी के मंत्री विधायक सब जिम्मेदार। अखिलेश के आरोप पर यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोले 2012 से 17 के बीच में बिजली की औसत डिमांड थी 13,000 मेगावाट और आज 30,000 मेगावाट के पार। यूपी के बांदा में बिजली कटौती के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, सड़कों पर किया हंगामा। 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया लेटर। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बीजेपी में शामिल होने के बाद मिला बड़ा तोहफा, राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की शुभेंदु अधिकारी के साथ वर्चुअल मीटिंग, आयुष्मान योजना लागू करने पर चर्चा, 500 करोड़ की पहली किश्त भेजा। शुभेंदु अधिकारी ने पलटा बकरीद पर ममता बनर्जी का फैसला, अब 2 दिन की जगह सिर्फ 1 दिन होगी छुट्टी। शुभेंदु अधिकारी के निर्देश के बाद आसनसोल में अभियान, अवैध पार्किंग, बिजली वसूली रैकेट का पर्दाफाश। पश्चिम बंगाल में पीएम विश्वकर्मा योजना होगी लागू, राज्य निगरानी कमेटी का गठन। शामली में मोनू की मां को इंसाफ दिलाने पहुंचे सांसद इकरा हसन पर मुकदमा का शब्द, समाज में बढ़ा रोष। एफआईआर के बाद समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने दिखाए तेवर, कहा कि कान खोल कर सुन ले प्रशासन, हम डरने वाले नहीं। रामपुर में 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने आजम खान की 7 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल किया है। बलरामपुर में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बोले कि अब असलाह लेकर कौन चलता है, हाईकोर्ट के आदेश को बताया सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया। संभल में 200 बीघा झील के जमीन से अवैध कब्जा हटा और मजार को बुलडोजर से तोड़ा गया, 80 बीघा कृषि भूमि पर कार्रवाई। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ अभियान तेज, अत्याधुनिक मेड इन इंडिया एयर प्योरिफिकेशन तकनीकों का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। नीट पेपर लीक से परेशान होकर सुसाइड करने वाले छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार से राहुल गांधी ने की बात, राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी थे प्रदीप मेघवाल। हरियाणा के सीएम ने बड़ी घोषणा की, नीट अभ्यर्थियों को 20 और 21 जून को मिलेगा मुफ्त रोडवेज बस सेवा। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बिहार सरकार की भी पहल, सरकारी बसों में मुफ्त सवारी की सुविधा। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने की तारीख अब बढ़ाई, 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन। सूरत में यूथ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, पेट्रोल पंप पर लोगों को खिलाई गई मेलेडी चॉकलेट, पीएम के पुराने भाषण सुनाकर निशाना साधा। पेट्रोल डीजल सीएनजी की कीमत फिर से बढ़ गई, 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा गई, 87 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा, डीजल 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। महोबा में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर दर्ज, पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की मामले में कार्रवाई। अजय राय बोले कि मेरे खिलाफ एआई वीडियो बनाया गया, जेल में डाल दो कोई परवाह नहीं है। लखनऊ में वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई, 31,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों पर पंजीकरण रद्द, यूपी में 1,18,000 से ज्यादा दर्शनी वक्फ संपत्तियां। शिरडी पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साई दरबार में किए दर्शन, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी साथ। शिरडी में डिफेंस कॉम्प्लेक्स का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन, बोले कि मोदी सरकार मेक इन इंडिया को लगातार दे रही है बढ़ावा। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात, पटना में नितिन नवीन के आवास पर जाकर उन्हें बधाई दी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पदयात्रा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत।
लखनऊ में वकीलों और पुलिस के बीच में टकराव। बार एसोसिएशन ने वकीलों को बांटी लाठियां। चैंबर तोड़े जाने के बाद वकीलों में नाराजगी। शाहजहांपुर विधायक वीर विक्रम सिंह ने ईंधन बचाने के लिए घोड़े का लिया सहारा। अशोक का कुल परिवार से मिलने पहुंचे थे। सुरक्षा कर्मी भी घोड़े पर चले। गुजरात के पाटन के सरस्वती तालुका पंचायत में बीजेपी का कब्जा टाए के बाद चिट्ठी उछाल कर हुआ फैसला। बिहार की मोतिहारी में हॉर्न बजाकर वीआईपी कल्चर का विरोध। गर्मी में ट्रैफिक रोकने पर फूटा लोगों का गुस्सा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऋषभ मौत केस में आरोपी समर को 7 दिनों की हिरासत। भोपाल कोर्ट ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिशा शर्मा मौत मामले का स्वतः संज्ञान लिया। सोमवार को सुनवाई होगी। देश के 50 शहर में यूपी के 26 शहर सबसे ज्यादा गर्म। लखनऊ भी गर्म शहरों में शामिल। प्रयागराज में गर्मी और लू का प्रकोप। कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री पार। यूपी के सहारनपुर में भीषण गर्मी के बीच में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को राहत देने की पहल। जवानों को दिए गए 50 हाईटेक एसी हेलमेट। अयोध्या में भीषण गर्मी के चलते राम भक्तों की संख्या घटी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा। तेलंगाना में भीषण गर्मी का कहर। लू से 16 लोगों की मौत। 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान भी। हरियाणा में राजस्थान के वॉलीबॉल खिलाड़ी की हत्या। पोस्टमार्टम में गंभीर चोट का खुलासा हुआ। सूरत में अपराध के लिए कुख्यात लिंबायत इलाके में महिला आईपीए ने की बाइक पर पेट्रोलिंग। तंग गलियों में पहुंचने पर लोग भागते दिखे। बड़ोदरा में अवैध मिट्टी खनन के दौरान हाथ से मिट्टी का टीला धंसने से 2 लोगों की मौत। गाजियाबाद में जनगणना कर्मी से विवाद के बाद पड़ोसी को घर में घुसकर मारी गई गोली। पुलिस के मुताबिक घायल अब खतरे से बाहर। यूपी के चंदौली में पुलिस ने 17 मई को युवक पर हुई फायरिंग के वारदात का खुलासा किया। आरोपी 3 थे गिरफ्तार। अहमदाबाद ने आरबीआई को 8,70,00,000 रुपए का चूना लगाने वाले बैंक कर्मचारी को पुलिस ने पकड़ा। 2,20,00,000 की नकदी बरामद। गुजरात के पंचमहल में बड़े साइबर गिरोह का खुलासा। ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत पुलिस ने पूर्व बैंक मैनेजर समेत 3 को किया गिरफ्तार। जामनगर में क्रेडिट कार्ड निवेश के नाम पर 25 करोड़ की ठगी का आरोप। व्यापारियों ने केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। सूरत में ब्रिज के पास में सीसीटीवी पोल पर चढ़ा एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक। फायर ब्रिगेड की टीम ने सुरक्षित उतारा नीचे। नागपुर में विशाल भीड़। सड़क पर गिरने का सीसीटीवी फुटेज आया। सामने बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली के गोविंदपुर में मां बेटे की हत्या। मुठभेड़ में ये आरोपी गिरफ्तार हुआ है और 20 मई को उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बिहार के आरा में जमीन विवाद में डबल मर्डर। 1.5 फीट जमीन को लेकर 2 लोगों में पीट पीट कर वहां हत्या कर दी गई। और चर पोखरी थाना इलाके में मदई गांव की घटना। मोतिहारी में जमीनी विवाद में हत्या। 1 फीट जमीन के लिए युवक को चाकू से गोद डाला। रायगढ़ के छाता मुड़ा बाईपास में कबाड़ी गोदाम में लगी भीषण आग। आसपास के शोरूम को खाली करवाया गया। सूरत में हिंदू महिला दोस्त से मिलने के लिए पहुंचे मुस्लिम शख्स की भीड़ ने की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिला पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। एशियाई खेल के चयन ट्रायल का रास्ता साफ। तेलंगाना में नीम्स के डॉक्टर ने रिकॉर्ड 2,000 किडनी प्रत्यारोपण किया और इसमें 95% तो मुफ्त इलाज रहे। मैदानी इलाकों में गर्मी के चलते पहाड़ों का रुख करे सैलानी। हरिद्वार में हल्की पड़ी पर दिखाई दिया आस्था का मेला। उत्तराखंड के चमोली में श्री हेमकुंड साहिब के गुरुद्वारे के कपाट विधि विधान के साथ खुले। 225 दिन बाद खुले हैं हेमकुंड साहिब के कपाट। मनाली रोहतांग मार्ग पर लंबा ट्रैफिक जाम। मनाली लौटने और रोहतांग पहुंचने के लिए सैलानियों को करना पड़ रहा लंबा इंतजार। पर्यटन सीजन के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर दिखा वाहनों का लंबा जाम। घंटों फंसे रहे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी। पहाड़ों पर जमी बर्फ। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम पर बड़ी उपलब्धि। अब से 22 दिनों में यात्रियों का आंकड़ा 1,00,000 के पार पहुंचा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पुलिस को मिली कामयाबी और हाईटेक मोबाइल फोरेंसिक वैन की अब यहां हुई शुरुआत। महिला वर्ल्ड कप के लिए मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुई भारतीय महिला क्रिकेट टीम। एयरपोर्ट पर धूमधाम के साथ दी गई विदाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की कोशिश और ईरान की IRGC ने रचित साजिश के आरोप। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 24 घंटे में गुजरे 25 जहाज। IRGC ने दावा किया। चीन की कोयला खदान में बड़ा ब्लास्ट। 90 से ज्यादा लोगों की मौत। 247 मजदूर उस समय कर रहे थे काम। यूक्रेन में वाइल्ड ड्रोन प्रतियोगिता का आयोजन। सैन्य ड्रोन ऑपरेटर्स ने लिया हिस्सा। बांग्लादेश में ईद से पहले दुर्लभ सफेद भैंसा बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। सुनहरे बालों की वजह से इसे डोनाल्ड ट्रंप दिया गया था नाम।

0: अब बात करते हैं भीषण गर्मी के बीच जारी बिजली कटौती की, जिससे जनता बेहाल है। यूपी में पावर कट को लेकर जनता गुस्से में है, सड़कों पर नजर आ रही है।
1: भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली कटौती ने आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक और हापुड़ से लेकर रामपुर तक भयंकर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। राजधानी लखनऊ का हाल देखिए। महिला का गुस्सा बिजली कर्मचारियों पर उतर रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। लखनऊ में लोगों ने रात को सड़क ही जाम कर दी। ये दुबग्गा पावर हाउस के तहत आने वाला मॉडर्न पिंक सिटी इलाका है। यहाँ पिछले चार दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बीती रात लोगों का सब्र जवाब दे गया।
2: क्या ये रोज आप लोग ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही दिन कट रहा है?
3: हाँ, जब बिजली नहीं आ रही तो लोग इस तरह बैठते हैं, और छुट्टियां भी हो गई हैं तो बड़ी समस्या बनी हुई है। जब से तापमान बढ़ा है तब से बिजली संकट बहुत गहरा गया है।
4: अब लोग कल दो दिन से रात में सो ही नहीं पा रहे हैं।
1: आम जनता ही नहीं, विधायक जी का हाल भी बुरा है। रायबरेली के बीजेपी के विधायक अशोक कोरी का बिजली कर्मियों को हड़काने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
5: आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? आठ आठ घंटे, चार चार छह छह घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं।
1: मेरठ में बिजली से बेहाल जनता ने मेयर आवास की ओर कूच कर दिया, नारेबाजी और हंगामा किया। जनता के सामने मेयर साहब भी खुद को लाचार बता रहे हैं। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज में करीब 14 से 16 घंटे बिजली कट रही है, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में छात्र अब कॉलेज के बाहर मोर्चा लेकर बैठे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यूपी में बिजली कटौती से जनता को कब राहत मिलेगी? कब वो भीषण गर्मी के बीच सड़कों की बजाय घरों में आराम से रहेगी? आज तक ब्यूरो।
0: एक और पावर कट से जनता बेहाल है तो दूसरी ओर इस पर सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो वहीं सरकार बिजली कटौती के दावों को खारिज कर रही है।
1: यूपी में बिजली कटौती ने एक ओर जनता को बेहाल कर रखा है तो वहीं इस पर सियासत भी जोरदार है। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार हैं। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। एके शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। मायावती भी बिजली कटौती पर भड़की नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी में बिजली की कम आपूर्ति और कटौती आदि से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों, करोड़ों मेहनत कश लोगों का जीवन कष्टदायी बना हुआ है। इसको लेकर लोग अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। कहने को तो सरकार दावा करती है कि डिमांड सप्लाई सब बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करते हैं। यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, इटावा, आगरा जैसे जिलों में 6 घंटे की निर्धारित कटौती होनी है, लेकिन हकीकत में इससे ज्यादा घंटे तक बिजली गुल रहती है।
2: बिजली के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिन रात काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डिफॉल्ट जितने भी आएंगे, फॉल्ट आएंगे, उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बढ़ता हुआ तापमान और इस तापमान में बढ़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है।
1: यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई का रोस्टर है, लेकिन अघोषित कटौती की वजह से ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली आती है। लोकल फॉल्ट और ट्रिपिंग से समस्या और बढ़ जाती है। शहरी इलाकों में मांग बढ़ने पर ग्रामीण इलाकों की बिजली काट दी जाती है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से बिजली विभाग को कम राजस्व मिलता है। बहरहाल सियासी खींचतान के बीच जनता बेहाल नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में एक और सियासत हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान को लेकर, जहां पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की इस अमर्यादित टिप्पणी ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। मामला अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। महोबा में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी की शिकायत के बाद महोबा पुलिस ने अजय राय समेत करीब 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
7: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय अभद्र टिप्पणी भी की। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
6: दरअसल महोबा में अजय राय दलित महिला से मिलने पहुंचे थे, जहां अब वो पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी को फर्जी एआई वीडियो बता रहे हैं।
8: कि जो महोबा में गया था वो एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक रेप किया गया है, उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए और उसको उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया है अपराधियों ने। आज उसकी बात मैंने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा, उन्होंने एआई जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, पर उस दलित बच्ची को जिसके साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके नशे के इंजेक्शन लगाए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया, उसको न्याय दीजिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं।
6: उधर बीजेपी अजय राय पर चौतरफा हमलावर है। योगी आदित्यनाथ ने भी अजय राय की भाषा पर सवाल खड़े किए।
9: शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को, धिक्कार होना चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? गाली गलौज की भाषा आप मर्यादित राजनीतिक वातावरण में, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग है? पहले राहुल गांधी जानबूझ करके अपमानित करने की चेष्टा करते हैं और अब अजय राय ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। राजनीति की कोई मर्यादा नहीं रह गई है, शुद्ध रूप से गाली गलौज की प्रयोग कर रहे।
6: मामला अब तूल पकड़ रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जिस पर फिजिक्स के पेपर को आउट करने का आरोप है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस मामले में 3 महिलाएं गिरफ्तार की जा चुकी हैं और तीनों का नाम ही मनीषा है, और ये मामले में अब 11वीं गिरफ्तारी है।

0: पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और अब नीट का फिजिक्स का पेपर आउट कराने वाले आरोपी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। पुणे से सीबीआई ने मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया है। केस की आरोपी मनीषा मंधारे की तरह ही मनीषा हवलदार बतौर एक्सपर्ट एनटीए से जुड़ी थी, जिससे फिजिक्स के प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी। आरोप है कि अप्रैल 2026 में उसने परीक्षा से जुड़े कई फिजिक्स सवाल मनीषा मंधारे को शेयर किए। जांच एजेंसी के मुताबिक जो सवाल मनीषा हवलदार ने शेयर किए थे, उनका मिलान नीट यूजी 2026 के असली फिजिक्स पेपर सेट से किया गया था और दोनों में समानता पाई गई। हैरानी की बात यह है कि इस केस में अब तक जो तीन महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं, उन तीनों का नाम मनीषा ही है। इस बीच नीट पर जारी सियासत के बीच राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक से परेशान होकर सुसाइड करने वाले छात्र के परिवार से फोन पर बात की।
1: नमस्कार, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर।
2: बोलो,
1: कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे?
2: 3 साल।
3: बोलो आप, हिम्मत रखो।
2: 3 साल से पढ़ाई कर रहा था, अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला था, भी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड
1: किया। तो पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार किए?
2: नहीं, ये तीसरी बार था
1: और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा।
0: बहरहाल इस पूरे मामले में नीट पेपर कराने वाली संस्था एनटीए की भूमिका सवालों के घेरे में है, जो कि हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
4: लखनऊ से बेहैरान कर देने वाली तस्वीर आई है, जहां पर पुलिस के खिलाफ लखनऊ में बार एसोसिएशन ने वकीलों को लाठियां थमाई हैं। अब क्या लखनऊ में वकील पुलिस की लाठी का जवाब लाठी से देंगे?

0: लखनऊ बार एसोसिएशन में बट रही ये लाठियां अब पुलिस के एक्शन पर पलटवार के लिए तैयार है। 17 मई को बुलडोजर एक्शन के दौरान हुए लाठी चार्ज के खिलाफ अब वकीलों ने खुद भी हाथों में लाठी रखने का जिम्मा ले लिया है। बार एसोसिएशन की तरफ से वकीलों को करीब 600 लाठियां बांटी गईं। वकीलों का दावा है कि पुलिस कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए ये कदम उठाया गया है, यानी अगर पुलिस लाठी चार्ज करेगी तो वकील भी जवाब में लाठी चार्ज के लिए तैयार है। लाठी चार्ज के खिलाफ लखनऊ जिला कोर्ट में वकीलों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते कोर्ट का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित है। वकीलों के चैम्बर्स तोड़े जाने और बुलडोजर की कार्रवाई से भयंकर नाराजगी है। वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने लाठी से पीटा था, अब बदला लेने का ऐलान हुआ है, यानी अगर पुलिस दोबारा एक्शन लेगी तो बार एसोसिएशन के वकील पुलिस का जवाब लाठी से देंगे। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: अथ ट्विशा के जिसकी मौत अभी भी मिस्ट्री बने हुए है। एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर सिंह को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने समर के 7 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की है। वहीं ट्विशा के परिवार वालों की ओर से आवेदन पर कोर्ट की तरफ से समर का पासपोर्ट जब्त भी किया गया और इस बीच में ट्विशा की मौत से पहले के सीसीटीवी ने सबको चौंकाया है।

आखिर क्या है ट्रिशा की मौत का सच? क्या ट्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई? पिछले 11 दिनों से ट्रिशा का शव इंसाफ का इंतजार कर रहा है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, सीबीआई को हर पहलू की पड़ताल करनी है। अभी ट्रिशा की मौत के कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनका सच सामने आना बाकी है। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ट्रिशा के घर के उस हिस्से की तस्वीर भी सामने आई है, जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी। आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि ट्रिशा ने यहीं पर सुसाइड किया था। यही वो जगह है जहां वो फंदे से लटकते मिले। लेकिन सवाल यह है कि अमूमन इस तरह के सुसाइड घर के बंद कमरे में की जाती है, ताकि घर का कोई सदस्य ना आ सके। लेकिन ट्रिशा ने सुसाइड छत जैसी खुली जगह पर किया, जिसका कुछ हिस्सा ही बंद था, जहां से कोई भी उसे सुसाइड करते देख सकता था या फिर रोक सकता था। जबकि इस दौरान घर में परिवार के लोग मौजूद थे, जो कि कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ट्रिशा ने छत को क्यों सुसाइड के लिए चुना। परिवार दावा कर रहा है कि वो नशे की हालत में थी और उसने वही फांसी का फंदा लगाकर खुद की जान ले ली। अब सुसाइड से पहले की ये तस्वीर भी चौंकाने वाली है, जो कि एक ब्यूटी पार्लर की है, जहां ट्रिशा सुसाइड से पहले पहुंची थी। ट्रिशा के आखिरी मेकअप का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें वो ससुराल के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में नजर आ रही है। वीडियो में ट्रिशा बेहद रिलैक्स दिखाई दे रही है, लेकिन इस फुटेज को भी जब्त कर लिया गया है। 12 मई जिस दिन ट्रिशा की मौत हुई, ट्रिशा शर्मा दोपहर लगभग 3:30 बजे पार्लर पहुंची थी और शाम लगभग 6:15

0: हेड ऑयल मसाज चाहिए है। देन उन्हें हेड ऑयल मसाज लिया, फिर उन्हें पेडिक्योर करवाया, फिर वो फिर अपना कुछ और स्किन का काम करने के लिए वो फिर फेशियल सेक्शन में गई। वहाँ पे उन्हें
1: पहले कहाँ पे वो आई, जब उसके बाद कहाँ पे वो यहाँ पे आपके पार्लर में कहाँ, इधर उस भर बैठी या कहीं और?
0: इधर बैठी थी वो थोड़ी देर के लिए, देन उसके बाद फिर वो इधर उधर गई और उधर उन्हें हेड ऑयल मसाज कराई।
1: ये सीट पे एक बार आप जरा आकर के एक बार दिखा दें आप। इस वक्त हम पहुंच गए हैं, ये वो कुर्सी है।
0: हाँ, हाँ, इस चेयर जी, हेड ऑयल मसाज कराई
1: जी।
0: उसके बाद वो इस रूम में गई थी और यहाँ पे उनका कुछ काम था जो उन्हें यहाँ पे कराया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे,
1: ये मतलब ये वो चेयर है जो आखिरी जो सीसीटीवी वायरल फुटेज सामने आया है जिसमें वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई हैं, और ये वो चेयर है जहाँ पे त्विशा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं त्विशा के आखिरी लम्हों की ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद वो
0: उस चेयर पे पेडिक्योर कराया था, उस चेयर पे बैठ के पेडिक्योर कराया था
1: वो वाली चेयर।
0: जी जी जी।
2: अब सवाल यह है कि क्या सुसाइड से पहले कोई ब्यूटी पार्लर में रिलैक्स होने जा सकता है? ब्यूटी पार्लर त्विशा के ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी पर है और उनको सर्विस देने वाले ने साफ कहा कि कहीं पर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि त्विशा किसी भी तरह की टेंशन में है।
0: वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी।
1: कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था?
0: नहीं नहीं नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी।
1: पास में ही घर है उनका?
0: हाँ हाँ, उनका पास में ही घर है।
1: अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उन्हें उनको देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा, तो उस दिन क्या था? उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था, या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही है?
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसते हुए अंदर आई थी और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उन्हें करवाया था। उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं। तो फिर उन्होंने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा तो उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई।
1: बस यही मेरा एक सवाल था, हेड ऑयल मसाज ये पहली बार उन्होंने करवाया था, इससे पहले भी उन्होंने करवाया था, या सिर्फ उसी दिन आपको स्पेशली उन्होंने कहा कि?
0: पहले भी कराया होगा बट मेरे को देखना पड़ेगा रजिस्टर की इससे पहले कौन कौन सी सर्विसेज ली।
1: उस दिन उन्होंने ये बोला था कि मुझे सर दर्द हो रहा है, कुछ रिलैक्स होना है,
0: सर दर्द या मेरे को रिलैक्स होना है, ऐसा कुछ बोला होगा तो मेरे को ऐसा कुछ बताओ। तो हेड ऑयल मसाज कराई थी या सर दर्द हो रहा होगा, एकदम याद नहीं है, एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं है कि क्या बोला था, बट रिलैक्स तो होना था उनको, तो इसलिए उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई थी।
2: इस कड़ी में सबसे अहम किरदार है त्विशा के पति समर सिंह का, जिससे पुलिस को कई सच उगलवाने हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि त्विशा को सुसाइड करना पड़ा, और अगर ये हत्या है तो फिर आखिर त्विशा को क्यों मारा गया? क्या हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, या फिर सच में त्विशा ने नशे की हालत में खुद की जान ले ली?
3: नहीं, अभी उतना नहीं। देखो, इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है, हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना थोड़े कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा, सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। रात को 3 बजे तो काफ़ी लेट नाइट तो आया है, फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं।
2: बहरहाल, त्विशा की मौत अपने आप में कई सवाल समेटे हुए है जिसका सच आना अभी बाकी है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
4: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: दिल्ली में पीएम मोदी से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात। वैश्विक हालात के साथ आपसी साझेदारी पर बात। ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री को दिया अमेरिका आने का न्योता। सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत से नाराज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मांगा जवाब। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा की आंसर शीट लेने के लिए 24 मई तक मियाद बढ़ाई। शिरडी में डिफेंस कॉम्प्लेक्स का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। कहा मेक इन इंडिया से रक्षा कंपनीज की बढ़ेगी क्षमता, तभी देश होगा और मजबूत। विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान। सोमवार को सुनवाई। 7 दिन की पुलिस रिमांड में आरोपी पति समर्थ। ईरान और अमेरिका में छिड़ा मैप वॉर। पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी नक्शे पर लगाया अमेरिकी झंडा। बदले में तेहरान ने भी अमेरिका के मानचित्र पर दिखाया अपना ध्वज। अब बात करते हैं भीषण गर्मी के बीच जारी बिजली कटौती की, जिससे जनता बेहाल है। यूपी में पावर कट को लेकर जनता गुस्से में है, सड़कों पर नजर आ रही है।
1: भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली कटौती ने आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक और हापुड़ से लेकर रामपुर तक भयंकर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। राजधानी लखनऊ का हाल देखिए। महिला का गुस्सा बिजली कर्मचारियों पर उतर रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। लखनऊ में लोगों ने रात को सड़क ही जाम कर दी। ये दुबग्गा पावर हाउस के तहत आने वाला मॉडर्न पिंक सिटी इलाका है। यहाँ पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बीती रात लोगों का सब्र जवाब दे गया।
2: क्या ये रोज आप लोग ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही दिन कट रहा है?
3: हाँ, जब बिजली नहीं आ रही तो लोग इस तरह बैठते हैं, और छुट्टियां भी हो गई हैं तो बड़ी समस्या बनी हुई है। जब से तापमान बढ़ा है तब से बिजली संकट बहुत गहरा गया है।
4: अब लोग कल दो दिन से रात में सो ही नहीं पा रहे हैं।
1: आम जनता ही नहीं, विधायक जी का हाल भी बुरा है। रायबरेली के बीजेपी के विधायक अशोक कोरी का बिजली कर्मियों को हड़काने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
5: आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं।
1: मेरठ में बिजली से बेहाल जनता ने मेयर आवास की ओर कूच कर दिया, नारेबाजी और हंगामा किया। जनता के सामने मेयर साहब भी खुद को लाचार बता रहे हैं। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज में करीब 14 से 16 घंटे बिजली कट रही है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में छात्र अब कॉलेज के बाहर मोर्चा लेकर बैठे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यूपी में बिजली कटौती से जनता को कब राहत मिलेगी? कब वो भीषण गर्मी के बीच सड़कों की बजाय घरों में आराम से रहेगी? आज तक ब्यूरो।
0: एक ओर पावर कट से जनता बेहाल है तो दूसरी ओर इस पर सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो वहीं सरकार बिजली कटौती के दावों को खारिज कर रही है।
1: यूपी में बिजली कटौती ने एक ओर जनता को बेहाल कर रखा है तो वहीं इस पर सियासत भी जोरदार है। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार हैं। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। एके शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। मायावती भी बिजली कटौती पर भड़की नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी में बिजली की कम आपूर्ति और कटौती आदि से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों, करोड़ों मेहनत कश लोगों का जीवन कष्टदायी बना हुआ है। इसको लेकर लोग अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। कहने को तो सरकार दावा करती है कि डिमांड सप्लाई सब बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करते हैं। यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, इटावा, आगरा जैसे जिलों में 6 घंटे की निर्धारित कटौती होनी है, लेकिन हकीकत में इससे ज्यादा घंटे तक बिजली गुल रहती है।
2: बिजली के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिन रात काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डिफॉल्ट जितने भी आएंगे, फॉल्ट आएंगे, उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बढ़ता हुआ तापमान और इस तापमान में बढ़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है।
1: यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई का रोस्टर है, लेकिन अघोषित कटौती की वजह से ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली आती है। लोकल फॉल्ट और ट्रिपिंग से समस्या और बढ़ जाती है। शहरी इलाकों में मांग बढ़ने पर ग्रामीण इलाकों की बिजली काट दी जाती है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से बिजली विभाग को कम राजस्व मिलता है। बहरहाल सियासी खींचतान के बीच जनता बेहाल नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में एक और सियासत हो रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान को लेकर, जहां पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की इस अमर्यादित टिप्पणी ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। मामला अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। महोबा में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी की शिकायत के बाद महोबा पुलिस ने अजय राय समेत करीब 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
7: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय अभद्र टिप्पणी भी की। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
6: दरअसल महोबा में अजय राय दलित महिला से मिलने पहुंचे थे, जहां अब वो पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी को फर्जी एआई वीडियो बता रहे हैं।
8: कि जो महोबा में गया था वो एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक रेप किया गया है, उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए और उसको उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया है अपराधियों ने। आज उसकी बात मैंने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा, उन्होंने एआई जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, पर उस दलित बच्ची को जिसके साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके नशे के इंजेक्शन लगाए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया, उसको न्याय दीजिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं।
6: उधर बीजेपी अजय राय पर चौतरफा हमलावर है। योगी आदित्यनाथ ने भी अजय राय की भाषा पर सवाल खड़े किए।
9: सर मानी चाहिए कांग्रेसियों को, धिक्कार होना चाहिए किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। गाली गलौज की भाषा आप मर्यादित राजनीतिक वातावरण में, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग है। पहले राहुल गांधी जानबूझ करके अपमानित करने की चेष्टा करते हैं और अब अजय राय ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। राजनीति की कोई मर्यादा नहीं रह गई है, शुद्ध रूप से गाली गलौज की प्रयोग कर रहे।
6: मामला अब तूल पकड़ रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जिस पर फिजिक्स के पेपर को आउट करने का आरोप है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस मामले में 3 महिलाएं गिरफ्तार की जा चुकी हैं और तीनों का नाम ही मनीषा है, और ये मामले में अब 11वीं गिरफ्तारी है।

0: पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और अब नीट का फिजिक्स का पेपर आउट कराने वाले आरोपी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। पुणे से सीबीआई ने मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया है। केस की आरोपी मनीषा मंधारे की तरह ही मनीषा हवलदार बतौर एक्सपर्ट एनटीए से जुड़ी थी, जिससे फिजिक्स के प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी। आरोप है कि अप्रैल 2026 में उसने परीक्षा से जुड़े कई फिजिक्स सवाल मनीषा मंधारे को शेयर किए। जांच एजेंसी के मुताबिक जो सवाल मनीषा हवलदार ने शेयर किए थे, उनका मिलान नीट यूजी 2026 के असली फिजिक्स पेपर सेट से किया गया था और दोनों में समानता पाई गई। हैरानी की बात यह है कि इस केस में अब तक जो तीन महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं, उन तीनों का नाम मनीषा ही है। इस बीच नीट पर जारी सियासत के बीच राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक से परेशान होकर सुसाइड करने वाले छात्र के परिवार से फोन पर बात की।
1: नमस्कार, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर।
2: बोलो, बोलो।
1: कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे?
2: 3 साल।
3: बोलो बोलो, आप हिम्मत रखो।
2: 3 साल से पढ़ाई कर रहा था, अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया है अभी बाद। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड
1: किया। तो पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है?
2: नहीं, ये तीसरी बार था
1: और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा।
0: बहरहाल इस पूरे मामले में नीट पेपर कराने वाली संस्था एनटीए की भूमिका सवालों के घेरे में है, जो कि हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
4: लखनऊ से बेहैरान कर देने वाली तस्वीर आई है, जहां पर पुलिस के खिलाफ लखनऊ में बार एसोसिएशन ने वकीलों को लाठियां थमाई हैं। अब क्या लखनऊ में वकील पुलिस की लाठी का जवाब लाठी से देंगे?

0: लखनऊ बार एसोसिएशन में बढ़ रही ये लाठियां अब पुलिस के एक्शन पर पलटवार के लिए तैयार है। 17 मई को बुलडोजर एक्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के खिलाफ अब वकीलों ने खुद भी हाथों में लाठी रखने का जिम्मा ले लिया है। बार एसोसिएशन की तरफ से वकीलों को करीब 600 लाठियां बांटी गईं। वकीलों का दावा है कि पुलिस कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए ये कदम उठाया गया है, यानी अगर पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो वकील भी जवाब में लाठीचार्ज के लिए तैयार है। लाठीचार्ज के खिलाफ लखनऊ जिला कोर्ट में वकीलों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते कोर्ट का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित है। वकीलों के चैम्बर्स तोड़े जाने और बुलडोजर की कार्रवाई से भयंकर नाराजगी है। वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने लाठी से पीटा था, अब बदला लेने का ऐलान हुआ है, यानी अगर पुलिस दोबारा एक्शन लेगी तो बार एसोसिएशन के वकील पुलिस का जवाब लाठी से देंगे। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: अथ ट्विशा के जिसकी मौत अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने समर्थ के 7 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की है। वहीं ट्विशा के परिवार वालों की ओर से आवेदन पर कोर्ट की तरफ से समर्थ का पासपोर्ट जब्त भी किया गया और इस बीच में ट्विशा की मौत से पहले के सीसीटीवी ने सबको चौंकाया है।

0: आखिर क्या है ट्रिशा की मौत का सच? क्या ट्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई? पिछले 11 दिनों से ट्रिशा का शव इंसाफ का इंतजार कर रहा है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, सीबीआई को हर पहलू की पड़ताल करनी है। अभी ट्रिशा की मौत के कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनका सच सामने आना बाकी है। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ट्रिशा के घर के उस हिस्से की तस्वीर भी सामने आई है, जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी। आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि ट्रिशा ने यहीं पर सुसाइड किया था। यही वो जगह है जहां वो फंदे से लटकती मिले। लेकिन सवाल यह है कि अमूमन इस तरह के सुसाइड घर के बंद कमरे में की जाती है, ताकि घर का कोई सदस्य ना आ सके। लेकिन ट्रिशा ने सुसाइड छत जैसी खुली जगह पर किया, जिसका कुछ हिस्सा ही बंद था, जहां से कोई भी उसे सुसाइड करते देख सकता था या फिर रोक सकता था। जबकि इस दौरान घर में परिवार के लोग मौजूद थे, जो कि कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ट्रिशा ने छत को क्यों सुसाइड के लिए चुना। परिवार दावा कर रहा है कि वो नशे की हालत में थी और उसने वही फांसी का फंदा लगाकर खुद की जान ले ली। अब सुसाइड से पहले की ये तस्वीर भी चौंकाने वाली है, जो कि एक ब्यूटी पार्लर की है, जहां ट्रिशा सुसाइड से पहले पहुंची थी। ट्रिशा के आखिरी मेकअप का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें वो ससुराल के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में नजर आ रही है। वीडियो में ट्रिशा बेहद रिलैक्स दिखाई दे रही है, लेकिन इस फुटेज को भी जब्त कर लिया गया है। 12 मई जिस दिन ट्रिशा की मौत हुई, ट्रिशा शर्मा दोपहर लगभग 3:30 बजे पार्लर पहुंची थी और शाम लगभग 6:15 पर वहां से निकली।
1: वो आई थी और वो आई, सबसे पहले उनने मेरे स्टाफ से बोला कि तुम लोग टीवी वो मूवी देख रहे हो। वो बहुत खुश थी, आई अंदर आई, फिर उनने बोला कि मेरे को रिलैक्स होने के लिए हेड ऑयल मसाज चाहिए है। देन उनने हेड ऑयल मसाज लिया, फिर उन्हें पेडिक्योर करवाया, फिर वो अपना कुछ और स्किन का काम करने के लिए वो फिर फेशियल सेक्शन में गई। वहां पे उन्हें
2: पहले कहां पे वो आई, जब उसके बाद कहां पे वो यहां पे आपके पार्लर में कहां इधर उस भर बैठी या कहीं और?
1: पहले इधर बैठी थी वो थोड़ी देर के लिए, देन उसके बाद फिर वो इधर उधर गई और उधर उन्हें हेड ऑयल मसाज कराई।
2: ये सीट पे एक बार आप जरा आकर के एक बार दिखा दें आप। इस वक्त हम पहुंच गए हैं, ये वो कुर्सी है।
1: जी हेड ऑयल मसाज कराई
2: जी।
1: उसके बाद वो इस रूम में गई थी और यहाँ पे उनका कुछ काम था जो उनने यहाँ पे कराया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे,
2: मतलब ये वो चेयर है जो आखिरी जो सीसीटीवी वायरल फुटेज सामने आया है, जिसमें वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई हैं। और ये वो चेयर है जहाँ पे ट्रिशा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं ट्रिशा के आखिरी लम्हों की ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद वो उस चेयर
1: पे पेडिक्योर कराया था, उस चेयर पे बैठ के पेडिक्योर कराया था,
2: वो वाली चेयर।
1: जी जी जी।
0: अब सवाल ये है कि क्या सुसाइड से पहले कोई ब्यूटी पार्लर में रिलैक्स होने जा सकता है? ब्यूटी पार्लर ट्रिशा के ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी पर है और उनको सर्विस देने वाले ने साफ कहा कि कहीं पर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ट्रिशा किसी भी तरह की टेंशन में है।
1: वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी।
2: कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था?
1: नहीं नहीं नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी।
2: पास में ही घर है उनका?
1: हाँ हाँ, उनका पास में ही घर है।
2: अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उन्हें उनसे को देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा, तो उस दिन क्या था? उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था, या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही है?
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसते हुए अंदर आई थी और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उन्होंने करवाया था। उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं। तो फिर उन्होंने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा, तो उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई।
2: बस यही मेरा सवाल था, हेड ऑयल मसाज ये पहली बार उन्होंने करवाया था, इससे पहले भी उन्होंने करवाया था, या सिर्फ उसी दिन आपको स्पेशली उन्होंने कहा कि?
1: पहले भी कराया होगा, बट मेरे को देखना पड़ेगा रजिस्टर के इससे पहले कौन कौन सी सर्विसेज
2: ली। उस दिन उन्होंने ये बोला था कि मुझे सर दर्द हो रहा है, कुछ रिलैक्स होना है,
1: सर दर्द या मेरे को रिलैक्स होना है, ऐसा कुछ बोला होगा, तो मेरे को ऐसा कुछ बताओ। तो हेड ऑयल मसाज कराई थी या सर दर्द हो रहा होगा, एकदम याद नहीं है, एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं है कि क्या बोला था, बट रिलैक्स तो होना था उनको, तो इसलिए उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई थी।
0: इस कड़ी में सबसे अहम किरदार है त्विशा के पति समर सिंह का, जिससे पुलिस को कई सच उगलवाने हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि त्विशा को सुसाइड करना पड़ा, और अगर ये हत्या है तो फिर आखिर त्विशा को क्यों मारा गया? क्या हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, या फिर सच में त्विशा ने नशे की हालत में खुद की जान ले ली?
3: नहीं, अभी उतना नहीं। देखो, इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है, हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना थोड़े कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा। सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। रात को 3 बजे तो काफी लेट नाइट तो आया है, फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीजें होती हैं।
0: बहरहाल त्विशा की मौत अपने आप में कई सवाल समेटे हुए है, जिसका सच आना अभी बाकी है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब रुक करते हैं सनसनीखेज खबर के, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या के साजिश का पर्दाफाश हुआ, और यह पता चला कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC से ट्रेनिंग पाए खतरनाक आतंकवादी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी ने इवांका ट्रंप की जान लेने की प्लानिंग की थी।
5: जिस वक्त अमेरिका ईरान फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े, जब ईरान में फिर से तबाही का अमेरिका का प्लान तैयार हो चुका है, किसी भी वक्त ईरान में विध्वंस के लिए हमले का ऐलान हो सकता है, ठीक उसी वक्त ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश रची गई। इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई, और सबसे चौंकाने वाली बात ये साजिश की कड़ी सीधे ईरान से जोड़ती दिख रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहे आतंकी को पकड़ लिया है। उसकी पहचान 32 साल की मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने गुरु और ईरानी सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था, और इसके लिए IRGC से ट्रेनिंग पाए इस आतंकी ने पूरा खाका तैयार कर लिया था। आतंकी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी कासिम सुलेमानी को अपना गुरु मानता था, और तभी से ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में था। आरोपी अल सादी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार, खासकर उनकी बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की कसम खाई थी। जांच के दौरान सुरक्षा बलों को अल सादी के पास से फ्लोरिडा में मौजूद इवांका ट्रंप के आलिशान घर का पूरा ब्लूप्रिंट भी बरामद हुआ है। वो काफी समय से उनके घर की रेखी कर रहा था। वॉशिंगटन में इराकी दूतावास के पूर्व डिप्टी मिलिट्री अटैचे एंटी फाद कनबर ने इस आतंकी के इरादों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अल सादी लोगों से कहता फिर रहा था कि हमें इवांका ट्रंप को मारना होगा। वो कहता था कि हमें ट्रंप के पूरे घर को उसी तरह जलाकर खाक कर देना चाहिए जिस तरह उसने कासिम सुलेमानी के घर को तबाह किया था। यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है, तफ्तीश जारी है। ये गिरफ्तारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके सीधे निशाने पर ट्रंप का परिवार आ गया है। आज तक ब्यूरो।
4: बात अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
6: दुनिया भर में बढ़ रहे तनाव के बीच ये भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने वाली तस्वीर है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से करीब 1 घंटे लंबी मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा, व्यापार, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। ये दौरा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हो रहा है और इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। रूबियो की चार दिन की भारत यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया भर में ईरान युद्ध की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं और बदलते हालात के बीच भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। इससे पहले रूबियो पत्नी के साथ कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचने के बाद रूबियो ने मदर टेरेसा हाउस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा भी किया। कोलकाता में कुछ घंटे गुजारने के बाद मार्को रूबियो दिल्ली के लिए रवाना हुए। वो जयपुर और आगरा भी जाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग मजबूत करने के लिए भारत 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों के साथ साथ मार्को रूबियो इस बैठक का भी हिस्सा होंगे। उनके चार दिन के भारत दौरे के मुख्य चार उद्देश्य होंगे ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और रक्षा।
7: मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी होंगी, साथ ही क्वाड सम्मेलन से संबंधित भी होंगी। क्वाड में भागीदार होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे नतीजे होंगे जिनके बारे में चारों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम पिछले लगभग 5 महीनों से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 महीनों से हूँ।
6: होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर संकट के बाद से भारत ने तेल के लिए कई विकल्पों को आजमाया है। ये संकट अभी टला नहीं है। व्यापार के लिहाज से और कूटनीति में संतुलन को देखते हुए सहमति बनाने के लिए रूबियो के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। आज तक
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूबियो से मुलाकात के बाद दुनिया की भलाई के लिए अमेरिका और भारत को साथ आकर काम करने पर जोर दिया। वहीं रूबियो ने भी मौजूदा हालातों में भारत की भूमिका को बेहद अहम बताया।
8: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into this second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen in ways that don't often make headlines or aren't splashy, but are important and real and tangible and enduring. We've expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific.
4: ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर गहमा गहमी तेज हो गए हैं। एक तरफ ट्रंप ने होर्मुज और यूरेनियम को लेकर तल्ख बयानबाजी फिर दोहराई है, तो ईरान ने भी संभावित हमले की आशंका को देखते हुए तैयारियां पुख्ता कर ली हैं।

0: हॉर्मुज और यूरेनियम पर जारी घमासान, दोनों मुद्दों पर सरेंडर नहीं करेगा ईरान। व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, क्या फिर मचेगा कोहराम? रूबियो ने जताई उम्मीद, बात से बनेगी बात। हॉर्मुज में फिलहाल गोलियों की गूंज नहीं है, लेकिन जहाजों की आवाजाही भी नहीं है। अभी भी सैकड़ों जहाज समंदर में फंसे हुए हैं, क्योंकि ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका वहां से लौटने को। अमेरिका विनाशकारी युद्धपोतों से ईरानी बंदरगाहों पर निगाह बनाए हुए है, और ईरान है कि उसने हर हाल में टोल टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया है। इस बीच कई खाड़ी देशों की ईरान पर हमला न करने की अपील से ये उम्मीद जगी थी कि मामला कूटनीति के जरिए ही हल किया जाएगा, लेकिन इस बीच चौंका देने वाली खबर आ रही है कि ट्रंप अपने कुछ निजी कार्यक्रमों को छोड़कर व्हाइट हाउस लौट आए हैं। कई आला अफसरों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। वैसे भी ट्रंप ने फिर दोहराया है कि उन्हें हॉर्मुज में टोल जैसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
1: How do you want things to end up with the Strait of Hormuz? Would you like that to happen?
2: Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know. It sounds like a lot of money, but whether it's $500 or $200 or $300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And
0: हॉर्मुज के अलावा दूसरा बड़ा पेच यूरेनियम पर फंसा हुआ है। अमेरिका अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि हर हाल में यूरेनियम को वो लेकर रहेगा, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी हाल में यूरेनियम देश के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
2: We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay?
0: तो क्या कुछ ही घंटों में महायुद्ध फिर से शुरू होने वाला है? क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? इन सवालों के जवाब जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मांगे गए, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ बातचीत भी जारी है और हो सकता है कि उसी के जरिए कोई हल निकल जाए।
3: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done. But look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal. You asked me if I'm optimistic. I don't characterize it as optimistic or pessimistic. We're going to respond based on the facts as we see them and as they emerge. So... What the president has outlined is his priorities are clear. Iran can never have a nuclear weapon. The issue of highly enriched uranium has to be discussed. Its disposition has to be dealt with.
0: इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान शांति दूत बना घूम रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली है। उधर कतर की एक टीम भी तेहरान पहुंची है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच पीस प्लान पर सहमति बनाई जा सके। पाकिस्तान के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 48 घंटों में मुलाकात हावी रहती है या बमों की बरसात की तैयारियां जोर पकड़ती हैं। आज तक ब्यूरो।
4: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: दिल्ली में पीएम मोदी से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात। वैश्विक हालात के साथ आपसे साझेदारी पर बात। ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री को दिया अमेरिका आने का न्योता। सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत से नाराज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मांगा जवाब। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा की आंसर शीट लेने के लिए 24 मई तक मियाद बढ़ाई। शिरडी में डिफेंस कॉम्प्लेक्स का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। कहा मेक इन इंडिया से रक्षा कंपनीज की बढ़ेगी क्षमता, तभी देश होगा और मजबूत। विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान। सोमवार को सुनवाई। 7 दिन की पुलिस रिमांड में आरोपी पति समर्थ। ईरान और अमेरिका में छिड़ा मैप वॉर। पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी नक्शे पर लगाया अमेरिकी झंडा। बदले में तेहरान ने भी अमेरिका के मानचित्र पर दिखाया अपना ध्वज। अब बात करते हैं भीषण गर्मी के बीच जारी बिजली कटौती की, जिससे जनता बेहाल है। यूपी में पावर कट को लेकर जनता गुस्से में है, सड़कों पर नजर आ रही है।
1: भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली कटौती ने आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक और हापुड़ से लेकर रामपुर तक भयंकर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। राजधानी लखनऊ का हाल देखिए। महिला का गुस्सा बिजली कर्मचारियों पर उतर रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। लखनऊ में लोगों ने रात को सड़क ही जाम कर दी। ये दुबग्गा पावर हाउस के तहत आने वाला मॉडर्न पिंक सिटी इलाका है। यहाँ पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बीती रात लोगों का सब्र जवाब दे गया।
2: क्या ये रोज आप लोग ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही दिन कट रहा है?
3: हाँ, जब बिजली नहीं आ रही तो लोग इस तरह बैठते हैं और छुट्टियां भी हो गई हैं तो बड़ी समस्या बनी हुई है। जब से तापमान बढ़ा है तब से बिजली संकट बहुत गहरा गया है।
4: अब लोग कल दो दिन से रात में सो ही नहीं पा रहे हैं।
1: आम जनता ही नहीं, विधायक जी का हाल भी बुरा है। रायबरेली के बीजेपी के विधायक अशोक कोरी का बिजली कर्मियों को हड़काने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
5: आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं।
1: मेरठ में बिजली से बेहाल जनता ने मेयर आवास की ओर कूच कर दिया, नारेबाजी और हंगामा किया। जनता के सामने मेयर साहब भी खुद को लाचार बता रहे हैं। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज में करीब 14 से 16 घंटे बिजली कट रही है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में छात्र अब कॉलेज के बाहर मोर्चा लेकर बैठे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यूपी में बिजली कटौती से जनता को कब राहत मिलेगी? कब वो भीषण गर्मी के बीच सड़कों की बजाय घरों में आराम से रहेगी? आज तक ब्यूरो।
0: एक ओर पावर कट से जनता बेहाल है तो दूसरी ओर इस पर सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो वहीं सरकार बिजली कटौती के दावों को खारिज कर रही है।
1: यूपी में बिजली कटौती ने एक ओर जनता को बेहाल कर रखा है तो वहीं इस पर सियासत भी जोरदार है। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार हैं। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। एके शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। मायावती भी बिजली कटौती पर भड़की नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी में बिजली की कम आपूर्ति और कटौती आदि से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों, करोड़ों मेहनत कश लोगों का जीवन कष्टदायी बना हुआ है। इसको लेकर लोग अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। कहने को तो सरकार दावा करती है कि डिमांड सप्लाई सब बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करते हैं। यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, इटावा, आगरा जैसे जिलों में 6 घंटे की निर्धारित कटौती होनी है, लेकिन हकीकत में इससे ज्यादा घंटे तक बिजली गुल रहती है।
2: बिजली के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिन रात काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डिफॉल्ट जितने भी आएंगे, फॉल्ट आएंगे, उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बढ़ता हुआ तापमान और इस तापमान में बढ़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है।
1: यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई का रोस्टर है, लेकिन अघोषित कटौती की वजह से ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली आती है। लोकल फॉल्ट और ट्रिपिंग से समस्या और बढ़ जाती है। शहरी इलाकों में मांग बढ़ने पर ग्रामीण इलाकों की बिजली काट दी जाती है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से बिजली विभाग को कम राजस्व मिलता है। बहरहाल, सियासी खींचतान के बीच जनता बेहाल नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में एक और सियासत हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान को लेकर, जहां पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की इस अमर्यादित टिप्पणी ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। मामला अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। महोबा में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी की शिकायत के बाद महोबा पुलिस ने अजय राय समेत करीब 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
7: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय अभद्र टिप्पणी भी की। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
6: दरअसल महोबा में अजय राय दलित महिला से मिलने पहुंचे थे, जहां अब वो पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी को फर्जी एआई वीडियो बता रहे हैं।
8: कि जो महोबा में गया था वो एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक रेप किया गया है, उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए और उसको उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया है अपराधियों ने। आज उसकी बात मैंने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा। उन्होंने एआई जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं सरकार से कहना चाहूंगा 100 मुकदमे लगा दो, पर उस दलित बच्ची को जिसके साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके नशे के इंजेक्शन लगाए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया, उसको न्याय दीजिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं।
6: उधर बीजेपी अजय राय पर चौतरफा हमलावर है। योगी आदित्यनाथ ने भी अजय राय की भाषा पर सवाल खड़े किए।
9: सर मानी चाहिए कांग्रेसियों को, धिक्कार होना चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? गाली गलौज की भाषा आप मर्यादित राजनीतिक वातावरण में, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग है? पहले राहुल गांधी जानबूझ करके अपमानित करने की चेष्टा करते हैं और अब अजय राय ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। राजनीति की कोई मर्यादा नहीं रह गई है, शुद्ध रूप से गाली गलौज की प्रयोग कर रहे।
6: मामला अब तूल पकड़ रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: लखनऊ से भी हैरान कर देने वाली तस्वीर आई है, जहां पर पुलिस के खिलाफ लखनऊ में बार एसोसिएशन ने वकीलों को लाठियां थमाई हैं। अब क्या लखनऊ में वकील पुलिस की लाठी का जवाब लाठी से देंगे?

0: लखनऊ बार एसोसिएशन में बढ़ रही ये लाठियां अब पुलिस के एक्शन पर पलटवार के लिए तैयार है। 17 मई को बुलडोजर एक्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के खिलाफ अब वकीलों ने खुद भी हाथों में लाठी रखने का जिम्मा ले लिया है। बार एसोसिएशन की तरफ से वकीलों को करीब 600 लाठियां बांटी गईं। वकीलों का दावा है कि पुलिस कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए ये कदम उठाया गया है, यानी अगर पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो वकील भी जवाब में लाठीचार्ज के लिए तैयार है। लाठीचार्ज के खिलाफ लखनऊ जिला कोर्ट में वकीलों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते कोर्ट का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित है। वकीलों के चैम्बर्स तोड़े जाने और बुलडोजर की कार्रवाई से भयंकर नाराजगी है। वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने लाठी से पीटा था, अब बदला लेने का ऐलान हुआ है, यानी अगर पुलिस दोबारा एक्शन लेगी तो बार एसोसिएशन के वकील पुलिस का जवाब लाठी से देंगे। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: अथ ट्रिशा के जिसकी मौत अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। एक्ट्रेस मॉडल ट्रिशा शर्मा केस में आरोपी पति समर सिंह को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने समर के 7 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की है। वहीं ट्रिशा के परिवार वालों की ओर से आवेदन पर कोर्ट की तरफ से समर का पासपोर्ट जब्त भी किया गया और इस बीच में ट्रिशा की मौत से पहले के सीसीटीवी ने सबको चौंकाया है।

0: आखिर क्या है ट्रिशा की मौत का सच? क्या ट्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई? पिछले 11 दिनों से ट्रिशा का शव इंसाफ का इंतजार कर रहा है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, सीबीआई को हर पहलू की पड़ताल करनी है। अभी ट्रिशा की मौत के कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनका सच सामने आना बाकी है। भोपाल के कटारा हिल स्थित ट्रिशा के घर के उस हिस्से की तस्वीर भी सामने आई है जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी। आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि ट्रिशा ने यहीं पर सुसाइड किया था। यही वो जगह है जहां वो फंदे से लटकते मिले। लेकिन सवाल यह है कि अमूमन इस तरह के सुसाइड घर के बंद कमरे में की जाती है ताकि घर का कोई सदस्य ना आ सके। लेकिन ट्रिशा ने सुसाइड छत जैसी खुली जगह पर किया जिसका कुछ हिस्सा ही बंद था, जहां से कोई भी उसे सुसाइड करते देख सकता था या फिर रोक सकता था। जबकि इस दौरान घर में परिवार के लोग मौजूद थे, जो कि कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ट्रिशा ने छत को क्यों सुसाइड के लिए चुना। परिवार दावा कर रहा है कि वो नशे की हालत में थी और उसने वही फांसी का फंदा लगाकर खुद की जान ले ली। अब सुसाइड से पहले की ये तस्वीर भी चौंकाने वाली है, जो कि एक ब्यूटी पार्लर की है जहां ट्रिशा सुसाइड से पहले पहुंची थी। ट्रिशा के आखिरी मेकअप का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें वो ससुराल के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में नजर आ रही है। वीडियो में ट्रिशा बेहद रिलैक्स दिखाई दे रही है, लेकिन इस फुटेज को भी जब्त कर लिया गया है। 12 मई जिस दिन ट्रिशा की मौत हुई, ट्रिशा शर्मा दोपहर लगभग 3:30 बजे पार्लर पहुंची थी और शाम लगभग 6:15 पर वहां से निकली।
1: वो आई थी और वो आई सबसे पहले उनने मेरे स्टाफ से बोला कि तुम लोग टीवी वो मूवी देख रहे हो। वो बहुत खुश थी, आई अंदर आई, फिर उनने बोला कि मेरे को रिलैक्स होने के लिए हेड ऑयल मसाज चाहिए है। देन उनने हेड ऑयल मसाज लिया, फिर उनने पेडिक्योर करवाया, फिर वो अपना कुछ और स्किन का काम करने के लिए वो फिर फेशियल सेक्शन में गई। वहाँ पे उन्हें
2: पहले कहाँ पे वो आई, जब उसके बाद कहाँ पे वो यहाँ पे आपके पार्लर में कहाँ, इधर उस भर बैठी या कहीं और?
1: इधर बैठी थी वो थोड़ी देर के लिए, देन उसके बाद फिर वो इधर उधर गई और उधर उन्हें हेड ऑयल मसाज कराई।
2: एक बार आप जरा आकर के एक बार दिखा दें। आप इस वक्त हम पहुंच गए हैं, ये वो कुर्सी है
1: जी, हेड ऑयल मसाज कराई
2: जी।
1: उसके बाद वो इस रूम में गई थी और यहाँ पे उनका कुछ काम था जो उनने यहाँ पे कराया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे,
2: ये मतलब ये वो चेयर है जो आखिरी जो सीसीटीवी वायरल फुटेज सामने आया है जिसमें वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई हैं, और ये वो चेयर है जहाँ पे ट्रिशा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं ट्रिशा के आखिरी लम्हों की ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद वो उस चेयर
1: पे पेडिक्योर कराया था, उस चेयर पे बैठ के पेडिक्योर कराया था
2: वो वाली चेयर।
1: जी जी जी।
0: अब सवाल यह है कि क्या सुसाइड से पहले कोई ब्यूटी पार्लर में रिलैक्स होने जा सकता है? ब्यूटी पार्लर ट्रिशा के ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी पर है और उनको सर्विस देने वाले ने साफ कहा कि कहीं पर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ट्रिशा किसी भी तरह की टेंशन में है।
1: वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी।
2: कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था?
1: नहीं नहीं नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी।
2: पास में ही घर है उनका?
1: हाँ हाँ, उनका पास में ही घर है।
2: अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उन्हें उनसे को देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा, तो उस दिन क्या था? उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था, या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही है?
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसते हुए अंदर आई थी और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उनने करवाया था। उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं। तो फिर उनने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा तो उनने हेड ऑयल मसाज कराई।
2: बस यही मेरा एक सवाल था, हेड ऑयल मसाज ये पहली बार उन्होंने करवाया था, इससे पहले भी उन्होंने करवाया था, या सिर्फ उसी दिन आपको स्पेशली उन्होंने कहा कि?
1: पहले भी कराया होगा, बट मेरे को देखना पड़ेगा रजिस्टर के इससे पहले कौन कौन सी सर्विसेज
2: ली। उस दिन उन्होंने ये बोला था कि मुझे सर दर्द हो रहा है, कुछ रिलैक्स होना है,
1: सर दर्द या मेरे को रिलैक्स होना है ऐसा कुछ बोला होगा, तो मेरे को ऐसा कुछ बताओ। तो हेड ऑयल मसाज कराई थी या सर दर्द हो रहा होगा, एकदम याद नहीं है, एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं है कि क्या बोला था, बट रिलैक्स तो होना था उनको, तो इसलिए उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई थी।
0: इस कड़ी में सबसे अहम किरदार है त्विशा के पति समर सिंह का, जिससे पुलिस को कई सच उगलवाने हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि त्विशा को सुसाइड करना पड़ा, और अगर ये हत्या है तो फिर आखिर त्विशा को क्यों मारा गया? क्या हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, या फिर सच में त्विशा ने नशे की हालत में खुद की जान ले ली?
3: नहीं, अभी उतना नहीं। देखो, इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है, हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना थोड़ी कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा। सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। रात को 3 बजे तो काफी लेट नाइट तो आया है, फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीजें होती हैं।
0: बहरहाल त्विशा की मौत अपने आप में कई सवाल समेटे हुए है, जिसका सच आना अभी बाकी है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब रुक करते हैं सनसनीखेज खबर के, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या के साजिश का पर्दाफाश हुआ, और यह पता चला कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC से ट्रेनिंग पाए खतरनाक आतंकवादी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी ने इवांका ट्रंप की जान लेने की प्लानिंग की थी।
5: जिस वक्त अमेरिका ईरान फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े, जब ईरान में फिर से तबाही का अमेरिका का प्लान तैयार हो चुका है, किसी भी वक्त ईरान में विध्वंस के लिए हमले का ऐलान हो सकता है। ठीक उसी वक्त ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश रची गई। इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई, और सबसे चौंकाने वाली बात ये साजिश की कड़ी सीधे ईरान से जोड़ती दिख रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहे आतंकी को पकड़ लिया है। उसकी पहचान 32 साल की मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने गुरु और ईरानी सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था, और इसके लिए IRGC से ट्रेनिंग पाए इस आतंकी ने पूरा खाका तैयार कर लिया था। आतंकी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी कासिम सुलेमानी को अपना गुरु मानता था, और तभी से ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में था। आरोपी अल सादी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार, खासकर उनकी बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की कसम खाई थी। जांच के दौरान सुरक्षा बलों को अल सादी के पास से फ्लोरिडा में मौजूद इवांका ट्रंप के आलिशान घर का पूरा ब्लूप्रिंट भी बरामद हुआ है। वो काफी समय से उनके घर की रेखी कर रहा था। वॉशिंगटन में इराकी दूतावास के पूर्व डिप्टी मिलिट्री अटैचे एंटी फाद कनबर ने इस आतंकी के इरादों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अल सादी लोगों से कहता फिर रहा था कि हमें इवांका ट्रंप को मारना होगा। वो कहता था कि हमें ट्रंप के पूरे घर को उसी तरह जलाकर खाक कर देना चाहिए जिस तरह उसने कासिम सुलेमानी के घर को तबाह किया था। यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है, तफ्तीश जारी है। ये गिरफ्तारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके सीधे निशाने पर ट्रंप का परिवार आ गया है। आज तक ब्यूरो।
4: बात अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
6: दुनिया भर में बढ़ रहे तनाव के बीच ये भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने वाली तस्वीर है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से करीब 1 घंटे लंबी मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा, व्यापार, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। ये दौरा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हो रहा है और इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। रूबियो की चार दिन की भारत यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया भर में ईरान युद्ध की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं और बदलते हालात के बीच भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। इससे पहले रूबियो पत्नी के साथ कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचने के बाद रूबियो ने मदर टेरेसा हाउस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा भी किया। कोलकाता में कुछ घंटे गुजारने के बाद मार्को रूबियो दिल्ली के लिए रवाना हुए। वो जयपुर और आगरा भी जाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग मजबूत करने के लिए भारत 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया जापान के विदेश मंत्रियों के साथ साथ मार्को रूबियो इस बैठक का भी हिस्सा होंगे। उनके चार दिन के भारत दौरे के मुख्य चार उद्देश्य होंगे ऊर्जा व्यापार तकनीक और रक्षा।
7: मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी होंगी साथ ही क्वाड सम्मेलन से संबंधित भी होंगी। क्वाड में भागीदार होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे नतीजे होंगे जिनके बारे में चारों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम पिछले लगभग 5 महीनों से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 महीनों से हूँ।
6: होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर संकट के बाद से भारत ने तेल के लिए कई विकल्पों को आजमाया है। ये संकट अभी टला नहीं है। व्यापार के लिहाज से और कूटनीति में संतुलन को देखते हुए सहमति बनाने के लिए रूबियो के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। आज तक
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूबियो से मुलाकात के बाद दुनिया की भलाई के लिए अमेरिका और भारत को साथ आकर काम करने पर जोर दिया। वहीं रूबियो ने भी मौजूदा हालातों में भारत की भूमिका को बेहद अहम बताया।
8: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into this second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen in ways that don't often make headlines or aren't splashy, but are important and real and tangible and enduring. We've expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific.
4: ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर गहमा गहमी तेज हो गए हैं। एक तरफ ट्रंप ने होर्मुज और यूरेनियम

0: हॉर्मुज और यूरेनियम पर जारी घमासान, दोनों मुद्दों पर सरेंडर नहीं करेगा ईरान। व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, क्या फिर मचेगा कोहराम? रूबियो ने जताई उम्मीद, बात से बनेगी बात। हॉर्मुज में फिलहाल गोलियों की गूंज नहीं है, लेकिन जहाजों की आवाजाही भी नहीं है। अभी भी सैकड़ों जहाज समंदर में फंसे हुए हैं, क्योंकि ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका वहां से लौटने को। अमेरिका विनाशकारी युद्धपोतों से ईरानी बंदरगाहों पर निगाह बनाए हुए है, और ईरान है कि उसने हर हाल में टोल टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया है। इस बीच कई खाड़ी देशों की ईरान पर हमला ना करने की अपील से ये उम्मीद जगी थी कि मामला कूटनीति के जरिए ही हल किया जाएगा, लेकिन इस बीच चौंका देने वाली खबर आ रही है कि ट्रंप अपने कुछ निजी कार्यक्रमों को छोड़कर व्हाइट हाउस लौट आए हैं। कई आला अफसरों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। वैसे भी ट्रंप ने फिर दोहराया है कि उन्हें हॉर्मुज में टोल जैसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
1: We want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day, is what it's projected. I don't know. It sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And
0: हॉर्मुज के अलावा दूसरा बड़ा पेच यूरेनियम पर फंसा हुआ है। अमेरिका अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि हर हाल में यूरेनियम को वो लेकर रहेगा, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी हाल में यूरेनियम देश के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
1: We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay?
0: तो क्या कुछ ही घंटों में महायुद्ध फिर से शुरू होने वाला है? क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? इन सवालों के जवाब जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मांगे गए, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ बातचीत भी जारी है और हो सकता है कि उसी के जरिए कोई हल निकल जाए।
2: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal. You asked me if I'm optimistic. I don't characterize it as optimistic or pessimistic. We're going to respond based on the facts as we see them and as they emerge. So, What the president has outlined is his priorities are clear. Iran can never have a nuclear weapon. The issue of highly enriched uranium has to be discussed. Its disposition has to be dealt with.
0: इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान शांति दूत बना घूम रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली है। उधर कतर की एक टीम भी तेहरान पहुंची है, ताकि अमेरिका और ईरान के बीच पीस प्लान पर सहमति बनाई जा सके। पाकिस्तान के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 48 घंटों में मुलाकात हावी रहती है या बमों की बरसात की तैयारियां जोर पकड़ती हैं। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: The American Nyota. सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत से नाराज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मांगा जवाब। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा की आंसर शीट लेने के लिए 24 मई तक मियाद बढ़ाई। शिरडी में डिफेंस कॉम्प्लेक्स का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। कहा मेक इन इंडिया से रक्षा कंपनीज की बढ़ेगी क्षमता, तभी देश होगा और मजबूत। विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान। सोमवार को सुनवाई, 7 दिन की पुलिस रिमांड में आरोपी पति समर्थ। ईरान और अमेरिका में छिड़ा मैप वॉर। पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी नक्शे पर लगाया अमेरिकी झंडा। बदले में तेहरान ने भी अमेरिका के मानचित्र पर दिखाया अपना ध्वज। अब बात करते हैं भीषण गर्मी के बीच जारी बिजली कटौती की, जिससे जनता बेहाल है। यूपी में पावर कट को लेकर जनता गुस्से में है, सड़कों पर नजर आ रही है।
1: भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली कटौती ने आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक और हापुड़ से लेकर रामपुर तक भयंकर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। राजधानी लखनऊ का हाल देखिए। महिला का गुस्सा बिजली कर्मचारियों पर उतर रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। लखनऊ में लोगों ने रात को सड़क ही जाम कर दी। ये दुबग्गा पावर हाउस के तहत आने वाला मॉडर्न पिंक सिटी इलाका है। यहाँ पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बीती रात लोगों का सब्र जवाब दे गया।
2: क्या ये रोज आप लोग ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही दिन कट रहा है?
3: हाँ, जब बिजली नहीं आ रही तो लोग इस तरह बैठते हैं, और छुट्टियां भी हो गई हैं तो बड़ी समस्या बनी हुई है। जब से तापमान बढ़ा है तब से बिजली संकट बहुत गहरा गया है।
4: अब लोग कल दो दिन से रात में सो ही नहीं पा रहे हैं।
1: आम जनता ही नहीं, विधायक जी का हाल भी बुरा है। रायबरेली के बीजेपी के विधायक अशोक कोरी का बिजली कर्मियों को हड़काने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
5: आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं।
1: मेरठ में बिजली से बेहाल जनता ने मेयर आवास की ओर कूच कर दिया, नारेबाजी और हंगामा किया। जनता के सामने मेयर साहब भी खुद को लाचार बता रहे हैं। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज में करीब 14 से 16 घंटे बिजली कट रही है, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में छात्र अब कॉलेज के बाहर मोर्चा लेकर बैठे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर यूपी में बिजली कटौती से जनता को कब राहत मिलेगी? कब वो भीषण गर्मी के बीच सड़कों की बजाय घरों में आराम से रहेगी? आज तक ब्यूरो।
0: एक ओर पावर कट से जनता बेहाल है तो दूसरी ओर इस पर सियासत हो रही। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो वहीं सरकार बिजली कटौती के दावों को खारिज कर रही है।
1: यूपी में बिजली कटौती ने एक ओर जनता को बेहाल कर रखा है तो वहीं इस पर सियासत भी जोरदार है। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार हैं। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। एके शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। मायावती भी बिजली कटौती पर भड़की नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी में बिजली की कम आपूर्ति और कटौती आदि से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों, करोड़ों मेहनत कश लोगों का जीवन कष्टदायी बना हुआ है। इसको लेकर लोग अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। कहने को तो सरकार दावा करती है कि डिमांड सप्लाई सब बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करते हैं। यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, इटावा, आगरा जैसे जिलों में 6 घंटे की निर्धारित कटौती होनी है, लेकिन हकीकत में इससे ज्यादा घंटे तक बिजली गुल रहती है।
2: बिजली के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिन रात काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डिफॉल्ट जितने भी आएंगे, फॉल्ट आएंगे, उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बढ़ता हुआ तापमान और इस तापमान में बढ़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है।
1: यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई का रोस्टर है, लेकिन अघोषित कटौती की वजह से ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली आती है। लोकल फॉल्ट और ट्रिपिंग से समस्या और बढ़ जाती है। शहरी इलाकों में मांग बढ़ने पर ग्रामीण इलाकों की बिजली काट दी जाती है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से बिजली विभाग को कम राजस्व मिलता है। बहरहाल सियासी खींचतान के बीच जनता बेहाल नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में एक और सियासत हो रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान को लेकर, जहां पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की इस अमर्यादित टिप्पणी ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। मामला अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। महोबा में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी की शिकायत के बाद महोबा पुलिस ने अजय राय समेत करीब 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
7: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय अभद्र टिप्पणी भी की। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
6: दरअसल महोबा में अजय राय दलित महिला से मिलने पहुंचे थे, जहां अब वो पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी को फर्जी एआई वीडियो बता रहे हैं।
8: कि जो महोबा में गया था वो एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक रेप किया गया है, उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए और उसको उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया है अपराधियों ने। आज उसकी बात मैंने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा, उन्होंने एआई जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, पर उस दलित बच्ची को जिसके साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके नशे के इंजेक्शन लगाए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया, उसको न्याय दीजिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं।
6: उधर बीजेपी अजय राय पर चौतरफा हमलावर है। योगी आदित्यनाथ ने भी अजय राय की भाषा पर सवाल खड़े किए।
9: सर मानी चाहिए कांग्रेसियों को, धिक्कार होना चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? गाली गलौज की भाषा आप मर्यादित राजनीतिक वातावरण में, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग है? पहले राहुल गांधी जानबूझ करके अपमानित करने की चेष्टा करते और अब अजय राय ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। राजनीति की कोई मर्यादा नहीं रह गई है, शुद्ध रूप से गाली गलौज की प्रयोग कर रहे।
6: मामला अब तूल पकड़ रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जिस पर फिजिक्स के पेपर को आउट करने का आरोप है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस मामले में 3 महिलाएं गिरफ्तार की जा चुकी हैं और तीनों का नाम ही मनीषा है, और ये मामले में अब 11वीं गिरफ्तारी है।

0: पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और अब नीट का फिजिक्स का पेपर आउट कराने वाले आरोपी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। पुणे से सीबीआई ने मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया है। केस की आरोपी मनीषा मंधारे की तरह ही मनीषा हवलदार बतौर एक्सपर्ट एनटीए से जुड़ी थी, जिससे फिजिक्स के प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी। आरोप है कि अप्रैल 2026 में उसने परीक्षा से जुड़े कई फिजिक्स सवाल मनीषा मंधारे को शेयर किए। जांच एजेंसी के मुताबिक जो सवाल मनीषा हवलदार ने शेयर किए थे, उनका मिलान नीट यूजी 2026 के असली फिजिक्स पेपर सेट से किया गया था और दोनों में समानता पाई गई। हैरानी की बात यह है कि इस केस में अब तक जो तीन महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं, उन तीनों का नाम मनीषा ही है। इस बीच नीट पर जारी सियासत के बीच राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक से परेशान होकर सुसाइड करने वाले छात्र के परिवार से फोन पर बात की।
1: नमस्कार, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर।
2: बोलो, बोलो।
1: कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे?
2: 3 साल।
3: बोलो बोलो, आप हिम्मत रखो।
2: 3 साल से पढ़ाई कर रहा था, अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड
1: किया। तो पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार किए?
2: नहीं, ये तीसरी बार था
1: और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा।
0: बहरहाल इस पूरे मामले में नीट पेपर कराने वाली संस्था एनटीए की भूमिका सवालों के घेरे में है, जो कि हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
4: अथ ट्विशा के जिसकी मौत अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर सिंह को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने समर्थ के 7 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की है। वहीं ट्विशा के परिवार वालों की ओर से आवेदन पर कोर्ट की तरफ से समर्थ का पासपोर्ट जब्त भी किया गया और इस बीच में ट्विशा की मौत से पहले के सीसीटीवी ने सबको चौंकाया है।

0: आखिर क्या है ट्रिशा की मौत का सच? क्या ट्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई? पिछले 11 दिनों से ट्रिशा का शव इंसाफ का इंतजार कर रहा है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, सीबीआई को हर पहलू की पड़ताल करनी है। अभी ट्रिशा की मौत के कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका सच सामने आना बाकी है। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ट्रिशा के घर के उस हिस्से की तस्वीर भी सामने आई है जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी। आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि ट्रिशा ने यहीं पर सुसाइड किया था। यही वो जगह है जहां वो फंदे से लटकती मिले। लेकिन सवाल यह है कि अमूमन इस तरह के सुसाइड घर के बंद कमरे में की जाती है ताकि घर का कोई सदस्य ना आ सके। लेकिन ट्रिशा ने सुसाइड छत जैसी खुली जगह पर किया जिसका कुछ हिस्सा ही बंद था, जहां से कोई भी उसे सुसाइड करते देख सकता था या फिर रोक सकता था। जबकि इस दौरान घर में परिवार के लोग मौजूद थे, जो कि कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ट्रिशा ने छत को क्यों सुसाइड के लिए चुना। परिवार दावा कर रहा है कि वो नशे की हालत में थी और उसने वही फांसी का फंदा लगाकर खुद की जान ले ली। अब सुसाइड से पहले की ये तस्वीर भी चौंकाने वाली है, जो कि एक ब्यूटी पार्लर की है जहां ट्रिशा सुसाइड से पहले पहुंची थी। ट्रिशा के आखिरी मेकअप का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें वो ससुराल के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में नजर आ रही है। वीडियो में ट्रिशा बेहद रिलैक्स दिखाई दे रही है, लेकिन इस फुटेज को भी जब्त कर लिया गया है। 12 मई जिस दिन ट्रिशा की मौत हुई, ट्रिशा शर्मा दोपहर लगभग 3:30 बजे पार्लर पहुंची थी और शाम लगभग 6:15 पर वहां से निकली।
1: वो आई थी और वो आई सबसे पहले उनने मेरे स्टाफ से बोला कि तुम लोग टीवी वो मूवी देख रहे हो। वो बहुत खुश थी, आई अंदर आई, फिर उनने बोला कि मेरे को रिलैक्स होने के लिए हेड ऑयल मसाज चाहिए है। देन उनने हेड ऑयल मसाज लिया, फिर उनने पेडिक्योर करवाया, फिर वो अपना कुछ और स्किन का काम करने के लिए वो फिर फेशियल सेक्शन में गई। वहां पे उन्होंने
2: पहले कहां पे वो आई, जब उसके बाद कहां पे वो यहां पे आपके पार्लर में कहां इधर उस भर बैठी या कहीं और?
1: पहले इधर बैठी थी वो थोड़ी देर के लिए, देन उसके बाद फिर वो इधर उधर गई और उधर उनने हेड ऑयल मसाज कराई।
2: ये एक बार आप जरा करके एक बार दिखा दें आप। इस वक्त हम पहुंच गए हैं, ये वो कुर्सी है।
1: जी
2: जी।
1: उसके बाद वो इस रूम में गई थी और यहाँ पे उनका कुछ काम था जो उनने यहाँ पे कराया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे,
2: मतलब ये वो चेयर है जो आखिरी जो सीसीटीवी वायरल फुटेज सामने आया है जिसमें वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई है, और ये वो चेयर है जहाँ पे ट्रिशा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं ट्रिशा के आखिरी लम्हों की ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद वो
1: उस चेयर पे पेडिक्योर कराया था, उस चेयर पे बैठ के पेडिक्योर कराया था
2: वो वाली चेयर।
1: जी जी।
0: अब सवाल ये है कि क्या सुसाइड से पहले कोई ब्यूटी पार्लर में रिलैक्स होने जा सकता है? ब्यूटी पार्लर ट्रिशा के ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी पर है और उनको सर्विस देने वाले ने साफ कहा कि कहीं पर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ट्रिशा किसी भी तरह की टेंशन में है। ब्यूटी पार्लर में रिलैक्स होने जा सकता है? ब्यूटी पार्लर ट्रिशा के ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी पर है और उनको सर्विस देने वाले ने साफ कहा कि कहीं पर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ट्रिशा किसी भी तरह की टेंशन में है।
1: वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी।
0: सर्विस देने वाले ने साफ कहा कि कहीं पर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ट्रिशा किसी भी तरह की टेंशन में है।
1: वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी।
2: कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था?
1: नहीं नहीं नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी।
2: पास में ही घर है उनका?
1: हाँ हाँ, उनका पास में ही घर है।
2: अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उन्हें उनसे को देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा, तो उस दिन क्या था? उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था, या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही है?
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो हंसते हुए अंदर आई थी और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उनने करवाया था। उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं। तो फिर उनने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा, तो उनने हेड ऑयल मसाज कराई।
2: बस यही मेरा सवाल था, हेड ऑयल मसाज ये पहली बार उन्होंने करवाया था, इससे पहले भी उन्होंने करवाया था या सिर्फ उसी दिन आपको स्पेशली उन्होंने कहा कि?
1: पहले भी कराया होगा बट मेरे को देखना पड़ेगा रजिस्टर की इससे पहले कौन कौन सी सर्विसेज ली।
2: उस दिन उन्होंने ये बोला था कि मुझे सर दर्द हो रहा है, कुछ रिलैक्स होना है,
1: सर दर्द या मेरे को रिलैक्स होना है ऐसा कुछ बोला होगा, तो मेरे को ऐसा कुछ बताओ। तो हेड ऑयल मसाज कराई थी या सर दर्द हो रहा होगा, एकदम याद नहीं है, एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं है कि क्या बोला था, बट रिलैक्स तो होना था उनको, तो इसलिए उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई थी।
0: इस कड़ी में सबसे अहम किरदार है त्विशा के पति समर सिंह का, जिससे पुलिस को कई सच उगलवाने हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि त्विशा को सुसाइड करना पड़ा, और अगर ये हत्या है तो फिर आखिर त्विशा को क्यों मारा गया? क्या हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, या फिर सच में त्विशा ने नशे की हालत में खुद की जान ले ली?
3: नहीं अभी उतना नहीं, देखो इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है, हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना थोड़े कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा, सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। रात को 3 बजे तो काफ़ी लेट नाइट तो आया है, फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं।
0: बहरहाल त्विशा की मौत अपने आप में कई सवाल समेटे हुए है, जिसका सच आना अभी बाकी है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब रुक करते हैं सनसनीखेज खबर के, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या के साजिश का पर्दाफाश हुआ, और यह पता चला कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC से ट्रेनिंग पाए खतरनाक आतंकवादी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी ने इवांका ट्रंप की जान लेने की प्लानिंग की थी।
5: जिस वक्त अमेरिका ईरान फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े, जब ईरान में फिर से तबाही का अमेरिका का प्लान तैयार हो चुका है, किसी भी वक्त ईरान में विध्वंस के लिए हमले का ऐलान हो सकता है, ठीक उसी वक्त ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश रची गई। इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई, और सबसे चौंकाने वाली बात ये साजिश की कड़ी सीधे ईरान से जोड़ती दिख रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहे आतंकी को पकड़ लिया है। उसकी पहचान 32 साल की मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने गुरु और ईरानी सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था, और इसके लिए IRGC से ट्रेनिंग पाए इस आतंकी ने पूरा खाका तैयार कर लिया था। आतंकी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी कासिम सुलेमानी को अपना गुरु मानता था, और तभी से ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में था। आरोपी अल सादी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार, खासकर उनकी बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की कसम खाई थी। जांच के दौरान सुरक्षा बलों को अल सादी के पास से फ्लोरिडा में मौजूद इवांका ट्रंप के आलिशान घर का पूरा ब्लूप्रिंट भी बरामद हुआ है। वो काफी समय से उनके घर की रेखी कर रहा था। वॉशिंगटन में इराकी दूतावास के पूर्व डिप्टी मिलिट्री अटैचे एंटी फाद कनबर ने इस आतंकी के इरादों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अल सादी लोगों से कहता फिर रहा था कि हमें इवांका ट्रंप को मारना होगा। वो कहता था कि हमें ट्रंप के पूरे घर को उसी तरह जलाकर खाक कर देना चाहिए जिस तरह उसने कासिम सुलेमानी के घर को तबाह किया था। यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है, तफ्तीश जारी है। ये गिरफ्तारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके सीधे निशाने पर ट्रंप का परिवार आ गया है। आज तक ब्यूरो।
4: बात अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
6: दुनिया भर में बढ़ रहे तनाव के बीच ये भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने वाली तस्वीर है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से करीब एक घंटे लंबी मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा, व्यापार, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। ये दौरा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हो रहा है और इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। रूबियो की चार दिन की भारत यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया भर में ईरान युद्ध की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं और बदलते हालात के बीच भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। इससे पहले रूबियो पत्नी के साथ कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचने के बाद रूबियो ने मदर टेरेसा हाउस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा भी किया। कोलकाता में कुछ घंटे गुजारने के बाद मार्को रूबियो दिल्ली के लिए रवाना हुए। वो जयपुर और आगरा भी जाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग मजबूत करने के लिए भारत 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों के साथ साथ मार्को रूबियो इस बैठक का भी हिस्सा होंगे। उनके चार दिन के भारत दौरे के मुख्य चार उद्देश्य होंगे ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और रक्षा।
7: मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से
6: का भी हिस्सा होंगे। उनके चार दिन के भारत दौरे के मुख्य चार उद्देश्य होंगे ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और रक्षा।
7: मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी होंगी, साथ ही क्वाड सम्मेलन से संबंधित भी होंगी। क्वाड में भागीदार होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे नतीजे होंगे जिनके बारे में चारों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम पिछले लगभग 5 महीनों से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 महीनों से हूँ।
6: होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर संकट के बाद से भारत ने तेल के लिए कई विकल्पों को आजमाया है। ये संकट अभी टला नहीं है। व्यापार के लिहाज से और कूटनीति में संतुलन को देखते हुए सहमति बनाने के लिए रूबियो के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। आज तक
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूबियो से मुलाकात के बाद दुनिया की भलाई के लिए अमेरिका और भारत को साथ आकर काम करने पर जोर दिया। वहीं रूबियो ने भी मौजूदा हालातों में भारत की भूमिका को बेहद अहम बताया।
8: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into this second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term, and so I think that... That is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen in ways that don't often make headlines or aren't splashy, but are important and real and tangible and enduring. We've expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific.
4: ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर गहमा गहमी तेज हो गए हैं। एक तरफ ट्रंप ने होर्मुज और यूरेनियम को लेकर तल्ख बयानबाजी फिर दोहराई है, तो ईरान ने भी संभावित हमले की आशंका को देखते हुए तैयारियां पुख्ता कर ली हैं।

0: हॉर्मुज और यूरेनियम पर जारी घमासान, दोनों मुद्दों पर सरेंडर नहीं करेगा ईरान। व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, क्या फिर मचेगा कोहराम? रूबियो ने जताई उम्मीद, बात से बनेगी बात। हॉर्मुज में फिलहाल गोलियों की गूंज नहीं है, लेकिन जहाजों की आवाजाही भी नहीं है। अभी भी सैकड़ों जहाज समंदर में फंसे हुए हैं, क्योंकि ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका वहां से लौटने को। अमेरिका विनाशकारी युद्धपोतों से ईरानी बंदरगाहों पर निगाह बनाए हुए है, और ईरान है कि उसने हर हाल में टोल टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया है। इस बीच कई खाड़ी देशों की ईरान पर हमला न करने की अपील से ये उम्मीद जगी थी कि मामला कूटनीति के जरिए ही हल किया जाएगा, लेकिन इस बीच चौंका देने वाली खबर आ रही है कि ट्रंप अपने कुछ निजी कार्यक्रमों को छोड़कर व्हाइट हाउस लौट आए हैं। कई आला अफसरों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। वैसे भी ट्रंप ने फिर दोहराया है कि उन्हें हॉर्मुज में टोल जैसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
1: We want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And
0: हॉर्मुज के अलावा दूसरा बड़ा पेच यूरेनियम पर फंसा हुआ है। अमेरिका अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि हर हाल में यूरेनियम को वो लेकर रहेगा, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी हाल में यूरेनियम देश के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
1: We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay?
0: तो क्या कुछ ही घंटों में महायुद्ध फिर से शुरू होने वाला है? क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? इन सवालों के जवाब जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मांगे गए, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ बातचीत भी जारी है और हो सकता है कि उसी के जरिए कोई हल निकल जाए।
2: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal. You asked me if I'm optimistic. I don't characterize it as optimistic or pessimistic. We're going to respond based on the facts as we see them and as they emerge. So, what the president has outlined is his priorities are clear. Iran can never have a nuclear weapon. The issue of highly enriched uranium has to be discussed. Its disposition has to be dealt with.
0: इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान शांति दूत बना घूम रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली है। उधर कतर की एक टीम भी तेहरान पहुंची है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच पीस प्लान पर सहमति बनाई जा सके। पाकिस्तान के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 48 घंटों में मुलाकात हावी रहती है या बमों की बरसात की तैयारियां जोर पकड़ती हैं। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: दिल्ली में पीएम मोदी से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात। वैश्विक हालात के साथ आपसी साझेदारी पर बात। ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री को दिया अमेरिका आने का न्योता। सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत से नाराज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मांगा जवाब। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा की आंसर शीट लेने के लिए 24 मई तक मियाद बढ़ाई। शिरडी में डिफेंस कॉम्प्लेक्स का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। कहा मेक इन इंडिया से रक्षा कंपनीज की बढ़ेगी क्षमता, तभी देश होगा और मजबूत। विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान। सोमवार को सुनवाई। 7 दिन के पुलिस रिमांड में आरोपी पति समर्थ। ईरान और अमेरिका में छिड़ा मैप वॉर। पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी नक्शे पर लगाया अमेरिकी झंडा। बदले में तेहरान ने भी अमेरिका के मानचित्र पर दिखाया अपना ध्वज। अब बात करते हैं भीषण गर्मी के बीच जारी बिजली कटौती की, जिससे जनता बेहाल है। यूपी में पावर कट को लेकर जनता गुस्से में है, सड़कों पर नजर आ रही है।
1: भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली कटौती ने आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक और हापुड़ से लेकर रामपुर तक भयंकर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। राजधानी लखनऊ का हाल देखिए। महिला का गुस्सा बिजली कर्मचारियों पर उतर रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। लखनऊ में लोगों ने रात को सड़क ही जाम कर दी। ये दुबग्गा पावर हाउस के तहत आने वाला मॉडर्न पिंक सिटी इलाका है। यहाँ पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बीती रात लोगों का सब्र जवाब दे गया।
2: क्या ये रोज आप लोग ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही दिन कट रहा है?
3: हाँ, जब बिजली नहीं आ रही तो लोग इस तरह बैठते हैं, और छुट्टियां भी हो गई हैं तो बड़ी समस्या बनी हुई है। जब से तापमान बढ़ा है तब से बिजली संकट बहुत गहरा गया है।
4: अब लोग कल दो दिन से रात में सो ही नहीं पा रहे हैं।
1: आम जनता ही नहीं, विधायक जी का हाल भी बुरा है। रायबरेली के बीजेपी के विधायक अशोक कोरी का बिजली कर्मियों को हड़काने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
5: आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं।
1: मेरठ में बिजली से बेहाल जनता ने मेयर आवास की ओर कूच कर दिया, नारेबाजी और हंगामा किया। जनता के सामने मेयर साहब भी खुद को लाचार बता रहे हैं। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज में करीब 14 से 16 घंटे बिजली कट रही है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में छात्र अब कॉलेज के बाहर मोर्चा लेकर बैठे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यूपी में बिजली कटौती से जनता को कब राहत मिलेगी? कब वो भीषण गर्मी के बीच सड़कों की बजाय घरों में आराम से रहेगी? आज तक ब्यूरो।
0: एक ओर पावर कट से जनता बेहाल है तो दूसरी ओर इस पर सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो वहीं सरकार बिजली कटौती के दावों को खारिज कर रही है।
1: यूपी में बिजली कटौती ने एक ओर जनता को बेहाल कर रखा है तो वहीं इस पर सियासत भी जोरदार है। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार हैं। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। आईना जसन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। मायावती भी बिजली कटौती पर भड़की नजर आ रही हैं। एके शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। मायावती भी बिजली कटौती पर भड़की नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी में बिजली की कम आपूर्ति और कटौती आदि से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों, करोड़ों मेहनत कश लोगों का जीवन कष्टदायी बना हुआ है। इसको लेकर लोग अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। कहने को तो सरकार दावा करती है कि डिमांड सप्लाई सब बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करते हैं। यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, इटावा, आगरा जैसे जिलों में 6 घंटे की निर्धारित कटौती होनी है, लेकिन हकीकत में इससे ज्यादा घंटे तक बिजली गुल रहती है।
2: बिजली के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिन रात काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डिफॉल्ट जितने भी आएंगे, फॉल्ट आएंगे, उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बढ़ता हुआ तापमान और इस तापमान में बढ़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है।
1: यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई का रोस्टर है, लेकिन अघोषित कटौती की वजह से ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली आती है। लोकल फॉल्ट और ट्रिपिंग से समस्या और बढ़ जाती है। शहरी इलाकों में मांग बढ़ने पर ग्रामीण इलाकों की बिजली काट दी जाती है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से बिजली विभाग को कम राजस्व मिलता है। बहरहाल सियासी खींचतान के बीच जनता बेहाल नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में एक और सियासत हो रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान को लेकर, जहां पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की इस अमर्यादित टिप्पणी ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। मामला अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। महोबा में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी की शिकायत के बाद महोबा पुलिस ने अजय राय समेत करीब 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
7: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय अभद्र टिप्पणी भी की। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
6: दरअसल महोबा में अजय राय दलित महिला से मिलने पहुंचे थे, जहां अब वो पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी को फर्जी एआई वीडियो बता रहे हैं।
8: कि जो महोबा में गया था वो एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक रेप किया गया है, उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए और उसको उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया है अपराधियों ने। आज उसकी बात मैंने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा, उन्होंने एआई जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, पर उस दलित बच्ची को जिसके साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके नशे के इंजेक्शन लगाए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया, उसको न्याय दीजिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं।
6: उधर बीजेपी अजय राय पर चौतरफा हमलावर है। योगी आदित्यनाथ ने भी अजय राय की भाषा पर सवाल खड़े किए।
9: सर मानी चाहिए कांग्रेसियों को, धिक्कार होना चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? गाली गलौज की भाषा आप मर्यादित राजनीतिक वातावरण में, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग है? पहले राहुल गांधी जानबूझ करके अपमानित करने की चेष्टा करते हैं और अब अजय राय ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। राजनीति की कोई मर्यादा नहीं रह गई है, शुद्ध रूप से गाली गलौज की प्रयोग कर रहे।
6: मामला अब तूल पकड़ रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जिस पर फिजिक्स के पेपर को आउट करने का आरोप है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस मामले में 3 महिलाएं गिरफ्तार की जा चुकी हैं और तीनों का नाम ही मनीषा है, और ये मामले में अब 11वीं गिरफ्तारी है।

0: पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और अब नीट का फिजिक्स का पेपर आउट कराने वाले आरोपी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। पुणे से सीबीआई ने मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया है। केस की आरोपी मनीषा मंधारे की तरह ही मनीषा हवलदार बतौर एक्सपर्ट एनटीए से जुड़ी थी, जिससे फिजिक्स के प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी। आरोप है कि अप्रैल 2026 में उसने परीक्षा से जुड़े कई फिजिक्स सवाल मनीषा मंधारे को शेयर किए। जांच एजेंसी के मुताबिक जो सवाल मनीषा हवलदार ने शेयर किए थे उनका मिलान नीट यूजी 2026 के असली फिजिक्स पेपर सेट से किया गया था और दोनों में समानता पाई गई। हैरानी की बात यह है कि इस केस में अब तक जो तीन महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं, उन तीनों का नाम मनीषा ही है। इस बीच नीट पर जारी सियासत के बीच राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक से परेशान होकर सुसाइड करने वाले छात्र के परिवार से फोन पर बात की।
1: नमस्कार, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर।
2: बोलो, बोलो।
1: कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे?
2: 3 साल।
3: बोलो बोलो, आप हिम्मत रखो।
2: 3 साल से पढ़ाई कर रहा था, अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड
1: किया। तो पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की
2: है? नहीं, ये तीसरी बार था
1: और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा।
0: बहरहाल इस पूरे मामले में नीट पेपर कराने वाली संस्था एनटीए की भूमिका सवालों के घेरे में है, जो कि हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
4: अथ ट्विशा के जिसकी मौत अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने समर्थ के 7 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की है। वहीं ट्विशा के परिवार वालों की ओर से आवेदन पर कोर्ट की तरफ से समर्थ का पासपोर्ट जब्त भी किया गया और इस बीच में ट्विशा की मौत से पहले के सीसीटीवी ने सबको चौंकाया है।

0: आखिर क्या है ट्रिशा की मौत का सच? क्या ट्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई? पिछले 11 दिनों से ट्रिशा का शव इंसाफ का इंतजार कर रहा है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, सीबीआई को हर पहलू की पड़ताल करनी है। अभी ट्रिशा की मौत के कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका सच सामने आना बाकी है। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ट्रिशा के घर के उस हिस्से की तस्वीर भी सामने आई है जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी। आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि ट्रिशा ने यहीं पर सुसाइड किया था। यही वो जगह है जहां वो फंदे से लटकते मिले। लेकिन सवाल यह है कि अमूमन इस तरह के सुसाइड घर के बंद कमरे में की जाती है ताकि घर का कोई सदस्य ना आ सके। लेकिन ट्रिशा ने सुसाइड छत जैसी खुली जगह पर किया जिसका कुछ हिस्सा ही बंद था, जहां से कोई भी उसे सुसाइड करते देख सकता था या फिर रोक सकता था। जबकि इस दौरान घर में परिवार के लोग मौजूद थे, जो कि कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ट्रिशा ने छत को क्यों सुसाइड के लिए चुना। परिवार दावा कर रहा है कि वो नशे की हालत में थी और उसने वही फांसी का फंदा लगाकर खुद की जान ले ली। अब सुसाइड से पहले की ये तस्वीर भी चौंकाने वाली है, जो कि एक ब्यूटी पार्लर की है जहां ट्रिशा सुसाइड से पहले पहुंची थी। ट्रिशा के आखिरी मेकअप का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें वो ससुराल के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में नजर आ रही है। वीडियो में ट्रिशा बेहद रिलैक्स दिखाई दे रही है, लेकिन इस फुटेज को भी जब्त कर लिया गया है। 12 मई जिस दिन ट्रिशा की मौत हुई, ट्रिशा शर्मा दोपहर लगभग 3:30 बजे पार्लर पहुंची थी और शाम लगभग 6:15 पर वहां से निकली।
1: वो आई थी और वो आई सबसे पहले उनने मेरे स्टाफ से बोला कि तुम लोग टीवी वो मूवी देख रहे हो। वो बहुत खुश थी, आई अंदर आई, फिर उनने बोला कि मेरे को रिलैक्स होने के लिए हेड ऑयल मसाज चाहिए है। देन उनने हेड ऑयल मसाज लिया, फिर उनने पेडिक्योर करवाया, फिर वो फिर अपना कुछ और स्किन का काम करने के लिए वो फिर फेशियल सेक्शन में गई। वहां पे उन्हें
2: पहले कहां पे वो आई, जब उसके बाद कहां पे वो यहां पे आपके पालन कहां इधर उस भर बैठी या कहीं और?
1: इधर बैठी थी वो थोड़ी देर के लिए, देन उसके बाद फिर वो इधर उधर गई और उधर उनने हेड ऑयल मसाज कराई।
2: ये सीट पे एक बार आप जरा आकर के एक बार दिखा दें आप। इस वक्त हम पहुंच गए हैं, ये वो कुर्सी है।
1: जी
2: जी।
1: उसके बाद वो इस रूम में गई थी और यहाँ पे उनका कुछ काम था जो उनने यहाँ पे कराया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे,
2: मतलब ये वो चेयर है जो आखिरी जो सीसीटीवी वायरल फुटेज सामने आया है जिसमें वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई हैं, और ये वो चेयर है जहाँ पे ट्रिशा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं ट्रिशा के आखिरी लम्हों की ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद वो
1: उस चेयर पे पेडिक्योर कराया था, उस चेयर पे बैठ के पेडिक्योर कराया था
2: वो वाली चेयर।
1: जी जी।
0: अब सवाल यह है कि क्या सुसाइड से पहले कोई ब्यूटी पार्लर में रिलैक्स होने जा सकता है? ब्यूटी पार्लर ट्रिशा के ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी पर है और उनको सर्विस देने वाले ने साफ कहा कि कहीं पर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ट्रिशा किसी भी तरह की टेंशन में है।
1: वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी।
2: कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था?
1: नहीं नहीं नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी।
2: पास में ही घर है उनका?
1: हाँ हाँ, उनका पास में ही घर है।
2: अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उन्हें उनको देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा, तो उस दिन क्या था? उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था, या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही है?
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसते हुए अंदर आई थी और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उनने करवाया था. उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं. तो फिर उनने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा, तो उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई.
2: बस यही मेरा सवाल था, हेड ऑयल मसाज ये पहली बार उन्होंने करवाया था इससे?
1: कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं. तो फिर उन्होंने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा, तो उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई.
2: बस यही मेरा सवाल था, हेड ऑयल मसाज ये पहली बार उन्होंने करवाया था, इससे पहले भी उन्होंने करवाया था या सिर्फ उसी दिन आपको स्पेशली उन्होंने कहा कि?
1: पहले भी कराया होगा, बट मेरे को देखना पड़ेगा रजिस्टर की इससे पहले कौन कौन सी सर्विसेज ली.
2: उस दिन उन्होंने ये बोला था कि मुझे सर दर्द हो रहा है, कुछ रिलैक्स होना है,
1: सर दर्द या मेरे को रिलैक्स होना है, ऐसा कुछ बोला होगा. तो मेरे को ऐसा कुछ बताओ, तो हेड ऑयल मसाज कराई थी या सर दर्द हो रहा होगा. एकदम याद नहीं है, एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं है कि क्या बोला था, बट रिलैक्स तो होना था उनको, तो इसलिए उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई थी.
0: इस कड़ी में सबसे अहम किरदार है ट्विशा के पति समर सिंह का, जिससे पुलिस को कई सच उगलवाने हैं. आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा को सुसाइड करना पड़ा, और अगर ये हत्या है तो फिर आखिर ट्विशा को क्यों मारा गया? क्या हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, या फिर सच में ट्विशा ने नशे की हालत में खुद की जान ले ली?
3: नहीं, अभी उतना नहीं. देखो, इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है, हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना थोड़े कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा. सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती हैं. रात को 3 बजे तो काफ़ी लेट नाइट तो आया है, फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं.
0: बहरहाल त्विशा की मौत अपने आप में कई सवाल समेटे हुए है, जिसका सच आना अभी बाकी है. भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो.
4: अब रुक करते हैं एक सनसनीखेज खबर के, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या के साजिश का पर्दाफाश हुआ, और यह पता चला कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC से ट्रेनिंग पाए खतरनाक आतंकवादी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी ने इवांका ट्रंप की जान लेने की प्लानिंग की थी.
5: जिस वक्त अमेरिका ईरान फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े, जब ईरान में फिर से तबाही का अमेरिका का प्लान तैयार हो चुका है, किसी भी वक्त ईरान में विध्वंस के लिए हमले का ऐलान हो सकता है. ठीक उसी वक्त ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश रची गई. इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई, और सबसे चौंकाने वाली बात ये साजिश की कड़ी सीधे ईरान से जोड़ती दिख रही है. दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहे आतंकी को पकड़ लिया है. उसकी पहचान 32 साल की मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई है. जानकारी के मुताबिक ये आतंकी 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने गुरु और ईरानी सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था, और इसके लिए IRGC से ट्रेनिंग पाए इस आतंकी ने पूरा खाका तैयार कर लिया था. आतंकी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी कासिम सुलेमानी को अपना गुरु मानता था, और तभी से ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में था. आरोपी अल सादी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार, खासकर उनकी बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की कसम खाई थी. जांच के दौरान सुरक्षा बलों को अल सादी के पास से फ्लोरिडा में मौजूद इवांका ट्रंप के आलिशान घर का पूरा ब्लूप्रिंट भी बरामद हुआ है. वो काफी समय से उनके घर की रेखी कर रहा था. वॉशिंगटन में इराकी दूतावास के पूर्व डिप्टी मिलिट्री अटैचे एंटी फाद कनबर ने इस आतंकी के इरादों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अल सादी लोगों से कहता फिर रहा था कि हमें इवांका ट्रंप को मारना होगा. वो कहता था कि हमें ट्रंप के पूरे घर को उसी तरह जलाकर खाक कर देना चाहिए जिस तरह उसने कासिम सुलेमानी के घर को तबाह किया था. यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है, तफ्तीश जारी है. ये गिरफ्तारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके सीधे निशाने पर ट्रंप का परिवार आ गया है. आज तक ब्यूरो.
4: बात अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। लगभग एक घंटे तक चली इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
6: दुनिया भर में बढ़ रहे तनाव के बीच ये भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने वाली तस्वीर है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से करीब एक घंटे लंबी मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा, व्यापार, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। ये दौरा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हो रहा है और इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। रूबियो की चार दिन की भारत यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया भर में ईरान युद्ध की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं और बदलते हालात के बीच भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। इससे पहले रूबियो पत्नी के साथ कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचने के बाद रूबियो ने मदर टेरेसा हाउस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा भी किया। कोलकाता में कुछ घंटे गुजारने के बाद मार्को रूबियो दिल्ली के लिए रवाना हुए। वो जयपुर और आगरा भी जाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग मजबूत करने के लिए भारत 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों के साथ साथ मार्को रूबियो इस बैठक का भी हिस्सा होंगे। उनके चार दिन के भारत दौरे के मुख्य चार उद्देश्य होंगे, ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और रक्षा।
7: मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी होंगी, साथ ही क्वाड सम्मेलन से संबंधित भी होंगी। क्वाड में भागीदार होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे नतीजे होंगे जिनके बारे में चारों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम पिछले लगभग 5 महीनों से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 महीनों से हूँ।
6: होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर संकट के बाद से भारत ने तेल के लिए कई विकल्पों को आजमाया है। ये संकट अभी टला नहीं है। व्यापार के लिहाज से और कूटनीति में संतुलन को देखते हुए सहमति बनाने के लिए रूबियो के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। आज तक
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूबियो से मुलाकात के बाद दुनिया की भलाई के लिए अमेरिका और भारत को साथ आकर काम करने पर जोर दिया। वहीं रूबियो ने भी मौजूदा हालातों में भारत की भूमिका को बेहद अहम बताया।
8: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it is carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship.

0: विनाशकारी युद्ध पोतों से ईरानी बंदरगाहों पर निगाह बनाए हुए है और ईरान है कि उसने हर हाल में टोल टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया है। इस बीच कई खाड़ी देशों की ईरान पर हमला न करने की अपील से ये उम्मीद जगी थी कि मामला कूटनीति के जरिए ही हल किया जाएगा, लेकिन इस बीच चौंका देने वाली खबर आ रही है कि ट्रंप अपने कुछ निजी कार्यक्रमों को छोड़कर व्हाइट हाउस लौट आए हैं। कई आला अफसरों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। वैसे भी ट्रंप ने फिर दोहराया है कि उन्हें हॉर्मुज में टोल जैसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
1: We want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And
0: हॉर्मुज के अलावा दूसरा बड़ा पेच यूरेनियम पर फंसा हुआ है। अमेरिका अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि हर हाल में यूरेनियम को वो लेकर रहेगा, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी हाल में यूरेनियम देश के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
1: We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay?
0: तो क्या कुछ ही घंटों में महायुद्ध फिर से शुरू होने वाला है? क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? इन सवालों के जवाब जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मांगे गए तो उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ बातचीत भी जारी है और हो सकता है कि उसी के जरिए कोई हल निकल जाए।
2: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal. You asked me if I'm optimistic. I don't characterize it as optimistic or pessimistic. We're going to respond based on the facts as we see them and as they emerge. So, what the president has outlined is his priorities are clear. Iran can never have a nuclear weapon. The issue of highly enriched uranium has to be discussed. Its disposition has to be dealt with.
0: इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान शांति दूत बना घूम रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली है। उधर कतर की एक टीम भी तेहरान पहुंची है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच पीस प्लान पर सहमति बनाई जा सके। पाकिस्तान के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 48 घंटों में मुलाकात हावी रहती है या बमों की बरसात की तैयारियां जोर पकड़ती हैं। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री को दिया अमेरिका आने का न्योता। सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत से नाराज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मांगा जवाब। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा की आंसर शीट लेने के लिए 24 मई तक मियाद बढ़ाई। शिरडी में डिफेंस कॉम्प्लेक्स का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। कहा मेक इन इंडिया से रक्षा कंपनीज की बढ़ेगी क्षमता, तभी देश होगा और मजबूत।

0: विष्णु शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान, सोमवार को सुनवाई। 7 दिन की पुलिस रिमांड में आरोपी पति समर्थ। ईरान और अमेरिका में छिड़ा मैप वॉर। पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी नक्शे पर लगाया अमेरिकी झंडा। बदले में तेहरान ने भी अमेरिका के मानचित्र पर दिखाया अपना ध्वज। अब बात करते हैं भीषण गर्मी के बीच जारी बिजली कटौती की, जिससे जनता बेहाल है। यूपी में पावर कट को लेकर जनता गुस्से में है, सड़कों पर नजर आ रही है।
1: भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली कटौती ने आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक और हापुड़ से लेकर रामपुर तक भयंकर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। राजधानी लखनऊ का हाल देखिए। महिला का गुस्सा बिजली कर्मचारियों पर उतर रहा है, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। लखनऊ में लोगों ने रात को सड़क ही जाम कर दी। ये दुबग्गा पावर हाउस के तहत आने वाला मॉडर्न पिंक सिटी इलाका है। यहाँ पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बीती रात लोगों का सब्र जवाब दे गया।
2: क्या ये रोज आप लोग ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही दिन कट रहा है?
3: हाँ, जब बिजली नहीं आ रही तो लोग इस तरह बैठते हैं, और छुट्टियां भी हो गई हैं तो बड़ी समस्या बनी हुई है। जब से तापमान बढ़ा है तब से बिजली संकट बहुत गहरा गया है।
4: अब लोग कल दो दिन से रात में सो ही नहीं पा रहे हैं।
1: आम जनता ही नहीं, विधायक जी का हाल भी बुरा है। रायबरेली के बीजेपी के विधायक अशोक कोरी का बिजली कर्मियों को हड़काने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
5: आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं।
1: मेरठ में बिजली से बेहाल जनता ने मेयर आवास की ओर कूच कर दिया, नारेबाजी और हंगामा किया। जनता के सामने मेयर साहब भी खुद को लाचार बता रहे हैं। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज में करीब 14 से 16 घंटे बिजली कट रही है, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में छात्र अब कॉलेज के बाहर मोर्चा लेकर बैठे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यूपी में बिजली कटौती से जनता को कब राहत मिलेगी? कब वो भीषण गर्मी के बीच सड़कों की बजाय घरों में आराम से रहेगी? आज तक ब्यूरो।
0: एक ओर पावर कट से जनता बेहाल है तो दूसरी ओर इस पर सियासत हो रही। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो वहीं सरकार बिजली कटौती के दावों को खारिज कर रही है।
1: यूपी में बिजली कटौती ने एक ओर जनता को बेहाल कर रखा है तो वहीं इस पर सियासत भी जोरदार है। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार हैं। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। एके शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। मायावती भी बिजली कटौती पर भड़की नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी में बिजली की कम आपूर्ति और कटौती आदि से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों, करोड़ों मेहनत कश लोगों का जीवन कष्टदायी बना हुआ है। इसको लेकर लोग अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। कहने को तो सरकार दावा करती है कि डिमांड सप्लाई सब बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करते हैं। यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, इटावा, आगरा जैसे जिलों में 6 घंटे की निर्धारित कटौती होनी है, लेकिन हकीकत में इससे ज्यादा घंटे तक बिजली गुल रहती है।
2: बिजली के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिन रात काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डिफॉल्ट जितने भी आएंगे, फॉल्ट आएंगे, उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बढ़ता हुआ तापमान और इस तापमान में बढ़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है।
1: यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई का रोस्टर है, लेकिन अघोषित कटौती की वजह से ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली आती है। लोकल फॉल्ट और ट्रिपिंग से समस्या और बढ़ जाती है। शहरी इलाकों में मांग बढ़ने पर ग्रामीण इलाकों की बिजली काट दी जाती है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से बिजली विभाग को कम राजस्व मिलता है। बहरहाल सियासी खींचतान के बीच जनता बेहाल नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में एक और सियासत हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान को लेकर, जहां पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की इस अमर्यादित टिप्पणी ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। मामला अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। महोबा में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी की शिकायत के बाद महोबा पुलिस ने अजय राय समेत करीब 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
7: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय अभद्र टिप्पणी भी की। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
6: दरअसल महोबा में अजय राय दलित महिला से मिलने पहुंचे थे, जहां अब वो पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी को फर्जी एआई वीडियो बता रहे हैं।
8: कि जो महोबा में गया था वो एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक रेप किया गया है, उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए और उसको उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया है अपराधियों ने। आज उसकी बात मैंने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा, उन्होंने एआई जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, पर उस दलित बच्ची को जिसके साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके नशे के इंजेक्शन लगाए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया, उसको न्याय दीजिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं।
6: उधर बीजेपी अजय राय पर चौतरफा हमलावर है। योगी आदित्यनाथ ने भी अजय राय की भाषा पर सवाल खड़े किए।
9: सर मानी चाहिए कांग्रेसियों को, धिक्कार होना चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? गाली गलौज की भाषा आप मर्यादित राजनीतिक वातावरण में, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग है? पहले राहुल गांधी जानबूझ करके अपमानित करने की चेष्टा करते हैं और अब अजय राय ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। राजनीति की कोई मर्यादा नहीं रह गई है, शुद्ध रूप से गाली गलौज की प्रयोग कर रहे।
6: मामला अब तूल पकड़ रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जिस पर फिजिक्स के पेपर को आउट करने का आरोप है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस मामले में 3 महिलाएं गिरफ्तार की जा चुकी हैं और तीनों का नाम ही मनीषा है, और ये मामले में अब 11वीं गिरफ्तारी है।

0: पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और अब नीट का फिजिक्स का पेपर आउट कराने वाले आरोपी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। पुणे से सीबीआई ने मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया है। केस की आरोपी मनीषा मंधारे की तरह ही मनीषा हवलदार बतौर एक्सपर्ट एनटीए से जुड़ी थी, जिससे फिजिक्स के प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी। आरोप है कि अप्रैल 2026 में उसने परीक्षा से जुड़े कई फिजिक्स सवाल मनीषा मंधारे को शेयर किए। जांच एजेंसी के मुताबिक जो सवाल मनीषा हवलदार ने शेयर किए थे, उनका मिलान नीट यूजी 2026 के असली फिजिक्स पेपर सेट से किया गया था और दोनों में समानता पाई गई। हैरानी की बात यह है कि इस केस में अब तक जो तीन महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं, उन तीनों का नाम मनीषा ही है। इस बीच नीट पर जारी सियासत के बीच राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक से परेशान होकर सुसाइड करने वाले छात्र के परिवार से फोन पर बात की।
1: नमस्कार, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर।
2: बोलो,
1: कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे?
2: 3 साल।
3: बोलो, आप हिम्मत रखो।
2: 3 साल से पढ़ाई कर रहा था, अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला, तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड
1: किया। तो पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार किया?
2: नहीं, ये तीसरी बार था
1: और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा।
0: बहरहाल इस पूरे मामले में नीट पेपर कराने वाली संस्था एनटीए की भूमिका सवालों के घेरे में है, जो कि हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
4: बात ट्विशा की, जिसकी मौत अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने समर्थ के 7 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की है। वहीं ट्विशा के परिवार वालों की ओर से आवेदन पर कोर्ट की तरफ से समर्थ का पासपोर्ट जब्त भी किया गया और इस बीच में ट्विशा की मौत से पहले के सीसीटीवी ने सबको चौंकाया है।

0: आखिर क्या है ट्रिशा की मौत का सच? क्या ट्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई? पिछले 11 दिनों से ट्रिशा का शव इंसाफ का इंतजार कर रहा है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, सीबीआई को हर पहलू की पड़ताल करनी है। अभी ट्रिशा की मौत के कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनका सच सामने आना बाकी है। भोपाल के कटारा हिल स्थित ट्रिशा के घर के उस हिस्से की तस्वीर भी सामने आई है जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी। आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि ट्रिशा ने यहीं पर सुसाइड किया था। यही वो जगह है जहां वो फंदे से लटकते मिले। लेकिन सवाल यह है कि अमूमन इस तरह के सुसाइड घर के बंद कमरे में की जाती है ताकि घर का कोई सदस्य ना आ सके। लेकिन ट्रिशा ने सुसाइड छत जैसी खुली जगह पर किया जिसका कुछ हिस्सा ही बंद था, जहां से कोई भी उसे सुसाइड करते देख सकता था या फिर रोक सकता था। जबकि इस दौरान घर में परिवार के लोग मौजूद थे, जो कि कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ट्रिशा ने छत को क्यों सुसाइड के लिए चुना। परिवार दावा कर रहा है कि वो नशे की हालत में थी और उसने वहीं फांसे का फंदा लगाकर खुद की जान ले ली। अब सुसाइड से पहले की ये तस्वीर भी चौंकाने वाली है, जो कि एक ब्यूटी पार्लर की है जहां ट्रिशा सुसाइड से पहले पहुंची थी। ट्रिशा के आखिरी मेकअप का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें वो ससुराल के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में नजर आ रही है। वीडियो में ट्रिशा बेहद रिलैक्स दिखाई दे रही है, लेकिन इस फुटेज को भी जब्त कर लिया गया है। 12 मई जिस दिन ट्रिशा की मौत हुई, ट्रिशा शर्मा दोपहर लगभग 3:30 बजे पार्लर पहुंची थी और शाम लगभग 6:15 पर वहां से निकली।
1: वो आई थी और वो आई सबसे पहले उनने मेरे स्टाफ से बोला कि तुम लोग टीवी वो मूवी देख रहे हो। वो बहुत खुश थी। आई अंदर आई, फिर उनने बोला कि मेरे को रिलैक्स होने के लिए हेड ऑयल मसाज चाहिए है। देन उनने हेड ऑयल मसाज लिया, फिर उनने पेडिक्योर करवाया, फिर वो अपना कुछ और स्किन का काम करने के लिए वो फिर फेशियल सेक्शन में गई। वहां पे उन्हें
2: पहले कहां पे वो आई, जब उसके बाद कहां पे वो यहां पे आपके पार्लर में कहां इधर उस भर बैठी या कहीं और?
1: इधर बैठी थी वो थोड़ी देर के लिए। देन उसके बाद फिर वो इधर उधर गई और उधर उन्हें हेड ऑयल मसाज कराई।
2: ये एक बार आप जरा आकर के एक बार दिखा दें। आप इस वक्त हम पहुंच गए हैं, ये वो कुर्सी है।
1: जी हेड ऑयल मसाज कराई
2: जी।
1: उसके बाद वो इस रूम में गई थी और यहाँ पे उनका कुछ काम था जो उनने यहाँ पे कराया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे
2: मतलब ये वो चेयर है जो आखिरी जो सीसीटीवी वायरल फुटेज सामने आया है, जिसमें वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई हैं। और ये वो चेयर है जहाँ पे ट्रिशा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं ट्रिशा के आखिरी लम्हों की ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद वो
1: उस चेयर पे पेडिक्योर कराया था, उस चेयर पे बैठ के पेडिक्योर कराया था
2: वो वाली चेयर।
1: जी जी जी।
0: अब सवाल ये है कि क्या सुसाइड से पहले कोई ब्यूटी पार्लर में रिलैक्स होने जा सकता है? ब्यूटी पार्लर ट्रिशा के ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी पर है और उनको सर्विस देने वाले ने साफ कहा कि कहीं पर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ट्रिशा किसी भी तरह की टेंशन में है।
1: वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी।
2: कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था?
1: नहीं नहीं नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी।
2: पास में ही घर है उनका?
1: हाँ हाँ, उनका पास में ही घर है।
2: अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उन्हें उनसे को देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा, तो उस दिन क्या था? उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था, या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही है?
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसते हुए अंदर आई थी और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उन्होंने करवाया था। उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं। तो फिर उन्होंने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा तो उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई।
2: बस यही मेरा एक सवाल था, हेड ऑयल मसाज ये पहली बार उन्होंने करवाया था, इससे पहले भी उन्होंने करवाया था या सिर्फ उसी दिन आपको स्पेशली उन्होंने कहा कि?
1: पहले भी कराया होगा, बट मेरे को देखना पड़ेगा रजिस्टर के इससे पहले कौन कौन सी सर्विसेज
2: ली। उस दिन उन्होंने ये बोला था कि मुझे सरदर्द हो रहा है, कुछ रिलैक्स होना है।
1: सरदर्द या मेरे को रिलैक्स होना है ऐसा कुछ बोला होगा, तो मेरे को ऐसा कुछ बताओ। तो हेड ऑयल मसाज कराई थी या सरदर्द हो रहा होगा, एकदम याद नहीं है, एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं है कि क्या बोला था, बट रिलैक्स तो होना था उनको, तो इसलिए उनने हेड ऑयल मसाज कराई थी।
0: इस कड़ी में सबसे अहम किरदार है त्विशा के पति समर सिंह का, जिससे पुलिस को कई सच उगलवाने हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि त्विशा को सुसाइड करना पड़ा, और अगर ये हत्या है तो फिर आखिर त्विशा को क्यों मारा गया? क्या हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, या फिर सच में त्विशा ने नशे की हालत में खुद की जान ले ली?
3: नहीं, अभी उतना नहीं। देखो, इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है, हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना थोड़ी कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा। सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। रात को 3 बजे तो काफी लेट नाइट तो आया है, फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीजें होती हैं।
0: बहरहाल त्विशा की मौत अपने आप में कई सवाल समेटे हुए है, जिसका सच आना अभी बाकी है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब रुख करते हैं सनसनीखेज खबर के, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ, और यह पता चला कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC से ट्रेनिंग पाए खतरनाक आतंकवादी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी ने इवांका ट्रंप की जान लेने की प्लानिंग की थी।
5: जिस वक्त अमेरिका ईरान फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े, जब ईरान में फिर से तबाही का अमेरिका का प्लान तैयार हो चुका है, किसी भी वक्त ईरान में विध्वंस के लिए हमले का ऐलान हो सकता है। ठीक उसी वक्त ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश रची गई। इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई, और सबसे चौंकाने वाली बात ये साजिश की कड़ी सीधे ईरान से जोड़ती दिख रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहे आतंकी को पकड़ लिया है। उसकी पहचान 32 साल की मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने गुरु और ईरानी सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था, और इसके लिए IRGC से ट्रेनिंग पाए इस आतंकी ने पूरा खाका तैयार कर लिया था। आतंकी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी कासिम सुलेमानी को अपना गुरु मानता था, और तभी से ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में था। आरोपी अल सादी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार, खासकर उनकी बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की कसम खाई थी। जांच के दौरान सुरक्षा बलों को अल सादी के पास से फ्लोरिडा में मौजूद इवांका ट्रंप के आलिशान घर का पूरा ब्लूप्रिंट भी बरामद हुआ है। वो काफी समय से उनके घर की रेखी कर रहा था। वॉशिंगटन में इराकी दूतावास के पूर्व डिप्टी मिलिट्री अटैचे एंटी फाद कनबर ने इस आतंकी के इरादों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अल सादी लोगों से कहता फिर रहा था कि हमें इवांका ट्रंप को मारना होगा। वो कहता था कि हमें ट्रंप के पूरे घर को उसी तरह जलाकर खाक कर देना चाहिए जिस तरह उसने कासिम सुलेमानी के घर को तबाह किया था। यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है, तफ्तीश जारी है। ये गिरफ्तारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके सीधे निशाने पर ट्रंप का परिवार आ गया है। आज तक ब्यूरो।
4: बात अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
6: दुनिया भर में बढ़ रहे तनाव के बीच ये भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने वाली तस्वीर है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से करीब 1 घंटे लंबी मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा, व्यापार, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। ये दौरा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हो रहा है और इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। रूबियो की चार दिन की भारत यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया भर में ईरान युद्ध की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं और बदलते हालात के बीच भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। इससे पहले रूबियो पत्नी के साथ कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचने के बाद रूबियो ने मदर टेरेसा हाउस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा भी किया। कोलकाता में कुछ घंटे गुजारने के बाद मार्को रूबियो दिल्ली के लिए रवाना हुए। वो जयपुर और आगरा भी जाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग मजबूत करने के लिए भारत 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों के साथ साथ मार्को रूबियो इस बैठक का भी हिस्सा होंगे। उनके चार दिन के भारत दौरे के मुख्य चार उद्देश्य होंगे ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और रक्षा।
7: मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी होंगी, साथ ही क्वाड सम्मेलन से संबंधित भी होंगी। क्वाड में भागीदार होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे नतीजे होंगे जिनके बारे में चारों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम पिछले लगभग 5 महीनों से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 महीनों से हूँ।
6: होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर संकट के बाद से भारत ने तेल के लिए कई विकल्पों को आजमाया है। ये संकट अभी टला नहीं है। व्यापार के लिहाज से और कूटनीति में संतुलन को देखते हुए सहमति बनाने के लिए रूबियो के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। आज तक
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूबियो से मुलाकात के बाद दुनिया की भलाई के लिए अमेरिका और भारत को साथ आकर काम करने पर जोर दिया। वहीं रूबियो ने भी मौजूदा हालातों में भारत की भूमिका को बेहद अहम बताया।
8: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into this second administration. And you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term. And so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen in ways that don't often make headlines or aren't splashy, but are important and real and tangible and enduring. We've expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific.
4: ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। एक तरफ ट्रंप ने होर्मुज और यूरेनियम को लेकर तल्ख बयानबाजी फिर दोहराई है, तो ईरान ने भी संभावित हमले की आशंका को देखते हुए तैयारियां पुख्ता कर ली हैं।

0: हॉर्मुज और यूरेनियम पर जारी घमासान, दोनों मुद्दों पर सरेंडर नहीं करेगा ईरान। व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, क्या फिर मचेगा कोहराम? रूबियो ने जताई उम्मीद, बात से बनेगी बात। हॉर्मुज में फिलहाल गोलियों की गूंज नहीं है, लेकिन जहाजों की आवाजाही भी नहीं है। अभी भी सैकड़ों जहाज समंदर में फंसे हुए हैं, क्योंकि ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका वहां से लौटने को। अमेरिका विनाशकारी युद्धपोतों से ईरानी बंदरगाहों पर निगाह बनाए हुए है, और ईरान है कि उसने हर हाल में टोल टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया है। इस बीच कई खाड़ी देशों की ईरान पर हमला ना करने की अपील से ये उम्मीद जगी थी कि मामला कूटनीति के जरिए ही हल किया जाएगा, लेकिन इस बीच चौंका देने वाली खबर आ रही है कि ट्रंप अपने कुछ निजी कार्यक्रमों को छोड़कर व्हाइट हाउस लौट आए हैं। कई आला अफसरों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। वैसे भी ट्रंप ने फिर दोहराया है कि उन्हें हॉर्मुज में टोल जैसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
1: We want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an inter. Right now they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval, and the Navy has done an amazing job. And
0: Hormuz ke alawa dusra bada pech uranium par phansa hua hai. अमेरिका अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि हर हाल में यूरेनियम को वो लेकर रहेगा, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी हाल में यूरेनियम देश के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
1: No, no, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay?
0: तो क्या कुछ ही घंटों में महायुद्ध फिर से शुरू होने वाला है? क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? इन सवालों के जवाब जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मांगे गए, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ बातचीत भी जारी है और हो सकता है कि उसी के जरिए कोई हल निकल जाए।
2: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal. You asked me if I'm optimistic. I don't characterize it as optimistic or pessimistic. We're going to respond based on the facts as we see them and as they emerge. So what the president has outlined is his priorities are clear. Iran can never have a nuclear weapon. The issue of highly enriched uranium has to be discussed. Its disposition has to be dealt with.
0: इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान शांति दूत बना घूम रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली है। उधर कतर की एक टीम भी तेहरान पहुंची है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच पीस प्लान पर सहमति बनाई जा सके। पाकिस्तान के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 48 घंटों में मुलाकात हावी रहती है या बमों की बरसात की तैयारियां जोर पकड़ती हैं। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री को दिया अमेरिका आने का न्योता। सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत से नाराज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मांगा जवाब। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा की आंसर शीट लेने के लिए 24 मई तक मियाद बढ़ाई। शिरडी में डिफेंस कॉम्प्लेक्स का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। कहा मेक इन इंडिया से रक्षा कंपनीज की बढ़ेगी क्षमता, तभी देश होगा और मजबूत। विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान। सोमवार को सुनवाई, 7 दिन की पुलिस रिमांड में आरोपी पति समर्थ। ईरान और अमेरिका में छिड़ा मैप वॉर। पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी नक्शे पर लगाया अमेरिकी झंडा, बदले में तेहरान ने भी अमेरिका के मानचित्र पर दिखाया अपना ध्वज। अब बात करते हैं भीषण गर्मी के बीच जारी बिजली कटौती की, जिससे जनता बेहाल है। यूपी में पावर कट को लेकर जनता गुस्से में है, सड़कों पर नजर आ रही है।
1: भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली कटौती ने आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक और हापुड़ से लेकर रामपुर तक भयंकर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। राजधानी लखनऊ का हाल देखिए, महिला का गुस्सा बिजली कर्मचारियों पर उतर रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। लखनऊ में लोगों ने रात को सड़क ही जाम कर दी। ये दुबग्गा पावर हाउस के तहत आने वाला मॉडर्न पिंक सिटी इलाका है। यहाँ पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बीती रात लोगों का सब्र जवाब दे गया।
2: क्या ये रोज आप लोग ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही दिन कट रहा है?
3: हाँ, जब बिजली नहीं आ रही तो लोग इस तरह बैठते हैं, और छुट्टियां भी हो गई हैं तो बड़ी समस्या बनी हुई है। जब से तापमान बढ़ा है तब से बिजली संकट बहुत गहरा गया है।
4: अब लोग कल दो दिन से रात में सो ही नहीं पा रहे हैं।
1: आम जनता ही नहीं, विधायक जी का हाल भी बुरा है। रायबरेली के बीजेपी के विधायक अशोक कोरी का बिजली कर्मियों को हड़काने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
5: आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं।
1: मेरठ में बिजली से बेहाल जनता ने मेयर आवास की ओर कूच कर दिया, नारेबाजी और हंगामा किया। जनता के सामने मेयर साहब भी खुद को लाचार बता रहे हैं। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज में करीब 14 से 16 घंटे बिजली कट रही है, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में छात्र अब कॉलेज के बाहर मोर्चा लेकर बैठे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यूपी में बिजली कटौती से जनता को कब राहत मिलेगी? कब वो भीषण गर्मी के बीच सड़कों की बजाय घरों में आराम से रहेगी? आज तक ब्यूरो।
0: एक ओर पावर कट से जनता बेहाल है तो दूसरी ओर इस पर सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो वहीं सरकार बिजली कटौती के दावों को खारिज कर रही है।
1: यूपी में बिजली कटौती ने एक ओर जनता को बेहाल कर रखा है तो वहीं इस पर सियासत भी जोरदार है। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार हैं। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। एके शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। मायावती भी बिजली कटौती पर भड़की नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी में बिजली की कम आपूर्ति और कटौती आदि से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों, करोड़ों मेहनत कश लोगों का जीवन कष्टदायी बना हुआ है। इसको लेकर लोग अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। कहने को तो सरकार दावा करती है कि डिमांड सप्लाई सब बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करते हैं। यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, इटावा, आगरा जैसे जिलों में 6 घंटे की निर्धारित कटौती होनी है, लेकिन हकीकत में इससे ज्यादा घंटे तक बिजली गुल रहती है।
6: बिजली के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिन रात काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डिफॉल्ट जितने भी आएंगे, फॉल्ट आएंगे, उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बढ़ता हुआ तापमान और इस तापमान में बढ़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है।
1: यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई का रोस्टर है, लेकिन अघोषित कटौती की वजह से ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली आती है। लोकल फॉल्ट और ट्रिपिंग से समस्या और बढ़ जाती है। शहरी इलाकों में मांग बढ़ने पर ग्रामीण इलाकों की बिजली काट दी जाती है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से बिजली विभाग को कम राजस्व मिलता है। बहरहाल सियासी खींचतान के बीच जनता बेहाल नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में एक और सियासत हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान को लेकर, जहां पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की इस अमर्यादित टिप्पणी ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। मामला अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। महोबा में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी की शिकायत के बाद महोबा पुलिस ने अजय राय समेत करीब 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
8: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय अभद्र टिप्पणी भी की। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
7: दरअसल महोबा में अजय राय दलित महिला से मिलने पहुंचे थे, जहां अब वो पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी को फर्जी एआई वीडियो बता रहे हैं।
9: कि जो महोबा में गया था वो एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक रेप किया गया है, उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए और उसको उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया है अपराधियों ने। आज उसकी बात मैंने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा, उन्होंने एआई जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, पर उस दलित बच्ची को जिसके साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके नशे के इंजेक्शन लगाए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया, उसको न्याय दीजिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं।
7: उधर बीजेपी अजय राय पर चौतरफा हमलावर है। योगी आदित्यनाथ ने भी अजय राय की भाषा पर सवाल खड़े किए।
10: शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को, धिक्कार होना चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? गाली गलौज की भाषा आप मर्यादित राजनीतिक वातावरण में, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग है? पहले राहुल गांधी जानबूझ करके अपमानित करने की चेष्टा करते और अब अजय राय ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी है, राजनीति की कोई मर्यादा नहीं रह गई है, शुद्ध रूप से गाली गलौज की प्रयोग कर रहे।
7: मामला अब तूल पकड़ रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जिस पर फिजिक्स के पेपर को आउट करने का आरोप है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस मामले में 3 महिलाएं गिरफ्तार की जा चुकी हैं और तीनों का नाम ही मनीषा है, और ये मामले में अब 11वीं गिरफ्तारी है।

0: पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और अब नीट का फिजिक्स का पेपर आउट कराने वाले आरोपी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। पुणे से सीबीआई ने मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया है। केस की आरोपी मनीषा मंधारे की तरह ही मनीषा हवलदार बतौर एक्सपर्ट एनटीए से जुड़ी थी, जिससे फिजिक्स के प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी। आरोप है कि अप्रैल 2026 में उसने परीक्षा से जुड़े कई फिजिक्स सवाल मनीषा मंधारे को शेयर किए। जांच एजेंसी के मुताबिक जो सवाल मनीषा हवलदार ने शेयर किए थे, उनका मिलान नीट यूजी 2026 के असली फिजिक्स पेपर सेट से किया गया था और दोनों में समानता पाई गई। हैरानी की बात यह है कि इस केस में अब तक जो तीन महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं, उन तीनों का नाम मनीषा ही है। इस बीच नीट पर जारी सियासत के बीच राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक से परेशान होकर सुसाइड करने वाले छात्र के परिवार से फोन पर बात की।
1: नमस्कार, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर।
2: बोलो, बोलो।
1: कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे?
2: 3 साल।
3: बोलो बोलो, आप हिम्मत रखो।
2: 3 साल से पढ़ाई कर रहा था, अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला, तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड
1: किया। तो पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार किए?
2: नहीं, ये तीसरी बार था
1: और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा।
0: बहरहाल इस पूरे मामले में नीट पेपर कराने वाली संस्था एनटीए की भूमिका सवालों के घेरे में है, जो कि हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
4: अथ ट्विशा की, जिसकी मौत अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर सिंह को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने समर्त के 7 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की है। वहीं ट्विशा के परिवार वालों की ओर से आवेदन पर कोर्ट की तरफ से समर्त का पासपोर्ट जब्त भी किया गया और इस बीच में ट्विशा की मौत से पहले के सीसीटीवी ने सबको चौंकाया है।

0: आखिर क्या है ट्रिशा की मौत का सच? क्या ट्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई? पिछले 11 दिनों से ट्रिशा का शव इंसाफ का इंतजार कर रहा है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, सीबीआई को हर पहलू की पड़ताल करनी है। अभी ट्रिशा की मौत के कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनका सच सामने आना बाकी है। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ट्रिशा के घर के उस हिस्से की तस्वीर भी सामने आई है जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी। आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि ट्रिशा ने यहीं पर सुसाइड किया था। यही वो जगह है जहां वो फंदे से लटकते मिले। लेकिन सवाल यह है कि अमूमन इस तरह के सुसाइड घर के बंद कमरे में की जाती है ताकि घर का कोई सदस्य ना आ सके। लेकिन ट्रिशा ने सुसाइड छत जैसी खुली जगह पर किया जिसका कुछ हिस्सा ही बंद था, जहां से कोई भी उसे सुसाइड करते देख सकता था या फिर रोक सकता था। जबकि इस दौरान घर में परिवार के लोग मौजूद थे, जो कि कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ट्रिशा ने छत को क्यों सुसाइड के लिए चुना। परिवार दावा कर रहा है कि वो नशे की हालत में थी और उसने वही फांसी का फंदा लगाकर खुद की जान ले ली। अब सुसाइड से पहले की ये तस्वीर भी चौंकाने वाली है, जो कि एक ब्यूटी पार्लर की है जहां ट्रिशा सुसाइड से पहले पहुंची थी। ट्रिशा के आखिरी मेकअप का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें वो ससुराल के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में नजर आ रही है। वीडियो में ट्रिशा बेहद रिलैक्स दिखाई दे रही है, लेकिन इस फुटेज को भी जब्त कर लिया गया है। 12 मई जिस दिन ट्रिशा की मौत हुई, ट्रिशा शर्मा दोपहर लगभग 3:30 बजे पार्लर पहुंची थी और शाम लगभग 6:15 पर वहां से निकले।
1: वो आई थी और वो आई, सबसे पहले उनने मेरे स्टाफ से बोला कि तुम लोग टीवी वो मूवी देख रहे हो। वो बहुत खुश थी, आई अंदर आई, फिर उनने बोला कि मेरे को रिलैक्स होने के लिए हेड ऑयल मसाज चाहिए है। देन उनने हेड ऑयल मसाज लिया, फिर उन्हें पेडिक्योर करवाया, फिर वो अपना कुछ और स्किन का काम करने के लिए वो फिर फेशियल सेक्शन में गई। वहाँ पे उन्हें
2: पहले कहाँ पे वो जी।
1: और गई वहाँ पे उन्हें
2: पहले कहाँ पे वो आई, जब उसके बाद कहाँ पे वो यहाँ पे आपके पार्लर में कहाँ, इधर उस भर बैठी या कहीं और?
1: इधर बैठी थी वो थोड़ी देर के लिए, देन उसके बाद फिर वो इधर उधर गई और उधर उन्हें हेड ऑयल मसाज कराई।
2: एक बार आप जरा करके एक बार दिखा दें। आप इस वक्त हम पहुंच गए हैं, ये वो कुर्सी है
1: जी,
3: हेड ऑयल मसाज
2: कराई जी।
1: उसके बाद वो इस रूम में गई थी और यहाँ पे उनका कुछ काम था जो उनने यहाँ पे कराया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे,
2: ये मतलब ये वो चेयर है जो आखिरी जो सीसीटीवी वायरल फुटेज सामने आया है, जिसमें वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई हैं। और ये वो चेयर है जहाँ पे ट्रिशा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं ट्रिशा के आखिरी लम्हों की ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद वो उस चेयर
1: पे पेडिक्योर कराया था, उस चेयर पे बैठ के पेडिक्योर कराया था,
2: वो वाली चेयर
1: जी जी।
0: अब सवाल यह है कि क्या सुसाइड से पहले कोई ब्यूटी पार्लर में रिलैक्स होने जा सकता है? ब्यूटी पार्लर ट्रिशा के ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी पर है और उनको सर्विस देने वाले ने साफ कहा कि कहीं पर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ट्रिशा किसी भी तरह की टेंशन में है।
1: वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी।
2: कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था?
1: नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी।
2: पास में ही घर है उनका?
1: हाँ, उनका पास में ही घर है।
2: अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उन्हें उनसे को देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा, तो उस दिन क्या था? उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था, या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही है?
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसते हुए अंदर आई थी और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उन्हें करवाया था। उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं। तो फिर उन्होंने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा, तो उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई।
2: बस यही मेरा सवाल था, हेड ऑयल मसाज ये पहली बार उन्होंने करवाया था, इससे पहले भी उन्होंने करवाया था, या सिर्फ उसी दिन आपको स्पेशली उन्होंने कहा कि?
1: पहले भी कराया होगा, बट मेरे को देखना पड़ेगा रजिस्टर के इससे पहले कौन कौन सी सर्विसेज
2: ली। उस दिन उन्होंने ये बोला था कि मुझे सर दर्द हो रहा है, कुछ रिलैक्स होना है,
1: सर दर्द या मेरे को रिलैक्स होना है, ऐसा कुछ बोला होगा, तो मेरे को ऐसा कुछ बताओ। तो हेड ऑयल मसाज कराई थी या सर दर्द हो रहा होगा, एकदम याद नहीं है, एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं है कि क्या बोला था, बट रिलैक्स तो होना था उनको, तो इसलिए उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई थी।
0: इस कड़ी में सबसे अहम किरदार है ट्विशा के पति समर सिंह का, जिससे पुलिस को कई सच उगलवाने हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा को सुसाइड करना पड़ा, और अगर ये हत्या है तो फिर आखिर ट्विशा को क्यों मारा गया? क्या हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, या फिर सच में ट्विशा ने नशे की हालत में खुद की जान ले ली?
3: नहीं, अभी उतना नहीं, देखो इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है, हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना थोड़े कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा, सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। रात को 3 बजे तो काफी लेट नाइट तो आया है, फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीजें होती हैं।
0: बहरहाल त्विशा की मौत अपने आप में कई सवाल समेटे हुए है, जिसका सच आना अभी बाकी है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो। अब रुक करते हैं सनसनीखेज खबर के, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ, और यह पता चला कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC से ट्रेनिंग पाए खतरनाक आतंकवादी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी ने इवांका ट्रंप की जान लेने की प्लानिंग की थी।
4: जिस वक्त अमेरिका ईरान फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े, जब ईरान में फिर से तबाही का अमेरिका का प्लान तैयार हो चुका है, किसी भी वक्त ईरान में विध्वंस के लिए हमले का ऐलान हो सकता है। ठीक उसी वक्त ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश रची गई, इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई, और सबसे चौंकाने वाली बात ये साजिश की कड़ी सीधे ईरान से जोड़ती दिख रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहे आतंकी को पकड़ लिया है। उसकी पहचान 32 साल की मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने गुरु और ईरानी सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था, और इसके लिए IRGC से ट्रेनिंग पाए इस आतंकी ने पूरा खाका तैयार कर लिया था। आतंकी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी कासिम सुलेमानी को अपना गुरु मानता था, और तभी से ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में था। आरोपी अल सादी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार, खासकर उनकी बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की कसम खाई थी। जांच के दौरान सुरक्षा बलों को अल सादी के पास से फ्लोरिडा में मौजूद इवांका ट्रंप के आलिशान घर का पूरा ब्लूप्रिंट भी बरामद हुआ है। वो काफी समय से उनके घर की रेखी कर रहा था। वॉशिंगटन में इराकी दूतावास के पूर्व डिप्टी मिलिट्री अटैची एंटी फाद कनबर ने इस आतंकी के इरादों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अल सादी लोगों से कहता फिर रहा था कि हमें इवांका ट्रंप को मारना होगा। वो कहता था कि हमें ट्रंप के पूरे घर को उसी तरह जलाकर खाक कर देना चाहिए जिस तरह उसने कासिम सुलेमानी के घर को तबाह किया था। यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है, तफ्तीश जारी है। ये गिरफ्तारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके सीधे निशाने पर ट्रंप का परिवार आ गया है। आज तक ब्यूरो।
0: बात अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
5: दुनिया भर में बढ़ रहे तनाव के बीच ये भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने वाली तस्वीर है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से करीब 1 घंटे लंबी मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा, व्यापार, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। ये दौरा क्वाड विदेश मंत्रियों की भी को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। ये दौरा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हो रहा है और इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। रूबियो की चार दिन की भारत यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया भर में ईरान युद्ध की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं और बदलते हालात के बीच भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। इससे पहले रूबियो पत्नी के साथ कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचने के बाद रूबियो ने मदर टेरेसा हाउस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा भी किया। कोलकाता में कुछ घंटे गुजारने के बाद मार्को रूबियो दिल्ली के लिए रवाना हुए। वो जयपुर और आगरा भी जाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग मजबूत करने के लिए भारत 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों के साथ साथ मार्को रूबियो इस बैठक का भी हिस्सा होंगे। उनके चार दिन के भारत दौरे के मुख्य चार उद्देश्य होंगे ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और रक्षा।
6: मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी होंगी, साथ ही क्वाड सम्मेलन से संबंधित भी होंगी। क्वाड में भागीदार होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे नतीजे होंगे जिनके बारे में चारों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम पिछले लगभग 5 महीनों से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 महीनों से हूँ।
5: होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर संकट के बाद से भारत ने तेल के लिए कई विकल्पों को आजमाया है। ये संकट अभी टला नहीं है। व्यापार के लिहाज से और कूटनीति में संतुलन को देखते हुए सहमति बनाने के लिए रूबियो के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। आज तक
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूबियो से मुलाकात के बाद दुनिया की भलाई के लिए अमेरिका और भारत को साथ आकर काम करने पर जोर दिया। वहीं रूबियो ने भी मौजूदा हालातों में भारत की भूमिका को बेहद अहम बताया।
8: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen in ways that don't often make headlines or aren't splashy, but are important and real and tangible and enduring. We've expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific.
7: ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर गहमा गहमी तेज हो गए हैं। एक तरफ ट्रंप ने होर्मुज और यूरेनियम को लेकर तल्ख बयानबाजी फिर दोहराई है, तो ईरान ने भी संभावित हमले की आशंका को देखते हुए तैयारियां पुख्ता कर ली हैं।

हॉर्मुज और यूरेनियम पर जारी घमासान, दोनों मुद्दों पर सरेंडर नहीं करेगा ईरान। व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, क्या फिर मचेगा कोहराम? रूबियो ने जताई उम्मीद, बात से बनेगी बात। हॉर्मुज में फिलहाल

0: उन्हें हॉर्मुज में टोल जैसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
1: We want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know. It sounds like a lot of money, but whether it's $500 or $200 or $300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And
0: हॉर्मुज के अलावा दूसरा बड़ा पेच यूरेनियम पर फंसा हुआ है। अमेरिका अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि हर हाल में यूरेनियम को वो लेकर रहेगा, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी हाल में यूरेनियम देश के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
1: Probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay?
0: तो क्या कुछ ही घंटों में महायुद्ध फिर से शुरू होने वाला है? क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? इन सवालों के जवाब जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मांगे गए तो उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ बातचीत भी जारी है और हो सकता है कि उसी के जरिए कोई हल निकल जाए।
2: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal. You asked me if I'm optimistic. I don't characterize it as optimistic or pessimistic. We're going to respond based on the facts as we see them and as they emerge. So what the president has outlined is his priorities are clear. Iran can never have a nuclear weapon. The issue of highly enriched uranium has to be discussed, its disposition has to be dealt with.
0: इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान
2: have a nuclear weapon. The issue of highly enriched uranium has to be discussed, its disposition has to be dealt with.
0: इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान शांति दूत बना घूम रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली है। उधर कतर की एक टीम भी तेहरान पहुंची है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच पीस प्लान पर सहमति बनाई जा सके। पाकिस्तान के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 48 घंटों में मुलाकात हावी रहती है या बमों की बरसात की तैयारियां जोर पकड़ती हैं। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

दिल्ली में पीएम मोदी से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात। वैश्विक हालात के साथ आपसे साझेदारी पर बात। ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री को दिया अमेरिका आने का न्योता। सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत से नाराज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मांगा जवाब। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा की आंसर शीट लेने के लिए 24 मई तक मियाद बढ़ाई। शिरडी में डिफेंस कॉम्प्लेक्स का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। कहा मेक इन इंडिया से रक्षा कंपनीज की बढ़ेगी क्षमता, तभी देश होगा और मजबूत। विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान। सोमवार को सुनवाई। 7 दिन के पुलिस रिमांड में आरोपी पति समर्थ। ईरान और अमेरिका में छिड़ा मैप वॉर। पहले

0: ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी नक्शे पर लगाया अमेरिकी झंडा, बदले में तेहरान ने भी अमेरिका के मानचित्र पर दिखाया अपना ध्वज। अब बात करते हैं भीषण गर्मी के बीच जारी बिजली कटौती की, जिससे जनता बेहाल है। यूपी में पावर कट को लेकर जनता गुस्से में है, सड़कों पर नजर आ रही है।
1: भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली कटौती ने आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक और हापुड़ से लेकर रामपुर तक भयंकर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। राजधानी लखनऊ का हाल देखिए, महिला का गुस्सा बिजली कर्मचारियों पर उतर रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। लखनऊ में लोगों ने रात को सड़क ही जाम कर दी। ये दुबग्गा पावर हाउस के तहत आने वाला मॉडर्न पिंक सिटी इलाका है। यहाँ पिछले चार दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बीती रात लोगों का सब्र जवाब दे गया।
2: क्या ये रोज आप लोग ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही दिन कट रहा है?
3: हाँ, जब बिजली नहीं आ रही तो लोग इस तरह बैठते हैं, और छुट्टियां भी हो गई हैं तो बड़ी समस्या बनी हुई है। जब से तापमान बढ़ा है तब से बिजली संकट बहुत गहरा गया है।
4: अब लोग कल दो दिन से रात में सो ही नहीं पा रहे हैं।
1: आम जनता ही नहीं, विधायक जी का हाल भी बुरा है। रायबरेली के बीजेपी के विधायक अशोक कोरी का बिजली कर्मियों को हड़काने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
5: आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? आठ आठ घंटे, चार चार छह छह घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं।
1: मेरठ में बिजली से बेहाल जनता ने मेयर आवास की ओर कूच कर दिया, नारेबाजी और हंगामा किया। जनता के सामने मेयर साहब भी खुद को लाचार बता रहे हैं। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज में करीब 14 से 16 घंटे बिजली कट रही है, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में छात्र अब कॉलेज के बाहर मोर्चा लेकर बैठे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यूपी में बिजली कटौती से जनता को कब राहत मिलेगी, कब वो भीषण गर्मी के बीच सड़कों की बजाय घरों में आराम से रहेगी। आज तक ब्यूरो।
0: एक और पावर कट से जनता बेहाल है तो दूसरी ओर इस पर सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो वहीं सरकार बिजली कटौती के दावों को खारिज कर रही है।
1: यूपी में बिजली कटौती ने एक ओर जनता को बेहाल कर रखा है तो वहीं इस पर सियासत भी जोरदार है। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार हैं। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। एके शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। मायावती भी बिजली कटौती पर भड़की नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी में बिजली की कम आपूर्ति और कटौती आदि से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों, करोड़ों मेहनत कश लोगों का जीवन कष्टदायी बना हुआ है। इसको लेकर लोग अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। कहने को तो सरकार दावा करती है कि डिमांड सप्लाई सब बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करते हैं। यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, इटावा, आगरा जैसे जिलों में 6 घंटे की निर्धारित कटौती होनी है, लेकिन हकीकत में इससे ज्यादा घंटे तक बिजली गुल रहती है।
2: बिजली के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिन रात काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डिफॉल्ट जितने भी आएंगे, फॉल्ट आएंगे, उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन बढ़ता हुआ तापमान और इस तापमान में बढ़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है।
1: यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई का रोस्टर है, लेकिन अघोषित कटौती की वजह से ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली आती है। लोकल फॉल्ट और ट्रिपिंग से समस्या और बढ़ जाती है। शहरी इलाकों में मांग बढ़ने पर ग्रामीण इलाकों की बिजली काट दी जाती है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से बिजली विभाग को कम राजस्व मिलता है। बहरहाल सियासी खींचतान के बीच जनता बेहाल नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में एक और सियासत हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान को लेकर, जहां पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की इस अमर्यादित टिप्पणी ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। मामला अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। महोबा में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी की शिकायत के बाद महोबा पुलिस ने अजय राय समेत करीब 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
7: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय अभद्र टिप्पणी भी की। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
6: दरअसल महोबा में अजय राय दलित महिला से मिलने पहुंचे थे, जहां अब वो पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी को फर्जी एआई वीडियो बता रहे हैं।
8: कि जो महोबा में गया था वो एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक रेप किया गया है, उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए और उसको उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया है अपराधियों ने। आज उसकी बात मैंने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा। उन्होंने एआई जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं सरकार से कहना चाहूंगा एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, पर उस दलित बच्ची को जिसके साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके नशे के इंजेक्शन लगाए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया, उसको न्याय दीजिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं।
6: उधर बीजेपी अजय राय पर चौतरफा हमलावर है। योगी आदित्यनाथ ने भी अजय राय की भाषा पर सवाल खड़े किए।
9: सर मानी चाहिए कांग्रेसियों को, धिक्कार होना चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? गाली गलौज की भाषा आप मर्यादित राजनीतिक वातावरण में, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग है? पहले राहुल गांधी जानबूझ करके अपमानित करने की चेष्टा करते हैं और अब अजय राय ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। राजनीति की कोई मर्यादा नहीं रह गई है, शुद्ध रूप से गाली गलौज की प्रयोग कर रहे।
6: मामला अब तूल पकड़ रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जिस पर फिजिक्स के पेपर को आउट करने का आरोप है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस मामले में 3 महिलाएं गिरफ्तार की जा चुकी हैं और तीनों का नाम ही मनीषा है, और ये मामले में अब 11वीं गिरफ्तारी है।

0: पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और अब नीट का फिजिक्स का पेपर आउट कराने वाले आरोपी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। पुणे से सीबीआई ने मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया है। केस की आरोपी मनीषा मंधारे की तरह ही मनीषा हवलदार बतौर एक्सपर्ट एनटीए से जुड़ी थी, जिससे फिजिक्स के प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी। आरोप है कि अप्रैल 2026 में उसने परीक्षा से जुड़े कई फिजिक्स सवाल मनीषा मंधारे को शेयर किए। जांच एजेंसी के मुताबिक जो सवाल मनीषा हवलदार ने शेयर किए थे, उनका मिलान नीट यूजी 2026 के असली फिजिक्स पेपर सेट से किया गया था और दोनों में समानता पाई गई। हैरानी की बात यह है कि इस केस में अब तक जो तीन महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं, उन तीनों का नाम मनीषा ही है। इस बीच नीट पर जारी सियासत के बीच राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक से परेशान होकर सुसाइड करने वाले छात्र के परिवार से फोन पर बात की।
1: नमस्कार, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर।
2: बोलो,
1: कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे?
2: 3 साल।
3: बोलो, आप हिम्मत रखो।
2: 3 साल से पढ़ाई कर रहा था, अब की बार उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला, तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया है अभी बाद। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड
1: किया। तो पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की
2: है? नहीं, ये तीसरी बार था
1: और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा।
0: बहरहाल इस पूरे मामले में नीट पेपर कराने वाली संस्था एनटीए की भूमिका सवालों के घेरे में है, जो कि हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
4: अथ ट्विशा के जिसकी मौत अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने समर्थ के 7 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की है। वहीं ट्विशा के परिवार वालों की ओर से आवेदन पर कोर्ट की तरफ से समर्थ का पासपोर्ट जब्त भी किया गया और इस बीच में ट्विशा की मौत से पहले के सीसीटीवी ने सबको चौंकाया है।

0: आखिर क्या है ट्रिशा की मौत का सच? क्या ट्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई? पिछले 11 दिनों से ट्रिशा का शव इंसाफ का इंतजार कर रहा है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, सीबीआई को हर पहलू की पड़ताल करनी है। अभी ट्रिशा की मौत के कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनका सच सामने आना बाकी है। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ट्रिशा के घर के उस हिस्से की तस्वीर भी सामने आई है, जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी। आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि ट्रिशा ने यहीं पर सुसाइड किया था। यही वो जगह है जहां वो फंदे से लटकती मिली। लेकिन सवाल यह है कि अमूमन इस तरह के सुसाइड घर के बंद कमरे में की जाती है, ताकि घर का कोई सदस्य ना आ सके। लेकिन ट्रिशा ने सुसाइड छत जैसी खुली जगह पर किया, जिसका कुछ हिस्सा ही बंद था, जहां से कोई भी उसे सुसाइड करते देख सकता था या फिर रोक सकता था। जबकि इस दौरान घर में परिवार के लोग मौजूद थे, जो कि कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ट्रिशा ने छत को क्यों सुसाइड के लिए चुना। परिवार दावा कर रहा है कि वो नशे की हालत में थी और उसने वही फांसी का फंदा लगाकर खुद की जान ले ली। अब सुसाइड से पहले की यह तस्वीर भी चौंकाने वाली है, जो कि एक ब्यूटी पार्लर की है, जहां ट्रिशा सुसाइड से पहले पहुंची थी। ट्रिशा के आखिरी मेकअप का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें वो ससुराल के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में नजर आ रही है। वीडियो में ट्रिशा बेहद रिलैक्स दिखाई दे रही है, लेकिन इस फुटेज को भी जब्त कर लिया गया है। 12 मई जिस दिन ट्रिशा की मौत हुई, ट्रिशा शर्मा दोपहर लगभग 3:30 बजे पार्लर पहुंची थी और शाम लगभग 6:15
1: हेड ऑयल मसाज चाहिए है। और वो आई, सबसे पहले उनने मेरे स्टाफ से बोला कि तुम लोग टीवी वो मूवी देख रहे हो। वो बहुत खुश थी, आई अंदर आई, फिर उनने बोला कि मेरे को रिलैक्स होने के लिए हेड ऑयल मसाज चाहिए है। देन उनने हेड ऑयल मसाज लिया, फिर उन्हें पेडिक्योर करवाया, फिर वो अपना कुछ और स्किन का काम करने के लिए वो फिर फेशियल सेक्शन में गई। वहां पे उन्हें
2: पहले कहां पे वो आई, जब उसके बाद कहां पे वो यहां पे आपके पार्लर में कहां इधर उस भर बैठी या कहीं और?
1: इधर बैठी थी वो थोड़ी देर के लिए, देन उसके बाद फिर वो इधर उधर गई और उधर उन्हें हेड ऑयल मसाज कराई।
2: ये एक बार आप जरा आकर के एक बार दिखा दें। आप इस वक्त हम पहुंच गए हैं, ये वो कुर्सी है।
1: जी
2: जी।
1: उसके बाद वो इस रूम में गई थी और यहाँ पे उनका कुछ काम था जो उनने यहाँ पे कराया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे,
2: मतलब ये वो चेयर है जो आखिरी जो सीसीटीवी वायरल फुटेज सामने आया है, जिसमें वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई हैं। और ये वो चेयर है जहाँ पे ट्रिशा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं ट्रिशा के आखिरी लम्हों की ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद वो
1: उस चेयर पे पेडिक्योर कराया था, उस चेयर पे बैठ के पेडिक्योर कराया था,
2: वो वाली चेयर।
1: जी जी।
0: अब सवाल यह है कि क्या सुसाइड से पहले कोई ब्यूटी पार्लर में रिलैक्स होने जा सकता है? ब्यूटी पार्लर ट्रिशा के ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी पर है और उनको सर्विस देने वाले ने साफ कहा कि कहीं पर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ट्रिशा किसी भी तरह की टेंशन में है।
1: वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी।
2: कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था?
1: नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी।
2: पास में ही घर है उनका?
1: हाँ, उनका पास में ही घर है।
2: अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उन्हें उनको देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा, तो उस दिन क्या था? उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था, या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही है?
1: नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसते हुए अंदर आई थी और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उन्हें करवाया था। उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं। तो फिर उन्होंने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा, तो उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई।
2: बस यही मेरा एक सवाल था, हेड ऑयल मसाज ये पहली बार उन्होंने करवाया था, इससे पहले भी उन्होंने करवाया था, या सिर्फ उसी दिन आपको स्पेशली उन्होंने कहा कि?
1: पहले भी कराया होगा, बट मेरे को देखना पड़ेगा रजिस्टर के इससे पहले कौन कौन सी सर्विसेज
2: ली। उस दिन उन्होंने ये बोला था कि मुझे सर दर्द हो रहा है, कुछ रिलैक्स होना है,
1: सर दर्द या मेरे को रिलैक्स होना है, ऐसा कुछ बोला होगा, तो मेरे को ऐसा कुछ बताओ। तो हेड ऑयल मसाज कराई थी या सर दर्द हो रहा होगा, एकदम याद नहीं है, एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं है कि क्या बोला था, बट रिलैक्स तो होना था उनको, तो इसलिए उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई थी।
0: इस कड़ी में सबसे अहम किरदार है ट्विशा के पति समर सिंह का, जिससे पुलिस को कई सच उगलवाने हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा को सुसाइड करना पड़ा, और अगर ये हत्या है तो फिर आखिर ट्विशा को क्यों मारा गया? क्या हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, या फिर सच में ट्विशा ने नशे की हालत में खुद की जान ले ली?
3: नहीं, अभी उतना नहीं, देखो इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है, हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना थोड़े कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा, सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। रात को 3 बजे तो काफी लेट नाइट तो आया है, फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीजें होती हैं।
0: बहरहाल त्विशा की मौत अपने आप में कई सवाल समेटे हुए है, जिसका सच आना अभी बाकी है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो। अब रुख करते हैं सनसनीखेज खबर के, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या के साजिश का पर्दाफाश हुआ, और यह पता चला कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC से ट्रेनिंग पाए खतरनाक आतंकवादी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी ने इवांका ट्रंप की जान लेने की प्लानिंग की थी।
4: जिस वक्त अमेरिका ईरान फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े, जब ईरान में फिर से तबाही का अमेरिका का प्लान तैयार हो चुका है, किसी भी वक्त ईरान में विध्वंस के लिए हमले का ऐलान हो सकता है। ठीक उसी वक्त ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश रची गई, इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई, और सबसे चौंकाने वाली बात ये साजिश की कड़ी सीधे ईरान से जोड़ती दिख रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहे आतंकी को पकड़ लिया है। उसकी पहचान 32 साल की मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने गुरु और ईरानी सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था, और इसके लिए IRGC से ट्रेनिंग पाए इस आतंकी ने पूरा खाका तैयार कर लिया था। आतंकी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी कासिम सुलेमानी को अपना गुरु मानता था, और तभी से ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में था। आरोपी अल सादी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार, खासकर उनकी बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की कसम खाई थी। जांच के दौरान सुरक्षा बलों को अल सादी के पास से फ्लोरिडा में मौजूद इवांका ट्रंप के आलिशान घर का पूरा ब्लूप्रिंट भी बरामद हुआ है। वो काफी समय से उनके घर की रेखी कर रहा था। वॉशिंगटन में इराकी दूतावास के पूर्व डिप्टी मिलिट्री अटैची एंटी फाद कनबर ने इस आतंकी के इरादों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अल सादी लोगों से कहता फिर रहा था कि हमें इवांका ट्रंप को मारना होगा। वो कहता था कि हमें ट्रंप के पूरे घर को उसी तरह जलाकर खाक कर देना चाहिए जिस तरह उसने कासिम सुलेमानी के घर को तबाह किया था। यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है, तफ्तीश जारी है। ये गिरफ्तारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके सीधे निशाने पर ट्रंप का परिवार आ गया है। आज तक ब्यूरो।
0: बात अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
5: दुनिया भर में बढ़ रहे तनाव के बीच ये भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने वाली तस्वीर है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से करीब 1 घंटे लंबी मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा, व्यापार, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। ये दौरा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हो रहा है और इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। रूबियो की चार दिन की भारत यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया भर में ईरान युद्ध की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं और बदलते हालात के बीच भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। इससे पहले रूबियो पत्नी के साथ कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचने के बाद रूबियो ने मदर टेरेसा हाउस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा भी किया। कोलकाता में कुछ घंटे गुजारने के बाद मार्को रूबियो दिल्ली के लिए रवाना हुए। वो जयपुर और आगरा भी जाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग मजबूत करने के लिए भारत 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों के साथ साथ मार्को रूबियो इस बैठक का भी हिस्सा होंगे। उनके चार दिन के भारत दौरे के मुख्य चार उद्देश्य होंगे ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और रक्षा।
6: मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी होंगी, साथ ही क्वाड सम्मेलन से संबंधित भी होंगी। क्वाड में भागीदार होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे नतीजे होंगे जिनके बारे में चारों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम पिछले लगभग 5 महीनों से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 महीनों से हूँ।
5: होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर संकट के बाद से भारत ने तेल के लिए कई विकल्पों को आजमाया है। ये संकट अभी टला नहीं है। व्यापार के लिहाज से और कूटनीति में संतुलन को देखते हुए सहमति बनाने के लिए रूबियो के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। आज तक
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूबियो से मुलाकात के बाद दुनिया की भलाई के लिए अमेरिका और भारत को साथ आकर काम करने पर जोर दिया। वहीं रूबियो ने भी मौजूदा हालातों में भारत की भूमिका को बेहद अहम बताया।
8: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen in ways that don't often make headlines or aren't splashy, but are important and real and tangible and enduring. We've expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific.
7: ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर गहमा गहमी तेज हो गए हैं। एक तरफ ट्रंप ने होर्मुज और यूरेनियम को लेकर तल्ख बयानबाजी फिर दोहराई है, तो ईरान ने भी संभावित हमले की आशंका को देखते हुए तैयारियां पुख्ता कर ली हैं।

0: हॉर्मुज और यूरेनियम पर जारी घमासान, दोनों मुद्दों पर सरेंडर नहीं करेगा ईरान। व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, क्या फिर मचेगा कोहराम? रूबियो ने जताई उम्मीद, बात से बनेगी बात। हॉर्मुज में फिलहाल गोलियों की गूंज नहीं है, लेकिन जहाजों की आवाजाही भी नहीं है। अभी भी सैकड़ों जहाज समंदर में फंसे हुए हैं, क्योंकि ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका वहां से लौटने को। अमेरिका विनाशकारी युद्धपोतों से ईरानी बंदरगाहों पर निगाह बनाए हुए है, और ईरान है कि उसने हर हाल में टोल टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया है। इस बीच कई खाड़ी देशों की ईरान पर हमला न करने की अपील से ये उम्मीद जगी थी कि मामला कूटनीति के जरिए ही हल किया जाएगा, लेकिन इस बीच चौंका देने वाली खबर आ रही है कि ट्रंप अपने कुछ निजी कार्यक्रमों को छोड़कर व्हाइट हाउस लौट आए हैं। कई आला अफसरों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। वैसे भी ट्रंप ने फिर दोहराया है कि उन्हें हॉर्मुज में टोल जैसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
1: We want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's $500 or $200 or $300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And
0: हॉर्मुज के अलावा दूसरा बड़ा पेच यूरेनियम पर फंसा हुआ है। अमेरिका अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि हर हाल में यूरेनियम को वो लेकर रहेगा, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी हाल में यूरेनियम देश के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
1: We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay?
0: तो क्या कुछ ही घंटों में महायुद्ध फिर से शुरू होने वाला है? क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? इन सवालों के जवाब जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मांगे गए, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ बातचीत भी जारी है और हो सकता है कि उसी के जरिए कोई हल निकल जाए।
2: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal. You asked me if I'm optimistic. I don't characterize it as optimistic or pessimistic. We're going to respond based on the facts as we see them and as they emerge. So what the president has outlined is his priorities are clear. Iran can never have a nuclear weapon. The issue of highly enriched uranium has to be discussed. Its disposition has to be dealt with.
0: इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान शांति दूत बना घूम रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली है। उधर कतर की एक टीम भी तेहरान पहुंची है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच पीस प्लान पर सहमति बनाई जा सके। पाकिस्तान के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 48 घंटों में मुलाकात हावी रहती है या बमों की बरसात की तैयारियां जोर पकड़ती हैं। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री को दिया अमेरिका आने का न्योता। सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत से नाराज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मांगा जवाब। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा की आंसर शीट लेने के लिए 24 मई तक मियाद बढ़ाई। शिरडी में डिफेंस कॉम्प्लेक्स का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। कहा मेक इन इंडिया से रक्षा कंपनीज की बढ़ेगी क्षमता, तभी देश होगा और मजबूत। विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान। सोमवार को सुनवाई, 7 दिन की पुलिस रिमांड में आरोपी पति समर्थ। ईरान और अमेरिका में छिड़ा मैप वॉर। पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी नक्शे पर लगाया अमेरिकी झंडा। बदले में तेहरान ने भी अमेरिका के मानचित्र पर दिखाया अपना ध्वज। अब बात करते हैं भीषण गर्मी के बीच जारी बिजली कटौती की, जिससे जनता बेहाल है। यूपी में पावर कट को लेकर जनता गुस्से में है, सड़कों पर नजर आ रही है।
1: भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली कटौती ने आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक और हापुड़ से लेकर रामपुर तक भयंकर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। राजधानी लखनऊ का हाल देखिए। महिला का गुस्सा बिजली कर्मचारियों पर उतर रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। लखनऊ में लोगों ने रात को सड़क ही जाम कर दी। ये दुबग्गा पावर हाउस के तहत आने वाला मॉडर्न पिंक सिटी इलाका है। यहाँ पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बीती रात लोगों का सब्र जवाब दे गया।
2: क्या ये रोज आप लोग ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही दिन कट रहा है?
3: हाँ, जब बिजली नहीं आ रही तो लोग इस तरह बैठते हैं, और छुट्टियां भी हो गई हैं तो बड़ी समस्या बनी हुई है। जब से तापमान बढ़ा है तब से बिजली संकट बहुत गहरा गया है।
4: अब लोग कल दो दिन से रात में सो ही नहीं पा रहे हैं।
1: आम जनता ही नहीं, विधायक जी का हाल भी बुरा है। रायबरेली के बीजेपी के विधायक अशोक कोरी का बिजली कर्मियों को हड़काने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
5: आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं।
1: मेरठ में बिजली से बेहाल जनता ने मेयर आवास की ओर कूच कर दिया, नारेबाजी और हंगामा किया। जनता के सामने मेयर साहब भी खुद को लाचार बता रहे हैं। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज में करीब 14 से 16 घंटे बिजली कट रही है, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में छात्र अब कॉलेज के बाहर मोर्चा लेकर बैठे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर यूपी में बिजली कटौती से जनता को कब राहत मिलेगी? कब वो भीषण गर्मी के बीच सड़कों की बजाय घरों में आराम से रहेगी? आज तक ब्यूरो।
0: एक और पावर कट से जनता बेहाल है तो दूसरी ओर इस पर सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो वहीं सरकार बिजली कटौती के दावों को खारिज कर रही है।
1: यूपी में बिजली कटौती ने एक ओर जनता को बेहाल कर रखा है तो वहीं इस पर सियासत भी जोरदार है। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार हैं। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। एके शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। मायावती भी बिजली कटौती पर भड़की नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी में बिजली की कम आपूर्ति और कटौती आदि से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों, करोड़ों मेहनत कश लोगों का जीवन कष्टदायी बना हुआ है। इसको लेकर लोग अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। कहने को तो सरकार दावा करती है कि डिमांड सप्लाई सब बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करते हैं। यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, इटावा, आगरा जैसे जिलों में 6 घंटे की निर्धारित कटौती होनी है, लेकिन हकीकत में इससे ज्यादा घंटे तक बिजली गुल रहती है।
2: बिजली के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिन रात काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डिफॉल्ट जितने भी आएंगे, फॉल्ट आएंगे, उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बढ़ता हुआ तापमान और इस तापमान में बढ़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है।
1: यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई का रोस्टर है, लेकिन अघोषित कटौती की वजह से ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली आती है। लोकल फॉल्ट और ट्रिपिंग से समस्या और बढ़ जाती है। शहरी इलाकों में मांग बढ़ने पर ग्रामीण इलाकों की बिजली काट दी जाती है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से बिजली विभाग को कम राजस्व मिलता है। बहरहाल सियासी खींचतान के बीच जनता बेहाल नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में एक और सियासत हो रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान को लेकर, जहां पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की इस अमर्यादित टिप्पणी ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। मामला अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। महोबा में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी की शिकायत के बाद महोबा पुलिस ने अजय राय समेत करीब 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
7: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय अभद्र टिप्पणी भी की। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
6: दरअसल महोबा में अजय राय दलित महिला से मिलने पहुंचे थे, जहां अब वो पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी को फर्जी एआई वीडियो बता रहे हैं।
8: कि जो महोबा में गया था वो एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक रेप किया गया है, उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए और उसको उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया है अपराधियों ने। आज उसकी बात मैंने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा। उन्होंने एआई जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, पर उस दलित बच्ची को जिसके साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके नशे के इंजेक्शन लगाए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया, उसको न्याय दीजिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं।
6: उधर बीजेपी अजय राय पर चौतरफा हमलावर है। योगी आदित्यनाथ ने भी अजय राय की भाषा पर सवाल खड़े किए।
9: सर मानी चाहिए कांग्रेसियों को, धिक्कार होना चाहिए किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। गाली गलौज की भाषा आप मर्यादित राजनीतिक वातावरण में, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग है। पहले राहुल गांधी जानबूझ करके अपमानित करने की चेष्टा करते हैं और अब अजय राय ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। राजनीति की कोई मर्यादा नहीं रह गई है, शुद्ध रूप से गाली गलौज की प्रयोग कर रहे।
6: मामला अब तूल पकड़ रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जिस पर फिजिक्स के पेपर को आउट करने का आरोप है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस मामले में 3 महिलाएं गिरफ्तार की जा चुकी हैं और तीनों का नाम ही मनीषा है, और ये मामले में अब 11वीं गिरफ्तारी है।

0: पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और अब नीट का फिजिक्स का पेपर आउट कराने वाले आरोपी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। पुणे से सीबीआई ने मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया है। केस की आरोपी मनीषा मंधारे की तरह ही मनीषा हवलदार बतौर एक्सपर्ट एनटीए से जुड़ी थी, जिससे फिजिक्स के प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी। आरोप है कि अप्रैल 2026 में उसने परीक्षा से जुड़े कई फिजिक्स सवाल मनीषा मंधारे को शेयर किए। जांच एजेंसी के मुताबिक जो सवाल मनीषा हवलदार ने शेयर किए थे, उनका मिलान नीट यूजी 2026 के असली फिजिक्स पेपर सेट से किया गया था और दोनों में समानता पाई गई। हैरानी की बात यह है कि इस केस में अब तक जो तीन महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं, उन तीनों का नाम मनीषा ही है। इस बीच नीट पर जारी सियासत के बीच राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक से परेशान होकर सुसाइड करने वाले छात्र के परिवार से फोन पर बात की।
1: नमस्कार, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर।
2: बोलो,
1: कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे?
2: 3 साल।
3: बोलो आप, हिम्मत रखो।
2: 3 साल से पढ़ाई कर रहा था, अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला, तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया है अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड।
1: तो पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की
2: है? नहीं, ये तीसरी बार था
1: और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा।
0: बहरहाल इस पूरे मामले में नीट पेपर कराने वाली संस्था एनटीए की भूमिका सवालों के घेरे में है, जो कि हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
4: अथ ट्विशा के जिसकी मौत अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने समर्थ के 7 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की है। वहीं ट्विशा के परिवार वालों की ओर से आवेदन पर कोर्ट की तरफ से समर्थ का पासपोर्ट जब्त भी किया गया और इस बीच में ट्विशा की मौत से पहले के सीसीटीवी ने सबको चौंकाया है।

0: आखिर क्या है ट्रिशा की मौत का सच? क्या ट्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई? पिछले 11 दिनों से ट्रिशा का शव इंसाफ का इंतजार कर रहा है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। सीबीआई को हर पहलू की पड़ताल करनी है। अभी ट्रिशा की मौत के कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनका सच सामने आना बाकी है। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ट्रिशा के घर के उस हिस्से की तस्वीर भी सामने आई है, जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी। आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि ट्रिशा ने यहीं पर सुसाइड किया था। यही वो जगह है जहां वो फंदे से लटकती मिली। लेकिन सवाल यह है कि अमूमन इस तरह के सुसाइड घर के बंद कमरे में की जाती है, ताकि घर का कोई सदस्य ना आ सके। लेकिन ट्रिशा ने सुसाइड छत जैसी खुली जगह पर किया, जिसका कुछ हिस्सा ही बंद था, जहां से कोई भी उसे सुसाइड करते देख सकता था या फिर रोक सकता था। जबकि इस दौरान घर में परिवार के लोग मौजूद थे, जो कि कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ट्रिशा ने छत को क्यों सुसाइड के लिए चुना। परिवार दावा कर रहा है कि वो नशे की हालत में थी और उसने वहीं फांसी का फंदा लगाकर खुद की जान ले ली। अब सुसाइड से पहले की ये तस्वीर भी चौंकाने वाली है, जो कि एक ब्यूटी पार्लर की है, जहां ट्रिशा सुसाइड से पहले पहुंची थी। ट्रिशा के आखिरी मेकअप का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें वो ससुराल के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में नजर आ रही है। वीडियो में ट्रिशा बेहद रिलैक्स दिखाई दे रही है, लेकिन इस फुटेज को भी जब्त कर लिया गया है। 12 मई जिस दिन ट्रिशा की मौत हुई, ट्रिशा शर्मा दोपहर लगभग 3:30 बजे पार्लर पहुंची थी और शाम लगभग 6:15 पर वहां से निकली।
1: वो आई थी और वो आई, सबसे पहले उनने मेरे स्टाफ से बोला कि तुम लोग टीवी हो मूवी देख रहे हो। वो बहुत खुश थी, आई अंदर आई, फिर उनने बोला कि मेरे को रिलैक्स होने के लिए हेड ऑयल मसाज चाहिए है। देन उनने हेड ऑयल मसाज लिया, फिर उनने पेडिक्योर करवाया, फिर वो अपना कुछ और स्किन का काम करने के लिए वो फिर फेशियल सेक्शन में गई। वहाँ पे उन्हें
2: पहले कहाँ पे वो आई, जब उसके बाद कहाँ पे वो यहाँ पे आपके पार्लर में कहाँ, इधर उस भर बैठी या कहीं और?
1: इधर बैठी थी वो थोड़ी देर के लिए, देन उसके बाद फिर वो इधर उधर गई और उधर उन्हें हेड ऑयल मसाज कराई।
2: ये एक बार आप जरा आकर एक बार दिखा दें। आप इस वक्त हम पहुंच गए हैं, ये वो कुर्सी है।
1: जी हेड ऑयल मसाज कराई
2: जी।
1: उसके बाद वो इस रूम में गई थी और यहाँ पे उनका कुछ काम था जो उनने यहाँ पे कराया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे,
2: मतलब ये वो चेयर है जो आखिरी जो सीसीटीवी वायरल फुटेज सामने आया है, जिसमें वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई हैं, और ये वो चेयर है जहाँ पे ट्रिशा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं ट्रिशा के आखिरी लम्हों की ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद वो उस चेयर
1: पे पेडिक्योर कराया था, उस चेयर पे बैठ के पेडिक्योर कराया था
2: वो वाली चेयर।
1: जी जी।
0: अब सवाल ये है कि क्या सुसाइड से पहले कोई ब्यूटी पार्लर में रिलैक्स होने जा सकता है? ब्यूटी पार्लर ट्रिशा के ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी पर है, और उनको सर्विस देने वाले ने साफ कहा कि कहीं पर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ट्रिशा किसी भी तरह की टेंशन में है।
1: वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी।
2: कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था?
1: नहीं नहीं नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी।
2: पास में ही घर है उनका?
1: हाँ हाँ, उनका पास में ही घर है।
2: अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उन्हें उनसे को देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा, तो उस दिन क्या था? उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था, या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही हैं?
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसते हुए अंदर आई थी और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उन्होंने करवाया था। उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं। तो फिर उन्होंने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा, तो उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई।
2: बस यही मेरा एक सवाल था, हेड ऑयल मसाज ये पहली बार उन्होंने करवाया था, इससे पहले भी उन्होंने करवाया था, या सिर्फ उसी दिन आपको स्पेशली उन्होंने कहा कि?
1: पहले भी कराया होगा, बट मेरे को देखना पड़ेगा रजिस्टर की इससे पहले कौन कौन सी सर्विसेज ली।
2: उस दिन उन्होंने ये बोला था कि मुझे सर दर्द हो रहा है, कुछ रिलैक्स होना है,
1: सर या मेरे को रिलैक्स होना है, ऐसा कुछ बोला होगा, तो मेरे को ऐसा कुछ बताओ। तो हेड ऑयल मसाज कराई थी या सर दर्द हो रहा होगा, एकदम याद नहीं है, एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं है कि क्या बोला था, बट रिलैक्स तो होना था उनको, तो इसलिए उनने हेड ऑयल मसाज कराई थी।
0: इस कड़ी में सबसे अहम किरदार है त्विशा के पति समर सिंह का, जिससे पुलिस को कई सच उगलवाने हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि त्विशा को सुसाइड करना पड़ा, और अगर ये हत्या है तो फिर आखिर त्विशा को क्यों मारा गया? क्या हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, या फिर सच में त्विशा ने नशे की हालत में खुद की जान ले ली?
3: नहीं, अभी उतना नहीं, देखो इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है, हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना थोड़े कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा, सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। रात को 3 बजे तो काफी लेट नाइट तो आया है, फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीजें होती हैं।
0: बहरहाल त्विशा की मौत अपने आप में कई सवाल समेटे हुए है, जिसका सच आना अभी बाकी है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब रुक करते हैं एक सनसनीखेज खबर के, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या के साजिश का पर्दाफाश हुआ, और यह पता चला कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC से ट्रेनिंग पाए खतरनाक आतंकवादी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी ने इवांका ट्रंप की जान लेने की प्लानिंग की थी।
5: जिस वक्त अमेरिका ईरान फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े, जब ईरान में फिर से तबाही का अमेरिका का प्लान तैयार हो चुका है, किसी भी वक्त ईरान में विध्वंस के लिए हमले का ऐलान हो सकता है, ठीक उसी वक्त ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश रची गई, इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई, और सबसे चौंकाने वाली बात ये साजिश की कड़ी सीधे ईरान से जोड़ती दिख रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहे आतंकी को पकड़ लिया है। उसकी पहचान 32 साल की मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने गुरु और ईरानी सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था, और इसके लिए IRGC से ट्रेनिंग पाए इस आतंकी ने पूरा खाका तैयार कर लिया था। आतंकी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी कासिम सुलेमानी को अपना गुरु मानता था, और तभी से ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में था। आरोपी अल सादी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार, खासकर उनकी बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की कसम खाई थी। जांच के दौरान सुरक्षा बलों को अल सादी के पास से फ्लोरिडा में मौजूद इवांका ट्रंप के आलिशान घर का पूरा ब्लूप्रिंट भी बरामद हुआ है। वो काफी समय से उनके घर की रेखी कर रहा था। वॉशिंगटन में इराकी दूतावास के पूर्व डिप्टी मिलिट्री अटैचे एंटी फाद कनबर ने इस आतंकी के इरादों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अल सादी लोगों से कहता फिर रहा था कि हमें इवांका ट्रंप को मारना होगा। वो कहता था कि हमें ट्रंप के पूरे घर को उसी तरह जलाकर खाक कर देना चाहिए जिस तरह उसने कासिम सुलेमानी के घर को तबाह किया था। यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है, तफ्तीश जारी है। ये गिरफ्तारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके सीधे निशाने पर ट्रंप का परिवार आ गया है। आज तक ब्यूरो।
4: बात अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
6: दुनिया भर में बढ़ रहे तनाव के बीच ये भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने वाली तस्वीर है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से करीब 1 घंटे लंबी मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा, व्यापार, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। ये दौरा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हो रहा है और इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। रूबियो की चार दिन की भारत यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया भर में ईरान युद्ध की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं और बदलते हालात के बीच भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। इससे पहले रूबियो पत्नी के साथ कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचने के बाद रूबियो ने मदर टेरेसा हाउस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा भी किया। कोलकाता में कुछ घंटे गुजारने के बाद मार्को रूबियो दिल्ली के लिए रवाना हुए। वो जयपुर और आगरा भी जाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग मजबूत करने के लिए भारत 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों के साथ साथ मार्को रूबियो इस बैठक का भी हिस्सा होंगे। उनके चार दिन के भारत दौरे के मुख्य चार उद्देश्य होंगे ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और रक्षा।
7: मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी होंगी, साथ ही क्वाड सम्मेलन से संबंधित भी होंगी। क्वाड में भागीदार होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे नतीजे होंगे जिनके बारे में चारों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम पिछले लगभग 5 महीनों से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 महीनों से हूँ।
6: होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर संकट के बाद से भारत ने तेल के लिए कई विकल्पों को आजमाया है। ये संकट अभी टला नहीं है। व्यापार के लिहाज से और कूटनीति में संतुलन को देखते हुए सहमति बनाने के लिए रूबियो के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। आज तक
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूबियो से मुलाकात के बाद दुनिया की भलाई के लिए अमेरिका और भारत को साथ आकर काम करने पर जोर दिया। वहीं रूबियो ने भी मौजूदा हालातों में भारत की भूमिका को बेहद अहम बताया।
8: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into this second administration. And you can just see the connection between them. And I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term. And so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen in ways that don't often make headlines or aren't splashy, but are important and real and tangible and enduring. We've expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific.
4: ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। एक तरफ ट्रंप ने होर्मुज और यूरेनियम को लेकर तल्ख बयानबाजी फिर दोहराई है, तो ईरान ने भी संभावित हमले की आशंका को देखते हुए तैयारियां पुख्ता कर ली हैं।
9: होर्मुज और यूरेनियम पर जारी घमासान, दोनों मुद्दों पर सरेंडर नहीं करेगा ईरान। व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, क्या फिर मचेगा कोहराम? रूबियो ने जताई उम्मीद, बात से बनेगी बात। हॉर्मुज में फिलहाल गोलियों की गूंज नहीं है, लेकिन जहाजों की आवाजाही भी नहीं है। अभी भी सैकड़ों जहाज समंदर में फंसे हुए हैं, क्योंकि ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका वहां से लौटने को। अमेरिका विनाशकारी युद्धपोतों से ईरानी बंदरगाहों पर निगाह बनाए हुए है और ईरान है कि उसने हर हाल में टोल टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया है। इस बीच कई खाड़ी देशों की ईरान पर हमला ना करने की अपील से ये उम्मीद जगी थी कि मामला कूटनीति के जरिए ही हल किया जाएगा, लेकिन इस बीच चौंका देने वाली खबर आ रही है कि ट्रंप अपने कुछ निजी कार्यक्रमों को छोड़कर व्हाइट हाउस लौट आए हैं। कई आला अफसरों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। वैसे भी ट्रंप ने फिर दोहराया है कि उन्हें होर्मुज में टोल जैसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
10: Let me just one follow up on that. How do you want things to end up with the Strait of Hormuz?

0: There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And
1: हॉर्मुज के अलावा दूसरा बड़ा पेच यूरेनियम पर फंसा हुआ है। अमेरिका अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि हर हाल में यूरेनियम को वो लेकर रहेगा, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी हाल में यूरेनियम देश के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
0: No, no, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay?
1: तो क्या कुछ ही घंटों में महायुद्ध फिर से शुरू होने वाला है? क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? इन सवालों के जवाब जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मांगे गए तो उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ बातचीत भी जारी है और हो सकता है कि उसी के जरिए कोई हल निकल जाए।
2: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal. You asked me if I'm optimistic. I don't characterize it as optimistic or pessimistic. We're going to respond based on the facts as we see them and as they emerge. So what the president has outlined is his priorities are clear. Iran can never have a nuclear weapon. The issue of highly enriched uranium has to be discussed. Its disposition has to be dealt with.
1: इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान शांति दूत बना घूम रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली है। उधर कतर की एक टीम भी तेहरान पहुंची है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच पीस प्लान पर सहमति बनाई जा सके। पाकिस्तान के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 48 घंटों में मुलाकात हावी रहती है या बमों की बरसात की तैयारियां जोर पकड़ती हैं। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: मोदी से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात। वैश्विक हालात के साथ आपसी साझेदारी पर बात। ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री को दिया अमेरिका आने का न्योता। सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत से नाराज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मांगा जवाब। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा की आंसर शीट लेने के लिए 24 मई तक मियाद बढ़ाई। शिरडी में डिफेंस कॉम्प्लेक्स का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। कहा मेक इन इंडिया से रक्षा कंपनीज की बढ़ेगी क्षमता, तभी देश होगा और मजबूत। विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान। सोमवार को सुनवाई। 7 दिन की पुलिस रिमांड में आरोपी पति समर्थ। ईरान और अमेरिका में छिड़ा मैप वॉर। पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी नक्शे पर लगाया अमेरिकी झंडा। बदले में तेहरान ने भी अमेरिका के मानचित्र पर दिखाया अपना ध्वज। अब बात करते हैं भीषण गर्मी के बीच जारी बिजली कटौती की, जिससे जनता बेहाल है। यूपी में पावर कट को लेकर जनता गुस्से में है, सड़कों पर नजर आ रही है।
1: भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली कटौती ने आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक और हापुड़ से लेकर रामपुर तक भयंकर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं।

0: राजधानी लखनऊ का हाल देखिए। महिला का गुस्सा बिजली कर्मचारियों पर उतर रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। लखनऊ में लोगों ने रात को सड़क ही जाम कर दी। ये दुबग्गा पावर हाउस के तहत आने वाला मॉडर्न पिंक सिटी इलाका है। यहाँ पिछले चार दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बीती रात लोगों का सब्र जवाब दे गया।
1: क्या ये रोज आप लोग ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही दिन कट रहा है?
2: हाँ, जब बिजली नहीं आ रही तो लोग इस तरह बैठते हैं, और छुट्टियां भी हो गई हैं तो बड़ी समस्या बनी हुई है। जब से तापमान बढ़ा है तब से बिजली संकट बहुत गहरा गया है।
3: अब लोग कल दो दिन से रात में सो ही नहीं पा रहे हैं।
0: आम जनता ही नहीं, विधायक जी का हाल भी बुरा है। रायबरेली के बीजेपी के विधायक अशोक कोरी का बिजली कर्मियों को हड़काने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
4: आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? आठ आठ घंटे, चार चार छह छह घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं।
0: मेरठ में बिजली से बेहाल जनता ने मेयर आवास की ओर कूच कर दिया, नारेबाजी और हंगामा किया। जनता के सामने मेयर साहब भी खुद को लाचार बता रहे हैं। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज में करीब 14 से 16 घंटे बिजली कट रही है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में छात्र अब कॉलेज के बाहर मोर्चा लेकर बैठे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यूपी में बिजली कटौती से जनता को कब राहत मिलेगी? कब वो भीषण गर्मी के बीच सड़कों की बजाय घरों में आराम से रहेगी? आज तक ब्यूरो।
5: एक ओर पावर कट से जनता बेहाल है तो दूसरी ओर इस पर सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो वहीं सरकार बिजली कटौती के दावों को खारिज कर रही है।
0: यूपी में बिजली कटौती ने एक ओर जनता को बेहाल कर रखा है तो वहीं इस पर सियासत भी जोरदार है। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार हैं। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। एके शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। मायावती भी बिजली कटौती पर भड़की नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी में बिजली की कम आपूर्ति और कटौती आदि से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों, करोड़ों मेहनत कश लोगों का जीवन कष्टदायी बना हुआ है। इसको लेकर लोग अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। कहने को तो सरकार दावा करती है कि डिमांड सप्लाई सब बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करते हैं। यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, इटावा, आगरा जैसे जिलों में 6 घंटे की निर्धारित कटौती होनी है, लेकिन हकीकत में इससे ज्यादा घंटे तक बिजली गुल रहती है।
1: बिजली के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिन रात काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डिफॉल्ट जितने भी आएंगे, फॉल्ट आएंगे, उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बढ़ता हुआ तापमान और इस तापमान में बढ़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है।
0: यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई का रोस्टर है, लेकिन अघोषित कटौती की वजह से ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली आती है। लोकल फॉल्ट और ट्रिपिंग से समस्या और बढ़ जाती है। शहरी इलाकों में मांग बढ़ने पर ग्रामीण इलाकों की बिजली काट दी जाती है क्योंकि ग्रामीण अंचल से बिजली विभाग को कम राजस्व मिलता है। बहरहाल सियासी खींचतान के बीच जनता बेहाल नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
5: यूपी में एक और सियासत हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान को लेकर, जहां पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है।
6: मोदी मोदी की।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की इस अमर्यादित टिप्पणी ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। मामला अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। महोबा में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी की शिकायत के बाद महोबा पुलिस ने अजय राय समेत करीब 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
8: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय अभद्र टिप्पणी भी की। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
7: दरअसल महोबा में अजय राय दलित महिला से मिलने पहुंचे थे, जहां अब वो पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी को फर्जी एआई वीडियो बता रहे हैं।
9: कि जो महोबा में गया था वो एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक रेप किया गया है, उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए और उसको उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया है अपराधियों ने। आज उसकी बात मैंने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा, उन्होंने एआई जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, पर उस दलित बच्ची को जिसके साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके नशे के इंजेक्शन लगाए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया, उसको न्याय दीजिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं।
7: उधर बीजेपी अजय राय पर चौतरफा हमलावर है। योगी आदित्यनाथ ने भी अजय राय की भाषा पर सवाल खड़े किए।
10: शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को, धिक्कार होना चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? गाली गलौज की भाषा आप मर्यादित राजनीतिक वातावरण में, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग है? पहले राहुल गांधी जानबूझ करके अपमानित करने की चेष्टा करते हैं और अब अजय राय ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। राजनीति की कोई मर्यादा नहीं रह गई है, शुद्ध रूप से गाली गलौज की प्रयोग कर रहे।
7: मामला अब तूल पकड़ रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
5: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जिस पर फिजिक्स के पेपर को आउट करने का आरोप है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस मामले में 3 महिलाएं गिरफ्तार की जा चुकी हैं और तीनों का नाम ही मनीषा है, और ये मामले में अब 11वीं गिरफ्तारी है।

0: पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और अब नीट का फिजिक्स का पेपर आउट कराने वाले आरोपी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। पुणे से सीबीआई ने मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया है। केस की आरोपी मनीषा मंधारे की तरह ही मनीषा हवलदार बतौर एक्सपर्ट एनटीए से जुड़ी थी, जिससे फिजिक्स के प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी। आरोप है कि अप्रैल 2026 में उसने परीक्षा से जुड़े कई फिजिक्स सवाल मनीषा मंधारे को शेयर किए। जांच एजेंसी के मुताबिक जो सवाल मनीषा हवलदार ने शेयर किए थे, उनका मिलान नीट यूजी 2026 के असली फिजिक्स पेपर सेट से किया गया था और दोनों में समानता पाई गई। हैरानी की बात यह है कि इस केस में अब तक जो तीन महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं, उन तीनों का नाम मनीषा ही है। इस बीच नीट पर जारी सियासत के बीच
1: बड़ा दुख हुआ ये सुनकर।
2: बोलो।
0: इस बीच नीट पर जारी सियासत के बीच राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक से परेशान होकर सुसाइड करने वाले छात्र के परिवार से फोन पर बात की।
1: नमस्कार, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर।
2: बोलो।
0: इस बीच नीट पर जारी सियासत के बीच राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक से परेशान होकर सुसाइड करने वाले छात्र के परिवार से फोन पर बात की।
1: नमस्कार, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर।
2: बोलो।
1: कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे?
2: 3 साल।
3: बोलो आप, हिम्मत रखो।
2: 3 साल से पढ़ाई कर रहा था, अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड
1: किया। तो पेपर लीक हुआ, उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की
2: है? नहीं, ये तीसरी बार था
1: और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा।
0: बहरहाल इस पूरे मामले में नीट पेपर कराने वाली संस्था एनटीए की भूमिका सवालों के घेरे में है, जो कि हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
4: अथ ट्विशा की, जिसकी मौत अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर सिंह को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने समर्थ के 7 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की है। वहीं ट्विशा के परिवार वालों की ओर से आवेदन पर कोर्ट की तरफ से समर्थ का पासपोर्ट जब्त भी किया गया और इस बीच में ट्विशा की मौत से पहले के सीसीटीवी ने सबको चौंकाया है।

0: आखिर क्या है ट्रिशा की मौत का सच? क्या ट्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई? पिछले 11 दिनों से ट्रिशा का शव इंसाफ का इंतजार कर रहा है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, सीबीआई को हर पहलू की पड़ताल करनी है। अभी ट्रिशा की मौत के कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनका सच सामने आना बाकी है। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ट्रिशा के घर के उस हिस्से की तस्वीर भी सामने आई है जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी। आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि ट्रिशा ने यहीं पर सुसाइड किया था। यही वो जगह है जहां वो फंदे से लटकते मिले। लेकिन सवाल यह है कि अमूमन इस तरह के सुसाइड घर के बंद कमरे में की जाती है ताकि घर का कोई सदस्य ना आ सके। लेकिन ट्रिशा ने सुसाइड छत जैसी खुली जगह पर किया जिसका कुछ हिस्सा ही बंद था, जहां से कोई भी उसे सुसाइड करते देख सकता था या फिर रोक सकता था। जबकि इस दौरान घर में परिवार के लोग मौजूद थे, जो कि कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ट्रिशा ने छत को क्यों सुसाइड के लिए चुना। परिवार दावा कर रहा है कि वो नशे की हालत में थी और उसने वही फांसी का फंदा लगाकर खुद की जान ले ली। अब सुसाइड से पहले की ये तस्वीर भी चौंकाने वाली है, जो कि एक ब्यूटी पार्लर की है जहां ट्रिशा सुसाइड से पहले पहुंची थी। ट्रिशा के आखिरी मेकअप का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें वो ससुराल के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में नजर आ रही है। वीडियो में ट्रिशा बेहद रिलैक्स दिखाई दे रही है, लेकिन इस फुटेज को भी जब्त कर लिया गया है। 12 मई जिस दिन ट्रिशा की मौत हुई, ट्रिशा शर्मा दोपहर लगभग 3:30 बजे पार्लर पहुंची थी और शाम लगभग 6:15 पर वहां से निकले।
1: वो आई थी और वो आई, सबसे पहले उनने मेरे स्टाफ से बोला कि तुम लोग टीवी वो मूवी देख रहे हो। वो बहुत खुश थी, आई अंदर आई, फिर उनने बोला कि मेरे को रिलैक्स होने के लिए हेड ऑयल मसाज चाहिए है। देन उनने हेड ऑयल मसाज लिया, फिर उनने पेडिक्योर करवाया, फिर वो अपना कुछ और स्किन का काम करने के लिए वो फिर फेशियल सेक्शन में गई। वहां पे उन्होंने
2: पहले कहां पे वो आई, जब उसके बाद कहां पे वो यहां पे आपके पार्लर में कहां इधर उस भर बैठी या कहीं और?
1: पहले इधर बैठी थी वो थोड़ी देर के लिए, देन उसके बाद फिर वो इधर उधर गई और उधर उनने हेड ऑयल मसाज कराई।
2: ये सीट पे एक बार आप जरा आकर के एक बार दिखा दें आप। इस वक्त हम पहुंच गए हैं, ये वो कुर्सी है।
1: जी हेड ऑयल मसाज कराई
2: जी।
1: उसके बाद वो इस रूम में गई थी और यहाँ पे उनका कुछ काम था जो उनने यहाँ पे कराया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे,
2: मतलब ये वो चेयर है जो आखिर जो सीसीटीवी वायरल फुटेज सामने आया है जिसमें वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई हैं, और ये वो चेयर है जहाँ पे ट्रिशा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं ट्रिशा के आखिरी लम्हों की ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद वो
1: उस चेयर पे पेडिक्योर कराया था, उस चेयर पे बैठ के पेडिक्योर कराया था
2: वो वाली चेयर।
1: जी जी
0: जी। अब सवाल ये है कि क्या सुसाइड से पहले कोई ब्यूटी पार्लर में रिलैक्स होने जा सकता है? ब्यूटी पार्लर ट्रिशा के ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी पर है और उनको सर्विस देने वाले ने साफ कहा कि कहीं पर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ट्रिशा किसी भी तरह की टेंशन में है।
1: वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी।
2: कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था?
1: नहीं नहीं नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी।
2: पास में ही घर है उनका?
1: हाँ हाँ, उनका पास में ही घर है।
2: अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उन्हें उनको देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा, तो उस दिन क्या था? उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था, या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही हैं?
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसते हुए अंदर आई थी और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उन्होंने करवाया था। उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं। तो फिर उन्होंने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा, तो उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई।
2: बस यही मेरा एक सवाल था, हेड ऑयल मसाज ये पहली बार उन्होंने करवाया था, इससे पहले भी उन्होंने करवाया था, या सिर्फ उसी दिन आपको स्पेशली उन्होंने कहा कि?
1: पहले भी कराया होगा बट मेरे को देखना पड़ेगा रजिस्टर के इससे पहले कौन कौन सी सर्विसेज
2: ली। उस दिन उन्होंने ये बोला था कि मुझे सर दर्द हो रहा है, कुछ रिलैक्स होना है,
1: सर दर्द या मेरे को रिलैक्स होना है ऐसा कुछ बोला होगा, तो मेरे को ऐसा कुछ बताओ। तो हेड ऑयल मसाज कराई थी या सर दर्द हो रहा होगा, एकदम याद नहीं है, एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं है कि क्या बोला था, बट रिलैक्स तो होना था उनको, तो इसलिए उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई थी।
0: इस कड़ी में सबसे अहम किरदार है ट्विशा के पति समर सिंह का, जिससे पुलिस को कई सच उगलवाने हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा को सुसाइड करना पड़ा, और अगर ये हत्या है तो फिर आखिर ट्विशा को क्यों मारा गया? क्या हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, या फिर सच में ट्विशा ने नशे की हालत में खुद की जान ले ली?
3: नहीं, अभी उतना नहीं। देखो, इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है, हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना थोड़े कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा। सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। रात को 3 बजे तो काफी लेट नाइट तो आया है, फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीजें होती हैं।
0: बहरहाल त्विशा की मौत अपने आप में कई सवाल समेटे हुए है, जिसका सच आना अभी बाकी है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो। अब रुक करते हैं सनसनीखेज खबर के, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या के साजिश का पर्दाफाश हुआ, और यह पता चला कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC से ट्रेनिंग पाए खतरनाक आतंकवादी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी ने इवांका ट्रंप की जान लेने की प्लानिंग की थी।
4: जिस वक्त अमेरिका ईरान फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े, जब ईरान में फिर से तबाही का अमेरिका का प्लान तैयार हो चुका है, किसी भी वक्त ईरान में विध्वंस के लिए हमले का ऐलान हो सकता है, ठीक उसी वक्त ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश रची गई। इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई, और सबसे चौंकाने वाली बात ये साजिश की कड़ी सीधे ईरान से जोड़ती दिख रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहे आतंकी को पकड़ लिया है। उसकी पहचान 32 साल की मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने गुरु और ईरानी सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था, और इसके लिए IRGC से ट्रेनिंग पाए इस आतंकी ने पूरा खाका तैयार कर लिया था। आतंकी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी कासिम सुलेमानी को अपना गुरु मानता था, और तभी से ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में था। आरोपी अल सादी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार, खासकर उनकी बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की कसम खाई थी। जांच के दौरान सुरक्षा बलों को अल सादी के पास से फ्लोरिडा में मौजूद इवांका ट्रंप के आलिशान घर का पूरा ब्लूप्रिंट भी बरामद हुआ है। वो काफी समय से उनके घर की रेखी कर रहा था। वॉशिंगटन में इराकी दूतावास के पूर्व डिप्टी मिलिट्री अटैचे एंटी फाद कनबर ने इस आतंकी के इरादों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अल सादी लोगों से कहता फिर रहा था कि हमें इवांका ट्रंप को मारना होगा। वो कहता था कि हमें ट्रंप के पूरे घर को उसी तरह जलाकर खाक कर देना चाहिए जिस तरह उसने कासिम सुलेमानी के घर को तबाह किया था। यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है, तफ्तीश जारी है। ये गिरफ्तारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके सीधे निशाने पर ट्रंप का परिवार आ गया है। आज तक ब्यूरो।
0: बात अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
5: दुनिया भर में बढ़ रहे तनाव के बीच ये भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने वाली तस्वीर है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से करीब 1 घंटे लंबी मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा, व्यापार, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। ये दौरा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हो रहा है और इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। रूबियो की चार दिन की भारत यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया भर में ईरान युद्ध की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं और बदलते हालात के बीच भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। इससे पहले रूबियो पत्नी के साथ कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचने के बाद रूबियो ने मदर टेरेसा हाउस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा भी किया। कोलकाता में कुछ घंटे गुजारने के बाद मार्को रूबियो दिल्ली के लिए रवाना हुए। वो जयपुर और आगरा भी जाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग मजबूत करने के लिए भारत 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों के साथ साथ मार्को रूबियो इस बैठक का भी हिस्सा होंगे। उनके चार दिन के भारत दौरे के मुख्य चार उद्देश्य होंगे ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और रक्षा।
6: मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी होंगी, साथ ही क्वाड सम्मेलन से संबंधित भी होंगी। क्वाड में भागीदार होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे नतीजे होंगे जिनके बारे में चारों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम पिछले लगभग 5 महीनों से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 महीनों से हूँ।
5: होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर संकट के बाद से भारत ने तेल के लिए कई विकल्पों को आजमाया है। ये संकट अभी टला नहीं है। व्यापार के लिहाज से और कूटनीति में संतुलन को देखते हुए सहमति बनाने के लिए रूबियो के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। आज तक
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूबियो से मुलाकात के बाद दुनिया की भलाई के लिए अमेरिका और भारत को साथ आकर काम करने पर जोर दिया। वहीं रूबियो ने भी मौजूदा हालातों में भारत की भूमिका को बेहद अहम बताया।
8: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen in ways that don't often make headlines or aren't splashy, but are important and real and tangible and enduring. We've expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific.
7: ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। एक तरफ ट्रंप ने होर्मुज और यूरेनियम को लेकर तल्ख बयानबाजी फिर दोहराई है, तो ईरान ने भी संभावित हमले की आशंका को देखते हुए तैयारियां पुख्ता कर ली हैं।

0: हॉर्मुज और यूरेनियम पर जारी घमासान, दोनों मुद्दों पर सरेंडर नहीं करेगा ईरान। व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, क्या फिर मचेगा कोहराम? रूबियो ने जताई उम्मीद, बात से बनेगी बात। हॉर्मुज में फिलहाल गोलियों की गूंज नहीं है, लेकिन जहाजों की आवाजाही भी नहीं है। अभी भी सैकड़ों जहाज समंदर में फंसे हुए हैं, क्योंकि ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका वहां से लौटने को। अमेरिका विनाशकारी युद्धपोतों से ईरानी बंदरगाहों पर निगाह बनाए हुए है, और ईरान है कि उसने हर हाल में टोल टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया है। इस बीच कई खाड़ी देशों की ईरान पर हमला ना करने की अपील से ये उम्मीद जगी थी कि मामला कूटनीति के जरिए ही हल किया जाएगा, लेकिन इस बीच चौंका देने वाली खबर आ रही है कि ट्रंप अपने कुछ निजी कार्यक्रमों को छोड़कर व्हाइट हाउस लौट आए हैं। कई आला अफसरों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। वैसे भी ट्रंप ने फिर दोहराया है कि उन्हें हॉर्मुज में टोल जैसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
1: How do you want things to end up with the Strait of Hormuz, though? Would you like them to
2: have... Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's $500 or $200 or $300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And
0: हॉर्मुज के अलावा दूसरा बड़ा पेच यूरेनियम पर फंसा हुआ है। अमेरिका अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि हर हाल में यूरेनियम को वो लेकर रहेगा, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी हाल में यूरेनियम देश के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
2: We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay?
0: तो क्या कुछ ही घंटों में महायुद्ध फिर से शुरू होने वाला है? क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? इन सवालों के जवाब जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मांगे गए, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ बातचीत भी जारी है और हो सकता है कि उसी के जरिए कोई हल निकल जाए।
3: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal. You asked me if I'm optimistic. I don't characterize it as optimistic or pessimistic. We're going to respond based on the facts as we see them and as they emerge. So. What the president has outlined is his priorities are clear. Iran can never have a nuclear weapon. The issue of highly enriched uranium has to be discussed. Its disposition has to be dealt with.
0: इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान शांति दूत बना घूम रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली है। उधर कतर की एक टीम भी तेहरान पहुंची है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच पीस प्लान पर सहमति बनाई जा सके। पाकिस्तान के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 48 घंटों में मुलाकात हावी रहती है या बमों की बरसात की तैयारियां जोर पकड़ती हैं। आज तक ब्यूरो।
4: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री को दिया अमेरिका आने का न्योता। सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत से नाराज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मांगा जवाब। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा की आंसर शीट लेने के लिए 24 मई तक मियाद बढ़ाई। शिरडी में डिफेंस कॉम्प्लेक्स का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। कहा मेक इन इंडिया से रक्षा कंपनीज की बढ़ेगी क्षमता, तभी देश होगा और मजबूत। विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान। सोमवार को सुनवाई, 7 दिन की पुलिस रिमांड में आरोपी पति समर्थ। ईरान और अमेरिका में छिड़ा मैप वॉर। पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी नक्शे पर लगाया अमेरिकी झंडा, बदले में तेहरान ने भी अमेरिका के मानचित्र पर दिखाया अपना ध्वज। अब बात करते हैं भीषण गर्मी के बीच जारी बिजली कटौती की, जिससे जनता बेहाल है। यूपी में पावर कट को लेकर जनता गुस्से में है, सड़कों पर नजर आ रही है।
1: भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली कटौती ने आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक और हापुड़ से लेकर रामपुर तक भयंकर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। राजधानी लखनऊ का हाल देखिए। महिला का गुस्सा बिजली कर्मचारियों पर उतर रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। लखनऊ में लोगों ने रात को सड़क ही जाम कर दी। ये दुबग्गा पावर हाउस के तहत आने वाला मॉडर्न पिंक सिटी इलाका है। यहाँ पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बीती रात लोगों का सब्र जवाब दे गया।
2: क्या ये रोज आप लोग ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही दिन कट रहा है?
3: हाँ, जब बिजली नहीं आ रही तो लोग इस तरह बैठते हैं, और छुट्टियां भी हो गई हैं तो बड़ी समस्या बनी हुई है। जब से तापमान बढ़ा है तब से बिजली संकट बहुत गहरा गया है।
4: अब लोग कल दो दिन से रात में सो ही नहीं पा रहे हैं।
1: आम जनता ही नहीं, विधायक जी का हाल भी बुरा है। रायबरेली के बीजेपी के विधायक अशोक कोरी का बिजली कर्मियों को हड़काने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
5: आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं।
1: मेरठ में बिजली से बेहाल जनता ने मेयर आवास की ओर कूच कर दिया, नारेबाजी और हंगामा किया। जनता के सामने मेयर साहब भी खुद को लाचार बता रहे हैं। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज में करीब 14 से 16 घंटे बिजली कट रही है, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में छात्र अब कॉलेज के बाहर मोर्चा लेकर बैठे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यूपी में बिजली कटौती से जनता को कब राहत मिलेगी? कब वो भीषण गर्मी के बीच सड़कों की बजाय घरों में आराम से रहेगी? आज तक ब्यूरो।
0: एक ओर पावर कट से जनता बेहाल है तो दूसरी ओर इस पर सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो वहीं सरकार बिजली कटौती के दावों को खारिज कर रही है।
1: यूपी में बिजली कटौती ने एक ओर जनता को बेहाल कर रखा है तो वहीं इस पर सियासत भी जोरदार है। जनता के इस आक्रोश पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के सांसद, विधायक, भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जिम्मेदार हैं। विपक्ष ने बिजली के मुद्दे को उठाया तो यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बिना देर किए जवाब दे दिया। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। ए के शर्मा ने योगी शासन और अखिलेश शासन की तुलना करते हुए डेटा शेयर किया और दावा किया कि अखिलेश के जमाने में बिजली नहीं आती थी, अब बेहतर है। मायावती भी बिजली कटौती पर भड़की नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी में बिजली की कम आपूर्ति और कटौती आदि से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों, करोड़ों मेहनत कश लोगों का जीवन कष्टदायी बना हुआ है। इसको लेकर लोग अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। कहने को तो सरकार दावा करती है कि डिमांड सप्लाई सब बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करते हैं। यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, इटावा, आगरा जैसे जिलों में 6 घंटे की निर्धारित कटौती होनी है, लेकिन हकीकत में इससे ज्यादा घंटे तक बिजली गुल रहती है।
6: बिजली के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिन रात काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डिफॉल्ट जितने भी आएंगे, फॉल्ट आएंगे, उनको दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बढ़ता हुआ तापमान और इस तापमान में बढ़े हुए बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ हो, गाजियाबाद हो या फिर ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हर शहर में बिजली के संकट से हाहाकार मचा हुआ है।
1: यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई का रोस्टर है, लेकिन अघोषित कटौती की वजह से ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली आती है। लोकल फॉल्ट और ट्रिपिंग से समस्या और बढ़ जाती है। शहरी इलाकों में मांग बढ़ने पर ग्रामीण इलाकों की बिजली काट दी जाती है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से बिजली विभाग को कम राजस्व मिलता है। बहरहाल सियासी खींचतान के बीच जनता बेहाल नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में एक और सियासत हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान को लेकर, जहां पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की इस अमर्यादित टिप्पणी ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। मामला अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। महोबा में अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बीजेपी की शिकायत के बाद महोबा पुलिस ने अजय राय समेत करीब 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
8: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय अभद्र टिप्पणी भी की। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
0: नीट पेपर लीक मामले में CBI ने एक और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जिस पर फिजिक्स के पेपर को आउट करने का आरोप है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस मामले में 3 महिलाएं गिरफ्तार की जा चुकी हैं और तीनों का नाम ही मनीषा है, और ये मामले में अब 11वीं गिरफ्तारी है।

0: पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और अब नीट का फिजिक्स का पेपर आउट कराने वाले आरोपी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। पुणे से सीबीआई ने मनीषा हवलदार को गिरफ्तार किया है। केस की आरोपी मनीषा मंधारे की तरह ही मनीषा हवलदार बतौर एक्सपर्ट एनटीए से जुड़ी थी, जिससे फिजिक्स के प्रश्न पत्रों तक उसकी सीधी पहुंच थी। आरोप है कि अप्रैल 2026 में उसने परीक्षा से जुड़े कई फिजिक्स सवाल मनीषा मंधारे को शेयर किए। जांच एजेंसी के मुताबिक जो सवाल मनीषा हवलदार ने शेयर किए थे, उनका मिलान नीट यूजी 2026 के असली फिजिक्स पेपर सेट से किया गया था और दोनों में समानता पाई गई। हैरानी की बात यह है कि इस केस में अब तक जो तीन महिला आरोपी गिरफ्तार हुई हैं, उन तीनों का नाम मनीषा ही है। इस बीच नीट पर जारी सियासत के बीच राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक से परेशान होकर सुसाइड करने वाले छात्र के परिवार से फोन पर बात की।
1: नमस्कार, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर।
2: बोलो,
1: कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे?
2: 3 साल।
3: बोलो, आप हिम्मत रखो।
2: 3 साल से पढ़ाई कर रहा था, अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड
1: किया। तो पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार किए?
2: नहीं, ये तीसरी बार था
1: और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा।
0: बहरहाल इस पूरे मामले में नीट पेपर कराने वाली संस्था एनटीए की भूमिका सवालों के घेरे में है, जो कि हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।
4: अथ ट्विशा के जिसकी मौत अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने समर्थ के 7 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की है। वहीं ट्विशा के परिवार वालों की ओर से आवेदन पर कोर्ट की तरफ से समर्थ का पासपोर्ट जब्त भी किया गया और इस बीच में ट्विशा की मौत से पहले के सीसीटीवी ने सबको चौंकाया है।

0: आखिर क्या है ट्रिशा की मौत का सच? क्या ट्रिशा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई? पिछले 11 दिनों से ट्रिशा का शव इंसाफ का इंतजार कर रहा है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, सीबीआई को हर पहलू की पड़ताल करनी है। अभी ट्रिशा की मौत के कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका सच सामने आना बाकी है। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ट्रिशा के घर के उस हिस्से की तस्वीर भी सामने आई है जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी। आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। दावा किया जा रहा है कि ट्रिशा ने यहीं पर सुसाइड किया था। यही वो जगह है जहां वो फंदे से लटकती मिले। लेकिन सवाल यह है कि अमूमन इस तरह के सुसाइड घर के बंद कमरे में की जाती है ताकि घर का कोई सदस्य ना आ सके। लेकिन ट्रिशा ने सुसाइड छत जैसी खुली जगह पर किया जिसका कुछ हिस्सा ही बंद था, जहां से कोई भी उसे सुसाइड करते देख सकता था या फिर रोक सकता था। जबकि इस दौरान घर में परिवार के लोग मौजूद थे, जो कि कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ट्रिशा ने छत को क्यों सुसाइड के लिए चुना। परिवार दावा कर रहा है कि वो नशे की हालत में थी और उसने वहीं फांसी का फंदा लगाकर खुद की जान ले ली। अब सुसाइड से पहले की ये तस्वीर भी चौंकाने वाली है, जो कि एक ब्यूटी पार्लर की है जहां ट्रिशा सुसाइड से पहले पहुंची थी। ट्रिशा के आखिरी मेकअप का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें वो ससुराल के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में नजर आ रही है। वीडियो में ट्रिशा बेहद रिलैक्स दिखाई दे रही है, लेकिन इस फुटेज को भी जब्त कर लिया गया है। 12 मई जिस दिन ट्रिशा की मौत हुई, ट्रिशा शर्मा दोपहर लगभग 3:30 बजे पार्लर पहुंची थी और शाम लगभग 6:15 पर वहां से निकली।
1: वो आई थी और वो आई सबसे पहले उनने मेरे स्टाफ से बोला कि तुम लोग टीवी वो मूवी देख रहे हो। वो बहुत खुश थी, आई अंदर आई, फिर उनने बोला कि मेरे को रिलैक्स होने के लिए हेड ऑयल मसाज चाहिए है। देन उनने हेड ऑयल मसाज लिया, फिर उन्हें पेडिक्योर करवाया, फिर वो अपना कुछ और स्किन का काम करने के लिए वो फिर फेशियल सेक्शन में गई। वहां पे उन्हें
2: पहले कहां पे वो आई, जब उसके बाद कहां पे वो यहां पे आपके पार्लर में कहां इधर उस भर बैठी या कहीं और?
1: पहले इधर बैठी थी वो थोड़ी देर के लिए, देन उसके बाद फिर वो इधर उधर गई और उधर उन्हें हेड ऑयल मसाज कराई।
2: ये सीट पे एक बार आप जरा आकर के एक बार दिखा दें आप। इस वक्त हम पहुंच गए हैं, ये वो कुर्सी है।
1: जी हेड ऑयल मसाज कराई
2: जी।
1: उसके बाद वो इस रूम में गई थी और यहाँ पे उनका कुछ काम था जो उनने यहाँ पे कराया। उसके बाद फिर वो यहाँ पे,
2: मतलब ये वो चेयर है जो आखिरी जो सीसीटीवी वायरल फुटेज सामने आया है जिसमें वो यहाँ इस चेयर पे बैठी हुई हैं, और ये वो चेयर है जहाँ पे ट्रिशा का वो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। वो सामने कैमरा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो तस्वीरें कैद हुई हैं ट्रिशा के आखिरी लम्हों की ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद वो
1: उस चेयर पे पेडिक्योर कराया था, उस चेयर पे बैठ के पेडिक्योर कराया था
2: वो वाली चेयर।
1: जी जी।
0: अब सवाल यह है कि क्या सुसाइड से पहले कोई ब्यूटी पार्लर में रिलैक्स होने जा सकता है? ब्यूटी पार्लर ट्रिशा के ससुराल से महज 100 मीटर की दूरी पर है और उनको सर्विस देने वाले ने साफ कहा कि कहीं पर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ट्रिशा किसी भी तरह की टेंशन में है।
1: वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी।
2: कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था?
1: नहीं नहीं नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी।
2: पास में ही घर है उनका?
1: हाँ हाँ, उनका पास में ही घर है।
2: अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उन्हें उनको देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा, तो उस दिन क्या था? उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था, या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही हैं?
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसते हुए अंदर आई थी और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उन्हें करवाया था। उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं। तो फिर उन्होंने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा, तो उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई।
2: बस यही मेरा सवाल था, हेड ऑयल मसाज ये पहली बार उन्होंने करवाया था, इससे पहले भी उन्होंने करवाया था या सिर्फ उसी दिन आपको स्पेशली उन्होंने कहा कि?
1: पहले भी कराया होगा बट मेरे को देखना पड़ेगा रजिस्टर के इससे पहले कौन कौन सी सर्विसेज
2: ली। उस दिन उन्होंने ये बोला था कि मुझे सर दर्द हो रहा है, कुछ रिलैक्स होना है।
1: सर दर्द या मेरे को रिलैक्स होना है ऐसा कुछ बोला होगा, तो मेरे को ऐसा कुछ बताओ। तो हेड ऑयल मसाज कराई थी या सर दर्द हो रहा होगा, एकदम याद नहीं है, एकदम वर्ड टू वर्ड याद नहीं है कि क्या बोला था, बट रिलैक्स तो होना था उनको, तो इसलिए उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई थी।
0: इस कड़ी में सबसे अहम किरदार है ट्विशा के पति समर सिंह का, जिससे पुलिस को कई सच उगलवाने हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा को सुसाइड करना पड़ा, और अगर ये हत्या है तो फिर आखिर ट्विशा को क्यों मारा गया? क्या हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, या फिर सच में ट्विशा ने नशे की हालत में खुद की जान ले ली?
3: नहीं, अभी उतना नहीं। देखो, इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है, हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना थोड़े कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा। सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। रात को 3 बजे तो काफी लेट नाइट तो आया है, फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीजें होती हैं।
0: बहरहाल त्विशा की मौत अपने आप में कई सवाल समेटे हुए है, जिसका सच आना अभी बाकी है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब रुक करते हैं सनसनीखेज खबर के, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या के साजिश का पर्दाफाश हुआ, और यह पता चला कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC से ट्रेनिंग पाए खतरनाक आतंकवादी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी ने इवांका ट्रंप की जान लेने की प्लानिंग की थी।
5: जिस वक्त अमेरिका ईरान फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े, जब ईरान में फिर से तबाही का अमेरिका का प्लान तैयार हो चुका है, किसी भी वक्त ईरान में विध्वंस के लिए हमले का ऐलान हो सकता है, ठीक उसी वक्त ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश रची गई। इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई, और सबसे चौंकाने वाली बात ये साजिश की कड़ी सीधे ईरान से जोड़ती दिख रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहे आतंकी को पकड़ लिया है। उसकी पहचान 32 साल की मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने गुरु और ईरानी सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था, और इसके लिए IRGC से ट्रेनिंग पाए इस आतंकी ने पूरा खाका तैयार कर लिया था। आतंकी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी कासिम सुलेमानी को अपना गुरु मानता था, और तभी से ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में था। आरोपी अल सादी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार, खासकर उनकी बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की कसम खाई थी। जांच के दौरान सुरक्षा बलों को अल सादी के पास से फ्लोरिडा में मौजूद इवांका ट्रंप के आलिशान घर का पूरा ब्लूप्रिंट भी बरामद हुआ है। वो काफी समय से उनके घर की रेखी कर रहा था। वॉशिंगटन में इराकी दूतावास के पूर्व डिप्टी मिलिट्री अटैचे एंटी फाद कनबर ने इस आतंकी के इरादों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अल सादी लोगों से कहता फिर रहा था कि हमें इवांका ट्रंप को मारना होगा। वो कहता था कि हमें ट्रंप के पूरे घर को उसी तरह जलाकर खाक कर देना चाहिए जिस तरह उसने कासिम सुलेमानी के घर को तबाह किया था। यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है, तफ्तीश जारी है। ये गिरफ्तारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके सीधे निशाने पर ट्रंप का परिवार आ गया है। आज तक ब्यूरो।
4: बात अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
6: दुनिया भर में बढ़ रहे तनाव के बीच ये भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने वाली तस्वीर है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से करीब 1 घंटे लंबी मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा, व्यापार, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। ये दौरा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले हो रहा है और इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। रूबियो की चार दिन की भारत यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया भर में ईरान युद्ध की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं और बदलते हालात के बीच भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। इससे पहले रूबियो पत्नी के साथ कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचने के बाद रूबियो ने मदर टेरेसा हाउस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा भी किया। कोलकाता में कुछ घंटे गुजारने के बाद मार्को रूबियो दिल्ली के लिए रवाना हुए। वो जयपुर और आगरा भी जाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग मजबूत करने के लिए भारत 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों के साथ साथ मार्को रूबियो इस बैठक का भी हिस्सा होंगे। उनके चार दिन के भारत दौरे के मुख्य चार उद्देश्य होंगे ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और रक्षा।
7: मैं घोषणाओं से पहले कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ घोषणाएं हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी होंगी, साथ ही क्वाड सम्मेलन से संबंधित भी होंगी। क्वाड में भागीदार होने के नाते हमारे पास कुछ ऐसे नतीजे होंगे जिनके बारे में चारों पक्ष बहुत उत्साहित हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम पिछले लगभग 5 महीनों से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ लगभग 5 महीनों से हूँ।
6: होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर संकट के बाद से भारत ने तेल के लिए कई विकल्पों को आजमाया है। ये संकट अभी टला नहीं है। व्यापार के लिहाज से और कूटनीति में संतुलन को देखते हुए सहमति बनाने के लिए रूबियो के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। आज तक
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूबियो से मुलाकात के बाद दुनिया की भलाई के लिए अमेरिका और भारत को साथ आकर काम करने पर जोर दिया। वहीं रूबियो ने भी मौजूदा हालातों में भारत की भूमिका को बेहद अहम बताया।
8: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into this second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen in ways that don't often make headlines or aren't splashy, but are important and real and tangible and enduring. We've expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific.
4: ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर गहमा गहमी तेज हो गए हैं। एक तरफ ट्रंप ने होर्मुज और यूरेनियम को लेकर तल्ख बयानबाजी फिर दोहराई है, तो ईरान ने भी संभावित हमले की आशंका को देखते हुए तैयारियां पुख्ता कर ली हैं।

0: हॉर्मुज और यूरेनियम पर जारी घमासान, दोनों मुद्दों पर सरेंडर नहीं करेगा ईरान। व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, क्या फिर मचेगा कोहराम? रूबियो ने जताई उम्मीद, बात से बनेगी बात। हॉर्मुज में फिलहाल गोलियों की गूंज नहीं है, लेकिन जहाजों की आवाजाही भी नहीं है। अभी भी सैकड़ों जहाज समंदर में फंसे हुए हैं, क्योंकि ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका वहां से लौटने को। अमेरिका विनाशकारी युद्धपोतों से ईरानी बंदरगाहों पर निगाह बनाए हुए है, और ईरान है कि उसने हर हाल में टोल टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया है। इस बीच कई खाड़ी देशों की ईरान पर हमला न करने की अपील से ये उम्मीद जगी थी कि मामला कूटनीति के जरिए ही हल किया जाएगा, लेकिन इस बीच चौंका देने वाली खबर आ रही है कि ट्रंप अपने कुछ निजी कार्यक्रमों को छोड़कर व्हाइट हाउस लौट आए हैं। कई आला अफसरों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। वैसे भी ट्रंप ने फिर दोहराया है कि उन्हें हॉर्मुज में टोल जैसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
1: We want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's $500 or $200 or $300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And
0: हॉर्मुज के अलावा दूसरा बड़ा पेच यूरेनियम पर फंसा हुआ है। अमेरिका अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि हर हाल में यूरेनियम को वो लेकर रहेगा, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी हाल में यूरेनियम देश के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
1: We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay?
0: तो क्या कुछ ही घंटों में महायुद्ध फिर से शुरू होने वाला है? क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? इन सवालों के जवाब जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मांगे गए, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ बातचीत भी जारी है और हो सकता है कि उसी के जरिए कोई हल निकल जाए।
2: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal. You asked me if I'm optimistic. I don't characterize it as optimistic or pessimistic. We're going to respond based on the facts as we see them.

0: है जब बमों की बरसात की तैयारियां जोर पकड़ती हैं। आज तक ब्यूरो।
1: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: दिल्ली में पीएम मोदी से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात। वैश्विक हालात के साथ आपसी साझेदारी पर बात। ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री को दिया अमेरिका आने का न्योता। सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत से नाराज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मांगा जवाब। सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा की आंसर शीट लेने के लिए 24 मई तक मियाद बढ़ाई। शिरडी में डिफेंस कॉम्प्लेक्स का राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। कहा मेक इन इंडिया से रक्षा कंपनीज की बढ़ेगी क्षमता, तभी देश होगा और मजबूत। विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान। सोमवार को सुनवाई। 7 दिन की पुलिस रिमांड में आरोपी पति समर्थ। ईरान और अमेरिका में छिड़ा मैप वॉर। पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी नक्शे पर लगाया अमेरिकी झंडा। बदले में तेहरान ने भी अमेरिका के मानचित्र पर दिखाया अपना ध्वज। अब बात करते हैं भीषण गर्मी के बीच जारी बिजली कटौती की, जिससे जनता बेहाल है। यूपी में पावर कट को लेकर जनता गुस्से में है, सड़कों पर नजर आ रही है।
1: भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली कटौती ने आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक और हापुड़ से लेकर रामपुर तक भयंकर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। राजधानी लखनऊ का हाल देखिए। महिला का गुस्सा बिजली कर्मचारियों पर उतर रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। लखनऊ में लोगों ने रात को सड़क ही जाम कर दी। ये दुबग्गा पावर हाउस के तहत आने वाला मॉडर्न पिंक सिटी इलाका है। यहाँ पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। बीती रात लोगों का सब्र जवाब दे गया।
2: क्या ये रोज आप लोग ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही दिन कट रहा है?
3: हाँ, जब बिजली नहीं आ रही तो लोग इस तरह बैठते हैं, और छुट्टियां भी हो गई हैं तो बड़ी समस्या बनी हुई है। जब से तापमान बढ़ा है तब से बिजली संकट बहुत गहरा गया है।
4: अब लोग कल दो दिन से रात में सो ही नहीं पा रहे हैं।
1: आम जनता ही नहीं, विधायक जी का हाल भी बुरा है। रायबरेली के बीजेपी के विधायक अशोक कोरी का बिजली कर्मियों को हड़काने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
5: आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं।
1: मेरठ में बिजली से बेहाल जनता ने मेयर आवास की ओर कूच कर दिया, नारेबाजी और हंगामा किया। जनता के सामने मेयर साहब भी खुद को लाचार बता रहे हैं। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज में करीब 14 से 16 घंटे बिजली कट रही है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में छात्र अब कॉलेज के बाहर मोर्चा लेकर बैठे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यूपी में बिजली कटौती से जनता को कब राहत मिलेगी? कब वो भीषण गर्मी के बीच सड़कों की बजाय घरों में आराम से रहेगी? आज तक ब्यूरो।
0: एक ओर पावर कट से जनता बेहाल है तो दूसरी ओर इस पर सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो वहीं सरकार बिजली कटौती के दावों को खारिज कर रही है।